0: उसे मंद बुद्धि भी होगी, हो सकता है कि उसकी जो इंटेलिजेंस है वो उसकी उम्र के और लोगों की तरह हो। जो मुख्य दोनों चीजों में फर्क है वो ये है कि जब किसी को मंद बुद्धि होती है तो उसका जो इंटेलिजेंस होता है और यहां बोल सकते हो उसकी जो डेवलपमेंट होती है, उसका विकास हर एरिया में एक ही तरह से अफेक्टेड होगा। आपके पास एक 10 साल का बच्चा है और जिसका मानसिक विकास अभी 4 साल पर चल रहा है, तो उसका सभी कुछ, उसका उठना बैठना, बात करना, अपने शरीर का इस्तेमाल करना, बोलना, उसका सामाजिक व्यवहार, सब कुछ 4 साल के लगभग होगा। परंतु ऑटिज्म में हम कहते हैं एक बहुत ही उतार चढ़ाव वाली डेवलपमेंट होती है। बच्चे के विकास में हम देखते हैं कि कई बार ये देख कि उसकी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो उसकी उम्र के दूसरे बच्चों की तरह ही होती हैं, जैसे कि उसने उठना बैठना चलना सही एज में स्टार्ट किया है और वो अपना शरीर सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। कुछ उसके कौशल ऐसे भी हो सकते हैं जो उसकी उम्र से बहुत अधिक भी हो। बहुत से ऐसे ऑटिस्टिक व्यक्ति हैं कि जिनमें बहुत ही गणित के बहुत ही गुण होते हैं, वो मल्टीप्लिकेशंस और नंबर्स में बहुत स्किल होती है उनकी, तो कुछ उनके ऐसे स्पेशल स्किल भी हो सकते हैं जो उनकी एज से बढ़कर हों। और जैसे हमें मालूम ही है कि कम्युनिकेशन में और सामाजिक व्यवहार में उनके जो कौशल हैं वो बहुत कम रहते हैं अपनी एज से। तो मेन फर्क दोनों चीजों में ये है कि जहां मानसिक मंदता होने से बच्चे का विकास एक ही तरह से, हम बोलते हैं एक इवन तरह से वो अफेक्टेड है, लेकिन ऑटिज्म में उसकी डेवलपमेंट ऊपर नीचे होती है। और इससे कई बार उनके साथ काम करने वाले जो लोग हैं, उनके जो माता पिता हैं, वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि इसका लेवल है क्या।
1: इंदु जी, ऑटिस्टिक बच्चों को जीवन की मुख्य धारा में किस हद तक शामिल किया जा सकता है और उनके लिए कौन से विशेष प्रावधान हैं?
0: कोई भी बच्चा हो जिसे किसी भी प्रकार की परेशानी हो, चाहे वो ऑटिज्म हो या कुछ और हो, हम जानते हैं कि आजकल UNCRPD और सर्व शिक्षा अभियान और इन सभी चीजों के अंतर्गत पूरी कोशिश की जा रही है कि इन्हें मुख्य धारा में जितना शामिल किया जा सके कोशिश करनी है। परंतु ये स्थिति हम लोग पूरी तरह यहाँ पहुंचने में काफी समय लगाएंगे और हर एक बच्चा जिसे ऑटिज्म है वो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस दिखा सकता है और उसे मुख्य धारा में हम लोग शामिल कर सकते हैं, लेकिन उसे कुछ सपोर्ट जरूर चाहिए होगा इस समाज में एडजस्ट करने के लिए। हम जानते हैं कि कितना कठिन है समाज में एडजस्ट करना। जो चीजें हम लोग इतनी आराम से कर लेते हैं वो बुनियादी चीजें भी इन बच्चों को सिखानी पड़ती हैं। तो उनको एक, हम जो बोलते हैं कि साथ साथ एक और प्रोग्राम चाहिए होता है जो उन्हें हेल्प करता है मुख्य धारा में बने रहने के लिए। और स्पेशल प्रावधान इन बच्चों के लिए है। ये बड़े दुख की बात है कि अभी ये खाली मेट्रोज में ही उपलब्ध हैं और छोटे शहरों में अभी भी ऑटिज्म की जानकारी नहीं है। इन बच्चों को सिखाने के तरीके अलग होते हैं। इनको हम लोग जितना ज्यादा से ज्यादा विजुअल्स की हेल्प से सिखा सके और इनकी ट्रेनिंग में जितना हम भाषा लैंग्वेज प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कर सके उतना अच्छा होगा।
1: इंदु जी, सरकार की ओर से क्या इस दिशा में कोई प्रयास किए जा रहे हैं?
0: जी हाँ, हाल ही में ऑटिज्म से प्रभावित व्यक्तियों के लिए एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, पहले काफी दिक्कत थी सर्टिफिकेट कोई बना नहीं पा रहे थे कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए असेसमेंट का, तो अब पिछले साल इनके लिए एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी मिल रहा है और उस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के आधार पर काफी जो ऑटिस्टिक व्यक्ति हैं उनको सुविधाएं भी मिल रही हैं, जैसे कि इनकम टैक्स में रिबेट मिलना। और दूसरी चीज है कि अगर ये कोई लाइक यात्रा पे जा रहे हैं, रेल यात्रा पे जा रहे हैं, तो उसमें कंसेशन मिल पाना। नेशनल ट्रस्ट में ऑटिज्म एक डिसेबिलिटी के रूप में इसको रिकग्निशन मिला है। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ऑटिज्म के लिए टीचर ट्रेनिंग का कोर्स चला रही है। तो इस प्रकार से काफी कुछ हो रहा है। कुछ संस्थाएं जो ऑटिस्टिक बच्चों के लिए स्कूल चला रहे हैं उनके प्रोग्राम्स को थोड़ी बहुत सहायता भी मिलती है सरकार से। तो इस दिशा में कार्य शुरू तो हुआ है, लेकिन

0: क्योंकि हम देखते हैं कि नंबर्स बहुत हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ऑटिज्म है, तो और भी सुविधाओं की जरूरत है, लेकिन प्रयास अभी आरंभ हुए हैं।
1: इंदु जी, ऑटिज्म के लिए कोई हेल्पलाइन है जिनसे लोग जानकारी प्राप्त कर सकें?
0: ये जो अर्थ आस्था नाम से एनजीओ है, नेशनल ट्रस्ट की हेल्पलाइन इनके संस्था से चलती है। इसका नंबर है 011-264-66-250, और एक बार और दोहराती हूँ, 011-264-66-250, ये है नंबर अर्थ आस्था का। इसके अलावा और भी कई संस्थाएं हैं जो ऑटिज्म के लिए काम कर रही हैं। एक्शन फॉर ऑटिज्म का नंबर लिया जा सकता है, ये दिल्ली में है, और इनका फोन नंबर है 011-40-54-0991, और इन नंबर्स पे फोन करें तो जरूर सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी।
1: इंदु जी, जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं ये कहना चाहूंगी कि ऑटिज्म जो है ये एक काफी, जो हम बोलते हैं कि व्यापक स्थिति है, कि बहुत हम लोग देखते हैं कि हर 150 में से एक व्यक्ति में कुछ न कुछ ऑटिज्म के लक्षण होते हैं। हालांकि ये जो आंकड़े हैं ये हिंदुस्तान से नहीं, हमारी कंट्री में नहीं मिले हैं, क्योंकि कभी कोई ऐसा सर्वे ही नहीं हुआ, कोई डेटा ही नहीं कलेक्ट हुआ, अब ये सब काम शुरू हो रहे हैं। तो जब ये कॉमन डिसऑर्डर है तो बहुत जरूरी है कि लोगों में इसकी जागरूकता हो, ताकि जिन लोगों को ऑटिज्म है वो भी हमारी सोसाइटी में आराम का जीवन व्यतीत कर सके और दूसरे लोगों की तरह इसकी इसमें हर चीज में शामिल हो सके, और जो उनकी कैपेबिलिटीज हैं, जो वो कर सकते हैं, उसका वो पूरा योगदान हमारे समाज को दें और उस समाज का एक हिस्सा बन के रहें। तो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे के दिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जितनी अवेयरनेस, जितनी जानकारी ऑटिज्म की दे सके हम दें।
1: इंदु जी, आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ी, हमें और हमारे श्रोताओं को बहुत उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: दोस्तों, इंदु जी से हमने ऑटिज्म के बारे में जाना कि यह क्या है और किस तरह से ऑटिस्टिक लोग भी जिंदगी की मुख्य धारा में शामिल हो सकते हैं।
1: आशा सरकार के साथ बहुत सी गैर सरकारी संस्थाएं भी इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, जैसे एक्शन फॉर ऑटिज्म, तमन्ना, राजकुमारी अमृत कौर चाइल्ड स्टडी सेंटर, स्कूल ऑफ होप, आसमान आदि ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जो इस विषय पर कार्य कर रही हैं।
0: दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि ऑटिज्म एक आजीवन रहने वाली जटिल विकासात्मक असमर्थता है,
1: पर प्रारंभिक निदान और उचित प्रशिक्षण द्वारा महत्वपूर्ण प्रगति और विकास देखे जा सकते हैं।
0: ऑटिस्टिक बच्चे भी अपने आप में बहुत सारी काबिलियत रखते हैं, पर वे अपनी काबिलियत को साबित करते हैं तो इनके माता पिता के लिए इससे बड़ी खुशी की बात कुछ हो ही नहीं सकती।
1: दोस्तों, ऑटिस्टिक लोगों की काबिलियत को पहचानते हुए उनके खास गुणों को समाज के साथ जोड़ना जरूरी है। दोस्तों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। दोस्तों, अगले कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आशा और महिपाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: मेरे प्यारे भाइयों और बहनों नमस्कार, मैं आपकी दोस्त फरा, मैं लेकर आई हूँ आज फिर एक छोटा सा नाटक जिसका नाम है खुशियों भरा परिवार। मेरे प्यारे श्रोताओं, मन लगाकर सुनिए और अपने पड़ोसियों को भी सुनाइए। सुबह की नई किरणों का आनंद लीजिए और मेरे साथ चाय पीने का भी मजा लीजिए। रेडियो की आवाज थोड़ी सी तेज कर लीजिए और सुनिए नाटक खुशियों भरा परिवार।
1: अरे बहू, सुबह हो गई है, उठ जा, कब उठेगी, धूप भी निकल आई।
0: अजी सुनते हो, माँ आवाज दे रही है।
2: मुझे नहीं बिमला, तुझे आवाज दे रही है। जा बिमला, जाकर अम्मा को चाय बना कर दे।
0: अजी तुम काम पे नहीं जाओगे क्या?
2: जाऊंगा, थोड़ा और सोने दे, कल मैं बहुत थक गया हूँ। तू जा देख अम्मा क्या कह रही है।
0: अम्मा पाए लागू।
1: जुग जुग जियो, सदा स्वागत रहो। अरे बहू, क्या हुआ, तेरी तबीयत खराब है क्या?
0: हाँ माँ जी, मेरी तबीयत खराब है। अम्मा रात से ना मेरी बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही है, दिल भी घबरा रहा है, उल्टी आ रही है और कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा है।
1: अरे बहू, इस महीने तुझे माहवारी हुई या नहीं?
0: अम्मा मुझे इस महीने माहवारी भी नहीं हुई है।
1: अरे ये तो बड़ी खुशखबरी की बात है, तेरे तो पाँव भारी है।
0: अम्मा ये पाँव भारी क्या हुआ थे?
1: तू माँ बनने वाली है, मैं दादी बनने वाली हूँ।
0: अच्छा अम्मा, मैं माँ बनने वाली हूँ?
1: हाँ बहू, हमारे घर के सामने मीना रहती है, आशा है, और वो डॉक्टर का काम सीखती है। उसने दो तीन बच्चे भी करवा दिए, मैं उसे बुला कर लाती हूँ।
0: ठीक है अम्मा, बुला लाओ। जी सुनते हो, माँ क्या कह रही थी?
2: क्या कह रही है अम्मा बताओ।
0: माँ कह रही है मैं माँ बनने वाली हूँ और आप पापा बनने वाले हो।
2: ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैं वाह कमला, तुझे बड़ी।
0: हाँ आपको तो खुशी की बात लगेगी, अभी तो शादी के 5 ही महीने हुए हैं। पता है मेरी भाभी क्या कह रही थी? कि शादी के 3 साल बाद बच्चे करना चाहिए।
2: बिमला क्या कहना चाह रही है, मेरी कुछ समझ में नहीं, तू ही बता मुझे।
0: मैं ये कहना चाह रही हूँ, तुम इकले कमाने वाले हो और मैं अम्मा बाबा सब खाने वाले हैं, मुझे इतनी जल्दी बच्चा नहीं करना है, उसकी परवरिश हम कैसे करेंगे?
2: बच्चे तो भगवान की देन है, तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना, मैं तेरा और तेरे बच्चे का पालन पोषण ध्यान पूर्वक करूँगा।
0: ठीक है, जब आप कह रहे हो तो आप ही सोचो, मैंने तो आप पर ही छोड़ दिया है। अगर आप कह रहे हो तो फिर मैं बच्चा कर लूँगी, वैसे तो मैं 3 साल बाद ही करती, जब आप कह रहे हैं तो ठीक है।
1: राम राम राम बहू, मैं ये क्या सुन रही हूँ, ऐसा करना पाप है, आज कह दिया मत कहना, ले मैं मीना को लेकर आई हूँ।
0: माँ जी मैं तो इनसे ये कह रही थी कि मैं 3 साल बाद बच्चा करूँगी।
1: बहू बच्चा तो भगवान की देन है, अब मत कहना ये बात, अब मैं मीना को बुला कर लाई हूँ।
3: राम राम भौजी, ठीक हो? अम्मा ने बताया मैं बुआ बनने वाली हूँ। ठीक ठाक तो हो, चक्कर वक्कर तो ना आ रहे हैं तुम्हें?
0: राम राम दीदी, मैं तो ठीक हूँ।
3: तुम्हारे अंदर तो एनीमिया की कमी लग रही है मुझे।
0: दीदी एनीमिया क्या होवे है?
3: एनीमिया खून की कमी को कहते हैं जो गर्भवती महिलाओं में पाया जाता है, जिससे जच्चा बच्चा दोनों खतरे की आशंका में होते हैं। तुम्हें चक्कर वक्कर तो ना आ रहे हैं, कमजोरी तो महसूस ना हो रही है तुम्हें?
0: हाँ जी जी, मुझे कमजोरी बहुत महसूस हो रही है।
3: अरे भौजी तुम्हारे पैरों में भी सूजन है, जरा अपने हाथ तो खाना, अपनी जीभ थोड़ी बाहर निकालना। तो भौजी खून की कमी है, इसका इलाज कर लो। अरे भैया वक्त रहते ही भौजी का इलाज कर लो, नहीं तो जच्चा बच्चा दोनों खतरे में पड़ जाएंगे।
2: अच्छा दीदी अब तुम ही बताओ, मैं बिमला को खून की कमी से कैसे बचाव करूं?
3: अरे भैया समय समय पे डॉक्टर को दिखाओ, इनका खान पान में विशेष ध्यान रखो, आयरन की गोलियां समय पर टीकाकरण कराओ, मांस मछली दूध अंडा आदि सभी चीज खिलाओ, इससे खून की कमी भी दूर हो जाएगी, जच्चा बच्चा स्वस्थ रहेंगे, खतरे से बाहर। चुकंदर तो सुबह शाम खिलाओ, इससे एनीमिया दूर होती है, खून की कमी पूरी हो जाएगी।
2: अरे दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये सब बताने के लिए, मैं बिमला और होने वाले बच्चे का पूरा ध्यान रखूंगा।
3: भौजी आप भी पूरा अच्छा ध्यान रखना। अच्छा अम्मा जी, अगर इनका प्रसव करा तो हॉस्पिटल में कराना, और घर में कराने से परेशानी आएंगी। अच्छा अम्मा जी, भौजी भैया राम राम, मैं चलती हूँ। भौजी अपना ख्याल रखना।
0: हाँ दीदी, मैं अपना ख्याल रखूंगी।
3: कोई भी परेशानी हो तो मुझे बता देना, और आयरन की गोली ना मिले तो मुझसे बोल देना, मैं ला दूंगी।
0: जी ठीक है दीदी, मैं आपसे ही बोल दूंगी, मैं आपको बुलाती रहूंगी समय समय पर। जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, राम राम। जी जी
3: राम राम।

0: पूरा करेंगे, तभी तो बनेगा हमारा खुशियों भरा परिवार।
1: अच्छा श्रोताओं, अब आ गया है समय आपसे विदा लेने का। मैं आपकी प्यारी दोस्त फरा, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ऐसे ही मेरे साथ चाय पीते रहिए और रोज नया नया प्रोग्राम सुनते रहिए।

0: इस वक्त हमारे साथ हैं जाने माने सर्जन डॉक्टर आई के धवन। डॉक्टर धवन से हम बात करेंगे कैंसर के बारे में और खास तौर पर ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। डॉक्टर धवन, कैंसर की बीमारी के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन वो कैसे होती है, किस बीमारी को कैंसर कहा जाता है, इसके बारे में आप हमें बताइए।
1: ऐसे है कि बॉडी का जो नॉर्मल टिश्यू रिपेयर का सिस्टम या मैकेनिज्म है वो बड़ा रेगुलेटेड है, उसके रेगुलेटेड है और वो मतलब गलत नहीं होता, चलता रहता है, जैसे नेचर ने कहा है ऐसे ही रिपेयर सिस्टम होता रहता है। हर एक सेल मर जाता है फिर दूसरा आ जाता है, पर एक किसी ऑर्डर में आता है, किसी नियम से आता है। पर जब ये नियम टूट जाता है, जब सेल्स पे कंट्रोल नहीं रहता है, वो अपने आप ही मल्टीप्लाई करते रहते हैं और ट्यूमर बनते जाते हैं, तो फिर हम उसको कैंसर कहते हैं।
0: डॉक्टर धवन, क्या ये बात सच है कि ट्यूमर्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं?
1: ये बात सच है कि दो किस्म के ट्यूमर होते हैं, एक तो जो मैलिग्नेंट होते हैं और एक जो बिनाइन होते हैं। जो बिनाइन होते हैं वो तो 100% इजीली क्योरेबल होते हैं, और जो मैलिग्नेंट होते हैं वो हर एक जगह हर एक अंग के फर्क फर्क क्योर रेट्स होते हैं। और फर्क उनमें ये है, जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं वो सेल्स अपना रूप छोड़ते नहीं हैं, वैसे ही रहते हैं, थोड़ा सा ऑर्डर रहता है, डिसऑर्डरली नहीं होते। जो मैलिग्नेंट सेल्स होते हैं वो अपना रूप छोड़ देते हैं, वो डिसऑर्डरली हो जाते हैं, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई मल्टीप्लाई करते रहते हैं, ब्लड वेसल में चले जाते हैं, लिम्फैटिक्स में चले जाते हैं, जो अपनी कैप्सूल होती है उसको तोड़ के बाहर निकल जाते हैं। तो ये फर्क है दोनों में।
0: डॉक्टर धवन, इस बीमारी के साथ स्टेजेस हैं कि स्टेज वन का है, स्टेज टू का है, तो कई बारी पता चलता है जब तक कि इसको व्यक्ति को कैंसर है और ये कहा जाता है कि आखिर स्टेज का पता चला, तो ऐसा क्यों होता है?
1: ऐसे है कि ये सच है कि किसी किसी ऑर्गन्स में कैंसर जितनी भी आप कोशिश कर लीजिए देर से महसूस होता है, पर जैसे जैसे मेडिकल साइंस आगे बढ़ती है तो हर एक अंग में यही कोशिश है कि कैंसर जल्दी पकड़ा जाए, उस स्टेज पे पकड़ा जाए जिस स्टेज पे उसका इलाज हो सके। एक तो बात यह है। दूसरा बात यह है कि बहुत ज्यादा जोर और एम्फेसिस है अपनी लाइफस्टाइल पे। जो फैक्टर्स कैंसर को प्रमोट करते हैं, जो कैंसर को बढ़ाते हैं, उनको अपनी लाइफस्टाइल से निकाल देना चाहिए, जैसे स्मोकिंग एंड टोबैको यूज।
0: डॉक्टर धवन, अमूमन ये माना जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो बड़ी उम्र की महिलाओं को ही होता है, क्या छोटी उम्र की महिलाएं भी इसकी शिकार होती हैं?
1: सच है कि ब्रेस्ट कैंसर यंग महिलाओं में भी, छोटी उम्र की महिलाओं में भी होता है, पर इतना कॉमन नहीं है।
0: डॉक्टर साहब, महिलाओं को इसकी सही सही जानकारी रहे इसके लिए क्या करना चाहिए?
1: थोड़ी सी गलतफहमियां भी दूर करना जरूरी है। सबसे दुनिया भर में अच्छा सिस्टम जो डेवलप और मोस्ट इफेक्टिव सिस्टम जो डेवलप हुआ है कि औरतों को 50 साल की उम्र या 40 साल की उम्र की औरतों को ये सिखाना चाहिए कि अपना ब्रेस्ट को कैसे पैल्पेट करें या फील करें। हम लोग यही कहते हैं कि महीने में एक दफा जब आप नहा रहे हो, जब आपके पीरियड्स खत्म हो जाएं, पीरियड्स के बीच में, मतलब पीरियड्स के वक्त तो गांठें महसूस हो जाती हैं, पीरियड्स से पहले महसूस हो जाती हैं, पीरियड्स के बाद हफ्ता भर बाद आप अपना ब्रेस्ट नहाते वक्त, क्योंकि साबुन लगाएं ब्रेस्ट के ऊपर फिर अपना हाथ उसके ऊपर लगाएं, तो गांठ जो हो वो अच्छी तरह महसूस हो जाती है। हमने देखा है कि जो अनपढ़, जिनको हम अनपढ़ कहते हैं औरतें, उन्होंने भी कभी रेडियो में सुना हो तो वो आते हैं, क्योंकि हमने रेडियो में सुना, हमने अपना ब्रेस्ट को फील किया तो हमें ये गांठ मजबूत। सो ये बहुत सबसे अहम बात है कि औरतों को सिखाना। दूसरी बात ये है कि 50 साल की उम्र के बाद स्क्रीनिंग या 40 साल की उम्र के बाद ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा है 15 या 20 औरतों में से 50 साल की उम्र के बाद एक को जरूर होगा ब्रेस्ट कैंसर, इतना इसका इंसिडेंस हाई है। तो इसलिए हर एक की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। Now, स्क्रीनिंग में थोड़ी सी गलत फहमी ये है कि मैमोग्राम करा लो तो स्क्रीनिंग हो गई, ये नहीं है। स्क्रीनिंग के दो भाग होते हैं, एक तो कोई डॉक्टर जो ब्रेस्ट कैंसर को देखते रहते हैं वो ब्रेस्ट को अच्छी तरह फील करें, और दूसरा एक साल में या दो साल में मैमोग्राम कराएं। सो ये दोनों भाग हो तब स्क्रीनिंग इफेक्टिव होती है, अगर एक ही भाग करें तो स्क्रीनिंग आधी इफेक्टिव होती है।
0: डॉक्टर धवन, अगर हम कामकाजी महिलाओं को देखें तो बच्चा होने के एक दो महीने के बाद से ही वो ऑफिस जाना शुरू कर देती हैं। ऐसे में बच्चे को दूध पिला पाना तो संभव नहीं है, इसका भी कोई असर होता है उनकी सेहत पर?
1: ये बिल्कुल कंसर्न है, एक तो ब्रेस्ट कैंसर के वजह से कंसर्न है और दूसरा बेबी के लिए भी कंसर्न है कि इफ द बेबी डजंट गेट द मदर्स मिल्क ही इज नॉट गेटिंग द बेस्ट न्यूट्रिशन और शी इज नॉट गेटिंग द बेस्ट न्यूट्रिशन, सो दोनों तरफ से कंसर्न है।
0: डॉक्टर धवन, आप हमारे स्टूडियो में आए और ब्रेस्ट कैंसर को लेकर इतनी सारी जानकारी आपने हमारे लिसनर्स को दी, हमें दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं चाहूंगी कि जाते जाते आप हमारे लिसनर्स को अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं तो जरूर बताइए।
1: सबसे अच्छा सिस्टम तो यही है कि अपना लाइफ स्टाइल अच्छा रखें। लाइफ स्टाइल में सबसे जरूरी चीज है कि टोबैको का इस्तेमाल या सिगरेट के रास्ते या तंबाकू खाने के रास्ते या नसवार रखने नाक में डालने के रास्ते, ये तो बिल्कुल बंद करना चाहिए, क्योंकि ना ही ये कई जगह कैंसर का रोग करता है। बाकी और लाइफस्टाइल, ओवरवेट जो लोग होते हैं उनको भी कैंसर का इंसिडेंस ज्यादा होता है, और खासकर ब्रेस्ट कैंसर के लिए महिलाओं को यही एडवाइस होगी कि दे शुड गेट देयर चिल्ड्रन अर्ली इन लाइफ, दे शुड ब्रेस्ट फीड देम फॉर अ ईयर, ईयर एंड हाफ और टू ईयर्स, एंड दैट विल बी अ बिग बोनस, एंड दे शुड फील देयर ब्रेस्ट वंस अ मंथ, अ वीक और 10 days आफ्टर देयर पीरियड्स, एंड इफ दे नोटिस एनीथिंग रॉन्ग, कुछ गलत मिले तो फौरन अपने कंसल्टेशन करें।
2: आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम शाहबाद की आवाज में।
3: धन्यवाद शाहिल जी।
2: तो सर, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा दिवस के ऊपर, तो आपके जीवन में शिक्षक या फिर शिक्षा दिवस क्या महत्व रखता है?
3: शाहिल जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आज अगर मैं शिक्षक हूँ तो मुझे भी किसी मेरे शिक्षक ने मुझे शिक्षक बनाया है। मैं भी एक टाइम में एक विद्यार्थी रह चुका हूँ और आज मैं एक अध्यापक हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं वो चीजें जो मेरा जीवन का अनुभव है या जो चीजें मैंने सीखी हैं अपने गुरुओं से, वो मैं अपने बच्चों को बता सकूं या उनको वो अपना अनुभव शेयर कर सकूं। शिक्षा एक एक मतलब त्रिवेणी की तरह है, तीन पैरों पे खड़ी हुई एक इमारत है जिसमें एक शिक्षक होता है, एक विद्यार्थी होता है, एक पढ़ने लिखने की सामग्री होती है जिसको आप पढ़ते हो। शिक्षक आपको एक मार्गदर्शन देता है कि किस तरीके से आप इस पथ पे चल करके या इस रास्ते पे चल करके अपने जीवन के उद्देश्य को अचीव करो या अपने गोल को जो है प्राप्त कर लो। तो मैं मानता हूं कि हमारे जीवन के अंदर एक शिक्षक का जो है, चाहे वो अर्ली एज में माँ बाप बच्चे के शिक्षक हैं, चाहे वो कम्युनिटी के लोग हमारे शिक्षक हैं, हर एक व्यक्ति जिससे आप सीखते हो वो आपका शिक्षक है। सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है, सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा रहता है हमारे पूरे जीवन में, वो एक स्कूल टीचर का रहता है। मैंने कल अपने गुरु को फोन किया जो मुझे संस्कृत पढ़ाते थे, उसके बाद मैंने एक दो मेरे और जो बहुत करीब हैं, जो आज भी मेरे संपर्क में रहते हैं, जो शिक्षक मेरे, जिनसे मैं टाइम टू टाइम गाइडलाइन लेता रहता हूं कि आगे मैं क्या करूं। तो हम अपने गुरु को अपने साथ जोड़े रखेंगे तो अपना हमारा जो जीवन है वो कहीं ना कहीं और अच्छा दिन ब दिन निखरता जाएगा।
2: तो जैसे कि शिक्षक दो प्रकार के होते हैं, एक तो साधारण बच्चे को पढ़ाने वाले साधारण टीचर और स्पेशल टीचर। तो जैसे कि आप एक स्पेशल टीचर हैं जो स्पेशल बच्चों को ट्रेंड करते हैं, पढ़ाते हैं, तो किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है आपको स्पेशल बच्चों को ट्रेंड करते या फिर पढ़ाते समय?
3: बहुत अच्छी बात आपने कही कि दो तरह के अध्यापक होते हैं, और आज जो है हमारे विश्व भर में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं हमारे समाज की कुछ कमियां हैं, ये कह लो कि कुछ मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जो हैं जिनकी वजह से इन बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है, कि कुछ कुछ कुछ ऐसे इश्यूज हैं हमारे समाज में, जैसे कि चाहे वो लोगों का अवेयर ना होना, बहुत ज्यादा कम उम्र में शादी कर देना, पहले बाल विवाह होते थे, कहीं ना कहीं बंद हुए हैं, लेकिन फिर भी आज जो है एक और नई चीज है कि लोग 35 प्लस होकर के शादियां कर रहे हैं, वो भी एक चैलेंज है। दवाई है, नशा है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ऐसे एबनॉर्मल बच्चों को जन्म दे रही हैं। तो आपने कहा कि आप स्पेशल अध्यापक हैं, तो किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? पहले जब मैं इस विशेष शिक्षा के अंदर आया था तो मुझे लगा था कि यार क्या मैं इसमें कभी कुछ कर पाऊंगा, लेकिन इसके अंदर धैर्य, संयम और आप ये कह लो कि बहुत ज्यादा लगन अपने अंदर भी होनी चाहिए और बच्चे में भी वो लगन जगाने की कहीं ना कहीं आपके अंदर जो एक प्रेरणा होनी चाहिए कि मैं इस बच्चे को करवा पाऊंगा। मैं अर्ली एज के बच्चों के साथ काम करता हूँ, जैसे कि एक ऑटिज्म डिसेबिलिटी होती है, वो ऑटिज्म के अंदर जो बच्चा है, स्वालीनता जिसको कहते हैं, कि बच्चा अपने अंदर लीन रहता है, कि वो समाज के अंदर नहीं आता है, समाज का हिस्सा नहीं बनना चाहता है, वो अपने अंदर रहता है, कम्युनिकेशन नहीं करता है, एबनॉर्मल बिहेवियर करता है, कि और जो है बोलना उसका बहुत लिमिटेड होता है, कि वो कम्युनिकेशन बहुत कम करता है, बातचीत का बहुत कम करता है। तो ऑटिज्म के ये लक्षण हैं काफी सारे, जो हम किसी दिन डिटेल में बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं जिन छोटे बच्चों के साथ काम करता हूँ वहां पे मेरा काम रहता है कि बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास को देखना। विकास तभी होगा जब हम एक बच्चे को उस तरह का माहौल देंगे। आप चुनौतियों की बात करें, चुनौती तो हम एक साधारण बच्चे को पढ़ाते हैं तो भी आती है, क्योंकि बच्चा एक एज के बाद जो है पर्सन पूछने की जो तादाद, वो पर्सन पूछने का जो उसका दायरा है वो बढ़ता जाता है, कि बच्चा जो है जैसे जैसे बड़ा होगा, जितना समझदार बच्चा होगा वो आपको हर एक चीज के बारे में पूछेगा कि माइक क्या है, इससे कैसे बात करते हैं, कैसे बनता है, ये है ये, तो चैलेंज आपको आता है, आपकी नॉलेज होनी चाहिए। एक बच्चा मैंने मेट्रो में देखा, अपनी मम्मी को बोल रहा है, पॉइंट कर रहा है, ये नॉर्मल बच्चा, साधारण जिसको आप कह रहे हो कि किसी तरह की कोई भी उसके अंदर मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांगता नहीं थी, तो वो बच्चा जो है एक मेट्रो के अंदर इतना चंचल और इतना शातिर बच्चा, जिसको हम कहते हैं इतना इंटेलिजेंट बच्चा, कि वो हर एक चीज के बारे में पूछ रहा है, और उसकी मम्मी पापा इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने जिस तरीके से बात किया तो मैंने उनको रोका कि नहीं, ये आपकी कम जानकारी है जिसकी वजह से आप इरिटेट हो रहे हो, बल्कि बच्चा आपका बिल्कुल सही है, आप इसकी मन की इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहे हो, उनके जो प्रश्नों के उत्तर है वो नहीं दे पा रहे हो, इसलिए आप परेशान होकर के आपने इस तरह का व्यवहार किया, ये बच्चे के ऊपर कहीं ना कहीं एक नकारात्मक प्रभाव छोड़ेगा। अब आप स्पेशल बच्चों की बात करें तो अभी हमारा जो रीड इंडिया है वो एक प्रोजेक्ट लेके आया है PWD, पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो मुझे जब इस प्रोजेक्ट में लाया गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम यहाँ पे गांव के अंदर उस स्तर पे काम कर रहे हैं जहां पे लोगों की पहुंच बहुत कम है। बहुत अच्छा आपने बोला कि बहुत कम है, कम तो होता है कि कोई चीज नहीं है, मतलब बहुत कम है लिमिटेड, यहाँ पे बिल्कुल वो सोर्सेज है ही नहीं, बल्कि जो हमारे सेंटर है वहाँ पे ऑलरेडी वो NCR के टच में है, लेकिन फिर भी जब मैं लोगों घरों में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, उनके उनसे बात करता हूँ, जब मैं उनके घरों को देखता हूँ, उनके माँ बाप से बात करते, तो हमें ये लगता है कि इस NCR के अंदर रह करके भी माँ बाप जो है कहीं ना कहीं आज जो हम मानते हैं कि ग्रामीण स्तर में क्षेत्र में लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन यहाँ पे वही हालात है कि एक किसी विशेष गांव या शहर को हम ये नहीं कहेंगे वो पढ़े लिखे हैं वहां अनपढ़ है, नहीं, लेकिन जहाँ पे जागरूकता नहीं है लोगों के अंदर, चाहे वो शहर है चाहे गांव है, एक जैसा ही हाल है। तो मैं जब द्वारका, गुड़गांव, नोएडा के गांव में जाता हूँ, जब मुझे बोला जाता है कि हम आज मोबिलाइज करने जा रहे हैं, लोगों को अवेयर करने जा रहे हैं, तो मैं देखता हूँ कि लोगों को सच्ची में नहीं पता है। बच्चे हैं उनके पास, लेकिन उनकी अपने बच्चों के प्रति काफी माँ बाप जो हमें पॉजिटिव मिलते हैं कि अच्छा सोचते हैं कि हाँ ये कोशिश कर रहे हैं, काफी माँ बाप जो है वो कोशिश ही नहीं करते हैं, या फिर उनको कोशिश करने की प्रेरणा ही नहीं मिलती है, क्योंकि हर जगह पे विशेष शिक्षक अवेलेबल नहीं है। सरकार कोशिश कर रही है और हो सकता है कि टाइम लगे उसके अंदर, बट हमारे NGO ने जो अभी ये PWD का अभी शुरू किया हमने, पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो हम चाहते हैं कि हम तीनों सेंटरों के अंदर हर एक डोर टू डोर जाकर के लोगों को अवेयर करें, उनको हमारे सेंटर तक लेके आए, चाहे वो किसी भी तरह से हमें उसको उनको बुलाना पड़े कि चाहे आप लेकर के आओ बैठो, या फिर हमें काम करने का एक मौका दो। तो हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं, हम आप भी देखते होंगे, आप एक विद्यार्थी हैं, आप देखते हो ज्योति एक लड़की है, और उसके साथ दो शाइना एक गुड़िया है और एक और दो तीन लड़कियां और भी हैं, तो आप देखते होंगे कि वो बच्चे भी आपके साथ बैठ के कंप्यूटर सीख रहे हैं, वो बच्चे भी लाइब्रेरी में आ रहे हैं, वो बच्चे भी एक क्लासरूम के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, वो बच्चे भी ब्लैक बोर्ड पर लिखना चाह रहे हैं, सब चीजें वो बच्चे कर रहे हैं। तो आप उनको कैसे कह सकते हो कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं? चैलेंज आते हैं, बच्चे को लाना सबसे बड़ा चैलेंज है, उनके माँ बाप को ये समझा पाना कि नहीं ये कोई रोग या किसी पिछले जन्मों का कर्म पाप नहीं है, ये एक हमारी ही गलतियां हैं जो कहीं ना कहीं हमसे हुई है, चाहे वो बच्चे के जन्म से पहले है, चाहे वो बच्चे के जन्म के दौरान है या जन्म के बाद है, तो ये गलतियां हमारी हैं, लेकिन हम उनके अंदर दवाइयों से सुधार नहीं कर सकते, लेकिन हम एक थेरेपी या एक स्कूल सेटअप के अंदर डाल करके बच्चे को पढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। और कई सारी टेक्निक हम इसमें यूज करते हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए, वो तो डिपेंड करता है कि बच्चा कौन से स्तर का है, क्या बच्चा डिसेबिलिटी के साथ आ रहा है, क्या क्या वो इश्यूज अपने साथ लेके आ रहा है, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग उसकी गोल सेट करते हैं, फिर उनके ऊपर हम काम करते हैं।
2: तो जैसे कि मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, अगर इस प्रकार की सिचुएशन मेरी क्लास में किसी बच्चे को है कि वो पढ़ने में असक्षम है, तो मैं किस प्रकार से उसकी सहायता कर सकता हूँ?
3: आप कह रहे हो कि पढ़ने लिखने में बच्चे को समस्या आ रही है, वो समझ नहीं पाता है, मैं उसको कैसे पहचानूं? तो पहली बात तो ये है कि एक विद्यार्थी अपने सहपाठी को एक सहयोग दे सकता है, लेकिन आपको लग रहा है तो आप, मैं मानता हूं कि आप पढ़ने, अगर आप लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करें तो उसमें होता है कि आप लिखना पढ़ना गणित को समझना या भाषा के अंदर किसी तरह की असमानता ना हो, तो आप लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे को पहचान सकते हैं। आप उसकी नोटबुक देखो, क्या उसका लिखता है वो सही लिखता है, आपके आपका सहपाठी है क्या वो बोर्ड से देख करके लिख पाता है, लिख पाता है तो क्या वो कितनी गलतियां करता है, वो टै को ठह तो नहीं लिख रहा, ए को आ तो नहीं लिख रहा, कि आप ये समझो कि मेरा नाम राजीव है तो वो खाजीव बोल दे, रा को खै बोल रहा है, मतलब उसको शब्दों की पहचान नहीं है, बिना देखे लिख नहीं पा रहा है। आप देखते हो कि क्लास के अंदर एक अध्यापक ने एक पाठ पढ़ाया लेकिन उसको याद नहीं रह पा रहा है, तो आप ये मान सकते हो कि किसी तरह की उसके अंदर अक्षमता है, लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, लेकिन आप पहले अध्यापक को बताओ, कि कभी कोई बच्चा खुल करके नहीं बता पाता है। अध्यापक का काम ही होता है, जैसे आप जिस स्कूल में पढ़ते हो वहां पे एक काउंसलर है आपके स्कूल में,
4: जी हाँ,
3: आप काउंसलर को बता सकते हो, क्योंकि आपका काम पहचानना नहीं है, आप एक विद्यार्थी हो, आप एक अपने साथी का या अपने सहपाठी का जो वीक पॉइंट है उसको आप सबके सामने उजागर मत करो, आप जाके डायरेक्ट अपने काउंसलर को बताओ, अपने टीचर को बताओ, ताकि उसकी उसकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। अब काउंसलर जो है एक प्रोसीजर में आएगा, एक प्रक्रिया में आएगा, वो क्या करेगा, वो बच्चे से मिलेगा। देखो हम किसी को, चाहे आपने देखा ज्योति इतना अच्छा कर रही है, अगर वो एक किसी स्पेशल स्कूल में जा रही होती तो सर इतना अच्छा ना कर पाती, क्योंकि उसको सब डिसेबल्ड बच्चे अपने सराउंडिंग दिखते, यहाँ पे वो नॉर्मल बच्चों को देखती है, आपको देख के भी सीखती है और वो दूसरे बच्चों को देख के भी सीखती है, उसके पहनने में, ओढ़ने में, खाने में, हर चीज में। आप, मैंने 2 महीने में इतने बदलाव देखे हैं जो शायद एक विशेष आवश्यकता वाले विद्यालय के अंदर जाके बच्ची लर्न नहीं कर पाती जितना वो यहाँ कर पाती है। सरकार भी चाहती है कि हमारा जो समाज है वो समेकित शिक्षा होना चाहिए, मतलब हमारे जो विद्यालय है जो इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए, कि जहाँ पे सब बच्चों को एक समान भागीदारिता मिले। आपने सबको शिक्षा का अधिकार है, ठीक है, उसी तरीके से इन बच्चों का भी अधिकार है। तो आपने कहा कि मैं क्या करूं, आपका सबसे जो महत्वपूर्ण रोल है वो यही था कि आपने बच्चे को देखा, अब आपने विशेष शिक्षा का टॉपिक आपने लिया है, इस पे आपने मुझसे बात की है, तो आपकी कुछ ना कुछ जानकारी बढ़ी है, तो आपको इस तरह के बच्चे लगते, तो आप उनको, आप पहले अपने लेवल पे देखो कि क्या उनको सच्ची में इस तरह की दिक्कत है, कोई और है। आप एक दोस्त हो तो कभी कभी बच्चा जो है ना, माँ बाप या घर के हालात ऐसे हो जाते हैं कि बच्चा जो है घर से इतना सारा बर्डन लेके आता है, कभी कभी होता ना कि माँ बाप के झगड़े, बाप का शराब पीना या इस तरह की घर की कई सारी समस्याएं होती है जो बच्चे को पढ़ने में बाधाएं डालती हैं। तो क्या आप उससे बात करके देखो, अगर आपके गली मोहल्ले का, तो आपका, आप उसके घर का सिचुएशन देखो कैसी है, ये चीज अपने तक रखो, गुप्त रखो। उससे क्या होगा कि आप जो है पहले बच्चे का जो स्तर है क्या वो डिसेबिलिटी में आता है या फिर कोई और समस्याओं के साथ वो ये इन सब चीजों से संघर्ष कर रहा है। अगर ये सब चीज नहीं है तो आप एक काउंसलर को बता सकते हो जो आपके स्कूल में है, आप उनको बताओ कि मैं उस बच्चे को, मुझे लग रहा है किस तरह की कोई समस्या है, मैं उसको परेशान देखता हूँ, उसको पढ़ने में भी समस्या आ रही, तो आप एक काउंसलर जो है फिर उसका असेस करेगा, उसको देखेगा, उसके माँ बाप को बुलाएगा, उनसे बातें करेगा, तो फिर एक प्रोसीजर आएगा, फिर आपके स्कूलों में स्पेशल एजुकेटर भी होते हैं आजकल, जो एनसीआर के स्कूल है उनके अंदर ज्यादातर स्पेशल एजुकेटर हैं। तो फिर धीरे धीरे एक प्रोसीजर शुरू होगा, फिर काउंसलर जो है स्पेशल एजुकेटर के पास भेजेगा, फिर वो आइडेंटिफाई करेगा, असेसमेंट करेगा, देखेगा बच्चा कहाँ अटका हुआ है। तो एक थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, लेकिन इसके अंदर पूरे समाज की भागीदारी बहुत जरूरी है।
2: तो ये बात तो ही, जैसे कि हम स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, फिर आसपास में हम जहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पे बच्चों के बारे में, आज भी हमारे आस पड़ोस में जैसे मजदूर भाई होते हैं उनके बच्चे भी पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाते हैं, तो हम उन बच्चों की किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं, क्योंकि उनके मम्मी पापा जो होते हैं इस बारे में ध्यान नहीं देते हैं कि वो बच्चा किस प्रकार से विकसित हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, और उनको ये पता भी नहीं रहता कि हाँ हम अपने बच्चे को किस प्रकार से ट्रेंड करें या फिर हम उसको कहाँ भेजें कि उसका मानसिक विकास हो सके।
3: आपने जो बात बड़ी अच्छी बोली है, क्योंकि आप बहुत होशियार हो और आप चीजों को पकड़ पा रहे हो, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, पर्सन बहुत अच्छा है ये कि उनको हम कहाँ भेजें। देखो वो स्कूल नहीं जा रहे हैं
2: जी,
3: तो मैं आपके इस गांव की बात करूं शाहबाद की, तो वहां पे हमारे पास अभी रीड इंडिया के अंदर ये प्रोजेक्ट है, और ये प्रोजेक्ट जो जो हमारे डायरेक्टर है गीता मैम, उन्होंने बोला था कि अगर ये रहे ना रहे लेकिन पीडब्ल्यूडी हमेशा रहेगा, कि ये हमने रीड इंडिया के साथ जोड़ दिया है। तो अगर आपके गांव के अंदर आपको ऐसा बच्चा दिखता है तो आप उसके माँ बाप को बात नहीं कर पाते हो, कोई बात नहीं, आप हमें बताओ, हम उनसे जाके बात करेंगे, हम हमारे सेंटर के अंदर उस बच्चे के साथ काम करेंगे। यहाँ पे स्पेशल एजुकेटर भी है, काउंसलर भी है, स्पीच थेरेपिस्ट भी है, हमारी एक पूरी टीम है, जैसे कि आप भी हो। अगर मैं आपको कहूंगा कि बेटा इस बच्चे को आप कंप्यूटर का कुछ सिखा दो या इसको कुछ कलरिंग करा दो, तो आप मना नहीं करोगे, क्योंकि आप इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहा था ना, वो हमने पार्ट शुरू कर दिया ऑलरेडी। भारत सरकार की जो नई नई शिक्षा नीतियां आ रही है या फिर पुरानी जो शिक्षा नीति है वो स्कूलों तक है, लेकिन कहीं अच्छे तरीके से काम हो रहा है कहीं नहीं हो रहा है। जो आपने कहा कि उन बच्चों को हम कहाँ पहुंचाएं, तो अभी तो मैं ये कहूंगा कि आपके आसपास अगर कोई स्पेशल स्कूल है तो वहां बता सकते हो, अगर जैसे कि हमारा रीड इंडिया है तो आप यहाँ पे हमें बताओ, हम उनसे मिलेंगे, उनके माँ बाप से बात करेंगे और उनको हमारे सेंटर में लेके आएंगे, और जब वो बच्चे हमारे सेंटर में आएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने इस बच्चे को पहचाना और ये आज यहाँ पे आ रहा है, और जब वो चीज़ सीखेगा तो आपको वो ज्यादा खुशी मिलेगी। तो जरूरत है आज के युवा को विशेष शिक्षा से जुड़ने का, विशेष शिक्षा वाले विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पहचानने का और उनके साथ एक प्रेम से रहने का, कि ये ना हो कि आप उनसे नफरत करें। आप जिस तरीके से, मैं आपके अंदर ये एक उमंग देख रहा हूँ कि आप इस मतलब स्पेशल एजुकेशन या विशेष शिक्षा के बारे में जानने के लिए उत्तेजित हैं या इतने भावुक हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी क्लास के 30 और बच्चे भी इस चीज को जानने की कोशिश करें और आप उनको भी मोटिवेट करो, क्योंकि आपके अंदर जो है मुझे भी वो शिक्षक वाली चीजें नजर आ रही है कि आप चीजों को जल्दी पकड़ पा रहे हो। और एक अच्छे शिक्षक की यही खास बात होती है कि वो वातावरण के अंदर अपने आप को या वातावरण के अंदर जो समस्याएं हैं उनको निपटने के लिए उसी वातावरण के अंदर सोर्सेज ढूंढता है, मतलब स्रोत ढूंढता है कि किस तरीके से मैं इस समस्या को इसी वातावरण के अंदर खत्म कर दूं या इसको सॉल्व कर दूं।
2: तो अंत में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
3: तो मैं श्रोताओं से यही कहना चाहूंगा कि हमारे हर घर के आस पड़ोस में, हर गली में लोगों को बच्चों की समस्याओं के बारे में नहीं पता है कि विशेष आवश्यकता है या बच्चे के विकास में देरी हो रही है या बोल नहीं पा रहा या किसी तरीके से वो जो है अनजान है। जिन जिन श्रोताओं ने आज हमें सुना है, मैं चाहूंगा कि अगर वो थोड़ा भी उनको समझ में आया है, अगर उनके आस पड़ोस में ऐसे बच्चे हैं, तो अपने नजदीकी किसी भी एनजीओ में या उन माँ बाप को उस एनजीओ का पता बताए, या फिर ये देखें कि इन बच्चों के लिए समाज की कौन सी संस्था, कौन सी इकाई, कौन लोग जो काम कर रहे हैं, समाज सेवी भी होते हैं, बहुत सारे एनजीओ काम कर रहे हैं, जैसे रीड इंडिया जो इस प्रोजेक्ट को लेकर के आया है और वो इस पे काम कर रहा है। तो जैसे कि अगर शाहबाद, वजीराबाद और नोएडा के एक गांव की बात करूं, तो हम अगर वहां के श्रोता सुन रहे हैं तो हमारा सेंटर है जहां पे आप वहां पे बच्चों को भेज सकते हैं। और अगर जो जहां पे अभी हमने शुरू नहीं किया है, आगे चल करके हम करेंगे, तो वहां के जो लोग हैं वो अपने आस पास ऐसे स्रोत ढूंढे कि जहां पे इन बच्चों के लिए कुछ हो रहा है, जैसे स्कूल है, स्पेशल स्कूल है, या फिर कोई एनजीओ है, अभी तो बहुत सारे एनजीओ वगैरह काम कर रहे हैं, या फिर एक सरकार ने एक ना शिक्षक रखा हुआ है, घुमक्कड़ जिनको कहते हैं, वो सरकारी स्कूलों के अंदर आते हैं वीक में 3 दिन 4 दिन, आपके स्कूल में स्पेशल एजुकेटर है
2: जी,
3: हाँ, तो वो कभी कभी आते हैं इन बच्चों को एक रिसोर्स रूम मतलब एक संसाधन कक्ष जिसको बोलते हैं, जहाँ पे इन बच्चों के लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल जिनसे कि बच्चा पढ़ता है जिनसे सीखता है हाँ हाँ, तो वो एक रूम होता है हर स्कूल के अंदर, तो आप वहाँ पे भेज सकते हो। और ज्यादा ज्यादा जो है जागरूकता की कमा जरूरत है हमें आज समाज के अंदर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, उनके माँ बाप के लिए और समाज के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन अगर हम सब मिलकर के इससे लड़ेंगे और इसके इसके इसको डट के इसका मुकाबला करेंगे तो कहीं ना कहीं ये मुश्किल नहीं है। और हम अकेले से नहीं होता है, किसी एक व्यक्ति विशेष का काम नहीं है, ये पूरे समाज का काम है। तो मैं ये कहूँगा कि पूरे समाज को एकजुट होना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और इस चीज़ को जागरूकता के लिए हर स्कूल के अंदर एक एजुकेटर जो है होना चाहिए और उसको भी गाँव के अंदर जागरूकता बढ़ानी चाहिए, अवेयरनेस करना चाहिए कि हाँ इस तरीके के बच्चे हैं तो आप हमारे पास लेके आइए, चाहे आप उनको गृह आधारित काम दे दो या फिर उनको आप रेगुलर क्लासें लो या जो भी है, लेकिन हमारे समाज के लोगों को ऐसे स्रोत ढूंढने पड़ेंगे जहाँ पे अवेलेबल नहीं है कि हम इन बच्चों को कैसे और कहाँ भेज सकें।
2: तो राजीव जी, आप हमारे कार्यक्रम शाहवाद की आवाज में आए, आपने हमें स्पेशल बच्चों के बारे में बताया कि आप उनको कैसे ट्रेन करते हैं। धन्यवाद।
3: धन्यवाद शाहिल जी।

0: टीजगढ़। दौसा जिला में बसा हुआ एक खूबसूरत गांव, NH 11 से 10 किलोमीटर दूर। इसकी आबादी लगभग 15,000 है।
1: गीजगढ़ अपनी खूबसूरती के लिए आसपास के गांव में बहुत प्रसिद्ध है। गीजगढ़ की अपनी एक छटा है, इसमें देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं।
0: गीजगढ़ जो कि खूबसूरत और खुशहाल गांव है, लेकिन रोजगार की समस्या के सामने गांव के लोगों ने यहां से पलायन करना स्टार्ट कर दिया है।
1: गीजगढ़ अपनी खूबसूरती और धार्मिकता के लिए प्रसिद्ध है। लोगों के अनुसार राजा गिद्ध यहाँ के महाराज थे, उन्हीं राजा के नाम पर इस गांव का नाम गीजगढ़ हुआ है। यहाँ का किला बहुत ही प्रसिद्ध है।
0: आइए जानते हैं कुछ गीजगढ़ के बारे में। सबसे पहले हम चलते हैं गीजगढ़ के किले की ओर। यहाँ 280 सीढ़ियां चढ़ने पर हम पहुँचते हैं रामझरोके पर। आगे चलकर हम किले के अंदर प्रवेश करते हैं। दोस्तों, यह किला सुदृढ़ता और सुंदरता के लिए विख्यात है।
1: किले के अंदर चलते हैं। ये हैं किले की बावड़ियाँ। ये प्राचीन समय में पेयजल का स्रोत रही है। और ये किले के अंदर आप देख रहे हैं शिव मंदिर, ये है रामदेवरा, यहाँ जगदम्बा माता का स्थान है। यहाँ ऊपर इस जगह पर चलने पर पूरे गांव को एक साथ आप देख सकते हैं।
0: ये है किले का दूसरा दरवाजा। यहाँ से निकलकर हम किले के पिछले हिस्से पर पहुँचते हैं। यह तोप प्राचीनता और वीरता की गवाही दे रही है। ये है गीजगढ़ बस स्टैंड। यहाँ पर हम चल रहे हैं बाकली के बालाजी की तरफ। यह मंदिर बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध है। यहाँ पर दशहरे पर हजारों की संख्या पर भीड़ जुड़ती है।
1: यह है यहाँ का शीतला माता मंदिर। यहाँ पर शीतलाष्टमी पर बहुत ही ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती है और होली के अवसर पर होलिका दहन के उत्सव भी यहीं पर मनाया जाता है।
0: आगे आपको ले चलते हैं यहाँ के प्रसिद्ध बावड़ी के बालाजी के मंदिर। इस मंदिर का नाम बावड़ी वाला बालाजी होने का कारण है मंदिर के पीछे बसी हुई बावड़ी। सन 1985 तक इसमें खूब सारा पानी भरा हुआ था। अब लगभग 1995 से यह बावड़ी सूख रही है।
1: इसी क्रम में अब हम आपको लेकर चलते हैं भूतेश्वर महादेव मंदिर। आप यहाँ पर देख रहे हैं इन छतरियों की शोभा देखते ही बन रही है। इनको यहाँ के महाराजाओं ने बनाया था। चलिए इसी क्रम में हम आगे चलते हैं।
0: कोटेश्वर महादेव मंदिर, गणेश मंदिर, गोपाल जी का मंदिर, राधा वल्लभ जी का मंदिर, बिहारी जी का मंदिर।
1: यह है रामदेवरा और आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो घंटाघर यहाँ पर बनाया गया है, ये बहुत ही प्राचीन समय में बनाया गया था। पहले इस पर बहुत बड़ी घड़ी भी जो है लगी हुई थी, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। और यह भी गांव के बीच में बसा हुआ गांव की सुंदरता में चार चांद लगा रहा है।
0: गीजगढ़ के लोगों ने बताया कि यहाँ गीजगढ़ चार दीवारियों से घिरा हुआ था। गीजगढ़ के अंदर चार प्रमुख दरवाजे हैं, जिससे कि गीजगढ़ को एक बंद गांव के रूप में देखा जाता है। गीजगढ़ के आसपास गांव और ढाणियां मिलाकर कम से कम यहाँ की आबादी 25,000 है। आइए दोस्तों, अब चलते हैं गांवों के लोगों की तरफ, देखते हैं उन्होंने क्या कहा। अभी हमारे साथ है बिजराज सिंह जी। नमस्कार बिजराज सिंह जी।
2: नमस्कार सर।
0: सर, आप इस गांव गीजगढ़ के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे?
2: जो गीजगढ़ जो नाम है वो एक गिद्ध राजा के नाम से पड़ा था, जो कि यहाँ पहले राज करते थे। क्या है कि वो पानी बड़ा पहले भरा हुआ था गीजगढ़ के अंदर, तो उनका रानी का जो हार गिरा हुआ था वो अपने त्रिवेणी जी के मंदिर में गिरा था, तो उसको हार को निकालने के चक्कर में पानी निकाला गया, मतलब जगह जगह से पहाड़ काट गए, तो ये धीरे धीरे बसावट होती गई गीजगढ़ की। तो राजा ने बसावट कर दी सबकी, धीरे धीरे सब आदमी उन्होंने घर बना लिए, ऐसे करके ये गांव बसा हुआ है गीजगढ़।
0: बिजराज जी, यहाँ के लोगों के आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है?
2: आजीविका का स्रोत है अपने यहाँ पे खेती वगैरह और दुकानें वगैरह। तो अब धीरे धीरे लोग जो पढ़ रहे हैं तो वो यहाँ पे क्या धंधा वगैरह नहीं है, तो वो दुकान पे तो सहमत नहीं है, तो जयपुर वगैरह से मतलब बाहर जाके मतलब काम कर रहे हैं। तो मतलब धीरे धीरे आदमी यार रह नहीं रहे, पलायन कर रहे हैं सब। इसलिए गांव पहले बहुत खूबसूरत था, पर अब क्या है कि मतलब धीरे धीरे पलायन की वजह से मतलब कोई ध्यान नहीं दे रहा गांव के ऊपर। और जो अभी ऐतिहासिक जगह है अपनी देखने की गीजगढ़ में, उन पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
0: जी धन्यवाद। दोस्तों, हमारा गीजगढ़ प्राचीन समय से ही राजस्थान में एक खुशहाली का प्रतीक रहा है, पर मौजूदा परिवेश में पलायन बेरोजगारी और प्राकृतिक समस्याओं के कारण इसका अस्तित्व खतरे में है। अब समय है हम लोगों को मिलजुल कर हमारे गीजगढ़ की बेहतरीन के लिए काम करने का, जिसमें स्थानीय लोग विशेषकर युवा वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, वरना गीजगढ़ सिर्फ इतिहास ही बनकर रह जाएगा।

प्रिय श्रोताओं, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं करमवती गांव माजरी से आशा वर्कर का कार्य करती हूं। मैं समाज में घर घर गली गली में घूमती रहती हूं। जैसे मैं कहीं पर जाती हूं, मुझे अनेक अनेक समस्याएं देखने को मिलती है, जिससे मेरे मन में विचार उत्पन्न होते हैं और मैं उन समस्याओं से निपटारा पाने की सोचती हूँ। मुझे कई समस्याएं देखने को मिलती है, जैसे कहीं लड़का लड़की में भेदभाव हो रहा है तो कहीं बहू पर टॉर्चर हो रहा है, लड़का लड़की की पढ़ाई में भी भेदभाव और उनके उत्पन्न होने पर भी भेदभाव। बहुत ही विकराल समस्या उत्पन्न हो रही है, जैसे कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियां बहुत ही कम पैदा हो रही है, ये तो बहुत ही चिंता का विषय है। इस पर मैंने एक कहानी लिखी है जिसको मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। माया, अरे माया, कल काम पर क्यों नहीं आई? क्या बताऊं बहन जी, कल मेरे घर वाले ने मुझे बहुत मारा, लेकिन क्यों मारा? क्या बताऊं बहन जी, पहले से ही दो दो बेटियां पल रही है और अब की बार फिर बेटी। क्या कहा तूने, लेकिन तेरे को कैसे पता चला कि तुम्हारे गर्भ में एक बेटी है? अरे बहन जी, मेरे घर वाले ने जो अल्ट्रासाउंड जो करवाया था उसमें पता चला कि अब की बार भी मेरे गर्भ में बेटी ही है। क्या तेरे पति को ये नहीं पता, लिंग जांच करवाना कानूनी अपराध है और इसे करवाने वाला दोनों को ही सजा जुर्माना हो सकता है? ये तो पता नहीं बहन जी मुझे, लेकिन मेरे घर वाले ने मुझे करवाया और लड़की का पता चला तो उसने मुझे बहुत मारा। नहीं, अपने पति के पास मेरे को ले चल, मैं आपके पति को समझाऊंगी कि लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं है और वैसे भी आपके पास दो दो बेटियां हैं तो अब की बार बच्चा बनाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। एक तो इतनी महंगाई और एक आपका शरीर कितना कमजोर दुबला पतला है, बच्चे की और जरूरत ही नहीं थी। मैं उसको समझाऊंगी। अरे मैं बहन जी, आप क्या समझाओगी, वो तो मुझे बार बार अबॉर्शन के लिए टॉर्चर कर रहे हैं। क्या आपके पति को ये नहीं पता कि लिंग जांच करवाकर और भ्रूण हत्या करवाना महापाप है और कानूनन अपराध है? अरे बहन जी, मैंने इसके लिए मना कर दिया तभी तो उसने मुझे मारा और मैं तो ये पाप बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। आज रात को जो मैं सो रही थी तब मेरे को सपना आया और सपने में मेरी बेटी ने, पता है बहन जी आप मुझसे क्या कहा? क्या कहा तो प्रिय श्रोताओं, उस लड़की ने अपनी माँ से क्या कहा, मैं ये एक गीत के द्वारा प्रस्तुत करना चाहती हूँ।

0: अरे रीमा, तो बहन जी, इस गीत ने, उस बेटी की बातों ने मेरे कलेजे को हिला दिया। और मैंने तो, चाहे मेरे हस्बैंड कुछ भी कहो, यह अबॉर्शन बिल्कुल भी नहीं करवाना। और मैं आज आपके पास काम के लिए नहीं, इसीलिए आई हूँ कि आप भी मेरी हेल्प कर सको और मेरे हस्बैंड को इस बारे में समझा सको। हाँ हाँ आया, मैं जरूर आपके पति को समझाऊंगी। और आपकी वो दो बेटियाँ, वो क्या करती है, स्कूल तो जाती होगी ना? अरे नहीं बहन जी, क्या स्कूल, वो तो भी मेरी तरह किसी दूसरे के घर में झाड़ू पोछा करती है। क्या कहा माया तूने, किसी दूसरे के घर में झाड़ू पोछा करती है? आपको ये नहीं पता कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी के घर पर काम करवाना या कंपनी या किसी भी कार्य क्षेत्र में काम करवाना कानूनी अपराध है, और इसे करवाने वाला वे काम पर भेजने वाला दोनों ही इसके दोषी जुम्मेवार हैं। आप अपनी बेटियों को स्कूल क्यों नहीं भेजती? अरे मैम जी, कहाँ से स्कूल में भेजूं? आज इतनी महंगाई जो है, घर पाल चलाना ही मुश्किल हो रहा है, ऊपर से उनके स्कूल फीस व कापी किताबों का खर्चा मैं कहाँ से उठाऊं? अरे माया, क्या तेरे को ये नहीं पता कि आज जो सरकार ने है 8वीं कक्षा तक निःशुल्क किताबें और फीस फ्री कर रखी है। आप अपनी बेटियों को स्कूल में भेज के तो देखो, कोई खर्चा नहीं है, उनको फ्री में शिक्षा दी जा रही है, कापी किताबें भी सरकार ही दे रही है। अच्छा बहन जी, मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था, तब तो मैं अपनी बेटियों को जरूर स्कूल भेजूंगी। कल से ही मैं उनका एडमिशन स्कूल में करवाऊंगी। और मेरे आसपास में जो बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते, मैं उनको भी यही सलाह दूंगी, अपनी बेटियों के साथ उनको भी स्कूल में एडमिशन करवाऊंगी। ये तो बहन जी आपने बहुत ही अच्छी बात बताई है। तो प्रिय श्रोताओं, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? मुझे आशा है आपको पसंद आई होगी। तो प्रिय श्रोताओं, आज आप दे मुझे इजाजत, मैं करमवती गांव माजरी से कल आपको फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: गुड आफ्टरनून,
1: गुड आफ्टरनून मैम।
0: गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। काफी हम लोग बात कर चुके हैं लाइफ स्किल्स के ऊपर, और कुछ सेशंस आई बिलीव आप लोग खुद कर रहे हैं, खुद से बना के, या कुछ सेशंस जो हम लोगों ने दिए हैं उनको भी आप शायद यूज करते होंगे। क्योंकि ये नॉन यूनिक है, और ज्यादातर हम चाहते हैं कि जितने लोगों के साथ आप ये कुछ शेयर कर सकें, उनकी सॉफ्ट स्किल्स बिल्डअप हो सकें। इंटरनेट से भी वीडियोस आप ऐड कर सकते हैं सेशंस को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। आज का सेशन थोड़ा डिफरेंट है। एक मेजर लाइफ स्किल जो हमें एज ए इंडिविजुअल भी आनी चाहिए और एज अ यू नो फैमिली पर्सन भी आनी चाहिए, वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर हम मनी को लेके हम सबको कुछ ना कुछ इश्यूज रहते ही हैं, चैलेंजेस रहते ही हैं। चाहे आज हम स्टूडेंट हैं, चाहे हम आज अर्न कर रहे हैं, चाहे हम हाउसवाइफ हैं, चाहे हम स्मॉल एंटरप्रेन्योर हैं। सो वी थॉट दैट इट कुड बी इम्पोर्टेंट टू हैव अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू अ लाइफ स्किल, बिकॉज ज्यादातर स्कूल्स में, कॉलेजेस में इस पे बात होती है, लेकिन ये लाइफ स्किल ऐसी है जो जब हम लाइफ में जब इसके अंदर उतरते हैं तभी वो धीरे धीरे करके बिल्डअप होती है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें प्रॉबली हैं जो अगर हम शुरू से ही अपने दिमाग में रखें तो हम एक बेटर फंड मैनेजर या बजट मैनेजर या इंडिविजुअल जो अकाउंट की जो हमारी अपनी वेल्थ मैनेजमेंट है उसको हम बेटर कर सकते हैं। सो टेकिंग दैट आई कैन शेयर सम स्लाइड्स। मैंने अपनी जो एक फोटो है वो लिखी हुई, एक लगाई हुई है, बट आई बिलीव जब आप ये सेशन अपने बेनिफिशरीज के साथ करेंगे, उसमें बच्चे भी होंगे, उसमें औरतें भी होंगी, उसमें यूथ भी हो सकता है, उसमें हो सकता है बुजुर्ग भी होंगे। सो सबसे पहले हमें ये जरूरत है उस चीज की मैपिंग की कि मुझे एज एन इंडिविजुअल मनी चाहिए क्यों। सो कैन एनीबडी टेल कि मनी हमें लाइफ में चाहिए क्यों होता है? पहले जब रुपए नहीं आए थे तभी भी तो जिंदगियां चलती थी ना, बार्टर सिस्टम से चलती थी, या फिर उसके अलग तरीके होते थे। अब क्योंकि मनी है, करेंसी आई है, तो ये अब हम क्रिप्टो करेंसी में जा रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सैलरीज बैंक में क्रेडिट होती है, हम मनी को फिजिकल फॉर्म में तो देख ही नहीं पाते, वो आती है ईएमआईज में चली जाती है, पेमेंट्स में चली जाती है, स्कूल फीस में चली जाती है। सो एज एन इंडिविजुअल मनी हमें चाहिए क्यों, कोई बता सकते हैं? एज एन इंडिविजुअल इसमें कुछ सही कोई गलत नहीं है, हमारी जिंदगी में मनी हमें क्यों चाहिए? इफ समबडी कैन यू नो डिफाइन दैट।
2: हेलो मैम, इट्स संगीता फ्रॉम बायरेड्डीपल्ली।
0: हेलो जी,
2: एक बेहतर जिंदगी के लिए चाहिए मैम,
0: मनी हमें बेहतर जिंदगी के लिए चाहिए। वेरी गुड मैम।
2: अच्छे से कंफर्टेबल
0: मैं
2: लाइफ
0: सत्यम
2: स्टाइल
0: फतेहपुर। जी
1: मैम, मनी की हमें आवश्यकता मैम हमारी बेसिक नीड्स को पूरी करने के लिए भी बहुत जरूरी थी आज के टाइम में, क्योंकि एक तौर पर ये एसेट के तौर पर इसे आइडेंटिटी दी गई है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। सो बेसिक नेसेसिटी यानी कि खाना, कपड़े हो गए,

0: बिल्कुल, जैसे कि हमारे फतेहपुर सेंटर से किसी ने बताया था शायद कि बेसिक नीड्स, और आप भी वही बोल रहे हैं, दैनिक दैनिक नीड्स जो हैं, जो आवश्यकताएं हैं उनके लिए हमें चाहिए पैसा चाहिए, यानी कि पेट भरा होना चाहिए, कपड़े होने चाहिए, बेसिक जो हमारी नीड्स हैं उसके लिए हमें मनी चाहिए होता है। ये दो चीजों के अलावा किसी और चीज के लिए हमें मनी चाहिए होता है? आप अपनी जिंदगी में किसी और चीज के लिए पैसा चाहते हैं? दैनिक नीड में क्या हमारे और कुछ जरूरतें आती हैं, या ऐसी कोई चीज जिसके लिए आपको मनी चाहिए होता है? हेल्थ
1: यस मैम, हमारा स्वास्थ्य हुआ, शिक्षा हुई,
0: के लिए चाहिए, वेरी गुड।
1: एक्चुअली मैम
0: हेल्थ
1: इनफैक्ट हर
0: एजुकेशन,
1: एक चीज के लिए हमें मनी चाहिए ही है एट प्रेजेंट, सब कुछ के लिए, इवन पानी भी अभी तो पैसे से ही है, सब कुछ के लिए।
0: तो वो तो बेसिक नीड्स में कवर हो जाता है ना, पानी हो गया, रोटी कपड़ा मकान हो गया, राइट।
1: एग्जैक्टली
0: जी बताएं।
1: यस मैम,
0: बिल्कुल
1: फतेहपुर मैम, हमें मैम मनी की आवश्यकता मैम कोई स्टार्टअप करने के लिए भी पड़ती है, जैसे हम एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कर रहे हैं, के
0: बिल्कुल,
1: लिए कर।
0: तो हमें बेसिक से उठ के अगर हमें कोई रोजगार शुरू करना है, बहुत ही अच्छा, थैंक यू सो मच। मैं इसी तरह के इनपुट की कोशिश कर रही थी।
1: मैम
0: जी बताइए।
1: फार्मिंग के
0: फार्मिंग
1: लिए भी चाहिए होती है, मैंने
0: के लिए, बिजनेस के लिए चाहिए, ठीक है, और बताएंगे। क्या आपको अगर अच्छा फोन चाहिए उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं? यहाँ तो सब अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन हम मनी खर्च किन किन चीजों पे करते हैं आजकल? हम एक्सपेंसिव कपड़ों पे खर्च करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम अलग अलग जगह पे घूमने जाएं, उसके लिए हमें मनी चाहिए होता है। हम चाहते हैं कि कभी कभी की अच्छी अच्छी जगह पे खाना खाने जाएं, करीबन मतलब कभी कभी तो हम जाएं अच्छी जगह पे, कोई हमें बहुत फैंसी सा रेस्टोरेंट पसंद है तो उसके लिए हम चाहते हैं कि हमारे पास मनी हो। क्या ऐसा होता है हमारे साथ?
1: यस मैम, पर्सनल ग्रूमिंग पर भी मैम इस टाइम पर बहुत ज्यादा खर्चा होता है, क्योंकि जो बहुत जरूरी है आपको प्रेजेंटेबल लगना जब आप बाहर जा रहे हो, तो इन सब चीजों पे काफी एक्सपेंसेस आते हैं।
0: बिल्कुल, तो ये जो सना ने बोला ये बहुत हटके है हमारी बेसिक जरूरतों से। बेसिक जरूरतें यानी कि हमारा रोटी कपड़ा मकान हो गया, एजुकेशन हो गई, इसके लिए तो हमें ये तो हमारी बेसिक नीड्स में आ जाता है। जो सना ने बोला या जो फतेहपुर से बोला था अभी किसी ने कि हमें एंटरप्राइज शुरू करने के लिए, अपना बिजनेस या लघु उद्योग शुरू करने के लिए सीड मनी चाहिए होता है, यानी कि हमें अपना कुछ ऐसा पैसा चाहिए जो हम अपना उद्योग शुरू कर सकें या अपना बिजनेस शुरू कर सकें। और बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है जो कि सना ने बोली है कि आजकल हम बेसिक से उठ के अपनी एक इमेज मैनेजमेंट, जिसको कह सकते हैं कि हम बाहर जा रहे हैं तो हमें क्या लगता है कि हमें अपने आप को किस तरह प्रेजेंट करना चाहिए, उसके लिए भी हम काफी पैसे खर्च करते हैं एज एन इंडिविजुअल। हो सकता है सभी नहीं करते हो, बट बहुत आजकल ये जो सोशल मीडिया की वजह से ना हमें ये बहुत लगता है कि अच्छा ऐसे कपड़े होने चाहिए, ऐसा मेकअप होना चाहिए, इस तरह का फोन होना चाहिए, इस तरह के कपड़े, इस तरह की जगहों पे मुझे जाके फोटोज लेना है। तो इसको हम बोलेंगे कि ये एक बेसिक जरूरत नहीं है, लेकिन आज के दौरान में ये एक फैशन या फिर एक ऐसी जरूरत बन गई है जो कि हमारी शायद इमेज मैनेजमेंट, इसको हम कह सकते हैं कि हम चाहते हैं हमारी इमेज ऐसी हो, तो हम उस इमेज मैनेजमेंट के लिए भी बहुत पैसा खर्च करते हैं। उसकी जरूरत है नहीं है वो इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है, उसमें सही या गलत कुछ भी नहीं हो सकता या है। तो अब जब हम मनी की बात करते हैं ना, तो अभी देखिए सबने अलग अलग जवाब दिए, तो मनी की वैल्यू मेरे लिए कुछ और हो सकती है, सना के लिए कुछ और हो सकती है, संगीता जी के लिए कुछ और हो सकती है, हमारे जो और दोस्त जुड़े हैं सभी के लिए मनी की जो वैल्यू है वो अलग अलग हो सकती है। आज मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरी जरूरत हो सकता है कुछ और होगी, आज मैं हाउसवाइफ हूँ या मैं एज ए मदर हूँ तो मेरी जरूरत कुछ और हो सकती है। तो मनी की जो नीड है वो समय समय पर चेंज होती है, और अमाउंट ऑफ मनी क्या चाहिए वो भी चेंज होता है। तो जब हम अपने बेनिफिशरीज के साथ मनी की बात करेंगे, ये बहुत जरूरी है कि हर इंडिविजुअल इसकी विशेषता अपने हिसाब से डिफाइन करे, और इसमें कोई सही या कुछ गलत नहीं है, बिकॉज किसी के पास थोड़ा है तो उसमें भी शायद वो खुश है या ना खुश है, किसी के पास बहुत है तो उसमें भी वो खुश है ना खुश हो सकता है। सो मनी इज टू बी डिफाइंड फॉर योर सेल्फ, द नीड ऑफ दैट मनी इज ऑल्सो टू बी डिफाइंड फॉर योर सेल्फ, योर फैमिली, योर चिल्ड्रन, योर फ्यूचर, यू नो पेरेंट्स, और योर फ्यूचर एंड द फ्यूचर ऑफ योर नियर एंड डियर वंस। एवरीबडी अग्रीज, या इसमें किसी की कोई और सोच है या कोई और हेल्प करना चाहता है?

0: को डिफाइन करने के लिए, तो पहले तो हमें इम्पोर्टेंस ऑफ मनी समझना है। यहाँ पे थोड़े बच्चे भी हैं, ये प्रिया वर्मा के जो सेंटर से हैं,
1: मैम 12 उनकी सेंटर।
0: बाराबंकी से हैं। ओके फाइन, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एटलीस्ट दिस एज ग्रुप टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। ये टीओटी सेशन ज्यादा है, सो आई बिलीव जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं वो इस बात को समझ पाएंगे, और अगर इन बच्चों के कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम उस पर आज बात कर सकते हैं, या फिर आपके सेशंस के दौरान भी आप इन चीजों को एड्रेस कर सकते हैं। सो जैसे अगर हम अपना एक मंथली बजट बनाएंगे, मनी मैनेजमेंट की बात हम ये कर रहे हैं कि ठीक है, एज ए स्टूडेंट मुझे क्या मैनेज करना है, कितना मुझे बजट चाहिए, एज ए हाउसवाइफ मुझे क्या चाहिए, एज ए एंटरप्रेन्योर अगर हम अपना कोई उद्योग शुरू करना चाह रहे हैं तो मुझे किस तरह का बजट चाहिए, वो बजट बनाना बहुत जरूरी होता है। तो हम जब एक महीने का भी बजट बनाएंगे ना, तो मोटा मोटा हमें पता चलेगा कि हमारा मेजर खर्चा वो किस चीज के लिए रहा है। कभी किसी ने बजट बनाया यहाँ पे अपने, जेन्युइनली बताना कि किसी ने भी बजट बनाया है अपने घर का या फिर बिजनेस का, या फिर सेंटर का, तो आप बनाते ही होंगे, सेंटर का बजट बनाया है। कभी किसी ने ये सोचने की कोशिश करी है कि मेरी जो सैलरी आती है या मेरी जो इनकम आती है वो जाती कहाँ, जब जब मैं 10 साल पहले काम कर रही थी या कर रहा था तो शुरुआत में जो मेरी इनकम थी मुझे वो भी कम लगती थी, आज भी जो इनकम है वो भी कम लगती है, आगे आने वाले मुझे जो चीजें हैं उनके लिए भी जरूरतें कम पड़ रही हैं। कभी ऐसा हुआ है किसी के साथ? बनाया है किसी ने बजट अपने घर का या अपना खुद का? एज ए स्टूडेंट आपने कभी बनाया है कि ठीक है मुझे
1: यस
0: अपनी
1: मैम,
0: हायर एजुकेशन के लिए? कोई कोई एग्जाम्पल आप शेयर करना चाहते हैं
1: जी मैम,
0: बताएं।
1: मैम क्योंकि मैम कभी कभी मैम ऐसा होता कि मैम हम जो बनाते अचानक से कोई जरूरत पड़े, जैसे मैम कॉलेज की फीस हो गई, सेमेस्टर वही पड़ जाती है, जिम की फीस अलग जाती है, ये सब मैंने बना कर रखा है, और तो कभी कभी अचानक भी ज्यादा पैसों की जरूरत लग जाती है, तो
0: बिल्कुल बिल्कुल सही,
1: थोड़ा मैनेजमेंट करना।
0: बिल्कुल सही। हम पूरा बजट बनाते हैं, कभी कभी ऐसी चीजें हमारे सामने आ जाती हैं जो हमने शायद प्लान भी नहीं करी होगी। तो बहुत जरूरी है पहले तो अपनी नीड्स को समझना। नीड्स हो गई जो बेसिक हमारी जरूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है, कितना कितना बजट की जरूरत है, पहले तो हमें वो समझना है अपनी लाइफ में, अपने इंडिविजुअल लाइफ में। और फिर दूसरी आ गई वॉन्ट्स, जिसकी वॉन्ट्स मतलब जिसकी हमारी जरूरत नहीं है, उसके बिना भी हम जी सकते हैं, लेकिन एक अच्छा लाइफ स्टाइल, एक अच्छा आउटलुक मेंटेन करने के लिए हमें वो चीजें चाहिए। मुझे अच्छा फोन चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छा जगह पे खाना खाना चाहती हूँ। खाना तो मैं बेसिक भी खा सकती हूँ, घर पे बना हुआ, खुद का बनाया हुआ, मम्मी के हाथ का बनाया हुआ, या बहन के या भाई के हाथ का, किसी के भी हाथ का बनाया हुआ खाना मैं खा के खुश रह सकती हूँ। लेकिन मुझे चाहिए कि मैं एक रेस्टोरेंट में जाऊँ, वहां जाके अच्छे कपड़े पहनूं और फिर वहां जाके अच्छा सा खाना खाऊं और टाइम स्पेंड करूं, थोड़ी सेल्फीज लूं, वो सेल्फीज को मैं पोस्ट करूं, तो वो हो गई मेरी वॉन्ट। तो ये नहीं कहना है कि नीड्स और वॉन्ट्स जो है वो दो अलग अलग चीजें हैं। नीड्स मतलब अगर मेरी जरूरतें पूरी हैं तो मैं जी सकती हूँ, मैं वॉन्ट्स पे तब जाती हूँ जब मेरी नीड्स पूरी हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी जरूरतों को कम करके अपनी वॉन्ट्स को पूरा करूं। जब हम वो करना शुरू करते हैं तब हमारा बजट जो है वो हिल जाता है कि भाई बेसिक नीड, राशन तो घर में आया नहीं महीने का, लेकिन हमने जाके बाहर रेस्टोरेंट में खाना खा लिया और एक ही बारी में 10,000 रुपए खर्च हो गए, तो अब राशन तो आएगा नहीं क्योंकि वो हमने पैसा खर्च कर दिया। तो एक दिन तो मैंने अच्छी जगह पे खा लिया, मेरे पास फोटोज भी आ गई, मैंने उसको पोस्ट भी कर दिया, मेरे पास 10,000 लाइक्स भी आ गए, बट क्या वो मेरी जरूरत थी या नहीं थी, ये आप इंडिविजुअली डिफाइन करेंगे अपने लिए। इसमें अगेन कुछ सही या कुछ गलत नहीं है, आपकी जिंदगी की क्या क्या नजरिया है आपकी जिंदगी के लिए वो यू कैन ओनली डिफाइन, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल टू अंडरस्टैंड। ये बहुत जरूरी है एक लाइफ स्किल होना कि पैसे की अहमियत आज समझिए, कल बेहतर, आज और बेहतर कल के लिए। चाहे हम स्टूडेंट हैं, चाहे हम अभी नया नया जॉब शुरू किया है, या चाहे हम एक लघु उद्योग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, चाहे हम हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, काम भी कर रहे हैं और एक हायर एजुकेशन भी करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं अपनी कुछ बिजनेस यहाँ पे कर रही हूँ और थोड़े टाइम में मैं ये चाहती हूँ कि मेरा पर्सनल ग्रोथ हो और मैं कुछ आगे जाके एडवांस कोर्सेज करूँ, तो मुझे उसके लिए भी सेविंग्स करनी है। तो बहुत जरूरी है हम एक बजट बनाए। कुछ लोग मंथली बनाते हैं, कुछ लोग 2-3 महीने का बना सकते हैं, कुछ लोग साल का बना सकते हैं, इट्स अप टू यू, बट डू मेक अ बजट। एंड डू ट्राई एंड ट्रैक कि जो बजट आपने बनाया एट द एंड ऑफ द मंथ आप कहाँ पे थे, तब आप अपने आप को पहचान पाएंगे। कभी कभी हम क्या कहते हैं, इम्पल्स इम्पल्स खर्चे भी कर देते हैं, कभी कभी इमरजेंसी खर्चे हो जाते हैं। जैसे अभी हमारे पास जो हमारे फ्रेंड फतेहपुर से जुड़े हुए हैं, उन्होंने बताया कि कभी कभी वो कोशिश करते हैं कि इन इन चीजों पे खर्चा करें, बट ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाती है या ऐसी कोई फीस आ जाती है जो उन्होंने शायद प्लान नहीं करी थी और इमिडिएटली उनको पे करना पड़ा, तो उस चीज में उनका बजट हिल जाता है। जब आप ये 3, 4, 5, 6 बारी करेंगे ना, तो आप खुद इफेक्टिवली अपना बजट, जो मंथली बजट्स हैं या जो साल के या 6 महीने के आपका जो एक प्लान है बजट को लेके, वो आप अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे, और जो भी मनी आपके पास है उसको आप एक बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, जैसे किसी के पास सैलरी आती है, मान लीजिए जो काम कर रहे हैं, जब सैलरी आती है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, कोई एग्जाम्पल्स दे सकते हैं?
1: मैम, सबसे
2: हेलो मैम,
1: पहले जो
2: नमस्ते मैम
0: नमस्ते जी।
2: जी, गजराज बोल रहा मैम, बारा से। वैसे
0: हाँ जी गजराज सर।
2: मैम, अभी जो सेशन चल रहा है बड़ा अच्छा। अभी तक किसी अभी तक जो योजना है बजट को लेकर, पारिवारिक खर्चों को लेकर, किसी मैं मेरी बताऊं तो मैंने अभी फोकस नहीं किया। बाकी ये आज का सेशन से आगे के लिए काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, और जिनके साथ हम काम करेंगे उनको भी ये समझाने की जरूरत है मैम। अब जो
0: जी
2: आज अभी आप पूछ रहे हो कि क्योंकि जैसे जो सैलरी मिलती है, तो सबसे पहले तो जो राशन पर खर्चा कितना होता है, राशन पर खर्च होता है नंबर एक, तो 1 महीने में जितना भी जो अपन को जरूरत
0: बिल्कुल
2: होती
0: बिल्कुल,
2: है,
0: पेट
2: और
0: भरना
2: दूसरा
0: सबके लिए
2: पानी और
0: जरूरी।
2: बिजली,
0: ठीक है, पानी हो गया और बिजली हो गया।
2: बिजली और फिर एजुकेशन बच्चों के उस पर, क्योंकि ये तो मनुष्य की जो अति जरूरत चीज है। जब तक राशन नहीं होगा, जब तक उसका जीवन नहीं चलेगा, तो
0: बिल्कुल बिल्कुल
2: ये है मैम। इसलिए सबसे पहले राशन, यानी कि 1 महीने का कितना खर्च, तो जो सैलरी मिलती है वो उस पर नॉन तेल घी जो भी है जरूरतों पर चला जाता है मैम।
0: बिल्कुल
2: दूसरा
0: सर।
2: फिर फोकस करते हैं कि क्योंकि बिजली नहीं है तो भी अंधेरा है, तो वो बिजली का बिल जो भी चुकाना होता है, पानी पर खर्च है, फिर उसके बाद में बच्चों के एजुकेशन पर मिनिमम जो भी जितना बचता है वो धीरे धीरे ऐसे मतलब इस खर्चे होते चले जाते हैं मैम।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। और कोई बताना चाहेगा? थैंक यू गजराज सर। गजराज सर ने बहुत सिंपल और सरल तरीके में बताया कि सबसे पहले तो जरूरतों को हम पूरा करते हैं, क्योंकि सबसे पहले जैसे सैलरी आती है या जिनका कोई बिजनेस है, कुछ मनी आती है, तो महीने में सबसे पहले वो अपना राशन पूरा कर लेते हैं कि ठीक
2: जी
0: है, पूरा राशन, पूरे परिवार का पेट भरा होना चाहिए, तो हमने उसको राशन पूरा कर दिया। उसके बाद बिजली पानी होना चाहिए, हमारे ऑब्वियसली घरों में बिजली पानी का खर्चा है, वो खर्चे पूरे हो जाते हैं। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है एजुकेशन, तो ये तीनों चीजें पूरी हो जाती हैं। हमारा हर मंथ मंथ दर मंथ ऐसे चलता रहता है, महीने दर महीने, महीने दर साल बिल्कुल इन जरूरतों को हम पूरा करते रहते हैं। कोई और एग्जाम्पल शेयर करना चाहेगा इसके बाद, इसके साथ साथ किसी का कोई अलग नजरिया है, कुछ कोई अलग तरीके से अगर अपनी सैलरी को मैनेज करते हैं, कोई शेयर करेंगे?
1: मैम, हमारी जो बेसिक नीड्स होती हैं पहले हम उनको पूरा कर लेते हैं, जो फिर मनी बचती है उसको हम अपने पास सेविंग्स रखते हैं, क्योंकि वो जो आगे मनी आएगी वो आगे भी काम कभी आ सकती है।
0: वेरी गुड। सो पहले हम बेसिक्स पूरा कर लेते हैं और जो बचा हुआ मनी है उसको सेविंग्स में रख लेते हैं। तो सेविंग्स में आप क्या सेविंग बैंक अकाउंट खोलते हैं, उसमें रखते हैं या कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं?
1: सेविंग अकाउंट में
0: सेविंग अकाउंट में रखते हैं, भाई कभी भी जरूरत पड़े तो हम उस सेविंग अकाउंट में से वो मनी निकाल सकते हैं। सेविंग अकाउंट पे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी मिलता है, कुछ 3% के करीब हमें सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट भी मिलता है। तो जो जो सैलरी हमारी आई उसमें हमने बेसिक खर्चे निकाल लिए और जो बचा हुआ पैसा है वो हमारा सेविंग में पड़ा रहा, बहुत ही बढ़िया आई। और कोई कुछ बताना चाहेगा? थैंक यू।
3: मैम, सबसे पहले प्रायोरिटी सैलरी आने के बाद होती है कि फीस जमा करनी है बच्चों की।
0: बिल्कुल
3: वो एक प्रायोरिटी है जो करना ही करना है, उसके अलावा जो ईएमआई है वो पे करना है। प्लस मैम, 5% मेरी सैलरी का हम एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे रख देते हैं, क्योंकि बच्चों का स्कूल है, कभी भी कोई फंक्शन हो गया स्कूल में या किसी भी चीज के लिए जरूरत पड़ गई या बच्चों की कोई हेल्थ का इश्यू हो गया, तो वो अर्जेंट नीड के लिए वो पैसे सेव करके रखने पड़ते हैं, 5% ऑफ द
0: इमरजेंसी,
3: सैलरी
0: आप उसको
1: इमरजेंसी के
0: इमरजेंसी
1: लिए।
0: फंड कह सकते। तो ठीक है, अब हमारे पास एक तीसरा पहलू आ गया जो सना ने बोला। अभी तक हमारे पास सिर्फ दो पहलू थे कि पहले हम अपनी बेसिक नीड्स जो है, रोटी कपड़ा मकान, उसके उसके ऊपर करते हैं। दूसरा था एजुकेशन, अभी तीसरा आ गया इमरजेंसी फंड, यानी कि एजुकेशन से बच्चों से रिलेटेड, क्योंकि सना एक यंग कपल है तो वो अपने बच्चों के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं कि भाई कुछ भी खर्चा आए तो बच्चों के लिए एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। तो अब हमारे पास मोटे मोटे तीन पहलू आ गए, पहला रोटी कपड़ा मकान, दूसरा हमारी एजुकेशन, तीसरा इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड हेल्थ के लिए भी हो सकता है, एजुकेशन के लिए भी हो सकता है, कुछ भी। एक हमने इमरजेंसी फंड के लिए खुद से, वो कह रही है कि हमने बाय डिफॉल्ट 5% अपनी इनकम का, सेविंग्स का उससे कोई लेना देना नहीं है, वो एक इमरजेंसी फंड में उसको रख देते हैं 5%। बहुत ही बढ़िया। और कोई कुछ, किसी और का कोई और तरीका है अपनी सैलरी को मैनेज करने का, कुछ अलग, इससे कुछ अलग, अगर इसके कुछ एडिशन में अगर कोई कुछ बताना चाहता है, कुछ भी सही या गलत नहीं है, हम कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपके तरीके से, जैसे मैं कभी इमरजेंसी फंड में शायद नहीं करती हूँ, लेकिन आज सना की बात सुन के शायद मैं आज से 2%, 1%, 3%, 5% इमरजेंसी फंड में हो सकता है रखना शुरू कर दूं। कोई कुछ और करता है अलग सा, ऐसा कोई डब्बे के नीचे छुपाता है पैसे, हस्बैंड से, आटे के अंदर, चावल के अंदर, ऐसा नहीं करते? प्लीज,
3: ऑल द लेडीज मैम,
0: ऑल द लेडीज डू दैट। सो उसको उसको हम क्या बोल
3: बिल्कुल
0: रहे हैं, उसको उसको भी हम एक सेविंग के तौर में, मतलब हमने कहीं बैंक में नहीं रखा, उसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, लेकिन एज ए, वो भी एक इमरजेंसी फंड ही है, लेकिन वो हमने एज ए सेविंग की तरीके से उसको अपने बचत की तरीके से रखा। यानी कि हो सकता है हमने घर की इनकम के लिए 100 रुपया निकाला हो सैलरी में से, लेकिन हमने घर को इतने अच्छे तरीके से चलाया कि 80 रुपये में उस महीने के खर्चे हो गए, और जो 20 रुपये बचे उसको हमने एक बचत के तौर पे रख दिया, यानी कि बजट बनाया और उसको भी बचत के तौर पे रख दिया। ये हम सब करते हैं, खासकर लेडीज करती हैं, शायद जेंट्स नहीं करते हो, या करते हो, या इससे भी इफेक्टिवली करते हो, तो ये भी एक सेविंग्स का तरीका है।
2: चंद्र प्रकाश बोल रहा हूँ।
0: जी सर,
2: मैं तो खुद तो मेरी बचत करता ही हूँ, पर लेकिन जो मेरे व्यूवर स्टाफ है जो भी साथ काम के, सबको 20% राशि की आरडी का पोस्ट ऑफिस में आरडी करवा रखी मैंने सबकी।
0: वेरी गुड। सो पोस्ट ऑफिस में जो कि सेफ भी माना जाता है, अच्छा इंटरेस्ट भी मिलता है उसके ऊपर, और एक कंपल्सिव सेविंग भी हो जाती है,
2: स्वीपर
0: दैट
2: से लगा,
0: इज अनदर।
2: स्वीपर करता है उसकी, मैंने उसके हिसाब से आरडी करा रखी है। बी बारे महिला है उनकी भी आरडी करा रखी है, तो सबकी जितना पैसा आता है एजेंट वही बुला लेता हूँ, सेंटर पे सबको जमा करवा देता हूँ। तो उनके लास्ट में 100 रुपये में उनको 6,500 करीब मिलेंगे उनको 5 साल में। तो एक उनकी सबकी सेफ बचत आदत पड़ गई, सबकी बचत होने की।
0: तो छोटी छोटी बजट से आपने देखा किस तरीके से स्मॉल सेविंग्स कैन यील्ड टू अ बिग अमाउंट। एक 5 साल के, हमें सोचने में लगता है कि 5 साल बहुत दूर है, लेकिन वो छोटी छोटी छोटी छोटी सेविंग्स करते करते लमसम मनी हमको एंड में मिल जाता है। थैंक
3: मैम,
0: यू चंद्र
3: कैन आई
0: प्रकाश
3: से
0: जी।
3: समथिंग मैम?
0: जी जी मैम, बिल्कुल।
3: मैम, आई डोंट नो इफ आई कैन से लाइक दिस, आई सेव एवरी मंथ सम मनी टू गिफ्ट माय डॉटर एवरी ईयर समथिंग इन गोल्ड मैम, सो एवरी मंथ आई सेव।
0: तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप एक अलग से फंड क्रिएट करते हैं, बिकॉज आपकी प्रायोरिटी वो है कि यू हैव टू गिव समथिंग टू योर डॉटर, राइट? अभी आपकी जो बेसिक नीड्स हैं वो शायद आप प्रोबेबली उस एज में पहुंच गए हैं, उस स्टेज में पहुंच गए हैं आपकी लाइफ में जहां पे बेसिक नीड्स के बियॉन्ड, क्योंकि आपके बच्चों की एजुकेशन पूरी हो चुकी है, यू हैव मेड कमिटमेंट्स टू देयर यू नो मैरिज एंड अदर अदर थिंग्स दैट यू हैव, यू माइट हैव सेविंग्स फॉर योर हेल्थ एंड एमरजेंसी। तो आपको लगा कि आपको एक ऐसा फंड क्रिएट करना है जो कि लमसम हो एंड यू कैन गिफ्ट टू योर डॉटर एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये जो हम गोल की बात कर रहे थे कि आपको मनी क्यों चाहिए, ये आपको खुद को डिफाइन करना एक परफेक्ट एग्जाम्पल है उसका। शायद मेरी जिंदगी में अभी वो नीड नहीं है क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, जैसे सना ने बोला उनके बच्चे छोटे हैं, तो हमारी नीड्स अभी इस वक्त है उनके एजुकेशन को लेके, फ्यूचर को लेके। बट शायद जो हमसे थोड़े बड़े हैं, जो हमसे थोड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, उनकी नीड बदल गई है क्योंकि उनको एक अलग लेवल की जरूरत है। सो आई थिंक, थैंक यू मैम फॉर शेयरिंग, इट्स अ परफेक्ट एग्जाम्पल जो मैं कहना चाह रही थी कि नीड हम सबकी मनी को लेके हर वक्त अलग होती है और वो नीड बदलती रहती है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई दैट नीड एंड वर्क योर बजट अकॉर्डिंग टू योर नीड। एज ए स्टूडेंट हमारी नीड अलग हो सकती है, हमें उसे पहचान के अपना डिफाइन करना है कि मुझे लाइफ में कितना मनी चाहिए अपनी स्टूडेंट या अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए। जब वो हो जाता है, हमें कितना बजट चाहिए अपने घर
3: हेलो,
0: परिवार को चलाने के लिए। हाँ जी
3: नमस्ते मैम, कैसे
0: नमस्ते जी,
3: हो मैम? ठीक
0: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
3: है मैम, हम भी और आपको देख के और ज्यादा ठीक हो गए।
0: अरे हम भी आपको देख के खुश हो गए, और आप
3: अच्छा
0: बोल रहे हैं
3: मैम,
0: ये सबसे अच्छी बात है। जी
3: मैं सुन सेंटर से बोल रही हूँ। हाँ जी, मोबिलाइजेशन का काम करती हूँ मैम, शोभा नाम है मेरा।
0: जी जी जी
3: मैम
0: बताइए
3: हमने
0: शोभा
3: जो
0: जी,
3: हमारी सैलरी मिलती है ना, हम उसमें से अपने पैसे निकाल के हम बचत जमा करते हैं मैम।
0: कहाँ पे करते हैं आप बचत जमा?
3: हमने 10 महिलाओं का ग्रुप बना रखा है,
0: अच्छा ठीक है,
3: 10 महिलाओं का ग्रुप बना के हम उसमें से 200 रुपये पर मंथ निकाल के अपनी बचत जमा करते हैं, सेव करते हैं
0: तो फिर वो आपको मिलता कैसे है, वापस कैसे मिलता है?
3: मैम। वो पैसा हमको, जैसे हमें कभी कोई इमरजेंसी आ जाए, घर में जरूरत पड़ती हो, तो हम एक प्रस्ताव बनाते हैं मिलके 10 लेडीज इकट्ठा होके, तो उसमें से जिसको जितनी जरूरत होती है उसमें से पैसे निकालते हैं और अपना काम चलाते हैं हम। और फिर
0: वेरी
3: वो
0: गुड,
3: 200 रुपये बचत तो हमेशा ही जमा होती है, लेकिन पर उसकी किस्त बन जाती है।
0: वेरी
3: 1% का
0: गुड।
3: ब्याज है, 1% का
0: अच्छा,
3: ब्याज है मैम इसमें।
0: 1% का ब्याज। तो
3: हाँ
0: आपने
3: जी
0: ये एक लोकल लेवल पे जो सेविंग स्कीम है अपनी महिलाओं के साथ, एक महिला ग्रुप के साथ वो शुरू किया है, राइट?
3: हाँ जी
0: तो ये जो है, ये आपको एट ए टाइम ऑफ जो इमरजेंसी है या ऐसी कोई बेसिक जरूरत है जो यकायक आ जाती है, उसके लिए आप उसको, इस फंड को यूज कर लेते हैं, राइट?
3: हाँ जी
0: बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल ये आपने दिया। तो जब हम अपने बेनिफिशियरीज के साथ बात करेंगे, जैसे चंद्र प्रकाश जी ने भी बताया कि हर किसी को ये जो स्किल है एज ए लाइफ स्किल आना बहुत जरूरी है, स्पेशली आने वाली जेनरेशन को, क्योंकि आने वाला जो टाइम है ना वो इससे भी ज्यादा जो है स्ट्रेसफुल होने वाला है इमेज मैनेजमेंट के ऊपर, कि अच्छा मुझे किस तरीके से अपने आप को दुनिया को दिखाना है। उस चीज में कहीं ना कहीं हम अपनी बेसिक जरूरतों को काट के हम अपनी इमेज मैनेजमेंट में लग जाते हैं, और हम फिर क्रेडिट कार्ड्स पे या फिर लोन्स लेके या फिर ऐसे एक विशेष सर्कल में फंसते चले जाते हैं जहां पे हम कितना ही कमा ले हमको वो कम ही पड़ता है। सो इट इज
3: हाँ
0: वेरी वेरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम मनी को मैनेज करना सीखें अपने लेवल पे। हम किस लेवल पे हैं आज, लेवल एज इन हम स्टूडेंट हैं, हमारी शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, हमारे घर में बुजुर्ग पेरेंट्स हैं जिनकी हो सकता है हेल्थ कंडीशन ऐसी हो कि हमें उनके लिए भी सेविंग्स करना है। तो समय समय पे ये चीजें चेंज होती हैं, और उस समय के अनुसार हमें अपना घर परिवार बजट मैनेज करना सीखना है। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल जो कि हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली पीढ़ी को समझना हमसे भी शायद ज्यादा जरूरी रहेगा। जैसे कि चंद्र प्रकाश जी ने बताया, अभी हमें सुन से जो एग्जाम्पल मिला है, सना ने जो बताया एंड शैलजा मैम ने बताया, स्टार्ट स्मॉल। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि हम 10,000 रुपए की एफडी करें या 50,000 की एफडी करें या बहुत बड़े म्यूचुअल फंड में, आजकल हम देखेंगे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना सही है, बहुत बहुत आसान है, ऐसे करके एड्स आती हैं। अगर इस समय पे हमें वो बड़ी चीजें नहीं समझ में आ रही या हम नहीं कर पा रहे, इट डज नॉट मैटर। हमारी पहले की जो पीढ़ी थी, जैसे कि मैंने बताया कि मेरी दादी या उनकी जो मदर थी, उनको उनकी कहानियां सुनेंगे तो ये होगा कि अच्छा उन्होंने अपनी जो मंथली उनके पैसे आते थे, उनको मिलते थे हाथ में, उस टाइम पे तो लेडीज अर्न नहीं करती थी ना ज्यादा, उनको जो भी उनके हस्बैंड्स ने दिया या कुछ दिया वो घर के खर्चों में से बचत करके साल 2 साल 10 साल में इतने पैसे इकट्ठे कर लेती थी कि कभी कभी उनको खुद नहीं रियलाइज होता था कि इतने पैसे उनके पास पड़े हुए हैं। कहने का मतलब है कि स्टार्ट स्मॉल। आज आप छोटा भी अगर सेविंग कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स भी हैं आजकल गवर्नमेंट के अंदर, हम स्कीम्स के ऊपर बात नहीं कर रहे, आज हम एटीट्यूड के ऊपर बात कर रहे हैं, पैसे को लेके जो एटीट्यूड है हमारा, उस लाइफ स्किल की बात कर रहे हैं। लेकिन उसकी बात करते करते भी हमें इतने सारे एग्जाम्पल्स मिल गए हैं कि कुछ जो अभी फतेहपुर से थे उन्होंने बताया कि वो सेविंग बैंक में रखते हैं, सना ने बताया वो इमरजेंसी फंड में रखते हैं, शैलजा मैम, संगीता हमारे साथ और चंद्र प्रकाश जी, जो और दो तीन लोगों ने बताया कि वो अलग अलग तरीके के कुछ उन्होंने नॉन फॉर्मल या फिर फॉर्मल जो सेविंग स्कीम्स हैं, जैसे कि पोस्ट ऑफिस हो गई, प्रोविडेंट फंड है, आजकल तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो हम छोटे लेवल पे स्टार्ट कर सकते हैं. छोटा लेवल एज इन अगर आज हम 100 रुपये भी बचा सकते हैं, 200 रुपये भी बचा सकते हैं, तो 5 साल 10 साल के बाद हमें वो मल्टीप्लायर इफेक्ट देता है. कई स्कीम्स ऐसी होती हैं, कई इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जो कंपाउंड इंटरेस्ट भी देते हैं. वो एक कॉम्प्लेक्स स्कीम्स हैं, उनको अगर अभी हम नहीं भी समझ पा रहे हैं, तो हम सिंपल सेविंग, जो सिंपल सेविंग स्कीम्स हैं, उनके उनको समझ के उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. उसमें क्यों करेंगे? क्योंकि उसमें रिस्क कम है, और अगर जब हमें इमरजेंसी में जरूरत हो तो हम वो फंड निकाल सकते हैं. लेकिन आदत सेविंग्स की होनी चाहिए. सेविंग्स की आदत ऐसे पड़ सकती है कि हम कंपल्सरीली कुछ परसेंट, 1%, 2%, 5%, 10% अपनी सेविंग्स का, अपने इनकम का सेविंग्स में रखें ही रखें. उस एटीट्यूड को बनाने की आज हम कोशिश कर रहे हैं, उस एटीट्यूड पे बात करने की आज कोशिश कर रहे हैं. जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो करीबन मतलब एक ऐसी एज पार कर चुके हैं जहां पे उनको सेविंग्स की आदत लग गई है. बट ये सेशन हम अपने बेनिफिशियरी के साथ करेंगे जो 15 से लेके हो सकता है 30 तक की एज में होंगे. वो एज ग्रुप जो है ना, वो बहुत वनरेबल है. मैं अपने बेटे को भी देखती हूँ, उनके जो फ्रेंड्स हैं उनके भी जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स स्पेंडिंग, ठीक है अर्बन है, यहाँ पे एक्सपोजर ज्यादा है, बट ये एक्सपोजर हर जगह पे है, क्योंकि जो फोन के जरिए से मीडिया है ना, वो सब तरीके से फैला हुआ है. तो ये चीज जो मनी को लेके हमारा एटीट्यूड है ना, कंजम्पशन का, मतलब आज अगर हमारे पास पैसा है तो हम उसे कंज्यूम करके खुश हो जाएं, कहीं ना कहीं वो हैबिट आ रही है. कुछ हमारी जनरेशन में भी है, कुछ हमारी आने वाली जनरेशन में भी है. हमारे से पहले वाले जनरेशन तो पूरा ही बचत की तरफ चलते थे, कभी कोई नीड उन्होंने पूरी करी ही नहीं. एक नई शर्ट लेने के लिए भी मुझे लगता है वो 100 बार 10 बार सोचते थे, इंक्लूडिंग माय पेरेंट्स. मतलब बहुत ही सेविंग्स की तरफ वो, उनका रुझान अलग ही लेवल का था. जब हमारी जनरेशन आई तो हमने एक मिक्स्ड, कुछ हम कंज्यूम करते हैं, कुछ हम अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं, और कुछ हम सेविंग्स करते हैं. तो अगेन, सही या गलत कुछ भी नहीं है. The idea is to identify your needs and wants. पहले needs को पूरा करके हम कुछ save करेंगे emergency के लिए, या ऐसी कोई planning के लिए, जरूरी नहीं है emergency के लिए हम save करेंगे. अगर मेरा शौक है कि मुझे आज से 20 साल के बाद मुझे किसी बाहरी देश में घूमने जाना है, तो कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है. ऐसा नहीं है कि आप नहीं जा सकते. छोटा छोटा छोटा छोटा इन्वेस्ट करें, कहीं स्मॉल स्मॉल सेविंग्स करें, 5 साल 10 साल के बाद एक फंड ऐसा आ जाएगा. ये आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है, हो सकता है आपका यही ऑब्जेक्टिव है. जैसे कि शैलजा मैम ने बोला, उनका एक ऑब्जेक्टिव है, वो एक गिफ्ट करना चाहती हैं हर साल के एंड पे अपनी डॉटर को. सो आपका ऑब्जेक्टिव है, आपका फंड है, आप उसे मैनेज करेंगे, बट तभी कर पाएंगे अगर आप अपने फंड को तरीके से समझ पाए, अपनी नीड्स और वॉन्ट्स को दो मोटे मोटे भागों में बांट पाए. कभी कभी ना हम किसी चीज को देखते हैं और हमारे पास पैसा है, हमारे पास सेविंग्स भी है, कभी कभी लगता है हमें ना ये चीज खरीद लेनी चाहिए. तो जब मैं ये सेशन बना रही थी, बहुत प्यारी सी 30-day rule मेरे सामने आई. सो आई वॉन्ट टू शेयर विद यू, हो सकता है किसी को ये हेल्पफुल हो. तो ये रूल ये कहता है कि अगर मेरी बेसिक नीड्स पूरी हो गई, मेरा खाना पानी बिजली, मेरी एजुकेशन भी हो गई, बच्चों की एजुकेशन भी हो गई, अब मेरा दिल कर रहा है कि एक बड़ी सी कोई चीज लेने का. मान लीजिए मोबाइल फोन है, बहुत अच्छा सा नया मोबाइल फोन आया मार्केट में और मुझे वो लेना है, या एक बहुत सुंदर सी साड़ी आई है वो लेनी है, या एक बहुत अच्छा सा रेस्टोरेंट खुला है, सब उसमें जा रहे हैं, मेरी सारी फ्रेंड्स जा रही हैं, मुझे भी उसमें जाना है, लेकिन वो बहुत खर्चा हो जाएगा उसमें. जितनी मेरी सेविंग्स है, करीबन उसकी आधी जो सेविंग्स है वो निकल जाएगी. तो ये 30-day rule ये कहता है, बचत का ये रूल है, कि आप जो ये डिसीजन लेना चाहते हैं ना, 30 दिन के लिए रुक जाइए. 30 दिन आज आप डिसाइड कर लीजिए कि हाँ ये चीज मेरे को लेनी है, वो पैसा आप अलग से 30 दिन के लिए डाल दीजिए, किसी एक एफडी में डाल दीजिए, तो 30 दिन की एफडी भी आती है आजकल। 30 दिन के बाद आप उसके बारे में सोचेंगे नहीं, आप सिर्फ उसका ध्यान नहीं करेंगे, आपको ये पता है कि 30th डे ही मैं उसके बारे में सोचूंगा। तो 30 डे रूल ये कहता है कि अगर 30 दिन के बाद भी आपकी वो जरूरत उतनी ही प्रोमिनेंट है, तब तो आप उस चीज में इन्वेस्ट करिए। अगर आपके 30 दिन के बाद वो जो जरूरत है वो कम हो जाती है, या आपको नहीं लगता कि ठीक है ये तो वेस्ट हो सकता है, इसे बोलते हैं इम्पल्सिव परचेज। इम्पल्सिव मतलब मुझे मेरी जो आज की सोच है या आज के इमोशंस है ना, कभी कभी हम उससे बहुत बड़ा खर्चा कर देते हैं जो आगे जाके हमें अफसोस होता है कि अरे इसकी शायद इतनी जरूरत नहीं थी। इसके बारे में, बिकॉज हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है, आई वॉन्टेड टू लीव दिस विद यू, बट अगर आप चाहें तो बहुत प्यारी प्यारी स्टोरीज हैं इसके बारे में, ऑनलाइन स्टोरीज है 30 डे सेविंग्स रूल के बारे में। आप चाहें तो ये स्टोरीज आप देख सकते हैं अपने बेनिफिशरीज के साथ, जब आप ये सेशन करेंगे यू कैन शेयर दो स्टोरीज। एंड मुझे लगता है ये वाकई, मैंने खुद भी कभी ऐसा प्रैक्टिस नहीं किया, तो ये बहुत आई थिंक प्यारा रूल है कि अगर कोई चीज हमें आज लग रहा है कि मुझे वो खरीद लेनी चाहिए, या मुझे उसमें पैसा इन्वेस्ट कर देना चाहिए, मुझे घूमने चले जाना चाहिए, इस जगह पे तो मुझे जाना ही जाना है, सारे लोग जा रहे हैं, 30 दिन के बाद भी अगर आपका दिल, आपका मन, आपकी जरूरत अभी भी वैसी ही है। ये हम इम्पल्सिव परचेजेस के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ की हमारी सेविंग्स जो है वो खर्च हो जाती है, कभी कभी हमारा बजट पूरा हिल जाता है, उस चीज के बारे में हम इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। किसी के कोई एग्जाम्पल्स, कभी किसी ने ऐसा किया हो, कोई बहुत जरूरत की चीज लग रही हो और उसको 5 दिन के लिए रख दिया कि नहीं अच्छा 5 दिन के बाद सोचूंगी या सोचूंगा, ऐसा हुआ कभी किसी के साथ? नेक्स्ट टाइम लेट्स ऑल ट्राई, अगर ऐसा होता है, अगर हमें लगता है तो वी कैन ट्राई दिस, एंड दिस माइट हेल्प अस बिल्ड आवर सेविंग्स अलॉट, और हम उस मनी को हो सकता है किसी और अच्छी चीज पे खर्च करने के लिए बचा लें। सो दिस इज वन टेक्निक। दूसरा एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आया कि जो हमारी इनकम है उसको हम खर्च करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका जो ट्रेडिशनल तरीका है कि जैसे ही हमारी सेविंग्स आती है हम अपने बेसिक खर्चों में उसे खर्च कर देते हैं और जो बचा हुआ है उसको सेविंग्स में डाल देते हैं। ये एक ट्रेडिशनल वे है अपनी बजट में, जो बचा हुआ है उसको सेविंग्स में डाल देते हैं, ये एक ट्रेडिशनल वे है अपनी बजट मैनेजमेंट का। एक प्रोग्रेसिव वे और एक ऑल्टरनेट वे ये है कि जैसे ही हमारी इनकम हमारे पास आती है हम कंपल्सरीली सबसे पहले बचत में डालें उसको, और जो बचा हुआ पैसा है उससे हम खर्चे पूरे करें। तो ये अब अलग अलग लोगों के अलग अलग नजरिए हो सकते हैं इसके बारे में, बट जो सेविंग्स करने का तरीका है वो उल्टा होना चाहिए। पहले हम अपने 100 रुपए में से 5 रुपए, 10 रुपए, जो जितना भी मेरा जितने भी मुझे लगता है कि मैं सेव करना चाहती हूँ या चाहता हूँ पर मंथ, वो एंड में नहीं करेंगे, वो सबसे पहले करेंगे। जिसका एग्जाम्पल सना ने भी हमें दिया कि इनकम आते ही हम सबसे पहले अपना बचत का जो पोर्शन है उसको अलग कर लेंगे और खर्चे बाद में करेंगे। दैट इज अनदर वे ऑफ यूजिंग आवर मंथली बजट, या हमारे साल दर साल का जो हमारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं। देयर वाज अनदर रूल कि ये 50-30-20 का रूल है। इसके अलावा मुझे 70-20-10 का भी रूल मिला है। इसका कहने का मतलब वही है कि किस चीज पे हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अलग हो सकता है। तो 50% जो है हमारी बेसिक नीड्स के लिए हम हमेशा उसको रखें, यानी कि रोटी कपड़ा मकान, एजुकेशन, हेल्थ हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इन सब चीजों पे आप समय समय पे अपना जो है एक्सपेंसेस, जो भी आपकी सालाना इनकम है उसका 50% आप खर्च करते हैं। हम सब खर्च करते हैं, 20% सेविंग कर सकते हैं, 10% सेविंग कर सकते हैं, 5% सेविंग कर सकते हैं, और कुछ आप देखिए हर वक्त सेविंग करते रहेंगे इतना तो कोई हम साधु का जीवन नहीं जी रहा, कोई भी नहीं जी रहा है। तो जरूरी नहीं है कि हर वक्त सेविंग मोड में ही रहना है, हमें कुछ अपने शौक भी पूरे करने हैं, हमें कुछ अपने इच्छाएं भी पूरी करनी है उस मनी के लिए, क्योंकि हर कोई इंसान चाहता है कि मैं कुछ ना कुछ समय समय पे अपने आप को, अपनी फैमिली को, या अपने जो हमारे नियर एंड डियर वंस हैं उनको मैं कुछ अलग रिवॉर्ड सा दूं।

0: वो आती है बॉन्ड्स में, वो आती है हमारी लग्जरी में। हो सकता है कुछ लोग दिवाली पे नए कपड़े खरीदते हैं, कुछ लोग ईद पे नए कपड़े खरीदते हैं, हो सकता है कुछ लोग मंथली बोलते हो कि ठीक है मुझे कुछ ना कुछ बचत करके अपने लिए या अपने बच्चों के लिए नया खरीदना ही है। तो उसके लिए भी आप पहले से प्लानिंग करके चलें। जब आप प्लानिंग करके चलेंगे तो आप इफेक्टिवली यूज करेंगे, इंपल्सिवली नहीं यूज करेंगे। इंपल्सिव में फिर हमारा 30 डे रूल आ जाएगा कि अगर इंपल्स बाय है तो 30 दिन के लिए मैं रुक जाऊं, 15 दिन के लिए मैं रुक जाऊं, अगर 15 दिन के बाद भी मुझे वो जरूरत लगती है तो हम वो चीज को परचेज कर सकते हैं। ये छोटी छोटी टिप्स हैं। अगेन आई वुड से कि हम हो सकता है कर रहे हो इसको, लेकिन ये सेशंस हमने अपने बेनिफिशरीज के लिए भी बनाए हैं जिसमें कि बच्चे भी हैं, यूथ भी है, शायद उन्होंने अभी कमाना शुरू नहीं किया, लेकिन 20-25 साल की उम्र में जो कमाने लगेंगे, अगर पहले से ही शुरू से ही वो आदत डल जाए कि हाँ हमें बचत करते हुए चलना है, तो आप ये सोचिए जब 20 साल में सेविंग्स करना शुरू कर देगा, जब तक कि वो 50 साल का या 60 साल का हो जाएगा, कितनी सारी सेविंग्स उनके पास इकट्ठी हो जाएंगी। सो दिस इज अ हैबिट मैनेजमेंट, दिस इज अ बिहेवियर मैनेजमेंट जो कि हमें खुद से अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करना है। सो दिस वॉज अ वेरी शॉर्ट सेशन। आई थॉट कि दिस इज वन ऑफ द वेरी इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल जिसके बारे में हमने फॉर्मली कभी बात नहीं करी है। सो दिस इज समथिंग दैट आई वॉन्टेड टू शेयर। आई जस्ट स्टॉप शेयर। ऑल राइट, सो दिस वॉज अ वेरी स्मॉल सेशन ऑन फाइनेंस मैनेजमेंट। कुछ टिप्स थी, कुछ टेक्निक्स थी, दिस यू कैन शेयर विद द बेनिफिशरी, स्पेशली जैसे कि चंद्र प्रकाश जी ने बोला, वो उन्होंने आदत डलवाई है ना कि सिर्फ अपने बेनिफिश ना कि खुद को बल्कि अपने स्टाफ को भी, इंक्लूडिंग एवरीबडी, जितने लोग उनके साथ जुड़े हैं सेंटर पे। सेविंग्स की अहमियत उन्होंने वहां पे हाईलाइट करी है। आई वुड से सेविंग्स जो है हम छोटे से शुरू कर सकते हैं, जितना जल्दी शुरू करें, जितना इनफॉर्मल करें फॉर्मल करें। इनफॉर्मल मतलब हम सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में रखें, एफडी में उसको रखें, या फॉर्मल तरीके से किसी इन्वेस्टमेंट में रखें। अगर किसी इन्वेस्टमेंट में रख रहे हैं तो पूरी जानकारी के साथ आप अपना फंड इन्वेस्ट करिए, पूरी समझ बूझ के साथ करिए, क्योंकि वो आपका हार्ड अर्न्ड मनी है। किसी के बहकावे में आके या किसी के कहने के ऊपर किसी गलत स्कीम में मत उसको इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि कभी कभी हम सोचते हैं अच्छा 30% का इंटरेस्ट मिलेगा, इतना हमें रिटर्न मिलेगा, उसके धोखे में आके गलत जगह पे इन्वेस्ट करने से अच्छा है हम कम इन्वेस्ट करें, कम इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करें, लेकिन जो हमारे को समझ में आता है उस चीज पे हम इन्वेस्टमेंट करके चलें। और जितना हम प्लानिंग से चलेंगे उतना हम लोन्स की तरफ कम हमारा रुझान रहेगा, जितना लोन्स की तरफ कम रुझान रहेगा उतना हम इंटरेस्ट कम पे करेंगे और उतनी हम मनी सेव्ड इज मनी अर्न, कभी हमने सुना है। तो जितना हम सेविंग्स और जितना हम अपने से सक्षम होके चलेंगे उतना हमारा आगे आने वाला वक्त सही तरीके से गुजरेगा। सो दिस वाज सम टिप्स, सम सेशन ऑन दैट। कोई कुछ इसमें ऐड करना चाहता है, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, दे आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट। कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ कमेंट्स हैं, वी कैन टेक दैट आल्सो।
1: Ma'am, it was such a wonderful session, ma'am, and most needed of the hour, ma'am. We can really, as you suggested, we'll really take it to the beneficiaries also.
0: यस, क्योंकि मैम सभी लोग काम इसीलिए करते हैं कि अपना फ्यूचर ब्राइट करके चल सके, खुद का फ्यूचर, बच्चों का फ्यूचर, अपनी फैमिली का, कोई इमरजेंसी हो तो हमेशा पैसे को लेके हर किसी का चैलेंज ही रहता है, चाहे कम है चाहे ज्यादा है, हमेशा चैलेंज ही रहता है। सो दिस इज वन थिंग जिसमें हम कितनी ही बात कर लें वो बात कम ही, मतलब उसमें कोई श्योर शॉर्ट तरीका नहीं है, लेकिन हम जितना आपस में शेयर कर सकते हैं तरीके, उससे हमें कुछ ना कुछ टिप्स ऐसी मिलेंगी शायद कि हम बेटर फंड मैनेज कर सकें अपने खुद के, अपने परिवार के। एंड दिस शुड बी अ हैबिट, मोर मोर ऑफ अ हैबिट टू मैनेज, टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज आवर नीड्स, बिकॉज आजकल काफी इम्पल्स परचेजेस बहुत ज्यादा हो रही हैं, स्पेशली यूथ यूथ को लेके ये कंसर्न है काफी पेरेंट्स का। जो मेरी फ्रेंड्स हैं उनका भी ये कंसर्न रहता है, हमारा खुद का ये कंसर्न रहता है कि आगे जो बच्चे हैं वो बहुत मनी की जो रियल वैल्यू है उसको समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं, उस पर काफी डिबेट चलता है. तो दिस इज अ बिहेवियर चेंज वेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट मनी फॉर अस, फॉर एज ए इंडिविजुअल. थैंक यू मैम, मैं बहुत बोल चुकी हूँ, अभी कोई और बोलना चाह रहा है? एनीबडी वॉन्ट्स टू एड प्लीज डू दैट.
1: गुड आफ्टरनून मैम.
0: गुड आफ्टरनून अर्चना जी.
1: जी मैम, मैम अभी आपने बात करी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कुछ दिन पहले हमारे सेंटर पे मेकअप आर्टिस्ट की ट्रेनिंग हुई थी, तो उसमें से 3 बच्चे बहुत ही अच्छी तरह, उसमें उनको पहले से भी आता था कुछ, और फिर उन्होंने ट्रेनिंग ली तो उनको बहुत अच्छे से आ गया. तो अभी तो जो बात हुई कि घर में हम किस तरह से मैनेज करते हैं, सबका अपना अपना नीड है, बेसिक नीड के अलावा भी बहुत सारे नीड होते हैं, फिर बहुत सारे वे हैं जहाँ पे वो सेविंग कर सकते हैं करते हैं. तो बहुत सारे लोगों ने किया, बहुत अच्छा लगा, और ये सुन के कि हमारे पास नए आइडियाज भी आए. और मैम वो आपने अभी बात करी थी, तो हम मेट्रो सिटी का तो नहीं पता, लेकिन हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसमें मैं उनकी बात बता रही हूँ, फिर मैं अपनी बेनिफिशरीज की बात बताऊंगी कि उन्होंने क्या किया है. तो मैम मेरी सोसाइटी में, मैंने आपने भी बात जो की हुई थी उससे ही है कि पहले के जो हमारे पहले के जनरेशन के थे, पिछले जनरेशन के, वो अपनी सारी नीड को किल करके, मतलब जो बहुत जरूरी है, सरवाइव करना, खाना पीना, ये सब, यहाँ तक कि मैंने देखा वो कपड़े भी नहीं पहनते थे, अपने सारे नीड को किल करके और पैसे जमा करते थे.
0: बिल्कुल
1: फिर जो हमारा जनरेशन है, उन्होंने देखा कि अरे वो तो सारे कुछ भी नहीं करते थे और फिर ऐसे ही चले गए दुनिया से. नहीं, हम लोग को ना अपना भी करना चाहिए और सेविंग भी करना चाहिए, यानी हम खाएंगे पियेंगे अच्छे से रहेंगे और थोड़ा सा सेविंग भी करेंगे. तो
0: बिल्कुल
1: हमें लगता है अभी का जो जनरेशन है ये दोनों चीज, और इंजॉय भी कर रहे हैं ठीक ठाक. मैं मैम मिडिल क्लास, और मतलब मैं जो कम्युनिटी में रहती हूँ उसकी बात कर रही हूँ, और दूसरे जगह मुझे उतना नहीं पता, लेकिन कहीं कहीं से मैथ्स तो करता ही होगा, तो उसने करी. अब जो हमारा अगला जनरेशन आने वाला है उनको तो मनी वैल्यू पता ही नहीं है, वो जो भी अर्न करेंगे वो सारा का सारा खर्च करेंगे जैसे दिख रहा है. तो मैम हमें, मुझे लगता है कि हम अपने बच्चों को और जो भी हमारे आसपास जुड़े हैं उनको ये सिखाना चाहिए कि वैल्यू क्या होती है, मनी वैल्यू. इसके लिए तो हमको घर से लेकर के और जहां भी हम काम करते हैं वहां तो दिखाना पड़ेगा ना कि मैम, मतलब ऐसे ही हम कहीं भी किसी भी चीज के लिए एक बार मन किया खरीद लिए, तो हमको जो खुद
0: बिल्कुल
1: वैल्यू नहीं है तो वो बच्चे क्या सीखेंगे. वो तो मेरी मेरी सिंगल चाइल्ड है, तो वो तो यही समझेंगी ना, मम्मी को जब जरूरत होता है तब खरीद लेती है, तो मेरे भी पास ही आ जाएगा, क्योंकि पैसा इसके पास है तभी तो आ रहा है. जब हम अपने
0: बिल्कुल
1: ऊपर नहीं कमांड करेंगे तो बच्चे तो यही सीखेंगे कि अच्छा मम्मी ने 20,000 का फोन लिया, ठीक है मैं भी जब कभी बोलूंगी मुझे तो 10,000 का आ जाएगा. तो मैं बच्चों के लिए भी ये करती हूँ कि मैं अपने, मेरी सिंगल चार्ज है, मैं फिर भी देर करती हूँ थोड़ा सा कि देखो अच्छा ठीक है आ रहा है, आ जाएगा 1-2 महीने में आ जाएगा या 15 दिन में, बहुत ज्यादा नीड है, एजुकेशन से जुड़ी है तो कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ इंजॉय करने की चीज है तो आ जाएगा. तो ये हुई, तो मैम सबके अपने अपने वो नीड है और अपने अपने तरीके हैं, तो सब करते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि मैं करती हूँ वो करते हैं एक ही पर्टिकुलर. सभी आजकल करते हैं सेविंग, जो अपना स्टेज वो पार कर चुके हैं 25 वाला, क्योंकि 25 तक तो सब. हाँ हाँ जी मैम, तो मैंने बेनिफिशरीज को मैम देखा, वो मैं कर रही हूँ, और मैं सभी से, आपसे भी मैम गुजारिश करती हूँ कि यदि कोई बहुत अच्छा टिप हो तो वो आप जरूर शेयर कीजिएगा. तो बेनिफिशरीज ने तो हमारे यहाँ क्या हुआ, मैंने वो एसटीएस से शेयर किया हुआ था, जो हम 4 जन, जिसमें से 3 बच्चे बेनिफिशरीज और एक मैं हूँ, 4 का ग्रुप बनाई और फिर हमने प्लान किया और हमने अपना पार्लर खोल लिया.
0: अरे वाह,
1: हाँ हाँ मैम, तो पार्लर में खोल लिया. अब इसका ये आया कि भाई सेटअप तो मेरे पास पहले से, जो सेंटर का ये दिया हुआ है तो सेटअप सारा मेरे पास पहले से था, उसमें कुछ प्रोडक्ट लाने थे और जैसे बोर्ड बनाना, कुछ बेसिक जो होता है थ्रेडिंग वगैरह के लिए, फेशियल के लिए, वो सारे प्रोडक्ट लाने थे, और फिर थोड़ा सा वो एडवर्टाइज के लिए कुछ पैसे खर्च करने थे. तो हम लोगों ने प्लान किया कि घर से यदि लाओगी तो बेनिफिशरीज के तो गार्जियन पूछेंगे कि भाई तुम क्या कर रही हो, ये वो सब कुछ तो है, हमारे यहाँ रूम है, इलेक्ट्रिसिटी है और बच्चे भी आ रहे हैं. तो हम लोग ये काम करते हैं, कुछ पैसे हम लोग अपने में जितना भी सेविंग है 500 या 1,000, उसमें मैं भी पार्टिसिपेट की हूँ मैम, तो हम लोग ले आते हैं. इसके बाद हमारा जो पैसा आएगा, तो उसमें से एक बेनिफिशियरी जो ग्रेजुएट है वो बोली कि हमारे पास जो कमाई के कुछ पैसे आएंगे, जैसे कि अभी दिवाली छठ चल रहा है तो कुछ ना कुछ तो आएंगे ही हमारे पार्लर में, क्योंकि अभी उतना ज्यादा मैम प्रचार नहीं हुआ है, बहुत कम लोगों तक पहुंचा है कि यहाँ की पार्लर खुल गया है. तो उस पैसे से हम और प्रोडक्ट जो भी मतलब जरूरी है थोड़ा बड़ा करेंगे उसको, फिर हम पैसे शुरू करेंगे अपने पास रखना. तो मुझे आइडिया ये अच्छा लगा मैम, और इस छठ में मुझे लगता है उन लोगों ने 500 कुछ अर्न किया है, और उससे वो सामान ही लाई है, कभी फेसियल का कुछ, तो मैनिक्योर का, पेडिक्योर का कुछ प्रोडक्ट्स अभी। तो मुझे लगा कि वो ग्रेजुएट बच्ची है, गांव की है, लेकिन फिर भी इतना मतलब कि सोच रही है। तो मुझे अच्छा लगा कि आजकल के बच्चे भी थोड़ा सा ये ध्यान दे रहे हैं कि मुझे अभी उसमें से खर्च नहीं करना है, अभी मुझे अपना वो पार्लर सेट करना है।
0: वेरी नाइस अर्चना जी, थैंक यू सो मच. एग्जैक्टली जो मैंने कोशिश कर रही थी, मुझे लगा कि मैं जो बोल रही हूँ शायद मैं सही से नहीं समझा पा रही, लेकिन आपकी इनपुट से मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया कि यही बात हम लोग करना चाह रहे हैं कि जनरेशन दर जनरेशन एक तो नीड्स और वांट्स बदलती जा रही हैं, और जब हम खुद पे नहीं कंट्रोल कर पाते हैं कभी कभी खर्चा करने के लिए, तो हम अपने बच्चों को कैसे बोल सकते हैं, या अपने जो हम जो जो हमें अपना एज ए मॉडल देखते हैं, या जो हमें सोचते हैं कि ठीक है अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो हमें भी फिर ऐसा ही करना है, चाहे वो बेनिफिशरीज हो गए, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे आप सेंटर में अगर एक लीडर के आप सभी लीडर हैं अपने अपने सेंटर्स के, तो चाहे आप सेंटर पे एज ए लीडर अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं. सो वेरी ब्यूटिफुली शेयर्ड एग्जाम्पल की किस तरीके से हम एक तो खुद को एज ए रिप्रेजेंटेटिव मान के हम खुद से अपनी मनी मैनेजमेंट को अच्छी तरीके से करें, और दूसरा जो आपने एग्जाम्पल दिया कि छोटे से ग्रुप ने कैसे एक फंड क्रिएट किया आपस में मिलके और एक छोटा सेंटर शुरू किया, लेकिन आइडिया है कि उसको धीरे धीरे करके उसी फंड से कैसे हम बड़ा करेंगे. दैट इज अ ब्रिलियंट एग्जाम्पल ऑफ यू नो बजट मैनेजमेंट. घर का भी आपने बता दिया और अपने एंटरप्राइज का भी बता दिया. थैंक यू अर्चना जी.
1: थैंक यू मैम, थैंक यू। और मैम प्लीज सजेस्ट कीजिएगा आप इसमें कि बच्चे कर रहे हैं, इससे भी कोई अच्छा होगा कि हम कैसे उसको आगे ले जा सकते हैं। तो मैम इसके लिए बहुत ये रहेगा।
0: ठीक है जी, ठीक है, विल टॉक सेपरेटली फॉर दैट.
1: थैंक यू मैम।
0: थैंक यू. ओके, सो आई होप दिस सेशन वॉज अ लिटिल हेल्पफुल टू समबडी. हो सकता है शायद किसी ने कुछ सीख के इससे कुछ अपने आज से या पहले से कर रहे हो तो उसको रीइंस्टेट करें और उसको अपने बिहेवियर में लेके आए. एंड आई होप यू शेयर दिस सेशन विद योर बेनिफिशरीज, स्पेशली टू द यूथ, क्योंकि जैसे अर्चना जी ने कहा जो 25 साल से ऊपर है उनको तो कहीं ना कहीं हैबिट लग गई है, लेकिन ये हैबिट हमें शुरू से ही अपने, मैं सेविंग्स की बात नहीं कर रही, मैं आइडेंटिफिकेशन और उसमें फर्क की बात कर रही हूँ कि हमारी जरूरतें क्या हैं और हमारी इच्छाएं क्या हैं. इन दोनों चीजों में, जरूरतों में और इच्छाओं में फर्क करना बहुत जरूरी है, और अपने लेवल को पहचानते हुए, लेवल एज इन अपने सिचुएशन को एज ए स्टूडेंट, अपने सिचुएशन एज अ होम मेकर या एज अ एंटरप्रेन्योर या फार्मिंग को लेके जो हमारी जरूरत है उसको पहचानते हुए अपने बजट्स को कैसे मैनेज करना है, इसके ऊपर हमने आज बात करी है. सो थैंक यू एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग इट एट शॉर्ट नोटिस. थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई होप दिस इज हेल्पफुल. बाय बाय. थैंक यू.
1: वेरी हेल्पफुल मैम, थैंक यू सो मच।
2: थैंक यू मैम.
1: थैंक यू मैम।
0: थैंक यू.

0: डॉक्टर बॉबी, जैसे कि हम टीबी के बारे में बात कर रहे हैं, तो टीबी के बारे में हमें बताएं कि ये क्या कैसी बीमारी है।
1: टीबी एक इन्फेक्शियस डिजीज है, मतलब संक्रामक रोग जो कि हवा से एक बैक्टीरिया द्वारा होता है और खांसी और हवा से बैक्टीरिया फैल के एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में चले जाता है। इसलिए टीबी एक काफी खतरनाक बीमारियों में जाना जाता है, क्योंकि एक टीबी का पेशेंट अगर एक घर में हो तो बाकी के जो सदस्य घर में रह रहे हैं, या अगर वो कहीं काम करने जा रहा है, जो बाकी के मेंबर्स हैं उसके ऑफिस में आसपास, उनको भी टीबी होने का खतरा होता है। इसी वजह से टीबी काफी तेजी से जो है हमारी सोसाइटी में फैलने का डर रहता है।
0: तो टीबी का रोकथाम किस प्रकार से की जा सकती है?
1: टीबी की रोकथाम के जो उपाय हैं, उसमें सबसे पहला है जल्दी से जल्दी टीबी का डायग्नोसिस करना। किसी भी व्यक्ति को अगर खांसी 3 हफ्ते से ज्यादा चलती है, या बुखार रह रहा है साथ में खांसी है, या खांसी के संग बलगम में खून आने लगा है, तो ऐसे व्यक्ति को टीबी होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं और ऐसे व्यक्ति की तुरंत जांच शुरू कर देनी चाहिए। जांच की सुविधाएं हमारे कम्युनिटी में, डॉट सेंटर में, टीबी सेंटर्स में उपलब्ध हैं। ये सारी सुविधाएं मुफ्त हैं। इन सुविधाओं में बलगम की जांच ये सबसे पहले की जाती है। मरीज को 3 दिन तक सुबह का बलगम लाने को कहा जाता है, उसको उसकी डब्बी दी जाती है, डब्बी में वो बलगम लेके आता है, और उस बलगम की जांच के द्वारा हमें पता चलता है कि इस मरीज को कहीं टीबी का रोग तो नहीं हो गया।
0: अगर किसी को टीबी हो गई हो तो उसका देखभाल और इलाज किस तरह से किया जा सकता है?
1: टीबी एक पूरी तरह से ठीक होने वाला रोग है, परंतु टीबी का जो इलाज है वो अन्य इन्फेक्शंस की तरह छोटा नहीं है। अन्य इन्फेक्शंस का इलाज 7 से 14 दिन 20 दिन तक चल के होता है, परंतु टीबी के मरीज का इलाज कम से कम 6 महीने डॉक्टरी निगरानी में करना बहुत जरूरी है। इसका पूरा इलाज सरकार द्वारा फ्री किया जाता है डॉट सुविधा के तहत, जिसमें पेशेंट को अपनी निगरानी में दवा खिलाई जाती है। टीबी के मरीज को अगर अच्छी तरह से खुराक दी जाए, टीबी के मरीज को एक बंद कमरे में ना रखा जाए, शहर पे भेजा जाए, और खुराक में हाई प्रोटीन दिया जाए, तो टीबी तकरीबन सभी केस 95% केस पूरी तरह ठीक हो जाते हैं, और एक बार पूरा इलाज देने के बाद उनको दोबारा इलाज की जरूरत नहीं पड़ती।
0: टीबी का इलाज क्या बहुत महंगा है?
1: टीबी का इलाज महंगा नहीं है, बल्कि सरकारी संस्थानों में जो डॉट सेंटर है वहाँ टीबी का इलाज मुफ्त में किया जाता है, पेशेंट से कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं, तो एक तरीके से फ्री भी है। अगर प्राइवेटली भी पेशेंट अपना इलाज कराता है तो ये इलाज कोई महंगा नहीं है। दिन की 15 रुपए की दवाई से इसमें ट्रीटमेंट शुरू होता है, और 2 महीने के बाद ये 15 रुपए से भी दवाई जो है 7-8 रुपए की रह जाती है।
0: और इनकी जो दवाइयां हैं वो क्या आसानी से उपलब्ध हैं?
1: टीबी की दवाइयां सरकारी संस्थानों में आसानी से उपलब्ध हैं, पेशेंट को दी जाती है, बल्कि पेशेंट्स के लिए एक डेडिकेटेड डब्बा बना दिया जाता है हर मरीज के नाम का, और दवाई उसमें हमेशा अवेलेबल रहती है। टीबी की दवाइयां हर केमिस्ट के पास उपलब्ध हैं, क्योंकि मैंने बताया हमारे देश में टीबी इतनी ज्यादा है कि तकरीबन बोला जाता है कि हर दिन 5,000 लोगों को टीबी का डायग्नोसिस किया जाता है। देश भर में तकरीबन 1,000 लोग एवरी डे उनका देहांत हो जाता है टीबी की वजह से, मतलब 2 व्यक्ति हर 3 मिनट टीबी के रोग के कारण मारे जा रहे हैं। तो इतना ज्यादा टीबी फैला हुआ है, तो दवाइयों की उपलब्धता की समस्या नहीं है। समस्या ये है कि मरीज कई बार ये दवाई समझता है कि मुझे इन्फेक्शन थी, 1-2 महीने में मुझे आराम आ गया, मुझे आगे दवा की जरूरत नहीं है, वो दवाई बंद कर देता है, और बंद करने की वजह से इन्फेक्शन 3-4 महीने में दोबारा लौट के अधिक मात्रा में और खतरनाक रूप से सामने आ जाता है। टीबी की इस समय सबसे ज्यादा समस्या है कि हमारे को कम्युनिटी तक ये अवेयरनेस पहुंचाएं कि टीबी का इलाज कम से कम 6 महीने करें और लग के करें, ये कम्प्लीटली क्योरेबल इन्फेक्शन है।
0: डॉक्टर साहब, किस किस तरह की टीबी होती है और उनके इलाज में क्या कोई खास डिफरेंस है क्या?
1: बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा। टीबी छाती की, चेस्ट की ही नहीं होती, पल्मोनरी टीबी जिसे हम बोलते हैं, चेस्ट की टीबी जो खांसी से फैलती है, वो टीबी के मरीज अगर हम 100 देखेंगे तो 80 लोगों को छाती की ही टीबी होती है, परंतु 20 लोगों को छाती के बाहर की टीबी भी होती है। टीबी शरीर के किसी भी अंग को, हड्डी, लिम्फ नोड, लिवर, इंटेस्टाइन, किसी भी अंग को प्रभावित करके वहां रोग पैदा कर सकती है। उसका इलाज तकरीबन सेम दवाइयों द्वारा किया जाता है। जो इलाज की ड्यूरेशन है, जो इलाज का समय है, वो डॉक्टर डिसाइड कर लेते हैं कि ये इलाज 6 महीने चाहिए, 9 महीने चाहिए या 1 साल का चाहिए, परंतु दवाइयां सेम रहती हैं और डॉट्स के तहत ज्यादातर एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का भी अच्छा इलाज होता है।
0: डॉक्टर साहब, हर साल 24 मार्च को यानी कि 24 मार्च को टीबी डे मनाया जाता है, इस दिन को सुनिश्चित करने की क्या जरूरत थी और इसका क्या उद्देश्य है?
1: टीबी के लिए भी एक दिन साल में हम लोग को सुनिश्चित करना पड़ा, क्योंकि हमारे देश में या ग्लोबली टीबी की रोग एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। विश्व भर में 8.8 मिलियन टीबी के केसेस हैं और हमारे देश में 1/5 जो केसेस हैं वो हमारे देश से हैं। तो एक दिन निश्चित करके इस दिन द्वारा हम आपको मीडिया द्वारा, गेट टुगेदर्स द्वारा, कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स के द्वारा मिलकर डॉक्टर लोग अगर सब जगह ये अपने विचारों को फैलाएं कि टीबी एक कम्प्लीटली क्योरेबल डिजीज है, ये इन्फेक्शियस डिजीज है जिसका इलाज कराना पेशेंट के लिए जरूरी नहीं है, पूरी परिवार के लिए जरूरी है, नहीं तो ये परिवार में हर व्यक्ति को हो सकती है। इस अवेयरनेस को फैलाने के लिए जो दिन है ये सुनिश्चित किया गया है, जिसमें सब लोग जो है इस अवेयरनेस को स्प्रेड करें और जो रिजल्ट्स हमने पूरे साल मेहनत करके एक्वायर किए हैं उनको भी एनालाइज कर सकें।
0: इस दिशा में सरकार की तरफ से क्या प्रयास रहे हैं और ये प्रयास कहाँ तक सफल हो रहे हैं?
1: सरकार की तरफ से बहुत अच्छे डॉट सेंटर पूरी दिल्ली में बनाए गए हैं और उस सेंटर में ट्रीटमेंट मुफ्त उपलब्ध है, डायग्नोसिस की सारी सुविधाएं अवेलेबल होती हैं और पेशेंट्स को वहां पर अंडर सुपरविजन दवाई दी जाती है। इन प्रोग्राम्स के द्वारा दिल्ली में टीबी के पेशेंट्स को बहुत राहत मिली है और जितनी मेरी समझ है ये पॉजिटिव इफेक्ट है हमारी कम्युनिटी में।
0: डॉक्टर साहब, जैसे आप कह रहे थे कि जब किसी व्यक्ति को टीबी होता है तो उसके परिवार वालों को भी ये होता है कि इन्फेक्शियस हो सकता है। पहले तो ऐसे होता था कि टीबी सैनिटोरियम्स में छोड़े जाते थे ये लोग और इनके साथ एक छुआछूत का जैसे बर्ताव किया जाता था, तो अब आपका क्या एडवाइस रहेगा कि कैसे इनका इलाज करना चाहिए परिवार वालों को?
1: जब तक टीबी के रोग का ये नहीं मालूम चला कि ये एक इन्फेक्शन है, जब तक इसके दवाइयां 1940 तक नहीं आई दुनिया में, इसकी ट्रीटमेंट नहीं बनी, तब तक टीबी से तकरीबन 100% लोग जो है वो मर जाते थे, मगर इफेक्टिव ट्रीटमेंट के साथ ये ट्रीटमेंट 100% सक्सेसफुल हो गया, अच्छी से अच्छी सेफ दवाइयां आ गई। जब तक पूरा इलाज नहीं था तब तक सैनिटोरियम का इलाज किया जाता था ताकि आसपास के लोगों को बीमारी ना फैले और मरीज को ताजी हवा में, पहाड़ में अच्छी तरह से खुराक दी जाए और धीरे धीरे वो नेचुरली अगर हील हो सकता है तो हो जाए, अदरवाइज कम से कम वो पूरे शहर में बीमारी ना फैलाए। परंतु टीबी के अच्छे इफेक्टिव ट्रीटमेंट की डिस्कवरी के बाद इस तरह के सैनिटोरियम ट्रीटमेंट बंद हो गए, तकरीबन सारे सैनिटोरियम बंद हो गए हैं और घर पे रह के आप डोमिसिलरी ट्रीटमेंट जिसे हम बोलते हैं आप अच्छी से करवा सकते हैं। इस इलाज से तकरीबन 100% लोग ठीक हो जाते हैं। टीबी के पेशेंट के संग रहने से टीबी होने का खतरा होता है, परंतु जैसे ही आप इलाज शुरू करते हैं 7 से 10 दिन में पेशेंट टोटली नॉन इन्फेक्शियस, मतलब बिल्कुल सेफ हो जाता है, आपको बीमारी नहीं दे सकता। 7 से 10 दिन में जो टीबी के कीटाणु हैं वो इतने क्षीण हो जाते हैं कि वो आपको बीमारी नहीं दे पाते हैं। टीबी के पेशेंट के संग रहने से, खाना खाने से कोई भी टीबी नहीं फैलती है, सिर्फ आपको एक प्रिकॉशन लेनी होगी कि वो जो अपनी स्पूटम या थूक है उसको किसी कंटेनर में जिसमें एंटीसेप्टिक है उसमें डिस्पोज करे, घर में इधर उधर ना फेंके और अपनी बलगम से बने जो क्लोथ्स होते हैं, जो रुमाल है या कोई तौलिया है, उसको भी अच्छी तरह से गर्म पानी में धोए। तो टीबी के पेशेंट्स को घर पे डोमिसिलरी ट्रीटमेंट से बहुत अच्छा इलाज हो सकता है।
0: वैसे कहा जाता है कि टीबी एक गरीब तबके के समाज के लोगों को ज्यादा असर करता है, क्या ये सही है?
1: टीबी सोसाइटी के हर प्रकार के आदमी को इफेक्ट करता है, इसमें गरीब और अमीर का फर्क नहीं है। आपको अपनी हाइजीन लेवल को मेंटेन रखना है, अगर आप स्वस्थ वातावरण में, ताजी हवा में रहते हैं, अपनी खुराक का पूरा ध्यान रखते हैं, अपने शरीर की जो इम्यूनिटी है उसको मेंटेन रखते हैं, तो टीबी आपको होने के चांसेस कम है। तो इसमें ऐसी कोई लाइन नहीं है कि गरीब को होगा टीबी जिसके पास अमीर है या पैसे वाले हैं, हर प्रकार के पेशेंट को, इट्स इन्फेक्शन, किसी को भी हो सकती है।
0: डॉक्टर बॉबी, जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: सब बहनों भाइयों को यही एडवाइस करूंगा कि अगर किसी को भी 3 हफ्ते से ज्यादा खांसी हो तो तो तुरंत डॉट केंद्र में जाके अपना जांच करवाएं। जांच करने के बाद अगर टीबी निकलती है तो मेडिकल अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेट करके अपना कोर्स कंप्लीट करें। ये कंप्लीटली क्योरेबल डिजीज है, तो इसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। अपना हिम्मत मत हारें और पूरा डट के इलाज करवाएं।

0: जो हमने सीरीज शुरू करी थी उसमें एक एक टॉपिक अभी बाकी है, बट व्हाट आई थॉट वाज कि प्रोबेबली वी कैन डू समथिंग व्हिच इज आल्सो रिलेटेड, व्हिच इज अ प्रिपरेशन फॉर अ जॉब इंटरव्यू. तो आज का सेशन मैंने उस तरीके से डिजाइन किया है. होपफुली ये हम सभी के लिए और हमारे जो बेनिफिशरीज जो इस ट्रेनिंग में आगे हमारे साथ जुड़ेंगे उनके लिए बेनिफिशियल हो. अभी तक जो हमने बात करी थी लाइफ स्किल्स की, आई एम श्योर आप अपने आगे बेनिफिशरीज के साथ वो सेशंस होस्ट कर रहे हैं. अगर कोई चैलेंज है, अगर कोई इश्यूज हैं, तो हम अलग से एक दिन एक सेशन कर सकते हैं, जैसे हमने पहले भी किया था, जिसमें कि हम कुछ क्वेरी है तो आपस में मिलके उसे सॉल्व कर सकते हैं. सो नॉट टेकिंग मोर टाइम ऑन दिस, मैं अपनी पीपीटी शेयर करती हूँ. अगेन एज आई सेड कि दिस इज अ लाइफ स्किल सेशन फॉर प्रोफेशनल्स, मतलब कि कोई जॉब करना चाहता है या कोई अपना काम करना चाहता है, तो ये लाइफ स्किल के सेशंस उन बेनिफिशरीज के लिए हैं जो कि जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, हायर स्टडीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, या इवन अपना कोई काम करना चाहते हैं. तो कुछ ऐसी स्किल्स हैं जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, जिससे कि हम लोग दूसरे से अलग दिख सकते हैं. ये सेशंस उसके बारे में है. आज का जो सेशन है, आई जस्ट शेयर माय स्लाइड्स. तो जैसे कि हमने बताया कि आज का ये सेशन हमने ये रखा है कि अगर हमें सब आ गया, हम कॉन्फिडेंट भी हैं, हमें अपने बारे में पूरा पता भी है कि हमारी क्या क्या चीज हमें है और किस तरह के जॉब के लिए हम जा सकते हैं, क्या हमें कोई कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स का जॉब के लिए अप्लाई करना है, या टेक्नोलॉजी में कोई जॉब के लिए अप्लाई करना है, या जो ट्रेनिंग हम हॉस्पिटैलिटी में दे रहे हैं उसका कोई जॉब के लिए अप्लाई करना है, या हम जो रेडियो और ऑडियो वीडियो एडिटिंग की जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उसमें हमें कोई जॉब के लिए अप्लाई करना है, टैली की ट्रेनिंग है, टैली में जॉब के लिए अप्लाई करना है. तो हमारे बेनिफिशरीज को अभी तक कुछ ना कुछ स्किल्स तो आई है, या तो हमारे सेंटर से उन्होंने वो स्किल ली है, या फिर उनको पहले से वो आती थी, या किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से उन्होंने वो स्किल को एक्वायर कर लिया. तो ये हम मान के चलते हैं कि हमारा जो बेनिफिशियरी है उसको या तो आता है, या वो सीख रहा है, या सीख रही है, या सीखना चाहता है, या सीखना चाहती है. लेकिन
1: हाँ
0: कई बार क्या होता है, स्किल आते हुए भी जो हमें आता है वो आते हुए भी हम अपनी बात कहने में अब हम डिलीवर नहीं कर पाते. जब हम एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जब हम जाते हैं, तो हमारे दिमाग में एक हवा बना रहता है कि कोई सामने वाला मुझे इवैल्यूएट करेगा, और मुझे इवैल्यूएट करेगा तो मुझे अपना बेस्ट प्रेजेंट करना है. तो वो एक जो डर बैठ जाता है हमारे दिमाग में, या एक खौफ बैठ जाता है, उसकी वजह से कई बारी हम लोग उतने अच्छे से अपना इंटरव्यू नहीं दे पाते, या हम प्रेजेंट अपने आप को उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं. तो ये सेशन के थ्रू एक कोशिश है जिसमें कि आपकी जो कला है, या जो आपका जो स्किल है जिसके लिए आप अपियर करने वाले हैं इंटरव्यू में, उसके साथ साथ आप अपनी पर्सनालिटी को, या अपने हाव भाव को, या अपनी बातचीत को रखेंगे तो वो कैसे ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है. ये कुछ टिप्स हैं, ये कुछ प्रिपरेटरी पॉइंट्स हैं जिनको कि अगर हम एटलीस्ट अगर इनको हम करें तो नेगेटिव मार्किंग नहीं हो सकती कोई इंटरव्यू में. पॉजिटिव होगी कि नहीं वो आपकी डिलीवरी ऑफ इंटरव्यू पे डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी. अगर कोई एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है तो मार्किंग सिस्टम होता है. मान लीजिए उसी जॉब के लिए 100 लोग अपियर कर रहे हैं, 200 लोग अपियर कर रहे हैं, 10 लोग अपियर कर रहे हैं, तो किस किन पॉइंट्स पे आपको बेटर मार्क्स मिल सकते हैं, या एटलीस्ट आपके मार्क्स कट ना हो जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, या आपका इम्प्रेशन डाउन ना हो जब आप एक इंटरव्यू पैनल में जाते हैं या वन टू वन जाते हैं. तो जॉब इंटरव्यू क्या होता है, कोई कोई बता सकते हैं? आज हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं उनमें से कभी किसी ने कोई इंटरव्यू दिया है? कोई मुझे वॉलंटियर कर सकता है कि इंटरव्यू क्या होता है? जॉब इंटरव्यू बहुत सिंपल सी चीज है, हम लोगों ने सभी ने जॉब इंटरव्यू दिया. इंटरव्यू के बिना तो शायद किसी को भी जॉब नहीं मिला होगा. आई हैव नेवर सीन एनीबडी, इवन टॉप पोजीशंस में तो मल्टीपल इंटरव्यू होते हैं, आठ आठ नौ नौ लेयर्स ऑफ इंटरव्यू होती है अगर एक टॉप पोजीशन पे किसी को रखा जा रहा है तो.

0: सा जॉब इंटरव्यू क्या होता है?
1: मैम
0: जी कौन बोल रहे हैं?
1: आकांक्षा, हेलो
0: जी आकांक्षा, आप कौन से सेंटर से हैं?
1: मैम,
0: हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। आप कौन से सेंटर से हैं आकांक्षा? महाराष्ट्र।
1: महाराष्ट्र,
0: जी
1: मैम
0: बोलिए।
1: जॉब इंटरव्यू में इंटरव्यू इंटरव्यू भी रहते हैं, और वो बहुत से मतलब उस इंटरव्यू देने के लिए बहुत से लोग जाते हैं। वो इंटरव्यू हर एक से कुछ क्वेश्चन करते हैं, और वो जो इंटरव्यू होते हैं अपने क्वेश्चन के बेस पे जैसा उनको आंसर मिलता है वो उनमें से सेलेक्ट करते हैं कि किसको ये जॉब प्रोवाइड करना चाहिए, कौन इस जॉब के लायक है।
0: तो वो इंटरव्यू में क्या देखते हैं? जो जैसे अगर आप कोई इंटरव्यू ले रही हैं और मैं अपियर कर रही हूँ एक इंटरव्यू में, तो आप मेरे में क्या देखना चाहेंगे आकांक्षा?
1: मैम मैं ये देखना चाहूंगी कि जो जॉब मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, क्या आप उस जॉब को कर सकती हो, उस लायक हो या नहीं।
0: तो आप
1: इसमें
0: बिल्कुल
1: तो
0: सही।
1: अगर कोई फाइनेंशियल चीज हुआ तो मैं आपसे फाइनेंस के बारे में करके कुछ क्वेश्चन करूंगी एंड ऑल।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही। तो आप मुझे इवैल्यूएट करेंगी कि जो पोस्ट निकाली है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, मैं या मेरे साथ जो 10 लोग आए हैं, उनमें से कौन इस पोजीशन के लिए बेस्ट सुटेड है। तो उस पोजीशन के लिए आप क्या क्या इवैल्यूएट करेंगे? आकांक्षा के अलावा कोई और भी बता सकता है। अब हमारे सामने केस है कि हम एक पोजीशन के लिए कैंडिडेट को इवैल्यूएट कर रहे हैं। ये जॉब इंटरव्यू होता है, ये जॉब इंटरव्यू का मकसद होता है। तो अब कोई बता सकता है कि एज ए इवैल्यूएटर आप क्या इवैल्यूएट करेंगे? आपके सामने मेरा सीवी रखा है, आप सीवी में पढ़ लीजिए कि मुझे मुझे क्या आता है, मैंने क्या किया है, क्या नहीं करा। आप फिर जॉब इंटरव्यू क्यों कर रहे हैं?
2: गुड आफ्टरनून मैम।
0: गुड आफ्टरनून जी।
2: मैम दिस इज निशा फ्रॉम वजीराबाद सेंटर।
0: नमस्ते निशा जी, कैसे हैं?
2: मैम बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं?
0: सब ठीक है, सब ठीक है। हाँ जी बताइए।
2: तो मैम आई थिंक जब जॉब इंटरव्यूज होते हैं तो सबसे पहले ना कॉन्फिडेंट लेवल चेक किया जाता है।
0: तो हमारे पास कॉन्फिडेंस है कि नहीं कि हम ये जॉब कर पाएंगे, हम कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं, ये एक मकसद होता है। क्योंकि सीवी में जो लिखा हुआ है वो एक्चुअली में आप कर भी पाएंगे कि नहीं, वो जज करने के लिए या वो इवैल्यूएट करने के लिए इंटरव्यू किया जाता है। और कोई और किसी का कोई और पॉइंट निशा के अलावा? हाँ
1: हेलो मैम, रेनू
0: जी
1: बोल रही हूँ ग्रेटर नोएडा सेंटर से। नमस्ते
0: नमस्ते रेणु जी, बताइए।
1: मैम। मैम अगर हम कभी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, मीन्स जो दो बातें भी हमने डिस्कस कर ली कि एक तो हम कॉन्फिडेंस देखते हैं, या आप एक कह रहे हैं कि एक रिज्यूमे में सब कुछ लिखा होता है, बट कभी जब हम लोग जाते हैं तो हमें क्या नॉलेज है, तो हम इंटरव्यूअर हमसे कहता है कि आप अपने आप मतलब अपनी जॉब प्रोफाइल के बारे में थोड़ा समरी या समराइज करके बताइए कि आप कैसे अपना ऑफिस को रन करते हैं, या हमने बताया जो भी हम इनको सिचुएशन देते हैं, कोई भी सिचुएशन दे सकते हैं हम उसमें कि हम ये हैं, हम ये हैं, ये है, तो फिर वो ये कह सकते हैं कि यार ठीक है आप हमारा ये पढ़ा है, हमारा बिल्कुल बेकार में इस मैसेज आया है, अब आप इसमें क्या नया कर सकते हो। तो एक यहाँ पर भी एक क्वालिटी जज की जा सकती है कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, या आपके पास आप आइडिया इनोवेटिव आइडियाज आपके पास हैं कि नहीं है।
0: वेरी गुड।
1: और आई
0: तो
1: थिंक सो, थैंक
0: हमारे
1: यू।
0: दो या तीन चीजें आ गई। पहला कि इवैल्यूएट करते हैं कि जो हमने सीवी में लिखा है वो हम कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल हमारा चेक करते हैं। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे इनोवेशन की जरूरत है, आप इनोवेटिव हैं कि नहीं, वो आपको अलग अलग सिचुएशंस में डाल के आपसे अलग अलग तरीके के सवाल पूछ सकते हैं और जज कर सकते हैं कि आप अगर एक सिचुएशन दी जाए तो उसमें आप किस तरीके से आप रिएक्ट करेंगे या काम करेंगे। वेरी गुड। सो नीता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? गुड
1: यस मैम, गुड आफ्टरनून मैम। जैसे
0: आफ्टरनून जी, कैसे
1: मैम
0: हैं?
1: जी ने बताया कि कॉन्फिडेंस लेवल भी चेक करते हैं, इसके अलावा मैम पर्सनालिटी इंटरव्यू के द्वारा हम पर्सनालिटी भी सामने वाले की देख सकते हैं, और अवेयरनेस अबाउट द जैसे कि सामने अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में कितना अवेयर है, स्पीकिंग एज वेल एज राइटिंग रिटन भी हम देख सकते हैं।
0: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, मुझे याद है हम दोनों ने मिलके ही हमारे जो स्कूल था प्री स्कूल का, उसका एक इंटरव्यू किया था। तो हमने किन किन कैटेगरीज पे अपनी टीचर्स को इवैल्यूएट किया था? एब्सोल्युटली राइट। बच्चों के साथ काम करना है, उनकी राइटिंग स्किल कैसी है, उनकी पर्सनैलिटी प्लीजिंग है कि नहीं, और ये सब चीजें हम इंटरव्यू में ही जज कर सकते हैं। हम सीवी देख के, नहीं जज कर पाते, या फोन पे बात करके ज्यादातर नहीं जज कर पाते। तो इन सब पॉइंट्स जो सभी मेरे साथी हैं उन्होंने जो पॉइंट्स दिए हैं एब्सोल्युटली वैलिड पॉइंट्स, और भी बहुत लोग बहुत कुछ कहना चाह रहे होंगे, बट कहने का मकसद ये था कि इंटरव्यू एक बहुत इम्पोर्टेंट पड़ाव होता है। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने जा रहे हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन आपको हायर करता है, आप दोनों इवेल्युएट कर सकते हैं। अभी तक हमने जितने पॉइंट सुने हैं वो हमने यही सुने हैं कि एज अ कैंडिडेट आप में क्या क्या चीजें हैं, बट कैंडिडेट का भी ये राइट है कि वो पूछ सकता है या वो देख सकता है या वो देख सकती है, जज कर सकती है कि जिस एनवायरनमेंट में वो काम करने जाने वाला है या जाने वाली है वो एनवायरनमेंट उसको सूट करता है, उसकी पर्सनालिटी को सूट करता है कि नहीं करता। इट्स अ टू वे प्रोसेस। तो जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं कॉन्फिडेंट रहिए कि आप भी सिर्फ इवेल्युएट नहीं होंगे, आप भी इवेल्युएट कर सकते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को जिसमें कि आप अप्लाई करने जा रहे हैं। कॉल सेंटर का जॉब है क्या, रात की ड्यूटीज लगेंगी, रात की ड्यूटीज क्या आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, अच्छा कैसा एनवायरमेंट है वहां पे, सेफ्टी सिक्योरिटी है कि नहीं, अगर गर्ल्स जा रही हैं लेडीज जा रही हैं उनकी क्या सेफ्टी मेजर्स हैं, आपका भी पूरा अब बनता है कि आप देखें इवेल्युएट करें अपनी सूझबूझ से। सो इंटरव्यू इट्स अ मीडियम कि जो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म मतलब 6 महीने हो सकता है, साल हो सकता है, मेरे और मैम के जैसे जैसे 14-14 साल से हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करें तो एक लाइफ टाइम हो सकता है, बट यू हैव टू इवेल्युएट दैट दिस रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल कम्फर्ट कि आप एज एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉई और सामने वाला एज एन एम्प्लॉई, आप दोनों का मेल बैठता है एक पोजीशन के लिए जिसके लिए उन्होंने एडवर्टाइज किया। ये कहना बहुत आसान है, कहने में बहुत अच्छा लगता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट प्रैक्टिकली ये होता नहीं है। हम कंफर्टेबल नहीं होते हैं, हम इंटरव्यू करने जाते हैं, हम ज्यादातर सवाल नहीं पूछ पाते हैं ये सोच के कि सामने वाला हमें बोलेगा कि रूड है या अपने आपको बताने क्या समझता है इतने सवाल पूछ रहे हैं। आप सवाल मत पूछिए, लेकिन ऑब्जर्व तो कर सकते हैं कि एनवायरमेंट कैसा है, लोग कैसे हैं, आप ऑब्जर्व करिए, बिकॉज अगर आप सेटिस्फाइड होंगे तभी आप लॉन्ग टर्म अपने आप को उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ रख पाएंगे और आप अच्छा काम करेंगे जिसकी वजह से आपका एम्प्लॉयर भी खुश होगा और वो भी लॉन्ग टर्म आपको एसोसिएट कर पाएगा। वेरी वेरी बेसिक थिंग, बहुत ही बेसिक थिंग था, लेकिन जब हम जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तब हमें कैसे प्रिपेयर करना है, तो पहले कुछ वेरी बेसिक पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी कि जब जॉब डिस्क्रिप्शन एडवर्टीजमेंट में दिया हुआ है उसे अच्छी तरीके से, एक जॉब डिस्क्रिप्शन आता है कोई एडवर्टीजमेंट होती है या कोई आपकी सहेली या आपकी कोई फ्रेंड है उन्होंने बताया होगा कि इस कंपनी में जॉब निकला है इसमें अप्लाई कर दो, या आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, मोबाइल पे आपके पास कोई अलर्ट आया होगा कि जॉब्स के लिए है, लेकिन वो उस जॉब की डिस्क्रिप्शन भी होती है, उस डिस्क्रिप्शन को पूरा डिटेल में पढ़िए। बहुत सारी कंपनीज काफी डिटेल में वो डिस्क्रिप्शन देती है कि किस तरह का जॉब होगा, कितने वर्किंग आवर्स होंगे, ट्रैवल रहेगा कि नहीं रहेगा, सेल्फ व्हीकल चाहिए कि नहीं चाहिए। कई कई जॉब्स ऐसे होते हैं जैसे कि कोई कुरियर कंपनी है या लॉजिस्टिक्स कंपनी है, वो पहले ही एडवर्टाइज करते हैं कि आपका सेल्फ व्हीकल होना बहुत जरूरी है। जैसे कि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रॉब्ली रिटेल में है तो वो वर्किंग आवर्स पहले ही एडवर्टाइज कर देते हैं कि वर्किंग आवर्स हमारे 11 o'clock से 8 o'clock तक रहेंगे, जैसे कि मॉल हो गए या फिर कोई कोई ऐसी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जिसमें कि उन्हें पर्टिकुलर स्किल चाहिए। तो आप अच्छे से जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़िए और इवैल्यूएट करिए कि आप उस क्राइटेरिया पे फुलफिल होते हैं कि नहीं होते हैं, और प्रिपेयर करिए अपने आप को कि जो जो क्राइटेरिया दे रखा है उसमें अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे आंसर करेंगे। अगर क्वेश्चन है कि क्या आप एमएस एक्सेल जानते हैं, तो हाँ आप जानते हैं कि नहीं जानते, उस क्वेश्चन के ऊपर प्रिपेयर करिए। तो जब जॉब डिस्क्रिप्शन आप पढ़ेंगे उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपकी वो स्किल जो है आपके अंदर है कि नहीं, और जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा तो आपसे जब क्वेश्चन किया जाएगा आप आराम से उसका आंसर दे सकते हैं। आप हिंदी में, इंग्लिश में, जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उसमें अपना आंसर दीजिए। बहुत जरूरी नहीं है आजकल की जॉब मार्केट में कि सिर्फ स्पोकन इंग्लिश स्पीकिंग को ही जॉब मिलेगा, तो जॉब्स ऐसी हैं जिसमें स्पोकन इंग्लिश की जरूरत है, आप खुद ही इवैल्यूएट कर सकते हैं कि वो उसमें अभी आप एलिजिबल हैं कि नहीं, बट जो भी बात कहे उसे अपने कॉन्फिडेंस से रखिए। जो पहला शब्द हमने इस सेशन में सुना था, कॉन्फिडेंस, बिकॉज इंटरव्यू में वो आपका कॉन्फिडेंस जज करना चाह रहे हैं और उनको फटाफट पता चल जाएगा ये रियल कॉन्फिडेंस है या ये मतलब एक शो, आप शो पुट अप कर रहे हैं, ये रियल में आप कॉन्फिडेंट है। ये हर किसी को आपके बात करने के तरीके से पता चल जाता है। उनकी वेबसाइट पे जाइए, मान लीजिए अमेजोन ने कोई जॉब निकाली है या फ्लिपकार्ट ने कोई जॉब निकाली है या सम वोडाफोन ने कोई जॉब निकाली है, एयरटेल ने कोई जॉब निकाली है, आप उनकी वेबसाइट पे जाइए, जो जॉब लिखा हुआ है उसके बारे में पढ़िए कि जो लोग इन जॉब में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको कैसे, उनका कोई कभी कभी रिव्यूज होते हैं, स्टोरीज होती हैं, आजकल ब्लॉग्स भी बहुत सारे होते हैं। तो कहने का मतलब है थरो रिसर्च करिए। अगर आपको कोई बोलता है बस जाके अपना रिसीवी मत भेजिए, हाँ भाई तू जा रहा है ठीक है मेरा सीवी भी भेज दे उसमें, ऐसे नहीं। आपको प्रॉपरली उसके लिए प्रिपेयर करना होगा अगर आप रियल में चाहते हैं कि उस इंटरव्यू में आपको सक्सेस मिले। कुछ ऐसे टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, ये आपको कई साइट्स पे मिल जाएंगे, आप चाहें तो हम एक सेशन भी कर सकते हैं टिपिकल क्वेश्चंस जो एक जॉब इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अब टेल मी अबाउट योर सेल्फ में कुछ लोग ना कहानी गढ़ने शुरू करते हैं, मैं छोटा था तो ये था मैं वो था। आपको प्रिस्ट में बताना है। गीता मैम ने कई बार वो एलिवेटर पिच के बारे में बात किया कि एक मिनट में हमें अपने बारे में बताना है कि मैं क्या हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है। कहानियां सुनने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि किसी को याद भी नहीं रहेगा। अगर 100 लोग बैठे हैं, यू कांट एक्सपेक्ट द अदर पर्सन टू रिमेम्बर, बट वो एक ऐसी क्वालिटी जो आप में है, जो आप बताना चाहते हैं, आप उस पर फोकस करिए जो उस इंटरव्यू से रिलेटेड हो सकती है। कोई ऐसा एक्सपीरियंस है आप अपने बारे में शॉर्ट में बताइए। इसको बार बार प्रिपेयर करिए, रिटन में लिखिए टेल मी अबाउट योर सेल्फ को, और इसको प्रैक्टिस करिए शीशे के सामने कि कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के बारे में। आप ये जॉब क्यों करना चाहते हैं, क्या ऐसी मोटिवेशन है जो ये जॉब आप करना चाहते हैं। ये बहुत टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं। आप अपने आप को यहाँ से 3 साल के बाद कहाँ देखते हैं, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 3 years फ्रॉम नाउ, 5 years फ्रॉम नाउ। किसी भी जॉब में आप जाएंगे ये जरूर पूछा जाता है। सैलरी कितनी लेंगे, हम लोग हिचकिचा जाते हैं, कई कई जॉब में तो ऑलरेडी फिक्स्ड होता है पर फिर भी पूछते हैं कि आप सैलरी कितना लेना चाहेंगे। तो आप जब तक रिसर्च नहीं करेंगे कि इस तरीके की जॉब इंटरव्यू के लिए क्या क्या सैलरी है, क्या क्या पर्क्स हैं। कई बार क्या होता है जैसे कि कुरियर कंपनीज हैं, लॉजिस्टिक्स कंपनीज हैं, सैलरी कम होती है बट पर्क्स या रिलेटेड अलाउंसेस बहुत होते हैं, ट्रैवल का दे देते हैं या टेलीफोन का दे देते हैं क्योंकि कुरियर से रिलेटेड है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इंश्योरेंस होती है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए जब आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो हो सकता है वो सारी चीजें फ्रेशर लेवल पे शायद ना हो क्योंकि आपको शायद प्रोबेशन दिया जाएगा, 3 months का प्रोबेशन होगा, 6 months का प्रोबेशन होगा। जैसे मैंने बैंकिंग सेक्टर में स्टार्ट किया था तो मुझे 6 months का प्रोबेशन था। 3 months की इंटर्नशिप करने के बाद उसी बैंक में 3 months की इंटर्नशिप करने के बाद 6 months का प्रोबेशन था, तो इफेक्टिवली मेरा प्रोबेशन 9 months का हो गया था। बट दैट्स देयर रूल। किसी भी फ्रेशर को वो बहुत अच्छे से इवैल्यूएट करके ही परमानेंट करते हैं। बट डोंट गिव अप। हमारी प्रोफेशनल जर्नी अगर हम 24 या 25 साल में शुरू करते हैं और हम 60 साल तक अगर काम कर रहे हैं, 70 साल तक काम करें, तो बहुत लंबी प्रोफेशनल जर्नी है। इसमें आप धीरे धीरे धीरे धीरे करके ही अपनी स्किल्स को ऊपर बढ़ा सकते हैं। अगर आप एकदम से चाहेंगे कि आपको सारी वर्क सारे सारे बेनिफिट्स मिल जाए तो आप हमेशा डिससेटिस्फाइड रहेंगे। So know about the job, prepare yourself, prepare the basic question. और लेकिन basic question prepare करके जाइए, लेकिन उसे जल्दबाजी में deliver मत करिए। अपनी pitch को, अपनी communication skill को, जो first session हमने पढ़ा था कि communication skill, उस पे practice, उस पे focus करिए कि आपको crisp रहना है, concise रहना है, clear रहना है, फिर भी अपनी बात कहनी है। हो सके तो अपने किसी फ्रेंड के साथ या अपने छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन के साथ, या फिर सेंटर में अगर कोई लोग हैं या कोऑर्डिनेटर्स के साथ आप मॉक इंटरव्यू करिए। अगर जो भी आपका सबसे नियर एंड डियर वाले है उसके साथ आप मॉक इंटरव्यू मतलब ये जो 5-10 क्वेश्चंस हमने बोले, एक इंटरव्यू और बन जाए, एक इंटरव्यू ही बन जाए। कोशिश करिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप इंटरव्यू ही बनिए, आप इंटरव्यूअर मत बन जाइएगा। आप प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चन को, क्योंकि जब आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आप खुद सोचेंगे कि शायद मैं इसमें और क्या ऐड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं इसमें और क्या बेहतर कर सकता हूँ, मैं क्या ऐड करूँ कि मेरा कहने का तरीका या मेरे कहने कहने कहना जो चाह रहा हूँ वो बेटर हो जाए। आप उसे रिकॉर्ड करिए, अपनी आवाज को सुनने की आदत डालिए, क्योंकि जब हम बोलते नहीं है, अपनी आवाज नहीं सुनते, तो हमारा कॉन्फिडेंस नीचे नीचे ही रहता है। कभी आपने देखा टीचर्स में क्या कॉन्फिडेंस होता है? क्योंकि वो हर वक्त अपनी आवाज सुनने की आदी होते हैं, क्योंकि वो अपना प्रिपेयर करते हैं, लेसन प्लान प्रिपेयर करते हैं, वो अपने आप को हमेशा प्रिपेयर करके चलते हैं, उनके लिए कोई सरप्राइज एलिमेंट काफी कम रहता है। जब हम स्कूल्स में थे, कॉलेजेस में थे, हमने देखा हमारी टीचर्स क्या एकदम स्मार्ट और एकदम डिलीवरी करती हैं उसकी लेक्चर की, जो भी टॉपिक होता है प्रिपेयर्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रिपेयर करके आते हैं। तो आप अपने आप को शीशे के सामने किसी फ्रेंड के साथ, मोबाइल पे आजकल तो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं सेल्फ कैमरा से या कैमरा से खड़ा करके किसी जगह पे, आप आराम से उसे रिकॉर्ड करके खुद सुन सकते हैं, खुद देख सकते हैं कि कैसे आप बोल रहे हैं और वो कैसा दिख रहा है, कैसा लग रहा है। बहुत जरूरी है कि आप जहां इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उसका लोकेशन पहले से ही ध्यान में रखें। अगर इंटरव्यू का टाइम 9 बजे है तो आप कोशिश करिए कि आप अपना घर से इंटरव्यू तक पहुंचने का डिस्टेंस पहले ही जान लें, ताकि आप टाइम से पहुंच पाए, ना टाइम से ज्यादा देर से, ना टाइम से बहुत पहले। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हैं तो ये ध्यान में रखिएगा, साथ में एक हैंकी या एक टॉवल साथ में रखिएगा, ताकि जब आप जाते हैं, गर्मी का टाइम में पसीना आ जाता है, तो आप 10 मिनट पहले ही पहुंच जा सकते हैं वहां पे। अपने आप को प्रिपेयर करिए, वहां पे कहाँ रेस्ट रूम्स है उनसे बात करिए, जो भी वहां पे सपोर्ट स्टाफ है उनसे पूछिए रेस्ट रूम्स कहाँ पे हैं। आप जाके अपने आप को क्लीन अप करिए, कोट करिए अच्छे से, और बहुत जरूरी है कि आप अपने क्लोथ्स, आप क्या पहनने वाले हैं इंटरव्यू के दौरान, हम इस पे भी आएंगे कि क्या पहनना चाहिए, जस्ट अ सजेशन, नो There is no right or wrong, but as a mature person, हमें किस तरीके से अपने आप को professionally show करना चाहिए या conduct करना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। But पहले से आप तैयार करके रखिए, अगर उसे iron करना है iron करके रखिए, देखिए उसमें कोई button तो नहीं टूटा हुआ, कौन से चप्पले पहनना है, shoes पहनना है, पूरा एक दिन पहले prepare करके रखिए, ताकि आप mentally और physically prepared हो। आप जब जाते हैं इंटरव्यू के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी बॉडी लैंग्वेज, इसके ऊपर भी अभी हम आगे स्लाइड्स पे बात करेंगे। हम बॉडी लैंग्वेज पे पहले कम्युनिकेशन के टाइम पे भी बात कर चुके हैं, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस होती है इस दौरान में जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं बॉडी लैंग्वेज। आप जो भी क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ये मत करिएगा कि उसने कुछ अपनी तरफ से ऐड कर दी, जो ऑनेस्ट आंसर है, जो आप कर सकते हैं उसी को आंसर करिएगा, क्योंकि सामने वाले बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो इंटरव्यूअर है, वो बहुत सालों से शायद उस पोस्ट पे बैठे हैं, और वो फट से समझ जाएंगे कि आप सही कह रहे हैं या आप सिर्फ गप मार रहे हैं और ये चीज आप नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगी। तभी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी फॉर अ लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल कमिटमेंट। आपको आता है, नहीं आता है, आप सीख सकते हैं, आपके अंदर सीखने की कैपेबिलिटी है, बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी वेरी ऑनेस्ट इन द इंटरव्यू। तो हम अभी तक किसी का कोई सवाल या हम आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है, सवाल हम एंड में भी ले सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने बॉडी लैंग्वेज की बात करी। अब बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी चीज होती है जिसमें हम ना बोलते हुए भी, अभी तक तो हमने बात करी पिछले की 2 स्लाइड्स में कि आप जब बोले तो सही बोले, कॉन्फिडेंस से बोले, अपनी कम्युनिकेशन में जो पिच है उस पर ध्यान रखिए, अपने जो भी आप कहना चाह रहे हैं उसे प्रिपेयर करिए। लेकिन इंटरव्यू में जब हम जाते हैं, जब हम वेटिंग एरिया में बैठे होते हैं ना, तभी भी कई बार हम इवैल्यूएट हो रहे होते हैं या हो सकता है कि लोग हमें देख रहे हो कि हम कैसे बैठे हैं, हम कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं दूसरे लोगों से जो हमारे साथ इंटरव्यू देने आए हैं। तो जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है या जो हमारे जेस्चर्स हैं जब आप इंटरव्यू के लिए देने जाते हैं, वो बहुत बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस की हमने बात करी, लेकिन कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? हम जब नर्वसनेस अपने अंदर कम कर देंगे, नर्वसनेस कैसे कम करेंगे जब हम प्रिपेयर करके जाएंगे, और प्रिपेयर कैसे करेंगे उसकी बात हमने ऑलरेडी करी है. आप कॉन्फिडेंस रखिए कि आप उस इंटरव्यू के लिए सही कैंडिडेट हैं कि नहीं. रिसर्च करिए, अपने बारे में पॉइंट्स लिखिए, आपकी क्या स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं, आप क्यों, आप ही क्यों वो कैंडिडेट हैं जो इस जॉब के लिए अप्रोप्रिएट है, ये सब चीजें, तो ऑलरेडी आपकी नर्वसनेस काफी कम हो जाएगी. बट ये मत सोचिए कि यही 5 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, बट जब आपने इन 5-6 क्वेश्चंस का आंसर दिया, कहीं ना कहीं आंसर इसी में ही छुपा होगा. आप एक पीसफुल माइंड से जाइए, एक इंटरव्यू है, कुछ नहीं होगा तो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो आप गेन करके बाहर निकलेंगे, कुछ नए लोगों से आप बातचीत करके निकलेंगे, उनको ऑब्जर्व करिए कि और कैंडिडेट्स कैसे जो आए हैं वो कैसे अपने आप को कंडक्ट कर रहे हैं. तो कहने का मतलब यह है कि नर्वस होने का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि आपकी नर्वसनेस आपके हाव भाव में साफ दिख जाएगी, क्योंकि सामने वाले बहुत एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं. मैंने पहले भी बताया कि जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करिए. कई वीडियोस हैं ऑनलाइन, उन वीडियोस पे आप प्रैक्टिस देख सकते हैं कि हम जो क्वेश्चन को पूछते हैं उनके आंसर किस तरीके से तैयार करें. मैंने कहा कि हम इस पे भी एक सेशन कर सकते हैं अगर हम सबका इंटरेस्ट होगा तो. तो कोई बता सकता है कि ये जो पिक्चर हम देख रहे हैं इनमें मैंने ऑलरेडी वैसे कुछ इंडिकेशन दे दिया है, बट कोई डिस्क्राइब कर सकता है कि क्यों मैंने क्रॉस लगाया है? ये जो ब्लू शर्ट में जेंटलमैन बैठे हैं इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसके ऊपर मैंने क्यों एक बड़ा सा रेड क्रॉस लगाया है? ऐसा क्या गलत है? उनके चारों फोटोज हैं, एक एक करके अगर आप बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इन चारों फोटो में, मुझे क्या, क्यों मैंने क्रॉस लगाया है इसके ऊपर, या अगर आपको सही लग.
2: हाँ जी मैम, आई थिंक इनकी सिटिंग पोजीशन ना करेक्ट नहीं है.
0: इनकी करेक्ट क्या होता है? व्हाट इज करेक्ट?
2: मैम अपना बैक स्ट्रेट करके बैठना, अपने दोनों आर्म्स अपने लैप में रखना, अपने लेग्स दोनों बिल्कुल स्ट्रेट और पास में रखना, इस तरह से आई थिंक दीज काइंड्स ऑफ सीटिंग सिचुएशंस और पोजीशंस आर करेक्ट.
0: करेक्ट हो सकता है. क्या होता है कि कई बार ही ना, जैसे आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, 200 लोग आए हैं, 100 लोग आए हैं, वॉक इन इंटरव्यू है. आप कभी अगर गए हैं वॉक इन इंटरव्यू के लिए, मैं खुद गई हूँ वॉक इन इंटरव्यूज के लिए, तो 100-100 लोग होते हैं और वो टाइम दे देते हैं सुबह 9 बजे से और सभी लोग पहुंच जाते हैं. वॉक इन इंटरव्यू का मतलब है जो पहले पहुंचा उसका इंटरव्यू होगा, उसमें आपको कोई टाइम नहीं दिया जा रहा. जैसे रीड में अगर आते हैं तो आपको टाइम दिया जाता है, मैम आपको पर्सनली मिलती है, ऐसा नहीं होता हर जगह पे. ये होता है कि 100 पीपल आ गए, ठीक है, उनको 20-20 के बैच में डिवाइड कर देते हैं और फिर उनका एक ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं. ग्रुप डिस्कशन में से वो 5-6 लोग निकालेंगे हर एक ग्रुप में से, और 5-6 लोगों में से वो पर्सनल इंटरव्यू करेंगे और फिर पैनल डिस्कशन होगा. तो कई बार ऐसे लेयर्स क्रिएट कर देते हैं क्योंकि ये एचआर वालों का काम होता है. तो अब बहुत टाइम से आप बैठे हैं, आपको उबासी आ रही है और आप बोर हो रहे हैं, आप अपने पैरों के साथ फिडल करना शुरू कर रहे हैं, तो ये एक एक ह्यूमन टेंडेंसी. आप कितनी देर आराम से एक कॉन्फिडेंट नर्वस ना हो के बैठे रह सकते हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं है. लेकिन जब आप जा रहे हैं ग्रुप डिस्कशन के लिए या कुछ है तो आप इंटरेस्टेड लगिए. अब ये जो लास्ट में फोटो है ये कुछ फेक स्माइल लग रही है कि ये फेक दिखा रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ. ये देखने वाले को साफ पता चल जाएगा कि ये फेक स्माइल है. उबासी ले रहे हैं, बोर ऐसे करके बैठे हैं तो बोर हो गए, यानी कि वो इंटरव्यू देने आए हैं लेकिन वो बोर हो गया. तो ये सब चीजें ना नेगेटिव इम्प्रेशन देती हैं. हो सकता है आते जाते आपका इंटरव्यू देखना देख रहे हो, या आप सीसीटीवी लगा है उसमें वो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं. हो सकता है आप कस्टमर सर्विस में हो तो वो चाहते हैं कि वो ये देखें कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कितनी पॉजिटिव है कितनी नेगेटिव है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप वेटिंग एरिया में बैठे हैं, चाहे आप इंटरव्यूअर के सामने बैठे हैं, आप पैनल डिस्कशन में बैठे हैं, अपनी बॉडी को पॉजिटिव रखिए. पॉजिटिव कैसे रखते हैं? ना तो बहुत ही खुश, ऐसे खुश दिखाने की भी बहुत जरूरत नहीं है जो हम लास्ट फोटो में देख रहे हैं, ना तो ऐसे दिखाने की कोई जरूरत. नॉर्मल जैसे आप कॉन्फिडेंटली बैठेंगे एक प्रोफेशनल एनवायरमेंट में वैसे आप बैठिए. कई लोगों को आदत होती है अपना पूरा पैर फैला के एकदम, मतलब बिल्कुल पैर आगे करके या पैर को फिडल करके ऐसे ऐसे पैर चलाते हैं कई लोग. कोशिश करिए ये ना हो, ये ना करें जब हम किसी वेटिंग एरिया में या जॉब इंटरव्यू के लिए या इंटरव्यू के सामने बैठे हैं. पेंसिल को कभी कभी मुंह में डाल लेते हैं, पेन पेंसिल को, ये सब चीजें अवॉइड करना चाहिए। तो पोस्चर, यानी कि जहां हम बैठे हैं हमारा पोस्चर प्रोफेशनल दिखना चाहिए। सो सिट स्मार्ट, सिट कॉन्फिडेंटली, एंड दिस कॉन्फिडेंस विल शो इन योर किसी ने चैट में कुछ लिखा है जस्ट, ये जो फोटो आप देख रहे हैं ना, ये लेडी की 8th रैंक आई थी, ये IAS का इंटरव्यू दे रहे हैं। इंटरव्यू पैनल में 4 लोग बैठे हैं, ये IAS का इंटरव्यू चल रहा है। आप इस लेडी की पोजीशन देखिए, कैसे वो बैठी है, ना तो ज्यादा झुक के बैठी है, ना तो ज्यादा ही अलर्ट बैठी है, कि एकदम अलर्ट भी नहीं बैठी है, बहुत कॉन्फिडेंस से। मैं जानती हूँ कि इनको बहुत प्रैक्टिस कराई जाती है, बट मैं ये दिखाना इसलिए चाहती थी कि इस तरीके का भी अगर प्रोफेशनल इंटरव्यू चल रहा है तो उसमें भी किस तरीके से वो अपने आप को तैयार करके गई होंगी, क्या उन्होंने पहना है, किस सिंप्लिसिटी से वो अपने आप को प्रेजेंट कर रही हैं। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हम किसी पैनल ऑफ इंटरव्यू में जाते हैं या इवन पर्सनल इंटरव्यू में जाते हैं। कई बार क्या होता है कि हम जो जो क्लोथ्स, मैंने कहा था कि आप अपना जो क्लोथ्स है, जो आप पहनने वाले हैं, आप पहले से डिसाइड करके रखिए। थोड़ा टाइम हम इस पे देना चाहेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आजकल आजकल हम लोग कई चीजें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि प्रोफेशनल और पर्सनल थोड़ा डिफरेंट है। हम डोंट टेक मी रॉन्ग, बट कई बारी हम जिस तरीके के कपड़े पहन, चॉइस ऑफ क्लोथ्स कैन ऑल्सो डिटरमाइन समटाइम्स द काइंड ऑफ पर्सन वी आर। कंप्लीटली डू नॉट टेक मी रॉन्ग, सबको फ्री चॉइस है, फ्रीडम है, बट वो हमारी पर्सनल लाइफ में वो फ्रीडम है। प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा प्रोफेशनली ड्रेस्ड अप होंगे तो चांसेस ये है कि एटलीस्ट इन द इंटरव्यू स्टेज आप अपने जो सिलेक्शन होगा वो आपके स्किल के बेसिस पे होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मेल है, कोई आदमी या बॉय इंटरव्यू के लिए जा रहा है, तो एक प्लेन टी शर्ट, चेक टी शर्ट, सॉरी प्लेन शर्ट, चेक शर्ट, अच्छी कलर में, नॉट वेरी ब्राइट येलो रेड, इन सबको अवॉइड करते हुए। हमने कलर थेरेपी पे कई सेशन करे हैं। कलर थेरेपी में भी बोला जाता है कि व्हाइट कलर, ब्लू कलर, अर्दी कलर्स जो है वो पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं। कुछ जो बहुत ब्राइट कलर्स होते हैं, ज्यादातर वो इन द आई लगते हैं और वो इतनी पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट नहीं करते हैं। तो आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट। तो अगर आप चाह रहे हैं कि यू नो यू डोंट हैव टू बी फ्लैशी, आप में जो क्वालिटी है वो आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा, ना कि आपने जो पहना है, आपने क्या हेयर स्टाइल बनाया है, वो डिसाइड नहीं करेगा। तो अगर कोई मेल मेंबर जा रहे हैं, साफ प्रेस हुई भी है, नहीं प्रेस हुई है, लेकिन साफ शर्ट डिसेंट कलर में, बहुत ब्राइट ना हो, मतलब बहुत कुछ उसमें जाजी कुछ ना बना हो, क्योंकि आजकल तो फैशन की दुनिया में एवरीथिंग सेल्स। बेसिक ट्राउजर, कार्गोज मत पहन के जाइए, जीन्स मत पहन के जाइए। इट्स जस्ट अ सजेशन फ्रॉम माय साइड एज अ लिटिल बिट मोर मैच्योर पर्सन, जस्ट अ सजेशन। फ्लिप फ्लॉप्स मत पहन के जाइए, ओपन जो हमारे आते हैं आजकल, फ्लिप फ्लॉप्स आप जानते होंगे, चप्पलें जो होती है, चप्पलें तो बिल्कुल ही नहीं, क्या बोलते हैं उसको, सैंडल बोलते हैं, वो जो एक बकल के साथ आता है जिसमें आपका थोड़ा पैर दिखता है। तो मेल मेंबर्स के लिए होता है कि बारिश बहुत हो रही है, हम शूज नहीं पहन के जा सकते, अंडरस्टैंडेबल, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट इज वेरी अंडरस्टैंडेबल। बट नॉर्मल सिनेरियो में कोशिश करिए कि बंद जूते पहन के जाएं, साफ हो जूते, चमकने नहीं बट साफ तो हो कम से कम। कंघी करके जाइए, तेल मत लगाइए, कुछ लोगों को तेल लगाने का आदत होता है तो मत लगाइए, कई बार सामने वाले को किसी चीज से एलर्जी होती है, इरिटेशन हो सकती है। आप अपने नेल्स क्लिप करके रखिए, साफ रखिए, क्योंकि जब आप बात करेंगे आपके हाथ जरूर दिखेंगे। जैसे मेरी बहुत आदत है हाथ को यूज करने की, ऐसे अगर किसी की आदत है तो प्लीज आप अपने नेल्स का साफ रखिए ध्यान से। तो ये हुई मेल मेंबर्स की बात, जस्ट अ सजेशन अगेन, प्लीज डू नॉट टेक मी रॉन्ग। फीमेल के केस में कोशिश ये करिए कि जो आप कपड़े पहन के जा रहे हैं, आप अगेन यू रिसर्च अबाउट द कंपनी, उनका कल्चर कैसा है, ट्राई and stick to clothes that you are most comfortable in. kurta hai, sari hai, even agar skirts aap pehne ja rahe hain uski length ka dhyan rakhiye. koshish kariye bade bade jhumke nahi pehen ke jane, बड़े बड़े झुमके हो, बहुत सूट भी अगर आप पहन रहे हैं तो प्लेन कॉटन का। आप देखिए वो आईएएस के इंटरव्यू के लिए आई है, उसने एक बेज कलर का सूट पहना है, मरून कलर का दुपट्टा है, ना तो कोई बड़े झुमके हैं ना तो कोई ज्वेलरी उसने पहनी है, क्योंकि वो चाहती थी, ये जो फोटो है इसकी बात मैं कर रही हूँ, क्योंकि वो चाहती थी कि वो जो बोल रही है, जो उन्होंने सीवी में लिखा है, उस पे एम्फेसिस हो उन चारों लोगों का जो इंटरव्यू करने उसको उनको बैठेंगे। अब देखिए चारों का ध्यान उसी तरफ है जो वो बोल रही है, किसी का भी ध्यान इधर उधर नहीं है। आपका हेयर स्टाइल जो है, मेन वुमेन गर्ल बॉय सभी का क्लीन एंड नीट होना चाहिए, बहुत बड़ा हेयर डू नहीं चाहिए, और मतलब बेसिक नीट एंड क्लीन आपका अटायर होना चाहिए। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, कई बार क्या होता है डिस्ट्रैक्शन से ज्यादा आप खुद ही कभी फंस जाएगा कुछ कान में और आप खुद ही परेशान हो जाते हैं। अगर कंफर्टेबल क्लोथ्स नहीं है तो हो सकता है गर्मी लग रही हो बहुत ज्यादा। ट्राई नॉट टू वियर एनीथिंग लाइक अ पार्टी, आप किसी पार्टी में नहीं जा रहे, आप किसी प्रोफेशनल कंडक्ट में जा रहे हैं, तो उसी तरह बहुत ज्यादा मेकअप मत करके जाइए। बेसिक बेसिक जो चीजें हैं, आप लिप ग्लॉस लगा सकते हैं, बेसिक आप आईलाइनर लगा सकते हैं, बट बहुत मेकअप करके मत जाइए। इट डिस्ट्रैक्ट्स द अदर पर्सन फ्रॉम व्हाट यू आर सेइंग। दिस इज जस्ट सम टिप्स अबाउट दैट, अबाउट व्हाट यू कैन वियर। किसी और का कोई पॉइंट है तो वो आप लिख लीजिए, हम जरूर डिस्कस करेंगे। वी कैन कम बैक टू इट इन फ्यू मिनट्स। मैं टाइम देख रही थी कि मैं ज्यादा टाइम तो नहीं ले रही हूँ। अपना फोन जरूर से जरूर साइलेंट पे रखिएगा, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन रहता है। जैसे मैंने अभी अपना फोन चेक किया टाइम के लिए, तो ये जरूर करिएगा कि आप अपना फोन को डिस्ट्रैक्ट करें। सोशल मीडिया पिंग पिंग पिंग पिंग पिंग करता रहता है, कभी कभी हम बात कुछ करें टिंग टिंग की आवाज पीछे से आती है, प्लीज अवॉइड दैट। जब आप बात कर रहे हैं तो आप रिलैक्स्ड मैनर में डीप ब्रीदिंग के साथ पेशेंटली आप बात करेंगे, और अपनी पाम्स को हमेशा ओपन रहेंगे, क्योंकि अगर आप बात करते हुए ऐसे ऐसे करेंगे ना तो ऐसे लगेगा कि आप थोड़ा नर्वस हो रहे हैं, या कभी कभी हम ऐसे हाथ दबा के बात करते हैं, या दुपट्टा है तो दुपट्टे को दबा लेते हैं अपने हाथ में कि पीछे से कॉन्फिडेंस आ रहा है, हाँ आ रहा है आ रहा है, अवॉइड करिए। अगर पेन पेंसिल हमारे हाथ में होती है, कभी कभी हम अनकॉन्शियसली उसको चबाने लग जाते हैं। हो सकता है हम पैनल में बैठे हैं, 10 लोग हैं, और आपसे सवाल नहीं पूछा जा रहा, सवाल किसी और से पूछा जा रहा है, तो आप पेन चबा रहे हैं उतनी देर, या पेंसिल चबा रहे हैं उतनी देर, या फिर आपके हाथ में कोई पेपर है उससे आप वो, मेरी बहुत आदत है कि पेपर पे मैं वो छोटे छोटे छोटे छोटे कुछ ड्रॉइंग ऐसे करने लग जाती हूँ। तो इंटरव्यू के टाइम पे प्लीज वो अवॉइड करिए, ये सारी चीजें डिस्ट्रैक्शन रहती है। अपना पैर मत हिलाइए, पैर हिलाना या फुट हिलाना, नोज पिकिंग करना कंप्लीटली नो, हम सभी को ये बातें पता है, बट कहीं ना कहीं जब हम नर्वस होते हैं तो ये एक नर्वस रिएक्शन हमारे हमारे पीछे से वो माइंड उसको कोशिश करता है कि हम किस तरह से वो नर्वसनेस को, कभी कभी बहुत लोग पानी बहुत पीते हैं इंटरव्यू में, फिर पानी बहुत पियेंगे तो वो भी एक शो है कि नर्वसनेस आ रही है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा अपने आप को कॉन्फिडेंस शो कर सकते हैं। बिलीव इन योर सेल्फ, आपको वो स्किल आती है क्योंकि आपने वो रिसर्च करी है कि इस जॉब को किस स्किल की जरूरत है, तभी आपने अपने आप को जॉब के लिए अप्लाई किया है। ड्रेस योर सेल्फ प्रॉपरली फॉर द प्रोफेशनल थिंग दैट यू आर गोइंग, यू आर नॉट गोइंग फॉर अ कल्चरल इवेंट, आप किसी शादी के लिए या किसी पार्टी के लिए नहीं जा रहे हैं। डोंट ड्रेस लाइक यू आर गोइंग फॉर अ मैरिज। पर्सनल लाइफ में आप कैसे भी ड्रेस करें, प्रोफेशनल में सर्टन बेसिक एटिकेट्स आर देयर, वी शुड फॉलो दोस थिंग्स। कई कई ऑर्गेनाइजेशन में यूनिफॉर्म भी होती है, आप ये आप तो सोचिए कि बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स हैं जो जैसे मारुति में काम कर रहे हैं, या बहुत सारी ऐसी होटल्स हैं जिनमें अपनी यूनिफॉर्म होती है, तो आप ये सोचिए कि उनका तो प्रोफेशनल, उनको अटायर मिलता है, उनको साड़ी ही पहनना होता है, मंडे को अलग, ट्यूजडे ऐसे अलग अलग कलर्स की साड़ीज मिलती हैं। तो आप ये देखिए जो वो इतना प्रोफेशनल अटायर को सीरियसली ले रहे हैं, तो आपको भी अपनी तरीके तरफ से कोशिश करना है। हम ये नहीं कह रहे कि बहुत अच्छे ब्रांड का शर्ट लेके जाओ या बहुत अच्छा क्वालिटी का सूट पहन के जाओ, बेसिक साफ नीट एंड क्लीन अपने आप को, क्योंकि ड्रेसिंग को मैंने देखा है बहुत लोग बहुत कैजुअली लेते हैं, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा टाइम इस पे स्पेंड कर रही हूँ। अगर आपकी कम्युनिकेशन है वर्बली आप कर रही है, रिटन में भी कभी कभी लिखने को बोलते हैं. हम कभी कभी ना कुछ जब इंटरव्यू चल रहे होते हैं हम बोलते हैं कि ठीक है आप एक पैराग्राफ लिख के दे दीजिए. आप जिस भी भाषा में लिख सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, आप उसमें लिख के दीजिए, बट क्लियर और क्रिस्प में लिख के दीजिए. ऐसे मत लिखिए, शॉर्ट में लिखिए क्या कहना चाह रहे हैं. प्रैक्टिस करके जाइए उस चीज के लिए, बहुत ज्यादा जरूरी है. फिर से मैं कह रही हूँ, कंपनी के बारे में एडवांस रिसर्च करके जाइए. वो कौन इंटरव्यू ले रहा है, कई एचआर के नाम दिए होते हैं वेबसाइट पे, तो आपको थोड़ा फेमिलियर हो सकते हैं. आप देख सकते हैं कि सारे जो एचआर के लोग हैं वो कभी कभी वेबसाइट पे लिखा होता है कि इंटरव्यू कौन लेंगे. तो जितना ज्यादा आप कंपनी के बारे में जानेंगे आपका कॉन्फिडेंस उतना बढ़ेगा. ट्राई एंड रिमेन काम, प्रैक्टिस पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, बी पोलाइट, बी कर्टियस टू द इंटरव्यूअर, क्योंकि उसका ये काम है. अगर वो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे कि अभी सुनी किसी ने बताया था कि वो ऐसी सिचुएशन में आपको डालने की कोशिश करेंगे कि वो जज करेंगे कि अलग अलग सिचुएशन में अगर हम आपको डालते हैं तो आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे. तो आप पोलाइट रहिए, कर्टियस रहिए. अगर कुछ नहीं आता तो आप कह सकते हैं आई एम अ गुड लर्नर, मैं जल्दी सीख लेता हूँ, ये मैं जल्दी सीख लेती हूँ. अगर आप सिखाएंगे, अगर मुझे कोई सिखाएगा तो मैं सीख लूंगा. बट आप हर क्वेश्चन के लिए ये नहीं बोल सकते. कोई ऐसी स्पेसिफिक स्किल जो आपको लगता है इस जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अगर आप कमिट कर रहे हैं कि आप सीख लेंगे तो जरूर सीखिए. ये नहीं कि सिर्फ सिर्फ कहने के लिए, जॉब एक्वायर करने के लिए नहीं. अगर आपने एक बार कमिटमेंट करिए तो आपको सीखना भी पड़ेगा. So if you don't know the answer, you can say that I do not know about this particular thing, but I can do the research and get back to you. उसमें कोई दिक्कत नहीं है. वो समझ जाएंगे कि आप फिडल कर रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, या आपको वाकई में पता है इस बारे में कि नहीं पता है. अपनी रिज्यूमे की कॉपीज हैंडी रखिए जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं. अगर आपने ईमेल से भेज भी दिया है तभी भी आप अपनी इंटरव्यू की एक या दो कॉपीज करा के जाइए. आपके सर्टिफिकेट्स हैं, उन सर्टिफिकेट के ओरिजिनल भी कई बार लोग देखना चाहते हैं. एक अच्छा सा, महंगा नहीं, अच्छा सा फोल्डर खरीद लीजिए. फोल्डर में पॉकेट्स होती हैं, अपने सारे सर्टिफिकेट्स नीटली उन पॉकेट्स में रखिए. कोई पूछता है, कोई मांगता है तभी उसे दिखाइए. बिकॉज आपने सीवी में ऑलरेडी लिख दिया है कि आपने कौन कौन से कोर्सेस करे हैं, आपका जॉब एक्सपीरियंस क्या है, कहीं पे वॉलंटियर किया है कि नहीं, वो आपने सीवी में ऑलरेडी कर दिया है. आप चाहें तो रेज्यूमे राइटिंग पे भी हम एक सेशन कर सकते हैं, बट ये चीजें आपने ऑलरेडी सीवी में लिख दी है. तो कोई सर्टिफिकेट अगर मांगते हैं या कभी कभी एचआर में जमा कराने पड़ते हैं तो आप कहेंगे अच्छा आज तो है नहीं, मैं कल दे जाऊंगा या दे जाऊंगी, तो वो अवॉइड करिए. अननेसेसरली कोई जरूरत ही नहीं है, कौन फॉलो अप करेगा नहीं करेगा. हैंडी रखिए, कोई पूछता है तो वहीं पर उसकी कॉपी सबमिट करके आइए. अपना आई कांटेक्ट कभी भी लूज मत करिएगा अपने इंटरव्यूअर के साथ. हमेशा पोलाइटली चीयर, मतलब बहुत खुश नहीं, अभी हमने फोटो में देखा था कि वो आदमी कुछ ज्यादा ही खुश लग रहा था. इस तरीके का फेस नहीं रखना, उदास नहीं रखना, खुश और कॉन्फिडेंट फेस रखना है. बट इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली अपनी जो स्किल है जिस इंटरव्यू के लिए हम अप्लाई करने जा रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी का है तो आप अपनी स्किल्स जो है ब्रश अप करके जाएंगे. टैली का इंटरव्यू है, आप टैली की लेटेस्ट क्या क्या टेक्नोलॉजी चल रही है उसके बारे में रिसर्च करके जाएंगे. हेल्थ वर्कर्स की कोई नर्सिंग का कोई अपॉइंटमेंट निकला है, आप नर्सिंग की अपॉइंटमेंट के लिए जा रहे हैं. आप आजकल कौन कौन सी बीमारियां चल रही हैं, उनमें क्या क्या चीजें, अगर कोविड का टाइम अभी जैसे चल रहा है, आप पूरी रिसर्च करके जाएंगे कि फर्स्ट वेव में क्या हुआ, सेकंड वेव में क्या हुआ. आपको कोई डॉक्टर बनने को नहीं कह रहा, बट जो एज ए नर्स, एज ए असिस्टेंट आपको पता होना चाहिए फर्स्ट एड के बारे में, बेसिक दवाइयों के बारे में, आपको वो चीजें रिवाइज करके जानी है, तभी आप कॉन्फिडेंटली बात कर पाएंगे और तभी आपका नर्वसनेस कम होगा. आप टीचर है, आप ब्यूटिशियन है, आप एक्सपर्ट अपेरल, किसी अपेरल कंपनी में आप जा रही हैं, आपको सिलाई आती है, आप बढ़िया एकदम फर्स्ट क्वालिटी की सिलाई करते हैं, आप अपने सैंपल साथ लेके जाइए. जो हम सैंपल रजिस्टर वो बनाते हैं आपका रजिस्टर, उसको साथ लेके जाइए. अगर जैसे कि मैंने बताया, अगर वो कुछ नहीं आता, यू कैन ऑलवेज से कि मुझे अभी नहीं आता, मैंने इस चीज की कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया, लेकिन मैं एक फास्ट लर्नर हूँ, मैं ये सीख सकता हूँ, सीख सकती हूँ अगर मुझे सिखाया जाए। अपनी रेफरेंसेस, चाहे रेफरेंसेस का मतलब जो लोग आपके बारे में, आपसे हटके, क्योंकि मैं अपने बारे में बताऊं और मेरे बारे में कोई और बताए, थोड़ा फर्क पड़ता है। रेफरेंसेस उसको बोलते हैं जो आपके बारे में फीडबैक दे सके। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके टीचर्स हो सकते हैं। ज्यादातर फ्रेंड्स के रेफरेंसेस मत दिया करिए, कोई भी मेरे दोस्त से पूछ लीजिए, ऐसा नहीं होता। रेफरेंसेस की भी अपनी एक क्वालिटी होनी चाहिए, या तो वो आपके टीचर्स हो सकते हैं अगर आपने, या फिर कोई ऐसा प्रोफेशनल हो सकता है जो आपकी फैमिली में है। आप प्रेशर है लेकिन कोई प्रोफेशनल आपकी फैमिली में, फादर मदर को छोड़ के, इमीडिएट फैमिली को छोड़ के, आप उनका रेफरेंस दे सकते हैं। अगर आपने कहीं ऑलरेडी काम करा हुआ है, अगर आप सेकेंड थर्ड फोर्थ जॉब, 10th जॉब के लिए जा रहे हैं, तो उस इंसान का रेफरेंस दीजिए जो आपको, जिसके साथ आपका कंडक्ट अच्छा है और वो आपके बारे में अच्छे रेफरेंस देंगे, और उनकी खुद की भी एक स्टैंडिंग होनी चाहिए। उन रेफरेंसेस को आप पहले से बता दीजिए कि आप इस जॉब के लिए जा रहे हैं, हो सकता है आपको इनसे फोन आएगा मेरे बारे में चेक करने के लिए। अगर आप फाइनल पोजीशन के लिए नहीं भी सिलेक्ट होते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एक एक्सपीरियंस हुआ, आप जॉब इंटरव्यू में गए, आपको एक एनवायरनमेंट में पता चला कि आप किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, आप वापस घर आइए। आप नहीं सिलेक्ट होते तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए प्रिपेयर करिए। डोंट लूज योर हार्ट कि अगर एक इंटरव्यू में नहीं हुआ, 10 इंटरव्यू में नहीं हुआ, लेकिन एनालाइज जरूर करिए कि क्यों, मेरा क्यों नहीं हुआ। वो एनालाइज आप तभी कर पाएंगे जब आप पहले ही जितने स्टेप्स थे आप उन पे काम करेंगे। आप कंपनी के बारे में जानकारी लेंगे, आप अपनी स्किल्स को ब्रशअप करके चलेंगे, आप कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू में अपियर होंगे, एंड योर रेफरेंसेज आर गुड, आपकी अच्छी रेफरेंसेज होंगी, और आप मतलब बिल्कुल पोजीशन से अप्रोप्रिएट आपका स्किल होगा। ऐसा नहीं कि पोजीशन हेल्थ वर्कर्स के लिए आती है आपको सुइंग है और आप हेल्थ वर्कर्स के लिए देने चले गए, आती है आपको स्टिचिंग एंड सुइंग है, या स्टिचिंग एंड सुइंग अपेरल का कोई है, आता आपको ब्यूटिशियन का कोर्स है और देने चले गए आप स्टिचिंग एंड सुइंग के उसके लिए, तो वो मिसमैच हो जाएगा। टैली आपको आता ही नहीं, कभी आपने सीखा ही नहीं, तो आप इंटरव्यू देने चले गए, आप कभी भी सिलेक्ट नहीं हो सकते। चाहे आप कितना भी कॉन्फिडेंट हो जाएं, जितना भी अच्छे आप ढंग से अपने कपड़े पहन के चले जाएं, कितने भी अच्छे से आप इंटरव्यू से, आप ये नहीं कह सकते आई विल लर्न ऑन द जॉब, आई एम अ फास्ट लर्नर। नो, दैट वाज द स्किल रिक्वायर्ड फॉर द जॉब। हाँ, उसमें वो बोले कि अच्छा आप टैली में कर लेते, क्या आप ईमेल राइटिंग आती है? अगर आपको ईमेल राइटिंग नहीं आती लेकिन टैली आता है, तो आप बोल सकते हैं कि देखो बेसिक इंग्लिश आती है, ईमेल राइटिंग में सीख लूंगा। लेकिन मेरा ये सजेशन है, कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो हम एज ए प्रोफेशनल, चाहे हमें 5 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, 0 साल का एक्सपीरियंस है, कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो हमें लगातार सीखते रहना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट होता है। वो ऐसी स्किल्स हैं कि जैसे एमएस ऑफिस हो गया। एमएस ऑफिस क्यों हमेशा, क्योंकि इसमें नए नए वर्जन आते हैं, हर वर्जन के साथ कुछ ना कुछ नया टेक्नोलॉजी एड ऑन हो जाता है। ईमेल राइटिंग इज एन आर्ट, मतलब इसमें कितने कितने कोर्सेज लोग करते हैं, क्योंकि किस तरीके से आप ईमेल लिख सकते हैं जो दूसरे को कन्विंस कर सकता है आपकी बात को मानने के लिए। इंग्लिश में ना डरना नहीं चाहिए। बेसिक इंग्लिश के कुछ वर्ड्स होते हैं, आप देखिएगा ज्यादातर लोग वही 50-60 वर्ड्स के अंदर अंदर ही बेसिक कॉन्वर्सेशन कर लेते हैं। हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत, जैसे कि वो कहते हैं ना, जैसे कि जैसे शशि थरूर को आपने कभी अगर तो इंटरव्यू किसी ने देखा होगा, तो वो जिस लेवल की इंग्लिश, या सुधा मूर्ति जिस तरह की इंग्लिश यूज करते हैं, हमने उस इंग्लिश में बात नहीं करनी। बेसिक चीज मैंने बोली आपकी समझ में आए, आपने बोली मेरी समझ में आए, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन, उस शब्द को कहाँ यूज करना है, वो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस ऐसी अवेलेबल हैं, ऑनलाइन है और फ्री है, और आपको जॉब में हेल्प करेगी ये। जैसे ही आप अपने सीवी में डालते हैं, आपका आपका लेवल थोड़ा हाई हो जाता है एज अ कैंडिडेट। सो दिस वॉज इट। आई डोंट नो इफ दिस इज यूजफुल और नॉट, बट आई थॉट, बहुत सोचा कि बहुत हैवी हो रहे थे वो सेशंस, तो हम कौन सा ऐसा कुछ टॉपिक पकड़ सकते हैं जो सबके सबके लिए जरूरी है. आप बेसिक कम्युनिकेशन स्किल अगर ले लेते हैं और इंटरव्यू स्किल ले लेते हैं तो भी हम एटलीस्ट किसी लेवल पे पहुंच सकते हैं. बाय, सब अपना ध्यान रखेंगे, कोरोना
3: यस
0: से
3: मैम,
0: बच के
3: थैंक यू
0: रहेंगे.
3: सो मच
0: बाय
3: मैम.
0: बाय बाय.

0: विज्ञान वाणी के विज्ञान वार्ता प्रसारण में आपका स्वागत है।
1: विटामिन विटामिन ऐसी चीज है जिसे अगर खाया नहीं जाए तो हम बीमार पड़ सकते हैं। विटामिनों की ये परिभाषा नोबल पुरस्कार विजेता अल्बर्ट स्ट्रेंसगियोर्गी ने दी थी। उन्होंने विटामिन सी का पता लगाया था और जीवित कोशिकाओं में इसकी भूमिका की खोज की। विटामिन मानव शरीर के सामान्य विकास और कार्य संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इनमें से कुछ विटामिन तो मेटाबॉलिक क्रियाओं यानी कि शरीर की चयापचय क्रियाओं में कोएंजाइम की तरह से काम करते हैं। कोएंजाइम एक ऐसे गैर प्रोटीन पदार्थ हैं जो कुछ एंजाइम के साथ मिलकर जटिल संरचनाएं बनाते हैं। एंजाइमों के सुचारू रूप से कार्य संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक है। विटामिन कोशिकाओं की झिल्ली के निर्माण और रखरखाव में मदद करते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण और चयापचय में भी ये सहायक हैं। जीवित कोशिकाओं में कई जरूरी प्रक्रियाओं में इनकी भूमिका रहती है। जीव जंतुओं को अधिकतर विटामिन बाहर से प्राप्त होते हैं, ये उनके शरीर में नहीं बनते। सिर्फ विटामिन बी और विटामिन डी के निर्माण में जीवों की कुछ भूमिका रहती है। विटामिन डी पाचन प्रणाली में मौजूद सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं और विटामिन डी धूप में त्वचा द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ खास तरह के भोजन की आवश्यकता के बारे में विटामिनों की खोज से काफी पहले से पता था। 1970 के दशक में स्कॉटलैंड के एक डॉक्टर जेम्स लिंड ने पता लगाया कि स्कर्वी नाम की बीमारी नींबू का रस पीने से दूर हो जाती है। एक डच चिकित्सक क्रिश्चियन इजिकमैन ने 1890 में बेरीबेरी बीमारी और कुछ खाद्य पदार्थों के बीच संबंध स्थापित किया। 1906 में ब्रिटेन के जैव रसायनज्ञ सर फ्रेडरिक गार्लिन हॉपकिंस ने पता लगाया कि जब जब चूहों को एक खास तरह की खुराक दी जाती है तो उन्हें जीवित रखने के लिए सहायक तत्वों की भी जरूरत पड़ती है। पोलैंड के रसायन शास्त्री कैसिमर फंक ने 1912 में सबसे पहले बेरीबेरी बीमारी की रोकथाम के तरीके का पता लगाया। उन्होंने इसे विटामिन यानी विट प्लस अमीन नाम यानी अमीन नेसेसरी फॉर लाइफ दिया। लैटिन भाषा में जीवन को वाइटा कहा जाता है। आज भलीभांति इस बात का पता लग चुका है कि बेरीबेरी बीमारी की रोकथाम करने वाला तत्व और कुछ नहीं बल्कि विटामिन B1 ये थायमिन है। थायमिन एक रासायनिक यौगिक है जिसमें अमाइनो समूह मौजूद रहता है। शीघ्र ही सहायक तत्व के स्थान पर विटामिन शब्द का उपयोग किया जाने लगा। बाद में ये भी पता चला कि विभिन्न विटामिनों के अलग अलग रासायनिक गुण होते हैं। कुछ में तो अमीनो समूह जरा भी इस्तेमाल नहीं होता मगर फंक द्वारा इजाद किया गया विटामिन शब्द इस्तेमाल होता रहा। सिर्फ विटामिन की अंग्रेजी स्पेलिंग में से आखिरी अक्षर मा हटा दिया गया। तरह तरह के भोजन में कई तरह के विटामिन पाए जाते हैं। विटामिनों को दो वर्गों में बांटा जाता है। पहले वर्ग में वे विटामिन आते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, जैसे कि विटामिन सी और विटामिन बी। दूसरे वर्ग में वसा में घुलने वाले विटामिन जैसे कि ए डी ई और के शामिल हैं। विटामिन ए या रेटिनल हमारी आंखों के दृश्य रंगों का आवश्यक घटक है। वसा में घुल सकने वाला ये विटामिन बीटा कैरोटीन नाम के पदार्थ से बनाया जाता है। इस विटामिन के प्रमुख स्रोत हैं मछली का तेल, कलेजे का मांस, दूध और इससे बनने वाले पदार्थ, फल तथा सब्जियां आदि। बीटा कैरोटीन जिसे कि विटामिन ए बनाया जाता है हरी पत्तेदार सब्जियों में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इस विटामिन की कमी से मुंह तथा श्वास नलिका की झिल्ली में सूखापन आ जाता है। इसके अलावा अंधापन, शरीर के विकास में असामान्यता और संक्रमण जैसी बीमारियां भी इसकी कमी से हो सकती हैं। विटामिन ए से त्वचा तथा श्लेष्मा बनने वाले ऊतकों का निर्माण भी होता है। विटामिन बी पानी में घुलनशील कई विटामिनों का समूह है। इसके अंतर्गत विटामिन B1, थायमिन, विटामिन B2, राइबोफ्लोबिन, विटामिन B6, पाइरिडॉक्सिन, विटामिन B12, साइनाकोल कोबेलामिन, नियासिन, निकोटिनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, बायोटिन, विटामिन एच और फॉलिक एसिड आते हैं। विटामिन B1 कार्बोहाइड्रेट वाले पदार्थों के पाचन में सहायक होता है। इस विटामिन के प्रमुख स्रोतों में अनाज, फलियों के अंतर्गत आने वाली दालें, मटर और मांस शामिल हैं। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो सकता है। इस बीमारी से शरीर की परिधीय तंत्रिकाओं पर असर पड़ता है, जिससे मांसपेशियों में कमजोरी और दर्द होने लगता है। इसी तरह की एक अन्य बीमारी जिसे वेट बेरी बेरी कहा जाता है, भोजन में प्रोटीन और विटामिन बी दोनों की कमी से शरीर के अंगों में तरल पदार्थ का जमाव बढ़ जाता है। इससे अंगों में सूजन आ जाती है और बाद में दिल की बीमारी भी हो सकती है। विटामिन B2 कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड के पाचन में सहायक होता है। ये खमीर, जिगर के मांस, दूध, हरी पत्तेदार सब्जियों और मांस में पाया जाता है। इसकी कमी से शरीर की बढ़वार रुक जाती है। विटामिन B6 खमीर, जिगर, दूध, फलियों के अंतर्गत आने वाली दालों और अनाज में पाया जाता है। अमीनो एसिड के चयापचय में इस विटामिन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। हालांकि इसकी कमी से कोई खास बीमारी होने का खतरा नहीं पाया जाता, मगर आहार में इसकी मात्रा न होने से केंद्रीय तंत्रिका प्रणाली में गड़बड़ी तथा त्वचा संबंधी सामान्य विकार पैदा हो सकते हैं। विटामिन B12 इसका निर्माण आम तौर पर आंतों में मौजूद सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है। कलेजे के कच्चे मांस में ये सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन B12 की कमी से एक तरह की खून की कमी पैदा हो जाती है। पर्निशियस एनीमिया नाम की इस बीमारी में लाल रक्त कणिकाओं का विकास धीमा पड़ जाता है और मेरुदंड में विकार उत्पन्न होने की आशंका रहती है। पेंटोथेनिक एसिड कोएंजाइम ए का हिस्सा है, जो शरीर में अनेक रासायनिक अभिक्रियाओं में काम आता है। यूनानी भाषा में पेंटोथिन का नाम है, रिपीट, यूनानी भाषा में पेंटोथिन का मतलब है चारों ओर से। इसके प्रमुख स्रोतों में जिगर, खमीर, अंडे, मांस, डेयरी उत्पाद, शीरा, फूलगोभी और फल आदि शामिल हैं। अगर जानवरों को पेंटोथेनिक एसिड से रहित खाद्य पदार्थ खिलाए जाते हैं तो उनकी बढ़वार रुक जाती है, उनके बालों का रंग उड़ने लगता है और उनमें त्वचा संबंधी विकार भी पैदा हो जाते हैं। बायोटिन, विटामिन एच खाद्य पदार्थों में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और आंतों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया में भी इसका निर्माण होता है। फैटी एसिड्स के पाचन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विटामिन एच को एंटी एज फैक्टर के रूप में भी जाना जाता है। फॉलिक एसिड पत्तेदार सब्जियों, खमीर, जिगर, गुर्दे और ताजे फलों में पाया जाता है। इसे फॉलिक एसिड नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये पत्तेदार सब्जियों में मिलता है। लैटिन भाषा में पत्तेदार सब्जी को फोलियम कहा जाता है। इस विटामिन की कमी से अस्थि मज्जा में विकार उत्पन्न हो जाता है, जिसे परिपक्व रक्त कोशिकाएं नहीं बन पाती। पर्निशियस एनीमिया नाम की बीमारी में रोगी को फॉलिक एसिड और विटामिन B12 दिए जाते हैं। नाइसिन का इस्तेमाल पेलाग्रा नाम की नाइसिन का इस्तेमाल पेलाग्रा नाम की बीमारी के उपचार में किया जाता है। इस बीमारी में अमाशय और आंत संबंधी विकार पैदा हो जाते हैं तथा खाल फटने व मानसिक गड़बड़ी के लक्षण भी दिखाई देते हैं। विटामिन सी की आवश्यकता कई शारीरिक प्रक्रियाओं में पड़ती है, खास तौर पर स्वस्थ योजक ऊतकों के लिए ये बेहद जरूरी है। विटामिन सी सब्जियों और ताजे फलों, विशेष रूप से नींबू प्रजाति के फलों में पाया जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी नाम का रोग हो जाता है। इस बीमारी में कमजोरी, जोड़ों में दर्द आदि की शिकायत हो जाती है और बाद में मसूड़ों तथा अन्य अंगों से रक्तस्राव आरंभ हो जाता है। विटामिन डी स्टेरॉल्स नाम के अनेक मिले जुले यौगिकों के समूह का नाम है, मगर मुख्य घटक हैं

यानी ये फैटी एसिड्स में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को रोकते हैं। इस तरह ये विटामिन फैटी एसिड्स को परऑक्साइड्स और रेडिकल से बचाता है। विटामिन ई चोकर वाले आटे, गेहूं के अंकुर, जिगर और हरी सब्जियों में पाया जाता है। टोकोफेरॉल्स का व्यावसायिक इस्तेमाल वसा, खास तौर पर वनस्पति तेलों में बनाने में भी किया जाता है। विटामिन के पत्तीदार सब्जियों में पाया जाता है। आंतों में कुछ लाभप्रद बैक्टीरिया भी इसका निर्माण करते हैं। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है और इसकी कमी से खून का थक्का आसानी से नहीं जम पाता। विटामिन के अंतर्गत नैप्थेक्विनोन यौगिकों का एक समूह भी आता है। रक्त को जमाने में काम आने वाले रसायनों के संश्लेषण में इसका उपयोग किया जाता है। विटामिनों की आवश्यकता बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में पड़ती है। सामान्य संतुलित भोजन में आदमी की जरूरत के तमाम विटामिन मौजूद रहते हैं। दुर्भाग्य से बहुत से लोग संतुलित भोजन नहीं खाते, जबकि बहुत से अन्य लोग संतुलित भोजन खाने की स्थिति में नहीं होते।

राम राम। मैं कामिनी झज्जर जिला बादली ब्लॉक माजरी गांव से हूँ और मैं आपको एक रागिनी सुनाना चाहूंगी। तो किस्सा है रूप बसंत का। तो उसमें क्या होता है कि धारा नगरी में राजा खड़क सिंह, उनकी रानी रूपवती और उनके दो बच्चे रूप और बसंत रहते थे। तो जो रानी है वो अचानक से बीमार हो जाती है और बीमार अवस्था में राजा को पास बुलाती है और उससे कहती है कि मेरे मरने के बाद आप दूसरी शादी नहीं करवाओगे। तो जो राजा है वो कहता है कि ठीक है रानी, मैं ऐसा ही करूँगा। लेकिन जो रानी है वो कहती है राजा से कि मैंने ना एक पेड़ पर दो, एक चिड़िया और एक चिड़े को देखा है और उसने, उसकी जो चिड़िया है वो मर जाती है और जो चिड़ा है वो दूसरी चिड़िया ले आता है और वो दूसरी चिड़िया उन दोनों बच्चों को मार मार कर नीचे गिरा देती है। तो जो रानी है ये दृश्य देखकर बहुत घबरा जाती है और वे राजा से एक बात के द्वारा क्या कहती है भला।

0: सैकड़ों सालों की गुलामी के बाद आजाद आबो हवा में लहराता तिरंगा, हमारी आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा। शायद कम ही लोग जानते होंगे कि देश का पहला राष्ट्रीय ध्वज पहली बार विदेशी धरती पर फहराने का साहस किया था मैडम भीकाजी कामा ने। इस महान स्वतंत्रता सेनानी ने देशभक्ति के आगे सारे निजी हितों और सुखों को ताक पर रख दिया और 3 दशकों तक निर्वासित जीवन बिताते हुए भी विदेशी भूमि पर स्वाधीनता की अलख को जलाए रखा। भीकाजी का जन्म 24 सितंबर 1861 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता सुराज जी पटेल मुंबई में एक समृद्ध व्यापारी थे। बचपन से ही तीव्र बुद्धि वाली भीकाजी को विभिन्न भाषाएं सीखने में रुचि थी। भीकाजी के मन में लोगों की मदद करने की भावना भी कूट कूट कर भरी थी। 3 अगस्त 1885 को वकील रुस्तम कामा से विवाह के बाद भीकाजी समाज सेवा के कार्यों से पूरी तरह जुड़ गई थी। 1896 में मुंबई में भयानक प्लेग फैला। मैडम कामा दिन रात प्लेग पीड़ितों की सेवा में लग गईं, लेकिन वो खुद भी इस बीमारी से बच नहीं पाईं। बीमार भीकाजी को परिवार ने सेहत की बेहतरी के लिए 1902 में लंदन भेज दिया। लंदन प्रवास के दौरान वो 2 बड़ी राष्ट्रवादी हस्तियों के संपर्क में आई। एक दादा भाई नौरोजी, जो लंदन में ओवरसीज कांग्रेस की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, और दूसरे श्यामजी कृष्ण वर्मा, जो लंदन के भारतीय समुदाय में हाइट पार्क में दिए गए उग्र राष्ट्रवादी भाषणों के लिए जाने जाते थे। मैडम कामा कृष्ण वर्मा की इंडियन होम रूल सोसाइटी से जुड़ गईं। फरवरी 1905 में ब्रिटिश सरकार ने मैडम कामा को राष्ट्रवादी गतिविधियों में हिस्सा न लेने की शर्त पर देश वापस लौटने की बात कही, जिसे मैडम कामा ने सिरे से नकार दिया और लंदन से ही स्वाधीनता की क्रांति का परचम बुलंद कर दिया। साल 1906 में इंडिया हाउस की स्कॉलरशिप पर लंदन पहुंचे विनायक दामोदर सावरकर से मैडम कामा की पहली मुलाकात हुई। सावरकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की गुलामी का मुद्दा उठाना चाहते थे। इसके लिए 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में होने वाली इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस एक अच्छा मौका था। सावरकर ने मैडम कामा को स्टुटगार्ट जाने के लिए तैयार कर लिया और साथ ही तैयारी शुरू हुई भारत के पहले राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण की, जिसे मैडम कामा अपने साथ ले जाने वाली थी। 22 अगस्त 1907 को इस ध्वज के साथ मैडम कामा जर्मनी में स्टुटगार्ट में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में भाग लेने पहुंच गईं। भीकाजी ने ध्वज फहराया और सभा में मौजूद लोगों से भारत की स्वाधीनता के ध्वज को सैल्यूट करने का आह्वान किया। इस अपील का असर इतना था कि वहां मौजूद सभी लोग खड़े होकर ताली बजाने लगे। फिलहाल मैडम कामा दोबारा लंदन लौटी। इसी बीच 1 जुलाई 1909 को सावरकर के शिष्य मदनलाल ढींगरा द्वारा ब्रिटिश अधिकारी विलियम कर्जन वाइली की हत्या से हड़कंप मच गया। ढींगरा पकड़े गए और लंदन की पेंटेविले जेल में इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। इस प्रकरण के बाद मैडम कामा फ्रांस चली आईं। फ्रांस में इन्होंने पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना में योगदान दिया और 2 प्रकाशन वंदे मातरम और तलवार शुरू कर अपने क्रांतिकारी विचार प्रकट करने लगी। कई फ्रांसीसी अखबारों में इनका चित्र रोमन कैथोलिक चर्च में संत माने जाने वाली फ्रांस की वीरांगना जोन ऑफ आर्क के साथ आया, जिससे साफ था कि यूरोप के राष्ट्रीय और लोकतांत्रिक समाज में मैडम कामा गहरी छाप छोड़ रही थीं। 1910 में मिस्र के काहिरा में एक सभा के संबोधन के दौरान नारी सशक्तिकरण को लेकर मैडम कामा का बेहद दृढ़ रवैया सामने आया। इन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ पुरुषों को ही देख रही हूँ जो मुल्क की आधी आबादी का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। कहाँ हैं मिस्र की माताएं बहने? आपको नहीं भूलना चाहिए जो हाथ पालना छुलाते हैं वो राष्ट्र का निर्माण भी करते हैं। कई क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण ब्रिटिश सरकार ने फ्रांस सरकार से मैडम कामा के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया, जिसे फ्रांसीसी सरकार ने नकार दिया। हालांकि 1914 में विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस और ब्रिटेन की दोस्ती के बाद मैडम कामा को फ्रांस सरकार ने नजर बंद कर दिया था और करीब 3 बरस बाद खराब स्वास्थ्य के कारण नवंबर 1917 को इन्हें छोड़ा गया। 3 दशकों तक निर्वासित रहने के बाद 1935 में 74 बरस की उम्र में भीगाजी कामा को वतन लौटने की इजाजत मिली। अब तक मैडम कामा बहुत बीमार हो चुकी थीं और बिगड़ते स्वास्थ्य के चलते वतन लौटने के कुछ महीने बाद 13 अगस्त 1936 में इनका देहांत हो गया। 1962 में गणतंत्र दिवस के दौरान मैडम भीगाजी कामा की याद में एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया। 1997 में भारतीय तटरक्षक बल ने मैडम कामा के नाम पर प्रियदर्शनी क्लास फास्ट गश्ती पोत ICGS भीगाजी कामा कमीशन की। मैडम कामा का स्टुटगार्ट में फहराया ध्वज आज भी पुणे की मराठा और केसरी लाइब्रेरी में रखा हुआ है। यूरोप और अमेरिका में भाषणों और क्रांतिकारी लेखों के जरिए देश के आजादी के हक की मांग बुलंद करने वाली इस महान स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर आज देश भर में कई मार्ग और इमारतें हैं।
1: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
2: माय नेम इज प्रियंका चंदेलिया। बाय प्रोफेशनली मैं मॉडलिंग करती हूँ, मैगजीन शूट्स करती हूँ ग्रह शोभा के, एंड रेड इंडिया से मैं कोर्स कर रही हूँ, हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग ले रही हूँ, जहाँ मैं दीक्षा मैम से मिली हूँ। दीक्षा मैम बहुत अच्छी है, इनका नेचर बहुत अच्छा है, सिलेबस भी काफ़ी अच्छे से रीड करा रही हैं मैम, एंड प्रैक्टिकल्स भी काफ़ी अच्छे से समझा रही हैं मैम। मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। एक्चुअली सर मेरी स्कूलिंग यहीं से हुई है, शाहबाद मोहम्मदपुर विलेज गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, एंड मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब पे है, एमसीडी डिपार्टमेंट में क्लर्क है। मैं मदर भी एमसीडी डिपार्टमेंट में ही है, गवर्नमेंट सर्वेंट है। सर मुझे मॉडल बनना था बट मैं अभी उस लेवल तक जा नहीं पाई, बट मुझे लगा अब काफ़ी टाइम हो गया, मुझे 4-5 ईयर्स हो चुके हैं मॉडलिंग लाइन में, बट मुझे इतना उसमें कुछ नहीं लग रहा। मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग से कुछ सीख सकूं, अच्छा कर सकूं। बट यहाँ पे आने के बाद मेरी पर्सनैलिटी भी डेवलप हुई है, एंड दीक्षा मैम ने बताया है मुझे कैसे क्या होगा, और एक्चुअली मैं यहाँ पे आने के बाद जॉब के लिए भी अप्लाई कर चुकी हूँ, पासवर्ड रेस्टोरेंट द्वारका सेक्टर 23। कुछ टाइम बाद मेरी ज्वाइनिंग है वहाँ पे। एक्चुअली सर रीड इंडिया से मैंने एक ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी किया था, कुछ टाइम आई थी मैं यहाँ पे 4-5 ईयर्स से पहले, तब से ही मैं रीड इंडिया को जानती हूँ, एंड रीड इंडिया बहुत बेस्ट है। रीड इंडिया से सीखने को काफ़ी कुछ है, अगर हमें उस लायक बनना है तो हम किसी को, मैं बाहर जाके किसी को बता भी सकती हूँ रीड इंडिया से मुझे क्या क्या मिल रहा है एंड मुझे क्या क्या सिखाया जा रहा है। जॉब के लिए, अच्छी जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, एंड रीड इंडिया की जो कोर्सेज है वोकेशनल्स वगैरह के, वो बहुत बेस्ट है, ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए।
3: मैं पूनम तनवर, शाहबाद गांव में रहने वाली, दिल्ली में, मेरा जन्म दिल्ली में हुआ। मुझे अपने पेरेंट्स पे इतना प्राउड है, उन्होंने मेरे लिए आज तक जो किया, सीरियसली उन्होंने जो भी किया सिर्फ मेरे लिए किया, और मैं अब उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, उनके लिए कुछ बन के दिखाना चाहती हूँ, जो लोग बोले कि ये उनकी बेटी है। मैं अपनी पहचान अपने पेरेंट्स के साथ बनाना चाहती हूँ, उनके लिए इतना कुछ करना चाहती हूँ कि लोग देख के बोले कि यहाँ इन्होंने के लिए कुछ किया, बहुत अच्छा किया। उन्होंने मेरा एडमिशन पूर्णिमा स्कूल, शाहबाद गांव के पूर्णिमा स्कूल में कराया। वहाँ यहाँ पर मैं बचपन से पढ़ी 5th क्लास तक, फिर उन्हीं के साथ मैं हर काम, ऐसा एक काम नहीं था जो मैंने उनके बिना आज तक किया, हर चीज़, स्कूल भी, यहाँ तक कि स्कूल लेने जाना, मुझे छोड़ने जाना, मेरे स्कूल सुबह सुबह मॉर्निंग में मेरा मिल्क शेक भी वही बनाते थे, मतलब स्टडीज़ करना, अपने स्कूल से आके जो स्कूल में मैं पूरे दिन मस्ती करती थी, पढ़ाई करती थी, टीचर के साथ, फ्रेंड्स के साथ हर बात आके उनसे शेयर करती थी, कोई प्रॉब्लम होती थी सबसे पहले अपने पा के पास जाके अपनी शेयर करती थी। आज भी अगर वो थोड़ी देर के लिए भी कहीं चले जाते हैं तो मन उदास हो जाता है। मुझे अपनी मम्मी से भी बहुत लगाव है, बट लेकिन पापा से थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि वो अपने मतलब सारा दिन मैं अपने पापा के साथ ज़्यादा रहती हूँ। मम्मी मतलब स्कूल में स्कूल के लिए अगर ट्यूशन छोड़ाना या फिर और कुछ कर देना, बट लेकिन मैं पापा के साथ जो मैं करती हूँ सीरियसली, वो बेस्ट मोमेंट मेरे पापा के साथ जो है बहुत अच्छे मोमेंट है। मैं अपनी लाइफ टाइम अपने पापा के साथ रहना चाहती हूँ, लाइफ टाइम। उनके लिए जितना करूँ मैं, जितना करूँ उतना ही कम है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं कि गर्ल्स कुछ नहीं कर सकती है। गर्ल पावर जो होती है, वुमेन पावर, वो एक सबसे बेस्ट पावर होती है। वो गॉड ही उनको पावर देके भेजता है। अगर गर्ल्स बनाई है, वुमेन बनाई, तो उनके लिए भी एक स्पेशल पावर भी उनको दी है। ऐसा कुछ नहीं कि गर्ल्स कुछ नहीं कर सकती है, बाहर जाके पढ़ नहीं सकती है, कॉलेज नहीं जा सकती, या फिर ये वाला काम उनके लिए नहीं बनाए। हर काम गर्ल्स के लिए बनाए। अगर भगवान ने गर्ल्स को, वुमेन्स को बनाया है, तो उनके लिए भी हर काम बनाया है। वो पावर उनके लिए उनको दी है। ऐसी कोई बात नहीं है कि गाँव की लड़कियाँ ये नहीं कर सकती है, शहर की लड़कियाँ ये कर सकती है। हर काम लड़कियाँ कर सकती है, हर चीज़ पॉसिबल है। हाँ, रीड इंडिया सेंटर पे आके मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पे फ्रेंड्स बनाए मैंने, टीचर्स के साथ बहुत मस्ती की। यहाँ पे आके मेरा कोई एम नहीं था कि मैं ये सीखे जाऊँगी, बस मस्ती के लिए आ गई थी। बट लेकिन यहाँ पे आने के बाद कुछ सीखने को भी मिला। इतनी अच्छी टीचर्स मिली, उनके साथ जब मतलब वो डांटती भी है तो भी अच्छा लगता है। एक दिन बात ना करो तो टीचर भी परेशान हो जाती है, जिसको क्या हो गया। मतलब हर चीज़ यहाँ की, हर चीज़ अच्छी है।
4: I'm Priyanka Jaiswal. I belong UP, Allahabad and living Sahabad, Mohammadpur. मैं यहाँ पे दिल्ली में कोर्स करने के लिए आई हूँ, फैशन डिजाइनर कोर्स। एंड वहाँ पे यूपी में अप्लाई नहीं था जॉब, मतलब कोर्स करने के लिए। हमारे पापा यहाँ गवर्नमेंट जॉब करते हैं, मैं उसके उन्हीं के साथ रहती हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे सिलाई इसलिए सीख रही हूँ क्योंकि मैं अपने गाँव वाली लड़कियों को जो घर से बाहर नहीं निकल सकती ना, मैं उनको घर के बाहर निकालने के लिए सिलाई सेंटर खोलना चाहती थी, और भी फ्री कोर्सेज के लिए। मैं इतना ही कहूँगी अपने हर लड़की माँ बाप को कि प्लीज़ उन्हें बाहर भेजें, कुछ करने के लिए उनको भेजें। अधिकतर यहाँ पे उसके हस्बैंड यही सोचते हैं कि ये बोझ है, तो ऐसे ना करें, उसे मतलब समझे कि ये बोझ है। कम से कम अगर वो कुछ करेगी बाहर जाके, तो कम से कम उसके घर में हेल्प ही होगा, अच्छा ही होगा जो होगा। मेरी बचपन से यही हॉबी थी कि मैं पुलिस बनूँ, लेकिन मेरी लंबाई छोटी होने के कारण मैं पुलिस नहीं बन सकी। इसलिए मैं ऐसे ही अपने गांव में ही हेल्प करना चाहती हूँ छोटा मोटा। और मेरी स्कूल लाइफ तो बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा, जो अभी तक नहीं मिली, शायद न मिल पाएगी कभी। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी अपनी लाइफ अच्छे बनाने के लिए, कोर्स करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए यही अच्छा मौका है। अपने माँ बाप से कहें हमें घर से बाहर करने के लिए, कोर्सेज के लिए जारी रखें। दिल्ली में पहले हमारे पापा लोग रहते हैं, हम तो बचपन से गांव में थे। तो इंटर मतलब 12th क्लास पास होने के बाद हम दिल्ली आए। जब दिल्ली यहाँ पे आए तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज थे, अच्छे अच्छे भी थे, तो इसलिए मैंने फैशन डिजाइनर का कोर्सेज अप्लाई कर लिया।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

റീഡ് ഇന്ത്യ മാനേ റൂറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഗ്രാമീൺ ശിക്ഷ എവം വികാസ് ഹമാരാ കാം തോ ലൈബ്രേരീസ് ബനാനാ ഹൈ ഓർ ആജ് കെ സമയ മേ ജോ ചർച്ച ഹോ രഹി ഹൈ ലൈബ്രേരീസ് ഖാലി കിതാബ് പഢ്നെ കെ ലിയേ നഹീ ഹൈ ലൈബ്രേരീസ് ഏക ഐസി ജഗഹ ഹൈ ജാ ഹം ബഹുത് കുഛ് അപ്നെ ലിയേ ഭി കർ സക്തേ ഹൈ ഓർ സമുദായ കെ ലിയേ ഭി കർ സക്തേ ഹൈ മാനേ പഢ്ഹേ തോ ഹം അപ്നെ ബച്ചോ കോ ഭി പഢായേ ഹം ബഡോ കോ ഭി പഢായേ ഹം ഛോട്ടേ ബച്ചോ കെ സാഥ് ഭി ആക്ടിവിറ്റീസ് കരേ കി കിതാബ് ക്യാ ചീസ് ഹൈ ഓർ കിതാബ് ഉൻകെ ജീവൻ മേ ക്യാ മഹത്വ രഖ്തി ഹൈ പർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ജർണി ഇസ് സമയ കെ സാഥ് സാഥ് ഹംനെ യേ സോചാ കി ഹമേ മഹിലാഓ കെ ലിയേ ഭി കുഛ് കാര്യക്രമ കർനേ ചാഹിയേ അഗർ മഹില അപ്നെ ആപ് കോ നിഖാർ സക്തി ഹൈ അപ്നെ ആപ് കോ സക്ഷം ബനാ സക്തി ഹൈ ഓർ ജിമ്മേദാരി അപ്നെ ഷോൾഡേഴ്സ് പേ ലേ സക്തി ഹൈ കി അപ്നെ ബച്ചോ കാ വികാസ് കൈസെ കർനാ ഹൈ വോ ഭി റീഡ് ഇന്ത്യ അപ്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ലൈബ്രേരീസ് ഓർ റിസോഴ്സ് സെന്റേഴ്സ് മേ കർതി ഹൈ ഹംനെ ഔരതോ കെ ലിയേ ബഹുത് ഹി അച്ഛെ അച്ഛെ കാര്യക്രമ കിയേ ജൈസെ സിലായി സിഖാനാ ബ്യൂട്ടി പാർലർ കി ട്രേനിംഗ് ദേനാ ഓർ ഭി ബഹുത് സാരി ഐസി ട്രേനിംഗ്സ് ഹൈ ജോ ഹം അപ്നെ സെന്റേഴ്സ് മേ കർതെ ഹൈ പർ ഉസ്കാ जो आउटकम है जो हम समझ रहे हैं कि एक महिला इतनी सक्षम हो जाए कि वो अपने परिवार की भी सोच बदल सके अपनी भी सोच बदल सके और अपने बच्चों को एक मकाम तक लेके जा सके। इसी दौरान हमने पिछले 3 सालों में उनको बहुत सारी ऐसी स्किल्स दी जिससे वो अपना बिजनेस भी शुरू कर सकती हैं और हम उनको रेगुलरली ट्रेस भी करते हैं ट्रेस इन द सेंस कि हम उनसे बातचीत भी करते हैं कि वो अपने बिजनेस के बारे में क्या सोच रही हैं अपना बिजनेस कैसे आगे लेके जा सकती हैं और इसी दौरान हमने ये सोचा कि हम क्यों इतने बड़े बड़े बीबीए और एमबीए की बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो हम इतने पैसे कहाँ से लाएं कि हम इन महिलाओं को बोलें कि ये कोर्सेज ज्वाइन कर लो। तो रीट इंडिया ने क्या किया, अपने प्रपोजल में ये सारे एपिसोड्स लिख दिए। मैं इनको एपिसोड्स ही कहूंगी, मॉड्यूल्स नहीं कहूंगी, क्योंकि ये एपिसोड्स उनके जीवन में बहुत सा बदलाव ला सकते हैं, उनको एक उद्योग क्या है उसके बारे में ज्ञान दे सकते हैं और उद्योग करने के लिए उनको क्या क्या सीखना है वो भी ट्रेनिंग्स हम देने के लिए तैयार हैं। और हम महिलाओं को बोलते हैं, यंग लड़कियों को बोलते हैं जो बीए कर चुकी हैं या 12वीं पास कर चुकी हैं, वो अपना नाम आके रीड इंडिया की लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर में लिखवाएं और हम बिल्कुल तैयार हैं उनको इनके ऊपर ट्रेनिंग देने के लिए। और आगे आने वाले समय में अगर नौकरी नहीं भी मिलती है तो अगर वो अपना एक लघु उद्योग शुरू कर लेती है और अपने परिवार की देखभाल अच्छे ढंग से कर लेती है और अपने हस्बैंड के साथ अपने परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के अपने परिवार को आगे लेके जाती है, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकती है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज उनकी जिंदगी में क्या हो सकती है। तो श्रोताओं, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आप रीड इंडिया के मिशन को समझें, रीड इंडिया की लाइब्रेरी के बारे में जानें और जितना भी आप अपने आप को सक्षम कर सकते हैं रीड इंडिया के सेंटर पे आके अपना नाम लिखवाएं। धन्यवाद।

0: मेजर होशियार सिंह अपने जीवन काल में परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले चंद शूरवीरों में हैं। हरियाणा के सोनीपत में जन्मे मेजर होशियार सिंह ने 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में अद्भुत वीरता दिखाई थी। 1957 में होशियार सिंह का भारतीय सेना की जाट रेजिमेंट में चयन हुआ था और 3 ग्रेनेडियर्स में कमीशन लेने के बाद ये ऑफिसर बने। 1971 में भारत पाकिस्तान की जंग में भारतीय सैनिकों की वीरता और पराक्रम से जुड़े तमाम किस्से हैं। इस युद्ध में यूं तो 4 जांबाजों को परमवीर चक्र से नवाजा गया था, पर मेजर होशियार सिंह ऐसे अकेले सैनिक थे जिन्हें ये अलंकरण जीवित रहते मिला। बसंतर की लड़ाई में घायल होने के बाद भी इन्होंने अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया और पाकिस्तानी सेना को पीछे भागने पर मजबूर कर दिया था। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान 3 दिनों के अथक साहस और बहादुरी की बदौलत इनकी टुकड़ी ने 85 पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए थे। परम योद्धा मेजर होशियार सिंह की वीरता पर पूरे देश को गर्व है।
1: डीडी किसान, बदलते भारत की शान।

0: हमारे देश में तुलसी का पौराणिक महत्व है। भले ही ये तुलसी के नाम से जाना जाता हो, लेकिन इसके दूसरे भी कई नाम हैं। मिसाल के तौर पर सुलभा, ग्राम्या, पुरसा, बहुमंजरी और होली बेसिल। दुनिया भर में इसकी करीब 150 किस्में पाई जाती हैं। ऑसिमम बेसिलिकम यानी पोवई तुलसी, ऑसिमम अमेरिकेनम यानी काली तुलसी, ऑसिमम ग्रेटिसिकम यानी वन तुलसी या राम तुलसी, ऑसिमम वेल्डी यानी जंगली तुलसी, ऑसिमम सेंक्टम और ऑसिमम किलीमंडस्क्रिकम इसकी कुछ प्रमुख प्रजातियां हैं। कमाल की बात तो ये है कि इसकी खेती कम उपजाऊ जमीन में भी आसानी से की जा सकती है। हाँ, खेत में पानी की निकासी का उचित इंतजाम होना जरूरी है। वैसे बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए बहुत उपयुक्त है। ये उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय दोनों तरह की जलवायु में हो जाती है। खेती दो चरणों में होती है। पहले बीज बोकर नर्सरी तैयार करेंगे और फिर रोपाई। बुआई के लिए जमीन जून के दूसरे हफ्ते तक तैयार हो जानी चाहिए। जमीन तैयार करने के लिए 15 से 20 सेंटीमीटर गहरी जुताई करेंगे और फिर 15 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की सड़ी खाद मिट्टी में अच्छी तरह मिला लेंगे। सतह से उभरी हुई 1 मीटर लंबी और इतनी ही मीटर चौड़ी क्यारियां बना लेंगे। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 750 ग्राम से 1 किलो बीज, 20 किलो फास्फोरस और 20 किलो पोटाश की जरूरत होगी। इसका बीज सीधे नहीं बोना है, बल्कि रेत या बालू में मिलाकर बुआई करनी है। बीज कतारों में बोने हैं। एक कतार से दूसरी कतार की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी है। बीज को ज्यादा गहरा नहीं बोना है। जमाव के 15 से 20 दिन बाद 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से नाइट्रोजन डाल देने से अच्छी पैदावार होती है। 5-6 हफ्तों में पौध रोपाई के लिए तैयार हो जाएगी। रोपाई मौसम साफ रहने पर दोपहर के बाद ही करें और कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर जबकि पौध से पौध की 30 सेंटीमीटर रखें। चूंकि ये बरसात की फसल है, इसीलिए अगर ठीक ठाक बारिश होती रहे तो सितंबर तक कोई सिंचाई नहीं करनी पड़ती। उसके बाद जरूरत के हिसाब से पानी देते रहना है। रोपाई के 1 माह बाद पहली निराई गुड़ाई करनी है और निराई गुड़ाई के 3-4 हफ्तों बाद दूसरी। खेत अगर बड़ा है तो ये काम ट्रैक्टर से भी किया जा सकता है। तुलसी के लिए 15 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की खाद रोपाई से पहले डालनी है। इसके अलावा 75 से 80 किलो नाइट्रोजन, 40 ग्राम फास्फोरस और 40 किलो पोटाश की जरूरत होगी। रोपाई से पहले फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा जबकि नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा देनी है। बाकी नाइट्रोजन 2 बार में खड़ी फसल में देना है। रोपाई के 10 से 12 हफ्ते बाद तुलसी कटाई के लिए तैयार हो जाती है। ये वो समय है जब पौधे में पूरी तरह से फूल आ जाते हैं और नीचे के पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। इस तरह 1 हेक्टेयर फसल से 20 से 25 टन पैदावार ली जा सकती है, जिसमें 80 से 100 लीटर तेल निकल आता है।
1: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। श्रोताओं, आज कंप्यूटर हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, लेकिन जब किसी काम में बहुत बड़ी मात्रा में आंकड़ों का विश्लेषण करना हो, मौसम का पूर्वानुमान लगाना हो, बाढ़ का अनुमान लगाना हो, नई दवाओं की खोज में सहायता लेनी हो या अंतरिक्ष से जुड़े जटिल सवालों पर जवाब तलाश करना हो, तब सामान्य कंप्यूटरों से कहीं अधिक तेज कंप्यूटिंग क्षमता की जरूरत होती है। ऐसे कामों के लिए सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। सुपर कंप्यूटर बहुत तेज गति से बड़ी संख्या में गणनाएं कर सकते हैं और एक साथ कई काम कर सकते हैं। भारत ने भी सुपर कंप्यूटिंग के क्षेत्र में अपनी क्षमता लगातार बढ़ाई है। देश की यह यात्रा 1990 के दशक की शुरुआत में परम 8000 से शुरू हुई और वर्ष 2015 में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन यानी NSM की शुरुआत के साथ एक बड़े राष्ट्रीय अभियान में बदल गई। सितंबर 2026 तक भारत में 40 सुपर कंप्यूटर लगाए जा चुके हैं, जिनकी संयुक्त क्षमता 68 पेटाफ्लॉप्स है। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, भारत ने इस क्षेत्र में अब तक क्या प्रगति की है, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन का उद्देश्य क्या है और इनका इस्तेमाल आम लोगों के जीवन से जुड़े किन किन क्षेत्रों में किया जा रहा है। आइए सबसे पहले जानते हैं सुपर कंप्यूटर क्या होता है और भारत में इसकी जरूरत क्यों पड़ी। श्रोताओं, सामान्य कंप्यूटर की तुलना में सुपर कंप्यूटर अत्यधिक तेज गति से बड़ी संख्या में गणनाएं कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोसेसर और सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम एक साथ काम करते हैं। इसे आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई बड़ा काम एक व्यक्ति करने के बजाय कई लोग मिलकर एक साथ करें तो वो काम जल्दी पूरा होगा। इसी तरह सुपर कंप्यूटर भी एक ही समय में कई गणनाएं करते हैं। सुपर कंप्यूटर की क्षमता को फ्लॉप्स यानी FLOPS में मापा जाता है। ये बताता है कि कंप्यूटर एक सेकंड में कितनी गणनाएं कर सकता है। एक टेराफ्लॉप्स का मतलब है एक सेकंड में लगभग एक ट्रिलियन गणनाएं, जबकि एक पेटाफ्लॉप्स का मतलब है एक सेकंड में लगभग एक क्वाड्रिलियन गणनाएं। श्रोताओं, सुपर कंप्यूटर केवल वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है। इनका इस्तेमाल ऐसे कई कार्यों में किया जा रहा है जिनका सीधा संबंध आम लोगों के जीवन से है। मौसम के पूर्वानुमान में सुपर कंप्यूटर बड़ी मात्रा में मौसम से जुड़े आंकड़ों का तेजी से विश्लेषण करते हैं। इससे भारी बारिश, तूफान और दूसरी मौसमी परिस्थितियों का पहले से अनुमान लगाने में सहायता मिलती है। इसी तरह बाढ़ की चेतावनी में भी सुपर कंप्यूटर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नदी में पानी का स्तर, बारिश और दूसरे आंकड़ों का विश्लेषण करके संभावित बाढ़ का पहले से अनुमान लगाया जा सकता है। इससे प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को समय रहते सावधान करने और बचाव की तैयारी करने में सहायता मिलती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सुपर कंप्यूटिंग का इस्तेमाल हो रहा है। बड़ी संख्या में दवाओं और रासायनिक पदार्थों का अध्ययन करके नई दवाओं की खोज और परीक्षण की प्रक्रिया को तेज करने में सहायता मिलती है। कृषि में फसल की पैदावार का अनुमान लगाने और मौसम का फसलों पर होने वाले प्रभावों को समझने में भी उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग उपयोगी है।
3: श्रोताओं, भारत में डिजिटल गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। देश में बड़ी मात्रा में डिजिटल डेटा तैयार हो रहा है। केंद्र सरकार ने अप्रैल 2015 में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन यानी NSM शुरू किया। इस मिशन को लगभग 4,500 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ शुरू किया गया था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY इस मिशन को संयुक्त रूप से संचालित करते हैं। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी CDAC पुणे और भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc बेंगलुरु इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन का उद्देश्य देश में सुपर कंप्यूटिंग की क्षमता बढ़ाना और इस क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके अंतर्गत वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी विकास और देश की सामाजिक आवश्यकताओं से जुड़े कामों में सुपर कंप्यूटिंग के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। श्रोताओं, इस मिशन के अंतर्गत केवल सुपर कंप्यूटर लगाने पर ही ध्यान नहीं दिया जा रहा है। भारत में सुपर कंप्यूटर के लिए जरूरी सर्वर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क और कूलिंग जैसी तकनीक भी विकसित की जा रही है। श्रोताओं, इसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज भारत अपने सुपर कंप्यूटिंग परितंत्र को और मजबूत कर रहा है। अब सवाल ये है कि सितंबर 2026 तक भारत ने इस क्षेत्र में कितनी प्रगति की है और इन सुपर कंप्यूटरों का इस्तेमाल किन महत्वपूर्ण कामों में किया जा रहा है, आइए अब जानते हैं।
4: श्रोताओं, सितंबर 2026 तक भारत ने 68 पेटाफ्लॉप्स की संयुक्त क्षमता वाले 40 सुपर कंप्यूटर लगाए हैं। इनमें 13 हाई एंड सुपर कंप्यूटर ऐसे हैं जिनकी क्षमता 1 पेटाफ्लॉप से अधिक है। इसके अलावा 12 सिस्टम ऐसे हैं जिनकी क्षमता 500 टेराफ्लॉप्स से 1 पेटाफ्लॉप्स के बीच है। अन्य 15 सिस्टम की क्षमता 500 टेराफ्लॉप्स से कम है। इन सुपर कंप्यूटरों को देश के अलग अलग शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों में लगाया गया है। श्रोताओं, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन की एक बड़ी उपलब्धि ये है कि भारत ने सुपर कंप्यूटर से जुड़े कई महत्वपूर्ण उपकरण और तकनीक देश में ही विकसित की हैं। इसी दिशा में रुद्र सर्वर श्रृंखला विकसित की गई है। रुद्र सर्वर सुपर कंप्यूटर को जरूरी कंप्यूटिंग शक्ति उपलब्ध कराते हैं। इन्हें CDAC ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया है। इन्हीं स्वदेशी रुद्र सर्वरों और स्वदेशी सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से परम रुद्र सुपर कंप्यूटर तैयार किए गए हैं। सितंबर 2026 तक परम रुद्र सुपर कंप्यूटरों में 6,000 रुद्र सर्वर लगाए जा चुके थे, जबकि 1,500 अन्य सर्वर निर्माण के अधीन थे। भारत ने सुपर कंप्यूटरों के लिए हाई स्पीड इंटरकनेक्ट नेटवर्क भी विकसित किया है। इसका काम अलग अलग कंप्यूटिंग सिस्टम के बीच तेजी से डेटा का आदान प्रदान करना है। इसके अलावा स्वदेशी कूलिंग तकनीक भी विकसित की गई है। सुपर कंप्यूटर बहुत अधिक गर्मी पैदा करते हैं, इसलिए उन्हें ठंडा रखने के लिए विशेष व्यवस्था की जरूरत होती है। श्रोताओं, अब बात करते हैं कि इन सुपर कंप्यूटरों का फायदा देश और आम लोगों को कैसे मिल रहा है। स्वास्थ्य और दवा की खोज के क्षेत्र में सुपर कंप्यूटर बड़ी संख्या में दवाओं और अणुओं का अध्ययन करने में मदद करते हैं। इससे वैज्ञानिक को नई दवाओं की खोज और संभावित दवाओं के परीक्षण में तेजी लाने में मदद मिलती है। कोविड-19 के दौरान भी ऐसी कंप्यूटिंग क्षमता का इस्तेमाल मौजूदा दवाओं की जांच और उनके संभावित प्रभावों को समझने के लिए किया गया। मौसम और पर्यावरण के क्षेत्र में सुपर कंप्यूटर मौसम और वायु प्रदूषण से जुड़े बड़े आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं। बाढ़ की भविष्यवाणी के लिए भी सुपर कंप्यूटिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। जंगल की आग के फैलाव का अनुमान लगाने में भी सुपर कंप्यूटर मदद कर रहे हैं। इसके अलावा तेल और गैस की खोज, अंतरिक्ष अनुसंधान, खगोल विज्ञान, परमाणु विज्ञान, सामग्री विज्ञान और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में भी सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। श्रोताओं, सुपर कंप्यूटिंग के साथ साथ प्रशिक्षित लोगों की जरूरत भी होती है। इसी वजह से राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत छात्रों, शोधकर्ताओं और शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब तक 400 से अधिक संस्थानों में 16,000 से अधिक शोधकर्ताओं को मिशन के बुनियादी ढांचे से मदद मिली है। इनमें 2,900 से अधिक पीएचडी छात्र भी शामिल हैं। सितंबर 2026 तक इन प्रणालियों पर 1,50,00,000 से अधिक कंप्यूट जॉब यानी जटिल कंप्यूटर कार्य किए जा चुके हैं और 1,990 से अधिक शोध प्रकाशनों में इनका योगदान रहा है। श्रोताओं, देश में सुपर कंप्यूटिंग के इस्तेमाल को और बढ़ाने के लिए कार्यशालाएं, हैकथॉन और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क यानी NKN भी इस व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये देश के अलग अलग शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों को एक तेज नेटवर्क से जोड़ता है। इससे शोधकर्ताओं को कंप्यूटिंग संसाधनों तक पहुँचने और दूसरे संस्थानों के साथ मिलकर काम करने में मदद मिलती है।
3: श्रोताओं, भारत की सुपर कंप्यूटिंग यात्रा परम 8000 से शुरू होकर आज एक बड़े राष्ट्रीय परितंत्र तक पहुंच चुकी है। भारत को सुपर कंप्यूटिंग के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और देश की वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षमता को मजबूत करना है। सुपर कंप्यूटिंग का महत्व केवल बड़ी और तेज मशीनों तक सीमित नहीं है। इसका असली उद्देश्य विज्ञान और तकनीक की मदद से देश की वास्तविक समस्याओं का समाधान खोजने में सहायता करना है। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने, प्रस्तुति सहायक हरमनप्रीत सिंह। नमस्कार।
5: अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नई सुबह की रश्मियां एक नया इतिहास लिख रही है। आज
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार के 21 द्वीप समूहों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया है। एक नाम राजस्थान में झुंझुनू जिले के कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत का भी है। 1948 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पीरू सिंह अदम्य साहस दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। ১৯৪৮ की गर्मियों में जब पाक सेना और कबायलियों ने मिलकर जम्मू कश्मीर पर आक्रमण करके किशन गंगा नदी पर बने अग्रिम मोर्चे को भारतीय सेना को छोड़ने पर मजबूर किया, तो सेना ने टिथवाल पहाड़ी पर मोर्चा संभाला। दुश्मन ऊंचाई पर अपनी जगह जमा बैठा था, वहां से दुश्मन को खदेड़ने का जिम्मा मिला राजपूताना राइफल्स की डी कंपनी को। इस कंपनी की अगुवाई कर रहे थे पीरू सिंह शेखावत। भारतीय सैनिकों को संकरी और खतरनाक मार्ग से होकर गुजरना था। यह रास्ता दुश्मन के बंकरों की जद में था, जिसका फायदा उठाकर दुश्मन ने कंपनी पर भीषण हमला किया और 51 सैनिक शहीद हो गए। बहादुर पीरू सिंह अपने बचे साथियों के साथ राजा रामचंद्र की जय का उद्घोष करते हुए आगे बढ़ते गए। उनका पूरा शरीर गोलियों से घायल था, लेकिन वे दुश्मन पर गोलियां बरसाते हुए आगे बढ़ते गए। पीरू सिंह ने दुश्मन को भी तबाह कर दिया, मगर खुद भी हमेशा के लिए माँ भारती की गोद में सो गए। पीरू सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
7: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं वैष्णवी। श्रोताओं, किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था की ताकत केवल बड़ी कंपनियों से नहीं बनती, छोटे और मध्यम उद्यम भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये रोजगार देते हैं, उत्पादन बढ़ाते हैं, निर्यात में योगदान करते हैं और नई तकनीक और नए कारोबार को आगे बढ़ाते हैं। भारत में छोटे और मध्यम उद्यमों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी दिशा में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छोटे और मध्यम उद्यमों को पूंजी उपलब्ध कराने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के SME ग्रोथ फंड की स्थापना को मंजूरी दी है। छोटे और मध्यम उद्यमों को पहले से ही ऋण, प्रशिक्षण, तकनीक और बाजार से जुड़ी सहायता देने के लिए कई योजनाएं चल रही हैं। लेकिन कारोबार के एक स्तर तक पहुंचने के बाद उसे और बड़ा करने के लिए अलग तरह की पूंजी की जरूरत पड़ती है। SME ग्रोथ फंड इसी जरूरत को पूरा करने की कोशिश है। आज के कार्यक्रम में समझेंगे कि भारत का MSME क्षेत्र कितना बड़ा है, SME ग्रोथ फंड किस तरह काम करेगा और छोटे तथा मध्यम उद्यमों के लिए इस तरह के विकास पूंजी फंड की जरूरत क्यों महसूस हुई। साथ ही जानेंगे कि MSME क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार की दूसरी योजनाएं किस तरह काम कर रही हैं। श्रोताओं, भारत में MSME क्षेत्र बहुत बड़ा है और अर्थव्यवस्था के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। आइए समझते हैं कि भारत का MSME इकोसिस्टम कितना व्यापक है और SME ग्रोथ फंड की जरूरत कैसे सामने आती है।
8: आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार MSME क्षेत्र देश की GDP में 31.1%, विनिर्माण उत्पादन में 35.4% और निर्यात में 48.58% का योगदान देता है। देश में MSME क्षेत्र का औपचारिक आधार भी लगातार बढ़ रहा है। 6 अक्टूबर 2026 तक उद्यम और उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर करीब 9,78,00,000 MSME पंजीकरण दर्ज किए गए। इन पंजीकृत उद्यमों ने करीब 43,28,00,000 रोजगार के अवसरों की जानकारी दी है। इस पूरे क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। करीब 37.6% उद्यम महिला स्वामित्व वाले हैं। MSME क्षेत्र केवल एक तरह के कारोबार तक सीमित नहीं है। पंजीकृत उद्यमों में करीब 4,08,00,000 कारोबार व्यापार से जुड़े हैं। इसके बाद करीब 3,77,00,000 सेवा क्षेत्र और 1,93,00,000 विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े उद्यम हैं। यानी MSME क्षेत्र देश के व्यापार, सेवा और विनिर्माण तीनों क्षेत्रों में फैला हुआ है। अब सवाल ये है कि इनमें से छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए अलग से विकास पूंजी की जरूरत क्यों है। भारत में किसी उद्यम को सूक्ष्म, लघु और मध्यम की श्रेणी में निवेश और सालाना कारोबार के आधार पर रखा जाता है। वर्ष 2025 से लागू नए मानकों के अनुसार छोटे उद्यम के लिए निवेश की सीमा 25 करोड़ रुपए और कारोबार की सीमा 100 करोड़ रुपए तक है। मध्यम उद्यम के लिए निवेश की सीमा 125 करोड़ रुपए और कारोबार की सीमा 500 करोड़ रुपए तक है। इन उद्यम में से कुछ ऐसे होते हैं जिनका कारोबार आगे तेजी से बढ़ सकता है, लेकिन कारोबार को अगले स्तर तक ले जाने के लिए केवल रोजमर्रा के खर्चे के लिए पैसा होना पर्याप्त नहीं होता। यहीं पर SME ग्रोथ फंड की भूमिका सामने आती है। SME ग्रोथ फंड के लिए सरकार 10,000 करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता देगी। ये फंड सीधे छोटे और मध्यम उद्यमों में इक्विटी निवेश करेगा। इक्विटी निवेश का अर्थ है किसी कंपनी में पूंजी लगाकर उसके कारोबार में हिस्सेदारी लेना। इसमें पैसा देने वाला कंपनी के विकास में हिस्सेदार बनता है, इसलिए ये सामान्य कर्ज से अलग होता है जहां पैसा ब्याज के साथ वापस नहीं करना होता। इस तंत्र को अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स यानी AIF के रूप में स्थापित किया जाएगा। सरल भाषा में समझें तो AIF ऐसे निजी रूप से बनाया गया फंड है जिसमें निवेशकों से पैसा जुटाया जाता है और तय नीति के अनुसार अलग अलग कारोबार में निवेश किया जाता है। इसका एक बड़ा ध्यान विनिर्माण क्षेत्र पर होगा। फंड की बड़ी हिस्सेदारी छोटे और मध्यम विनिर्माण उद्योग को आगे बढ़ाने में लगाई जाएगी। इस पूंजी से कंपनियां नए और बेहतर तकनीक अपना सकती हैं, अपनी उत्पादकता बढ़ा सकती हैं और निर्यात के लिए अपनी क्षमता मजबूत कर सकती हैं। फंड का ध्यान केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहेगा। औद्योगिक क्लस्टर वाले दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों में काम करने वाले छोटे और मध्यम उद्यम भी इसके दायरे में आ सकते हैं। इससे उन क्षेत्रों में उद्योग का विस्तार हो सकता है जहां पहले से कारोबार और उत्पादन की गतिविधियां मौजूद हैं। इसके साथ स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला मजबूत हो सकती है और रोजगार के नए अवसर बन सकते हैं।
7: श्रोताओं, किसी उद्यम को पूंजी मिलना उसके विकास की शुरुआत हो सकती है, लेकिन उसका असली असर तब दिखाई देता है जब वे पूंजी उत्पादन बढ़ाने, नई तकनीक अपनाने, कारोबार का विस्तार करने और रोजगार पैदा करने में बदलती है। SME ग्रोथ फंड से भी यही उम्मीद है कि विकास की क्षमता रखने वाले उद्यमों को आगे बढ़ने का अवसर मिले और वे अपने क्षेत्र में मजबूत कंपनियों के रूप में उभर सकें। आइए अब समझते हैं कि इसका असर नवाचार, कारोबार के विस्तार और रोजगार पर कैसे पड़ सकता है और MSME क्षेत्र के लिए सरकार की दूसरी सहायता व्यवस्थाएं इसके साथ किस तरह जुड़ती हैं।
8: SME ग्रोथ फंड से मिलने वाली विकास पूंजी का असर केवल कंपनियों के आकार तक सीमित नहीं रहेगा। इसका संबंध नई तकनीक, उत्पादन क्षमता, प्रतिस्पर्धा और रोजगार से भी है। जब किसी उद्यम को अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए पूंजी मिलती है तो वे नई मशीनें लगा सकते हैं, उत्पादन बढ़ा सकता है और नई तकनीक अपना सकता है। इससे उसके काम करने का तरीका बेहतर होगा और वह बाजार में अधिक मजबूती से प्रतिस्पर्धा कर सकता है। विनिर्माण क्षेत्र में इसका असर उत्पादन क्षमता बढ़ाने के रूप में दिखाई दे सकता है। किसी कंपनी के पास अधिक उत्पादन करने की क्षमता होगी तो वे नए बाजारों में पहुंच बनाने और अपनी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ सकती है। इस प्रक्रिया का असर रोजगार पर भी पड़ता है। जब कोई उद्यम अपनी उत्पादन क्षमता और कारोबार बढ़ाता है तो उसे अधिक लोगों की जरूरत होती है। इस तरह के कारोबार के विस्तार से रोजगार के नए अवसर भी बन सकते हैं, लेकिन किसी छोटे या मध्यम उद्यम के विकास के लिए ऋण, कौशल, तकनीक, बाजार, खरीद के अवसर और कारोबार चलाने में दूसरी तरह की सहायता की भी जरूरत होती है। इसलिए SME क्षेत्र के लिए सरकार की सहायता व्यवस्था कई अलग अलग हिस्सों में काम करती है। वित्तीय सहायता की बात करें तो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस यानी CGTMSE छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था को समर्थन देता है। इसका उद्देश्य ऐसे उद्यमों के लिए ऋण तक पहुंच को आसान बनाना है। रोजगार और नए कारोबार को बढ़ावा देने के लिए प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम काम करता है। इसका जोर नए रोजगार के अवसर पैदा करने वाले उद्यमों को बढ़ावा देने पर है। वहीं PM विश्वकर्मा के जरिए पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को एक साथ कई तरह की सहायता देने का प्रयास किया गया है। इससे उनके काम से जुड़ी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण, उपकरण और कारोबार से जुड़ा सहयोग शामिल है। कौशल और उद्यमिता के क्षेत्र में MSME स्किलिंग, एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे कार्यक्रम काम करते हैं। इनका उद्देश्य लोगों में कौशल और उद्यम शुरू करने की क्षमता को बढ़ावा देना है। MSME के लिए तकनीक और उत्पादन की गुणवत्ता भी महत्वपूर्ण है। रेजिंग एंड एक्सेलरेशन MSME परफॉर्मेंस यानी RAMP कार्यक्रम MSME के प्रदर्शन को बेहतर बनाने और उनकी क्षमता बढ़ाने पर ध्यान देता है। इसी तरह जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट योजना का जोर बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादन और उत्पादन प्रक्रिया में सुधार पर है। देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद टूल रूम्स और टेक्नोलॉजी सेंटर्स भी MSME को तकनीकी सुविधाओं और तकनीक से जुड़ी सहायता देने में भूमिका निभाते हैं। MSME के लिए बाजार तक पहुंच भी उतनी जरूरी है। MSME संबंध और SC/ST हब जैसे प्रयास सरकारी खरीद और बाजार के अवसरों से जुड़ने में सहायता देने पर केंद्रित हैं। इस तरह देखा जाए तो SME ग्रोथ फंड केवल एक वित्तीय योजना नहीं है, ये छोटे और मध्यम उद्यमों को विकास के अगले चरण तक पहुंचाने की व्यापक कोशिश का हिस्सा है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
7: श्रोताओं, छोटे उद्यमों को आगे बढ़ाना केवल उनके कारोबार का विस्तार करना नहीं है, इसका मतलब है नई उत्पादन क्षमता, नए रोजगार, नई तकनीक और नए बाजारों के लिए रास्ते तैयार करना। SME ग्रोथ फंड और MSME क्षेत्र के लिए चल रहे दूसरे प्रयास इसी व्यापक सोच का हिस्सा है। इनका उद्देश्य देश के अलग अलग हिस्सों में उद्यमों की क्षमता को मजबूत करना और विकास के अवसरों को ज्यादा व्यापक बनाना है। यही प्रयास आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश की अपनी उत्पादन और कारोबारी क्षमता को मजबूत करते हैं और विकसित भारत एट 2047 के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने में योगदान देते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक प्रीति श्रीवास्तव।

निडरता और साहस की शौर्य गाथा परमवीर चक्र, नायक जदुनाथ सिंह। एक गोली सिर में लगी, दूसरी सीने में, पर वो लड़ते रहे और देश के लिए जीत ली वो जंग। ऐसे थे परमवीर चक्र नायक जदुनाथ सिंह। 21 नवंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के खजूरी गांव में जन्मे नायक जदुनाथ सिंह 1941 में भारतीय सेना की राजपूत रेजिमेंट में भर्ती हुए। जनवरी 1948 में कबायली आक्रमण के समय इन्होंने नौशेरा इलाके में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया। लड़ते लड़ते इनकी टुकड़ी के सिपाही कम होते गए, पर हौसले बुलंद थे। फिर एक वक्त ऐसा आया जब जदुनाथ सिंह ने अकेले ही स्टेन गन लेकर मोर्चा संभाला और दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ मिलकर इन्होंने भारत की जीत सुनिश्चित तो की, पर अपनी शहादत देकर। मरणोपरांत नायक जदुनाथ सिंह को सेना के सबसे बड़े सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

नमस्कार, आज का टॉपिक है मकोई और उसके बेनिफिट। दोस्तों, मकोई ब्लैक नाइट और नाइट शेड काकमाची और भटकोइया पिलपोटन भी कहते हैं। ये एक छोटा सा पौधा है जो भारतवर्ष के छाया युक्त स्थानों में हमेशा पाया जाता है। मकोई में पूरे वर्ष फूल और फल देखे जा सकते हैं। मकोई में शाखा युक्त 1.5 फुट तक ऊंची तथा शाखाओं पर उभरी हुई रेखाएं होती हैं। इसके पत्ते हरे, अंडाकार या आयताकार, दंतुर या खंडित, 2 से 3 इंच लंबे, 1.5 इंच तक चौड़े होते हैं। फूल छोटे, सफेद वर्ण रंग, बहिकक्षीय फूल दंडों पर 3 से 8 के गुच्छों में नीचे झुके होते हैं। मकोई का फल छोटे, चिकना गोलाकार, अपरिक्व अवस्था में हरे रंग के और पकने पर नीले या बैंगनी रंग के, कभी कभी पीले या लाल होते हैं। बीज छोटे, चिकने, पीले रंग के, बैंगन के बीजों की तरह होते हैं, परंतु बैंगन के बीजों से बहुत छोटे होते हैं। पकने पर फल मीठे लगते हैं। दोस्तों, अब बताता हूँ कि मकोई किन किन बीमारियों में फायदेमंद है। मकोई पंचांग, जड़, तना, पत्ता, फूल और फल के काढ़े का सेवन गठिया का दर्द, सूजन, खांसी, घाव, पेट फूलने, अपच, मूत्र रोग में फायदा पहुँचाता है। कान दर्द, हिचकी, जुकाम, आंखों के रोग, उल्टी और शारीरिक कमजोरी में भी लाभ होता है। इसके पत्ते एवं फल का सेवन से पेट का अल्सर ठीक होता है। इसके बीज भ्रम, बार बार प्यास लगने, सूजन और त्वचा रोग में फायदेमंद है। मकोई की प्रकृति डायूरेटिक होती है। अगर आपको कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि किसी कारणवश आपको रात में नींद नहीं आती या फिर काफी डर लगने लगता है, तो मकोई का सेवन करना नियमित रूप से शुरू कर लें। इससे आपको चिंता आदि कम करने में भी राहत मिलती है। इसमें चिकित्सीय गुण होते हैं जो ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने में मदद करते हैं। मकोई में फाइटोकेमिकल्स होते हैं और साथ में ही एंटीमाइक्रोबियल गुण होते हैं, जिससे यूटीआई बार बार नहीं होता है। मकोई का सेवन करने से वेजिनल सेक्रेशन और यूरिन आउटपुट में इजाफा होता है। इससे शरीर के अंदर मौजूद सारे बैक्टीरिया बाहर आने में मदद होती है, जिस कारण सारे बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स फ्लश आउट हो जाते हैं और अगली बार यूटीआई होने का रिस्क भी कम हो जाता है। दोस्तों, अब बताता हूँ कि किस रोग में कैसे प्रयोग करें। मकोई के पत्ते, पान का पत्ते तथा हल्दी से पेस्ट बना लें। इसका लेप करने से पुराने घाव, चोट लगने से होने वाले घाव, रोम छिद्र की सूजन, मवाद वाले घाव, दाद, खाज, हर्पीज आदि, एंथेक्स आदि में लाभ होता है। मकोई के पके फल को मधु के साथ सेवन करें। इससे टीबी की बीमारी में फायदा होता है। मकोई फलों को पीसकर सुखा लें, इसे गर्म करके लेप के रूप में लगाएं। इससे शरीर के सभी अंगों में होने वाले सूजन में लाभ होता है। मकोई के सेवन से हमारी किडनी हेल्दी रहती है। अगर किसी को बार बार पेशाब आने की समस्या हो, किडनी एरिया में सूजन की समस्या हो, तो मकोई का रस या मकोई से बहुत अधिक लाभ होता है। ये फाइबर से भरपूर फल होता है, इसीलिए पेट को साफ रखने में मददगार होता है। मकोई फल खाने के साथ साथ 10 से 15 मिलीग्राम मकोई के अर्क को रोज पिलाने से किडनी में सूजन, किडनी के दर्द तथा किडनी रोगों आदि बीमारी में लाभ मिलता है। आजकल कैंसर की समस्या एक चिंता का विषय बन चुकी है। मकोई के फल में कैंसर रोधी गुण होते हैं। मकोई कैंसर सेल्स के डेवलपमेंट को रोकता है। ये ट्यूमर के निर्माण को रोकने के लिए भी लाभकारी बताया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या में मकोई का सेवन प्रभावी हो सकता है। इसमें हाइपोग्लाइसेमिक इंडेक्स होते हैं, जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करके डायबिटीज को मैनेज करने के लिए जाने जाते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण कई घातक स्वास्थ्य समस्याएं होने का खतरा बढ़ जाता है। मकोई से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है और कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी नियंत्रित रहता है, जिससे हार्ट स्ट्रोक और हार्ट डिजीज का खतरा कम हो जाता है। पीरियड क्रैम्प्स में महिलाओं को दर्द और ऐंठन का सामना करना पड़ता है।

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सरफिरोजी। श्रोताओं, आज देश भर में विश्वकर्मा दिवस मनाया जा रहा है। हर वर्ष कन्या संक्रांति के अवसर पर भगवान विश्वकर्मा के प्राकट्य पर्व के रूप में ये दिन मनाया जाता है। भारतीय परंपरा में भगवान विश्वकर्मा को निर्माण, शिल्प और तकनीकी कौशल का देवता माना जाता है। यही कारण है कि विश्वकर्मा दिवस उन कारीगरों और शिल्पकारों के कौशल और योगदान को सम्मान देने का भी अवसर है, जो अपने हाथों और औजारों से विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं को आकार देते हैं। इसी अवसर पर आज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के 3 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। 17 सितंबर 2023 को शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को एक ही व्यवस्था के तहत पहचान, कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक औजार, ऋण और बाजार तक पहुंच जैसी सहायता देना है। योजना के 3 वर्ष पूरे होने के साथ इसका 30 लाख लाभार्थियों के पंजीकरण का लक्ष्य हासिल किया जा चुका है। आज के कार्यक्रम में समझेंगे कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की रूपरेखा क्या है, इसमें किन कारीगरों को शामिल किया गया है और पंजीकरण से लेकर औपचारिक अर्थव्यवस्था से जुड़ने तक की प्रक्रिया क्या है। इसके बाद जानेंगे कि 3 वर्षों में योजना के तहत कितनी प्रगति हुई है और लाभार्थियों के अनुभव क्या बताते हैं। श्रोताओं, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना परंपरागत कारीगरों के कौशल और आज की आर्थिक जरूरतों के बीच एक कड़ी बनाने की कोशिश है। देश के अनेक कारीगर पीढ़ियों से चले आ रहे ज्ञान और हाथ के हुनर के आधार पर काम करते हैं, लेकिन उनका काम अक्सर छोटे स्तर और असंगठित क्षेत्र तक सीमित रहता है। ऐसे में जरूरत केवल आर्थिक सहायता की नहीं, बल्कि कौशल की पहचान, बेहतर औजार, प्रशिक्षण, सस्ता ऋण और बाजार तक पहुंच की भी है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना इन जरूरतों को एक ही ढांचे में जोड़ती है। आइए अब समझते हैं कि योजना के तहत कारीगरों को क्या क्या सहायता मिलती है और इसमें शामिल होने की प्रक्रिया क्या है।
2: प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि, इन 3 आधारों पर काम करती है। इसकी शुरुआत होती है पहचान से। पंजीकरण और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लाभार्थी को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र दिया जाता है। यानी पारंपरिक काम से जुड़े कारीगर को योजना के तहत एक औपचारिक पहचान मिलती है। इसके साथ ही योजना का जोर कौशल उन्नयन पर है। लाभार्थियों को 2 चरणों में प्रशिक्षण दिया जाता है। बुनियादी प्रशिक्षण 5 से 7 दिन का होता है, जबकि उन्नत प्रशिक्षण 15 दिन या उससे अधिक का हो सकता है। प्रशिक्षण के दौरान हर दिन 500 रूपए का स्टाइपेंड भी दिया जाता है। इस प्रशिक्षण में कारीगरों को आधुनिक औजारों, काम करने के बेहतर तरीकों और नए डिजाइन की जानकारी दी जाती है। साथ ही डिजिटल लेनदेन, बाजार और छोटे व्यवसाय को बेहतर तरीके से चलाने से जुड़ी जानकारी भी दी जाती है। पहचान और कौशल के साथ कारीगरों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने पर भी ध्यान दिया गया है। पात्र लाभार्थियों को आधुनिक टूल किट खरीदने के लिए 15,000 रूपए तक की सहायता ई वाउचर के रूप में दी जाती है। कारीगरों के काम को आगे बढ़ाने के लिए ऋण सुविधा भी योजना का अहम हिस्सा है। इसके तहत बिना किसी गारंटी के कुल 3 लाख रुपए तक का एंटरप्राइज डेवलपमेंट लोन 2 चरणों में मिल सकता है। पहले चरण में 1 लाख रुपए तक का ऋण 18 महीने की अवधि के लिए और दूसरे चरण में 2 लाख रुपए तक का ऋण 30 महीने की अवधि के लिए दिया जाता है। इस ऋण पर ब्याज की दर 5% तय की गई है, जबकि सरकार की ओर से 8% तक की ब्याज सहायता दी जाती है। पहले चरण का ऋण लेने के लिए बुनियादी प्रशिक्षण पूरा करना जरूरी है। दूसरे चरण का ऋण पहले ऋण के पुनर्भुगतान और डिजिटल लेनदेन अपनाने या उन्नत प्रशिक्षण पूरा करने से जुड़ा है। अब जानते हैं कि इस योजना के लिए पात्रता की शर्तें क्या है। योजना के लिए 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे कारीगर और शिल्पकार पात्र हैं जो अपने हाथों या औजारों से 18 चिन्हित पारंपरिक कामों में से किसी एक में लगे हैं। इन 18 कामों में बढ़ई

0: नाव बनाने वाले लोहार, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, पत्थर का काम करने वाले मोची, राजमिस्त्री, टोकरी और चटाई बनाने वाले, पारंपरिक खिलौना बनाने वाले नाई, माला बनाने वाले धोबी, दर्जी और मछली पकड़ने का जाल बनाने वाले कारीगर शामिल हैं। एक परिवार से केवल एक सदस्य को पंजीकरण और लाभ की अनुमति है। सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्य इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। साथ ही पिछले 5 वर्षों में इसी तरह की सरकारी ऋण आधारित योजनाओं का लाभ लेने वाले आवेदक सामान्यतः इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। पंजीकरण केवल कॉमन सर्विस सेंटर्स यानी CSC के माध्यम से किया जाता है। आधार आधारित बायोमेट्रिक पहचान के बाद 3 स्तरों पर सत्यापन होता है। श्रोताओं, किसी भी योजना की वास्तविक तस्वीर केवल उसके प्रावधानों से नहीं बनती, ये देखना भी जरूरी है कि इन सुविधाओं का लाभ जमीन पर कितने लोगों तक पहुंचा और उससे उनके काम में क्या बदलाव आया। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के 3 वर्ष पूरे होने पर इसके तहत प्रशिक्षण, टूलकिट, ऋण और डिजिटल सहायता से जुड़े आंकड़े सामने हैं। साथ ही अलग अलग राज्यों के कारीगरों के अनुभव ये बताते हैं कि योजना का इस्तेमाल किस तरह अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत 15 सितंबर 2026 तक 24,37,000 से अधिक कारीगरों को बुनियादी कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वहीं 18,16,000 से अधिक कारीगरों को टूल किट मिल चुकी थी। संस्थागत ऋण तक पहुंच की बात करें तो योजना के तहत 6,19,000 से अधिक ऋण मंजूर किए गए हैं। इनकी कुल राशि करीब 5,316 करोड़ रुपए है। ये ऋण सहायता कारीगरों को कच्चा माल खरीदने, औजारों को बेहतर बनाने और अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए उपलब्ध कराई जाती है। डिजिटल लेनदेन की दिशा में भी योजना के तहत काम किया गया है। 8,11,000 से अधिक लाभार्थियों को डिजिटल प्रोत्साहन मिला है और इसके लिए 42 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी गई है। इसके अलावा 12,000 से अधिक कारीगरों को ब्रांडिंग, उत्पाद डिजाइन, पैकेजिंग और मार्केटिंग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI टूल के इस्तेमाल का प्रशिक्षण भी दिया गया है। बाजार तक पहुंच बढ़ाने के लिए देश भर में 1500 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम और कैंप, 50 से अधिक कार्यशालाएं, 82 व्यापार मेले, 37 राज्य स्तरीय प्रदर्शनियां और 50 से अधिक फ्लैश मोब आयोजित किए गए हैं। जनवरी 2026 में दिल्ली हाट में पहला प्रधानमंत्री विश्वकर्मा राष्ट्रीय प्रदर्शनी और व्यापार मेला आयोजित किया गया। इसमें देश भर के 117 से अधिक कारीगर शामिल हुए और 2 करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री दर्ज की गई। इस मेले में 60,000 से अधिक लोगों की आवाजाही हुई। बाजार से जुड़ने के लिए रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों जैसे स्थानों पर भी कारीगरों के उत्पादों को जगह दी जा रही है। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल के तहत 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 42 से अधिक दिव्यांग विश्वकर्मा लाभार्थियों को स्टॉल उपलब्ध कराए गए हैं। इसी तरह पैकेजिंग और ब्रांडिंग को बेहतर बनाने के लिए 6 शहरों में कार्यशालाएं आयोजित की गयी जिनमें 1500 कारीगरों को प्रशिक्षण दिया गया। अब बात करते हैं उन लोगों के अनुभवों की जिनके लिए ये योजना बनाई गई है। नागालैंड के जुन्हे बोटो की टोकरी बनाने वाली श्रीमती विली ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण पूरा किया और 1,00,000 रुपए का बिना गारंटी वाला ऋण लिया। उन्होंने इस राशि का इस्तेमाल कच्चा माल खरीदने और अपने काम को बढ़ाने में किया। उनके अनुसार इससे उनकी मासिक आय करीब 40% बढ़कर लगभग 15,000 रुपए हो गयी। उत्तराखण्ड के चमोली के लकड़ी पर नक्काशी करने वाले दर्शन लाल 3 दशक से अधिक समय से इस काम से जुड़े हैं। उनके परिवार की परंपरा बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण से जुड़े कारीगरों से जुड़ी रही है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत उन्हें कौशल प्रशिक्षण, टूल किट और सस्ते ऋण सुविधा मिली। वर्ष 2026 में उन्होंने दिल्ली में आयोजित प्रधानमंत्री विश्वकर्मा हाट में भी हिस्सा लिया। ये राष्ट्रीय राजधानी में उनकी पहली प्रदर्शनी थी और इससे उन्हें अपने उत्पादों को बड़े बाजार तक पहुँचाने का अवसर मिला। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: श्रोताओं, पारंपरिक कारीगरी केवल एक पेशा नहीं बल्कि पीढ़ियों से आगे बढ़ता आया कौशल और ज्ञान है। बदलती तकनीक और बाजार की जरूरतों के बीच इस हुनर को जीवित रखने के लिए कारीगरों की आजीविका को मजबूत करना जरूरी है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के 3 वर्षों का सफर इस प्रयास को आगे बढ़ाता है। कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक थे अरुणदीप सिंह।

0: पंजाब के बरनाला जिले में एक साधारण किसान परिवार में जन्मे करम सिंह ने कहां सोचा था कि आजादी के बाद पहली बार जब तिरंगा फहराने की बात आएगी तो उसमें उनका नाम भी होगा। जी हां, आजादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराने के लिए जिन 5 सैनिकों को चुना था, इनमें लांस नायक करम सिंह भी शामिल थे। ये सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन में 1941 में भर्ती हुए थे। चलते हैं 13 अक्टूबर 1948 के दौर में, वो तारीख जब पाकिस्तान ने बंटवारे के बाद कश्मीर पर धोखे से हमला बोला था और टिटवाल के रिजमार गली से भारतीय सेना को पीछे ढकेलने की कोशिश की थी, मगर मौके पर मौजूद सिख रेजिमेंट के एक जवान ने उसकी इस मजबूत कोशिश को सफल नहीं होने दिया था। फॉरवर्ड पॉइंट पर मौजूद इस जवान ने अपनी बंदूक से पाकिस्तानी सेना के हर वार का मुकम्मल जवाब दिया था। पाकिस्तान ने एक के बाद एक करीब 8 बार लांस नायक करम सिंह की पोस्ट पर कब्जे की कोशिश की, मगर उसके सैनिक लांस नायक करम सिंह के जज्बे को मात ना दे सके। दुश्मन हमला तेज करता रहा। करम सिंह बुरी तरह घायल हो गए थे, पर डटे रहे और दुश्मन पर ग्रेनेड फेंकते रहे, एक कंपनी के बराबर मोर्चा लेते रहे और अंत में पाकिस्तान के हमले को नाकाम कर दिया। इनकी इस अदम्य वीरता के लिए इन्हें 1948 में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। लांस नायक करम सिंह उन चंद सैनिकों में रहे जिन्होंने अपने हाथों से परमवीर चक्र प्राप्त किया और लंबा जीवन जीते हुए 1995 में अपने गांव में अंतिम सांस ली।
1: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका अरोड़ा। श्रोताओं, महात्मा गांधी के लिए स्वच्छता केवल व्यक्तिगत आदत नहीं थी, वे साफ सुथरे शरीर, साफ मन और स्वच्छ वातावरण को एक बेहतर समाज का जरूरी हिस्सा मानते थे। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने के लिए एक जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया था, लेकिन जैसे जैसे शहर बढ़े, आबादी बढ़ी और हमारी खपत बढ़ी, कचरे की मात्रा भी बढ़ती गई। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 लागू किए हैं। इन नियमों का उद्देश्य कचरे को केवल हटाना नहीं बल्कि उसकी पूरी व्यवस्था को बेहतर बनाना है। आज के कार्यक्रम में जानेंगे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 किस तरह कचरे के प्रबंधन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही समझेंगे कि शहरों में वर्षों से जमा कचरे के पहाड़ को हटाने की दिशा में क्या काम हो रहा है और कचरे को किस तरह ऊर्जा, खाद और दूसरे उपयोगी संसाधनों में बदला जा सकता है। श्रोताओं, शहरों में बढ़ती आबादी और बदलती जीवन शैली के साथ कचरे की मात्रा भी लगातार बढ़ रही है, लेकिन समस्या केवल कचरे की बढ़ती मात्रा की नहीं है। जब कचरे को सही तरीके से अलग, कलेक्ट और प्रोसेस नहीं किया जाता तो इसका असर हमारे आसपास के वातावरण पर पड़ता है। कचरा खुले में पड़ा रहे या बिना छंटाई के एक जगह जमा होता रहे, इससे हवा और पानी के प्रदूषण के साथ साथ बीमारियों और आग जैसी समस्याओं का खतरा भी बढ़ता है। दूसरी ओर कचरे में मौजूद कई ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें दोबारा इस्तेमाल या रिसाइकल किया जा सकता है, लेकिन जब अलग अलग तरह का कचरा एक साथ मिल जाता है तो इन चीजों को वापस उपयोग में लाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कचरा प्रबंधन की शुरुआत वहीं से जरूरी है जहाँ कचरा पैदा होता है। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 लागू किए हैं। पहली अप्रैल 2026 से लागू हुए ये नियम वर्ष 2016 के नियमों की जगह लेते हैं और कचरे के कलेक्शन से लेकर प्रोसेसिंग तथा डिस्पोजल तक पूरी व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर देते हैं। आइए अब समझते हैं कि नए नियम इस व्यवस्था में क्या बदलाव लेकर आए हैं।
3: इनका सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है कचरे को चार अलग अलग हिस्सों में बांटना। पहला है गीला कचरा, इसमें रसोई का कचरा, फल सब्जियों के छिलके और खाने से जुड़ा दूसरे तरह का जैविक कचरा आता है। इसे खाद बनाने या बायोगैस तैयार करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा है सूखा कचरा, इसमें कागज, प्लास्टिक, धातु, कांच और लकड़ी जैसी चीजें आती हैं। इन्हें अलग करके दोबारा इस्तेमाल या रिसाइकिलिंग के लिए भेजा जा सकता है। तीसरा है सैनिटरी वेस्ट, जैसे इस्तेमाल किए गए डायपर्स और सैनिटरी पैड्स, इसे अलग और सुरक्षित तरीके से रखना जरूरी होगा। चौथा है स्पेशल केयर वेस्ट, इसमें दवाइयाँ, बल्ब, मरकरी वाले उपकरण और पेंट कैंस जैसी चीजें शामिल हैं। इन्हें सामान्य कचरे के साथ मिलाने के बजाय अधिकृत एजेंसियों या तय किए गए केंद्रों तक पहुंचाना होगा। नए नियमों में बड़े स्तर पर कचरा पैदा करने वाले संस्थानों की जिम्मेदारी तय की गई है। जिन संस्थानों का क्षेत्रफल 20,000 वर्ग मीटर या उससे ज्यादा है, या जो रोज 40,000 लीटर या उससे ज्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं, या प्रतिदिन कम से कम 100 किलोग्राम कचरा पैदा करते हैं, उन्हें बल्क वेस्ट जनरेटर्स माना गया है। इनमें बड़े सरकारी कार्यालय, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट और रेसिडेंशियल सोसाइटीज जैसे स्थान शामिल हैं। इन संस्थानों को अपने कचरे के कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट और प्रोसेसिंग की जिम्मेदारी निभानी होगी। जहां संभव हो, गीले कचरे को उसी परिसर में प्रोसेस करने पर जोर दिया गया है। नए नियमों में टेक्नोलॉजी को भी महत्वपूर्ण जगह दी गई है। कचरे के पैदा होने से लेकर उसके कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग और डिस्पोजल तक की जानकारी एक सेंट्रल ऑनलाइन सिस्टम के जरिए ट्रैक की जा सकेगी। वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज का रजिस्ट्रेशन और रिपोर्टिंग भी ऑनलाइन होगा। फैसिलिटीज का ऑडिट किया जाएगा और की जानकारी भी ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ नियमों में एक और महत्वपूर्ण बदलाव है, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। अगर कोई व्यक्ति या संस्थान नियमों का पालन नहीं करती, गलत जानकारी देती है, तो उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। लैंडफिल के मामले में भी सोच बदली गई है। अब लैंडफिल में वही कचरा जाना चाहिए जिसे न रिसाइकल किया जा सकता है, न उससे एनर्जी हासिल की जा सकती है और न ही उसका कोई दूसरा उपयोग संभव है।
2: श्रोताओं, नए नियम आज से व्यवस्था तो सुधार सकते हैं, लेकिन शहरों में पिछले कई दशकों से जमा कचरे का क्या होगा? भारत के कई शहरों में कचरे के बड़े बड़े ढेर आज भी मौजूद हैं। ये केवल पुराने कचरे के ढेर नहीं हैं, इनसे जमीन, हवा और भूजल पर असर पड़ता है। इनमें आग लगने और हानिकारक गैसें निकलने का खतरा भी बना रहता है। इसलिए कचरे के प्रबंधन की नई व्यवस्था तभी पूरी मानी जाएगी जब हम पुराने डंप साइट्स को भी खत्म करें और नए डंप साइट्स बनने से भी रोकें। इसी सोच के साथ सामने आता है लक्ष्य जीरो डंप साइट। ये सिर्फ सफाई का अभियान नहीं है, इसे ऐसे विकास की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा सकता है जिसमें शहर साफ भी हों और कचरे से संसाधन भी तैयार हों।
3: भारत में करीब 2479 लेगेसी डंप साइट्स की पहचान की गई है। इनमें वर्षों से करीब 25 करोड़ मीट्रिक टन कचरा जमा है और ये करीब 15,000 एकड़ जमीन पर फैले हुए हैं। इन पुराने डंप साइट्स को हटाने के लिए नवंबर 2025 में डंप साइट रिडेम्पशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसी अभियान का नाम है लक्ष्य जीरो डंप साइट। इसके तहत पुराने कचरे को वैज्ञानिक तरीके से हटाया जा रहा है। इसे बायो माइनिंग कहा जाता है। सरल शब्दों में समझे तो पुराने कचरे को खोदकर बाहर निकाला जाता है और फिर अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। अब तक 60% से अधिक लेगेसी वेस्ट को प्रोसेस किया जा चुका है। जीरो डंप साइट की दिशा में 214 हाई इंपैक्ट डंप साइट्स पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इनमें देश में बचे हुए लेगेसी वेस्ट का करीब 80% हिस्सा मौजूद है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है, डंप साइट हटाना अपने आप में अंतिम हल नहीं है। अगर आज पुराना डंप साइट हटा दिया और कल फिर उसी जगह नया कचरा जमा होने लगा तो समस्या वापस आ जाएगी। इसलिए जीरो डंप साइट की रणनीति दो हिस्सों पर काम करती है, पुराने कचरे को हटाना और नए डंप साइट्स बनने से रोकना। इस रणनीति के तहत शहरों में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज, कंपोस्ट प्लांट्स और वेस्ट टू एनर्जी जैसी सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। यानी कचरे की यात्रा अब लैंडफिल तक पहुंचने की नहीं बल्कि रिकवरी और रीयूज तक पहुंचने की होनी चाहिए। यही सोच हमें सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ ले जाती है। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब है किसी चीज के इस्तेमाल के बाद उसे सीधे कचरा मानने की बजाय उसमें मौजूद संसाधन को फिर से उपयोग में लाया जाए। ये सोच केवल शहरों के कचरे तक सीमित नहीं है, कृषि में भी हर साल बड़ी मात्रा में वेस्ट पैदा होता है। भारत में हर साल करीब 350 मिलियन टन कृषि कचरा पैदा होने का अनुमान है। इसमें फसल के अवशेष, भूसा, धान की भूसी, पशुओं का गोबर और फूड प्रोसेसिंग से निकलने वाला कचरा शामिल है। अगर इन्हें जला दिया जाए या खुले में छोड़ दिया जाए तो इससे प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैस इमिशंस बढ़ सकते हैं, लेकिन यही कचरा खाद, बायोगैस, बायोफ्यूल और दूसरे उपयोगी उत्पादों का स्रोत भी बन सकता है। इसी सोच के तहत गोवर्धन जैसी पहल पशुओं के गोबर, फसल के अवशेष और फूड वेस्ट से बायोगैस और ऑर्गेनिक मैन्योर तैयार करने को बढ़ावा देती है। 14 जनवरी 2026 तक देश के 51% से अधिक जिलों में 979 बायोगैस प्लांट्स काम कर रहे थे। इसी तरह क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट के तहत किसानों को फसल के अवशेष जलाने के बजाय उन्हें खेत में मिलाने और खेत की मिट्टी को ढकने की प्रक्रिया यानी मल्चिंग के लिए इस्तेमाल करने या दूसरे उपयोगों के लिए बाहर ले जाने में मदद दी जा रही है। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
2: श्रोताओं, स्वच्छता सरकार, नगर निकायों और उद्योगों की जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन इसकी शुरुआत हम नागरिकों से होती है। हम घर से निकलने वाले कचरे को अलग करते हैं या नहीं, सड़क पर कचरा फेंकते हैं या नहीं, सिंगल यूज चीजों का इस्तेमाल कितना करते हैं और अपने आसपास सफाई बनाए रखते हैं या नहीं, इन छोटे फैसलों का असर पूरी व्यवस्था पर पड़ता है। स्वच्छ भारत का लक्ष्य केवल साफ सड़कें और साफ शहर नहीं है, ये ऐसी व्यवस्था बनाने का लक्ष्य है जिसमें स्वच्छता हमारी आदत बने और विकास के साथ पर्यावरण की भी रक्षा हो। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया है अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी। आप इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। श्रोताओं, अपनी प्रतिक्रिया देना न भूलें।

साल 1947, देश को आजाद हुए मुश्किल से कुछ महीने ही हुए थे जब पाकिस्तान ने कबीलाई लश्कर घुसपैठियों के साथ श्रीनगर पर हमला बोल दिया था। मकसद था श्रीनगर एयरबेस पर कब्जा करना। तब 700 से ज्यादा दुश्मनों को हमारे 50 जवानों ने न सिर्फ घंटों तक रोके रखा बल्कि 200 घुसपैठियों का काम तमाम कर दिया, और जिनको इस मिशन की जिम्मेदारी मिली थी उन्होंने अपनी जान देकर वतन की रक्षा की। और बन गए देश की शान पहले परमवीर पाने वाले योद्धा। ये कहानी है मेजर सोमनाथ शर्मा की। 22 फरवरी 1942 को भारतीय सेना में 4th कुमायूं रेजिमेंट में बतौर कमीशन्ड अधिकारी प्रवेश लिया। मेजर सोमनाथ शर्मा का फौजी कार्यकाल शुरू ही द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ, जब उन्हें मलाया के पास के रण में भेजा गया था। सोमनाथ शर्मा की टुकड़ी को कश्मीर घाटी के बड़गाम मोर्चे पर जाने का आदेश जब मिला था तब उनका बायां हाथ चोटिल था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे मैगजीन में गोलियां भरकर सैनिकों को देते गए, लेकिन दुर्भाग्य से वे दुश्मन के एक मोर्टार का निशाना बन गए और वीर गति को प्राप्त हुए। अंतिम समय में भी वे दुश्मनों का सामना करने के लिए अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाते रहे। मेजर सोमनाथ परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे।

नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी रसोई में मौजूद साधारण दिखने वाला ड्रमस्टिक, जिसे सहजन भी कहते हैं, सेहत के लिए कितना फायदेमंद है। ये सिर्फ एक सब्जी नहीं बल्कि पोषण से भरपूर एक सुपर फूड है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ड्रमस्टिक के जबरदस्त फायदे, इसे खाने का सही तरीका और कुछ खास टिप्स। ड्रमस्टिक, जिसे मुनगा या सहजन के नाम से भी जाना जाता है, एक पौष्टिक पेड़ का फल है। इसके पत्ते, फल, फूल और यहाँ तक कि इसकी छाल भी औषधीय गुणों से भरपूर होती है। इसे आयुर्वेद में एक वरदान माना गया है और इसका उपयोग कई बीमारियों के इलाज में किया जाता है। ड्रमस्टिक के स्वास्थ्य लाभ। प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है। इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। हड्डियों को मजबूत करता है। ड्रमस्टिक में कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं, जो हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। पाचन में सुधार करता है। ये फाइबर से भरपूर होता है, जिससे पेट की समस्याओं जैसे गैस, अपच और कब्ज से राहत मिलती है। ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। डायबिटीज के मरीजों के लिए यह बेहद फायदेमंद है, क्योंकि यह ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है। दिल की सेहत के लिए फायदेमंद। इसमें पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो ब्लड प्रेशर को संतुलित रखते हैं और दिल की बीमारियों के खतरे को कम करते हैं। त्वचा और बालों के लिए लाभकारी। ड्रमस्टिक का सेवन करने से त्वचा चमकदार बनती है और बालों की ग्रोथ बेहतर होती है। ड्रमस्टिक का उपयोग कैसे करें? अब जानते हैं कि इसे अपनी डाइट में कैसे शामिल करें। सब्जी। ड्रमस्टिक को आलू, टमाटर और हल्दी के साथ मिलाकर स्वादिष्ट सब्जी बनाई जा सकती है। सूप। इसका सूप बनाने से आपको इसके पोषक तत्व पूरे मिलते हैं। पाउडर। ड्रमस्टिक की पत्तियों को सुखाकर उसका पाउडर बना सकते हैं, जिसे स्मूदी या दूध में मिला सकते हैं। चाय। ड्रमस्टिक की पत्तियों की चाय भी बहुत फायदेमंद होती है। ध्यान देने योग्य बातें। दोस्तों, हालांकि ड्रमस्टिक सेहत के लिए फायदेमंद है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अत्यधिक सेवन से पेट में जलन या डायरिया हो सकता है। गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन डॉक्टर की सलाह से करना चाहिए। अगर आपको कोई एलर्जी हो तो पहले डॉक्टर से सलाह लें। तो दोस्तों, ये थे ड्रमस्टिक के अद्भुत फायदे।

0: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
1: माय नेम इज प्रियंका चंदेलिया। बाय प्रोफेशनली मैं मॉडलिंग करती हूँ, मैगजीन शूट्स करती हूँ ग्रह शोभा के, एंड रीड इंडिया से मैं कोर्स कर रही हूँ, हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग ले रही हूँ, जहाँ मैं दीक्षा मैम से मिली हूँ। दीक्षा मैम बहुत अच्छी है, इनका नेचर बहुत अच्छा है, सिलेबस भी काफ़ी अच्छे से रीड करा रही हैं मैम, एंड प्रैक्टिकल्स भी काफ़ी अच्छे से समझा रही हैं मैम। मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। एक्चुअली सर मेरी स्कूलिंग यहीं से हुई है, शाहबाद मोहम्मदपुर विलेज गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, एंड मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब पे है, एमसीडी डिपार्टमेंट में क्लर्क है। मैं मदर भी एमसीडी डिपार्टमेंट में ही है, गवर्नमेंट सर्वेंट है। सर मुझे मॉडल बनना था बट मैं अभी उस लेवल तक जा नहीं पाई, बट मुझे लगा अब काफ़ी टाइम हो गया, मुझे 4-5 ईयर्स हो चुके हैं मॉडलिंग लाइन में, बट मुझे इतना उसमें कुछ नहीं लग रहा। मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग से कुछ सीख सकूं, अच्छा कर सकूं, बट यहाँ पे आने के बाद मेरी पर्सनैलिटी भी डेवलप हुई है, एंड दीक्षा मैम ने बताया है मुझे कैसे क्या होगा, और एक्चुअली मैं यहाँ पे आने के बाद जॉब के लिए भी अप्लाई कर चुकी हूँ, पासवर्ड रेस्टोरेंट द्वारका सेक्टर 23, कुछ टाइम बाद मेरी ज्वाइनिंग है वहाँ पे। एक्चुअली सर रीड इंडिया से मैंने एक ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी किया था, कुछ टाइम आई थी मैं यहाँ पे 4-5 ईयर्स से पहले, तब से ही मैं रीड इंडिया को जानती हूँ, एंड रीड इंडिया बहुत बेस्ट है। रीड इंडिया से सीखने को काफ़ी कुछ है, अगर हमें उस लायक बनना है तो हम किसी को, मैं बाहर जाके किसी को बता भी सकती हूँ रीड इंडिया से मुझे क्या क्या मिल रहा है, एंड मुझे क्या क्या सिखाया जा रहा है। जॉब के लिए, अच्छी जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, एंड रीड इंडिया की जो कोर्सेज है वोकेशनल्स वगैरह के, वो बहुत बेस्ट हैं, ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए।
2: मैं पूनम तनवर, शाहबाद गांव में रहने वाली, दिल्ली में, मेरा जन्म दिल्ली में हुआ। मुझे अपने पेरेंट्स पे इतना प्राउड है, उन्होंने मेरे लिए आज तक जो किया, सीरियसली उन्होंने जो भी किया सिर्फ मेरे लिए किया, और मैं अब उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, उनके लिए कुछ बन के दिखाना चाहती हूँ, जो लोग बोले कि ये उनकी बेटी है। मैं अपनी पहचान अपने पेरेंट्स के साथ बनाना चाहती हूँ, उनके लिए इतना कुछ करना चाहती हूँ कि लोग देख के बोले कि यार इन्होंने इनके लिए कुछ किया, बहुत अच्छा किया। उन्होंने मेरा एडमिशन पूर्णिमा स्कूल, इशावाद गांव के पूर्णिमा स्कूल में कराया, वहाँ यहाँ पर मैं बचपन से पढ़ी 5th क्लास तक, फिर उन्हीं के साथ मैं हर काम, ऐसा एक काम नहीं था जो मैंने उनके बिना आज तक किया, हर चीज़, स्कूल भी, यहाँ तक कि स्कूल लेने जाना, मुझे छोड़ने जाना, मेरे स्कूल सुबह सुबह मॉर्निंग में मेरा मिल्क शेक भी वही बनाते थे, मतलब स्टडीज़ करना, अपने स्कूल से आके जो स्कूल में मैं पूरे दिन मस्ती करती थी, पढ़ाई करती थी, टीचर के साथ, फ्रेंड्स के साथ हर बात आके उनसे शेयर करती थी, कोई प्रॉब्लम होती थी सबसे पहले अपने पा के पास जाके अपनी शेयर करती थी। आज भी अगर वो थोड़ी देर के लिए भी कहीं चले जाते हैं तो मन उदास हो जाता है। मुझे अपनी मम्मी से भी बहुत लगाव है, बट लेकिन पा से थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि वो अपने, मतलब सारा दिन मैं अपने पापा के साथ ज़्यादा रहती हूँ, मम्मी मतलब स्कूल में, स्कूल के लिए अगर ट्यूशन छोड़ाना है या फिर और कुछ कर देना, बट लेकिन मैं पा के साथ जो मैं करती हूँ, सीरियसली वो बेस्ट मोमेंट मेरे पापा के साथ जो है, बहुत अच्छे मोमेंट है। मैं अपने लाइफ टाइम अपने पापा के साथ रहना चाहती हूँ, लाइफ टाइम उनके लिए जितना करूँ, मैं जितना करूँ उतना ही कम है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं कि गर्ल्स कुछ नहीं कर सकती है, गर्ल पावर जो होती है, वुमेन पावर, वो एक सबसे बेस्ट पावर होती है, वो गॉड ही उनको पावर देके भेजता है। अगर गर्ल्स बनाई है, वुमेन बनाई, तो उनके लिए भी स्पेशल पावर भी उनको दी है। ऐसा कुछ नहीं कि गर्ल्स कुछ नहीं कर सकती है, बाहर जाके पढ़ नहीं सकती है, कॉलेज नहीं जा सकती, या फिर ये वाला काम उनके लिए नहीं बनाए, हर काम गर्ल्स के लिए बनाए। अगर भगवान ने गर्ल्स को, वुमेन्स को बनाया है, तो उनके लिए भी हर काम बनाया है, वो पावर उनके लिए उनको दी है। ऐसी कोई बात नहीं है कि गाँव की लड़कियाँ ये नहीं कर सकती है, शहर की लड़कियाँ ये कर सकती है, हर काम लड़कियाँ कर सकती है, हर चीज़ पॉसिबल है। हाँ, रीड इंडिया सेंटर पे आके मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पे फ्रेंड्स बनाए मैंने, टीचर्स के साथ बहुत मस्ती की। यहाँ पे आके मेरा कोई एम नहीं था कि मैं ये सीखे जाऊंगी, बस मस्ती के लिए आ गई थी। बट लेकिन यहाँ पे आने के बाद कुछ सीखने को भी मिला, इतनी अच्छी टीचर्स मिली। उनके साथ जब मतलब वो डांटती भी है तो भी अच्छा लगता है। एक दिन बात ना करो तो टीचर भी परेशान हो जाती है, जिसको क्या हो गया। मतलब हर चीज यहाँ की हर चीज अच्छी है।
3: आई एम प्रियंका जायसवाल, आई बिलोंग यूपी इलाहाबाद एंड लिविंग शाहबाद मोहम्मदपुर। मैं यहाँ पे दिल्ली में कोर्स करने के लिए आई हूँ, फैशन डिजाइनर कोर्स। एंड वहाँ पे यूपी में अप्लाई नहीं था जॉब, मतलब कोर्स करने के लिए। हमारे पापा यहाँ गवर्नमेंट जॉब करते हैं, मैं उन्हीं के साथ रहती हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे सिलाई इसलिए सीख रही हूँ क्योंकि मैं अपने गाँव वाली लड़कियों को जो घर से बाहर नहीं निकल सकती ना, मैं उनको घर के बाहर निकालने के लिए सिलाई सेंटर खोलना चाहती थी, और भी फ्री कोर्सेज के लिए। मैं इतना ही कहूँगी अपने हर लड़की माँ बाप को कि प्लीज उन्हें बाहर भेजें, कुछ करने के लिए उनको भेजें। अधिकतर यहाँ पे उसके हस्बैंड यही सोचते हैं कि ये बोझ है, तो ऐसे ना करें, उसे मतलब समझे कि ये बोझ है। कम से कम अगर वो कुछ करेगी बाहर जाके तो कम से कम उसके घर में हेल्प ही होगा, अच्छा ही होगा जो होगा। मेरी बचपन से यही हॉबी थी कि मैं पुलिस बनूं, लेकिन मेरी लंबाई छोटी होने के कारण मैं पुलिस नहीं बन सकी। इसलिए मैं ऐसे ही अपने गांव में ही हेल्प करना चाहती हूँ छोटा मोटा। और मेरी स्कूल लाइफ तो बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा, जो अभी तक नहीं मिली ना शायद न मिल पाएगी कभी। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी अपनी लाइफ अच्छे बनाने के लिए, कोर्स करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए यही अच्छा मौका है। अपने माँ बाप से कहें हमें घर से बाहर करने के लिए कोर्सेज के लिए जारी रखें। दिल्ली में पहले हमारे पापा लोग रहते हैं, हम तो बचपन से गांव में थे, तो इंटर मतलब 12th क्लास पास होने के बाद हम दिल्ली आए। जब दिल्ली यहाँ पे आए तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज थे, अच्छे अच्छे भी थे, तो इसलिए मैंने फैशन डिजाइनर का कोर्सेज अप्लाई कर लिया।

0: प्रयासों की बुनाई सम्मान की कमाई। खेमराज सुंदरियाल, पद्मश्री 2026। हजारों की उम्मीद और उनकी जीविका के मार्गदर्शक हैं खेमराज सुंदरियाल, जिन्हें सब स्नेहवश गुरुजी कहते हैं। खेमराज जी का जन्म 1943 में पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। आर्थिक अभाव के कारण उन्होंने बचपन में बहुत कठिनाइयों का सामना किया।
1: मैं जब पढ़ रहा था एक दिन संत कबीर जी के बारे में जाना, उनका बड़ा नाम है और हम इतनी किताबें पढ़ते हैं उनके, तो मैं तो उन्हीं के जैसा काम सीखूंगा। मैंने ठान लिया कि मैं बुनकर बनूंगा।
0: हैंडलूम टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा करने के बाद खेमराज सुंदरियाल जी की काम की तलाश ने उन्हें यह बता दिया कि रोजगार के लिए उन्हें दिल्ली जाना ही होगा। लेकिन खेमराज जी के पास पौड़ी से दिल्ली आने तक के पैसे नहीं थे। तभी एक दिन उनके चचेरे भाई को चोट लग गई और उन्हें इलाज के लिए दिल्ली ले जाना पड़ा। उनकी देखभाल के लिए इन्हें भी साथ भेजा गया और यही सफर खेमराज जी को पहली बार दिल्ली ले आया। दिल्ली क्लॉथ मिल में काम करने के बाद खेमराज सुंदरियाल बुनकर सहायता केंद्र में कार्यरत हो गए। 9 से 10 साल गुजर गए। काशी के बुनकर सेवा केंद्र में खेमराज जी की मुलाकात एक टेक्सटाइल आर्टिस्ट एसवी निकम जी से हुई। उन्होंने इनकी प्रतिभा को पहचान कर इन्हें केंद्र से लौटने के बाद आर्टिस्ट लोगों के लिए टैपेस्ट्री बनाने की सलाह दी।
1: उन्होंने मुझे 175 रुपए दिए लूम खरीदने के लिए।
0: इसी दौरान खेमराज सुंदरियाल बुनकर सेवा केंद्र की पानीपत शाखा में आ गए और जल्द ही देश के कई सुप्रसिद्ध कलाकारों के लिए टैपेस्ट्री बुनने लगे। जिस लड़के के पास पौड़ी से दिल्ली आने तक के पैसे नहीं थे, उनका काम उन्हें देश विदेश ले गया। जामदानी तकनीक पर खेमराज जी की पकड़ देखते ही बनती थी और साथ ही उन्होंने हत्ता तकनीक और पॉलिएस्टर की बुनाई भी शुरू कर दी। अपनी इसी लगन से उन्होंने पानीपत की दरी और खेस को एक बार फिर से प्रसिद्ध कर दिया। रिटायर होने के बाद खेमराज जी ने विष्णु हैंडलूम कोऑपरेटिव शुरू किया, जिसमें वो अब तक 10,000 से ज्यादा युवाओं को काम सिखा चुके हैं। भारत के कई प्रख्यात संस्थानों के छात्र भी खेमराज जी से बुनाई की कला सीखने आते हैं।
1: इस कला ने मुझे मान सम्मान और पहचान दिलाई। अब लगता है मैंने इस कला को नहीं, इस कला ने मुझे अपना है।
0: खेमराज सुंदरियाल, पद्मश्री 2026। कोटि कोटि नमस्कार।
2: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं प्राची प्रिया। श्रोताओं, शहर के बाजार में मिलने वाला बांस का एक साधारण सा थैला अपने भीतर बदलाव की एक बड़ी कहानी समेटे हो सकता है। ये कहानी एक छोटे से गांव के पारंपरिक शिल्प से शुरू होकर आधुनिक उद्यम, रोजगार और राष्ट्रीय नीति में बदलाव तक पहुंच सकती है। गुरुग्राम में आयोजित सरस आजीविका मेले में असम की विशाखा दीदी की ऐसी ही कहानी सामने आई। वर्ष 2014 में उन्होंने बांस का थैला बनाया। स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद उन्होंने अपने ससुर के बांस शिल्प उद्यम को नए डिजाइनों के साथ फिर से आगे बढ़ाया। सरकारी सहायता और प्रदर्शनियों के जरिए उन्हें बड़े बाजारों तक एक बड़ी लंबी चौड़ी पहुंच मिली। वर्ष 2025 में उन्होंने भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग लिया और बांस उत्पादों की बिक्री से 2 लाख रुपए की कमाई की। विशाखा दीदी की यात्रा बताती है कि पारंपरिक संसाधन और स्थानीय हुनर को सही अवसर, बाजार और सरकारी सहयोग मिले तो वो एक सफल उद्यम का रूप ले सकता है। श्रोताओं, बांस भारत के अनेक समुदायों की पारंपरिक आजीविका से लंबे समय से जुड़ा रहा है, लेकिन एक समय पुराने नियामक प्रावधानों के कारण इसकी आर्थिक क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा था। वर्ष 2017 में सरकार ने बांस को पेड़ की श्रेणी से हटाकर इसे कड़े वन नियमों से मुक्त करने का महत्वपूर्ण कदम उठाया। इस बदलाव ने बांस क्षेत्र में नवाचार, उद्यमिता और मूल्य वर्धन के नए रास्ते खोले। आज इसका प्रभाव विशेष रूप से पूर्वोत्तर भारत में दिखाई दे रहा है, जहां बांस रोजगार, व्यवसाय और नवाचार का माध्यम बन गया है। आइए अब विस्तार से समझते हैं कि किस तरह बांस पारंपरिक शिल्प से आगे बढ़कर आधुनिक उद्यम, कृषि, विनिर्माण और टिकाऊ आजीविका का आधार बन रहा है।
4: श्रोताओं, बांस क्षेत्र में बदलाव की कई कहानियां देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं। सिक्किम में गैंगटॉक के पास फैशन डिजाइनर और सतत विकास की प्रणेता चिमी ओंगमू भूटिया का लक्सटल डिजाइन स्टूडियो इसका एक उदाहरण है। महिलाओं द्वारा संचालित ये विनिर्माण उद्यम बांस से हस्तशिल्प, अगरबत्ती, फर्नीचर और आंतरिक सज्जा की वस्तुओं सहित कई उत्पाद तैयार करता है। त्रिपुरा में विजय सूत्रधार ने बांस उत्पादों के निर्माण को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाया है। नागालैंड में दीमापुर के आसपास स्वयं सहायता समूह बांस आधारित खाद्य उत्पादों में मूल्य वर्धन कर रहे हैं। वहीं खोरोलो क्रिएटिव क्राफ्ट्स जैसे स्थानीय उद्यम फर्नीचर और हस्तशिल्प का उत्पादन कर रहे हैं। मिजोरम के मामित जिले में बांस के ऊतक संवर्धन यानी पौध तैयार करने की तकनीक और पॉलीहाउस प्रबंधन के जरिए वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये उदाहरण बताते हैं कि बांस का क्षेत्र अब केवल कच्चे बांस या पारंपरिक हस्तशिल्प तक सीमित नहीं है। इसमें तकनीक, डिजाइन, प्रसंस्करण और आधुनिक बाजार के जरिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। लेकिन इतने बड़े बदलाव के लिए केवल कुशल कारीगर पर्याप्त नहीं है, इसके लिए प्रौद्योगिकी, प्रसंस्करण सुविधाएं, प्रशिक्षण और मजबूत बाजार संपर्क भी जरूरी है। यहीं पर सरकारी सहायता की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। राष्ट्रीय बांस मिशन बांस किसानों, विनिर्माताओं और विक्रेताओं के लिए खेती, प्रसंस्करण और बाजार तक पहुँच पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके साथ ही गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री उपलब्ध कराने के लिए नर्सरियों को भी सहायता दी जाती है। मध्य प्रदेश के विजय पाटीदार का अनुभव बताता है कि बांस किस तरह से किसानों के लिए दीर्घकालिक आजीविका का साधन बन सकता है। वर्ष 2019 में पारंपरिक खेती से लगातार नुकसान होने के बाद उन्होंने बांस की खेती शुरू की। बांस मिशन के सहयोग से उन्होंने करीब 4000 बांस के पौधे लगाए। दो वर्षों के भीतर उन्होंने बांस की बल्ली यानी पोल्स बेचकर लगभग 75,000 रुपए कमाए। बांस की खेती के साथ साथ उन्होंने अंतर फसल के रूप में मिर्च, शिमला मिर्च, अदरक और लहसुन भी उगाए। इस तरह बांस उनके लिए केवल एक फसल नहीं बल्कि दीर्घकालिक आजीविका का माध्यम बन गया। श्रोताओं, बांस से जुड़े बदलाव का एक महत्वपूर्ण पहलू इसकी प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक उपयोगिता का विस्तार भी है। नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच यानी NCTAR ने खाद्य और कृषि प्रसंस्करण, निर्माण सामग्री, विनिर्माण मशीनरी, नवीकरणीय ऊर्जा और औद्योगिक उत्पादों सहित कई व्यावसायिक अनुप्रयोग में बांस प्रौद्योगिकी को समर्थन दिया है। इन प्रयासों से प्रतिवर्ष लगभग 3 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं और बांस उत्पादों का मूल्य संवर्धन 10% से बढ़कर 70% तक हुआ है। बांस की नई संभावनाओं का एक उदाहरण इंजीनियर्ड बांस है। इसे कच्चे बांस के रेशों, पट्टियों या छोटे टुकड़ों को आपस में जोड़कर और दबाकर तैयार किया जाता है। इंजीनियर्ड बांस और नए डिजाइन से फर्नीचर को वास्तुकारों, डिजाइनरों और इंटीरियर डेकोरेटरों का ध्यान मिल रहा है। आपदा राहत और पुनर्वास के लिए अब तक 42 लाख वर्ग फुट से अधिक इंजीनियर्ड बांस संरचनाओं का निर्माण किया गया है। छत्तीसगढ़ में करीब 20,000 बच्चों के लिए 576 स्कूल कक्ष इंजीनियर्ड बांस से बनाए गए हैं। ये दिखाता है कि बांस अब उन निर्माण क्षेत्रों में भी अपनी जगह बना रहा है जो कभी मुख्य रूप से पारंपरिक औद्योगिक सामग्रियों से जुड़े माने जाते थे।
3: श्रोताओं, बांस क्षेत्र में बदलाव की कहानी केवल उत्पादों और तकनीक तक सीमित नहीं है, इसकी मूल्य श्रृंखला में महिलाओं की भागीदारी भी लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है। महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बांस आधारित उत्पादन और उद्यमों के जरिए आय, रोजगार और आत्मनिर्भरता के नए अवसर तैयार कर रहे हैं। आइए अब जानते हैं कि बांस आधारित उद्यमों ने महिलाओं की आजीविका को किस तरह मजबूत किया है और प्रशिक्षण तथा क्षमता विकास इस बदलाव में किस तरह मददगार साबित हो रहे हैं।
5: श्रोता, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बांस आधारित अगरबत्ती पहल महिलाओं की बदलती आजीविका का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। गढ़चिरौली अगरबत्ती परियोजना यानी GAP ने वर्ष 2012 में जिले भर में उत्पादन केंद्र शुरू किए। वर्ष 2020 तक इस परियोजना के 32 केंद्र थे, इनमें लगभग 90% श्रमिक महिलाएं थी। प्रत्येक महिला की मासिक आय लगभग 5,000 रूपए तक पहुँच गयी। रोजगार के दिनों में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। जहाँ पहले महिलाओं को साल में करीब 45 से 60 दिन का काम मिलता था, वहीं ये बढ़कर 225 दिनों से अधिक हो गया। काम घर के करीब होने लगा और शारीरिक रूप से कम थकाऊ भी हुआ। इसके साथ महिलाओं को नए कौशल, आत्मविश्वास और नेतृत्व के अवसर मिले। इस पहल ने आय के स्रोत के रूप में वनों पर निर्भरता को भी कम किया। श्रोताओं, ऐसी कहानियों के पीछे क्षमता विकास और प्रशिक्षण की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। CSIR राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान यानी CSIRNERI नागपुर ने जून 2026 में महिला स्वयं सहायता समूह के लिए बांस हस्तशिल्प पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इस प्रशिक्षण का विषय था फ्लाई एश डंप पर उगाए गए बांस से बने हस्तशिल्प के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूह का सशक्तिकरण। प्रशिक्षण में बांस की कटाई, उपचार और प्रसंस्करण, हस्तशिल्प उत्पादन, मूल्यवर्धित उत्पादों का विकास, उद्यमिता, ब्रांडिंग, विपणन और उत्पाद डिजाइन जैसे क्षेत्रों में व्यवहारिक कौशल प्रदान किए गए। इस पहल ने ये भी दिखाया कि पुनः प्राप्त फ्लाई एश डंप स्थलों को उत्पादक परिदृश्यों में बदला जा सकता है। इससे स्थानीय समुदायों के लिए पर्यावरणीय और सामाजिक आर्थिक दोनों तरह के लाभ पैदा हो सकते हैं।
3: श्रोताओं, बांस की पूरी कहानी को देखें तो इसमें एक तरफ किसान है, दूसरी तरफ कारीगर और स्वयं सहायता समूह है। इनके साथ तकनीक, प्रशिक्षण, प्रसंस्करण और बाजार जुड़ रहे हैं। यही जुड़ाव बांस को एक पारंपरिक संसाधन से आगे ले जाकर आधुनिक मूल्य श्रृंखला का हिस्सा बना रहा है। वर्ष 2017 में नियामक बदलाव के बाद बांस क्षेत्र में नवाचार और उद्यमिता के लिए नए अवसर खुले। राष्ट्रीय बांस मिशन जैसे प्रयासों ने खेती, प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच को समर्थन दिया। वहीं NECTAR जैसी संस्थाओं के माध्यम से बांस के नए व्यावसायिक उपयोगों को बढ़ावा मिला। आज बांस से थैले और हस्तशिल्प ही नहीं बल्कि अगरबत्ती, फर्नीचर, आंतरिक सज्जा की वस्तुएं, खाद्य उत्पाद, निर्माण सामग्री और इंजीनियर्ड संरचनाएं भी तैयार हो रही हैं। इससे बांस की मूल्य श्रृंखला अधिक विविध और मूल्य संचालित बन रही है। श्रोताओं, बांस की कहानी अब केवल एक पौधे या पारंपरिक शिल्प की कहानी नहीं रह गई है, ये लोगों, संभावनाओं और परिवर्तन की कहानी बन रही है। पूरे भारत में बांस आज आजीविका, उद्यम और स्थायी अवसरों का माध्यम बन रहा है। इसलिए भारत में बांस की कहानी अब केवल इस बारे में नहीं है कि बांस से क्या बनाया जा सकता है, ये इस बारे में है कि जब किसी पारंपरिक संसाधन को प्रौद्योगिकी, उद्यम और अवसर से जोड़ा जाता है तो स्थानीय समुदायों के लिए कितने नए रास्ते खुल सकते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया था हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने, प्रस्तुति सहायक अलका सिंह। नमस्कार।

0: डीडी किसान बदलते भारत की शान।
1: एलोवेरा जिसे हम घृत कुमारी भी कहते हैं, इसकी खेती आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित हो रही है क्योंकि इसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इसके गुणों की अब पहचान हो गई है जिसके चलते अब इसकी मांग में लगातार हम बढ़ोतरी होते हुए देख रहे हैं, जिसका फायदा हमारे किसान भी उठा रहे हैं इसकी खेती को अपनाकर। जी हाँ, अगर आप भी करना चाहते हैं एलोवेरा की खेती तो क्या है इसका सही तरीका, आइए आपको बताएं विज्ञान और किसान सेगमेंट के माध्यम से।
2: एलोवेरा को ग्वार पाठा भी कहते हैं। इसे सिंचित या फिर असिंचित दोनों अवस्थाओं में उगाया जा सकता है। इसका जेल यानी लसलसा गुदा ही काम का है। इसी से जूस और दूसरे उत्पादन बनते हैं। समय पर सिंचाई करेंगे तो ज्यादा जेल मिलेगा। एलोवेरा को बरसात में लगाया जाता है और इसके कंदों को ही बोया जाता है। पौधों और कतारों के बीच एक एक मीटर का फासला रखते हैं। इस तरह एक हेक्टेयर में करीब 40,000 पौधे रोपे जा सकते हैं। कमाल की बात यह है कि एक बार बुआई के बाद 4-5 साल तक पत्तियां मिलती रहती हैं। सुरेंद्र काकड़े महाराष्ट्र में सतारा जिले के रहने वाले हैं और मैकेनिकल इंजीनियर हैं। पढ़ाई के बाद उन्होंने कंसल्टेंसी एजेंसी खोली, लेकिन बाद में एलोवेरा के गुणों से प्रभावित होकर खेती में आ गए। सुरेंद्र ने ऐसे ही खेती नहीं शुरू की, बल्कि पहले पूरी रिसर्च की और जब पूरा कारोबार समझने के बाद ही काम शुरू किया। बाद में उन्होंने प्रसंस्करण भी शुरू किया। हालांकि शुरू के 6 महीने उन्हें खास फायदा नहीं हुआ, लेकिन उन्हें विश्वास था कि एक न एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी और ऐसा ही हुआ। आज उनकी एक प्रोसेसिंग यूनिट है, इसमें वो अपनी फसल का तो प्रसंस्करण कर ही रहे हैं, दूसरे किसानों से भी एलोवेरा खरीद कर नए नए उत्पाद बना रहे हैं। प्रसंस्करण के दौरान सबसे पहले पोटेशियम में डालकर गर्म पानी से धोते हैं, फिर टुकड़े करेंगे, टुकड़ों को गर्म पानी में डालते हैं और कुछ समय बाद उनसे जेल निकालते हैं। जूस निकालने के लिए जेल को ब्लेंडिंग मशीन में डालेंगे, फिर जूस को 70 डिग्री तापमान पर गर्म करेंगे। छानने के बाद इसमें प्रिजर्वेटिव मिलाएंगे और ठंडा करने के लिए फ्रीजर में रख देंगे। इस तरह से ये उत्पाद बनकर तैयार हो जाता है। अब इसका इस्तेमाल सौंदर्य और दवा बनाने में किया जाएगा। सिर्फ फसल उगा लेना और प्रसंस्करण के जरिए उत्पाद तैयार कर लेना ही काफी नहीं था, बल्कि ज्यादा कमाई के लिए अच्छी मार्केटिंग भी बहुत जरूरी है। सुरेंद्र काकड़े ने हर पहलू का बारीकी से जायजा लिया और बेहतर मार्केटिंग से कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। फसल लगाने के बाद किसान आमतौर पर एक बार कटाई कर लेते हैं और बात खत्म है, लेकिन एलोवेरा को अगर एक बार लगा लिया तो साल भर फसल मिलेगी और हर महीने कमाई होगी।
3: मानव सेवा से राष्ट्रोत्थान के नायक श्री ब्रिजलाल भट्ट, पद्मश्री 2026। दुनिया इसे धरती का स्वर्ग कहती है, लेकिन इस स्वर्ग ने अपनों को दूर जाते देखा। साल 1990 एक अनिश्चितता का दौर था, जब अपने ही घर छूट रहे थे, तब ब्रिजलाल भट्ट ने इसके विपरीत जाने का साहस दिखाया।
4: मेरे दिल में एक ही बात आई कि मुझे कश्मीर नहीं छोड़ना है। हमारा लक्ष्य एक ही है, मानव सेवा से राष्ट्र उत्थान,
5: मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग।
3: इसकी नींव उनके बचपन में ही पड़ गई थी। अनंतनाग के एक बड़े संयुक्त परिवार में पले बड़े भट्ट साहब की सुबह इंद्रनाग चश्मे, गुरुद्वारा, देवी बल मंदिर और ऋषि साहब की जियारत से होकर गुजरती थी। यही गंगा जमुनी तहजीब आगे जाकर उनके जीवन का सबसे बड़ा मिशन बन गई। वे पिछले 55 वर्षों से नागदंडी के श्री रामकृष्ण महासम्मेलन आश्रम और विवेकानंद केंद्र के सानिध्य में सनातन धर्म के मूल मंत्र मानव सेवा और वैश्विक भाईचारे का प्रसार कर रहे हैं। 1996-97 के कठिन दौर में भट्ट साहब के नेतृत्व नागदंडी आश्रम ने माता खीर भवानी में भंडारा शुरू करने की ठानी।
4: शुरू में भंडारे में माता खीर भवानी मुश्किल से 400-500 लोग थे, पर बिना किसी परवाह के हम बस आगे बढ़ते गए और मेरी अर्धांगिनी हर मोड़ पर मेरे साथ खड़ी रही।
6: भरपूर साथ
3: उनके उस निडर पहेल का रंग आज साफ नजर आता है। 2024-25 में उसी भंडारे की पंगत में 35,000 से अधिक लोगों ने भोजन किया। समाज को जोड़ने के साथ साथ अमेरिका से हॉर्टिकल्चर की उच्च शिक्षा प्राप्त भट्ट साहब ने कश्मीर की बंजर और वीरान जमीनों को भी संवारा। वैज्ञानिक सोच से सेब और अखरोट के लहलहाते बाग खड़े किए। कोल्ड चेन और नई पैकेजिंग से गांव वालों को आत्मनिर्भर बनाया। युवाओं को योग शिक्षा शिविर, संस्कार वर्ग और युवा सम्मेलन द्वारा सही दिशा दिखाई ताकि उनके हाथों में कलम हो। अब वे नागदंडी आश्रम का विस्तार कर रहे हैं ताकि एक साथ 400 लोग वहां ठहर सके। आज कश्मीर का युवा जान चुका है कि असली ताकत आपसी भाईचारे में है। सम्मान और पुरस्कार तो बस एक पड़ाव है, उनकी असली वसीयत वो बीज है जो उन्होंने यहाँ के दिलों में बोए हैं।
4: जब हमारे युवाओं का जोश और माता पिता का होश एक साथ आएगा, तभी हमारा कश्मीर फिर से एक खूबसूरत गुलदस्ता बनकर महकेगा।
3: उनकी ये यात्रा अब एक महायात्रा बन चुकी है जो सदैव चलती रहेगी। श्री ब्रजलाल भट्ट, पद्मश्री 2026।
6: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
7: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नईम अख्तर। श्रोताओ, भारत कच्चे जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। जूट केवल एक फसल या उद्योग नहीं है, इससे देश के करीब 40 लाख किसान परिवार जुड़े हैं और जूट मिलों तथा इससे जुड़े उद्योगों में लगभग 3,70,000 लोगों को सीधे रोजगार मिलता है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत में 76 लाख गांठ कच्चे जूट का उत्पादन हुआ और करीब 12,80,000 मीट्रिक टन जूट उत्पाद तैयार किए गए। इसी अवधि में भारत ने करीब 1,71,000 मीट्रिक टन जूट उत्पादों का निर्यात किया, जिसकी कीमत 3,155 करोड़ रुपए से अधिक रही। आज के कार्यक्रम में जानेंगे कि भारत में जूट उत्पादन की शुरुआत कैसे हुई, समय के साथ ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था और उद्योग का महत्वपूर्ण हिस्सा कैसे बना और सरकार की नीतियों, तकनीक और नए उत्पादों के जरिए गोल्डन फाइबर को एक टिकाऊ और आधुनिक उद्योग के रूप में कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है। श्रोताओ, भारत का गोल्डन फाइबर इंडस्ट्री यानी जूट उद्योग एक लंबे इतिहास से जुड़ा है। भारत में जूट के इस्तेमाल का इतिहास 3rd शताब्दी ईसा पूर्व तक जाता है। ब्रिटिश काल में जूट का व्यावसायिक महत्व तेजी से बढ़ा। खास तौर पर सेना से जुड़े कामों में इसके इस्तेमाल के कारण जूट की मांग बढ़ी और बंगाल में बड़ी संख्या में जूट मिलें स्थापित हुईं। लेकिन 1947 में देश के विभाजन के बाद जूट उद्योग के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। जूट उगाने वाले करीब 80% इलाके पूर्वी पाकिस्तान में चले गए, जबकि ज्यादातर जूट मिलें भारत में रह गईं। यानी कच्चा माल एक तरफ था और उसे तैयार करने वाली मिलें दूसरी तरफ। इससे भारत में कच्चे जूट की कमी हुई। इसके बाद सरकार ने सितंबर 1949 में ग्रो मोर जूट अभियान शुरू किया। किसानों को धान की जगह जूट की खेती बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। बाद के वर्षों में सरकार ने जूट के लिए बाजार बनाए रखने पर जोर दिया। वर्ष 1987 का जूट पैकेजिंग एक्ट इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसके जरिए जरूरी वस्तुओं की पैकिंग में जूट की बोरियों के इस्तेमाल को बढ़ावा मिला और किसानों के लिए जूट का एक स्थिर बाजार तैयार हुआ। आज पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन में सबसे आगे है। इसके बाद बिहार, असम, ओडिशा और झारखंड जैसे राज्य आते हैं। जूट की बुआई आम तौर पर मार्च और अप्रैल में होती है और फसल लगभग 100 से 110 दिन में तैयार हो जाती है। आइए अब समझते हैं जूट आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है।
8: जूट जैव अवक्रमणीय यानी प्राकृतिक रूप से नष्ट होने वाला और दोबारा इस्तेमाल किया जा सकने वाला फाइबर है। ये तेजी से बढ़ता है, आसानी से उपलब्ध है और इसकी लागत भी अपेक्षाकृत कम है। इसके रेशे मजबूत और टिकाऊ होते हैं, इनमें नमी सोखने की क्षमता होती है और जूट से बने उत्पादों में तापमान और आवाज को रोकने जैसी उपयोगी खूबियां भी पाई जाती हैं। इसी वजह से जूट का उपयोग खेती, निर्माण, उद्योग, सजावटी सामान और कपड़ों में भी हो रहा है। जूट को दूसरे प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों के साथ मिलाकर भी नए उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं। जूट की एक और खास बात है जिसका संबंध सीधे हमारे खानपान से है। जूट के पत्तों को अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के कई हिस्सों में सब्जी के रूप में खाया जाता है। जापान में भी जूट की पत्तियों को स्वास्थ्य से जुड़े खाद्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इनमें विटामिन, कैल्शियम, पोटेशियम और आहार फाइबर जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। जूट की पत्तियों से एंटीऑक्सीडेंट हर्बल ड्रिंक और स्वास्थ्य से जुड़े दूसरे उत्पाद बनाने की तकनीक पर भी काम हुआ है। जूट के आधुनिक

0: पर्यावरण और विकास दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश की जाती है।
1: श्रोताओं, ऐसे समय में जब दुनिया प्लास्टिक और दूसरे कृत्रिम पदार्थों के टिकाऊ विकल्प तलाश रही है, तब जूट की उपयोगिता और बढ़ रही है। साथ ही जूट के लिए नए बाजार और नए अवसर तैयार हो रहे हैं। इसका फायदा किसानों और जूट से जुड़े उद्योगों तक पहुंचाना भी जरूरी है। यही वजह है कि सरकार का ध्यान केवल जूट का उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं है। कोशिश ये है कि किसान से लेकर बाजार तक जूट की पूरी वैल्यू चेन को मजबूत किया जाए। किसानों को बेहतर कीमत देने, खेती की प्रोडक्टिविटी और गुणवत्ता बढ़ाने, जूट से नए उत्पाद तैयार करने, छोटे कारोबारियों और कारीगरों को बाजार से जोड़ने और डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए खरीद प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कई स्तरों पर काम किया जा रहा है। आइए अब जानते हैं कि इन सरकारी प्रयासों से जूट उद्योग में क्या बदलाव आया है और इसका असर किसानों, कारीगरों और उद्योग तक किस तरह पहुंच रहा है।
0: जूट किसानों के लिए सरकार की सबसे महत्वपूर्ण पहल मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कच्चे जूट का MSP 5,925 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। यह अखिल भारतीय औसत लागत के मुकाबले करीब 61.8% का लाभ देता है। MSP पर खरीद के लिए जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है। जब बाजार में जूट की कीमत MSP से नीचे जाती है, तब JCI किसानों से सीधे जूट खरीद सकती है। इसके लिए ग्रामीण इलाकों में डिपार्टमेंटल परचेज सेंटर्स बनाए गए हैं। पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और त्रिपुरा में ऐसे करीब 110 केंद्र काम कर रहे हैं। नेशनल जूट डेवलपमेंट प्रोग्राम जूट क्षेत्र के विकास के लिए एक बड़ी योजना है। वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक इसके लिए 485,58,00,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका जोर जूट की खेती, किसानों की आय और जूट के नए उत्पादों को बढ़ावा देने पर है। इसी के तहत जूट आई केयर योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक खेती, बेहतर बीज, मशीनों और बेहतर रेटिंग यानी जूट के रेशे को पौधे से अलग करने की प्रक्रिया के जरिए उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ाना है। जूट के रेशे को पौधे से अलग करने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जैसी योजनाओं के साथ मिलकर रेटिंग के लिए तालाब तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन जूट उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए केवल खेती बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। जरूरत है कि जूट से ऐसे उत्पाद बनाए जाएं जिनकी बाजार में अधिक कीमत हो। इसी सोच के साथ जूट डाइवर्सिफिकेशन स्कीम के जरिए जूट की प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और सेल्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। जूट रॉ मटेरियल बैंक छोटे उत्पादन केंद्रों, कारीगरों, महिला स्वयं सहायता समूहों और MSMEs को नियमित और अच्छी गुणवत्ता का कच्चा जूट उपलब्ध कराने में मदद करता है। जूट के बाजार को मजबूत करने के लिए क्वालिटी और ब्रांडिंग पर भी ध्यान दिया जा रहा है। जूट मार्क इंडिया लोगो जूट उत्पादों की गुणवत्ता और ऑथेंटिसिटी देने का काम करता है। जूट स्मार्ट नाम का ई गवर्नेंस पोर्टल जूट की खरीद और फूड ग्रेन पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली जूट बोरियों की सप्लाई को डिजिटल बनाने में मदद करता है। इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने JCI और नेशनल जूट बोर्ड के साथ मिलकर जूट क्रॉप इन्फॉर्मेशन सिस्टम विकसित किया है। रिमोट सेंसिंग और फील्ड डेटा के जरिए जूट की खेती की निगरानी की जाती है। भुवन जंप मोबाइल ऐप और पटसन वेब प्लेटफॉर्म के जरिए फील्ड लेवल इन्फॉर्मेशन जुटाकर खेती से जुड़े फैसलों के लिए डेटा उपलब्ध कराया जाता है। समाचार कक्ष से मैं प्रशांत कुमार।
1: श्रोताओं, इन सभी प्रयासों को एक साथ देखें तो जूट उद्योग में बदलाव की एक स्पष्ट तस्वीर सामने आती है। पहला बदलाव है किसान के स्तर पर। MSP और सरकारी खरीद से किसानों को कीमत में सुरक्षा देने की कोशिश की जा रही है। वहीं बेहतर बीज, वैज्ञानिक खेती और मशीनों के इस्तेमाल से उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर है। दूसरा बदलाव है उद्योग के स्तर पर। जूट को केवल बोरी और पैकेजिंग तक सीमित रखने के बजाय जियो टेक्सटाइल्स, हैंडलूम और दूसरे उत्पादों के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। तीसरा बदलाव है छोटे कारोबारियों और कारीगरों का। जूट रॉ मटेरियल बैंक्स, ट्रेनिंग सेंटर्स और मार्केट लिंकेजेस के जरिए छोटे उद्यमों को वैल्यू चेन का हिस्सा बनाया जा रहा है। यानी जूट की कहानी अब केवल खेत से मिल तक की कहानी नहीं है, ये किसान से शुरू होकर प्रोसेसिंग, छोटे उद्यम, महिला समूह, टेक्नोलॉजी, डोमेस्टिक मार्केट और एक्सपोर्ट्स तक पहुंचने वाली पूरी वैल्यू चेन की कहानी बन रही है।

0: इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक अलका सिंह। आप इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
1: वो खिलाड़ी जिसने जानवरों की भलाई की राह चुनी, डॉक्टर पुण्यमूर्ति नटेशन, पद्मश्री 2026। तंजावुर जिले के एक सुंदर गांव बल्लम में 1960 के दशक में एक युवा लड़का किसान परिवार में पला बढ़ा। उसे खेल बहुत पसंद थे। उसका सपना एथलेटिक्स और हॉकी का स्टार खिलाड़ी बनना था। वो अपने परिवार में कॉलेज जाने वाले पहले व्यक्ति थे। वो अपने दादा के बहुत प्रिय थे।
2: कॉलेज की पढ़ाई के लिए जब मैं अपने दादाजी के पास आशीर्वाद लेने गया तो उन्होंने कहा, कुछ ऐसा सीखो जो किसानों के काम आए। वह मेरी जिंदगी का निर्णायक मोड़ था। तब मैं सिर्फ BSc एग्रीकल्चर के बारे में जानता था। मुझे वेटनरी साइंस की जानकारी नहीं थी। मेरे दोस्त और सहपाठी वीर पांडियन ने मुझे वेटनरी साइंस से परिचित कराया।
1: युवा पुण्यमूर्ति 70 के दशक के मध्य में मद्रास वेटनरी कॉलेज पहुँचे। वो न केवल पढ़ाई में होशियार थे बल्कि वो लगातार 2 साल तक कॉलेज एथलेटिक्स चैंपियन भी रहे। कुछ वर्षों बाद वे इरोड के कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यरत हुए। वहीं एक घटना ने उनकी सोच को नई दिशा दी।
2: मैं इरोड में एक युगल द्वारा चलाए जा रहे पोल्ट्री फार्म पर गया। मुर्गियां स्वस्थ दिख रही थी, अच्छा खा रही थी, फिर भी अंडे नहीं दे पा रही थी। रिकॉर्ड से पता चला कि उन्हें कॉक्सिडियोसिस यानी परजीवी रोग के लिए सल्फानामाइड दवा 10 हफ्ते तक दी गई थी। इसका दीर्घकालीन असर उनके प्रजनन पर पड़ा और वे अंडे नहीं दे पाए। अगर हमें भविष्य के लिए एंटीबायोटिक्स बचानी है तो उनका समझदारी से उपयोग करना चाहिए या फिर उनके विकल्प खोजने होंगे। मुझे ये एहसास हुआ।
1: पौधों के औषधीय गुणों की मदद से डॉक्टर पुण्यमूर्ति ने पशु रोगों के उपचार और रोकथाम में औषधीय पौधों का उपयोग किया। इस प्रकार उन्होंने एथनो वेटरिनरी को विकसित और प्रमाणित किया, प्राकृतिक तत्वों पर आधारित पशु चिकित्सा पद्धति।
2: पशुपालकों के लिए मास्टाइटिस एक गंभीर बीमारी है। इसके उपचार के लिए 1 चम्मच एलोवेरा, 2 मुट्ठी हल्दी और थोड़ा सा चूना मिलाकर दवाओं के बिना सफल उपचार किया जा सकता है। ये पारंपरिक सिद्ध आधारित इलाज के असर को दिखाता है।
1: उनके इलाज से लाखों गायों और किसानों को फायदा हुआ। उन्होंने जानवरों की 34 बीमारियों के लिए 5 आसान इलाज विकसित किए।
2: एक जिम्मेदार पशु चिकित्सक के रूप में जितना जरूरी स्वस्थ दूध, अंडे और मांस मुहैया कराना है, उतना ही जरूरी गायों का स्वस्थ गोबर और मूत्र भी है, ताकि मिट्टी का स्वास्थ्य बना रहे। भविष्य के लिए एंटीबायोटिक्स को बचाए रखना भी जरूरी है, जो हम एथनोवेटनरी चिकित्सा के जरिए कर रहे हैं।
1: डॉक्टर पुण्यमूर्ति की सभी खोजें सबके लिए निशुल्क है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने उनके काम को लाखों किसान तक पहुंचाया, जिससे उन्हें बहुत फायदा मिला।
2: मैं दिल से खिलाड़ी हूं, इसलिए अपने काम से पूरा प्यार करता हूं।
1: डॉक्टर पुण्यमूर्ति नटेशन, पद्मश्री 2026।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फरहत नाज। श्रोताओं, भारत की विकास यात्रा में समाज के हर वर्ग की भागीदारी महत्वपूर्ण है। देश की आबादी का लगभग 16.6% हिस्सा अनुसूचित जाति समुदाय का है। इन समुदाय के लोगों को सामाजिक और आर्थिक विकास के क्षेत्र में लंबे समय से कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए जरूरी है कि विकास के अवसर समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे और शिक्षा, रोजगार, आजीविका तथा बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में समान अवसर उपलब्ध हों। इसी सोच के साथ सरकार ने प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना यानी PMAJY शुरू की है। ये योजना वित्त वर्ष 2021-22 में शुरू की गई एक पूर्णतः केंद्र प्रायोजित योजना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति समुदाय का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण करना है। PMAJY में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता योजना और बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना शामिल है। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना क्या है, इसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, किन लोगों और क्षेत्रों को इसके तहत सहायता मिल सकती है और अब तक इस योजना में क्या प्रगति हुई है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि PMAJY के तहत अनुसूचित जाति बहुल गांव और समुदायों को सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किस तरह के काम किए जा रहे हैं।
2: श्रोताओं, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति समुदायों के जीवन स्तर में सुधार लाना और उन्हें विकास के अधिक अवसर उपलब्ध कराना है। इस योजना के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला, अतिरिक्त रोजगार और आजीविका के अवसर पैदा करके गरीबी कम करना। इसके लिए कौशल विकास, आय सृजन और आजीविका से जुड़ी गतिविधियों को सहायता दी जाती है। दूसरा, अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं और जरूरी सेवाओं में सुधार करना। इसका उद्देश्य उन क्षेत्रों में विकास की कमियों को दूर करना है जहां लोगों को आवश्यक सुविधाओं तक पहुंच में कठिनाई हो सकती है। तीसरा, शिक्षा और साक्षरता को बढ़ावा देना। इसके तहत अनुसूचित जाति के बच्चों और युवाओं को स्कूल तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जरूरत के अनुसार आवासीय विद्यालय और छात्रावास जैसी सुविधाओं पर भी ध्यान दिया जाता है। श्रोताओं, योजना के तहत अनुसूचित जाति बहुल्य गांवों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने का प्रावधान है। इसका उद्देश्य ऐसे गांव में मौजूद बुनियादी सुविधाओं की कमियों को दूर करना है। आदर्श ग्राम की परिकल्पना ऐसे गांव के रूप में की गई है जहां लोगों को जरूरी बुनियादी सेवाएं उपलब्ध हों, समाज के सभी वर्गों की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हों और असमानताओं को कम किया जा सके। ऐसे गांव में लोगों के लिए गरिमापूर्ण जीवन और अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने पर बल दिया जाता है। अब सवाल है कि किन गांवों को इस योजना के तहत बुनियादी ढांचा विकास के लिए सहायता मिल सकती है। श्रोताओं, जिन गांव में अनुसूचित जाति की आबादी 40% या उससे अधिक है और कुल आबादी कम से कम 500 है, वे इस योजना के तहत अनुदान के लिए पात्र हैं। PMAJY का दूसरा महत्वपूर्ण घटक राज्य और जिला स्तर पे सामाजिक आर्थिक परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता देना है। इसके तहत कौशल विकास और उससे जुड़ी बुनियादी सुविधाओं के साथ आजीविका परियोजनाओं को सहायता दी जाती है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य लक्षित लोगों की आय बढ़ाना और उन्हें आय सृजन वाली गतिविधियों से जोड़ना है। अनुसूचित जाति बहुल गांव में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भी सहायता दी जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने और अनुसूचित जाति के छात्रों को स्कूलों में नामांकन के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाता है। श्रोताओं, योजना के अनुदान सहायता घटक में लाभार्थियों के चयन के लिए भी पात्रता का प्रावधान है। ऐसे परिवारों और व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है जिनकी वार्षिक आय 2,50,000 रुपए से अधिक नहीं है। अनुसूचित जाति बहुसंख्यक समूह के अनुसूचित जाति सदस्य भी पात्र हो सकते हैं। योजना का एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा छात्रावासों का निर्माण और मरम्मत है। ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों से आने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावास शिक्षा जारी रखने में मददगार हो सकते हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए बेहतर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना है।
1: श्रोताओं, PMAJY के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए डिजिटल तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार ने PMAJY मोबाइल ऐप और PMAJY पोर्टल शुरू किया है। इन डिजिटल माध्यमों का उद्देश्य कागज आधारित कार्य प्रवाह और प्रक्रिया से डिजिटल कार्य प्रवाह तथा वास्तविक समय में प्रक्रिया की ओर बढ़ना है। इससे योजना के कार्यों की निगरानी, सूचना तक पहुंच और कार्यक्रम के क्रियान्वयन को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। अब सवाल है कि PMAJY के तहत अब तक कितनी प्रगति हुई है, कितने गांवों को आदर्श ग्राम घोषित किया गया है और कितने लोगों को कौशल तथा आजीविका से जुड़ी सहायता मिली है। आइए अब जानते हैं कि योजना के तहत अब तक की प्रमुख प्रगति के बारे में।
3: श्रोताओं, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के आदर्श ग्राम घटक के तहत देश भर में बड़ी संख्या में गांवों को शामिल किया गया है। आदर्श ग्राम घटक में अब तक 47,243 गांव शामिल किए गए हैं। इससे देश भर में 47,79,000 से अधिक नागरिकों को लाभ हुआ है। इन गांवों में बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी कमियों को दूर करने के लिए विकास कार्य किए जा रहे हैं। अब तक 46,944 विकास कार्य पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा 27,032 ग्राम विकास योजनाएं भी तैयार की गई हैं। श्रोताओं, आपको बता दें, 8 सितंबर 2026 तक 18,093 गांवों को आदर्श ग्राम घोषित किया जा चुका है। इसका मतलब है कि इन गांवों में योजना के तहत तय किए गए विकास मानकों को पूरा करने की दिशा में काम किया गया है। अब बात करते हैं योजना के अनुदान सहायता घटक की। वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक इस घटक के तहत राज्यों को सीधे 1,730 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की गई। इस सहायता से 2,50,000 से अधिक व्यक्तिगत और सामूहिक लाभार्थियों को कौशल विकास तथा आजीविका से जुड़ी सहायता दी गई है। श्रोताओं, कौशल विकास का उद्देश्य लोगों को रोजगार और आय से जुड़ी गतिविधियों के लिए आवश्यक कौशल उपलब्ध कराना है। वहीं आजीविका से जुड़ी परियोजनाओं के माध्यम से लोगों को आय के स्थायी साधनों से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। इस योजना में शिक्षा के क्षेत्र को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रावासों का निर्माण और मरम्मत की जाती है। आपको बता दें, सितंबर 2026 तक देश में कुल 785 छात्रावासों का निर्माण पूरा हो चुका है। श्रोताओं, PMAJY की एक विशेषता ये भी है कि योजना के तहत बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं के पूरा होने के बाद उनके रखरखाव और संचालन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों या कार्यान्वयन एजेंसियों की होती है। योजना की वित्तीय व्यवस्था के अनुसार ये 100% केंद्र द्वारा वित्त पोषित योजना है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त संसाधनों से योजना को पूरा कर सकते हैं। श्रोताओं, PMAJY के तहत डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। मोबाइल ऐप और पोर्टल के माध्यम से योजना से जुड़े कार्यों को डिजिटल बनाने का प्रयास जारी है। इससे सूचना उपलब्ध कराने, निगरानी बढ़ाने और योजना के क्रियान्वयन को अधिक पारदर्शी बनाने में मदद मिल सकती है।
1: श्रोताओं, विकास तभी व्यापक माना जा सकता है जब उसके अवसर समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति समुदाय के लिए बुनियादी सुविधाओं, शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार और आजीविका के अवसर बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है। आदर्श ग्राम, सामाजिक आर्थिक परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता और छात्रावासों के निर्माण जैसे प्रयासों के माध्यम से अनुसूचित जाति समुदाय के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में काम किया जा रहा है। योजना के तहत डिजिटल तकनीक और बेहतर निगरानी के इस्तेमाल से इन प्रयासों को और प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया है हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने। प्रस्तुति सहायक हैं दानिश जैदी। नमस्कार।

जामुन को काला जामुन, ब्लैक प्लम और भारतीय ब्लैकबेरी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति स्थान भारत है। जामुन का वानस्पतिक नाम सीजियन क्यूमिनी है। ये मिटेंसी कुल का सदस्य है। इसकी भारत में जंगली प्रजाति मिलती है। दक्षिण में मद्रास से लेकर गंगा सिंधु के मैदानों तक इसका उत्पादन किया जाता है। जामुन के फल गहरे बैंगनी रंग के होते हैं। इसके फल अधिक गूदेदार और स्वादिष्ट होते हैं। जामुन भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पाए जाने वाला फल है, जिसका जिक्र आयुर्वेद के अनुसार यूनानी और चीनी दवाओं की पद्धति में भी है। खासकर जामुन के गुणों और स्वास्थ्य के लाभों के बारे में बताया गया है। आयुर्वेद के अनुसार जामुन के फल में बहुत सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं। ये डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए बेहद फायदेमंद माना गया है। जामुन में आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो बच्चों और बड़ों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसमें विटामिन ए और विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जामुन की छाल का काढ़ा बनाकर पिया जा सकता है। इससे पेट दर्द और अपच जैसी समस्याएं दूर हो जाती हैं। जामुन का सेवन करने से शरीर में खून की कमी की भी पूर्ति होती है। जामुन सोचने की शक्ति को बढ़ाने में मददगार है। जामुन शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने में भी सहायक है। जामुन मधुमेह के रोगियों के लिए रामबाण औषधि है। इसकी गुठली का रस मधुमेह को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। जामुन के तने के रस व बकरी के दूध से शिशु को पेचिश की समस्या से निजात मिलती है।

0: परिवर्तन की शांत लहर, श्री मोहन नागर, पद्मश्री 2026। कुछ लोग बदलाव की बातें करते हैं और कुछ लोग बदलाव लाते हैं। मध्य प्रदेश के श्री मोहन नागर जी को प्रकृति और पानी से प्रेम संस्कार में मिले थे।
1: हमने अपने काम की शुरुआत शिक्षा के माध्यम से की। भारत भारती के माध्यम से 500 गांवों में एकल विद्यालय प्रारंभ किया।
0: पर असल समस्या और थी।
2: जमीन बेकार हो गई थी, खेती बंद हो गई, लोग गांव छोड़ रहे थे।
1: पदयात्रा के समय अध्ययन किया तो ध्यान में आया कि दिवाली के समय पानी की बहुत समस्या हो जाती है और लोग पलायन कर जाते हैं। पर्याप्त बारिश होने के बाद भी कुएं, बावड़ी, तालाब और स्टार डैम की कमी के कारण अधिकांश पानी बह जाता था।
0: श्री मोहन नागर जी ने नदी नालों में बहते पानी को रोकने का एक अनोखा रास्ता निकाला।
1: हमने सीमेंट की खाली बोरियों में रेत भर के नदी नालों में बोरी बंधान बनाए, जिसके कारण पानी की समस्या कम हुई और पलायन बंद हुआ।
0: इसके बाद बारी थी जमीन के जल स्तर को बढ़ाने की।
1: हमने गंगा अवतरण अभियान के माध्यम से जन भागीदारी से सोना घाटी की पहाड़ी पर 8,000 कंटू टेंच बनाए और 32,000 पौधे लगा करके ताप्ती उपन उगाए, जिसके कारण उस क्षेत्र का भूजल स्तर बढ़ गया। लैंड माफिया, रेत माफिया, इसका हमको विरोध का सामना करना पड़ा। हमने अपने काम को नहीं रोका, हमने लोगों का विश्वास जीता और धीरे धीरे जो हमारे विरोधी थे वो भी हमारे सहयोगी बन गए।
0: प्रकृति और पानी बचा के मोहन जी ने वर्तमान बचाया और अब उनका लक्ष्य था एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करना।
1: भारत भारती विद्यालय के माध्यम से हम बच्चों को शिक्षा देकर आने वाले कल के लिए एक संस्कारी, प्रतिभाशाली और उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता वाले युवा तैयार करते हैं। हमने बाचा गांव को ग्रामवासियों के सहयोग से एक आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया है। बाचा गांव शांति, प्रगति और समृद्धि का प्रतीक बन गया है।
0: लेकिन अनगिनत बदलाव लाने वाले श्री मोहन नागर जी की एक चीज कभी नहीं बदली, उनके परिवार का अटूट भरोसा। मोहन जी को कई सम्मान मिले, पर उनका असली सम्मान तो भरे हुए तालाब, लहराते पहाड़ और मुस्कुराते चेहरे हैं।
1: पानी बचाना एक काम नहीं या वचन है आने वाली पीढ़ियों से, क्योंकि जल है तो कल है।
0: श्री मोहन नागर, पद्मश्री 2026।

0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द ठाट पर, जहां हम आपको बताते हैं प्राकृतिक औषधियों और जड़ी बूटियों के फायदों के बारे में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चमत्कारी औषधीय पौधे की जो देखने में सुंदर तो है ही, लेकिन इसके स्वास्थ्य लाभ भी कमाल के हैं। हम बात कर रहे हैं कैथारेंस रोजियस यानी सदाबहार के बारे में। तो चलिए जानते हैं इसके फायदे और उपयोग। दोस्तों जानते हैं कैथारेंथस रोजियस क्या है। व्हाट इज कैथारेंथस रोजियस? दोस्तों कैथारेंथस रोजियस, जिसे हम आम भाषा में सदाबहार कहते हैं, एक छोटा सा झाड़ीदार पौधा है जिसकी फूल गुलाबी, सफेद और बैंगनी रंग में खिलते हैं। ये मुख्य रूप से मेडागास्कर का मूल निवासी है, लेकिन अब भारत समेत दुनिया भर में उगाया जाता है। अब जानते हैं आयुर्वेद और औषधीय उपयोग या मेडिसिनल यूजेस इन आयुर्वेदा। दोस्तों सदाबहार सिर्फ सजावटी पौधा ही नहीं, बल्कि आयुर्वेद, होम्योपैथी और एलोपैथी में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके पत्ते, फूल और जड़ें कई बीमारियों के इलाज में काम आती है। अब जानते हैं स्वास्थ्य लाभ या हेल्थ बेनिफिट। सदाबहार की पत्तियों में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। इसे पानी में उबालकर पीने से डायबिटीज पेशेंट्स को फायदा होता है। कैंसर के इलाज में सहायक, हेल्प्स इन कैंसर ट्रीटमेंट। इसमें विनब्लास्टीन और विनक्रिस्टीन नामक यौगिक होते हैं जो कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को रोकने में मदद करते हैं। इसका उपयोग मुख्य रूप से ल्यूकेमिया और लिम्फोमा जैसी बीमारियों के इलाज में किया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, कंट्रोल्स हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो इस पौधे की पत्तियों को उबालकर पीने से आपको लाभ हो सकता है। यह हृदय स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। त्वचा रोगों में लाभकारी, बेनिफिशियल फॉर स्किन डिजीजेस। सदाबहार के पत्तों का पेस्ट बनाकर त्वचा पर लगाने से मुहासे, खुजली और फंगल इन्फेक्शन में राहत मिलती है। ये एक बेहतरीन प्राकृतिक स्किन ट्रीटमेंट है। घाव भरने में मदद करता है, हेल्प्स इन वुंड हीलिंग। इस पौधे का रस एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है और घाव को जल्दी भरने में मदद करता है। अब जानते हैं सावधानियां, प्रिकॉशंस। दोस्तों सदाबहार का उपयोग औषधीय रूप से करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इसे अधिक मात्रा में न लें क्योंकि यह विषैला भी हो सकता है। कोई भी घरेलू उपचार अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। प्रेग्नेंट और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों इसके फूल गुलाबी, लाल, सफेद और बैंगनी रंग के होते हैं। कैथारेंथस रोजियस के बारे में कुछ और रोचक तथ्य। कैथारेंथस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक से हुई है, जिसका अर्थ है शुद्ध फूल। रोजस का अर्थ है लाल। इस पौधे में लगभग 130 एल्कलॉइड होते हैं। विंका एल्कलॉइड का एक मुख्य स्रोत है। इसे पहले विंका रोसिया के नाम से जाना जाता था। रूपात्मक विशेषताएं, कैथारेंथस रोजस एक बारहमासी छोटा शाख या उपझाड़ी जिसकी ऊंचाई 90 सेंटीमीटर तक होती है। तना सीधा, ढीला, लचीली लंबी शाखाओं वाला, बैंगनी या हल्का हरा होता है। पत्तियां सरल, फूली हुई, विपरीत, अग्रस्थलीय, डंठल युक्त, अंडाकार, अंडाकार, आयताकार, 4 से 10 गुना, 2 से 4 सेंटीमीटर चिकनी, रोमिल, आधार नुकीला या क्यूनिट। शीर्ष कुंद शीर्षाकार तथा पार्श्व तंत्रिकाएं 10 से 12 जोड़ी होती है। डंठल 1 से 1.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। पुष्प विशेषताएं, पुष्पक्रम पीछे की ओर या कक्षीय या अंतिम सायम या एकल युग्मित और लघु डंठल नुमा होता है। फूल का रंग गुलाबी, सफेद तथा नलीदार होता है। पराग कोशों के क्षेत्र में फूला हुआ कोरोला ट्यूब का गला रोयनदार होता है। पुंकेसर में 5 पुंकेसर होते हैं जो कोरोला ट्यूब में शामिल होते हैं। तंतु बहुत छोटे, अधिवृक्कीय होते हैं। पराग कोश वर्तिकाग्र के ऊपर एक शंकु जैसी संरचना बनाते हैं। जयांग में 2 अंडप होते हैं जो नीचे की ओर स्वतंत्र होते हैं, लेकिन वर्तिका क्षेत्र में संयुक्त होते हैं। अंडाशय 2 होते हैं, स्वतंत्र और एकल शैली, डंबल कलंक के साथ। निषेचन के बाद अंडप अलग हो जाते हैं और 2 फल बनाते हैं जो लंबी रोमों की एक जोड़ी बनाते हैं। बीज छोटे आकार के व काले रंग के होते हैं। 1000 बीजों का भार 1.2 ग्राम होता है। तो दोस्तों यह था कैथारेंथस रोजियस यानी सदाबहार के फायदे और उपयोग के बारे में हमारा वीडियो।
1: गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सबको। मैं स्टिचिंग ट्रेनर हूँ, मेरा नाम रीना है। मैं गरिमा ग्रह में पहली बार आई थी, तो इससे पहले मैं कंपनी में जॉब करती थी। मुझे नहीं लगा था, जब लॉकडाउन हुआ था तो मुझे ऐसा लगता मेरे बेटा 12वीं क्लास में पढ़ रहा था, मुझे ऐसा लगा कि मैं उसको आगे नहीं पढ़ा सकती हूँ। लेकिन फिर गरिमा ग्रह में मैं आई और शिवानी मैडम से मिली, फिर मुझे जॉब पाकर मुझे इतना अच्छा लगा और मैं अपने आगे बेटा को पढ़ा रही हूँ और मेरी बेटी भी एमए करी। मुझे

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत वतन का राग कार्यक्रम में आज हम चर्चा कर रहे हैं धरती आबा बिरसा मुंडा के साथ साथ मध्य प्रदेश के जनजातीय महानायकों का।

0: आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।
1: ये वतन का
2: वन पर्वत बस्ती बीहड़ सागर मरुस्थल हमने पार किए, समय की नदी में काटी दुख की रातें। हम जन हैं धरती के जो सदियों से चलते आए, महाकाल के पथ पर हमारी यात्राओं के वृत्तांत बिखरे पड़े हैं, सदियों चलते रहने के हमारे निशान बिखरे पड़े हैं। ये निशान उस जनजातीय समाज के हैं जो सदियों से अपने वनों पर्वतों संग जीते रहे हैं, जो सदियों से अपनी नदियों हवाओं संग बहते रहे हैं। समय की धारा उनके ऊपर से बहती रही, लेकिन वो समय के साथ बह नहीं गए। अपने समय को, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपनी आस्थाओं को जीते हुए वो बने रहे अपने संसार में और बचाए रहे अपना संसार। ऐसे अनेक जनजातीय महानायक हुए हैं जिन्होंने अपनी भूमि, अपने धर्म, अपनी संस्कृति के लिए, भारत की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। ऐसे ही महानायक थे धरती आबा बिरसा मुंडा, जो आज भी अपने लोगों के बीच एक गुरु, एक इष्ट देव की तरह पूजनीय हैं। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर सन 1875 को रांची जिले के उलिहातू नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करनी मुंडा था। चाईबासा के जर्मन मिशन स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए उन्हें धर्मांतरण करना पड़ा। शिक्षा के दौरान ही उन्होंने जनजातीय समाज के साथ होने वाले अन्याय और शोषण को महसूस किया और उनके भीतर का लोहा धधकने लगा। उन्होंने आनंद पांडे के सानिध्य में रामायण, महाभारत, गीता जैसे धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर एकांतवास में कठिन साधना की तथा भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में वो जुट गए। एक महात्मा तथा समाज सुधारक के रूप में दूर दूर तक उनकी ख्याति फैल गई, उनके अनगिनत शिष्य हो गए। सन 1893-94 में सिंहभूम और मानभूम के आसपास की भूमि को अंग्रेजों ने अपने अधिकार में लेकर मुंडा वनवासियों पर अत्याचार शुरू कर दिया। ऐसे समय में बिरसा मुंडा ने प्रतिरोध का स्वर बुलंद किया, अपने जल, जंगल और जमीन पर अपनी दावेदारी के लिए संपूर्ण मुंडा जनजाति संगठित हो गई। बिरसा मुंडा गिरफ्तार कर लिए गए। 2 साल की सजा काटकर जब वो लौटे तो तूफान बनकर उन्होंने गुप्त सभाएं की। सशस्त्र क्रांति की तैयारी का निर्देश देते हुए उन्होंने नारा दिया, अबुआ दिशोम रे अबुआ राज, अपनी धरती हो और उस पर अपना राज हो। इस तरह बिरसा मुंडा ने उलगुलान क्रांति की शुरुआत की। उलगुलान यानी असीम कोलाहल। सन 1899 में क्रिसमस के समय 7,000 लोग एकत्रित हुए और क्रांति की घोषणा कर दी गई। 5 जनवरी सन 1900 तक मुंडा जनजाति ने हथियार उठा लिए। अनगिनत पुलिस के जवान मारे गए। करीब 100 इमारतों में आग लगा दी गई और अबुआ देशों यानी स्वराज कायम होने की घोषणा कर दी गई। अंग्रेजों ने उनसे लड़ने के लिए सेना भेजी और बिरसा मुंडा को पकड़वाने के लिए 500 रूपये के इनाम की घोषणा की। 9 जनवरी सन 1900 को डोम्बार पहाड़ी पर अंग्रेजों से लड़ते हुए सैकड़ों मुंडाओं ने शहादत दी। 3 मार्च सन 1900 को एक गद्दार की सूचना पर बिरसा मुंडा को चक्रधरपुर के जंगल से गिरफ्तार कर रांची जेल भेज दिया गया। जेल में उन्होंने कठोर यातनाएं सही और मात्र 25 साल की उम्र में 9 जून सन 1900 को रांची जेल में ही उनका निधन हो गया। लेकिन बिरसा मुंडा के संदेश ने जैसे वनांचलों के संघर्ष को एक नई ऊर्जा से भर दिया और राष्ट्र को जागृत कर दिया। वो जैसे ये कहते हुए विदा हुए कि मैं केवल देह नहीं, मैं जंगल का पुश्तैनी दावेदार हूं। पुश्तें और उनके दावे मरते नहीं, मैं भी मर नहीं सकता। मुझे कोई भी जंगलों से बेदखल नहीं कर सकता। उलगुलान, उलगुलान, उलगुलान।

देश धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए बिरसा मुंडा ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। 15 नवंबर उनकी जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती है। आज भी बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के जनजातीय समाज में उन्हें भगवान की तरह पूजा जाता है। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के ग्राम डगडौआ में बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थल पर जनसामान्य बड़ी श्रद्धा से एकत्रित होकर उन्हें नमन करता है। मध्य प्रदेश में भी ऐसे अनेक जनजातीय महानायक हुए हैं जिन्होंने भारत के स्वाधीनता संग्राम में मुगल और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाया। मंडला से लेकर नरसिंहपुर, सागर, दमोह, जबलपुर, भोपाल और सिवनी सहित 52 गढ़ों में राज्य का विस्तार करने वाले पहले गोंड राजा संग्राम शाह ने गोंडवाना को अप्रतिम वैभव प्रदान किया था। इसी गोंड राजवंश की यशोगाथा में रानी दुर्गावती से लेकर शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बलिदान की कहानी भी शामिल है। महाकौशल क्षेत्र में गढ़ा मंडला की वीरांगना रानी दुर्गावती ने अपने पति राजा दलपत शाह के निधन के बाद 15 वर्षों तक अपनी प्रजा का पालन किया, राज्य को समृद्ध किया। उन्होंने अनेक जलस्रोतों का निर्माण करवाया, साथ ही गांव-गांव में जलस्रोतों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से उन्होंने ये घोषणा की कि अपने खेतों में तालाब बनवाने वाले किसानों से कर नहीं लिया जाएगा। इस तरह उनके साम्राज्य में जनसामान्य द्वारा अनगिनत तालाबों का निर्माण हुआ। अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु मुगलों से युद्ध करते हुए रानी दुर्गावती ने आत्मोत्सर्ग किया। जब अंग्रेजों ने इन जल स्रोतों पर योजना बनाकर कब्जा कर लिया और इन पर कर लगाना शुरू किया, तब गोंडवाना में विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी। उत्तर में विंध्याचल से लेकर दक्षिण पश्चिम में सह्याद्री के पश्चिमी घाट तक भील जनजाति का निवास स्थान था, जहां अंग्रेजों के दमन और शोषण का लंबा सिलसिला चला। परिणाम स्वरूप भीलों ने त्रयंबक जी के नेतृत्व में शस्त्र उठा लिए। सन 1817 में खानदेश के भीलों का विद्रोह हुआ।

इस पर बंबई प्रेसिडेंसी के एल्फिंगस्टन ने लिखा, त्रयंबक और उसके दो भतीजे गोंडाजी दंगल और महिपा दंगल खानदेश के विद्रोही नेता हैं। खानदेश पर अंग्रेजों ने सन 1818 में कब्जा कर लिया, लेकिन भील रुके नहीं। उन्होंने सन 1819 में पुनः क्रांति कर पहाड़ी क्षेत्रों की विभिन्न चौकियों पर कब्जा कर लिया। ये संघर्ष लंबा चला। एक भील नेता शहीद होता तो दूसरा मोर्चा संभाल लेता। सतमाला पहाड़ी के भील सरदार चील नायक को पकड़कर फांसी दे दी गई। भील नायक दशरथ ने सन 1820 में मोर्चा संभाला तो हिरिया नायक के नेतृत्व में भीलों ने सन 1822 में अंग्रेजी राज को चुनौती दी। कर्नल रॉबिन्सन ने सन 1823 में बड़ी सेना लेकर भीलों के क्षेत्र में प्रवेश किया और दो वर्ष तक भीलों की हत्या करता रहा। बस्तियों में आग लगा दी गई, लेकिन इस अग्नि से विद्रोह की आग और भड़क उठी। सन 1824 में त्रयंबक जी के भतीजे गोंडाजी दंगलिया ने भीलों को पुनः एकत्र कर विप्लव किया। वहीं सन 1826 में दांग सरदारों और लोहारा के भीलों ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने भील सेना की स्थापना कर इस क्रांति को दबाने का प्रयास किया, लेकिन इसके बाद भी भीलों का आक्रोश खत्म नहीं हुआ। सन 1831 में धार के भीलों ने संघर्ष शुरू किया तो उधर सन 1846 में मालवा के भीलों ने क्रांति कर दी। खानदेश के भीलों ने सन 1852 में प्रबल संघर्ष किया और फिर सन 1857 में भगोजी नायक तथा काजर सिंह के साथ साथ कई भील और भिलाला नायकों ने अपने असंख्य भील साथियों को लेकर अंग्रेजों से युद्ध किया। सन 1857 में मुक्ति संग्राम की चिंगारी जब उत्तर भारत से होती हुई मध्य भारत पहुंची, तब मालवा निमाड़ के जनजातीय महानायकों ने भी मोर्चा संभाला। टंटिया भील, भीमा नायक, खाजिया नायक, सीताराम कंवर, रघुनाथ सिंह मंडलोई आदि ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष का गौरवपूर्ण इतिहास रचा।

भील जननायकों में निमाड़ क्षेत्र के टंटिया भील ने अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया। वो अंग्रेजों को लूटते और गरीबों में धन बांटते थे। वो हवा की तरह आते और सहायता प्रदान कर अगले मोर्चे की ओर चल पड़ते। वो अनेक स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रयदाता भी थे। उन्होंने तात्या टोपे से गुरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया था। उन्हें पकड़ना आसान नहीं था। छल बल से अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर फांसी पर लटका दिया। निमाड़ अंचल के ही भीमा और खाजिया नायक अत्यंत वीर थे। सन 1857 की क्रांति के समय भीमा नायक ने ब्रिटिश सत्ता की नींव हिलाकर रख दी थी। भीमा नायक बड़वानी रियासत के पंचमोहली गांव के रहने वाले थे। अंग्रेजों ने खानदेश भील कोर पलटन को उनके पीछे लगा दिया था, लेकिन वो उन्हें पकड़ नहीं सकी। भीमा नायक अपने साथियों मुवासिया नायक, रेवलिया नायक और 10,000 क्रांतिकारियों के साथ डटे रहे। इस संघर्ष में भीमा नायक की मां सुरसी ने भी एक क्रांतिकारी टोली का नेतृत्व किया था। एक गद्दार की सूचना पर घने जंगल में सोते हुए भीमा नायक को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर सेंधवा घाट के खाजिया नायक ने अंग्रेजी राज को नकारते हुए अंग्रेजों की नौकरी छोड़ी और बड़वानी क्षेत्र में भीलों के स्वतंत्रता संग्राम की कमान संभाली थी। भीमा नायक और खाजिया नायक तात्या टोपे के संपर्क में थे। अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करते हुए खाजिया नायक के 1500 साथी शहीद हुए और उन्हें भी छल से पकड़कर फांसी पर लटका दिया गया। इसी कड़ी में सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई ने भिलाला क्रांति की कमान संभाली और 3,000 क्रांतिकारियों का संगठित दल बनाकर अंग्रेजों पर आक्रमण किया। अकबरपुर क्षेत्र में सीताराम कंवर ने तीव्र हमले किए। उन्हें पकड़ने के लिए 500 रुपए के इनाम की घोषणा भी हुई। ब्रिटिश सेना से बंड नामक स्थान पर युद्ध करते हुए वे शहीद हो गए। रघुनाथ सिंह मंडलोई टांडा बरोड़ के भिलाला नायक थे। अपने अभियान के बाद वो अक्सर बीजागढ़ में ठहरते थे। यहीं उन्हें अंग्रेजों ने बातचीत के लिए आने का संदेश भेजा और जब वो बातचीत के लिए पहुंचे तो गिरफ्तार कर लिए गए। इस तरह भीमा नायक और खाजिया नायक की जलाई क्रांति की मशाल को लेकर अनगिनत भील और भिलाला क्रांतिवीर अपनी भूमि की अस्मिता के लिए शहीद हो

विश्व इतिहास में बलिदान का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया जबलपुर अंचल के गोंड राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने, जो वीरांगना रानी दुर्गावती के वंशज थे। 1857 की क्रांति में उन्होंने जबलपुर क्षेत्र का नेतृत्व किया था। अंग्रेजों के प्रबल विरोधी और अनन्य देवी भक्त राजा शंकर शाह वेश बदलकर जगह जगह जाते और सबको क्रांति के लिए एकजुट करते। जबलपुर की 52वीं रेजिमेंट के सिपाही भी राजा शंकर शाह के घर आते जाते थे। यहीं मुहर्रम के दिन छावनी पर आक्रमण करने की योजना बनाई गई। इसकी सूचना अंग्रेजों तक पहुंचा दी गई। राजा के घर की तलाशी ली गई। इसमें क्रांति संगठन के दस्तावेजों के साथ साथ राजा शंकर शाह द्वारा लिखित देवी को संबोधित एक ऐसी कविता प्राप्त हुई जिसमें अंग्रेजी सत्ता के विनाश की कामना की गई थी। इसे बड़ा आधार मानते हुए दोनों क्रांतिवीर पिता पुत्र को तोप से उड़ाने की सजा दी गई। जबलपुर में एजेंसी हाउस के सामने फांसी परेड हुई। जनसैलाब उमड़ पड़ा था। दोनों का चेहरा वीरता से चमक रहा था। अंत समय भी उनकी जुबान पर वही कविता थी।

तोप की आवाज गूंज उठी। उत्तेजित भीड़ चीत्कार उठी। राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह शहीद हो गए। मध्य प्रदेश के जनजातीय नायकों के बलिदान का एक और अध्याय लिखा छिंदवाड़ा जिले के भोई जनजाति के अमरवीरों ने। बादल भोई ने 1923 में तामिया तहसील में एक सभा का आयोजन किया। उनके जोशीले भाषण से उनके अनगिनत साथी अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो गए। 4000 लोगों के साथ उन्होंने छिंदवाड़ा में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। अंग्रेज बौखला गए। उन्होंने 21 अगस्त सन 1930 को बादल भोई को गिरफ्तार कर लिया। कारावास में ही बादल भोई की मृत्यु हो गई। इस तरह बादल भोई ने सहरा भोई, अमरू भोई, इमरत भोई, लोटिया भोई, टापुरु भोई और झंका भोई जैसे जनजातीय क्रांतिवीरों के आत्म बलिदान की परंपरा को आगे बढ़ाया। गांधी जी के नमक सत्याग्रह से प्रेरित होकर बैतूल के घोड़ा डोंगरी क्षेत्र में जनजातीय समाज ने जंगल सत्याग्रह किया था। अनगिनत लोग शहीद हुए, लाठियां खाईं, जेल यातनाएं सहीं, लेकिन टस से मस नहीं हुए। इसी क्रम में सिवनी के पास टूरिया सत्याग्रह सन 1930 को हुआ। चंदन बगीचे में घास काटकर सांकेतिक विरोध जताने पहुंचे लोगों पर गोलियां चला दी गईं। घटना स्थल पर ही मुड्डेबाई, रेनोबाई, देमोबाई और बिरजू भोई शहीद हो गए। टूरिया में गोलीकांड के बाद भी पुलिस की बर्बरता नहीं रुकी। ग्रामवासियों को वृक्षों से बांधकर कोड़ों से मारा गया। इसके बाद तो जंगल सत्याग्रह दावानल बनकर प्रांत भर में छा गया। इस तरह अपने धर्म, अपनी भूमि, अपने जीवन मूल्यों और अपने देश के स्वाभिमान के लिए मध्य प्रदेश के इन जनजातीय नायकों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर स्वतंत्रता संघर्ष को जारी रखा, जो भारत की आजादी के बाद ही थमा। नमन ऐसे अमर क्रांतिवीरों को।

आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन श्री शिवशेखर शुक्ल, समन्वय श्री संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

नमस्कार श्रोताओं, मेरा नाम डॉक्टर निधि गुलाटी, रीड इंडिया लखनऊ से, आपके साथ, आपके लिए कुछ सिखाने और सीखने के लिए ये कार्यक्रम आओ सीखे के अंतर्गत आप तक लाया गया है। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब शरीर में पानी की कमी। मनुष्य के शरीर में 60-70% पानी होता है। पानी के बिना शरीर जीवित नहीं रह सकता। पानी हमारे शरीर में जो ब्लड वेसल्स होती हैं, या हमारे शरीर में जो सेल्स होते हैं, या सेल्स के आंतरिक भाग के भीतर मौजूद होता है पानी। हमारे वाटर लेवल को संतुलित रखने के लिए हमें दिन में कम से कम 2-3 लीटर तक पानी पीना चाहिए। पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर के सारे फंक्शंस प्रॉपर होते हैं अगर हम पानी

लक्षण में आपको प्यास लगती है, आपका मुंह सूखा होता है और चिपचिपा होता है, आपको पेशाब नहीं आता है और जब आता है तो वो गाढ़े पीले रंग का पेशाब आता है। हमारा जो त्वचा होती है वो रूखी हो जाती है, सिर में दर्द होता है, हमें मांसपेशियों में भी दर्द होता है, सुस्ती आती है, सोने का मन करता है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, हम सांसें जोर जोर से लेने लगते हैं, हमारे आंसू नहीं निकलते जब हम रोते हैं और हमें चक्कर भी आता है। श्रोताओं, ये कुछ लक्षण थे। आइए अब जानते हैं कि डिहाइड्रेशन के कारण क्या क्या हो सकता है। बहुत बार डिहाइड्रेशन होने के कारण बहुत ही आम होता है, जैसे कि आप जब बीमार हो आपका पानी पीने का मन नहीं करता है, या आप कोई लंबी यात्रा में हो तब आपका पानी पीने का मन नहीं करता है। ये तो साधारण कारण है, किंतु बहुत बार कुछ स्वास्थ्य समस्या कारण भी होते हैं, जैसे कि दस्त या उल्टी के कारण। गंभीर तीव्र दस्त के कारण हमारे शरीर में कम समय में ही पानी और डिहाइड्रेशन का नुकसान हो सकता है, और यदि आपको दस्त के साथ उल्टी भी होती है तो आपके शरीर से और भी अधिक मात्रा में पानी निकल सकता है। बुखार, सामान्य तौर पे बुखार जितना अधिक होगा आप उतने ही निर्जलित हो सकते हैं। दस्त और उल्टी के अलावा बुखार होने पर समस्या और बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा पसीना आना, पसीना आने पर भी हमारे शरीर में पानी की मात्रा कम होती है। श्रोताओं, आप जानते हैं डिहाइड्रेशन से बचाव कैसे करें। डिहाइड्रेशन के लिए रोकथाम ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इलाज है। इसके लिए बहुत सारे तरल पदार्थों और खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है। लोगों को अधिक गर्मी या दिन में सबसे जब गर्म होता है तो अपनी गतिविधियों को कम करना चाहिए और पानी अधिक मात्रा में पीना चाहिए। बुजुर्गों और बहुत कम उम्र वाले बच्चों को डिहाइड्रेशन होने के सबसे अधिक खतरा होता है, इसलिए उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि वे अच्छे से पानी पिए और वह भोजन करें जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो। यदि आपको दस्त, उल्टी या बुखार है तो भी जितना हो सके तरल पदार्थों का सेवन करें और भरपूर मात्रा में पानी पिएं। श्रोताओं, आप जानते हैं डिहाइड्रेशन का इलाज क्या होता है। अगर शरीर में पानी की कमी है तो हमें पानी अधिक मात्रा में पीना है। यही एक सरल उपाय है, यही एक सरल इलाज है डिहाइड्रेशन का। अधिक से अधिक पानी पिएं और वो फल या खाना खाएं जिसमें अधिक मात्रा में पानी हो। जो लोग डिहाइड्रेट होते हैं उन्हें कॉफ़ी, चाय और सोडा का सेवन कम करना चाहिए। हमारे शरीर में पानी की जरूरत है, चाहे हम उसको पानी से पूरा करें, चाहे हम नींबू पानी ले सकते हैं, हम नारियल पानी पी सकते हैं, हम कोई भी फल का जूस निकाल कर पी सकते हैं। इससे हमारे शरीर में पानी की कमी कम हो सकती है और हमें भरपूर मात्रा में पोषण मिल सकता है। गंभीर डिहाइड्रेशन होने पर तुरंत इलाज किया जाना चाहिए, लेकिन हल्के डिहाइड्रेशन से आपके मूड और ऊर्जा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उसके लिए आवश्यक है कि आप लक्षणों को पहचान लें और तुरंत उसका इलाज किया जाए। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो और आप अपने जीवन में अधिक से अधिक पानी पीने की कोशिश करें। मेरा आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।

0: खुशी के साथ बदलते भारत की शान।
1: नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। आपके साथ मैं हूं अंचल सिंह। जब भी बात होती है किसी सफर की या फिर फैमिली पिकनिक की, तो ऐसे में मूंगफली की चर्चा ना हो ये बात अधूरी रह जाती है। सोंधी सोंधी मूंगफली का जब एक एक दाना मुंह में पड़ता है तो सफर का आनंद कई गुना बढ़ जाता है। वही पिकनिक के रोमांच की बात करें तो इसमें भी वृद्धि हो जाती है। सर्दियों में तो मूंगफली को काफी पसंद किया जाता है। किसी को सफर में कच्ची मूंगफली पसंद होती है, किसी को भुनी हुई, किसी को रोस्टेड, किसी को गुड़ वाली पट्टी पसंद होती है। यानी मूंगफली एक, जायके अनेक। आज के कृषि विशेष में इसी के बारे में हम बात करेंगे कि आखिर मूंगफली को लेकर क्यों है इतना क्रेज, कैसे इसकी खेती की जा सकती है, हमारे देश में लगातार कैसे इसकी खेती बढ़ रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि विशेष की।

0: मूंगफली भारत की प्रमुख तिलहनी फसलों में से एक है। इसकी खेती देश के तकरीबन सभी राज्यों में होती है, लेकिन जहां उपयुक्त जलवायु होती है वहां मूंगफली की फसल बेहतर और दाने पुष्ट होते हैं। देश में आज बहुत से किसान अपनी परंपरागत खेती को छोड़ नकदी फसलों की खेती करने में लगे हैं, और होना भी चाहिए क्योंकि पारंपरिक खेती में आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया जो होने लगा था। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि किसानों को अगर अपनी आमदनी बढ़ानी है तो मूंगफली की खेती एक मुनाफे की खेती जरूर साबित हो सकती है, क्योंकि ये रबी और खरीफ के बीच कम समय की फसल होती है, लेकिन अब इसकी खेती साल भर की जा सकती है। मूंगफली की खेती के लिए मिट्टी दोमट या बलुई हो तो सोने पर सुहागा माना जाता है। अगर ऐसा नहीं है तो खेत की 4 से 5 बार की जोत करा लेनी चाहिए।
1: तो किसान की मूंगफली खेती जो है वो बलुई दोमट भूमि में अच्छी खेती होती है। इसके साथ साथ किसान हमारा अच्छा बीज TG37A और प्रजाति GG2 ICV11 तो ये प्रजातियों का चयन करता है और अच्छा उत्पादन ले रहा है। ये सारी प्रजातियां समर की हैं, समर ग्राउंडनट की हैं। मूंगफली हमारे इस क्षेत्र में धीरे धीरे अपना जो है क्षेत्र पर बढ़ा रही है। हमारे किसान भी खुश हैं कि मूंगफली की पैदावार 3.5 से 4 क्विंटल प्रति बीघे के करीब हमारे किसान भाई कर रहा है। तो निश्चित है कि 25 से 30 हजार रुपये प्रति बीघे मूंगफली हमारा किसान बेच रहा है। इसके बाद उसमें लागत बीज की अलावा आती है, बहुत ज्यादा नहीं आती है।
2: कृषि विज्ञान केंद्र पर हमारे मृदा वैज्ञानिक हैं। कृषि विज्ञान केंद्र मैनपुरी पर मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर आर एन सिंह की नियुक्ति है और वो सॉयल टेस्टिंग लैब को संभालते हैं और जिले के काफी लोगों को जागरूक करते हैं, जिससे वो सॉयल का टेस्ट करा के उसी आधार पर फर्टिलाइजर मैनेजमेंट करते हैं, उर्वरकों का सही संतुलन प्रयोग करते हैं। उनका बड़ा रोल है।
0: सूर्य की अधिक रोशनी और उच्च तापमान मूंगफली के पौधे की बढ़त के लिए अनुकूल माने जाते हैं। अच्छी फसल के लिए कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक माना गया है। यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि खरीफ सीजन की फसल जून महीने के दूसरे पखवाड़े से लेकर जुलाई के दूसरे पखवाड़े तक मूंगफली की बुआई की जा सकती है। आइए जानते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान कैसे करते हैं मूंगफली की खेती।
3: मूंगफली जो है खेती हमारे पूर्वज लोग करते थे, लेकिन उतनी अच्छी पैदावार नहीं होती थी जो आज इस वक्त पैदावार हो रही है। ये सब कृषि विज्ञान की देन है। हमारा कृषि विज्ञान केंद्र जाजपुर बंजारा में है। डॉक्टर लोग यहाँ आते हैं, बतलाते हैं कि ये फसल वो ये वो, उसी के आधार पर मैंने यहाँ मूंगफली लगाई और हर साल की अपेक्षा इस साल जो है प्रोडक्शन अच्छा दिखाई दे रहा है।
4: मूंगफली एक ऐसी फसल है जिसमें कम लागत लगती है लेकिन किसानों को अच्छी उपज मिलती है, यानी मुनाफा भरपूर होता है। सरकार भी इसकी खेती को काफी प्रोत्साहित कर रही है और प्रशिक्षण केंद्र भी खोले जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में हमारी इस रिपोर्ट में।
0: कम समय और कम लागत में भरपूर पैदावार होने के कारण यहाँ के किसान काफी खुशहाल हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार भी बड़े ही शिद्दत से काम कर रही है। देश के हर जिले में किसान सहायता केंद्र खोले गए हैं और वहाँ कृषि विशेषज्ञों की तैनाती भी की गई है, जो समय समय पर किसानों को महत्वपूर्ण सलाह देते रहते हैं। आइए जानते हैं यहाँ के किसान सरकार की व्यवस्था से कैसे लाभान्वित हो रहे हैं।
5: हम ग्राम हरियरपुर में, हमारे यहाँ मूंगफली का क्षेत्रफल लगभग 35,000 के हेक्टेयर के लगभग यहाँ पर मूंगफली का क्षेत्र होता है बहुत बड़े स्तर से। इसमें हम लोग जो मूंगफली करते हैं, इसमें हमारे जो है पानी 5-4-5 पानी में मूंगफली पककर तैयार होती है, जिसमें जो है लागत हमारी जो है बहुत कम है और इसका रेट बहुत अच्छा मिलता है। सुखाने के बाद हम लोग जो है मार्केट में ले जाते हैं, इसका जो उचित रेट मिलता है, जिससे हम लोगों को बहुत अच्छी फायदा होती है मूंगफली के।
6: खरीफ सीजन की भी उन्नतशील प्रजातियों को रिलीज करके गांव-गांव पहुंचाने की, जिले-जिले पहुंचाने की हम लोग प्रयास करते हैं। हमारा कृषि विज्ञान केंद्र मैनपुरी में स्थापित है, यहां के भी वैज्ञानिक प्रचार प्रसार करने में हमारी इन प्रजातियों का काफी सहयोग प्रदान करते हैं।
7: जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं वो जन जन तक सहभागिता के साथ पहुंचे, इसके लिए सबसे पहले तो ये प्रयास किया गया कि जैसे पहले किसान जागरूक नहीं था, चूंकि ये धान की बेल्ट है तो पोस्टली किसान यहाँ धान गेहूं दो ही चीजें किया करता था। धीमे धीमे हम लोगों ने किसानों को जागरूक करना शुरू किया। प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर जाकर के जो हमारे कर्मचारी थे उन्होंने जाकर वहाँ कार्यशालाएं की, किसानों को प्रशिक्षित किया।
4: इसी के साथ ही यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जानेंगे कि मूंगफली का क्या है इतिहास, कहाँ से हुई इसकी शुरुआत और कैसे आज के समय में पूरे विश्व में इसका व्यापार हो रहा है। साथ ही आपको जानकारी देंगे मूंगफली के पोषक तत्वों के बारे में। तो कहीं मत जाएगा, देखते रहे कृषि विशेष।

0: कहां होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति, जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
1: ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष। आज कृषि विशेष में हम बात कर रहे हैं मूंगफली की। मूंगफली एक तिलहन है, लेकिन इसके तेल का जायके के लिए इस्तेमाल आम आदमी की पॉकेट पर काफी भारी पड़ता है। विश्व भर में मूंगफली के उत्पाद काफी लोकप्रिय हैं और इसका व्यापार भी होता है। आइए अब आपको बताते हैं कि मूंगफली की शुरुआत कहां से हुई, क्या है इसका इतिहास, और साथ ही ये भी जानेंगे कि क्यों इसे कहा जाता है आम आदमी का मेवा, यानी क्यों है ये पोषक तत्वों से भरपूर। तो आइए नजर डालते हैं अपनी इस रिपोर्ट पर।
2: मूंगफली का अंग्रेजी नाम पीनट है और इसका वैज्ञानिक नाम है आर्चीज हाइपोगिया। ये मिट्टी में नाइट्रोजन की वृद्धि करने वाली लेग्यूमिनोसी कुल की फसल मानी जाती है। मूंगफली की उत्पत्ति ईसा से करीब 1500 वर्ष पूर्व दक्षिण अमेरिका में बताई जाती है। फूड इतिहासकारों की माने तो मूंगफली को विश्व में सबसे पहले ब्राजील में उगाया गया। आज विश्व के 113 देशों में मूंगफली की खेती होती है। जिन देशों में मूंगफली की प्रमुखता से खेती होती है उनमें चीन और भारत के अलावा प्रमुख हैं नाइजीरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, सूडान, म्यांमार, चाड और अर्जेंटीना। चीन के बाद भारत मूंगफली की खेती में दूसरा स्थान रखता है और सर्वोत्तम क्वालिटी की पैदावार देता है। आंकड़े भी इस बात के गवाह हैं कि विश्व में मूंगफली की कुल पैदावार का 50% हिस्सा भारत और चीन पैदा करता है। दुनिया में मूंगफली की कुल उपज 4,40,41,913 टन के करीब है। इसमें अकेले भारत 68,57,000 टन मूंगफली की भागीदारी करता है। भारत में गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्यों में सबसे अधिक इसकी फसल उगाई जाती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा पंजाब की फसलें भी उम्दा होती हैं।
3: देखिए, इस समय अगर मूंगफली के बाजार को खास फोकस किया जाए तो खास तौर से यूपी की मंडी और गुजरात की मंडी पे यहाँ पर ज्यादा जो है वो अट्रैक्शन देखने को मिलता है और ज्यादातर इन मंडियों को देख करके ही बाहर की जगह और सभी मंडियों के रेट डिसाइड होते हैं। फिलहाल अभी अगर इस समय देखते हैं तो यूपी की मंडियों में काफी डोमेस्टिक लेवल पे जो छोटी छोटी मंडियां हैं उनमें भी काफी दामों में तेजी का दौर देखने को मिल रहा है और आगे आने वाले समय में चूंकि निर्यात की डिमांड यहां पर ज्यादा निकल कर देखने को मिल रही है तो उसका फायदा भी आगे आने वाले समय में किसान भाई बहनों को मिलता हुआ नजर आएगा।
4: और मूंगफली की खेती जो हमारे किसान भाई कर रहे हैं तो उनका मैंने अनुभव शेयर किया। मैंने कहा भाई मूंगफली की खेती, तो किसानों का भी ये जवाब आया और हमने भी यही बताया कि मूंगफली की खेती के दो फायदे हैं। एक तो इसकी पैदावार जो है बहुत अच्छी है और इसके मार्केट में इस समय रेट भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। मक्का की तुलना में ये करीब जो है 2-3 गुने रेट से जाती है, करीब 6,000 से 7,000 रुपये प्रति क्विंटल हिसाब से मूंगफली हमारे मार्केट में इस समय चल रही है।
2: अगर हम इसकी पौष्टिकता की बात करें तो मूंगफली में भी बड़े बड़े गुण हैं। पीनट का तेल अगर आप खाने में इस्तेमाल करते हैं तो स्वास्थ्य में लाभकारी होता है और ऊर्जा में वृद्धि करता है, शरीर में पोषक तत्वों की कमी नहीं होने देता। वहीं विटामिन B6, B9, बी कॉम्प्लेक्स, पेंटोथेनिक एसिड के अलावा एंटीऑक्सीडेंट का बहुत अच्छा सोर्स भी है जो कई तरह की बीमारियों में लाभदायक होता है।
4: मूंगफली एक ऐसी फसल है जिसमें प्रोटीन और इसमें ऑयल कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, अच्छी मात्रा में होता है, तो बहुत सारे इसमें फील्ड में इसका प्रयोग करते हैं और किसान हमारा जो है अच्छा मार्केट इसको आसपास मिल जाता है, इसको किसी प्रकार से इसमें बेचने की कोई समस्या नहीं हमारे किसानों को आती है।
3: मूंगफली और साथ में अगर आप ऑयल प्रोड्यूस करके उसको आप अगर निर्यात करते हैं तो दोनों में अच्छा खासा मार्जिन मिलता है और मार्जिन की बात की जाए तो लगभग 20% से ज्यादा का मार्जिन किसानों को यहां पर मिल सकता है। तो इस समय किसान भाई बहनों के पास दो ऑप्शंस मिलते हैं। पहला कि जो अपनी पैदावार को सीधे मंडी में बेच करके या फिर बाहर के निर्यात को यहां पर देखते हुए सरकार चूंकि निर्यात पे कई पॉलिसीज को बड़े ईज किया है जिसका फायदा जो है वो इस समय किसान भाई बहनों को मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसान भाई बहन यहां से प्रोसेस करके जो है वो ऑयल को अगर प्रोड्यूस करके और उसको निर्यात करते हैं तो उसमें ज्यादा फायदा मिलता है। फिलहाल मूंगफली का तेल के दाम जो हैं वो काफी तेजी से बढ़े हैं। भारत में भी इसकी डिमांड बढ़ी है, जिसकी वजह से मूंगफली जो है वो इस समय एक अट्रैक्शन दे रहा है। आगे आने वाले समय में एक्सपोर्ट बढ़ने के और चांसेस हैं, तो ऐसे हालात में भारत के निर्यात को यहाँ पर सीधा सीधा फायदा किसान भाई बहनों को मिल पाएगा।
1: कृषि विशेष में अभी आपने जाना मूंगफली के पोषक तत्वों के बारे में। फिलहाल यहाँ वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी मूंगफली से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँचाएंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि विशेष।

0: ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष। आज के कृषि विशेष में हम आपको बता रहे हैं मूंगफली के बारे में। चलिए बढ़ते आगे और अब आपको बताते हैं इसकी खेती से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। जी हाँ, अगर हमारे किसान मूंगफली की अच्छी उपज प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यानी कौन से किस्मों का चुनाव करें, खेत की तैयारी कैसे हो, कीट और बीमारियों से फसल को कैसे सुरक्षित रखें। तो आइए देखते हैं मूंगफली की खेती पर हमारी अगली रिपोर्ट।
1: मूंगफली की उत्तम खेती के लिए जिन बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है, इनमें प्रमुख हैं भूमि एवं उसकी तैयारी, बीज की बुआई, खाद्य एवं उर्वरक, नीम की खली का सही इस्तेमाल, समुचित सिंचाई, निराई गुड़ाई एवं खरपतवार का नियंत्रण, फसल का सही चक्र, पौधों में लगने वाले रोगों का नियंत्रण, कीट नियंत्रण, सफेद लट की देखभाल, बीज का सही उत्पादन, कटाई एवं गहाई, और अंतिम है उपज से लिया जाने वाला आर्थिक लाभ।
2: सुड़ी की बीमारी लगती है और इसमें मूंगफली में भी छेदक, जैसे कोई बीमारी लग जात तो उसमें छेद कर दे तो वो अंदर मिट्टी जो है भर जाती है, वो बेकार हो जाती मूंगफली। तो उसके लिए जो है कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर लोग आते हैं, बताते हैं कि ये दवाई डालो, इससे शोधन करके ये लगाओ तो उसमें जो है बीमारी नहीं लगेगी।
3: दो सिंचाइयों की बहुत आवश्यकता होती है, एक तो पेक बनने के समय और फलियां बनने समय। उस समय जो है फ्लावरिंग स्टेज पे भी बहुत सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ किसान भाई हमारे जो है खरपतवार नाशी की समस्या थी उसके लिए मैजा थाइफर का प्रयोग भी किसान हमारा करता है, 10SL की जो वीडिसाइड है उसका भी प्रयोग करता है। तो इससे जो है खरपतवार की समस्या पे काफी रुकावट आई है और किसान हमारा खुश है।
0: अभी आपने जाना कि कैसे करें मूंगफली की खेती। चलिए बढ़ते आगे और अब आपको जानकारी देते हैं कि मूंगफली की और कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं। साथ ही ये भी आपको बताते हैं कि हमारे देश में किन किन क्षेत्रों में इसकी खेती होती है और विश्व पटल पर कैसे हमारा देश इसे निर्यात कर रहा है, कौन कौन से वो देश है जहाँ पर मूंगफली निर्यात की जाती है, जानते हैं इस रिपोर्ट में।
1: मूंगफली की अच्छी और उन्नत किस्मों में RG 425 की 120 और 130, MA 10 की 125-130, M 548 की 120-126, TG 37A की 120-130 और G 201 की 110-120 किस्में शामिल हैं। देश में मूंगफली की खेती करने वाले किसानों के लिए ये गर्व की बात है कि साल 2020-21 के दौरान भारत ने 6.38 लाख टन मूंगफली का निर्यात किया और 5381 करोड़ रुपयों की अर्जन की। जिन देशों में भारत मूंगफली का निर्यात करता है इनमें इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड, चीन, रूस, यूक्रेन, संयुक्त अरब अमीरात और नेपाल जैसे देश शामिल हैं। अगर आप कृषि विशेषज्ञों की राय लेकर मूंगफली की खेती करते हैं तो किसान भाइयों को तकरीबन 40,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आमदनी हो सकती है और किसानों की आय दोगुने से भी अधिक हो सकती है।
4: अगर देखा जाए तो भारत और चाइना सिर्फ दो ही ऐसी कंट्रीज हैं जो कि सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पाद करती हैं और जिसमें कि यहाँ पर भारत का निर्यात पिछले कंपैरिजन में अगर करें तो काफी तेजी से बढ़ा है। इस साल भारत जो है वो 6 लाख टन से कहीं ज्यादा का निर्यात कर चुका है और आने वाले समय में भारत की पैठ काफी अधिक बढ़ती जा रही है। खास तौर से यूपी या फिर गुजरात की मंडियों की बात करें तो वहां पर भी काफी तेजी से पैदावार के जो आंकड़े थे वो भी बढ़े हैं और इस समय अगर देखा जाए तो ओपेक कंट्रीज जो हैं उनसे काफी डिमांड इंडिया से निकलकर देखने को मिल रही है। इसीलिए यहां पर इंडोनेशिया, वियतनाम ये कंट्रीज सबसे ज्यादा मूंगफली का इम्पोर्ट भारत से कर रहे हैं।
0: तो ये था हमारा आज का कृषि विशेष जिसमें हमने आपको जानकारी दी आम आदमी का मेवा यानी कि मूंगफली के बारे में, बताया आपको इसके पोषक तत्वों के बारे में भी और साथ ही जानकारी दी कि क्यों इसका क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है dd.krishivishesh@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 69A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहेगा। यहाँ लेंगे आपसे इजाजत। कृषि विशेष के नए अंक में एक नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा इतना सम्मान किया। मैंने आपको तब सुनाया था कि इतना सारा नेशनल अवार्ड मिला है। मेरा फादर 90 इयर्स ओल्ड है और ब्लाइंड है। इतना सारा नेशनल अवार्ड मिला तो जो नेशनल अवार्ड हमको जो मिला था ना, उनको सबको बुलाया, बिठाया और बात किया कि नेशनल अवार्ड इतना सारा लेकर क्या करोगे। तो हम तो सब चुप हो गए कि क्या करेंगे, तो मतलब क्या है। तो बोले और कुछ नहीं करना है, लेकिन आपके पास जो स्किल है वो बांटो, अब सबको बांटो, सबको दो, वो स्किल दूसरों को सिखाओ। तो योगानुयोग मैडम से भी मुलाकात हो गई और ये मौका मिल गया, अब ये बांटना है बस। धन्यवाद।
1: इनको ना एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स आते हैं इटली से, जर्मनी से। ही कांट स्पीक इंग्लिश, वो समझ नहीं सकते हिंदी, तो वो कहते हैं मैं उनको अपनी ही किसी लैंग्वेज में ऑर्डर ले लेता हूँ और सप्लाई कर देता हूँ और कम्युनिकेशन।
0: हमारा एक मिशन है, हमारा फैमिली का एक मिशन है, एफ टू एफ, फार्मर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फाइबर, फाइबर से फैब्रिक, फैब्रिक से फैशन, फैशन से फॉर्म।
2: रीड इंडिया माने रूरल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, ग्रामीण शिक्षा एवं विकास। हमारा काम तो लाइब्रेरीज बनाना है, और आज के समय में जो चर्चा हो रही है, लाइब्रेरीज खाली किताब पढ़ने के लिए नहीं है। लाइब्रेरीज एक ऐसी जगह है जहां हम बहुत कुछ अपने लिए भी कर सकते हैं और समुदाय के लिए भी कर सकते हैं। माने पढ़ें तो हम अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, हम बड़ों को भी पढ़ाएं, हम छोटे बच्चों के साथ भी एक्टिविटीज करें कि किताब क्या चीज है और किताब उनके जीवन में क्या महत्व रखती है। पर ड्यूरिंग द जर्नी इस समय के साथ साथ हमने ये सोचा कि हमें महिलाओं के लिए भी कुछ कार्यक्रम करने चाहिए। अगर महिला अपने आप को निखार सकती है, अपने आप को सक्षम बना सकती है और जिम्मेदारी अपने शोल्डर्स पे ले सकती है कि अपने बच्चों का विकास कैसे करना है, वो भी रीड इंडिया अपने कम्युनिटी लाइब्रेरीज और रिसोर्स सेंटर्स में करती है। हमने औरतों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए, जैसे सिलाई सिखाना, ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग देना और भी बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग्स हैं जो हम अपने सेंटर्स में करते हैं। पर उसका जो आउटकम है, जो हम समझ रहे हैं कि एक महिला इतनी सक्षम हो जाए कि वो अपने परिवार की भी सोच बदल सके, अपनी भी सोच बदल सके और अपने बच्चों को एक मकाम तक लेके जा सके। इसी दौरान हमने पिछले 3 सालों में उनको बहुत सारी ऐसी स्किल्स दी जिससे वो अपना बिजनेस भी शुरू कर सकती हैं, और हम उनको रेगुलरली ट्रेस भी करते हैं, ट्रेस इन द सेंस कि हम उनसे बातचीत भी करते हैं कि वो अपने बिजनेस के बारे में क्या सोच रही हैं, अपना बिजनेस कैसे आगे लेके जा सकती हैं। और इसी दौरान हमने ये सोचा कि हम क्यों इतने बड़े बड़े बीबीए और एमबीए की बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो हम इतने पैसे कहाँ से लाएं कि हम इन महिलाओं को बोलें कि ये कोर्सेज ज्वाइन कर लो। तो रीड इंडिया ने क्या किया, अपने प्रपोजल में ये सारे एपिसोड्स लिख दिए। मैं इनको एपिसोड्स ही कहूंगी, मॉड्यूल्स नहीं कहूंगी, क्योंकि ये एपिसोड्स उनके जीवन में बहुत सा बदलाव ला सकते हैं, उनको एक उद्योग क्या है उसके बारे में ज्ञान दे सकते हैं, और उद्योग करने के लिए उनको क्या क्या सीखना है वो भी ट्रेनिंग्स हम देने के लिए तैयार हैं। और हम महिलाओं को बोलते हैं, यंग लड़कियों को बोलते हैं जो बीए कर चुकी हैं या 12वीं पास कर चुकी हैं, वो अपना नाम आके रीड इंडिया की लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर में लिखवाएं, और हम बिल्कुल तैयार हैं उनको इनके ऊपर ट्रेनिंग देने के लिए। और आगे आने वाले समय में अगर नौकरी नहीं भी मिलती है तो तो अगर वो अपना एक लघु उद्योग शुरू कर लेती है और अपने परिवार की देखभाल अच्छे ढंग से कर लेती है और अपने हस्बैंड के साथ अपने परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के अपने परिवार को आगे लेके जाती है, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकती है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज उनकी जिंदगी में क्या हो सकती है। तो श्रोताओं, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आप रीड इंडिया के मिशन को समझें, रीड इंडिया की लाइब्रेरी के बारे में जानें और जितना भी आप अपने आप को सक्षम कर सकते हैं रीड इंडिया के सेंटर पे आके अपना नाम लिखवाएं। धन्यवाद।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

प्रिय श्रोताओं, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं करमवती गांव माजरी से आशा वर्कर का कार्य करती हूं। मैं समाज में घर घर गली गली में घूमती रहती हूं। जैसे मैं कहीं पर जाती हूं, मुझे अनेक अनेक समस्याएं देखने को मिलती है, जिससे मेरे मन में विचार उत्पन्न होते हैं और मैं उन समस्याओं से निपटारा पाने की सोचती हूँ। मुझे कई समस्याएं देखने को मिलती है, जैसे कहीं लड़का लड़की में भेदभाव हो रहा है तो कहीं बहू पर टॉर्चर हो रहा है, लड़का लड़की की पढ़ाई में भी भेदभाव और उनके उत्पन्न होने पर भी भेदभाव। बहुत ही विकराल समस्या उत्पन्न हो रही है, जैसे कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियां बहुत ही कम पैदा हो रही है, ये तो बहुत ही चिंता का विषय है। इस पर मैंने एक कहानी लिखी है जिसको मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। माया, अरे माया, कल काम पर क्यों नहीं आई? क्या बताऊं बहन जी, कल मेरे घर वाले ने मुझे बहुत मारा, लेकिन क्यों मारा? क्या बताऊं बहन जी, पहले से ही दो दो बेटियां पल रही है और अब की बार फिर बेटी। क्या कहा तूने, लेकिन तेरे को कैसे पता चला कि तुम्हारे गर्भ में एक बेटी है? अरे बहन जी, मेरे घर वाले ने जो अल्ट्रासाउंड जो करवाया था उसमें पता चला कि अब की बार भी मेरे गर्भ में बेटी ही है। क्या तेरे पति को ये नहीं पता, लिंग जांच करवाना कानूनी अपराध है और इसे करने वाला करवाने वाला दोनों को ही सजा जुर्माना हो सकता है? ये तो पता नहीं बहन जी मुझे, लेकिन मेरे घर वाले ने मुझे करवाया और लड़की का पता चला तो उसने मुझे बहुत मारा। नहीं, अपने पति के पास मेरे को ले चल, मैं आपके पति को समझाऊंगी कि लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं है और वैसे भी आपके पास दो दो बेटियां हैं तो अब की बार बच्चा बनाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। एक तो इतनी महंगाई और एक आपका शरीर कितना कमजोर दुबला पतला है, बच्चे की और जरूरत ही नहीं थी। मैं उसको समझाऊंगी। अरे मैं बहन जी, आप क्या समझाओगी, वो तो मुझे बार बार अबॉर्शन के लिए टॉर्चर कर रहे हैं। क्या आपके पति को ये नहीं पता कि लिंग जांच करवाकर और भ्रूण हत्या करवाना महापाप है और कानूनन अपराध है? अरे बहन जी, मैंने इसके लिए मना कर दिया तभी तो उसने मुझे मारा और मैं तो ये पाप बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। आज रात को जो मैं सो रही थी तब मेरे को सपना आया और सपने में मेरी बेटी ने पता है बहन जी आप मुझसे क्या कहा? क्या कहा तो प्रिय श्रोताओ, उस लड़की ने अपनी माँ से क्या कहा, मैं ये एक गीत के द्वारा प्रस्तुत करना चाहती हूँ। एक

0: रीमा, तो बहन जी इस गीत ने, उस बेटी की बातों ने मेरे कलेजे को हिला दिया और मैंने तो चाहे मेरे हस्बैंड कुछ भी कहो, यह अबॉर्शन बिल्कुल भी नहीं करवाना और मैं आप आज आपके पास काम के लिए नहीं इसीलिए आई हूँ कि आप भी मेरी हेल्प कर सको और मेरे हस्बैंड को इस बारे में समझा सको। हाँ हाँ माया, मैं जरूर आपके पति को समझाऊंगी। और आपकी वो दो बेटियाँ वो क्या करती है, स्कूल तो जाती होगी ना? अरे नहीं बहन जी, क्या स्कूल, वो तो भी मेरी तरह किसी दूसरे के घर में झाड़ू पोछा करती है। क्या कहा माया तूने, किसी दूसरे के घर में झाड़ू पोछा करती है? आपको ये नहीं पता कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी के घर पर काम करवाना या कंपनी या किसी भी कार्य क्षेत्र में काम करवाना कानूनी अपराध है और इसे करवाने वाला वे काम पर भेजने वाला दोनों ही इसके दोषी जुम्मेवार हैं। आप अपनी बेटियों को स्कूल क्यों नहीं भेजती? अरे मैम जी, कहाँ से स्कूल में भेजूं? आज इतनी महंगाई जो है, घर पाल चलाना ही मुश्किल हो रहा है, ऊपर से उनके स्कूल फीस व कापी किताबों का खर्चा मैं कहाँ से उठाऊं? अरे माया, क्या तेरे को ये नहीं पता कि आज जो सरकार ने है 8वीं कक्षा तक निःशुल्क किताबें और फीस फ्री कर रखी है। आप अपनी बेटियों को स्कूल में भेज के तो देखो, कोई खर्चा नहीं है, उनको फ्री में शिक्षा दी जा रही है, कापी किताबें भी सरकार ही दे रही है। अच्छा बहन जी, मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था, तब तो मैं अपनी बेटियों को जरूर स्कूल भेजूंगी। कल से ही मैं उनका एडमिशन स्कूल में करवाऊंगी और मेरे आसपास में जो बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते, मैं उनको भी यही सलाह दूंगी, अपनी बेटियों के साथ उनको भी स्कूल में एडमिशन करवाऊंगी। ये तो बहन जी आपने बहुत ही अच्छी बात बताई है। तो प्रिय श्रोताओं, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? मुझे आशा है आपको पसंद आई होगी। तो प्रिय श्रोताओं, आज आप दे मुझे इजाजत, मैं करमवती गांव माजरी से कल आपको फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: अभिता और फरा, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम पे, जिसका नाम है नीडल एंड थ्रेड, और जिससे आप रोजाना काम करती हैं। और आपको ये भी पता है और हम सबको पता है कि नीडल और थ्रेड के बिना हमारा गुजारा भी नहीं है, बिकॉज सबको कपड़े सिलवाने हैं, पहनने हैं। और बहुत सारी औरतें जो हैं, जो रीड के साथ जुड़ी हैं या वैसे भी काम करती हैं, उनको स्टिचिंग करके जो सेटिस्फेक्शन मिलती है वो यू कैन नॉट इमेजिन दैट। और अभी प्रोफेशनल कोर्सेज भी बहुत सारे हैं, यूनिवर्सिटी में भी हैं, इंस्टीट्यूशंस में भी हैं, अपैरल डिज़ाइनिंग के। और जैसे अबीदा ने भी छोटा कोर्स किया है अपैरल डिज़ाइनिंग पे, और आज की जो चर्चा है हम इसी पे बेस करेंगे। और अबीदा और फरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अबीदा, शशांक ने आपके बारे में इंट्रोडक्शन दी है और आपने अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए बहुत सारी मेहनत करी है, बचपन से मेहनत करी है। आप अपना गांव छोड़ के दिल्ली में भी आई रहने के लिए, पढ़ने के लिए, और फिर वापस जाके जब आपके मन में जुनून था कुछ करने का तो आपने उसको पूरा कर दिखाया। और मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी कि जुनून अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत हुई है और ज़िंदगी बहुत लंबी है और अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करने की आप इच्छा भी रखती हैं और उसके उसको पूरा करने के लिए आप में दृढ़ विश्वास भी है। तो चलो हम बातचीत शुरू करते हैं। अबीदा, आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं, थोड़ी जानकारी दें और फिर हम आगे इस चर्चा को लेकर जाएंगे। अबीदा प्लीज।
2: गुड इवनिंग मैम, मेरा नाम अबीदा है और मैं रामपुर शहर के छोटे से मोहल्ले कलगत के रहने वाली हूँ। मैम, यहाँ का माहौल हमारे मतलब ऐसा है कि लड़कियों को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। शुरू से ही हम अपने आस पास का माहौल यही देखते आए, अपने घर का भी, कि हमारे भाइयों को एजुकेशन दी जाती थी और अच्छे से वो लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हम लड़कियों को इतनी इम्पोर्टेंट नहीं दी जाती थी। जैसे मैं अपनी बड़ी बहनों को देखती थी, वो घर का काम काज कर रही हैं और सिर्फ घर तक ही सीमित रहती थी, किचन तक, घर तक उनकी लाइफ रहती थी। लेकिन मेरे अंदर बचपन से ही एक जुनून था कि मुझे अपनी लाइफ को चेंज करनी है। मुझे लड़कों से लड़कियों को क्यों अलग समझा जाता है, मुझे वो सोच हटानी है लोगों की, और मुझे भी पढ़ना है, आगे कुछ करना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, लड़कियों का नाम रोशन करना है। ये सारी इच्छाएं मेरे अंदर बचपन से ही रहती थी। मैंने अपने घर वालों को बहुत सपोर्ट किया कि मुझे आप पढ़ने दें, तो घर वाले ने यही कहा कि नहीं, आप लोग, आप जैसे लड़कियां यहाँ घर में रहती हैं, आप भी ऐसे रहिए और घर का काम काज सीखिए। हालांकि मैं उस टाइम बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी मुझे बहुत चाहत थी कुछ बनने की। तो मैंने अपने घर वालों को कन्विंस किया, उन्होंने मेरा एडमिशन एक गवर्नमेंट स्कूल में कराया, कवरलगा स्कूल, वहां से मैंने 8th क्लास पास की। फिर उसके बाद वहाँ रामपुर में कारोबार नहीं है, बहुत प्रॉब्लम थी घर के खर्च की। पापा एक जॉब करते थे छोटी सी, और उसी से हमारा गुजर बसर काफी मुश्किल से होता था। तो इसी वजह से काम के लिए हम लोग दिल्ली चले गए, हमारे भाई ने वहाँ काम शुरू किया। मैंने अपने घर वालों को कोर्स किया बहुत ज्यादा कि मुझे आगे पढ़ने दें, कुछ बनने दें, ताकि मैं भी अपने भाइयों के साथ सपोर्ट करूँ घर का। तो मेरे घर वालों ने मेरी हेल्प की और मुझे आगे पढ़ने दिया। मैंने मदरसा जामिया से अपनी एजुकेशन आगे की, और जिसमें मैंने बीए फाइनल किया, और अरबिक साइड से, अरबी लैंग्वेज सीखी उस साइड से मैंने किया। लेकिन फिर भी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मेरे अंदर एक सोच रहती थी कि मैं किस तरह आगे बढ़ूँ, किस तरह अपने पैर पर खड़ी हूँ, किस तरह लड़कियों का नाम रोशन करूँ। ये सारी सोच मेरे अंदर हर टाइम रहती थी, लेकिन किस तरह, ये सवाल मेरे अंदर रहता था बार बार, ये सवाल मेरे अंदर उठता था कि मैं किस तरह अपने पैर पर खड़ी हूँ। उसके बाद फिर इसके दौरान मेरी एक फ्रेंड के थ्रू मैंने एक सिलाई सेंटर ज्वाइन किया, और मैंने वहां से स्टिचिंग कोर्स किया, काफी अच्छे से कोर्स किया, काफी मेहनत से, मन से, क्योंकि वो कोर्स सीखने के लिए मैंने, ये नहीं कि मैं शौक में कर रही हूँ, मुझे कुछ बनना है, आगे कुछ बनना है, कि सिलाई के करियर ही बनना है, लेकिन मुझे कुछ बनना है, ये सोचकर मैंने सेंटर ज्वाइन किया। और काफी मेहनत से, लगन से, जो लड़कियां मुझसे पहले की थी वहां पर, उनको भी पीछे छोड़ा मैंने, और इतनी मेहनत से मैंने वहां से कोर्स किया। और मुझे कहते बहुत खुशी है कि मैं वहाँ फर्स्ट आई, बहुत अच्छे से मुझे उन लोगों ने प्रेजेंट भी दिया, काफी लोग आए थे, उन्होंने मुझे सराहा और उन्होंने मुझे जॉब ऑफर की, लेकिन घर से सपोर्ट नहीं मिला जॉब का। उसी दौरान मेरी दोनों सिस्टर की शादी हो गई, और शादी के बाद फिर घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे पर आ गई, घर घर वालों ने जॉब के लिए नहीं मुझे सहारा दिया। उसके बाद फिर हम लोग रामपुर यहाँ आ गए, अब लोग हम शिफ्ट हो गए रामपुर। वहाँ उसी दौरान मेरे पापा काफी बीमार रहने लगे, उनको हार्ट की प्रॉब्लम रहने लगी, उसके पापा का काम छूट गया, और उसी सिलसिले में फिर मैं काफी टेंशन में रहने लगी कि मैं क्या करूँगा। तभी मुझे अकबर आए जहाँ, और हमारा हॉल पसंद किया, और रीड इंडिया ने मुझे ऑफर जॉब की, तो मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया, और सबसे बड़ी सपोर्ट मेरी भाइयों ने की, क्योंकि यहाँ इस हॉल में वो लोग हैंडीक्राफ्ट का काम करते थे, और मुझे चाहिए था हॉल, तो मेरे भाइयों ने अपना काम रोककर हॉल दिया मुझे, तो मैंने रीड इंडिया सेंटर चलाया, और मैंने ये सेंटर काफी अच्छे से चलाया। इस सेंटर में आने से पहले मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था, और काफी दिक्कत मुझे थी, और लड़कियों से अच्छे से बोल नहीं पाती थी, और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। वो कॉन्फिडेंस मुझे सिखाने के साथ के साथ आया, मैंने जितना लड़कियों को सिखाया उतनी मेरी खुद की स्किल्स डेवलपमेंट होने लगी, और मुझे लड़कियों से बात करने का तरीका आने लगा, और सिखाने के साथ साथ लड़कियां मेरी काफी मेरी इज्जत करने लगी, मेरी वैल्यूज बढ़ी। मोहल्ले में मुझे कोई नहीं जानता था, मोहल्ले में मुझे काफी जान मेरी जान पहचान बढ़ गई, और लोग मुझे जानने लगे। और मैंने 3 साल से सेंटर चला रही हूँ, जिसमें मैंने 400 तक लड़कियों को सिखा दिया है, और 400 घरों तक मेरी पहचान बढ़ गई, और इन 400 घरों तक मेरी पहचान बढ़ी है, और वो 400 लड़कियां और 400 लड़कियों को लेकर आई थी। हमारे यहाँ का अभी माहौल वही है कि लड़कियों को निकलने नहीं देते, लड़कियों को आगे कुछ बढ़ने नहीं देते, लेकिन मैंने लड़कियों के घरों पे गई, उनके पेरेंट्स से बात की कि आप लोग अपनी लड़कियों को यहाँ भेजें और हमारे सेंटर भेजें, उनको कुछ सिखाएं, तो उन लोगों ने मेरी बात एग्री किया, और मैंने साथ में लड़कियों को भेजा, और यहाँ पर लड़कियों ने आकर सीखना शुरू किया, जिससे काफी इंप्रूवमेंट आया। हमारे मोहल्ले में भी काफी लड़कियां ऐसी थी जो घरों से निकलना नहीं जानती थी, जिनके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, बात करने का तरीका नहीं आता था, वो सब उन्होंने सेंटर से ही सीखा, और यहाँ से उन्होंने रहने के बाद कमाना शुरू किया, और अपने पैरों पर खड़ी हुई, उन लोगों ने अपनी फैमिली को सपोर्ट भी किया, काफी लड़के ऐसे हैं जो अच्छे से कमा रहे हैं, कमा भी रही हैं।
1: बहुत बढ़िया, बहुत
2: जी मैम,
1: बढ़िया। फरा आपके साथ बैठी है फरा,
2: जी मैम,
1: और आप तो रीत से बहुत सालों से जुड़ी हुई हैं, जब आप बहुत छोटी थी तब से ही रीत से जुड़ी हैं। और ये स्टोरी जो अबिदा अपनी बता रही है, आपके क्या विचार हैं इस स्टोरी पे? और आपने अबिदा को अपने सेंटर में जोड़ा, कल घर में इन्हीं के घर में आपने सेंटर बनाया सी। जब आपके दिल में जुनून होता है तो नेचर भी आपको सपोर्ट करती है उसी काम को करने के लिए। अब जब
2: जी मैम,
1: पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे थे किसी भी रीजन से, मैं बहुत रिस्पेक्टफुली ये बात बोल रही हूँ और मैं उनकी बहुत इज्जत भी करती हूँ, कि ये होता है कि लड़कियों को बाहर भेजने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है पेरेंट्स को, तो वो कॉन्फिडेंस पेरेंट्स में भी टाइम से आता है, एकदम शुरू से नहीं आता है। और जब मैं अबिता की स्टोरी सुन रही हूँ तो मुझे फरा की स्टोरी भी याद आ रही है सामने। तो फरा, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी अबिता की स्टोरी में, क्योंकि आप इसको 2019 से देख रही हैं।
3: जी मैम, मैं ऐड करना चाहूंगी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रीड इंडिया रामपुर सेंटर से फरहा। आबिदा की स्टोरी में मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि आबिदा बहुत ही अच्छी और मेहनती लड़की है, जिनको मैं पहले दिन मिली थी और आज मिल रही हूँ। बहुत बड़ा फर्क है उनके अंदर। जैसे मेरी जर्नी थी रीट में, मैं यहाँ थी और अब यहाँ आ गई हूँ रीट से जुड़ने के बाद, ऐसे ही आबिदा ऐसी थी और आज यहाँ आ गई है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज वो लाइव आप सबके सामने अपनी स्टोरी शेयर कर रही है। जो कुछ, मतलब जब हम फर्स्ट डे आए थे तो कुछ बता भी नहीं पा रही थी, तो जब मेरी इनसे फर्स्ट डे मुलाकात हुई थी तो ये नकाब में और बुरके वगैरह में थी घर में ही, और ऐसे ही मतलब रहती थी। तो मैंने इनसे पूछा कि, इन्होंने हमसे बोला कि हम यहाँ पर, हमारा ये थोड़ा सा घर का हिस्सा है और यहाँ पर हम ऐसे से कोई कुछ चलाना चाहते हैं। तो हमने बोला यहाँ पर लड़कियां वगैरह कैसी हैं और लड़कियां आ जाएंगी यहाँ तक, क्या घर में से पेरेंट्स निकलने देंगे, क्या आपके अंदर वो जज्बा है कि आप सिखा पाएंगी, लड़कियों से जुड़ पाएंगी और या लड़कियों से बातचीत कर पाएंगी। तो उन्होंने अपना पूरा कॉन्फिडेंस दिया हमें कि हाँ हम करेंगे। मतलब इन्होंने मना नहीं करा, इनके पेरेंट्स मना कर रहे थे कि कोई जॉब नहीं करेंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम करेंगे। तो मुझे लगा कि हाँ भाई, फरा के जैसी भी कोई और है, करने के लिए जज्बा रखती है। तो वहीं से इन्होंने स्टार्ट करा और हमसे हामी भरी करने के लिए। तो हमें लगा कि हमारा यहाँ पर सेंटर चल सकता है रीड इंडिया का, और यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो आबिदा के जैसी बाहर निकल के कुछ कर सकती हैं। तो जब हमने इनसे बात करी और इन्होंने मोबिलाइजेशन करा, तो जब भी हमारे पास 100-150 लड़कियां आई बाहर निकल के, और इन्होंने घर घर में जाके मोबिलाइजेशन करा, पेरेंट्स को समझाया, क्योंकि यहाँ पर ऐसे पेरेंट्स हैं, मुस्लिम इलाका है, जो घर से बिल्कुल लड़के नहीं निकल पाती है। तो इन्होंने घर घर जाके, हमने इन्हें 1 हफ्ते का टाइम भी दिया कि आप जाइए और हमें बताइए कि आप कर सकती हैं। तो इन्होंने हमें 150 लड़कियां लाके दी, और जब हमने उन लड़कियों से मुलाकात की तो वो फर्स्ट टाइम अपने घर से निकल के किसी सेंटर पे आई थी। उन्होंने हमें बताया कि मैम, हम फर्स्ट टाइम अपने घर से निकले हैं, हमें फर्स्ट टाइम इजाजत मिली है, क्योंकि सिर्फ हम पढ़ाई के लिए जाते हैं और या फिर हम अपने घर पे रहते हैं, पढ़ाई के लिए भी हम अपने भाई या फादर के साथ जाते हैं, एग्जाम वगैरह देते हैं तो वो बाहर खड़े होते हैं और फिर हम देकर उन्हीं के साथ आ जाते हैं वापस। लेकिन ये एक पहला सेंटर है जो हमारे घर के करीब समझिए, या फिर एक टीचर के अंदर, टीचर ने उनको किस तरीके से उनके पेरेंट्स को समझाया, वो एक विश्वास समझिए जो हमारे पेरेंट्स ने हमें यहाँ तक भेज दिया। तो हमें बहुत खुशी हुई, और मुझे ये भी खुशी हुई कि आबिदा उन लड़कियों को घर से निकाल के लाई, इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आया, आगे बढ़ने का जुनून आया कि मैं आगे बढ़ सकती हूँ, और इतनी लड़कियों के पास ये पहुंची और उनको समझाने में कामयाब रही। लड़कियां यहाँ धीरे धीरे आई और लड़कियां आज इतनी है कि 400 से लेके 500 लड़कियां तक आबिदा को जानती हैं, और उनके घर वाले कभी भी किसी टाइम भी यहाँ भेज देते हैं, उनको कोई भी चिंता नहीं है। उनके पेरेंट्स भी यहाँ पर आते हैं और हम लोगों ने पेरेंट्स से भी बात की है कि आप अपनी लड़कियों को बाहर तो कहीं जाने देते हो, लेकिन हमारे सेंटर तक आप भेज रहे हो, क्या आपको हमारे सेंटर में ऐसी कौन सी अच्छी चीज लग रही है? तो उन्होंने यही हमसे बोला है कि आपके सेंटर के अंदर एक तो लड़की कुछ सीखने आती है, कुछ सीख के जाती है, और दूसरा ये एक विश्वास और एक लड़की के लिए सेफ्टी वाला सेंटर है, जो हमें लगता है कि हमारी लड़की वहां जाके बिल्कुल सेफ है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो वो हमें बहुत खुशी हुई। कभी कभी लड़कियां ये भी होती है कि घर से पूरे दिन के लिए भी कही जाती है कि मम्मी हम वहां पूरे दिन रहेंगे, हमें मतलब कोई काम करना है या स्विमिंग का कोई काम है या फिर प्रोडक्शन में कुछ करना है या फिर कोई डिजाइनिंग सूट सिलना है, तो उनके पेरेंट्स वो भी अलाउ कर देते हैं। जब उनके पेरेंट्स का फोन आता है तब वो दिन भर में जाती है। तो यहाँ तक लड़कियों के अंदर फर्क आया और वो फर्क लाने के लिए आबिदा ने बहुत कोशिश की है और बहुत अच्छा कनेक्ट करती है लड़कियों से। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी जैसी और लड़कियां बन रही हैं, फरा से आबिदा, आबिदा से और 150, 150 से 400 लड़कियां बन जाएं और ऐसे ही हमारा सोशल वर्क कामयाब रहे हमेशा और हम ज्यादा से ज्यादा लड़कियों, औरतों और लड़कों तक पहुंचे और रीड का नाम बहुत रोशन। तो मैम ये आबिदा की जो अंदर की कॉन्फिडेंस था वो निकल के आया।
1: वेरी गुड फरा, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी कि रीड का मॉडल ही ऐसे है। रीड का मॉडल ये है कि हम गांव में जाके कैसे गांव की लड़कियों के साथ मिलके काम करें जो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, और उन्हीं के एरिया में हम ऐसे सेंटर खोलें जहाँ पे लड़कियाँ बड़े कॉन्फिडेंस से आ सकें और अपने हम उम्र की लड़कियों से बहुत कुछ सीख सकें और अपने परिवार को भी सपोर्ट करें, अपनी लाइफ में भी चेंज लेके आए और अपने आने वाले जिंदगी की सोच भी उनकी क्लियर बन जानी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है फरा। और मैं यहाँ पे एक और चीज़ भी कहना चाहूँगी, जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो मैं अपने बारे में बताऊंगी कि मेरी ये सोच नहीं है कि हम घर से लड़के घर की रजामंदी ना होने की वजह से या हम अपनी जिद से कुछ करें। जैसे फरा की स्टोरी थी कि फरा ने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया, अपने गांव में ही सेंटर था और उस गांव के सेंटर में काम करके अपनी जिंदगी में बदलाव लाई, अपनी सोच में बदलाव लाई, अपने पेरेंट्स की सोच में बदलाव लाई, अपने पैरों पे खड़ी हुई। ऐसे अबिदा ने भी किया। अबिदा बिल्कुल अपने पेरेंट्स की बात मानती थी, कोई जिद नहीं थी कि मुझे घर से बाहर जाना है, पर ऐसे सरकमस्टांसिस में रीड का मॉडल उनके लाइफ के साथ इतना अच्छा तालमेल बिठाया उसने कि उसने अपने घर में ही जगह दी और अपने घर में ही उसने सिलाई मशीन रखने के लिए इजाजत मांगी अपने पेरेंट्स से। और देखिए उसके ब्रदर ने कितना सपोर्ट किया कि अपना काम बंद करके उसने अपनी बहन को जगह दी, क्योंकि उसकी भी यही सोच थी कि आज अगर मैं अपनी बहन को सपोर्ट करूंगा तो मेरी बहन बहुत आगे बढ़ जाएगी और उसके दिल की जो ख्वाहिश है उसको मैं प्रोत्साहित करूंगा कुछ करने के लिए। तो ये खाली अबिदा का रोल नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अबिदा के पेरेंट्स का, अबिदा के भाई का, फरा एज एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ हर एंड ऑल्सो फरा पेरेंट्स और आसपास का माहौल जो पॉजिटिव बना, ये सब चीजें बहुत रोल प्ले करती हैं। तो मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी इस सोच को समझने के लिए, इस सोच को आगे लेके जाने के लिए, क्योंकि जब हम अपनी सेल्फ ग्रोथ की बात करते हैं, जब सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, तो महिला को अपने दायरे में ही रह के अपने परिवार की सहमति से कैसे अपने में सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना, ये बहुत बड़ी बात है और इस सेल्फ कॉन्फिडेंस को हम सबका सलाम है, बिकॉज ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत टफनेस अपनी लाइफ में, बहुत हार्ड वर्क अपनी लाइफ में करके, बहुत चैलेंजेस को फेस करके आता है और हम जब आगे बढ़ते हैं और जो इसकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है वो हम किसी और चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो फरा और अबिदा, आपका जो जर्नी रही, जो दोनों ने जर्नी पार करी है, इस जर्नी को सलाम। और आपने जो लोगों को कन्विंस करा और जो लोगों को प्रोत्साहित करा आज के दिन में 400 लड़कियों को सिलाई सिखाना और उनके घर में इनकम ऐड करना, ये बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन है, इसको आप छोटा मत समझिए। आपने जो अपनी लाइफ में किया है इसका बहुत सारे लोगों पे, बहुत सारी लड़कियां जो आपसे डायरेक्ट जुड़ी हैं, उनका पेरेंट का फैमिली जो उनके माँ बाप हैं, उनके बहन भाई हैं, और जब उनकी शादी के बाद ससुराल गए हैं और उनके माँ बाप, उनके हस्बैंड, उनकी पूरी फैमिली पे इसका क्या असर पड़ता है आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो तो मैं इस चीज को बहुत अच्छे से रियलाइज करती हूँ। तभी रीड गांव गांव में जाके, गांव गांव में लोगों से बात करके, गांव में ऐसी लड़कियों को तराशते हैं जिनमें हुनर है पर वो कुछ कर नहीं सकती हैं। और आज हमारे सामने इस प्रोग्राम में दो लड़कियां बैठी हैं, फरा और अबिदा, जिनके अंदर एक टैलेंट छुपा हुआ था, उसके ऊपर धूल थी, हमने खाली उस धूल को हटाया है और आज ये ब्राइट स्टार बन के हमारे सामने बैठी हैं। थैंक यू अबिदा सो मच फॉर शेयरिंग योर, इस ये स्क्रीन पे शेयर करने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए और मैं आपकी हिम्मत की दाद देती हूँ। अभी
3: बिल्कुल
1: मुझे ये बताइए कि जो लड़कियां आपके पास सिलाई सीखने आती हैं, उनकी जिंदगी में कैसे बदलाव आया?
3: मैं ऐसा है जैसे यहाँ हमारी लड़कियां कुछ ज्यादातर ऐसी हैं जिनके फैमिली को सपोर्ट ज्यादा नहीं था उन पर, लेकिन हमने उनके घर बात की, उनके पेरेंट्स से बात की तो उन्होंने यहाँ भेजा। उनकी माली हालत भी इतनी अच्छी नहीं थी, मजदूरी करती है, काफी लड़कियों के वालिद वालिद उनके पापा, तो लड़कियों को हमने वो हुनर दिया और स्किल्स दी उनको इतनी कि उन्होंने यहाँ सीखने के दौरान ही सिलाई करना शुरू कर दी। उन्होंने अपने खुद के कपड़े सीकर और अपने पैसे बचाए और फिर उसके साथ साथ उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता चला गया और उन्होंने बाहर की सिलाइयां भी लेना शुरू कर दी, और जिससे उन्होंने घर में अच्छा सपोर्ट किया उन लड़कियों ने। और अपने पेरेंट जो उनको इजाजत नहीं देते थे, वो खुद उनकी अम्मियों ने आकर मुझसे बात की और शुक्रिया अदा किया कि आपने हमारी बेटियों को इस लायक बनाया है कि आज हमारी बेटियां इस लायक हैं कि अर्निंग कर रही हैं, अपना फर्ज भी उठा रही हैं और अपने घर का फर्ज भी उठा रही हैं। कुछ लड़कियां ऐसी थी जिनकी पढ़ाई भी रुक गई थी, घर की माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि उनकी पढ़ाई रुक गई थी और उन्होंने इतना कमाने लगी हैं वो लड़कियां कि उन्होंने अपनी पढ़ाई भी दोबारा स्टार्ट कर दी है, और कुछ लड़कियों ने ट्यूशन वगैरह भी लगा ली है अपनी। और कितनी लड़कियां ऐसी हैं कि मेरे पास एक दो लड़की ऐसी है जिनकी डिवोर्स हो चुकी है और वो अपने घर में थी, अपने पेरेंट्स पर डिपेंड करती थी, लेकिन यहाँ सिलाई सीखने के बाद वो खुशी से ये बात कहती हैं कि अब हम किसी पर डिपेंड नहीं है और हम अपना फर्ज अपने बच्चों का फर्ज खुद उठा रहे हैं।
1: बहुत बढ़िया, आपने तीन पहलू यहाँ पे हमारे सामने शेयर कर रहे हैं। एक तो लड़कियों ने सिलाई सीख के अपने पेरेंट्स की जो फैमिली की इनकम थी उसमें योगदान दिया, दूसरा उन्होंने अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करी, ये बहुत बड़ा स्टेप है अपनी लाइफ में। फरा ने तो करा ही है पर और भी ऐसी लड़कियों ने करा जिन्होंने अपनी पढ़ाई आगे करी, अपनी पढ़ाई को सपोर्ट किया, सेल्फ सपोर्ट किया। और तीसरा जिनका डिवोर्स हो गया वो भी अपने पैरों पे खड़ी हो गई। तो ये तीन मेजर लाइफ चेंजर्स जो हैं, जो आए उनके लाइफ में, इसका श्रेय आपको जाता है जो आपने बहुत सहनशीलता से, बहुत समझदारी से और बिना इसकी शोर मचाए, शोर मचाए मतलब कि किसी को कानो कान खबर नहीं हो रही है इस चीज की, तभी हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि गांवों में कैसे बदलाव आ रहा है। ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए बात, क्योंकि हम कोई मीडिया में स्टोरी नहीं देते हैं, हम कोई इसको शो ऑफ नहीं करते हैं, बट जो रियलिस्टिक चेंज आ रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, वो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी बातों से सब लोगों तक पहुंचनी चाहिए, बिकॉज यू आर द चेंज मेकर। हम कहते हैं ना कि हमने सोशल कैपिटल बिल्ड करा, हमने सोशल गेन्स की बात की, हमने देखा कि कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। ये तीनों का श्रेय आपने इतनी सरलता से किया और अपनी इतनी समझबूझ और मेहनत से किया, मैं इसका भी आपको सल्यूट करती हूँ कि आपने बहुत अच्छे से काम किया। फरा, ये हम किन इनके एरिया की बात कर रहे हैं, आपका सिमिलर स्टोरी पटवाई में भी है राइट? तो उसके बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे। पटवाई में ये तीनों चीजें जो मैंने बात की है, सोशल गेन्स मतलब कि समाज में उनको कैसे इज्जत मिली, कैसे उनकी इज्जत बढ़ी परिवार में, समाज में, और कैसे उनको धन का भी लाभ हुआ फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। और जो लड़कियां बहुत ही डिफिकल्ट सरकमस्टांसेस में थी, वो उन्होंने उन सरकमस्टांसेस को रिजॉल्व करा, उस कठिन समय से बाहर आई। तो फरा, आपके यहाँ पे भी ऐसी बहुत सारी स्टोरीज होंगी, क्या हमें सुना सकती हैं ऐसी स्टोरी आप?
3: जी मैम, बिल्कुल सुना सकती हूँ। पटवाई तो हमारा सेंटर अभी 6-5 ईयर्स हो गए चलते हुए, और उसमें लगभग 1,000-1,200 लड़कियों ने वहां पर सीखा है, स्विमिंग, ब्यूटी और कंप्यूटर है और लाइब्रेरी भी है। तो कुछ लड़कियों की मैं स्टोरी बताऊंगी कि जैसे अभी

चुकी हैं। अभी लॉकडाउन में कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है, कोई नहीं जा पा रहा है। तो फर्स्ट लॉकडाउन जो लगा उसके बाद हमारे सेंटर खुले, उसमें हमने वो ट्रेनिंग दी। सेकेंड लॉकडाउन बाद में लगा था, तो कुछ लड़कियों को हमने जूम ऐप की ट्रेनिंग दी। जिस तरीके से हमारी रीट में ट्रेनिंग होती थी कि मीटिंग्स होती थी, वो लड़कियां वहां पर आके कंप्यूटर भी सीखती थी और वो देखती थी कि मैम आप ये ट्रेनिंग लेते हैं, ये ऑनलाइन आप फेस टू फेस कैसे बात करते हैं, कैसे ट्रेनिंग लेते हैं। तो हमने ऑनलाइन सेलिंग में ही उनको एक ये ट्रेनिंग दी कि किस तरीके से हम अपनी जीमेल आईडी बनाएं। उसके बाद हमारे पास अगर टच फोन है एंड्रॉइड का, तो हम किस तरीके से जूम ऐप के जरिए बच्चों को भी क्लासेस दे सकते हैं जो हमारे स्क्रीन गुड स्कूल में चल रहा है, और किस तरीके से हम खुद भी पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो लड़कियां बहुत खुश हुई क्योंकि कुछ लड़कियों की पढ़ाई बीच में ही रुक गई थी, वो नहीं पढ़ पा रही थी, वो अपने बुक से या फिर जो भी कॉपियां पहले की थी उससे पढ़ाई कर रही थी। जूम ऐप के बारे में उन लोगों को नहीं पता था। जब उनको इस जूम ऐप के बारे में पता चला, तो धीरे धीरे हमने उनके घरों से उनके फोन मंगाए, मतलब पापा के या भाई के जो भी घर में फोन रहते थे, उनके पास तो नहीं थे, लेकिन हमने कहा कि आप 2 या 3 दिन के लिए हमारे सेंटर पे फोन लेकर आओ, हम वो जूम ऐप आपको डाउनलोड करके देंगे, आपको पूरी मीटिंग बताएंगे किस तरीके से लेंगी आप, और इससे आप अर्न भी कर सकते हो घर पर बैठ के। जो भी बच्चों की क्लासेस छूट रही है वो भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, जो आपकी क्लास छूट रही है आप वो भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो सारी ही लड़कियां अपने फादर, अपने भाई, अपनी मदर का फोन लेकर हमारे सेंटर पे आ गई। जब दूसरे दिन आई तो हमें लगा कि काफी इच्छुक हैं लड़कियां ये करने में, तो हमने उनकी सभी की जीमेल आईडी बनवाई और जूम ऐप के द्वारा ट्रेनिंग उनको बताया कि किस तरीके से हम लेते हैं। तो लड़कियां काफी खुश हुई। 10 दिन के अंदर अंदर उन्होंने एक बच्चों का ग्रुप बना लिया, पांच पांच बच्चों का, और उनको फीस रख दी 100 रुपए कि हम आपको ये ऑनलाइन क्लासेस देंगे। गांव की लड़कियां जो मतलब बच्चे जो थे सिर्फ फेस टू फेस पढ़ते थे, उनको ऑनलाइन का पता भी नहीं था, लेकिन जब उन्होंने हमारे वहां से जूम ऐप की ट्रेनिंग ली तो उन्होंने देखा कि स्क्रीन गुड स्कूल की भी क्लासेस ली जाती हैं, क्योंकि मैं उन्हीं के सामने देती थी वो क्लासेस। तो उन्होंने 100-100 रुपए बच्चों से कहा कि आप फीस दो और हम आपके ऑनलाइन के जरिए आपकी पढ़ाई करेंगे। कोरोना के टाइम आप कहीं जा नहीं पा रहे हो, आपकी पढ़ाई बीच में रुकी हुई है। तो जब उन्होंने अपने गांव में एक एक बेस बनाया, हर लड़की ने पांच पांच चार चार लड़कियों बच्चों का या दो दो बच्चों का, वो 200 भी कमा रही हूँ तो उनके लिए बहुत है, वो फर्स्ट टाइम था उनका, वो बेस बनाया और उन्होंने उससे स्टार्टिंग कर दी। जब जूम ऐप से स्टार्टिंग कर दी, तो जब वो अगले मंथ हमारे वहां आई ये सारी चीजें सीख कर वो क्लासे लेके, तो बहुत खुश होकर आई और बोली मैम हमने तो अपनी क्लासेस इस पे स्टार्ट कर दी जूम ऐप के जरिए, और हम बच्चों की क्लास ले रहे हैं इस पे, अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे लॉकडाउन में हमारी पढ़ाई छूट गई थी, वो भी हमारी कंटिन्यू रहती है, लिंक भेज देती है मैम, और हम बच्चों की भी इसमें ट्यूशन जारी रखे हुए हैं, जिससे हमें 200, 300 या 500 के लगभग हम बच्चों को क्लास दे देते हैं। अब हमने उनको इसके साथ साथ ऑनलाइन सेलिंग के बारे में बताया कि आपके अंदर कोई भी हुनर है आप वो भी कर सकते हो। जैसे आप फेसबुक पे अगर आपके अंदर स्विंग का बहुत अच्छा आपको प्रोडक्ट बनाना आता है, वो सूट बना के आप सिर्फ अपने घर में टांगोगे तो आपके मोहल्ले वाले देखेंगे या आपके घर वाले देखेंगे या एक दो गांव के लोग और आ जाएंगे वो चीज देखने के लिए। लेकिन आप इसी चीज को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे भी डालोगे तो पूरी दुनिया के लोग देखेंगे। अब आप व्हाट्सएप पे आप चैटिंग करते हो अपने रिश्तेदारों को, तो चैटिंग करते हो, हमने उन्हें बताया, बात करते हो, फेसबुक से अपने दोस्तों को बात करते हो, तो आप बात करते करते आप उसको अपना प्रोडक्ट भी भेजो कि हमसे ये बहुत अच्छी कुर्ती बनानी आती है या हमें सूट आता है, आप हमारे सूट भी देखो। वो अपने आगे और दोस्तों को भेजेगा, वो दोस्त उसके आगे को भेजेगा, तो इससे आपकी अर्निंग भी शुरू होगी और अपना काम आप स्टार्ट कर सकोगे। तो कुछ लड़कियों ने ये करना भी स्टार्ट किया था, लेकिन उनको पैसे लेन देन में भी थोड़ी ज्यादा वो आई थी कि दिक्कत की कैसे ले, क्योंकि उन्हें गूगल पे का पता नहीं था। तो हमने धीरे धीरे उन्हें गूगल पे के बारे में बताया। अधिकतर लड़कियां जो पटवाई में हैं वो इतनी मतलब मेहनती हैं, एक जो हमारे यहाँ ये जो चुन्नी होती है माता की, वो चुन्नी बनने के लिए आती है, तो वो जो 1 रुपया 1.5 रुपया, तो दिन भर में लड़कियां 10 या 15 या 20 वो चुन्नियां निकाल लेती है उससे। तो एक लड़कियों ने ग्रुप बनाया और वो उन चुन्नी वाले अंकल से रामपुर में आई, बात करके गई और हम मेरे साथ ही गई, मतलब हमें किसी ने बताया था कि वो चुन्नी वहां वहां से लेनी है, तो हमने लड़कियों का ग्रुप बनाया कि ये काम स्टार्ट करके देखते हैं, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, आप घर भी ले जाना और सेंटर पे भी करेंगे। तो लड़कियों ने जब ग्रुप बनाया और हम लोग सब बस से रामपुर आए, रामपुर से हमने उन भैया से बात करी उस चुन्नी के लिए, तो उन्होंने बोला आप जितनी सिलवा सकते हो सिलवाओ और हमारे यहाँ से ये चुन्नी ले जाओ। तो उन्होंने हमें 500 चुन्नियां दी, वो 500 चुन्नियां लड़कियां हमारे पास बहुत थी और हमने आपस में 20-20-30 चुन्नी बांट दी। लड़कियों ने 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो चुन्नियां तैयार भी कर दी मैम, और आज की कंडीशन है लड़कियां खुद जाके वो चुन्नियां ला रही हैं माता रानी की, खुद सिलती हैं, खुद उनको देती हैं, और उससे जो भी अर्निंग होती है उनकी 1000-1500, ज्यादा तो नहीं हो पाती है,

0: वो अपनी कमाई कर रही है। तो पटवारी सेंटर में लड़कियों के आने के बाद उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है और जो बात करने का तरीका है, जब वो आती है तो उनके अंदर कुछ भी नहीं, उन्हें ये भी नहीं होता हमें बस सिलाई सीखनी है। हम पूछते हैं आप आगे क्या करना चाहती हो, मैम सिलाई सीखना है, उसके बाद हम अपने घर में करेंगे। उसके बाद मतलब मैंने उनसे पूछते पूछते हम लोग थक जाते हैं, आगे क्या सोचा है लाइफ में, तो वो कुछ नहीं बता पाती है। फिर हमें उन्हें बीच बीच में ट्रेनिंग देनी पड़ती है, जैसे लाइफ स्किल है, लीडरशिप की है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की है, आर्ट थेरेपी की है। तो हम उनको वो उनकी जो अंदर का जज्बा है ना वो बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, और वो निकल के भी आता है। आज भी 1000 है हमारे वहाँ जो सीखी हुई है, 1000 में से हम सीना चौड़ा करके और मतलब पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि 300 लड़कियां आगे बढ़ गई हैं, 500 लड़कियां आगे बढ़ गई हैं, 300 ऐसी हैं जो मार्केट से भी काम लाके चाहे छोटा सा ही कर रही है वो कर रही है, और 500 ऐसी हैं जो अपने घर बैठ के ही सिलाई कर रही है, बट कुछ ना कुछ कर रही है, उनके अंदर जज्बा निकल के आया है कुछ करने का।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया फरा, आपकी आपकी स्टोरी सुन के और आपकी बॉडी लैंग्वेज देख के मुझे ऐसे लगता है कि आप इतनी खुश होती हैं उसका आउटकम बयान करके कि आपकी मेहनत कैसे रंग ला रही है। और अभिदा, आपने जो 400 लड़कियों को और उससे भी ज़्यादा लड़कियों को सिलाई सिखाई है, तो वो भी ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं क्योंकि उनके जो फैमिली है उनको घर से बाहर तो जाने नहीं देती है। तो सीखने के बाद जो फरह ने बताया है वो आपके एरिया में भी अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, लड़कियां बहुत आगे बढ़ सकती हैं, अपने डिजाइन्स को प्रमोट कर सकती हैं। तो क्या अभी ऐसी कुछ शुरुआत हुई है या नहीं हुई?
0: जी मैम, मैं हमारे सेंटर में 10-12 लड़कियों ने ग्रुप कराया था, जिसमें हमने प्रोडक्शन तैयार किए थे। लड़कियों ने आपस में एक ग्रुप बनाकर उसमें पैसे जमा किए और फैब्रिक लेकर आए, लेस वगैरह लेकर आए, और मैंने उनकी हेल्प की डिजाइन करने में। लड़कियों ने कुर्तियां डिजाइन की, प्लाजो दुपट्टे वगैरह डिजाइन किए, तो उन्होंने ऑनलाइन के जरिए अपने प्रोडक्ट सेल भी किए हैं काफी लड़कियों ने, और अभी कर भी रही है। उनको काफी अर्निंग भी हुई अच्छे से और लड़कियों को कॉन्फिडेंस काफी बढ़ा। एक दो लड़कियां ऐसी थी जिनकी शादी फिक्स हो गई थी और वो करना नहीं चाहती थी, उन्होंने मुझसे बात की कि मैम हम आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन घर वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो मैंने उनके पेरेंट्स से बात की, जब आपके बच्चों ने इतनी अच्छी ट्रेनिंग ली है, सिलाई के साथ साथ ऑनलाइन ट्रेनिंग ली है, तो आप घर में घर से नहीं निकलने दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप घर के अंदर ही अपनी लड़कियों को सपोर्ट कीजिए। तो घर वालों ने उनको सपोर्ट किया, लड़कियों ने बस हफ्ते में एक दो बार मेरे पास आ जाया करती थी ताकि मैं उनके हेल्प कर दूँ। उन्होंने घर से ही काफी प्रोडक्ट बनाए और सेल करे, और अभी भी लड़कियां कर रही हैं, काफी लड़कियां कर रही
1: वेरी गुड, बहुत
0: हैं।
1: अच्छी बात है। और मैं फरह को बोलूँगी कि अबिदा के साथ मिलके यहाँ भी ग्रुप्स बनाए और लड़कियों को ऑनलाइन सेलिंग की ट्रेनिंग दे, बिकॉज़ ये हमारा कोर है। कोर इसलिए मैं बोलूँगी कि रीड इंडिया का मॉडल ऐसे ही है कि हर लड़की को सक्षम बनाना, हर लड़की को बताना कि वो अपने पैरों पे कैसे खड़ी हो सकती है, और होलिस्टिक डेवलपमेंट। जब हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसकी एजुकेशन में कैसे वो आगे बढ़ सकती है, अपने हुनर को कैसे आगे लेके जा सकती है, अपनी इज्जत कैसे कमा सकती है समाज में, फैमिली में, और सोशल मीडिया अब हमारे लिए एक कंपल्शन बन गई है, बिकॉज कोविड ने हमें सोशल मीडिया के बारे में भी कंपेल कर दिया है कि हम सोशल मीडिया के थ्रू कैसे लोगों तक पहुंच सकते हैं और लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, और इसके बारे में भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बोलूँगी कि हम बहुत सारे ऐसे ग्रुप बनाएं और उनको हम सपोर्ट करें काम करने के लिए, और हम एक इतना बड़ा कलेक्टिव एंटरप्राइज खड़ा कर दें रामपुर एरिया में कि सब लड़कियां मिलके इसको आगे लेके जाएं। और रीड इंडिया की गुड विशेस भी हैं, और रीड इंडिया अभी कंटिन्यू कर रहा है प्रोग्राम, और इस थोड़ी सी ड्यूरेशन के अंतर्गत मिलके हम कैसे एक बड़ा उद्योग शुरू कर सकते हैं, ये आप अपनी सोच बनाइए और बहुत सारी लड़कियों को उसके साथ जोड़िए, तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा और आपके अंदर जो जज्बा है वो जज्बा भी आगे बढ़ने के लिए आपको प्रोत्साहित करेगा। मैं अभी थोड़ा सा टॉपिक ट्विस्ट कर रही हूँ, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं सिलाई की और कैसे हम अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं या कुछ, क्या कभी आपको ऐसे लगा है कि अच्छे डिज़ाइन्स की कमी है और आप हमें बताएं? और दूसरा मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि किस तरह के वहाँ पे डिमांड आती है ड्रेसेस की या कुर्तीज की या किस तरह के कपड़े वहाँ पे लोग पसंद करते हैं, क्योंकि उस तरीके की सिलाई आना भी बहुत ज़रूरी है। और क्या वो जो डिमांड है आबिदा और फर्रा उसको पूरा कर पा रहे हैं या उनको कोई चैलेंजेस फेस होते हैं?
0: यहाँ पर जो डिमांड है मैम, ज्यादातर प्लाजो कुर्ती की ज्यादातर डिमांड आती है लड़कियों के लिए और गरारों की। कि पार्टी वियर में अगर वो जाती हैं तो वो गरारे बहुत ज्यादा चल रहे हैं यहाँ पर, और अगर वो सिंपल घर में भी पहनते हैं तो प्लाजो। प्लाजो और गरारे बहुत यहाँ पर चल रहे हैं, बट हमारे वहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ टीचर बहुत ही मतलब अच्छी हैं और इनको सारी ही चीजें आती हैं। हमें कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मार्केट से कुछ स्विंग करवाना हो या फिर कोई स्विंग के लिए यहाँ पर लेकर भी आता है तो हमें वापस भेजना हो, क्योंकि हमारी जो टेलर हैं और जो भी हमारी आबिदा स्विंग टीचर हैं बहुत अच्छे से उनको मैनेज करती हैं, और पटवाई में भी फातिमा है। और जो चीज उन्हें नहीं आती है वो उसकी ट्रेनिंग लेने की भी कोशिश करती हैं। जैसे यूट्यूब पे हमारा बहुत अच्छा है कि हम कभी भी यूट्यूब पे कुछ भी डाल के देख सकते हैं। हमने इन्हें यही बताया है कि कभी भी उस चीज के लिए ना नहीं करो। अगर हमारे यहाँ कोई गेस्ट आया है या फिर कोई भी चीज स्विंग के लिए आया है या फिर कोई सिलवाने के लिए आया तो उसको ना नहीं करना है। चाहे भले ही आपको नहीं आता हो तो उसकी ट्रेनिंग लो, उससे मतलब सोचो कि हमें कैसे करना है। आज आप एक को मना करोगे कल फिर दो नहीं आएंगे, तीन नहीं आएंगे, इससे हमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो चाहे आप उसकी ट्रेनिंग लो या आगे बढ़ो या फिर आपके अंदर जो भी कमी है उसको पूरा करो, हमारे वहां जो भी आए गेस्ट उसको मना नहीं करो, जाना नहीं चाहिए यहाँ से।
1: बहुत
0: जी मैम,
1: बढ़िया फरा, आपने बताया कि ये भी एक नेटवर्क बनाने का टेक्निक है कि किसी को मना नहीं करना है, और हमारा इसी तरीके से नेटवर्क भी बढ़ता है। अभी तक आपने लड़कियों को क्या-क्या सिखाया है, थोड़ा उसके बारे में भी बताएंगे?
0: पहले मैं थोड़ा बेबी फ्रॉक से करवाती हूँ। बेबी फ्रॉक वगैरह अच्छे से कंप्लीट हो जाते हैं, फिर उसके बाद कुर्ती सलवार और डिजाइनिंग, फिर उसके बाद डिजाइनिंग नेक वगैरह, ये काफी पसंद है। यहाँ पर काफी डिमांड आती है इस चीज की। लड़कियाँ बस ये कहती है मैम हमें सिलाई के बाद अच्छे से हमें नेक डिजाइन सिखाइए। नेक डिजाइन लड़कियों को काफी पसंद आते हैं, और ब्लाउज पेटीकोट परारे और पटियाला सलवार, ट्यूलिप सलवार, धोती सलवार, और यही सारा कुछ साड़ी में फॉल लगाना, ब्लाउज वगैरह करना और लहंगा और शादियों के गरारे और चुनिया तैयार करना, ये सब हम सिखाते हैं।
1: वेरी नाइस। तो आपने पूरा ही एक कोई ऐसी चीज छोड़ी नहीं जो नहीं सिखाई, मेरा ये कहने का मतलब है,
0: जी
1: और बहुत अच्छे से सिखाई है। और क्या
0: जी
1: हम जरी जरदोजी को और सिलाई को मिक्स करके बना सकते हैं कुछ ऐसे ड्रेसेस, या आप ऑलरेडी बना रही हैं?
0: जैसे अभी जरी वर्क के हमने कुशन्स कवर बनाए थे तो स्विंग इन लोगों ने ही की थी, और अभी जैसे कुर्तियां मैंने भेजी थी ऑफिस में तो जो मैंने जरी वर्क का करवाया तो स्विंग इन्होंने की। बट ये हो जाता है कि हम लोग यहाँ से जरी वर्क करवा रहे हैं और ये लोग हमें स्विंग करके देते हैं।
1: वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो एक तालमेल बैठता है। जरी वर्क जो है, आप तो शादी के लहंगे से लेके बहुत भारी दुपट्टे से लेके एक नेक लाइन पे भी जरी करते हैं, ये जो आर्ट है ये बहुत कमाल का है, और इसको भी हम सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि जो लहंगे, जहाँ तक मुझे पता है, जो भी करोल बाग में या चांदनी चौक में लहंगे मिलते हैं वो सारे ज्यादातर रामपुर से भी बनकर आते हैं, और लड़कियां बहुत इसमें अपना कौशल दिखाती हैं कि कैसे अच्छे बना सकते हैं। और जो दुपट्टे बनाती हैं आप, जाल वाले दुपट्टे या बॉर्डर वाले दुपट्टे, या अलग से बॉर्डर भी डिजाइन कर देती हैं, और ऐसे गले में भी काट देती हैं डिजाइन थोड़ा सा करके, तो ये जो हुनर है इसको बहुत आगे जाने की जरूरत है। और कैसे हम इसको आगे लेके जाएं, ये एक टीम वर्क होता है, जैसे अबिदा है, फरा है, अकबर है, और भी बहुत सारा एक टीम है आपके पास, इसको आप आगे ले जाने की प्लानिंग करें, सोचें कैसे करेंगे, तो फिर पीछे मुड़ के देखने की कभी भी आपको अपनी जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये काम तो कभी भी बंद होने वाला नहीं है। अभी ये हमारा पुश्तों से चलता आ रहा है, आज आप कर रही हैं, और आगे भी इसको ले जाने वाले बहुत आपको मिल जाएंगे। तो इसको आप बनाए रखिए, आगे लेके जाइए। और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रीड मॉडल का एक कंपोनेंट है वो एजुकेशन। अभी अबिदा ने भी बोला, फरा ने भी बोला, अबिदा ने भी अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करी, फरा ने भी कंटिन्यू करी, ये हमें पता। और आपने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स भी दिए कि लड़कियां अपनी फीस खुद भर के अपनी एजुकेशन को आगे लेके जा रही हैं। पर एक बात का ध्यान आप रख भी रही हैं और आगे भी रखेंगी कि जितनी भी लड़कियां यहाँ पे आके स्किल्स की ट्रेनिंग लेती हैं वो अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करेंगी और अपने बच्चों की पढ़ाई भी कंटिन्यू करेंगी, क्योंकि आने वाले समय में एजुकेशन की डिग्री तो चाहिए चाहिए, पर डिजिटल वर्ल्ड में डिजिटल लिटरेसी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जिसको कंप्यूटर या लैपटॉप या फोन, एंड्रॉयड फोन चलाना नहीं आता है वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम पे पिछड़ जाएगा। और उसकी भी हम बहुत सारी ट्रेनिंग्स आपके यहाँ पे कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि उस ट्रेनिंग में कितने लोगों का इंटरेस्ट है, रुझान है, और कैसे हम इसको स्केल कर सकते हैं इस ट्रेनिंग।
0: ऑनलाइन वाली ट्रेनिंग को नाम है,
1: ऑनलाइन ट्रेनिंग को, टेक्नोलॉजी की, कंप्यूटर सीखना, लैपटॉप में सीखना, काम करना, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना और आगे बिजनेस को भी लेके जाना, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो एक टूल है और उस टूल को हम कैसे यूज करें जिससे हम अपनी बात भी रख सके, जैसे ऑडियो विजुअल की ट्रेनिंग है, लैपटॉप को यूज कर सके आगे एजुकेशन और ट्रेनिंग करने के लिए, कैसे सोशल मीडिया को यूज कर सके फोन के द्वारा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इन सब चीजों का और आपके हुनर का तालमेल बैठना आने वाले समय में बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता था कोविड आ जाएगा और हम पीछे रह जाएंगे, और जो 2 साल हम पीछे रह गए हैं उस 2 साल की जो टाइम है उसको भी पूरा करने की बहुत जरूरत है, तो डबल मेहनत करने की जरूरत है। तो वो मैं जानना चाहूंगी कि टेक्नोलॉजी में कितना रुझान है लोगों का।
0: टेक्नोलॉजी में मैम ज्यादातर रुझाव नहीं दिखा पाती हैं लड़कियां, उनको बहुत समझाना पड़ता है। ज्यादातर वो सोचती हैं कि हमें सुइंग आ जाए तो हम अपने घर पे बैठ के सिलाई करते रहें, जो भी हमें 100-200 रुपए घर के आस पड़ोस के कपड़े आ जाएं या फिर थोड़े से गांव के दूर के आ जाएं, हम यहीं पर करते रहें। बट जब उनसे बात करते हैं कि हम इस चीज से बहुत आगे तक जा सकते हैं, आप ये सूट सिल के आपके घर में ही मतलब 2-3 लोगों को अर्न कर सकती हो, यही आप अगर टेक्नोलॉजी के जरिए बेचेंगी तो दिन में 10 सूट, 15 सूट, 20 सूट, 50 सूट, जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी तो 100 सूट भी बेच सकती हैं। तो हमें उन्हें बहुत ज्यादा समझाना पड़ता है और उनसे कहना पड़ता है कि इसमें ज्यादा रुचि मतलब अपनी लगाइए। और जैसे ही अभी लॉकडाउन में सारी चीजें आप लोग फ्लिपकार्ट से मंगा रहे थे, हमें उनसे ये भी बताना पड़ता है, हम किसी दुकान पे भी नहीं जा पा रहे थे कोई भी चीज लेने के लिए, तो हमें क्या याद आ रहा था, सिर्फ ऑनलाइन की हर चीज याद आ रही थी कि हमारे पास क्रीम नहीं है तो हम ऑनलाइन पे कर दें, या फिर हमारे फोन में बैलेंस खत्म हो गया तो हम ऑनलाइन पे करेंगे, या फिर हमें घर पे कोई भी खान पीने की चीज चाहिए तो हम ऑनलाइन मंगाएंगे। तो हर चीज का जरिया कहाँ था, ऑनलाइन। अगर ऑनलाइन वाले ये सोचते कि हम नहीं आगे बढ़ पाएंगे तो हमारे पास कोई जरिया नहीं रहता और वो ऑनलाइन जो हम मंगा रहे थे वो भी नहीं मंगा पाते। तो हम हर लड़की को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आपके अंदर इतना अच्छा हुनर है, इतना अच्छा काम है, तो आप बस सिर्फ इसको आगे बढ़ाइए, अपने चाहे फोन से बढ़ाइए। कंप्यूटर है यहाँ पर रीड इंडिया ने इतने सारे कंप्यूटर लैपटॉप दे रखे हैं, आपको सिखाया भी है कि किस तरीके से हम टेलिंग कर रहे हैं, हम सब आपके साथ भी हैं। तो बस हमें बहुत ज्यादा उन्हें यही समझाना पड़ता है कि इसमें आइए। वो ऑनलाइन में आने में बहुत ज्यादा घबराते हैं, आके बहुत कम रुचि दिखाते हैं।
1: पर फरा, अगर हम अगले 6 महीने इसके ऊपर फोकस करें और मेहनत करें, और मुझे लगता है कि जब आपने इतने पड़ाव पार कर लिए और ये पड़ाव कोई आपके लिए मुश्किल नहीं है, आप जरूर कर पाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। अभिदा, थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आप अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचती हैं, कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। फरा का फ्यूचर तो हमें पता है कि फरा अब पीछे मुड़ के नहीं देखेगी, फरा के प्लान्स, फरा के थॉट्स बहुत क्लियर हैं। और आज मेरे को ये कहते हुए भी खुशी होती है कि फरा हमसे भी आगे निकल गई है, और फरा इसके लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस देती हूँ। और अमिता, आपके क्या प्लान्स हैं?
0: मेरे प्लान यही है कि मैं आगे और आगे बढ़ूं। अभी मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो हूँ रीट के जरिए हूँ और मैं रीट के साथ ही जुड़ा रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि रीट इंडिया जैसे मेरा परिवार है मुझे सपोर्ट किया हर तरीके से, ऐसे ही मुझे रीट इंडिया हमेशा सपोर्ट करे और मैं रीट इंडिया के साथ ही जुड़ा रहना चाहती हूँ। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती। मेरी शादी फिक्स हो गई थी लेकिन मैंने खुद से फैसला किया घर वालों से कि मुझे अभी शादी नहीं करना है, मुझे अभी आगे और बहुत कुछ करना है और अपना नाम अच्छी तरीके से रोशन करना है। जैसे मुझे मेरा यहाँ मोहल्ला और पड़ोस जानता है, मैं चाहती हूँ कि पूरा शहर मुझे अच्छे से जाने और मैं यही चाहती हूँ कि मैं आगे बुलंदियों तक पहुंचूँ और रीड इंडिया का नाम रोशन करूँ और अपने ख्वाब पूरे करूँ अपने और अपने घर वालों।
1: बहुत बढ़िया अबिदा। मैं थोड़ा सा इधर अगर बात करूं तो यूएन ने कुछ गोल्स डिफाइन करे हुए हैं जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का मतलब ये है कि हम इस तरीके से आगे बढ़ें कि हमारे प्रोग्राम्स सस्टेन हो जाएं। जैसे एजुकेशन है, आप एजुकेशन पे बहुत मेहनत कर रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट है, आप तो रोल मॉडल हैं वुमेन एम्पावरमेंट की। जब लाइवलीहुड की बात करते हैं तो लाइवलीहुड आप बहुत आगे लेके जा चुकी हैं। देखिए, अगर हम गांव की स्थिति को गांव से ही कंपेयर करें तो आप एक बहुत अच्छे मकाम पे पहुंच चुकी हैं। कभी भी आंकड़ों को अर्बन और रूरल से जब हम कंपेयर करते हैं, वो रिसर्च के लिए होता है कि कैसे हम और डेवलप कर सकते हैं। बट अगर हम गांव के आंकड़े गांव के लेवल तक ही एनालाइज करें तो अगर आप 3,000 या 5,000 या 10,000 कमा रहे हैं तो बहुत बढ़िया कमाई है। इसको आप कभी भी शहर की कमाई के साथ कंपेयर नहीं करिएगा, नहीं तो आपके माइंड में हमेशा यही रहेगा कि हम कुछ भी नहीं हैं। आप बहुत कुछ हैं, बहुत कुछ कर रही हैं और आगे बहुत कुछ करने का जज्बा भी रखती हैं। और जो मेजर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, आप नोइंगली अननोइंगली उनको ग्रास रूट्स पे इस तरीके से एड्रेस कर रही हैं कि डेवलपमेंट है जो वो रूट से हो रही है। और जब रूट मजबूत होती है तो उसको कोई भी उखाड़ के फेंक नहीं सकता उस पेड़ को, और उस पेड़ पे फल लगने ही लगने हैं। और उस फलों का जो उसका फायदा है वो बहुत सारे लोग जो जिसको हम समाज कहते हैं, जिसको हम सोसाइटी कहते हैं, वो उनसे कलेक्टिव फायदा उठाते हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी और आपको सैल्यूट भी करूंगी कि आपने अपनी लाइफ में जिस तरीके से मेहनत की, जैसे मेहनत करके अपने सरकमस्टांसेस से आप बाहर आएं, ऐसे आगे चल के बहुत सारी औरतों को सिखाएं और बहुत सारी औरतों को अपने साथ जोड़ें, उनके बच्चों को पढ़ाएं, उनको बताएं कि आने वाले टाइम पे एजुकेशन भी बहुत बहुत ज़रूरी है। जो चैलेंजेस आपने अपनी लाइफ में फेस करे हैं, आने वाली जनरेशन उन चैलेंजेस को फेस नहीं करे। तो इसी मैसेज से मैं इस कार्यक्रम को कंक्लूड करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।

0: నా పేరు సరిత. మా గ్రామం పేరు కలుగుట గ్రామం. నేను కడతెట్లపల్లి గ్రామంలో రీడ్ ఇండియా ఫౌండేషన్ ద్వారా సైబర్ సెక్యూరిటీ కోర్స్ నేర్చుకున్నాను. దానివల్ల నాకు చాలా లాభం జరిగింది. ఎందుకంటే ఫేక్ కాల్స్ నమ్మకూడదని, ఈమెయిల్ ఐడి, గూగుల్ పే, బ్యాంక్ అకౌంట్ లాంటివి చాలా జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవచ్చు. ఇంకా దీనిని నేను మా ఫ్రెండ్స్ కి, మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి, మా చుట్టుపక్కల వాళ్లకు నేర్చుకోవాలని చెప్పాను. దీనివల్ల మనకు చాలా లాభం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ రీడింగ్.
1: మా ఊరు రంగంపల్లి. మా ఊరు నుంచి నేను 5 కిలోమీటర్స్ వరకు నడిచి కడపనాకంకి వెళ్లి చదువుకునేదాన్ని. అప్పుడు మా కడపనాకం పక్కనే కడతటిపల్లి ఉంది. మా ఊరు నుంచి 2 కిలోమీటర్లు. అక్కడికి వెళ్లి నేను కంప్యూటర్ నేర్చుకున్నాను. అంతకుముందు అయితే అసలు నాకు ఓపెన్ చేయడం అసలు టైపింగ్ చేయడం అసలు ఏమీ రాదు. మా స్కూల్లో ఉంది కానీ అది ఎక్కువగా యూజ్ చేయరు, అసలు నేర్పారు. నేను అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత చాలా నాలెడ్జ్ పెరిగింది. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ 9th లో ఉన్నప్పుడు నేను నేర్చుకున్నాను. ఇప్పుడు 10th క్లాస్ కాబట్టి మాకు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కూడా చాలా యూజ్ అవుతా ఉంది. నా ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలా మంది వెళ్లారు, వాళ్ళకు కూడా నేను అర్థమయ్యేలా చెప్పాను. కాబట్టి కంప్యూటర్ క్లాసెస్ వెళ్ళినందుకు చాలా యూజ్ అవుతూ ఉంది నాకు. ఎంఎస్ ఆఫీస్ ద్వారా పెయింటర్, పవర్ పాయింట్ ఇంకా చాలా నేర్చుకున్నాను. నాకు కంప్యూటర్ నేర్చుకున్న ద్వారా చాలా యూజే ఉంది, కానీ ఏమీ నష్టం లేదు. కాబట్టి నా ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలా మంది చెప్పాను. చెప్పి వాళ్ళని కూడా అక్కడికి తీసుకెళ్లి ఇంకా చాలా మంది. రీడ్ ఇండియా సెంటర్ మాకు పక్కనే ఉంది కాబట్టి మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. దానివల్ల మాకు చాలా యూజ్ ఉంది కాబట్టి మా ఫ్రెండ్స్ తో పాటు మేము అందరూ వెళ్ళి కంప్యూటర్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాము. థ్యాంక్స్ ఫర్ రీడ్ ఇండియా.
2: హలో ఎవ్రీవన్, దిస్ ఈజ్ షాల్మీ ఫ్రమ్ బారెట్పల్లి. డ్యూరింగ్ కోవిడ్ పీరియడ్ ఐ అటెండెడ్ ది సైబర్ సెక్యూరిటీ క్లాస్ కండక్టెడ్ బై రీడ్ ఇండియా. Before this class, we had no idea about such thoughts. This class helped me and surrounding people a lot. We got to know that we should not share the OTP and passwords with others. Before this class, one of my friend lost 2000 rupees, but now we all are aware of such frauds. This class was really very helpful. We all are thankful to Read India. Thank you very much.
3: मेरा नाम रेखा सिंह है. हम कटहरी गांव में रहते हैं. हमारी उम्र 40 साल है. हम हाई स्कूल तक पढ़े हैं. ये हमारे यहाँ रीड इंडिया का सेंटर खुला है. वहाँ पर कंप्यूटर सिलाई सबसे जुड़ा है. हम लोगों को पता चला तो हम लोग अपना भी रजिस्ट्रेशन कराए और पढ़े सीखने भी आते थे. वैसे हम लोगों को बहुत सारा चीज सिलने और काटने का आ गया है. हम लोग कुछ नहीं जानते थे तो इतना सब बहुत कुछ आ गया है. मास्क वगैरह, फ्राक और बेबी मेकर और बहुत से सलवार कुर्ता चीज, ब्लाउज पेटी कोट बताया गया. सब कुछ काटे, अच्छे से सिले, अपना भी सिले, अपने घर वालों का सिले. थोड़ा सा हम लोगों का बचत भी हुआ.
4: मेरा नाम आकांक्षा शुक्ला है. मेरी उम्र 20 साल है. हमने यहाँ रीड इंडिया के सेंटर सनराइज से सिलाई सीखी है. पहले हमें थोड़ी बहुत सिलाई आती थी. उसके बाद हम जब यहाँ सीखने आए तो हमें पूरी तरह से सिलाई आने लगी है. और पहले अपने कपड़े कहीं टेलर के यहाँ सिलवाते थे, अब हम अपने आप सिल सकते हैं. इससे मेरी आर्थिक स्थिति में सुधार आया. जब हम यहाँ सिलाई सीखने आए तो हमें कई सारी ट्रेनिंगें मिली और उससे मेरे जीवन में व्यक्तित्व में सुधार भी आया. और हम अब अपने जैसी लड़कियों को ट्रेनिंग देना चाहती हूँ.
5: मेरा नाम नैन्सी गुप्ता है. मैं क्लास 11 में पढ़ती हूँ. मेरी उम्र 16 साल है. रीड इंडिया सेंटर जो कटहरी में खुला है उससे मुझे पर्चे के द्वारा पता चला. जो रीड इंडिया सेंटर के पर्चे छपे थे वो मेरे तक पहुँचे तो मैं यहाँ पर आई और इससे जुड़ी. मेरा एडमिशन हो गया और फिर मैं कंप्यूटर सीख रही हूँ, जिससे मुझे फ्यूचर में कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलने पर मैं इससे जुड़कर काम कर सकती हूँ. पहले मुझे कंप्यूटर बहुत डिफिकल्ट लगता था क्योंकि मेरे आसपास कहीं भी कंप्यूटर सेंटर नहीं थे. लेकिन जब यहाँ रीड इंडिया सेंटर खुला तो मैं कंप्यूटर में सीखी और मुझे लगा कंप्यूटर बहुत आसान होता है और मुझे कंप्यूटर के सारे डर खत्म हो गए। और मैं रीड इंडिया सेंटर का बहुत बहुत थैंक यू सो मच करती हूँ और यहाँ पर जो मैम है और टीचर है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
6: मैं विनीता मौर्य है, मैं ग्राम कटहरी में रहती हूँ, मेरी उम्र 35 साल है, एक अच्छा तक पढ़ी हूँ। मेरे गांव में रीड इंडिया सेंटर खुला है, जब मुझे पता चला तो मैं यहाँ आई, अपना एडमिशन कराया और फिर सिलाई सीखना शुरू कर दिया। मुझे सिलाई करना लगभग आ चुका है, जैसे कि मास्क बनाना, बच्चों के कपड़े सिलना, औरतों के ब्लाउज सिलना, ये सब मैं कर लेती हूँ। अगर अवसर आया तो ये सब मैं सिलकर बाहर को निर्यात कर सकती हूँ।
7: कोमल पाल है, मेरी उम्र 17 साल है, मैंने रीड इंडिया सेंटर सिमराई बाराबंकी ट्रेनिंग ली है। पहले मुझे मतलब सिलाई के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था, उसके बाद मैंने मतलब अपने कपड़े स्वयं सिल सकते हैं, अपने पूरे घर परिवार के, और कपड़े जो मतलब जो पहले था जो पैसे दूसरे को देते थे, अब वो पैसे मतलब खुद मतलब बचत कर सकते हैं। और मेरे ट्रेनिंग लेने के बाद मेरी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार आया।
8: मेरा नाम बिंदेश सिंह है। हमें अनेक प्रकार के हमारे जीवन में बदलाव आए हैं इस सिलाई को लेकर, और जब मैं जो भी चाहती हूँ सिलाई से संबंधित जो ग्रुप बनाकर वो आगे काम भी कर सकती हूँ, अपना सिलाई का कोई सेंटर खोल सकती हूँ, या समूह बनाकर मैं इकट्ठे कपड़े सिल सकती हूँ, सिलकर मार्केट में भेज सकती हूँ, जो भी चाहती हूँ सिलाई संबंधित कार्य कर सकती हूँ।
9: मेरी उम्र 21 ईयर है, मैं बी ए द्वितीय वर्ष में पढ़ती हूँ। मेरे ग्राम का नाम कटारी चंदा है। जैसा कि मुझे पता चला कि मेरे गांव में रीड इंडिया का सेंटर खुला, उसके बाद हमने इसमें एडमिशन लिया और आज हम अच्छे से कंप्यूटर का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों को कंप्यूटर सीखने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि हम लोगों के घर से 10-10-15 किलोमीटर दूर सेंटर है और वहाँ पर हम लोगों को जाना पड़ता था, इसलिए घर के पेरेंट्स भी इसकी इजाज़त नहीं देते थे। उसके बाद जब से ये सेंटर खुला तब से हम लड़कियाँ आत्मनिर्भर हुए और कंप्यूटर के बारे में सब कुछ जान सके। और आज स्थिति ये है कि हम लोग कंप्यूटर को बहुत अच्छे से जान चुके हैं, अच्छे से चला भी रहे हैं, और ऐसा रीड इंडिया सेंटर की वजह से हुआ। कंप्यूटर को सीखकर हम आगे में रोजगार के अवसर अच्छे से खोज सकते हैं।
10: आई एम राखी फ्रॉम केलवाड़ा। मैंने हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग ली है और इसे लेकर मुझे बहुत अच्छा लगा। निधि मैम ने हमें बहुत कुछ सिखाया इस ट्रेनिंग में, जैसे कि हेल्थ वर्कर क्या होते हैं, वह समूह जो हेल्थ की जानकारी रखता है उसे हेल्थ वर्कर कहते हैं। इसमें हेल्थ वर्कर का कार्य रहता है कम्युनिटी डेटा इकट्ठा करना, उसमें मतलब जन्म और डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सब जानकारियाँ ली जाती हैं। हमारे आसपास की सफाई भी जरूरी होती है, शारीरिक हाइजीन में होता ही है। और मैम ने बताया था कि हमें हैंड वॉश कैसे करना चाहिए, तो हैंड वॉश के मैम ने 5 चरण बताए थे, जिसका हमें रेगुलर यूज करना चाहिए। यदि हम रेगुलर हाथ धोएंगे तो हमें कोई बीमारी भी नहीं होगी, हम स्वच्छ रहेंगे। तो मैम ने बताया कि हमें वो हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर के बारे में, हाई ब्लड प्रेशर होता है तो हमें क्या लेना चाहिए, लो ब्लड प्रेशर होता है तो हमें क्या लेना चाहिए। लो ब्लड प्रेशर में हमें कॉफ़ी की मात्रा लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें कैफीन की मात्रा पाई जाती है जो हमारे लिए अच्छी होती है। मैम ने बताया शारीरिक क्रियाएं वगैरह जो होती हैं हमारे शरीर में, उसके बारे में बहुत कुछ बताया है, जो हमने अच्छे समझाए, सबको समझाया भी है। हमारे आसपास जो व्यक्ति थे हमने उनको हमारे मतलब संपर्क में उनको बताया कि मैम ने हमें ये बताया है, आप भी इसका उपयोग करें, समय पर एंटीबायोटिक दवाएँ लें। मैम ने हमें ये जल्द से होने वाली बीमारियों के बारे में भी बताया है, जैसे कि हैजा, टाइफाइड, ORS घोल हैजा में लिया जाता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, इसे हमें लेना चाहिए, ये अच्छा होता है। और मैम ने COVID-19 के बारे में भी बताया था, जो चल रहा है इसे हमें बचना चाहिए, ये खांसी और छींक के माध्यम से फैल रहा है, इसलिए हमें मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए, जो हमारे लिए अच्छा होगा। मैम ने अस्थमा के बारे में बताया था कि ये सांस की बीमारी होती है, जिससे मतलब हमारी जो श्वास नली होती है उसमें सूजन आ जाती है, तो को हमें सांस लेने में दिक्कत होती है और मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है और बलगम आता है तो मतलब सांस लेने में मतलब सीटी जैसी आवाज़ आती है, तो इसके चाहे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और एंटीबायोटिक दवाओं का यूज करना चाहिए। और बस मैम ने बहुत कुछ बताया है कि हमें बहुत अच्छा लगा और मैं इस संस्था को थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगा है और हमें बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू।
11: आई एम पूनम कश्यप फ्रॉम जेलवाड़ा। मैंने रीड इंडिया संस्था से हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग ली है और हमें इस ट्रेनिंग में कई प्रकार की बीमारियों के बारे में बताया गया है और उनकी रोकथाम के बारे में और हमें किस प्रकार से उनका उपचार करना चाहिए वो भी बताया गया है। रीड इंडिया संस्था द्वारा हमें ऑनलाइन ट्रेनिंग दी गई है। इसमें हमें मीना दीदी ने कई प्रकार की बातें समझाई हैं। उन्होंने हमें संस्था पर बुला करके कई प्रकार से बीमारियां जो चल रही हैं कई प्रकार की उनके बारे में जानकारी दी है। मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी बट हमें ऑनलाइन ट्रेनिंग से बहुत कुछ सीखने को मिला है। थैंक यू। मैं रीड इंडिया का धन्यवाद करती हूँ।
12: मेरा नाम सरोज सुमन है, मैं खाकरा की रहने वाली हूँ। मैंने हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग ली जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। इसमें दीदी ने बताया कि हमें किस प्रकार से अपने स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए और कैसे हमें बीमारियों से लड़ना है और कोरोना के बारे में भी बताया और हमें ब्लड प्रेशर हाई व लो के बारे में बताया। कोरोना काल में हमें किस प्रकार से अपनी सावधानी बरतनी है, साबुन से हाथ धोना है, मास्क लगाना है, इस प्रकार हमें बताया। इससे हमें बहुत कुछ लाभ हुआ है और हमने गांव में जो लोग जानते नहीं थे उन्हें जाकर घर घर जाकर उन्हें बताया समझाया किस प्रकार हमें रहना है। धन्यवाद।
13: मेरा नाम मीना पांचाल है, मैं खाकरा गांव से रहने वाली हूँ। मैंने रीड इंडिया संस्था से हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग ली है। इसमें दीदी ने कोरोना के बारे में जानकारी दी है, कोरोना काल में कैसे हमें अपना सावधानियां रखनी चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में बताया है कि हमें मास्क पहनना चाहिए, 2 गज की दूरी रखनी चाहिए, हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए, उसके बारे में बताया दीदी ने। और हमें ब्लड प्रेशर में बीपी लो हाई कैसे चेक करना चाहिए उसके बारे में, पल्स रेट के बारे में भी बताया कि हमें कैसे नापनी चाहिए, पल्स रेट का पता कैसे लगता है वो बताया। और उन्होंने पानी से होने वाली बीमारियां, हवा से होने वाली बीमारियां, घर की सफाई आदि के बारे में हमें बताया है, शारीरिक स्वच्छता के बारे में भी जानकारी दी है और हमें बहुत अच्छे से समझ में आया और इससे हमें बहुत लाभ हुआ है। धन्यवाद।
14: हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियांशी ठाकुर है, विलेज कांकरा राजस्थान से हूँ। मैंने रीन इंडिया के द्वारा कम्युनिटी हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग ली है जो डॉक्टर निधि गुलाटी द्वारा ली गई थी। निधि गुलाटी मैम ने हमें सबसे पहले कम्युनिटी हेल्थ वर्कर क्या होता है और कम्युनिटी से कैसे जुड़ना होता है इसके बारे में हमें बताया। साथ ही मैम ने हमें कोरोना काल में स्टे सेफ के बारे में बताया। फिर मैम ने हमें हाउ टू हैंड वॉश के बारे में बताया और फर्स्ट एड इसके हमें अच्छे से डिटेल्स में समझाए और हमें पर्सनल हाइजीन के बारे में बताया और अगर हम पर्सनल हाइजीन नहीं करेंगे तो इसके साइड इफेक्ट्स बढ़ाए। शारीरिक क्लीनिंग एंड हाइजीनिंग के बारे में हमें डिटेल में समझाया और ह्यूमन बॉडी के बारे में बताया। उसके बाद मैम ने हमें पल्स कैसे चेक करते हैं इसके बारे में समझाया। मैम ने हमें अच्छे से बताया कि हमें 2 फिंगर्स को थंब के नीचे रखकर कैसे हमारी 1 मिनट तक हमें हमारी पल्स चेक करनी चाहिए। साथ ही अपना बीपी बढ़ने पर हमें ज़रूरी पल्स चेक कराने के बाद ही अपना बीपी के बारे में श्योर होना चाहिए और नॉर्मल बीपी कितना होता है, हाई बीपी कितना होता है इसके बारे में बताया। साथ ही उन्होंने हमारे बॉडी टेम्परेचर के बारे में बताया और बॉडी टेम्परेचर हमारा 2 तरीके से नापे जाता है, सेंटीग्रेड और फारेनहाइट से। इसके बारे में हमें मैम ने बहुत डिटेल से बताया और इसके बाद मैम ने हमें ब्लड प्रेशर के बारे में बताया कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, कब होता है। मैम ने हमें बताया कि ब्लड प्रेशर हमें 1 मिनट तक चेक करवाना चाहिए और हमारा दिल 1 मिनट में 60 से 80 बार धड़कता है। साथ ही वर्कआउट या कॉफ़ी टी पीने पर हमारा ब्लड प्रेशर हमें नहीं चेक कराना चाहिए क्योंकि ये एज यूजली सही नहीं आएगा, ये गलत ही आएगा। और साथ ही हमें बताया कि ब्लड प्रेशर 2 तरीकों का होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसके साथ ही मैम ने हमें बताया कि ग्रामीणों में नॉर्मल क्या क्या बीमारियां होती है और उनके बारे में डिटेल से समझाया, जैसे टीवी, शुगर, पीलिया, चिकन पॉक्स, निमोनिया, मलेरिया, टाइफाइड, डायरिया, ऐसी कैंसर जैसी और भी कई बीमारियों के बारे में बताया। उसके बाद मैम ने हमें ह्यूमन बॉडी के बारे में बताया, हमारा ब्रेन किस तरह से काम करता है, हमारा हार्ट किस तरह से काम करता है, लीवर किडनी इसके बारे में मैम ने हमें बताया। साथ ही हमारी बोन्स किस तरह से काम करती है और ये कैसे हमारी बॉडी में जुड़ी हुई है और भी काफ़ी सारी जानकारी मैम ने हमें डीपली समझाई। ये बहुत ही अच्छी जनरेशन थी, अच्छे से मैम ने हमें समझाया एंड थैंक यू वेरी मच हमें इतनी सारी डिटेल्स।
15: मैं निर्मला पांचाल बोल रही हूँ और गांव भवरगढ़ की रहने वाली हूँ। और इसमें जो लॉकडाउन के दौरान रेड इंडिया की तरफ से जो ट्रेनिंग कराई गई थी उसमें हम लोगों ने भी भाग लिया था और हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है। हमें टेली के बारे में पहले कुछ भी मालूम नहीं था कि टेली क्या होती है, इसमें क्या सिखाया जाता है, क्या नहीं सिखाया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई सूचना मतलब कोई जानकारी नहीं थी हमें। लेकिन उस ट्रेनिंग में हमें बहुत सारी जानकारी मिली है और हमने बहुत कुछ सीखा है, ऐसे बहुत कुछ सीखा है। और मैंने बीए कर रखी है और जैसे कि इसमें लागत मूल्य के बारे में सिखाया गया, लागत मूल्य वह होता है जिसमें कोई माल अथवा सेवाएं से जो करे वह प्राप्त किया जाता है उसको लागत मूल्य कहा जाता है। वसूली मूल्य वह होता है वसूली मूल्य जिसे बाजार में कोई चीज या कोई संपत्ति को बेचकर जो राशि प्राप्त होती है, धन प्राप्त होता है, उसको वसूली मूल्य कहा जाता है। और जैसे कि संपत्तियां के बारे में बताया गया था, संपत्ति तीन चार प्रकार की होती है जैसे कि चल अचल दृश्य अदृश्य। दृश्य संपत्ति वह होती है जिसको हम देख सकते हैं छू सकते हैं, वो दृश्य संपत्ति होती है। अदृश्य संपत्ति उसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, एहसास नहीं कर सकते, तो वह अदृश्य संपत्ति होती है। बहुत सारी चीजें की जानकारी दी गई मैम ने और बाद में हमें सभी प्रकार के जो अकाउंट होते हैं उनकी एंट्री करना सिखाया है मैम ने।
16: हेलो, मेरा नाम रिंकू कुमारी है, मैं बारा जिले के मुसिन माता गांव की रहने वाली हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि लॉकडाउन के चलते ना तो कोई कहीं जा सकता है और ना ही कहीं से आ सकता है, तो इस माहौल में रेड इंडिया के द्वारा टेली हमें जूम ऐप पर घर बैठे ही ऑनलाइन ट्रेनिंग उपलब्ध करवाई गई और उसमें हमें खाता खोलने के बारे में, लेन देन के बारे में, डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, इन सब के बारे में बताया गया। और मान लो जैसे कोई बिजनेस करना हो या फिर दुकान खोलनी हो तो उसका हिसाब किताब कैसे रखते हैं, और साथ ही ये भी बताया गया कि डेली डायरी मेंटेन करनी चाहिए। और भी टेली के बारे में जैसे हमें पहले कुछ नहीं आता था और कुछ समझ में नहीं आता था, फिर हमसे पहले जो लड़कियां थी उन्होंने इसके बारे में सीखा और हमें इसके बारे में बताया विस्तार से सब कुछ, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप की परचेज कैसे करते हैं, माल खरीदा कैसे जाता है, बेचा कैसे जाता है, और लेन देन के बारे में बताया और उसकी एंट्री कैसे करते हैं, इन सब के बारे में हमें बहुत विस्तार से और बहुत बढ़िया तरीके से बताया। और हमने उनसे क्वेश्चन भी किए और उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से हमें सब कुछ बताया। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी रीड इंडिया को, टेली को और मैम्स को जिन्होंने हमें घर बैठे ही कोरोना काल में भी ऑनलाइन ट्रेनिंग उपलब्ध करवाई। थैंक यू।
17: हेलो, आप सभी को मेरा नमस्ते और रीड इंडिया को मेरा धन्यवाद। मेरा नाम वर्षा है और बारा जिले के पास ही के गांव की मैं रहने वाली हूँ, समरानिया से। रीड इंडिया को मेरा धन्यवाद इसलिए क्योंकि ऐसे लॉकडाउन में टेली की ट्रेनिंग घर पर ले पाना बहुत मुश्किल था, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, लेकिन फिर भी हमने टेली की ट्रेनिंग करी रीड इंडिया की तरफ से, जो कि बहुत अच्छे से कर पाए हम लोग। इतना सब कुछ सीखने को मिला हमें घर रहकर, कैसे क्या खरीदना है, कैसे क्या बेचना है, क्रय विक्रय, परचेज करना, लेन देन कैसे करना चाहिए, कैसा क्या देखना चाहिए, जो कि हम पहले नहीं सीख पाए थे। मैंने बहुत कोशिश करी थी सीखने की, लेकिन मैं नहीं सीख पाई थी। लेकिन इसमें रीड इंडिया की तरफ से जो ट्रेनर थे हमारे मैडम, उन्होंने हमको बहुत अच्छे से सिखाया। जो हम भूल जाते थे वो भी बार बार उन्होंने हमें बताया। उनकी मदद से हम बहुत अच्छे से ट्रेनिंग कर पाए। पता भी नहीं चला कि इतना टाइम कैसे निकल गया। मैडम सर सभी ने बहुत अच्छे से सिखाया। रीड इंडिया को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने पूछे सवाल, जिनके ट्यूशन जो कि हम नहीं कर पाते थे वो ट्यूशन उन्होंने पूछकर हमारी कमियां भी दूर करी हैं, जिससे हमें बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेनिंग मिली है।
18: हेलो, मेरा नाम मुस्कान मलिक जी है। मैं कक्षा 12वीं में पढ़ रही हूँ, और मैंने जब रीड इंडिया के बारे में सुना, मेरे पापा ने आके मुझसे बोला कि वहाँ पर रीड इंडिया की ट्रेनिंग हो रही है, कंप्यूटर की ट्रेनिंग करवा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आई, यहाँ पे आके मैंने फॉर्म भरा और एडमिशन किया। एडमिशन करने के बाद मुझे पहले से कंप्यूटर की कुछ बेसिक जानकारी थी, फिर भी मैंने यहाँ पे फोटोशॉप और भी कई चीज़ें सीखी है। सीखने के बाद मैं यहाँ से लैपटॉप लेके गई थी। मुझे बोला गया कि यहाँ से लैपटॉप ले जाओ, और तुम और भी बच्चे, रिश्तेदार, तुम्हारी मम्मी, इनकी जो भी महिलाएं हैं उनको तुम सिखाओ। तो मैं यहाँ से ले गई और उनको मैंने सिखाया। मैंने भी उनको वही सिखाया जो मैंने सीखा था, जैसे कि यहाँ से फोटोशॉप के अंदर जैसे फिल्टर, उसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को कलर करना, उसके बाद शरीर को अलग करने करके वहाँ पे चेहरा लगाना, ये सब मैंने सिखा था। जो जो मैंने वो सब अपने बच्चों को, इनके अपने स्टूडेंट को मैंने सिखा दिया।
19: हेलो नमस्कार रेड इंडिया वाले, मैं मंजू हूँ। मैं गांव परानिया की रहने वाली हूँ, और मैं कक्षा 12वीं तक पढ़ी हुई हूँ। मैं महिला समूह की सदस्य हूँ, और मैं राजविका से जुड़ी हुई हूँ। हमें पता चला है कि ये रेड इंडिया वाले फ्री में कंप्यूटर या लैपटॉप चलाना सिखा रहे हैं महिलाओं को, लड़कियों को। हम यहाँ पर आए और हमने यहाँ पर कुछ सीखा है, हमने जानकारी ली है यहाँ पर, हमने यहाँ पर फोटोशॉप वगैरह सीखा है हमें। और मुझे राजीविका वालों ने CSC ID बनाकर दे दी है, तो मैं पैसे की लेन देन कर रही हूँ। थैंक यू रेड इंडिया।
20: रेड इंडिया माध्यम से मैं जुड़ी हुई थी, और ऑनलाइन ट्रेनिंग लिया था, जो उसमें मुझे बहुत जानकारी मिली है, जैसे कि मोबाइल के बारे में, फेसबुक चलाना, व्हाट्सएप चलाना, और बैंक का जो है, जो उसमें खाता नंबर, आधार कार्ड का नंबर किसी को नहीं देना चाहिए, उसमें नुकसान हमको ही होगा, इसलिए इसका जानकारी हमको मिला है। हम पहले से, मान लो किसी ने फोन कर दिया कि जे तुम्हारा मोबाइल में इतना पैसा है, लॉटरी लग गया तुमको, जो नंबर दे दो बैंक का या आधार कार्ड का नंबर, ऐसे नहीं देना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। जैसे मोबाइल में फोन आए कि तुम्हारा फोटो भेजो या कुछ और भी भेजो, नहीं भेजना चाहिए, उसमें हमारा ही खराब होगा, इसलिए हम नहीं भेजते, हम इसमें सतर्क हैं। और भी है बहुत सारे, जो अभी मीटिंग में हम मिला हुए थे, जो ट्रेनिंग में, जो उसमें अभी हम बढ़िया तरह से सीख गए हैं। और मोबाइल में ऐसा करना चाहिए, उसमें इसको पासपोर्ट लगाना चाहिए, जो कोई लेके छेड़छाड़ी ना करे, और कहीं पे भी जाओ फिर भी नेट मतलब कुछ भी, थोड़ा बहुत खांसी भी आए लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ज़्यादा कम करो और अपने मोबाइल को सुरक्षित रखो। ट्रेनिंग से हमें बहुत सारी जानकारी मिला है, जो इसलिए आप सबको धन्यवाद।
21: नमस्ते, मेरा नाम काजल बाला, गांव नाटे से। मैं रीड इंडिया संस्था साइबर सेफ्टी से मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग ली है, जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा है। जैसे हमें हमारे जैसे पर्सनल नंबर, मैसेज, OTP, ये सब किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, ना ही हमें सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग नहीं करनी चाहिए। हमें बैंक संबंधी ऐसे कोई मैसेज आए उस पर हमें क्लिक नहीं करनी चाहिए। हमें जैसे और भी बहुत कुछ हमें सीखने को मिले, जो भविष्य में हमारे काम आएंगे। और इसके अंतर्गत हमने जैसे हमें हम जैसे शॉपिंग करते हैं उसके लिए अलग अलग वेबसाइट का हमें प्रयोग नहीं करनी चाहिए जो हमें पता ना हो, और ना ही हमें इंटरनेट पे ज़्यादा कुछ जानकारी ऐसी मतलब जो ज़रूरत ना हो ऐसी चीज़ की जानकारी भी नहीं लेनी चाहिए। ये बहुत ही काम की चीज़ हमने इस संस्था में सीखी है, और ये खुद मैंने भी मतलब ये चीज़ मैंने भी नोटिस की है, और मैं इसके बारे में जैसे अपनी फैमिली को अपने फ्रेंड सभी को मैं इसके बारे में जागरूक करूँगी कि कैसे सेव रखा जा सकता है हमारे बैंक अकाउंट हमारी OTP ये सब, मैं उनको भी इस सब कैसे जागरूक करवाऊँगी।
0: मेरा नाम अंकिता बंसल है, मैं भवरगढ़ 12 राजस्थान से हूँ। मैंने अपनी एजुकेशन में अभी तक BSc किया है। मैंने रीड इंडिया से साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग दी है। इस ट्रेनिंग में मुझे साइबर क्राइम से कैसे बचें के बारे में बताया गया था, और हम किस तरह से अपने मोबाइल के डाटा को सुरक्षित रख सकते हैं इसके बारे में बताया था। हम जैसे कि हमें किसी भी फर्जी ईमेल को नहीं खोलना चाहिए। आजकल व्हाट्सएप पे बहुत सारे लिंक्स आते हैं जिनमें होता है कि तुम इस लिंक पे क्लिक करो तो तुम्हें वाउचर मिलेगा, कोई गिफ्ट फ्री मिलेगा, लेकिन वो सब कुछ फर्जी होता है। वो कुछ हैकर्स होते हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी को हार्म पहुंचाना चाहते हैं। उन लोगों के द्वारा बनाई गई साइट होती है जो कि आपके फोन में आपके डाटा को चुरा सकती है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को उनके पास पहुंचा के वो आपको एक साइबर क्राइम के थ्रू ब्लैकमेल कर सकते हैं, आपसे किसी भी तरह का कुछ भी कर सकते हैं। इस वजह से आपको कोई भी लिंक या फिर ईमेल जो भी है उन्हें नहीं खोलना चाहिए। ये लिंक्स कभी कभी हमारे फोन में एंटीवायरस भी ला देते हैं। इसके अलावा जो हमारा पासवर्ड होता है वो लंबी डिजिट का होना चाहिए, लाइक तुम्हारा नाम भी छोटा मोटा नहीं होना चाहिए। उसमें #@ ऐसे वर्ड्स यूज किए जाने चाहिए ताकि कोई उन्हें हैक ना कर सके। और इसके अलावा हमें सोशल मीडिया के सभी जो भी एप्स होते हैं उनमें प्राइवेसी रखनी चाहिए ताकि आपके बारे में ज्यादा लोगों को पता ना चले। इस तरह से हम हमारे मोबाइल डाटा को सुरक्षित कर सकते हैं। थैंक यू।
1: राठौरे, मैं भवरगढ़ की रहने वाली हूँ, और रीड इंडिया से हमें होम मेकिंग प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दी गई थी, और इस पे हम घर पर बैठकर इस ट्रेनिंग से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, और इससे हमें रीड इंडिया पर हमें बॉडी बैग्स और बॉडी बटर ये चीज़ें हमको सिखाई गई थी, और इनमें वो शहद घी और वो ग्रीसलीन और डिबाम ये चीज़ों से हमने वो प्रोडक्ट बनाया था। इसको पैकिंग किया था और इसको 3 तरीके से हमने पैकिंग किया था, लिपस्टिक के शेप में और डिब्बी में और वो पोटली वाले में, और रीड इंडिया में यह सब चीज़ हमको रिया दीदी ने सिखाया था, और इसमें मीना दीदी भी की, और हम 8-10 लड़कियों ने ये चीज़ सीखी थी। थैंक यू रीड इंडिया।
22: मेरा नाम लीना यादव है, ग्राम हरिद्वार पोस्ट गोयल तहसील सावर डिस्ट्रिक्ट 12 से बिलोंग करती हूँ। मैंने रीड इंडिया ऑनलाइन सेलिंग से ट्रेनिंग ली थी जिसमें हमें बहुत सारे प्रोडक्ट शेयर करना, प्रोडक्ट सेलिंग करना, उन सारी चीजों के बारे में बताया गया था। हमको प्रोडक्ट कैसे सेल करना चाहिए ये हमें आना चाहिए, हम ज्यादा से ज्यादा कैसे शेयर कर सकते हैं, इन सब चीजों को लेके हमको उस ट्रेनिंग के बारे में बताया गया था। जैसा कि हमको सीखने को मिला, बहुत सारे ऐप्स होते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कई सारे वेबसाइटें होती हैं जिनसे हमको ये सब कुछ शेयर करना होता है। फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए हम अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पर डालकर हम उसको शेयर कर सकते हैं, किसी भी जानी मानी वेबसाइट से हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम अनजानी वेबसाइटों से ऑनलाइन शॉपिंग ना करें, और सार्वजनिक वाईफाई से बचें। और भी कई सारी चीजें थी उसमें, पेज बनाना ये सब कुछ था उसी में, और अपना ऑनलाइन अपना मोबाइल लैपटॉप वगैरह सब अप टू डेट रखें, और OTP वगैरह किसी के साथ शेयर ना करें। ये कई सारी चीजें हम लोगों को उसी के अंतर्गत सीखने को मिली। मैं बताना चाहूंगी कि ऑनलाइन सेलिंग के बारे में हमको बहुत कुछ जानकारियां मिली हैं। थैंक यू।
23: मेरा नाम जया बंसल है,
0: और मैंने रीड इंडिया से सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखा है। उसमें मैं फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इन सब पर किस तरह से मार्केटिंग की जाती है वो सब सीखी है, और फेसबुक पर पेज बना कैसे बनाया जाता है ये सब सीखा है, किस तरह से फेसबुक पर मार्केटिंग की जाती है और व्हाट्सएप पर किस तरह से प्रोडक्ट डाले जाते हैं, किस तरह से सेलिंग की जाती है और इस तरह से, और मैं करती भी हूँ, प्रोडक्ट्स डालती भी हूँ, इससे मेरी इनकम भी बढ़ी है। और इस तरह से मैंने अभी अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। थैंक यू रीड इंडिया।
2: मेरा नाम सुनीता, मैं ग्रेटर नोएडा से आती हूँ। मैंने सीखा है यहाँ पे तुड़पाई करना सीख लिया, प्लाजो बनाना सीख लिया और पेंटिंग बनाने से लिए पेंटिंग ये बना ली मैंने, और अब वो बना के आया मेरा वाला बात वो प्लाजो।
3: अभी जो यहाँ पे रीड के माध्यम से राशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वो भी उसमें भी आप थे?
2: हाँ, दो बार ले गए थे।
3: दो बार आप लेके गए।
4: मेरा नाम मीसा सिंह गौतम है और मैं तुगलपुर की रहने वाली हूँ, और यहाँ मैं सिलाई मशीन सीखना चाहती थी पर वहाँ की दुकान वकान भी नहीं थी, अब ये तो बहुत महंगे महंगे उसमें सिखाते थे। आसपास की लड़कियाँ सिलाई मशीन सीखने के लिए जाती थी और मैंने उनसे पूछा भी कि आप कहाँ जाती है, तो उन्होंने बताया कि एक केंद्र खुला पड़ा है बिनटेक केंद्र, तो मैं भी उनके साथ जाने लगी यहाँ के सीखने लगी। और मुझे आता भी कुछ नहीं था, मैंने तुरपाई से स्टार्ट किया था और मुझे अब सूट सलवार में बना देती हूँ। और यहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा है कि अनजान इंसान मतलब अनजान जो लड़कियाँ वड़कियाँ आती हैं वहाँ कैसे रहा जाता है, और कोई भी मतलब बुरा उरा नहीं होता, सब अच्छे होते हैं और यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, मतलब सही है। जब लॉकडाउन लगा था तो यहाँ से हमें मतलब बहुत काम वाम मिल रहा था, और मैं जब भी सीखने आती थी क्योंकि यहाँ मतलब बहुत कम उसमें सिखाया था, और हमें अच्छी बातें सिखाई जाती हैं कि बाहर जाके क्या करना है। और यहाँ से मैंने अपनी एक मैंने सोचा है कि मैं जब यहाँ से पूरी मशीन सीख लूंगी, जब मुझे वो डिप्लोमा मिल जाएगा तो मैं एक दुकान भी खोलूंगी अपनी, जिस पर मैं औरों को भी सिखा सकूँ और अपना काम भी वो कर सकूँ।
23: नमस्ते आप सभी को, मेरी तरफ से मैं तनु सैफी, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैंने यहाँ के बहुत कुछ सीखा है। पहले मुझे कुछ नहीं आता था और यहाँ सभी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ मतलब बहुत अच्छे सिलाई सिखाते हैं और यहाँ सबकी केयर भी बहुत अच्छे से होती है, सबकी हैप्पीनेस का भी ध्यान रखा जाता है। बहुत सारी चीज़ें सीख ली बनाने में, कपड़े में बहुत सारे कपड़े सीख लिए, जैसे सूट सलवार प्लाजो पैंट बहुत सारे।
3: खुद कटिंग कर लेती हूँ? पहले आपको कटिंग आती थी या पहले सिलाई आती थी?
23: कैची भी चलाने नहीं आती थी।
3: कैची भी चलाने नहीं आती थी। अच्छा, तो अभी सीखने के बाद आपका क्या है कि मैं क्या करना चाहती हूँ आप लाइफ में?
23: मैं ये दूसरों की हेल्प पहले तो,
3: हाँ,
23: और फिर अपनी एक छोटी सी शॉप,
3: बुटीक, बुटीक टाइप। अच्छा, बुटीक खोलना चाहती हैं आप यहाँ सीखने के बाद?
24: मेरा नाम गीता है और मैं यही पास से तुगलपुर गांव से आती हूँ। पहले मैं यहाँ पढ़ने के लिए आती थी और लेडीजों के साथ, बहुत लेडीज पढ़ती थी, मैं भी पढ़ती थी यहाँ, और फिर पढ़ते पढ़ते एक साल सा हो गया, उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे, मुझे सिलाई का शौक था, थोड़ा थोड़ा घर में ही मतलब करती रहती थी और मैंने सीखा भी था कहीं थोड़ा बहुत। रीड इंडिया की तरफ से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, मुझे काम भी यहाँ रीड इंडिया की तरफ से ही मिला है। पहले घर में रहती थी ना, मन नहीं लगता था बिल्कुल भी, ऐसे लगता था कहाँ कैद में रहती हूँ, और यहाँ आके तो एक नई जिंदगी सी मिली है। बस यही है कि उन्होंने हमें काम दिया, यहाँ बच्चों के लिए सेंटर खोला और फ्री चल रहा है यहाँ पे बच्चों के लिए, बड़े खुशी से आते हैं बच्चे, कौन सिखाता है, नहीं तो हजार हजार रुपए देते हैं मंथ के यहाँ पे, तो बच्चे गरीब बच्चे नहीं सीख पाते हैं। बहुत ऐसे गरीब बच्चे हैं जो मतलब टाइम से पहले आ जाते हैं सीखने के लिए, मतलब उनको लगन है सीखने,
3: लगन है सीखने की।
25: उनको मुझे कुछ लोगों से पता चला कि हमारे गांव में रीड इंडिया सेंटर है, वहाँ पे अलग अलग प्रकार की कोर्सेज होते हैं, जैसे कि मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग के बारे में सीखा है। इसके बारे में पहले मुझे कुछ नहीं पता था, बट अब बहुत कुछ पता है, मैं इसके बारे में सीख रही हूँ, सीख चुकी हूँ और जानकारियाँ मैं देती रहूंगी। और इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक इन सब पे कैसे हम ऑनलाइन सेविंग कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मुझे पता चल रहा है।
26: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्योति है और मैं दिल्ली से हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ पूनम मैम का, जिन्होंने मुझे रीड इंडिया सेंटर से जुड़ने का मौका दिया। फिर मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ महिपाल सर का, जिन्होंने मुझे रीड इंडिया फैमिली का हिस्सा बनाया और उससे जोड़ा, सभी को जानने का एक मौका दिया। रीड इंडिया के बारे में मैं नहीं जानती थी, बट जब यहाँ पे जुड़ी, मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली और जो जो मैंने सीखा वो एक्सपीरियंस मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि फोटोज वगैरह, एडिटिंग वगैरह, वीडियोस, शॉर्ट्स, फोटोज ये सब लेना मुझे नहीं मालूम था। जब मैं रेडियो इंडिया सेंटर से जुड़ी मुझे मालूम हुआ, इन सब चीजों से मैं अनजान थी, पर जुड़ी तो मैंने एडिटिंग सीखी, वॉइस स्किल। जरूरी नहीं कि हमारे बोलने का तरीका कैसा है, हमारी वॉइस स्किल कैसी है, ये मायने रखता है।

0: हमने इस समय में हम खाली नहीं बैठे, रीडिटर सेंटर से हम लोग जुड़े, फिर हमने सीखा कि ऐसे दौर में हर इंसान जब घर में बैठता है तो हर इंसान बोर होता है, दम घुटने लगता है लोगों का घर में बैठ के। लेकिन इस दौर में हमने घर में बैठ के नहीं बल्कि हमने सीखा, ऑनलाइन क्लास ली, सर से हमने बहुत कुछ सीखा। अब जैसा कि हमने बहुत सारे एफएम रेडियोज को सुना होगा, बट हमने सुना ही था लेकिन कभी उन्हें करीब से नहीं जाना था। लेकिन रीडिटर सेंटर के जुड़ने के कारण हमने इसे करीब से जाना और उसे देखा और किया। और जैसा कि हम जानते लोगों की आवाजों को सुनते हैं पर ये नहीं जानते कि वो लोग कितनी मेहनत करते हैं। जब हम इससे जुड़े तो हमने किया तो हमें पता चला कि लोग कितनी मेहनत करते हैं। हम लोगों को सिर्फ वॉइस के थ्रू हम सुनते हैं बट कभी जाना नहीं। जब किया तो लगता है कि हाँ कितनी मुश्किल है ये चीजें। बहुत अच्छा लगा ये सब चीजें जानकर। करने के बाद बहुत मतलब कि हमने किया तो बहुत एक्सपीरियंस मिला। अब जो मैं आपके सामने जो बोल पा रही हूँ ये सब महिपाल सर, पूनम मैम की, इन सभी की बदौलत है कि मैं इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर बोलने का ला पा रही हूँ आप सभी के सामने। इससे पहले मैं बहुत नर्वस हुआ करती थी, बोलने मेरी आवाज भी नहीं निकलती थी। इसी के साथ मैं आप सभी से धन्यवाद लेना चाहती हूँ और रीड इंडिया सेंटर का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इतना सब कुछ सीखने का मौका मिला।
1: हेलो, मेरा नाम तनु है, मैं शाहबाद में रीड इंडिया सेंटर से बोल रही हूँ। यहाँ पे मैंने वीडियो और ऑडियो एडिटिंग का कोर्स किया है। पहले हमें नॉलेज थी बट इतनी नॉलेज नहीं थी जितनी अभी हमारी डेवलप हो गई है। अभी हमें यहाँ से बहुत अच्छी अच्छी स्किल सीखने को मिली है जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें आई हैं। अब हम यहाँ से वीडियो खुद बना सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें खुद कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे आकर बहुत फायदा हुआ है, सीखने को मिला है। थैंक यू।
2: मेरा नाम रितिका है, मैं 16 साल की हूँ और मैं शाहबाद मोहम्मदपुर की हूँ। मैंने रीड इंडिया से एडिटिंग का कोर्स किया है। ये कोर्स करने के बाद मैंने इसको अपनी स्कूल लाइफ में यूज किया है। जितनी हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं और जितनी भी वीडियोस एडिटिंग होती हैं क्लास की, वो सब मैं ही करती हूँ। इससे मुझे बहुत हेल्प मिली है। अब मैं कोई भी काम आसानी से कर लेती हूँ। हमारी स्कूल असेंबलीज होती हैं, हमारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वो सब मैं ही देखती हूँ एडिटिंग करने के लिए। और फ्यूचर में मैं इसको अपनी करियर में यूज करना चाहूंगी। थैंक यू।
3: मेरा नाम मायाश्री है, मैं 32 साल की हूँ। मैं रीड इंडिया सेंटर द्वारका सेंटर से टैली का कोर्स कर रही हूँ। मुझे टैली के बारे में पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन यहाँ रीड इंडिया सेंटर पर आने के बाद टैली के बारे में मेरी नॉलेज इम्प्रूवमेंट हुई है। इसलिए मैं अब अपनी नॉलेज को और ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आती हूँ।
4: मेरा नाम वंशिका जैन है, मैं 17 साल की हूँ। मैं यहाँ रीड इंडिया द्वारका सेंटर में ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स सीखती हूँ। मैंने यहाँ बहुत सारी ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में सीखा और मैं अपने फोटोज एडिटिंग आसानी से कर सकती हूँ। और मैंने पोस्टर डिजाइनिंग करना सीखा और पैम्पलेट्स बनाना सीखा। मैं इसको अपनी डेली लाइफ में यूज कर रही हूँ और मैं अपना करियर ग्राफिक डिजाइनिंग में बनाना चाहती हूँ और मैं ग्राफिक डिजाइनिंग बना सकती हूँ।
5: मेरा नाम उपासना है, मैं शाहबाद मोहम्मदपुर में रहती हूँ। मैंने रीड इंडिया सेंटर के बारे में अपनी एक फ्रेंड से सुना। यहाँ पे ऑनलाइन सेलिंग का कोर्स मैंने किया जहाँ पे मुझे सिखाया गया कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सब के थ्रू अपना प्रोडक्ट कैसे सेल किया जाए, वो भी सेफली। थैंक यू।
6: मेरा नाम रेशमा वर्मा है, मैं शाहबाद मोहम्मदपुर में रहती हूँ। जब पहले मैं यहाँ रीड इंडिया सेंटर में एडवांस्ड कोर्स कर रही हूँ। पहले जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे थोड़ी बहुत सिलाई आती थी पर मेरे हाथ में सफाई नहीं थी और ना मुझे इतनी ज्यादा चीजें आती थी जो आजकल चल रही है। अब मेरे हाथ में सफाई भी आ गई है, जैसे जिप लगाना और चैन वगैरह लगाना, सब प्लाजो में जेब लगाना, इन सब चीजों में। और अब मैं मुझे यहाँ आके बहुत सारा कुछ नया सीखने को मिला है, जैसे पैंट, प्लाजो, फ्रॉक सूट, ये सब। और अब मैं बहुत खुश हुई सीखने के बाद। मैं अपने सूट अपने आप सिलती हूँ और मैं अपने दोस्तों को और अपने फ्रेंड सर्कल में सबको बताती हूँ कि मैं हमारी रीड इंडिया सेंटर से सिलाई सीखी है। और वहाँ के मैडम और बाकी स्टाफ सब बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छे से बिहेवियर करते हैं और बहुत अच्छे से सिखाते हैं। चाहे कितनी बार भी पूछो, बहुत अच्छे से बताते हैं। और अब मैं बहुत खुश हूँ, आगे जब मुझे कहीं जॉब मिलेगी तो मैं जॉब करूंगी और नहीं तो मैं अपना घर बैठ के सिलाई भी करूंगी, अपने भी बाहर के भी। और आगे कभी फ्यूचर में मिला तो कहीं और अप्लाई जरूर करती रहूंगी।

0: जहाँ नौकरी मिले वहाँ मैं करूँगी। धन्यवाद।
1: मेरा नाम गरमा है, मैं शाहबाद मोहम्मदपुर में रहती हूँ। मैंने डीडीडीएस सेंटर से एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है। मुझे पहले थोड़ा बहुत आता था और अब यहाँ पे आने के बाद मुझे सब कुछ आ गया है लगभग। अभी बस फिनिशिंग थोड़ी बहुत बाकी है, वो भी मेरी कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद मैं अपना एक बुटीक खोलना चाहूंगी जिसमें मेरे पास थोड़े बहुत पैसे या कुछ भी होगा जिससे मैं अपना कुछ कर सकूंगी, अपना काम निकाल पाऊंगी और अपना कुछ करियर कर पाऊंगी। जॉब भी करना चाहूंगी, अगर मेरे को फैसिलिटी मिलेगी आगे चल के तो मैं उसको जरूर अप्लाई करूंगी।
2: मेरा नाम अर्चना तिवारी है, मैं शाहबाद मोहम्मदपुर गांव में रहने वाली हूँ। मैंने रेड इंडिया से स्टिचिंग एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है। पहले मुझे फिनिशिंग नहीं आती थी, अब मैंने सब कुछ सूट वगैरह गले की डिजाइन बाजू सब कुछ करना सीख लिया है। अब मैं खुद से अपना कुछ करना चाहती हूँ।
3: मेरा नाम बेबी श्वेता है, मैं शाहबाद मोहम्मदपुर में रहती हूँ। मैंने रेड इंडिया सेंटर से एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है। पहले भी मुझे सिलाई आती थी, लेकिन जब से मैंने एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है, जब से मेरे कपड़ों में और अच्छी फिनिशिंग आती है, मुझे बहुत कुछ नया नया सीखने के लिए मिला। जैसे कि चोली कट ब्लाउज, सिंपल ब्लाउज, अम्ब्रेला कट बाजू, बोट नेक, और पहले मुझे गले की डिजाइन वगैरह, सूटों के डिजाइन, ये सब अच्छी तरीके से सिलना नहीं आता था। जब से मैंने ये एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है, मुझे बहुत अच्छे से सिलना आता है। मेरे कपड़े में बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। अब मैं अपने फैमिली मेंबर्स के कपड़े खुद ही सिलती हूँ। मेरे पास बाहर से भी कुछ कपड़े सिलने के लिए आते हैं जिससे मेरी अपनी खुद की जरूरतें पूरी हो जाती है। इस एडवांस स्टिचिंग करने से मेरे अंदर बहुत बदलाव आया है। थैंक यू।
4: मेरा नाम मंजू है, मेरी उम्र 28 साल है। रीड इंडिया से मैंने एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है। ट्रेनिंग लेने के बाद मेरी निजी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। पहले मेरे पास स्टिचिंग के लिए कपड़े आते थे लेकिन उनमें अच्छे से फिनिशिंग नहीं हो पाती थी, लेकिन रीड इंडिया में आने के बाद मैंने फिनिशिंग के साथ साथ बहुत सारे नए नए डिज़ाइन बनाने सीखे। हाँ, मुझे नए नए डिज़ाइन सीखने को मिले जो मुझे पहले नहीं आते थे, लेकिन ये कोर्स करने के बाद मेरे पास बाहर से कपड़े सिलने के लिए भी आने लगे। रेड इंडिया में आने से पहले मुझे पैसों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन स्टिचिंग सीखने के बाद मुझे दूसरों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अब मैं अपने निर्णय खुद ले सकती हूँ और खुद ही अपना पैसे कमा सकती हूँ। और अब मैं बाहर से गारमेंट स्टिचिंग करके अपने इनकम पा रही हूँ। रेड इंडिया में आने के बाद मुझे बहुत खुशी और सफलता मिली है।
5: मेरा नाम नीनू है, मैंने रेड इंडिया सेंटर से ऑनलाइन सेलिंग का कोर्स किया है। पहले मैं इतनी कैपेबल नहीं थी जो मेरी इसके पास बोल नहीं पाती थी, बट मैं बोलती भी हूँ और मैं एक रिसेप्शन की जॉब भी करती हूँ शाहबाद मोहम्मदपुर में। थैंक यू सो मच।
6: मेरा नाम किरण राजपूत है, मैं 49 ईयर्स ओल्ड हूँ और मैंने रेड इंडिया से मार्केटिंग ऑनलाइन का कोर्स किया था, जिसका बेनिफिट ये हुआ है मुझे कि मैं अपने जो काम मैं कर रही थी उसको मैं अच्छी तरह से और प्रेजेंट कर पाई हूँ और मार्केटिंग स्केल को और अच्छे से समझ पाई हूँ कि किस तरह से हम लोग मार्केटिंग को ऑनलाइन के साथ क्रिएट कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स और अपनी क्वालिटीज़ को किस तरह से हम और ज़्यादा अधिक से अधिक लोगों के आगे प्रेजेंट करने में हमें मुझे आसानी हुई है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ रीड इंडिया का, जिन्होंने ऑलरेडी ये कोर्स चलाया जिससे कि मुझे बहुत बहुत बेनिफिट फ़ायदा हुआ है। थैंक यू फॉर द रीड इंडिया।
7: हेलो, मेरा नाम आशु है, मैं शाहबाद की रहने वाली हूँ। मुझे रीड इंडिया सेंटर के बारे में मेरे फ्रेंड से पता लगा। मैं यहाँ आई, फिर मेरी सुमन मैम से बात हुई। सुमन मैम ने मुझे बताया यहाँ पर मैं पार्लर एंड सिलाई सेंटर का भी काम सिखाया जाता है। फिर मैंने हर्बल के प्रोडक्ट बनाना सीखा। मैंने हर्बल के प्रोडक्ट में लिप स्क्रब, लिप बाम एंड बॉडी लोशन, फेस क्रीम और साबुन बनाना सीखा। मैंने उसको खुद घर पे यूज़ किया और मेरी फैमिली में भी यूज़ किया। उसके बहुत ही बेटर रिजल्ट आया। एंड थैंक यू सुमन मैम एंड थैंक यू रीड इंडिया सेंटर। थैंक यू सो मच।
8: नमस्कार, मेरा नाम सरिता सुबेदी, मैं शाहबाद के रहने वाली हूँ। मुझे अपने फ्रेंड से पता चला रेड इंडिया के बारे में। जैसे मैं वहाँ जाके पता करी तो वहाँ मुझे पता चला कि हर्बल प्रोडक्ट के अलावा वहाँ पर सिलाई, कंप्यूटर और पार्लर के कोर्स भी सिखाई जाती है। जैसे मैं सुमन मैम से मिली और सुमन मैम से जानकारी ली कि यहाँ पर हर्बल प्रोडक्ट बनाने सिखाई जाती है, तो मैंने ज्वाइनिंग किया और हर्बल प्रोडक्ट बनाना सीखा। मैम ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से नेचुरल, बिल्कुल बिना केमिकल के प्रोडक्ट बनाना सिखाया, हर्बल प्रोडक्ट, जिसमें से बॉडी सोप, बॉडी वाटर, लिप बैम, लिप स्क्रब, बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाना सिखाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ बॉडी लिप बाम, बॉडी स्क्रब एंड फेस क्रीम मैंने बनाया भी खुद और यूज किया, मेरी फैमिली को भी यूज कराया, सबको बहुत अच्छा लगा और सबने मतलब बहुत तारीफ किया। इसलिए थैंक यू सो मच सुमन मैम एंड थैंक यू सो मच रीड इंडिया इतने अच्छे प्रोडक्ट सिखाने के लिए, थैंक यू सो मच।
9: मेरा नाम सोनिया है और मैं शाहबाद मोहम्मदपुर में रहती हूँ। मुझे ब्यूटिशियन का कोर्स करना था तो मैं ब्यूटिशियन के कोर्स के लिए पूछने गई तो मुझे वहाँ फीस बहुत महंगी बताई जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर पाती। तो मुझे किसी से रीड इंडिया सेंटर के बारे में पता चला तो मैं रीड इंडिया सेंटर में गई और मैंने वहाँ जाके मैम से पूछा कि मैम मुझे ब्यूटिशियन का कोर्स करना है, तो मैम ने मुझे ब्यूटिशियन के कोर्स के बारे में बताया और साथ में वहाँ स्टिचिंग, कंप्यूटर और हर्बल प्रोडक्ट बनाना सिखाया जाता है। तो मैंने वहाँ पे ब्यूटिशियन का कोर्स करना स्टार्ट कर दिया और मुझे 3 मंथ्स हो गए ब्यूटिशियन का कोर्स करते करते और मुझे बेसिक पार्लर पूरा आ चुका है। तो मैं रीड इंडिया सेंटर को और सुमन मैम को थैंक यू बोलना चाहूँगी जिसके वजह से मुझे मेरा ब्यूटिशियन का कोर्स पॉसिबल हुआ हो पाया है, क्योंकि महंगी फीस की वजह से मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। तो थैंक यू सो मच सुमन मैम एंड थैंक यू सो मच रीड इंडिया सेंटर।
10: हाय, माझं नाव सामी आहे, मी जोगेश्वर आहे, माझं शिक्षण 11वीपर्यंत झालेलं आहे। मी रीड इंडियामध्ये 3 महिन्यामध्ये कोर्स करते, त्यामध्ये मी ब्लाऊज, साधा ब्लाऊज, कटोरी ब्लाऊज, वरण प्रिन्स कटोरीवाला ब्लाऊज वगैरे सर्व शिकते।
11: हाय, मेरा नाम है रेशमा अरोरा जोगिंदकर, मैंने 12वी की हूँ सायन्स से, गोरेगाव से, और मैं 3 महीने से रीड इंडिया से कोर्स कर रही हूँ बेसिक पेलर कोर्स का, और उसके बाद मैंने उसमें सीखी हूँ झबला, बिनबाही का, सादी चड्डी, फैंसी बॉनेट, उसके बाद प्रिंस कटोरी ब्लाउज, फ्रॉक और पंजाबी सूट। थैंक यू।
12: हाय, माझं नाव अक्षत अशोक कांबळे, मी ऍग्रीकल्चर डिग्रीमध्ये डिग्री करत आहे आणि इथे खामगाव मंडी इंडियामध्ये मशीन शिवण क्लास करत आहे। त्याच्यामध्ये जे दररोजच्या लग्नासाठी जे कपडे आहेत त्याच्यामध्ये शिकवलं जात आहे आणि इथे खूप काही गोष्टी शिकण्यासारख्या, रेड इंडियामध्ये खूप काही गोष्टी शिकण्यासारख्या मिळाल्या, त्यामुळे त्यांचे आम्ही आभार व्यक्त करते। थँक्यू।
13: नमस्कार, माझं नाव मनवा जीवन आडवीलकर, माझं शिक्षण टीवाय बी ए मधून झालेलं आहे। मी इथे रीड इंडिया सेंटरमध्ये 3 महिन्यापासून कोर्स करत आहे। त्या कोर्समध्ये मी बिनबाईचा झबला, कटोरी ब्लाऊज, प्रिन्स कटोरी, साधा ब्लाऊज, ड्रेस हे सगळं शिकले आहे। थँक्यू रीड इंडिया।
14: माझं नाव नौशीन वजीर जोगिरकर, माझं शिक्षण 12वी, मी रीड इंडिया सेंटरमध्ये कोर्स केला आहे शिवण क्लास, 3 महिन्याचा कोर्स आहे। त्याच्यामध्ये बिनभाईचा झबला, चड्डी, सलवार कमीज, ब्लाऊज हे सर्व शिकवले गेले आहे। हा कोर्स भेटण्यामधून तुमचे आम्ही आभारी आहोत।
15: आपकी उम्र 22। रीड इंडिया सेंटर से आपने कौन सी ट्रेनिंग ली?
16: कंप्यूटर के और पार्लर की।
15: ट्रेनिंग लेने के बाद आर्थिक स्थिति के बदलाव के बारे में बताएं।
16: ट्रेनिंग लेने से हमें ये फायदा हुआ है कि हम सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं, उससे हमारी इनकम बढ़ सकती है, ट्रेनिंग बच्चों को दे सकते हैं, कोचिंग ले सकते हैं।
15: आप आगे क्या करना चाहती हैं?
16: कंप्यूटर ही कोचिंग ले रही हूँ, कंप्यूटर में ही स्कोप है, कंप्यूटर से ही जॉब कर रही हूँ
15: यहाँ पे। आपका नाम क्या है?
16: स्वाति।
15: आपकी उम्र?
16: 24।
15: रीड इंडिया सेंटर से आपने कोई ट्रेनिंग ली?
16: यस मैम, हमने 2 ट्रेनिंग ली थी, पार्लर का और कंप्यूटर का।
15: तो आपने कंप्यूटर में क्या क्या सीखा?
16: कंप्यूटर में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, नेटवर्किंग
15: बेसिक सीखा आपने। और पार्लर में?
16: पार्लर में मैम कटिंग, फेशियल, ब्लीच, वैक्सिंग,
15: ट्रेनिंग लेने के बाद आर्थिक स्थिति के बदलाव के बारे में क्या आप कुछ बता सकते हैं?
16: कंप्यूटर सीखने के बाद घर पर बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं कंप्यूटर के बारे में, उससे अच्छी खासी इनकम होती है।
15: और पार्लर का?
16: पार्लर में मैम बस साइड में चल रहा है।
15: अच्छा, जीवन के निर्णय और पारिवारिक निर्णय लेने की आपकी क्षमता में कोई सुधार हुआ?
16: यस मैम, पहले से ज्यादा इनकम होने लगी है, सेल्फ डिपेंडेंट हो गया।
15: गुड, आप आगे क्या करना चाहती हैं?
16: मैम पार्लर में करना है, पार्लर खोलना है।
15: अपना पार्लर खोलना है? अच्छा, तो पार्लर की पूरी ट्रेनिंग लेने के बाद मतलब आप चाहते हो अपना पार्लर?
17: माझे नाव आदिती संजय वाळंदकर, माझ्या गटाचे नाव महालक्ष्मीगड, गाव विनेरे, आम्ही रीड इंडिया सेंटर विनेरे येथे पापड मेणबत्ती बनविण्याचे प्रशिक्षण घेतले। तेथे टाटरे मॅडम यांनी आम्हाला खूप चांगल्या प्रकारे मेणबत्ती बनवण्याची माहिती दिली व त्यातून पुढे व्यवसाय कसा करायचा याचे मार्गदर्शन केले, मार्केटिंगचे आश्वासन दिले, त्यामुळे बचत गटाच्या वतीने व्यवसाय सुरू करण्याची नवी उमेद मिळाली। रीड इंडिया सेंटर विनेरे व टाटरे मॅडम यांचे आम्ही आभार मानतो।
18: जय बजरंग महिला बचत गट, गाव विनेरे। आम्ही रीड इंडिया सेंटर विनेरे येथे पापड व मेणबत्ती बनवण्याचे प्रशिक्षण घेतले। तेथे टाटरे मॅडमनी आम्हाला खूप चांगल्या प्रकारे मेणबत्ती बनवण्याची माहिती दिली व त्यातून पुढे व्यवसाय कसा करायचा याचे सुद्धा मार्गदर्शन केले। मार्केटिंगचे आश्वासन मॅडमनी आम्हाला दिले, त्यामुळे बचत गटाच्या वतीने व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आम्हाला नवीन उमेद मिळाली आहे। त्यामुळे आम्ही टाटरे मॅडम आणि रीड इंडिया संस्थेचे विनेरेकडून आभार मानत आहोत।
19: माझे नाव शर्मिला मंगेश विसापूरकर, माझ्या गटाचे नाव जय बजरंग महिला बचत गट, गाव विनेरे। आम्ही रीड इंडिया सेंटर विनेरे येथे पापड व मेणबत्ती बनवण्याचे प्रशिक्षण घेतले। तेथे टाटरे मॅडम यांनी आम्हाला खूप चांगल्या प्रकारे मेणबत्ती बनवण्याची माहिती दिली व त्यातून पुढे व्यवसाय कसा करायचा याचे मार्गदर्शन केले, मार्केटिंगचे आश्वासन दिले, त्यामुळे बचत गटाच्या वतीने व्यवसाय सुरू करण्याची नवीन उमेद मिळाली। या वतीने टाटरा मॅडम रीड इंडिया व टाटरा मॅडम यांचे मी आभार मानतो।
20: माझे नाव श्वेता संतोष सकपाळ, वय 24 वर्ष, रेड इंडिया सेंटर विनेरे येथून मी ग्राफिक डिझाईनचा कोर्स केला। यामध्ये मला फोटो एडिटिंग, बॅनर डिझाईन आणि व्हिडिओ बनवायला शिकवलं। त्याचा आम्ही नक्कीच भविष्यात उपयोग करू व रेड इंडिया सेंटरने आम्हाला जे फ्रीमध्ये कोर्स प्रोव्हाइड केले त्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद।
21: माझं नाव श्वेता रोशन सप्पा, वय 29 वर्ष, रेड इंडिया सेंटर विनेरेकडून आम्हाला ग्राफिक डिझायनिंगचा कोर्स शिकवण्यात आला। या कोर्समध्ये आम्ही फोटो एडिटिंग, बॅनर डिझायनिंग आणि व्हिडिओ कशा बनवायचा हे शिकलो। या शिक्षणाचा उपयोग आम्ही भवितव्यात नक्कीच करू। रेड इंडिया सेंटरने आम्हाला हा जो कोर्स फ्रीमध्ये प्रोव्हाइड केला त्याबद्दल त्यांचे मनापासून धन्यवाद।
22: मेरा नाम लप्सा है, मैं रीड इंडिया पडवाई सेंटर सिलाई सीखी है। मैं पडवाई में रहती हूँ और मैं सेंटर में आती जाती रहती हूँ। इस सेंटर से मैंने अच्छी सिलाई सीखी है, अपने घर के कपड़े सिलती हूँ और मोहल्ले के भी कपड़े सिलती हूँ। इस रीड इंडिया का धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं। इस रीड इंडिया में सिलाई सीख कर और सिलाई करती हूँ मैं और कपड़े सिलती हूँ, उससे जो पैसा आता है मैं अपने कॉलेज की फीस करती हूँ, जमा करती हूँ।
23: मेरा नाम निशा है, मैं पढ़वाई रीड इंडिया से सिलाई सीखी है। मैं एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ और तरह तरह के डिजाइन के कपड़े सीना चाहती हूँ। और मेरा एक सपना ये है कि मैं एक सेंटर खोल सकूँ जिससे बच्चों को अच्छे से डिजाइन के कपड़े सिखा सकूँ। मेरे तरफ से सेंटर को धन्यवाद।
24: मेरी एज 21 है, मैं लास्ट डे पर रहती हूँ। मैं रीड इंडिया सेंटर में एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है। मुझसे काफी कपड़े सिलाई के आ गए हैं, जैसे कि डिजाइनिंग कुर्ती, डिजाइनिंग पेंट, प्लाजो, गरारा, फरारा, लहंगा, चोली वगैरह वगैरह काफी सिलाई आ चुकी है। और मेरे डिजाइनिंग में अपने डिजाइन खुद करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अपना डिजाइन सिलाई करना। और मेरे डिजाइन सिलाई के लोग भी मतलब कहते हैं मेरे भी सीधे, इस वजह से मेरे मतलब काफी सिलाई आती है घर पर। और मैं सिलाई की वजह से अपने घर में काफी हेल्प कर सकती हूँ। और मैं पहले मतलब अपनी कुछ नहीं कह सकती थी अपने बारे में, पर अब मैं सबसे कुछ भी कह सकती हूँ और मैं अपना खर्च खुद ही उठा सकती हूँ। पढ़ाई वगैरह का भी काफी कुछ अपने लिए कर सकती हूँ मैं। एडवांस सिलाई सीख के मुझे काफी लाभ हुआ है।
0: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फिजा है। मैं कलघर में घोसियान मोहल्ले में रहती हूँ। रीड इंडिया कलघर सेंटर हर्बल कॉस्मेटिक का कोर्स कर रही हूँ, जिससे मुझे बहुत फायदा हुआ है। जैसे कि लिप बाम, बॉडी वैक्स, बॉडी बटर और वगैरह काफी कुछ सीखने मिला है और इसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट है। मैं रेड इंडिया कलर सेंटर को धन्यवाद कहना चाहती हूँ।
1: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनब है और मेरी एज 18 इयर्स है और मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। यहाँ पर रेड इंडिया सेंटर आने से पहले मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, यहाँ आने के लिए भी बहुत ज़्यादा, और मेरी फैमिली में भी बहुत ज़्यादा इनकम की प्रॉब्लम थी। मेरे पापा प्लम्बरिंग का काम करते हैं, मम्मी सिलाई करती हैं, तो मैं सोचती थी कि शायद मैं कुछ कर सकूं अपने मम्मी पापा के लिए या अपने खुद के लिए, कि मैं अपना खुद खर्च अपना खुद लूं, मम्मी पापा से नहीं लूं। इस वजह से मैंने सोचा कि मैं अपने खुद काम करूं, खुद कुछ भी करके अपना खुद ही निकालूं खुद भी। फिर मैंने मुझे यहाँ पर रेड इंडिया सेंटर के बारे में पता चला तो मैं यहाँ पर आई। मैंने यहाँ पर आके बेसिक सिलाई का भी कोर्स किया है और ऑनलाइन सेलिंग का कोर्स किया है। इसके जैसे मैंने बिजनेस कम्युनिकेशन और लाइफ स्किल्स और मेंटल हेल्थ का कोर्स है और ये सब लेने के बाद मेरा माइंड बहुत फ्री रहता है। पहले मैं किसी के सामने बोल नहीं पाती थी, बिल्कुल भी बात नहीं कर पाती थी और अब अच्छे से मैं सबसे बोल पाती हूँ, बात कर पाती हूँ। मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंट जागा है, दूसरों के सामने बोलने का, कुछ करने का एक हिम्मत आई है। पहले मुझे कुछ नहीं आता था बिल्कुल। यहाँ आने के बाद बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है मुझे, बहुत अच्छा लगता था यहाँ आके, और अब भी मैं पूरी कम्प्लीट स्टिचिंग कर चुकी हूँ और इससे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। इससे मैं अपनी इनकम भी अच्छे से कम कर लेती हूँ और मैं अपना खर्च खुद निकालती हूँ, किसी से कुछ कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती। और पहले मैं मेरी पढ़ाई रुक चुकी थी इस काम पैसों की वजह से ही और पापा की मजदूरी के काम की वजह से ही, मगर जब से मैंने अपना काम शुरू किया है या मैंने स्टिचिंग का कोर्स किया है, उसके बाद मैं अपने खर्च और स्कूल की कॉलेज की पढ़ाई खुद में करती हूँ, खुद अपना खर्च निकालती हूँ। और यहाँ पर आने के बाद मैंने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक से मैंने अपने डिज़ाइन अपलोड किए और मैं उसको सेल करती हूँ इस पर। उससे मुझे बहुत अच्छी इनकम हो जाती है और अपने में इस वजह से अपने घर में भी पूरी हेल्प देती हूँ और मैं अपनी पढ़ाई वगैरह भी खुद कर लेती हूँ। और मेरे रेड इंडिया सेंटर आने के बाद बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा हुआ है और मैं रेड इंडिया सेंटर को बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच रेड इंडिया सेंटर। अच्छा।

0: Good evening, everyone. Welcome to today's episode of Nurturing Grassroot Leaders, Branding the Local Culture with Development. Today's guest will be Mrs. Sana from Barabanki, UP, who's here to share her story with us. As for a little background about her, she did her schooling in Barabanki but got married at a very early age, so had to wait for a while before continuing her studies. She did MA in English Literature and started teaching in Central Academy School. While working there, she and her husband got involved in an organization named ASI, which now goes under the name of Tanager. And while working in ASI, she was given a project regarding different farming communities. And through that, she got to know about Read India organization. She later joined Read India in March 2018 and is currently working as a center coordinator. Her current goal is to make sure that Read India is providing facilities and benefits to as many people as possible. This was just a little background about her, and she is going to explain that in much greater detail. So with that being said, I would like to request Smita ma'am to continue the program.
1: Thank you, Shashank. Thank you for the brief introduction about Sana. I welcome everybody, all our viewers, to another exciting episode of Nurturing Grassroot Leaders. Jaisa ki Shashank ne bataya, humare saath aaj Sana hai. So welcome, Sana. Welcome to our show. तो सना और देर ना करते हुए हम आपके बारे में और जानना चाहेंगे और हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे. आप थोड़ा बताएंगे अपने बैकग्राउंड के बारे में. ब्रीफ में शशांक ने बताया, बट आप भी बताएं कि कहाँ पे आपका बर्थ हुआ, कहाँ पे आपने एजुकेशन कंप्लीट करी, फिर आपकी जैसे जर्नी आगे बढ़ी उसके बारे में आप बताना चाहेंगे.
2: गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. थैंक यू मुझे ये चांस देने के लिए कि मेरी जर्नी हम शेयर कर सकें रीड इंडिया के थ्रू. जितने भी लोग अब सुन रहे हैं, रीड इंडिया में के वजह से आज हम यहाँ तक लाइफ में पहुँच पाए हैं. आज मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं और मेरे नाम से जानते हैं. थैंक्स, वेरी थैंकफुल टू रीड इंडिया फॉर दिस. सो स्टार्टिंग माई जर्नी, मेरी जो बर्थ हुई थी वो मेरे नानी के घर में हुई थी, बरेली में. वो एक दूसरा डिस्ट्रिक्ट है, यूपी में ही है, बट वो दैट इज नियर रामपुर. तो मेरी बर्थ बरेली में ही हुई थी, मेरे नानी के घर पे. उसके बाद जब वापस आए दादी के घर पे हम लोग, तो मेरी स्कूलिंग शुरू हुई बाराबंकी से. बाराबंकी से हम एट्थ में ही थे, तो सामने सर्कमस्टेंसेस की वजह से थोड़ा सा, एज मेरे फादर फॉरेन में रहते थे, ही वॉज डूइंग हिज जॉब देयर, ही वॉज नॉट लिविंग विद अस. हम लोग अपने दादी के घर में रहते थे, बट पापा बाहर काम करते थे. तो ऐसे हमारी लाइफ शुरू हुई. बट जब हम एट क्लास में थे, तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स घर में होने लगी थी, मम्मी पापा का ये, तो थोड़ा बहुत इसकी वजह से. फिर जब मेरा नाइन्थ था, जब टेंथ में मेरे क्लासेस शुरू होने वाले थे, तो कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे बाराबंकी छोड़कर अपने फादर के साथ शिफ्ट होना पड़ा, जिसकी वजह से मेरी स्कूलिंग एक रेगुलर CBSE स्कूल से होल्ड होकर के एक प्राइवेट टेंथ की मुझे ऑप्ट करना पड़ा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी CBSE रजिस्ट्रेशन होता है कुछ प्रोसेस, तो वो चल रहा था. तो टेंथ में हमको एफ ए करना पड़ा. फिर टेंथ में होते होते ही मेरी शादी फिक्स कर दी गई. और फिर ना चाहते हुए भी उस एज पर, एट द एज ऑफ 16 and a half, आई हैड टू गेट मैरिड ड्यू टू दैट. मेरी शादी हुई थी, बट एक विल पावर था कि नहीं, ऐसे तो नहीं बैठ सकते, मतलब दिस इज नॉट फॉर मी. तो मेरी शादी हुई टेंथ में. मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया टेंथ का एग्ज़ाम देने, वो मुझे लेके जाते थे. शादी के 3 महीने बाद ही मार्च, जनवरी में शादी हुई, मार्च में एग्ज़ाम्स आ गए. उन्होंने मुझे पूरा टाइम दिया कि मैं पढ़ें, अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करें. फिर वो मुझे एग्ज़ाम्स के लिए लेकर जाते थे. फिर मैंने उन्हें बोला कि नहीं, मुझे 12th भी करना है, तो उन्होंने इमिडिएटली हाँ कर दिया विदाउट एनी थिंग. इवन दो आई वॉज मीन लाइक मेरा बेबी था ऑलरेडी, अब्दुल्ला वॉज बॉर्न, बट अगर तुम्हें करना है तो यू कैन गो फर्दर. तो फिर उन्होंने मुझे 12th करने, फिर ग्रेजुएशन मैंने इस तरह पूरा किया. 12th के बाद एक्चुअली मेरी बेटी डॉटर भी, फिर मुझे 2 साल के लिए पढ़ाई अपनी रोकनी पड़ी, होल्ड कराना पड़ा, बिकॉज इट वॉज वेरी टफ फॉर मी टू स्टडी विद 3 of the kids और 2 twins के साथ. इट वॉज वेरी टफ. सो ऐसे 10th हुआ, 12th मीटेड हुआ. उसके बाद हमारा फिर ग्रेजुएशन, फिर मैंने MA किया. इस सारे प्रोसेस के दौरान आई वॉज हैविंग माई फैमिली सपोर्ट अ लॉट. इंटर के बाद MA का फाइनल ईयर का रिजल्ट आया, तो मुझे लगा कि अब क्या करना है. तो फिर मैंने यही सोचा कि अब स्टडी को ब्रेक लगा देते हैं, बिकॉज आई मीन कि मुझे बाहर जाना चाहिए। घर में बैठकर हमने पढ़ाई तो कर ली, घर में बैठकर सब कुछ कर लिया, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आई एम मतलब मैं पूरा टाइम फ्री हूँ। देन आई स्टार्टेड मैंने सीरीज दी, मेरा शॉर्ट लिस्टिंग हुई, उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ। उन्होंने मुझे बोला कि आपने कहीं पर भी आप इतने बड़े स्कूल में आपने अप्लाई कर दिया सेंटर में, आपने ये भी नहीं सोचा कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैंने बोला मैम एक्सपीरियंस तो पढ़ाने से ही आएगा, कोई भी फ्रेशर कभी एक्सपीरियंस तो नहीं हो सकता, एंड एवरीबडी नीड अ चांस कि वो कुछ अपने आप को प्रूव करे। तो ओके आप एक डेमो दे दो, उसके बाद हम देखते हैं। फिर मैंने उन्हें डेमो दिया तो थैंकफुली मेरा हो गया सिलेक्शन वहाँ पर। इस तरह हमने जॉब स्टार्ट कर दी। जॉब स्टार्ट करने के 3-4 साल के बाद ही मेरा रीड इंडिया के साथ कनेक्शन हुआ थ्रू ऑब्वियसली थ्रू मैनेजर और अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो फिर इस तरह से हम रीड में जॉब स्टार्ट की। रीड में जॉब स्टार्ट करने का सबसे फर्स्ट रीज़न जो मेरा था कि शायद ये बहुत मुझे मतलब हमेशा से एक इनर फीलिंग आती थी कि मुझे सोशल वर्क करना चाहिए, सोशल वर्क करना चाहिए। सोशल वर्क करने की जो विल थी उससे ही हमको टीचिंग की तरफ अट्रैक्ट किया था। बिकॉज आप थोड़ा सा सोशलाइज हो जाते हो जब आप इतने सारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हो, आप क्लासेस लेते हो, उनमें से कुछ हर बच्चे की एक अलग स्टोरी होती है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना। मेरा रिसेस का टाइम भी मेरा क्लास में ही जाता था, हम कभी स्टाफ रूम में बैठ कर लंच नहीं करते थे, हम बच्चों के साथ क्लास में, इवन दो वो 10-12 के सीनियर स्टूडेंट्स थे, बट मेरा लंच टाइम क्लास में ही होता था। तो बाकी टीचर ऑप्शन भी करते थे कि आपको स्टाफ रूम में आना चाहिए, मैंने बोला नहीं, मेरा एक वो है कि मेरा उनके साथ कुछ है इंट्रैक्शन क्योंकि वो मेरी क्लास है। तो इस तरह से चलता रहा। फिर जब रीड इंडिया के साथ हम कनेक्ट हुए तो रीड इंडिया में के लिए मैंने अपनी जॉब को इमीडिएटली, स्मिता मैम से मेरी पहली मुलाकात दिसंबर में हुई। स्मिता मैम जब पहली बार आई थी यहाँ पर जगह देखने के लिए, गीता मैम, स्मिता मैम एंड नाइट सर, तब भी हम जॉब पर थे, मेरी स्मिता मैम से फर्स्ट टाइम मुलाकात भी नहीं हुई थी। तब जब सेकेंड टाइम में गीता मैम और नाइट सर आए तब हम घर पे थे, इट वॉज दिसंबर। तो जब मैं गीता मैम से मिली और मैंने उनकी बातें सुनना शुरू की, मैं शी वॉज लाइक मैंने ये स्वेटर पहना हुआ है, ये भी यहाँ के वीमेन से यूज किया है, हम लोग ऐसे काम करते हैं। तो एट द टाइम मतलब मुझे आई वॉज लाइक ब्लैंक, मैम कह रही है क्या ये रियलिटी है, ऐसा होता है, जो ऐसा काम करते हैं? बिकॉज एक इमेज थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक इमेज थी। आप न्यूज़ देखते हो, आप आस पास का अपने माहौल देखते हो कि नहीं ऐसा नहीं होता, एनजीओ वाले ऐसा तो काम कर ही नहीं सकते, बस नाम का एनजीओ, मतलब दैट वाज एन इमेज। अगर आप एक ऑर्डिनरी पर्सन से पूछो तो यही इमेज है एनजीओ की। आई वॉज लाइक दैट, मतलब आज शायद मुझे ये नहीं बोलना चाहिए बिकॉज आई एम वर्किंग इन एनजीओ टू, बट वो इमेज थी, रियलिटी यही थी मेरे लिए। तो मैम बोल रही थी और मैं सुनी थी ऐसे बैठ कर, मैम सामने बैठे हुए थे, बट मैम बोल रही थी और मैं सोची थी अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ऐसा भी होता है। देन मैम हमारा गुसाईगंज का भी सेंटर तब दिसंबर में ही खुला था हमारे सेंटर के सीमा पर, तो मैम ने बोला कि आप आइए आप देखिए सेंटर हमारा क्या है। फिर मैंने एक बार को इमीडिएटली बोला कि मना मत करिएगा, हम लोग जाएंगे क्योंकि मुझे देखना है क्या है, रियलिटी ऐसी है मैम का सेंटर कहता है। एक बार ने को भी ये था कि हाँ अगर हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं, जगह दे रहे हैं, तो चलो एक बार देख लेते हैं कि व्हाट इज दैट। जब हम लोगों ने स्टेप इन किया, जब हमने स्टेप इन किया गोसाईगंज के सेंटर के अंदर, मैं इट वॉज लाइक मतलब मैं देख रही थी स्कूल है कि ये स्किल सेट्स हैं, मतलब लाइब्रेरी भी है, उसमें कंप्यूटर्स भी रखे हुए हैं, मतलब लाइब्रेरी इट वॉज लाइक अ ड्रीम, क्योंकि लाइब्रेरी तो मैंने कभी देखी ही नहीं थी। जैसे लाइब्रेरी होती है हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे गाँव में लाइब्रेरी है, हमारे शहर में लाइब्रेरी है। और आई वॉज लाइक यार लाइब्रेरी है यहाँ पे, इन्होंने कंप्यूटर्स भी रखे हुए हैं, इन्होंने मशीन भी लगाई, इन्होंने गाँव में ला के प्रोजेक्टर भी लगा रखा है। मीन्स ये सारी चीज़ें एक बंदे के माइंड को बहुत इम्पैक्ट करती है जिन्हें इसकी वैल्यू पता होती है। तो आई वॉज लाइक की मतलब मैंने बहुत अच्छे से
3: आप थोड़ा बताएंगे व्यूअर्स को, शायद आइडिया नहीं होगा कि ये जो गांव की आप बात कर रहे हैं गोसाईगंज बाराबंकी, इनकी लोकेशन के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया दीजिए, बिकॉज ऑल ओवर द कंट्री और समटाइम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल आर व्यूइंग द प्रोग्राम। तो आप थोड़ा बताएंगे जो आप विलेज के, ताकि वो भी विजुअलाइजेशन कर सकें कि जिन गाँव की आप बात बता रहे हैं वो शहर से कितनी दूर है, वहाँ पे क्या चैलेंजेस हैं, क्योंकि कई बार सुनने वाला ये अंदाजा नहीं लगा पाता कि शायद एक कंप्यूटर को देखना, हाथ लगाना भी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड आप उसके बारे में भी दीजिए सना।
2: यस यस तो गुसाई बाराबंकी जो सेंटर है यूपी में है, गुसाईगंज सेंटर भी यूपी में ही है। इंडिया में यूपी एक स्टेट है, उत्तर प्रदेश यूपी सिटी है लखनऊ, विच इज़ वेरी वेल नोन बाई एवरीबडी। लखनऊ के बाहर जब हम आते हैं तो बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में ये सेंटर आता है, बाराबंकी सेंटर जो बड़ा गाँव में जिसपे अभी हम वर्क कर रहे हैं करेंटली। और गुसाईगंज सेंटर में है वो अदर रूट पर है, वो लखनऊ से अप्रॉक्स 20 किलोमीटर की रेंज में है। तो ये बड़ा गाँव सेंटर है जिसके पिक्चर्स अभी डिस्प्ले हो रहे हैं, ये वो सेंटर है, ये पूरी लोकेशन है सेंटर की। तो इस तरह से फिर हम जब बस्तिया गए, बस्तिया में मैंने देखा सारी चीजें, फिर मैंने वहाँ के लोगों से बात करना शुरू की कि ये सेंटर के बारे में आपको पता है, आप लोग यहाँ आए हैं इनॉग्रेशन में, आपको क्या लगता है सेंटर में क्या, क्योंकि मतलब मेरे अंदर क्वेश्चन पूछने की बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है, तो यहाँ आया तो क्यों आया, उसे क्या बताया गया, वो क्यों आया, सेंटर कैसे ही सर्वाइव करेगा, लोगों को इम्पोर्टेंस पता है। तो उन्होंने कहा कि जी जी मैम यहाँ पे सब गए थे बताने के बारे में, हम लोगों को बताया गया सेंटर खुलने वाला है, तो हमने पूछा आप लोग आएंगे सेंटर, क्योंकि गांव में शायद आपने कभी देखा नहीं। बोले मैम यही तो बात है कि हमने तो कभी कंप्यूटर देखे ही नहीं, हमने तो कभी देखा ही नहीं कंप्यूटर होता कैसा है, खाली नाम ही खुद। गुसाईगंज जो सेंटर है ना बस्तिया, दैट इज वेरी फार फ्रॉम लखनऊ, और वो बहुत ज्यादा ही मतलब बैकवर्ड है, यू नो मतलब प्रॉपर विलेज, विच इज कॉल्ड अ प्रॉपर विलेज, दैट इज दैट प्रॉपर विलेज, मतलब जहाँ पे बच्चों को प्राइमरी स्कूल भी शायद वहाँ उनके घर से थोड़ी दूर पर ही होगा, उन्हें स्कूल भी जाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती, तो वो ये सेंटर तो उनके लिए वॉज लाइक अ चांस कि उन्हें लाइफ में कुछ अचीव होने वाला है, वो ऐसे सेंटर पे खुला हुआ था वो जगह। तो वहां से वो मुझे मतलब दिमाग में आ गया कि नहीं ये बेस्ट है जो बड़ा गाँव में होने वाला है, इट विल चेंज बड़ा गाँव, इट विल गिव अ ट्रांसफॉर्मेशन टू द लाइफ ऑफ पीपल लिविंग इन बड़ा गाँव। सो वी वर लाइक ओके, मतलब ये एनिमल वाज सो सैटिस्फाइड कि नहीं अब आप करते हैं, बस अब यही करना है। तो द वेरी नेक्स्ट डे से जाने के बाद मैंने जाके सबसे पहले अपना रेजिग्नेशन लिखा, मैंने कहा मुझे अब काम नहीं करना स्कूल में, मुझे अब यहाँ काम करना है। दैट वाज सो मतलब एक बार वो शायद पहले सोच तो लो, मैंने कहा नहीं मुझे अब यही करना है, मुझे वो जॉब देंगे नहीं देंगे वो तो बात की बात है, मतलब मुझे करना ही।
3: हम व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं ये हमारे ये बाराबंकी सेंटर की है जिसकी बात सना कर रही है, जो हाँ जहाँ पे सना बेस्ड है। ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं सेटअप है पूरे सेंटर का, और जो विजिटर्स आए हैं ये कैलिसंस के ग्रुप के मेंबर्स हैं, और भी फॉरेनर्स भी विजिट करते हैं, लोकल टीम से भी बहुत लोग आते हैं। जो ये सेंटर है ये कैलिसंस नाम की एक कंपनी है जो मिंट फार्मर्स के साथ काम करती है, ये उनके सपोर्ट से ये सेंटर चल रहा है, करीबन 3 साल से ये सेंटर इस एरिया में चल रहा है, जिसको कि सना अपनी टीम के साथ और अपने टीम ऑफ वॉलंटियर्स टीम ऑफ स्टाफ के साथ मैनेज करती हैं, जिसकी स्टोरी सना बताई। तो सना हमने शुरू से ही देखा आपके हस्बैंड बहुत सपोर्टिव रोल उन्होंने प्ले किया, स्पेशली अर्ली मैरिज हुआ, अर्ली आपके बच्चे हो गए, देन इवन देन यू हैव नॉट गिवन अप। सो ये फीलिंग कैसी थी जब आपको, बिकॉज हमने देखा है स्पेशली इंडिया में सर्टन ग्रुप्स में सर्टन एरियाज में तो बिल्कुल इनकरेज ही नहीं करते, स्पेशली शादी के बाद तो ये एकदम ऐसे ड्रीम कम ट्रू हो गया जिस तरह का माहौल, जिस तरह का यू नो सपोर्ट आपको मिला है। सो यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट दैट?
2: Yes, ma'am. Ma'am, being in a community, in a Muslim community, is very tough to come out of the house. मतलब हमारे यहाँ का तो culture नहीं है वो कि हम घर से बाहर भी जाएं. But education changes everything. I believe in that. और ये क्योंकि जो लोग इसकी importance ज़्यादा जानते हैं, जिसे इकबाल को ये लगता था कि चलो कुछ तो अगर वो करना चाहिए तो करने देते हैं. और हमको ये था कि हमें करना है तो करना है, अगर कोई कुछ बोलता भी है कुछ रोक भी रहा है तो वो अपने रोक रहा है, एक दिन बोलेगा, दो दिन बोलेगा, तीन दिन बोलेगा, फिर खत्म हो जाएगा। और वो ही हुआ मैम, दो बार तीन बार सबने ऑब्जेक्शन किया, फिर सब सारे चुप हो गए मैम। और अब तो ये है मैम, लोग मेरा नाम लेके अपने घर में लोगों को मोटिवेट करते हैं कि सना मैम को देखो, सना मैम को देखो, कुछ सीख जाते हैं उनसे कैसे वो के साथ रहती है, कैसे वो सेंटर का काम करती है, वो घर का भी काम करती है, छोटे बच्चे को भी देखती है, बाहर के बच्चों के साथ भी वो ऐसे बिहेव करती है। तो मैम सुनने में खुद को भी अच्छा लगता है, वेरी ऑनेस्ट, खुद को भी सुनने में बहुत और फील होता है कि मेरे लिए लोग ऐसी बात करने लगे हैं। ये सब कुछ पॉसिबल है तो सिर्फ रेड इंडिया की वजह पे, रेड इंडिया नहीं होता तो डेफिनेटली मेरे बारे में कोई आज ऐसी बात ही नहीं कर रहा होता, क्योंकि लोग मुझे जानते ही नहीं कि हम कौन हैं।
3: कि ये पॉइंट हम इसीलिए लाना चाहते थे बिकॉज आज का जो हमारा टॉपिक है नर्चरिंग ग्रास रूट लीडर्स, तो आप जैसे लीडर्स जो हैं एक इमेज, पॉजिटिव इमेज बना रहे हैं कम्युनिटी में, जो कि चेंज एजेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं. तो कैसी बहुत सारी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं जिनको सपोर्ट नहीं मिलता है फैमिली से, तो ये मैसेज हम आपके माध्यम से ये भी देना चाहते हैं कि अगर फैमिली सपोर्टिव हो तो महिलाएं लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं. एंड आप उसका जीता जागता एक एग्जाम्पल है जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं, आपके जैसे बहुत लोग होंगे. So that is what I wanted to bring to the audiences. Special mention to you and your family for this initiative जो आपने life changing अपने लिए और अपनी community के लिए लिया है, कि एक second नहीं लगाया और आपने कहा कि मैं अपना job resign कर रही हूँ और मैं Reed के साथ जुड़ के ये कार्यक्रम करना चाहती हूँ. So we congratulate you for this effort and we want to know more about your center now. बाराबंकी में आपका जो ये सेंटर है, इसमें कौन कौन सी ट्रेनिंग्स चल रही हैं, कैसे आप कम्युनिटी में जाते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं आपको कम्युनिटी में जाने में?
2: मैम, कैलेसेंस जो हमारा प्रोजेक्ट है तो दिस इज बेसिकली फॉर मेन फार्मर्स. हम मेन फार्मर्स को उतना ही टारगेट करते हैं जितना हम बाकी कम्युनिटीज को करते हैं. तो मेन फार्मिंग की अगर हम बात करें तो मेन फार्मिंग कम्युनिटीज में हमें चैलेंज काम करने में जो हमारे साथ पहला चैलेंज है वो ये था कि वहाँ पर लोग बच्चों से मेंट की फार्मिंग कराते हैं क्योंकि वो उनका काम है. तो उन्हें सेंटर तक लाना वो अ बिग चैलेंज, क्योंकि उनको समझा के कन्विंस करना कि आप काम छोड़ कर आओ. तो कभी कभी जो हमारे सेंटर पे जो एक्टिविटीज चल रही थी स्टार्टिंग में, जब हमने 2018 में स्टार्ट किया था, तो हमारे पास बेसिक सेविंग, बेसिक कंप्यूटर कोर्स एंड ब्यूटी एंड वेलनेस कोर्स एंड लाइब्रेरी, हमारी चार कॉम्पोनेंट्स तब थे. अभी तो हम लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं. जब हमारा स्टार्ट हुआ था तो हमें ज्यादा मेहनत तब नहीं करनी पड़ी 2018, बिकॉज नया नया सेंटर खुला था यहाँ पर और ऐसा कोई भी कोई ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर रही थी जो जिससे इनको ये बेनिफिट मिलता. तो स्टार्टिंग में तो हमारे पास बहुत अच्छी फुटफॉल थी 2018, इट वॉज वेरी नाइस. हम लोगों को बहुत कम मोबिलाइजेशन के लिए जाना पड़ता था बिकॉज इतने सारे एडमिशन 6-7 महीने तो बिल्कुल नहीं करनी पड़ी. बट आफ्टर 7 मंथ्स आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि ये तो सिर्फ गांव के ही लोग गा रहे हैं, ऐसे तो नहीं चलेगा. और मैं क्योंकि एक कैलिसेंस उसका हमारा डोनर है तो वी शुड फोकस मोर ऑन मिंट फार्मिंग कम्युनिटी, दैट दे शुड कम टू द सेंटर एंड लर्न समथिंग. तो हमने फिर हमने बासा एक पॉइंट है यहाँ पर 5 किलोमीटर यहाँ से दूर है, जहाँ पर बहुत मतलब टोटल कम्युनिटी वहाँ पर फार्मिंग ही करती है और मिंट फार्मर्स ही हैं. तो हमारे एक SLGs के ग्रुप्स थे पहले, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. तो उन ग्रुप्स में जाकर वहाँ पर सारी फीमेल्स आती हैं, वो अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करती हैं. उन ग्रुप्स के अंदर मैंने जाकर के मीटिंग से लेना स्टार्ट किया. हमने उन लोगों से जाकर बात करना शुरू किया कि आप लोग क्यों अपने लड़कियों को बाहर नहीं निकालती हैं. तो वो कहती है मैडम हमारे पास हमारे बच्चों के पास टाइम नहीं है, वो स्कूल जाते हैं फिर वो खेत जाते हैं. तो मैंने कहा कभी ऐसा होता होगा कि वो स्कूल नहीं जाते होंगे, कभी ऐसा होता होगा कि आपका मिंट का सीजन 3 महीने ही रहता है, उसके बाद आप तो आप ही रहते हो, मतलब मार्च टू जून एक टाइम है, आप उस टाइम मत भेजो सेंटर पर. बट आप जब भेज सकते हैं, जब आपके बच्चे फ्री रहते हैं, आप उन्हें तब स्किल्स लर्न करने के लिए सेंटर में भेजिए, क्योंकि वो एक ऐसे स्किल्स आप सीख जाएंगे जो आपकी लाइफ टाइम के लिए है. एक बार सेंटर विजिट कर लीजिए, आप देख पाएंगे कि सेंटर में क्या क्या है. लोगों को गांव से के घर से निकाल कर सेंटर लाना ही पहले हमारे लिए चैलेंज बना 7 महीने बाद जब वो लोग नहीं आ रहे थे. तो उन उसके लिए हम लोगों को सबसे बेस्ट ऑप्शन जो लग रहा था वो सेल्फ हेल्प ग्रुप लग रहे, क्योंकि आप पूरे गाँव में जाओगे आपको पूरा दिन लग जाएगा. बट एक ग्रुप जहाँ पर कम से कम 40-45 औरतें मौजूद हैं, मतलब उनकी प्रेजेंस है और वो हर मोमेंट एक अलग फैमिली से आ रही है. तो कहते हैं ना अगर आपने मदर को एजुकेट कर दिया तो पूरी फैमिली एजुकेट हो गई. तो हमने मदर्स को पकड़ा, मदर्स को बताया कि आपने ये करना है अपने बच्चों के साथ. तो ये मैम बच्चों को अकेला तो नहीं खेलेंगे, हमने कहा तो आप आइए, आपको आपके लिए भी सेंटर है, सेंटर तो सबके लिए है. आप आइए, आपको हम अडल्ट लिटरेसी की क्लासेस देंगे, आप आइए, आपके हस्बैंड आएंगे, हम उनको भी अडल्ट लिटरेसी क्लासेस देंगे, आप हमसे भी सिखाएंगे, आपके बच्चों को हम कंप्यूटर सिखाएंगे, आपके बच्चों को हम ट्यूशंस पढ़ाएंगे. इतना इतना बताने के बाद मैम जो स्टार्ट हुए हैं उस गांव के लोग आना, हम लोग को लग रहा था कि हम शायद कम मोबिलाइज करना चाहिए था, तो हम उसको संभाल पाते इतना स्टाफ होने के बाद भी हमारे लिए वो चैलेंज हो गया कि अभी नहीं कैसे संभालेंगे। फिर ये हो चीज होती रही, फिर हमारे यहाँ मैम एक मैम सीनियर मैम हमारी आती थी, उन्होंने बोला कि कम्युनिटी एक्टिविटीज करते हैं। फिर हम सब लोगों ने कम्युनिटी एक्टिविटीज स्टार्ट करी। हम लोग कम्युनिटीज में गेम्स लेकर जाते थे, कम्युनिटी के बच्चों के साथ वहीं पर गेम खेलते थे। उसके बाद जब हमारा गेम पूरा हो जाता था तो फिर हम अपने मोबिलाइजेशन स्टार्ट कर देते थे, क्योंकि अगर हम मोबिलाइज करने जा रहे हैं तो हम एक ही बंदे से बात कर पाते। उसमें क्या होता था, गेम खेलना स्टार्ट किया, आसपास वाले देख के इकट्ठे हो गए, सारे सोचते थे कि ये कर क्या रहे हैं ये लोग। कभी कभी म्यूजिक बजा देते थे लाउड, लोग घर से निकल के आ जाते थे। फिर मोबाइल लाइब्रेरी की एक्टिविटी हमने स्टार्ट करी, हम लोग वैन में सारी बुक्स स्पीकर्स लैपटॉप्स लेकर जाते थे कम्युनिटी में, वहाँ पर सारे बच्चों को इकट्ठा करना। मैम वहाँ पर बच्चे तो किनारे रह जाते थे और उनके पेरेंट्स बाहर निकल के आ जाते थे, अच्छा आपके पास ये भी बुक है। हमारे पास ब्रेल्स तक की डिमांड आई थी कि आप ब्रेल्स लेकर आइए मैम, बिकॉज क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें ब्रेल्स की जरूरत थी, तो वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं हुआ दोबारा जाना क्योंकि कुछ टाइम की वजह से। फिर ये कोविड आ गया तो वो चीज़ थोड़ी सी बीच में रह गई, बट अब वो हम लोग प्लान करेंगे कि हम ब्रेल्स मंगा करके हमको जाके प्रोवाइड करें। एटलीस्ट उनकी भी तो विश है कि वो पढ़ें, अब वो नहीं पढ़ सकते नॉर्मल बुक्स, तो ऑफकोर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन्हें वो प्रोवाइड करा सकें।
3: अभी हम ऑडियो बुक्स भी लेके आ रहे हैं, हमने टाइप किया है कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्पेशली फ्रॉम फॉर द कम्युनिटी हु आर नॉट एबल टू रीड, ये ऑडियो बुक्स भी प्रोवाइड करा सकते हैं आपके सेंटर में, सो दैट जो नहीं पढ़ सकते किताबें वो ऑडियो बुक्स भी सुन सकें। वेरी वेरी वास्ट वेराइटी ऑफ प्रोग्राम्स आपके यहाँ पे चल रहे हैं सना। आपने मैंने ये देखा कि आपने हेल्थ के ऊपर और लाइफ स्किल्स के ऊपर भी काफ़ी काम किया है स्पेशली ड्यूरिंग द कोविड, थोड़ा आप बताना चाहेंगे कि विद स्पेसिफिक इश्यूज ऑफ हेल्थ एंड लाइफ स्किल्स आपने क्या काम किया है?
2: यस मैम, तो हमने हेल्थ के सेशंस हमारे यहाँ अप्रैल से जनवरी 2019 से स्टार्ट हुए थे, तो उसमें डॉक्टर निधि भाटी जो हमारी कंसल्टेंट है उन्होंने आकर हमारे सेंटर्स पर सेशंस लिए थे। सेंटर के जो बच्चे सेंटर पर मौजूद होते थे वो उन्हें कनेक्ट कर लेते थे अपनी फैमिलीज को ऑनलाइन, तभी भी वो रिकॉर्ड कर लेते थे सेशन अपने फोन्स में हम लोगों, और वो जाकर अपनी मम्मी को बताते थे कि देखिए मैम ने बताया सब्जी ऐसे धो के बनाते हैं, हमने बताया कि ऐसे वॉश करना है, खाना ढक के रखते। तो ये सारी चीजें जो मैम ने बहुत मेहनत करी इन बच्चों के साथ, मैम क्योंकि मैम डॉक्टर है तो जब वो बताती थी तो हम लोग जितना बताते थे उससे ज्यादा उनके बताने से उन्हें समझ आता था कि ये उनको बताते थे बच्चों को ये डॉक्टर है स्पेशली आपसे मिलने आए हैं, आपके लिए सेशन लेने आए हैं। तो सारे बच्चे मतलब एक मैम के एक सेशन में 20-25 ऐसे बेनिफिशियरी हो जाते थे। मतलब फिर उसके बाद मैम ने सेशन लिए, मैम ने हर टॉपिक पर सेशन लिया, उनकी मेंस्ट्रुएशन पर, उनकी फिजिकल फिटनेस पर, उनके हाइजीन पर, उनके न्यूट्रिशन पर। मैम ने 2-3 साल में मैम कॉन्टिन्यूसली सेशन ले रही थी और मैम के सेशन से काफ़ी बच्चे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ मैम बच्चों पर, स्पेशली जो गर्ल्स आती थी ऐसे ऐसे टॉपिक्स निकल कर आते थे निधि मैम के सामने कि मैम मुझे भूख भी नहीं लगती, तो मैम उनको बेस्ट सोल्यूशन बताती थी कि आप ऐसे खाओ, आप टाइम मत बनाओ, आपको इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग खाना चाहिए, फिर आपको धीरे धीरे भूख लगनी स्टार्ट हो जाएगी। मैम से बहुत बच्चे क्वेश्चन पूछते थे, मैम उनके आंसर्स करती थी, क्वेरीज उनकी मैम सारी चीज़ें वो करती थी जो वो बेस्ट अपना दे सकती थी। तो निधि मैम के सेशन बहुत अच्छे चल रहे हैं हमारे सेंटर पे।
3: थैंक यू सना। जब हम आपके सेंटर पे आए तो हमने ये भी देखा कि बहुत ही खूबसूरत चिकनकारी का काम वहाँ पे चल रहा था, चिकनकारी जो क्राफ्ट लखनऊ का तो फेमस है ही और ये आपके एरिया तक भी काफी स्प्रेड आउट है, सो उसके बारे में आप बताना चाहेंगे कि आपने लाइवलीहुड को कैसे प्रमोट किया? बिकॉज मिंट एक बहुत ही कैश क्रॉप की तरह लिमिटेड जो है लाइवलीहुड प्रोग्राम है, सो कैसे आपने और स्पेशली ड्यूरिंग कोविड कैसे अगर महिलाओं को हेल्प हुआ, एक एडिशनल स्किल थी उनके पास, सो क्या इस चीज से उनको थोड़ा बहुत मदद हुई स्पेशली ड्यूरिंग दिस टफ टाइम?
2: चिकनकारी हम लोगों ने स्टार्ट करा था जब हमारा रेस्टोरेंट सेटअप हुआ था, तो चिकनकारी में पहले लोगों को लग रहा था कि यहाँ बनाएंगे तो यहाँ पे कैसे दिखेगा क्योंकि लखनऊ के बहुत करीब है, तो फिर हम लोगों ने तो यही बोला कि आप सीख लो, आपको नहीं पता कि टाइम कैसा आएगा, आपका हमेशा आप खेती नहीं कर सकते। जैसे अभी मैं बाद में इसके बारे में बात करूंगी कि जब जो बारिश हो रही है इसके बारे में बाद में डिस्कस करें, तो मैंने उनको यही बोला था कि आप सीखो, आप पहले देखो चिकन क्या है, आप समझो चिकन का काम कैसे होता है, वो कहाँ सेल होगी नहीं होगी वो हमारी हेडेक है, पूरे इंडिया लिखेगा वो हम देखेंगे कि हमें कैसे अलाउड करता है। आप पहले काम सीखो। तो जो जितनी भी लड़कियां थी, जो बहुत सारे बच्चे मैम ऐसे भी थे जो कहते थे कि मैम हम खेती नहीं करना चाहते, बट हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि अगर हम खेती ना करें तो हम क्या करें। तो मैंने बोला कि यही आंसर है आपके जवाब का कि आप स्किल सीखो, आप चिकनकारी का वर्क सीखो, आप हमारे प्रोडक्शन यूनिट में जो डिजाइनर कुर्ते बन रहे हैं आप उन कुर्तों को सीखो, आप स्टिचिंग सीखो, आप एडवांस स्टिचिंग सीखिए, और आप लिमिट मत रखिए कि अगर आपने सेविंग सीखा है तो आप कंप्यूटर नहीं सीख सकते। आप डेफिनेटली कंप्यूटर के कोर्सेज भी करिए, आप अलग अलग जगह पर वैकेंसी निकलती है, शायद आप हमारे से सीख कर आप कहीं पर काम करने लग जाओ, या चिकन मकारी का वर्क ऐसा है हम आपको काम देते रहेंगे, आपको हम उसका पैसा भी देंगे, हम आपको पे करेंगे, आप जो भी पीसेस बनाओगे जितने बनाओगे हम उसके अकॉर्डिंग आपको पे करेंगे। तो वो लोग पीसेस बनाते थे, हमारे पास थोड़ा सा माल इकट्ठा हुआ, फिर सेलिंग का पॉइंट आया, तो जितने हमारे यहाँ नाम अभी आपने पिक्चर्स डिस्प्ले करे हमारे इतने सारे विजिटर्स आते थे, तो हम लोग हर विजिटर के सामने मिंट, चाहे हमारे कैल्सियम के डोनर्स आए या हमारे कोई भी विजिट सेंटर पर होती थी, हम सारे प्रोडक्ट डिस्प्ले करते थे, और वो उन्हें और ऐसा मैम होता भी था कि वो जनरली विद अ गुड हार्ट को बाई भी करते थे उस चीज़ को। मैंने कितनी बार ये चीज़ रिपोर्ट भी करी है कि वो आते थे और वो हमारे प्रोडक्ट्स बाय करते थे, तो उससे उन लड़कियों के फेस पर जब वो प्रेजेंट होती थी ये इन्होंने खरीद लिया, हमने कहा हाँ तुमने मेहनत करी है इसलिए इन्होंने खरीदा है, इनको ये बाहर भी मिल जाता, ये लखनऊ जाएंगे ये लखनऊ में ले सकते थे, ये दिल्ली जाएंगे दिल्ली में ले सकते थे, बट इन्होंने इसलिए खरीदा क्योंकि तुम लोगों ने मेहनत करी। मैम दैट वो वर्ड्स उन्हें इतना कॉन्फिडेंस देते थे, उनको मोटिवेशन मिल जाता था कि नहीं मैम आप सही कहती हैं, हम सीख लें, हम सीखेंगे इसको।
3: वेरी नाइस, वेरी नाइस। ऐसी कोई स्टोरी जो आप इतने सारे बेनिफिशरीज के साथ काम करते हैं, बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ आप काम कर रहे हैं, इतने सारे आपके कार्यक्रम चल रहे हैं, ऐसी कोई एक दो लाइफ चेंजिंग स्टोरी या इंस्पायरिंग स्टोरीज जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं?
2: श्योर मैम। मैम चिकन की स्टोरी पहले आपको बताते हैं। मैम हमारी जो ट्रेनर थी, ट्रेनर से स्टार्ट करते हैं, मैम उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी सेंटर पे ज्वाइन करने से एक साल पहले। मैम मैंने 3 लोगों का इंटरव्यू लिया, बाद में उनको ही मैंने फाइनलाइज करा जस्ट बिकॉज उनकी क्राफ्ट बहुत अच्छी थी, और जब उनको मैंने सिलेक्ट कर लिया मैम उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि उनके हस्बैंड नहीं है, बिकॉज शी सेड कि अगर मैम हम आपको ये पहले बता देते तो शायद आपको लगता कि नहीं इन्हें रख लेते, बट उनके अंदर वो चीज थी कि नहीं मुझे मेरे स्किल जॉब मिलनी चाहिए, मेरे रीजन के लिए जॉब नहीं मिलनी चाहिए, एंड दैट थॉट चेंज माई माइंड कि नहीं शी इज राइट, उनमें स्किल है। मैम जब फर्स्ट टाइम उन्होंने कुर्ता बनाया और जो मैंने मैम को दिया था गीता मैम को, एंड मैम शी वॉज सो हैप्पी कि मैम ये पहले ही मैम इतनी बड़ी, हम 2 कुर्ते देते सॉरी, एक कुर्ता मैम आपको और एक गीता मैम को, तो मैम शी वॉज लाइक कि ये दोनों मैम इतनी हाई मैम, इतनी हाई प्रोफाइल मैम है, ये हमारे पहले कुर्ते पहनेंगे। मैंने कहा डेफिनेटली पहनेंगी मैम, पहन कर आएंगे और आप देखोगे। तो मैम शी वॉज लाइक मतलब उनकी कोई लिमिट नहीं थी खुशी की कि वो कैसे कुर्ता खुश थी। फिर मैम उन्होंने यहाँ पर 1 साल 1.5 साल तक की जॉब की, ड्यूरिंग कोविड थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ गई थी, बट उन्होंने यहाँ पर 1 साल जॉब किया, एंड मैम शी वॉज एबल टू फीड हर किड्स, उनकी 2 बेटियाँ हैं 1 बेटा है, मैम शी वॉज सो हैप्पी कि मैम आपने मुझे जॉब दिया, मैम मैं अपने बच्चों को सपोर्ट कर पा रही हूँ। दिस मैम हमारे यहाँ की सेकेंड स्टोरी है, एक सेकेंड स्टोरी है मैम जिसको हम लोगों ने महिपाल जी ने जिसकी स्टोरी कवर की थी, गायत्री पाल मैम उसके, वो यहाँ पर सीविंग पहले करने के लिए आई थी बेसिक सीविंग का कोर्स, मैम उसने बेसिक सीविंग में एडमिशन लिया, उसने बेसिक सीविंग किया, फिर उसने कंप्यूटर्स देखे, बोला कि मैम मैं सीखूँ कैसे, मुझे तो इंग्लिश ही नहीं आती। मैम मैंने खुद उसे 3 महीने बैठकर इंग्लिश पढ़ाई है और इतनी मेहनत से पढ़ाई है कि मैम उसने फिर कंप्यूटर कोर्स किया है, देन उसने एडवांस टीचिंग में एडमिशन लिया, फिर मैम उसने एडवांस टीचिंग सीखा, उसके बाद बोलते कि मैम मुझे मेरे पास पैसे नहीं है मुझे मशीन खरीदनी है। मैंने कहा ठीक है तुम मुझसे ले लो, तुम मशीन खरीद लो। तो बोलती मैम आप वापस ले लेंगी? मैंने कहा नहीं हम वापस ले लेंगे, ठीक है तुम जाओ मशीन खरीद लो। फिर दूसरे दिन आके बोलती मैम थैंक यू बट मैंने मशीन ले ली है, एंड मैम एट दिस टाइम उसके पास इतने सारे ऑर्डर्स आते, पूरे गांव के मैम वो कपड़े बनाती है, एंड शी इज सो हैप्पी बिकॉज उसके फादर भी नहीं है अभी, जल्दी एफआईआर हो गए, तो शी इज सपोर्टिंग हर मदर, हर लिटिल ब्रदर एंड सिस्टर फॉर इन देयर एजुकेशन। तो मैम खुद को भी ये फील होता है कि रीड इंडिया के थ्रू हम लोग ये कर पा रहे हैं कि रीड इंडिया ने इतना अच्छे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर रखे हैं कम्युनिटी के लिए कि जो लोग सीख रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत है। मैम ये इसे हम नहीं एनालाइज कर सकते पैसों के साथ, ये जो खुशी होती है हम यहाँ कभी एनालाइज नहीं कर पाएंगे पैसे के साथ, कि हम पैसे तो कोई भी दे सकता है मैम किसी को। मैम ये स्किल उनके साथ लाइफ टाइम है।
3: ये स्किल उनके पास हमेशा रहेगी लाइफ में, कभी भी कोई भी मुसीबत आए, जैसे कि आप बताना चाह रहे हैं कुछ बारिशों के बारे में, आई थिंक अभी जो रेन्स आ रही हैं उसके बारे में, चाहे कोविड हो चाहे ऐसा कोई।
2: मैम ये दोनों चीजों ने यहाँ की मतलब पूरी कम्युनिटी को हिला दिया था। पहले तो कोविड पूरा 20 जैसे गया मैम, सबके बिजनेस बिल्कुल खत्म हो गए, सबके जो भी स्मॉल स्टार्टअप है वो खत्म हो गए, जो जो हालत मैम जो रेट फार्मर्स को यहाँ पर मिला है, मतलब उनको तो ये था कि फसल में ना ऐसे आग लगा देते हैं, इसको बेचेंगे नहीं। मैम इतना वो मायूस हो गए थे बिकॉज क्योंकि रेट ही नहीं आ रहा था। अब इतनी बुरी हालत चल रही है, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता था मैम, गवर्नमेंट के भी हाथ में नहीं थी वो चीज, बिकॉज वो बिल्कुल हो गया था। और मैम कोविड खत्म हुआ फिर दूसरा वेव आया, सेकेंड वेव में मैम जो बचा था जिसके पास वो भी खत्म हो गया। उसके बाद से मैम ये रेगुलर रेन अभी हो रही है, आपको न्यूज में देखते होंगे यूपी में इतने जबरदस्त तरीके से अलर्ट जारी हो गए थे, इतनी ज्यादा बारिश हुई मैम जिसने जो क्रॉप लगाया था वो सब वेस्ट हो गया, पूरा पूरा पानी भर गया। और एक बार ही हो गया, दो बार के मैम कॉन्टिन्यूस 15 दिन बारिश हुई है, 20 दिन बारिश हुई है। ये सारे स्टाफ और बच्चे सेंटर में कैसे आते थे मैम हम लोग जानते, और उससे भी बढ़कर उनके सारे क्रॉप्स बर्बाद हो गए।
3: वेरी हार्टनिंग टू हियर दैट। इस दौरान में अगर किसी की भी कोई कला उनके काम आई है तो शायद जो हमारा मुद्दा है कि एक स्किल आपके पास होना चाहिए, चाहे आज आपको ज़रूरत नहीं है, हो सकता है कभी ज़रूरत पड़ने पे वो काम आ सके उनकी फैमिली के लिए, उनकी लाइफ को जारी रखने के लिए। तो वी होप कि हमारे सेंटर से जिन बच्चों ने या जिन महिलाओं ने कुछ सीखा है उसको वो यूज़ कर रहे हों। सो जी
2: यस मैम, मेरे पास मैम बच्चों के कॉल आने स्टार्ट हुए, बच्चे मिलने भी आए थे सेंटर पर कि मैम आप हमें कुछ काम दे दीजिए। तो मैंने बोला कि ठीक है हम आपको चिकन का देते हैं, आप चिकन का स्टॉक बनाकर आप हमें चिकन करके दो उन कुत्तों पे, हम उनका स्टॉक करेंगे फिर हम उन्हें सेल आउट करके आपको हम आपके अमाउंट देते हैं, तो एटलीस्ट कुछ हेल्प आपकी हो जाएगी। मैंने उन्हें बोला देखो इसीलिए मैंने बोला था कि चिकन सीख लो शायद तुम्हें कल काम आए। उस वक्त मुझे भी नहीं पता था कि ये पैंडेमिक आएगा, फिर ये रेन आएगी, फिर पैंडेमिक सेकेंड वेव आएगा, थर्ड वेव आएगा। तो मैम ये सब चीज़ें वो खुद रियलाइज करने लगे कि स्किल सीखना कितना जरूरी है। फिर मैम वो बाकी अपने फैमिली वाले बच्चों को भी लेके आते कि मैम इनका भी एडमिशन कर लीजिए आप, इन्हें भी सिखाइए।
3: वेरी नाइस, वेरी नाइस। और मैं सभी को बताना चाहूंगी कि हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम लोग वही कपड़ों को हम भी इनकरेज करते हैं कि इवन विद इन द रीड एंटायर टीम हम लोग चाहते हैं कि हमारे सेंटर्स में जो बन रहा है हम भी उसके क्या कहते हैं वी आर एम्बेसडर्स ऑफ दोज प्रोडक्ट्स। तो हम बहुत खुश होते हैं अगर सेंटर से हमें कुछ ऐसा लेने को मिलता है। जिस चिकनकारी कुर्ते की सना बात कर रही थी हमने उसे बहुत पहना है, आप प्लीज़ अपनी ट्रेनर को बता दीजिएगा। इनफैक्ट मैम जो है हमारी वो तो कोशिश करती हैं कि जिस सेंटर पर जाएँ वो ज़रूर वहाँ से एक कुर्ता स्टिच करवाएं, क्योंकि जो आपने बात कही थी ना कि जब उस औरत को लगता है कि उसके हाथ का बना हुआ कपड़ा कहीं बाहर जा रहा है और इतना अप्रिशिएट हो रहा है, उसकी सेल्फ एस्टीम जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है उसके, उसको हम किसी भी लीडरशिप सेशन और किसी भी मोटिवेशनल सेशन से कंपेयर नहीं कर सकते। सो इनफैक्ट हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि जितना हो सके हम इन प्रोडक्ट्स को अपने सर्कल में, अपने मार्केट में, जो हमारा नेटवर्क है रीड का जो नेटवर्क है उसमें प्रमोट करें, चाहे हमारी फैमिलीज हैं चाहे हम लोग खुद हैं। सो प्लीज़ पास दिस मैसेज टू योर टीम ऑल्सो दैट आपके प्रोडक्ट्स काफ़ी जो हैं मतलब मार्केट में अप्रिशिएट होते हैं। सो कीप अप द गुड वर्क एंड आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू कॉल आवर कोर मेंटर डॉक्टर गीता मल्होत्रा, बिकॉज उन्हीं की ये विजन है जिसको हम सब मिल के आगे लेके जा रहे हैं। सो I welcome ma'am to the show. Good evening ma'am. We have Sana from Barabanki today.
4: Yeah, I have been listening the discussions. Sana, your answers were very, very encouraging. Good afternoon. And I highly appreciate your dedication and the commitment you have given to the Reed Community Library and Resource Center in Barabanki in Baragaon. सना बिकॉज मुझे पूरी मेमोरीज मेरी रिवाइव हो गई हैं जब से मैं बाराबंकी जाना शुरू करा था और जगह ढूंढनी शुरू करी थी सेंटर बनाने के लिए व्हेन इंटरैक्टेड विद कैलिसन्स टीम इन यूएस and then we thought that we have to start the work there. जो सबसे पहली कंडीशन हमारी थी कि हम मिंट फार्मिंग कम्युनिटीज को अल्टरनेटिव लाइवलीहुड देंगे, बिकॉज तब हमें पता नहीं था कि पैंडमिक आएगा या कुछ और चैलेंजेस आएंगे लाइफ में. सो वी स्टार्टेड दैट वी विल गिव सेकेंड लाइवलीहुड टू द मिंट फार्मिंग कम्युनिटी बिकॉज मिंट इज अ सीजनल क्रॉप, राइट. And I would like to know from you that how many mint farming communities you reached through your interventions and how many have been benefited from that.
2: Ma'am, we have, as per you know, ma'am, we have reached to till 25 to 30 villages and they have maximum population of mint farmers there. So ma'am, if we calculate like this, that 80% of the population in each village is committed to the center, they are connected, they are coming to the center, they have learned the skills and they have moved out. Ma'am, there are many children in mint. I remember one boy was there, his name was Ram, I think. So he was from mint farming communities and he was working in the farm.

0: आप ये भी किताब है मैम, ये भी बुक है मैम, अगर मैं कुछ मंगाऊं तो मिल जाएगा? वो जाए यस प्लीज आप ऑर्डर दीजिए, हम मैम को लिस्ट फॉरवर्ड करते हैं, मैम मुझे सारी बुक प्रोवाइड करवा दी, मैम हमारे डिमांड्स पर सारी बुक इंडिया में देता है, हेड ऑफिस तुरंत अप्रूव करता है बुक्स की जब भी डिमांड जाती है। आप प्लीज मुझे बताइए आपको कौन सी बुक्स चाहिए, तो मैम ये डिमांड है और बहुत सारे बच्चों की डिमांड है, बुक के लिए हमने डाला था, फिर अप्रूवल होके मैम बुक्स भी आ गई थी हमारे पास, एंड मैम वो लाइक ही वो सिटिंग इन द लाइब्रेरी फॉर 3 to 4 hours रेगुलरली, एंड After that, I won't believe he was in second year only, and he got the job in Lucknow in Fun Mall, and he is earning 15 to 18 thousand per month right now. And he was like, he came with to me with a box, with a sweet box, and he was like, "Ma'am, this is because of you." I said, "I didn't say this. I didn't say this. India didn't say this. Please say thanks to him." Ma'am, these are the stories which inspire me a lot.
1: No, Sana, this is your. Contribution. Teed India is just a facilitator because you are sitting there and you are in touch with the villages. I also wanted to know कि बड़ा गांव में तो बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ पे, तो आसपास के कितने और गांव हैं जिससे कम्युनिटी इतनी दूर दूर से चलकर आती है आपके सेंटर पे, और कोई ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं है जहाँ तक मुझे नॉलेज है, तो आई वुड ऑल्सो लाइक टू लिसन दैट टू रिवाइव माई मेमोरीज अबाउट दैट.
0: Yes, ma'am. Today only I visited one place, Hasnapur, ma'am, and that, ma'am, I was tired by going by car. But, ma'am, the children, the girls from that village is coming to the center on bicycles. Ma'am, I was so shocked. Ma'am, आज मैं सोच रही थी कि वो जब बच्चे आएंगे तो मैंने पूछूंगी कि आप 25 किलोमीटर साइकिल चलाकर आते हो सिर्फ सेंटर के लिए, तो अभी तो वो आए भी नहीं, बारिश होने लगी, बट मैम इतने ऐसे ऐसे विलेजेस है, दिस इज द लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट आई एम टेलिंग यू कि ये 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर मैम 25 to 30 किलोमीटर बहुत टफ है साइकिल चलाकर सेंटर तक आ पाना, एंड मैम दे आर कमिंग 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर मैम इतने इतने डिस्टेंस से लड़कियां आती हैं, और मैम वो आके बस इतना ही करती है, मैम प्लीज हमारा टाइमिंग मॉर्निंग के बैचेस में लगा दीजिए, हम इवनिंग में जाएंगे तो देर हो जाएगी हमें, तो मैम वो सारे बच्चों को हम लोग मॉर्निंग में इंटरटेन करते हैं, सॉरी क्लासेस की हम लोग मॉर्निंग में ही लेते हैं.
1: सना ये बात सुनकर मुझे ऐसे लग रहा है कि उनके पेरेंट्स भी कितने सपोर्टिव हैं, बिकॉज वो भी अलाउ करते हैं कि हमारी बेटियां इतनी दूर साइकिल चला के चली जाए, और उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि एक सेफ स्पेस पे जा रहे हैं, और रास्ते में भी क्योंकि वो ग्रुप में आती हैं इकट्ठी, तो उनको कोई ऐसा चैलेंज फेस नहीं करना पड़ता. दैट इज द ग्रेट अचीवमेंट फ्रॉम योर साइड, बिकॉज you motivate them for continuing their education and they find this space safe, protected, support itna milta hai, books unko yahan se milti hain, knowledge support milta hai, aap unke issues resolve karti hain, to yahi ek community library ka jo services hain you are providing more than what is needed actually, so that is highly appreciated. Main और भी मेरे मन में तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पर मैं थोड़ा और भी आपसे जानना चाहूँगी कि एक तरफ तो आप कम्युनिटी को हैंडल करती हैं, जिनको समझाना, मोटिवेट करना, इनकरेज करना, और फिर उनको टाइम भी देना, और दूसरी तरफ है आपके विजिटर्स जो नेशनल और इंटरनेशनल डोनर्स हैं और जो विजिटर्स हैं, क्योंकि कैलिसंस हैव द ऑफिस इन पुणे, they come to UP quite often before COVID. So, aap kaise apna dono taraf balance bana ke rakhte hain?
0: Ma'am, sometimes so we have the information that they are coming, and sometimes they come like this only. So, because ma'am, I'm very punctual. I'm regular in the office because I don't like taking leaves at all, and I don't allow the staff also to take leaves unnecessarily. So, this is the thing that when they come. Without any information, we all are here. We all are present in the center. So we know that अभी वो आए हैं तो I have to give my at least they take my 1 hour. So I have to stop all the children कि आप लोग लाइब्रेरी में जाके बैठिए, अभी मैं कोई सेशन नहीं लूंगी, अभी मैं इन लोगों के साथ बात कर रही हूँ. फिर मैम उनके साथ पूरा उनको एक्सप्लेन करना पूरे सेंटर के बारे में, कैसे हम काम करते हैं. मैम दे आस्क सो मच अबाउट एवरीथिंग अबाउट इन इंडिया, अबाउट बिकॉज दे आर नॉट द डोनर्स एग्जैक्टली, because they are coming with the donors, so they are from different companies also, so they don't know what is Read India, so I have to explain them each and everything about Read,

0: about the community, about the children coming to the center, what services we are giving at the center, what are the facilities that are being offered to the students in Viridia. So this happens every time, and the visitors are very frequent in Badagaon center. So last year, like pandemic se to abhi tak isse do hi visits hui hain, but 2018 and 19 was full of visitors. Every month there is somebody has to come to the center, and we sometimes feel like surprise that they are saying we are sitting over here in the office, and we see somebody moving inside the office, and I was like, good afternoon sir, tum bhi aap kaam kar rahe ho to ekdam disturb mind mein, and everybody koi aage samne se khada ho jata. I was like, I take 2 minutes to think that who are they, and he's like, kabhi kabhi chehra hi nahi yaad aata ki kaun hai ye. So it happens sometimes with me.
1: And when you deal with the community, then you just simply motivate them, encourage them, listen to their issues, problems, and then you, you know, inspire them to come to the center regularly, right? So these yes, two things go parallel, right?
0: Exactly, ma'am. I remember one story.
1: Yeah, please continue.
0: Ma'am, I remember one story. There was one girl in my beauty section. She was a trainer in beauty and bar. So she was coming from like 7 to 8 kilometers far away. Ma'am, the one boy was there who was continuously usko pareshan karne ja raha tha morning mein aane ke time pe, morning sham ko jaane ke time pe. Then ma'am, she complained 2-3 times to me ki ma'am main nahi aaungi center, ma'am mujhe nahi sikhana, because abhi ghar mein pata chal jayega to ma'am bahut problem ho jayegi mere liye. And she was a trainer, so even though she was a student also, then I had to take care of it. Then ma'am, hamare paas ek prereq tha hamara jo hamare liye committee mein jaake session leta tha. I told her ki abhi ghar pe kuch mat bolo. Then I have told Deepak, aap jao aaj ma'am ko leke ghar बाइक से और आप देखो कि मैम को कौन परेशान कर रहा है. फिर मैम उन्होंने वो जाके घर पे छोड़ के आया, फिर उसने मुझे आकर बताया कि मैम ये है. फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला इस बार को कि आप जाइए, आप एक घर में जाकर कंप्लेन करके आइए कि ये क्यों परेशान कर रहे हैं. मैम एक बार हिमसेल्फ वेंट टू फ्रेंड देयर और उसके बाद ही रिजॉल्व दैट इशू. तो मैम ये सारे चैलेंजेस गाँव में बहुत आते हैं, क्योंकि मैम बिल्कुल सन्नाटा होता है, एकदम रास्ता अंधेरा होता है, बाघ होती है, आसपास बहुत सारे फार्म होते हैं, बाघ होती है जिसमें रोड पे भी आपको ठीक से दिखाई नहीं देता, सारे पेड़ इधर उधर से कवर होते. सो हम वी फेस दीज चैलेंजेस एवरी टाइम विद गर्ल्स विद बॉयज.
1: सना, मेजर ऑफ द पॉपुलेशन इन बाराबंकी एंड बड़ागाम आर मुस्लिम पॉपुलेशन, राइट? एंड मेनी गर्ल्स कम फ्रॉम दीज फैमिलीज टू योर सेंटर. Are there any stories of delayed age at marriage or continuing higher education, convincing their parents that they want to learn more from the REED Center and establish themselves, then they'll get married?
0: Yes, ma'am. And there was one girl, she was coming to the center from 2018 only. So in 2019, when she was about to get married, she came to me कि मैम मैंने तो पहले अपने मम्मी पापा को बोल दिया कि आप शादी तो मेरी कर रहे हो, बट मैं जब तक अपना अपना एडवांस सर्टिफिकेट कोर्स सेंटर से मेरा पूरा भी हो जाएगा तब तक मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं जाना वहाँ. तो मैम शी वॉज लाइक शी स्टेड हियर फॉर 6 मंथ, शी लर्न कम्प्लीटेड हर कोर्स एंड देन शी वेंट बैक. मुस्लिम कम्युनिटीज में तो स्पेशली जैसे बच्चे 10th 12th में लड़कियाँ आ जाती है, पेरेंट्स स्टार्ट सर्चिंग फॉर देयर मैरिज. बट मैम अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन हैज ऑल्सो कम हियर बड़ागांव. आई हैव ऑल्सो अर्लियर डिस्कस दैट कि अभी तो पेरेंट्स काफ़ी अवेयर हो रहे हैं धीरे धीरे, बिकॉज दे सी ऑल अदर कम्युनिटीज की उनके घर में बच्चे पढ़ाई करते हैं, देन दे गेट मैरिड. यहाँ पर भी मैम लोगों का काफ़ी माइंड ट्रांसफॉर्म हुआ है. जितने मेरे कम्युनिटी विजिट्स, जितना मेरा पेरेंट्स के साथ इंट्रैक्शन हुआ है, हम सब लोगों ने उनको यही बोला है कि आप पहले अपने बच्चे को एटलीस्ट फिजिकली फिट हो जाने दीजिए, देन लेट हर गेट मैरिड. एजुकेशन तो बाद में आती है, आपको ये स्किल्स वो भी बाद में आता है, बट लेट हर गेट फिजिकली फिट टू गेट मैरिड. एटलीस्ट वो 18-19-20 साल की होनी चाहिए किसी की भी शादी करने के लिए. मतलब 20 इज वेरी यंग, इफ यू काउंट एज पर द करंट सिचुएशन 20 इज आल्सो वेरी यंग टू गेट मैरिड. सो दिस हैपेंस एवरी टाइम दैट वी हैव टू काउंसिल द पेरेंट्स, वी हैव टू काउंसिल द गर्ल्स एंड दे कम एंड दे यू नो दे डिस्कस विद मी एवरीथिंग, स्पेशली द मुस्लिम कम्युनिटीज.
1: Very nice, very nice. It's very satisfying to know all these things, because it's not only about Muslim community or a Hindu community. The jo hamare regulations bane hue ki mentally, physically, socially, the girl should be prepared to get married. Only then she should get married. और चौथा कंपोनेंट जो अभी ऐड हो रहा है कि शी शुड बी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट आल्सो बिकॉज कोविड हैज टॉट अस मेनी थिंग्स टू बी इंडिपेंडेंट एंड बी रेडी टू यू नो सपोर्ट द फैमिली व्हेन एनी इमरजेंसीज कम इन द फैमिली. सो वो भी हमारे सेंटर की तरफ से आप हमेशा उनको कन्वे करती रहती हैं. सना, अभी हम जो फ्यूचर प्लानिंग की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि हम सैटेलाइट्स भी बना देंगे, राइट? और जब हम सैटेलाइट्स बनाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता थर्ड वेव आएगी या नहीं आएगी, और बाई चांस अगर थर्ड वेव आ जाती है और जो बच्चे 25-30 किलोमीटर दूर से आपके सेंटर में आते हैं शायद वो ना आ पाए, तो उनके लिए जो हम सैटेलाइट्स बनाने की बात कर रहे हैं, तो आप तो कम्प्लीटली तैयार हैं उस काम को करने के लिए,
0: from everywhere after 1 year here and after 1 year in the different villages, because that will help us to build good relations with the community. We will get more people benefited from the center, because it will be moving, like it will be a mobile center, then it will help many people over there. And if you talk about the district library, it will be a very, very good option if we are going with them and we are partnering with them, because that will make an image of Free India more powerful and more accessible to people, because they will know what Free India is and what facilities what we are giving to the children everywhere.
1: Very nice. Actually, the thought process which we are having is also matching, and we can do much more whatever we are committed to. And I'm sure that Barabanki Community Library and Resource Center can do wonders. That I'm sure, under your guidance and commitment, what you're showing to Read India from the past 3 years, and we will also do the impact studies and collect the stories what you are sharing on this platform,
0: sure,
1: so that we can share with the wider community also. At this point, thank you so much for having a brief discussion with me. I would hand over to Smita now.
2: Thank you, ma'am. Thank you for your inspiring interaction with Sana. So, Sana, बहुत ही अच्छा लगा आपकी जो जर्नी है वो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करके. आपकी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया. एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर विद योर चिल्ड्रन, कैसे आपके बच्चे, आई नो यू हैव 4 ब्यूटीफुल चिल्ड्रन, सो इतनी स्ट्रांग मदर को, इतनी स्ट्रांग फैमिली को देख के हाउ दे आर फीलिंग, स्पेशली बोथ ऑफ योर गर्ल, द ट्विंस, द ब्यूटीफुल ट्विंस दैट यू हैव. Anything that you want to share about them, how their lives have been impacted due to this entire, READ initiative being in your village and you being an inspiring person in your own community?
0: Yes, ma'am. From last year, if you talk about COVID only, ma'am, they were like, कुछ करने के लिए नहीं है मम्मा, क्या करेंगे? तो मैंने बोला कुछ नहीं, जब सेंटर खुल रहा है आप सेंटर में आके बैठो, अब बच्चे आते हैं आप उनको पढ़ाओ. इससे क्या होगा, आपकी खुद की नॉलेज बढ़ेगी, उन बच्चों को भी आपसे सीखने का मिलेगा, बिकॉज आप लोग अच्छे स्कूल्स में जाते हो तो आप उन्हें ज्यादा बेटर पढ़ा सकते हो, आप उनका परस्पेक्टिव समझ सकते हो कि क्यों क्या है. आई मीन दैट वर्ल्ड, सारे छोटे बच्चों को अभी तक नवाल देवर टेकिंग द क्लासेस देयर, एंड दे टेक सो गुड क्लासेस ऑफ द स्मॉल चिल्ड्रन, एंड दे आर लाइक, मैम आप पढ़ाइए, दीदी को बोल दीजिए पढ़ाने के लिए, तो आई एम लाइक ओके जाओ पढ़ा दो आप. सो इट इज हैपन मैम, यस मैम, आई एम It helps, ma'am. Every child, if they share their knowledge with each other, they learn also, and everybody learns. I am learning till date, ma'am. I have learned so much from you, from Geeta, ma'am, from everybody. So, the learning is never ends. I believe that.
2: And आपके parents को कैसा लगता है आज वो सना है जो शायद कहीं पे अपनी education भी complete नहीं कर पा रही थी और आज वो लोगों तक education को पहुंचा रही है?
0: Ma'am, actually, my parents are separated. That was the reason I got married earlier. So, ma'am, papa ke saath aisa koi connection hi nahi hai. But my mother feels very proud of us because the three of us are very, you know, active. And my other sister, you know, my sister is living in Hong Kong also. She is also working for an NGO only. And very she's nice. Working from past 7 years. So we both are very social and we help each other a lot in everything.
2: Very nice, Anna. Any last message that you want to give to young girls or women who are in the same position or your community?
0: Yes, ma'am. Ma'am, only I can say only one thing. If you're getting married, if your parents want you to get married early, maybe any because of any reason, आपको ये चाहिए कि आप give up मत करो किसी भी lifestyle किसी भी you know life stage पर just don't give up and keep learning. That will help you for your entire life. Nothing much, ma'am.
2: On those inspiring lines, if there's nothing else, then we can close this session for today. Thank you so much, Sana, for sharing your such a beautiful and inspiring journey. Thank you, Gita ma'am, for constantly mentoring us. And thanks to Shushank for moderating the session. We wish you all the very best, Sana. Hopefully, you reach all the communities. And whatever your satellite centers are, they will be as successful as your present center. Thank you so very much for joining us. And we thank our viewers also for patiently viewing our program. We can end the session. We will join you again on Friday with another exciting program on Culture Now.

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: मेरा नाम दिव्यांशु अहमद खसा आठवीं का छात्र हूँ। मैं आज आप सभी के सामने गुरु के ऊपर चार लाइनें बोलना चाहता हूँ। अक्सर अक्सर हमें सिखाते शब्द शब्द का अर्थ बताते, कभी डांट से कभी प्यार से जीवन जीना हमें सिखाते।
1: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी उनकी जुबानी।
2: मेरा नाम आरिफा है, मैं 19 साल की हूँ, मैं बीए फर्स्ट ईयर में हूँ और मैं पीडब्ल्यूडी कॉलोनी बदोटोला रामपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरी फैमिली 5 मेंबर्स है, जिसमें मेरे पापा बैंड का काम करते हैं और वे बैंड में गाना गाते हैं। मेरे छोटा एक भाई है और एक बहन है जो कि अभी पढ़ाई कर रहे हैं और मेरी मम्मी हाउस वाइफ है। एक दिन रीड इंडिया का स्टाफ मेरे गांव में सर्वे करना है, जहां इन्होंने हमें अलग अलग कोर्सेज के बारे में बताया। यहां आकर मैंने अपना कंप्यूटर कोर्स में रजिस्ट्रेशन कराया और मैंने कंप्यूटर कोर्स की ट्रेनिंग कंप्लीट करी। यहां आकर मुझमें काफी कॉन्फिडेंट भी आया और स्किल भी अच्छी हुई। पहले मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाती थी और अब मैं लोगों से कम्युनिकेट भी कर पाती हूँ। एक दिन रीड इंडिया के स्टाफ ने मुझे जॉब के बारे में बताया और मैंने होलीचरण इंटर कॉलेज में जाकर अपना रिज्यूम लगाया और सर्टिफिकेट भी दिया। वहाँ उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था और इंटरव्यू में मैं क्लियरली पास हो गई थी। होलीचरण इंटर कॉलेज में अब मैं एज ए कंप्यूटर टीचर जॉब कर रही हूँ। यहाँ मुझे 5000 रुपये सैलरी मिलती है। मैं अपनी सैलरी से काफ़ी खुश हूँ क्योंकि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पा रही हूँ और मेरी फैमिली भी मुझसे काफ़ी खुश है। मैं रीड इंडिया को थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि इन्होंने मेरी इतनी हेल्प करी है और मुझे एक अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी भी दी। रीड इंडिया का स्टाफ और रीड इंडिया को मैं अपनी तरफ से थैंक यू बोलना चाहती हूँ।
3: मेरा नाम आशानाज है, मैं रामपुर यूपी के एक पटवाई नाम के गांव में रहती हूँ। मेरी उम्र 23 साल है और मैंने 2019 में अपना बीए पूरा किया था और बीए के साथ साथ मैंने स्पीकिंग एंटिटी नर्स लाइब्रेरी और कंप्यूटर की ट्रेनिंग भी ली है और क्राफ्टिंग एंड ड्राइंग मेरी स्पेशलिटी है। मेरी फैमिली में 5 मेंबर हैं, मेरे पापा मम्मा मेरे 2 भाई। मेरे पापा की टायर सेलिंग की दुकान है। मेरे घर में मेरे पापा और मेरे बड़े भाई कमाते हैं, जिसमें मेरा छोटा भाई और मैं पढ़ाई करते हैं। जैसे कि मैं एक पटवाई गांव से हूँ जहाँ पे पढ़ाई को इतना महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन मेरा था कि मुझे सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे अपने ड्रीम्स खुद से पूरे करने हैं, अपने पेरेंट्स के ड्रीम्स पूरे करने हैं, जिसके लिए मुझे पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता जो फैमिली वाले अलाउ नहीं करते थे। फिर 2017 में मुझे पता चला कि हमारे पटवाई में रीड इंडिया नाम से एक सेंटर खुल रहा है जहाँ पे तरह तरह की ट्रेनिंग्स होती हैं। मैं ओपनिंग में आई, मुझे अच्छा लगा, मैंने वहाँ पे कंप्यूटर और लाइब्रेरी में एडमिशन लिया। मैंने वहाँ पे लाइब्रेरी और कंप्यूटर की ट्रेनिंग ली। उसके साथ साथ मैं वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करती थी। मेरी फैमिली वालों को रीड स्टाफ पे बहुत भरोसा हो गया था। मैं अपना ज़्यादातर टाइम सेंटर पर ही बिताया करती थी। फिर मुझे पता चला कि हमारे पटवाई में ही रीड इंडिया की तरफ से एक स्कूल भी खुल रहा है जहाँ पर टीचर की ज़रूरत है। फिर मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया, वहाँ पे 15-20 लड़कियों का इंटरव्यू हुआ जिसमें से थैंकफुली मेरा सिलेक्शन हुआ। वहाँ से मुझे आगे बढ़ने का मौका मिला। तो थैंक यू सो मच रीड इंडिया मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज करने के लिए। थैंक यू सो मच।
4: आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम ईशा चौहान है, मेरी उम्र 40 वर्ष है, मैंने एमए बीएड किया है, मैं रामपुर ज्वाला नगर में रहती हूँ। मैंने बहुत सारे पर्सनल कोर्स किए हैं जैसे कंप्यूटर, सिलाई, पार्लर, कम्युनिटी एलिमेंट्री का कोर्स किया है और कुछ मेरी हॉबीज भी हैं जैसे बुक रीडिंग करना, डांस करना, क्राफ्टिंग। मेरी फैमिली में 4 लोग हैं, मेरे हस्बैंड, 2 बेटे। मेरे पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं जो अब रिटायर्ड हैं और मेरे हस्बैंड एक छोटी सी प्राइवेट जॉब करते हैं, टीचर हैं, जो कोरोना की वजह से उनकी जॉब छूट गई। तो मैं ही एकमात्र महिला हूँ अपने परिवार में कमाने के लिए और मेरे फैमिली की कंडीशन काफी बेटर नहीं है और सब कुछ मेरी जॉब पे ही टिका हुआ है। जैसे मुझे पढ़ने का शौक था, मुझे पता चला कि आकापुर में एक लाइब्रेरी है तो वहां मैं पढ़ने के लिए जाती थी, जैसे हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर और सारे सब्जेक्ट वहां से पढ़ती थी, अपनी स्टडी जारी रखती थी। तो वहां के स्टाफ ने मुझे बताया कि स्कूल ओपन हो रहा है, वहां पर रिक्वायरमेंट है टीचर की। मैंने अपना रिज्यूम लगाया, मेरा सिलेक्शन हो गया और वहां से मेरी लाइफ स्टार्ट होती है। मैंने वहां जाकर काफी सारे कोर्स करे जैसे सिलाई, कंप्यूटर, पार्लर, कम्युनिटी एलिमेंट्री का कोर्स किया। मोस्टली एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स करने के बाद मुझे काफी कुछ सीखने को मिला, मैं कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, मेंटेलिटी कैसी होती है बच्चों की, पेरेंट्स को कैसे डील किया जाता है, एक्टिविटी द्वारा बच्चों को कैसे डील करते हैं, पढ़ाते पढ़ाते उन बच्चों को कैसे खेल के द्वारा पढ़ाएं, शौक उनकी कैसे उनकी मेंटेलिटी को समझें, उनकी उनकी बातों को समझें, इस सब मैंने एलिमेंट्री एजुकेशन से सीखा है। और मेरे अब आगे ये लक्ष्य है कि मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट बनूं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करूं और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दूं, और इसके लिए मुझे रीड वाले भी काफी सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू रीड इंडिया, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

आज हम जो बात करने जा रहे हैं, हमने पहले स्लाइड्स में बात करी थी कि हम सबके गोल्स हम डिफाइन करते हैं। लीडर्स हमेशा अपने गोल्स डिफाइन करते हैं और उस पे बाय हुक एंड क्रूक, वेदर दे स्टैंड अलोन, वेदर दे हैव चैलेंजेस, वेदर दे हैव पीपल दोज हु आर नॉट सपोर्टिंग देम, दे वॉक थ्रू ऑल दीज थिंग्स। तो इसको क्या बोलते हैं, चेजिंग योर गोल्स। हम अपने गोल्स को चेज करते हैं कि हम कैसे उनको फुलफिल करें। तो जब हम अपने गोल्स चेज करते हैं, हमारे ड्रीम्स, हमारे एम्बिशंस, तो हमें डिसरिगार्ड द पीपल हु टेल यू इट कैन नॉट बी डन। जो लोग बोलते हैं कि ये तो हवा में बात है, ये हम नहीं कर पाएंगे, ये नहीं हो सकता, तो उन लोगों को डिसरिगार्ड ही कर देना चाहिए, ठीक है? क्योंकि वो क्या होगा, अगर 10 में से 5 लोग बोल रहे हैं नहीं हो सकता, तो आपकी 50% एनर्जी तो उन्होंने लाइक वैनिश कर दी, बिकॉज यू ऑल्सो गेट कंफ्यूज वेदर वी आर एबल टू डू और नॉट, राइट? तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में सुनना नहीं चाहिए, और इसका यही मकसद है। डिसरिगार्ड मींस, मैं ये नहीं बोल रही कि बिल्कुल बायकॉट कर दो उनके साथ। डिसरिगार्ड मींस डोंट वेस्ट योर एनर्जीज, योर टाइम, योर पेशेंस टू लिसन टू देम, दोज हु आर सेइंग इट कैन नॉट बी डन, बिकॉज यू एज अ लीडर हैज सम मिशन, मीनिंगफुल काम करना है आपको। तो अगर आप मीनिंगफुल काम करने में कोई भी ऐसे बोल रहा है कि ये नहीं हो सकता, तो वो हमें नजरअंदाज कर देना, हमें सुनना ही नहीं है। टर्न अ डेफ ईयर टू क्रिटिक्स, राइट? बिकॉज क्रिटिसिज्म करना बहुत इजी है, पर साथ चल के काम करना बहुत टफ है। तो मैं ये भी हमेशा अपनी टीम को बोलती हूँ कि अगर कुछ नहीं हो रहा फील्ड पे, तो हमें एनालाइज करने की भी जरूरत है कि शायद वो कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और उनको हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, राइट? सो व्हाट यू अचीव इन लाइफ विल बी लिमिटेड ओनली बाय योर एम्बिशंस। कुछ एम्बिशन होगी लाइफ में कुछ करने के लिए, विदाउट एम्बिशन तो लाइफ ही नहीं है, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। तो जब हमें कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना है, तो हमारे एम्बिशंस तो है ही है, राइट? और अगर हम अपनी अचीवमेंट्स को कम करेंगे, तो हमारे एम्बिशंस भी लिमिटेड हो जाएंगे, और अगर हम अपनी अचीवमेंट्स के ऊपर, अपने गोल्स के ऊपर काम करते रहेंगे, और नेचुरली रिजल्ट आएगा। क्योंकि पिछली बार मैंने बोला था कि अगर पॉजिटिव रिस्पांस है, पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव सोच है, तो व्हेन वी लर्न हाउ टू गिव द रिटर्न विल बी डेफिनेटली देयर, राइट? तो ये वहां भी फिट इन होता है कि व्हाट यू अचीव इन लाइफ विल बी लिमिटेड ओनली बाय योर एम्बिशंस। गिव अप चेजिंग योर ड्रीम्स इज वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, बट गेटिंग टू योर गोल्स एंटेल्स हार्ड वर्क, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और हमें अपने आप को ऐसे ट्यून करना है कि हम मेहनत करें। हम सब लोग मेहनत कर सकते हैं और कर भी रहे हैं और करेंगे भी, पर अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना है, अपने आप को टाइम देना है, अपने घर को टाइम देना है, अपने काम को टाइम देना है, और हम कैसे हार्ड वर्क करें, ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है। मैनी गिव अप एट द थॉट लेवल, कि जब हम थॉट ही लेते हैं अपने माइंड में, हम सोचते ही हैं, तो हम कह देते हैं नहीं नहीं नहीं ये तो नहीं हो सकता, इसको तो सोचना ही बेकार है, राइट? होता है ना ऐसे हमारे साथ? और बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं एक्शन लेवल पे। 3-4 दिन काम किया, 5 दिन किया, महीना किया, फिर वी गिव अप, नो आई एम नॉट फाइंडिंग एनी वैल्यू, एनी इंटरेस्ट, एनी थिंग इन इट, बिकॉज वी आर नॉट विजनरीज, राइट? दोज हु डिफाइन द गोल्स विद वर्ड्स, थॉट्स एंड एक्शन गो अहेड टू देयर लैडर अप। हम बोलते हैं, मतलब कि हम कमिट करते हैं, हम उसके ऊपर सोचना शुरू कर देते हैं और अपनी सोच को एक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, और हम साथ साथ सीढ़ियां चढ़ते रहते हैं अपनी प्रोग्रेस की तरफ, तो हम
Somehow we are able to realize our dreams. Somehow we are able to, ambitiously do the things what we want to do. Do you all agree with me what I have said? Chasing your goals. बिल्कुल ये practical चीजें हैं. मैंने कोई theory नहीं लिखी है यहाँ पे. सारी ये practical day to day हमारी life में हमारे साथ ऐसे ही होता है. तो हम एक स्टोरी छोटी सी मैंने लिखी नहीं है प्रेजेंटेशन में. आई विल जस्ट नरेट अ स्टोरी टू यू. सब लोगों को पता है फ्रॉग उछलता है, छोटे छोटे स्टेप लेके उछलता है बहुत. एक बार एक बहुत सारे फ्रॉग्स इकट्ठे जमीन पे थे और अगर उन अपनी निगाहें ऊपर करके देख रहे थे कि बहुत बड़ा टीवी टावर है. एंड दे कलेक्टिवली डिसाइडेड कि आज हम टीवी टावर पे क्लाइंब करके चले जाते हैं. राइट तो चलना शुरू कर दिया उन्होंने ग्रुप में. थोड़े जो बहुत ज्यादा तेज छलांग मार सकते थे वो ज्यादा तेज आगे बढ़ गए, जो कम छलांग मार सकते थे वो पीछे पीछे थे. कुछ ने तो वहीं पे ग्राउंड पे ही छोड़ दिया और जोर जोर से आवाजें लगाने शुरू कर दी कि पागल हो, क्यों जा रहे हो, गिर जाओगे, इतनी ऊपर जा रहे हो, किसी के पैर के नीचे आ जाओगे, दब जाओगे, ऊपर पहुंच गए तो वापस कैसे आओगे, कोई आपको वहां से गिरा देगा. मतलब कि दे वर शाउटिंग इन देयर ओन लैंग्वेज. तो तीन चार ऐसे फ्रॉग्स थे जो आगे बढ़ गए और टीवी टावर तक पहुंच गए. एंड दे वर वेरी हैप्पी रीचिंग द टीवी टावर. ऊपर टॉप में पहुंच गए एंड दे सेड ओ गॉड इट्स अ ड्रीम फुलफिल्ड. और वहां से फिर नीचे आ गए क्योंकि उन्होंने अपनी यात्रा पूरी कर ली थी. वहां पे अपना झंडा लगा दिया उन्होंने कि हमने तो टीवी टावर के टॉप पे पहुंच गए. जब वापस आए तो नीचे जो फ्रॉग्स बैठे हुए थे उनकी वेट कर रहे थे जो आधे रास्ते से पहुंच गए. जब वापस आए तो नीचे जो फ्रॉग्स बैठे हुए थे उनकी वेट कर रहे थे जो आधे रास्ते से वापस आ गए थे और जो गए ही नहीं थे, थॉट लेवल पे ही गिव अप कर दिया था, वो सारे बैठे और उन्होंने वो दो तीन जो फ्रॉग्स थे उनसे एक एक करके पूछा कि तुम लोग कैसे चले गए वहां पे. और जो भी हमने तो इतना शाउट किया था मत जाओ, डर रहे थे हम लोग, तो जिसने टॉप पे पहुंच गया था ना वो फ्रॉग कहता है कि मैंने तो कुछ सुना ही नहीं आप क्या कह रहे थे मुझे, क्योंकि मैं तो बहरा था. वो फ्रॉग ही बहरा था, उसने कुछ सुना ही नहीं. लोग चिल्ला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसने आसपास परवाह ही नहीं करी कि क्या हो रहा है, क्या शोर आ रहा है, क्या नहीं आ रहा. बस उसके माइंड में तो एक ही था कि मुझे टीवी टावर पे जाना. तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसके. टर्न ए डेफ ईयर टू क्रिटिक्स. तुम सुनो ही नहीं कि लोग क्या बोल रहे हैं, कि तुम्हारा मिशन इतना क्लियर है, तुम्हारा गोल इतना क्लियर है कि आपको वो कंबाइन करना है. बाकी के दो से पूछा कि तुम्हारा क्या था, मतलब कि तुम कैसे चले गए ऊपर. तो उसने बोला कि हमने ये जो डेफ फ्रॉग था उसको फॉलो किया बिकॉज हम यही सोच के चल रहे थे कि अगर ये हमारा लीडर है, हमें रास्ता दिखा रहा है, तो हम तो इसके पीछे पीछे चलेंगे तो हम तो पहुंच ही जाएंगे ऊपर. तो हमने तो क्रिटिसिज्म को बॉदर ही नहीं किया, रास्ते में हमने किसी की परवाह नहीं करी और हम इसके पीछे पीछे पीछे पीछे चल के ऊपर पहुंच गए इसके साथ. तो ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे. और फ्रॉग बहुत टिमिड होता है देखा जाए तो, बहुत छोटा सा होता है. तो वो क्या टीवी टावर पे चढ़ने का, तो वो उसने तो अपनी लाइफ में इमेजिन ही नहीं किया होगा कि कभी टीवी टावर पे मैं चढ़ जाऊंगा. पर उसका गोल बहुत क्लियर था, उसका माइंड में बहुत ही पावर थी कि उसको चढ़ना है. और दो लोग जो उसके साथ चढ़े वो उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे क्योंकि उनका ट्रस्ट फैक्टर था उसके ऊपर कि ये अगर चढ़ जाएगा तो हम भी चढ़ जाएंगे. तो ये इन नटशेल इस स्टोरी को आप प्लीज याद रखना और अपने गोल्स को कैसे चेस करना है वो इस स्टोरी के माध्यम से. बहुत इजी स्टोरी है और इस माध्यम से आप जरूर अपने गोल्स को चेस कर लोगे और पहुंच भी जाओगे. तो आई फाउंड दिस स्टोरी वेरी इंटरेस्टिंग. आई थॉट लेट मी शेयर विद यू. बहुत लंबी स्टोरी थी, मैंने तो उसका जिस्ट बताया आपको.
आई थिंक वी शुड लर्न फ्रॉम दीज स्मॉल स्मॉल स्टोरीज एंड अचीव आवर बिग गोल्स. नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स इन लाइफ्स, फोकस ऑन गैप्स एंड रिजॉल्व. हर एक की लाइफ में प्रॉब्लम्स है, हर एक के काम में प्रॉब्लम्स है. वी ऑल फेस प्रॉब्लम्स इन लाइफ्स. वी एनकाउंटर हर्डल्स दैट सीम टू ब्लॉक आर प्रोग्रेस. बहुत सारे हर्डल्स आती हैं और हमारी जो अचीवमेंट है उसको वो ब्लॉक कर देती है. वी ऑलवेज डिस्कस एंड हाईलाइट द हर्डल्स एंड आर ऑब्सेस्ड बाय देम एंड फेल टू ऑब्जर्व द अपॉर्चुनिटीज दैट मे बी ओपनिंग अप इन फ्रंट ऑफ अस. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये जब मैं पढ़ रही हूँ तो सुबह मैं जब अपनी टीम के साथ बात कर रही थी तो ये बहुत फिट बैठती है वहां पे कि हम हाइलाइट्स करते हैं जो हर्डल्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, और हम उस इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं उसके साथ कि हम हमेशा फेलियर्स की ही बात करते हैं. पर उसमें से एक जो रे ऑफ होप है, जो एक सनशाइन की छोटी सी किरण है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं. और उसमें से जो हमें अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं, जो हमारे सामने आने वाली हैं, हम उसको बिल्कुल ही उस ब्राइटनेस से नहीं देखते जैसे मैं एक सन की रे की ब्राइटनेस की बात कर रही हूँ. तो अल्टीमेटली वही है चीज जो मैंने पहली स्लाइड्स में बोला.

था कि हम हमेशा क्रिटिसिज्म में आ जाते हैं, हम अपनी परेशानियों को ज्यादा लेके बैठ जाते हैं, हम अपने सॉल्यूशंस की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और जो हमें अपॉर्चुनिटीज, कई बार ऐसे होता है कि हम 80% अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर जाते हैं और 20% में हम फिर नीचे डाउनफॉल आ जाता है। हम अपने आप को इतना स्ट्रांग नहीं बना पाते कि हम 20% और मेहनत कर रहे हैं तो शायद हम आगे बढ़ जाएंगे। तो इस चीज का भी हर समय हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं बहुत आई एम वेरी पॉजिटिव इन द सेंस कि आई एम वेरी आई नो एवरीथिंग कि चैलेंजेस क्या आते हैं, बट उन चैलेंजेस को लेके बैठे रहेंगे तो कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। पर अगर हम अपॉर्चुनिटीज को भी देखेंगे कि क्या है, तो तभी आपको पता है ट्रेनिंग्स में हम बहुत सारे साइंटिफिक टूल्स भी यूज करते हैं, स्वॉट एनालिसिस दिस दैट, पर द मेजर स्वॉट एनालिसिस इज योर थॉट प्रोसेस विच इज द इनर वॉइस व्हाट इज टेलिंग यू, राइट? दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। वी फोकस ऑन प्रॉब्लम्स रादर देन द सॉल्यूशंस। The psychologists have proved that what your mind focuses on that tends to grow. Scientists ये भी कहते हैं कि हमारे ब्रेन में 80% जो नेगेटिविटी है वो इतनी हावी हो जाती है कि हमें पॉजिटिव सोचने ही नहीं देते। पर हमें अपने आप को, अपने माइंड को, अपने ब्रेन को ऐसा ट्यून करना है कि हम हमेशा पॉजिटिव सोचें और अपॉर्चुनिटीज की तरफ बढ़ें। और अपॉर्चुनिटीज ऐसे डोर स्टेप पे तो बहुत ही कम आती हैं, अपॉर्चुनिटीज को भी चेज करना पड़ता है। और अपॉर्चुनिटीज को चेज हम तभी कर सकते हैं जब हम 100% कमिटेड हैं अपने गोल की तरफ कि हमें ये करना ही करना है। अल्टरनेटिव्स आ जाते हैं, ये सारे जार्गन्स हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन में कहते हैं ना कि हम एक अल्टरनेट स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। व्हाट इज स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी इज लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज। अगर एक रास्ता बंद है तो दूसरा रास्ता कहाँ खुल रहा है, तीसरा रास्ता हमें कहाँ लेके जाएगा, हम कैसे उस रास्ते पे चलें कि हम अपने जो पड़ाव है उनको पार कर लें। सो द प्रॉब्लम्स लुक बिगर, फोकस ऑन गैप्स एंड रिजोल्व द प्रॉब्लम्स। द लास्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अगर गैप्स को एनालाइज कर लें और हम उसके ऊपर बातचीत करें अपनी टीम के साथ कि हम इन गैप्स को कैसे रिजॉल्व करें, तो हमारे प्रॉब्लम्स के बहुत सारे सॉल्यूशंस हम खुद ही निकाल सकते हैं और हमें किसी से मदद लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द बेस्ट क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर्स आर विजन। ग्रेट लीडर्स हैव अ विजन, they can see into the future, they have a clear exciting idea of where they are going and what they are trying to accomplish and are excellent at strategic planning. maine bahut simple words mein pehli do slides mein bataya, ye definition hai ki great leaders vision hoti hai, hum bahut der se baat kar rahe hain iski. they can see the future, wo jo main ray of sunlight ki baat kar दे हैव अ वेरी क्लियर एक्साइटिंग आइडियाज, उनके आइडियाज बहुत क्लियर हैं, बहुत एक्साइटेड हैं, एंड दे आर गोइंग वेयर दे आर गोइंग एंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू अकॉम्प्लिश, वो उनको सब क्लियर है, एंड दे हैव वेरी एक्सेलेंट वेरी गुड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ऑल्सो। तो जो लीडर्स हैं उनमें ये सब हुनर है और इन हुनर को शेप दे के वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वही विजनरी कहलाते हैं। दूसरा क्या है? करेज। वन ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर इज करेज। अब वो फ्रॉग में तो करेज ही था जो नीचे से जमीन से खड्डे में से निकल के टीवी टॉवर पे क्लाइम कर गया। हैविंग द क्वालिटी ऑफ करेज मीन्स दैट यू आर विलिंग टू टेक रिस्क इन द अचीवमेंट ऑफ योर गोल्स With no assurance of success. अब आज अगर मैं आपको कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करती हूँ, मैं प्रपोजल लिखती है, स्मिता हम शुरू करते हैं प्रोजेक्ट, मुझे ये तो नहीं पता कि इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, मैं बिल्कुल नहीं डिफाइन कर पाती हूँ। क्या मुझे पता था कोविड आ जाएगा जब हम प्रपोजल लिख रहे थे? पर हमने क्या किया, कोविड में हमने स्ट्रैटेजी चेंज कर दी, हम ICT प्लेटफॉर्म पे आ गए और हम
बेटर अचीव कर पाए क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन पे कनेक्ट कर लिया और हमारे कार्यक्रम कहीं पे भी रुके नहीं। तो करेज था कि हम कैसे करें। अभी बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं वो बंद पड़े हैं जो सितंबर 2020-21 में खुलेंगे, बट हम सेंटर्स भी खोल के बैठे हैं, हम ऑफिस भी खोल के बैठे हैं, हम ट्रैवल भी कर रहे हैं बिकॉज वी आर टेकिंग द रिस्क। व्हाई रिस्क? रिस्क इज नॉट ओनली फॉर माय ओन जॉब, रिस्क इज फॉर द वर्क द होल ऑल द सेंटर्स ऑफ रीड इंडिया इज डूइंग इन इंडिया। दे आर रीचिंग टू 400,000 प्लस पीपल। उनका क्या होगा? वो काम कहाँ जाएगा? वो गोल तो अचीव करना है हमें, तो वो कलेक्टिव गोल है जो हमें अचीव करना है, तो हम रिस्क भी ले रहे हैं, राइट? और मुझे एश्योरेंस नहीं है सक्सेस की। मुझे आज नहीं पता कि रीड इंडिया का अगले साल एनुअल टर्नओवर क्या होगा, बिकॉज बस हम मेहनत कर रहे हैं, हम प्रपोजल्स लिख रहे हैं, हम डोनर्स को कनेक्ट कर रहे हैं, हम एग्जिस्टिंग डोनर्स इफ बेनिफिशरीज हैं इस लाइन पे, मैं उनको भी एजुकेट करना चाह रही हूँ इस लेवल पे कि हमारे जो डोनर्स हैं हमारे साथ पिछले 6-6 साल से काम कर रहे हैं, क्या है? ट्रस्ट है। क्या देखते हैं? कि ग्राउंड पे हम अच्छा काम कर रहे हैं। क्यों हमारे साथ बातचीत करना चाहते हैं? क्योंकि हम उनको फुल रिस्पेक्ट और बहुत डिग्निटी से हम उनके सामने बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है कि हम कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं उनके सामने। जो रियलिटी है वही हम उनको बताते हैं कि ऐसे रियलिटीज हैं, ये चैलेंजेस हैं, हम इसको फेस कर रहे हैं। कोविड के दौरान हमने उनको बोला कि हम नहीं ट्रैवल कर पाएंगे, इट वॉज यूनिवर्सली नोन टू एवरीवन, बट हम आईटी प्लेटफॉर्म पे आ गए। आईटी प्लेटफॉर्म को कैसे यूज करना है? इमीडिएट नीड्स क्या है? कम्युनिटी की मास्क चाहिए, खाना चाहिए, सैनिटाइजर्स चाहिए। इमीडिएटली दे शिफ्टेड टू ऑल दीज थिंग्स। किसने उनको बोला करने के लिए? हम ही ने बोला। तो ट्रस्ट फैक्टर इतना स्ट्रांग था कि उन्होंने हम पे विश्वास किया। और कोई ऐसा डोनर नहीं है एक्सेप्ट 1 or 2 अमॉन्ग 13-14 डोनर्स जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं कि किसी ने एक साल में ही हमारे साथ काम करके बंद कर दिया हो। दे ऑल आर कंटिन्यूइंग विद अस। सो बिकॉज देयर इज नो सर्टेनिटी इन लाइफ और बिजनेस, एवरी कमिटमेंट यू मेक एंड एवरी एक्शन यू टेक एंटेल्स अ रिस्क ऑफ सम काइंड। हम कुछ भी करते हैं उसमें रिस्क तो है ही है, पर हम रिस्क को सोच के बैठे रहेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। हम करके उस रिस्क को कैसे मिटिगेट करेंगे, वो हमारा एक्शन है, राइट? तो जब हम कहते हैं वर्ड्स थॉट्स एंड एक्शन, तो जब हम एक्शन लेते हैं तो हम रिस्क को साथ में लेके चलते हैं और रिस्क को मिटिगेट करना भी हमें सिचुएशंस सिखाती हैं, राइट? तो दिस इज वेरी गुड क्वालिटी ऑफ ए लीडर। आप लोग सब ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, आपका रोजमर्रा का ये काम है कि आप क्या रिस्क आपके सामने आ रहे हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, और आपको नहीं पता। आपको पता था आपके स्कूल बंद हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं पता था। आपने जब स्कूल चलाए थे तो आपने हमें तो नहीं ये कमिटमेंट दी थी कि एक साल के बाद हम आपको इतना प्रॉफिट देंगे, क्योंकि हम बिजनेस की तो बात ही नहीं कर रहे थे। तो चैलेंजेस हमने भी समझे आपके, हमने कॉन्टिन्यूसली सपोर्ट दी, बट विजन हमारी एक थी कि हम पूरे भारत में स्कूल चलाएंगे, हम पूरे भारत में लाइब्रेरीज बनाएंगे, हम पूरे भारत में औरतों को सक्षम करेंगे, हम पूरे भारत में आत्मनिर्भरता का नारा लगाएंगे कि हमने औरतों को सक्षम बनाया, वो अब अपना पैसा कमा रही है, चाहे 2,000 कमाएं, चाहे 4,000 कमाएं, चाहे 6,000 कमाएं, राइट? और हमारी कोशिश हमेशा रहेगी उनको हम 2,000 से 6,000 तक लेके जाए, 6,000 से 12,000 तक लेके जाए। ये कोशिश हमने करनी है। सेंटर्स को सेल्फ सस्टेन करना है, ये हमारा गोल है, हमारा मिशन है। हम कैसे करें उसको हमें करना है। जो मैं अभी ट्रूथफुलनेस की बात कर रही थी, इंटीग्रिटी में वही लिखा हुआ है, इंटीग्रिटी रिक्वायर्स दैट यू ऑलवेज टेल द ट्रूथ टू ऑल पीपल इन एवरी सिचुएशन।
Truthfulness is the foundation quality of the trust that is necessary for the success of any business. कुछ भी हम कर रहे हैं तो हमारा ओपननेस ट्रस्ट फैक्टर इतना स्ट्रांग होना चाहिए हर एक सिचुएशन पे. क्योंकि हम मैं ये डेफिनेशंस क्यों शेयर कर रही हूँ आपके साथ, क्योंकि हम एक सोशल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसमें ट्रस्ट फैक्टर बहुत जरूरी है. इवन बिजनेस में भी बहुत जरूरी है. मैं ये नहीं कहूंगी कि बिजनेस में तुम झूठ बोल सकते हो. जितना तुम सच बोलोगे, जितने तुम ट्रांसपेरेंट रहोगे, उतना आपका बिजनेस फ्लरिश करेगा. द बेस्ट क्वालिटीज अगेन अनदर इज ह्यूमिलिटी. ह्यूमिलिटी डज नॉट मीन दैट यू आर वीक और अनश्योर ऑफ योर सेल्फ, राइट. It means that you have the self-confidence and self-awareness to recognize the value of others without feeling threatened. समझ में आया सबको? मतलब कि अगर मैं बहुत ही हलीमी से बात करती हूँ, बहुत रिस्पेक्टफुली बात करती हूँ, बहुत प्यार से बात करती हूँ, that doesn't mean कि मैं कमजोर personality हूँ या मुझे अपने के ऊपर confidence नहीं है. इसका ये मतलब है कि मैं बहुत हलीमी से बात कर रही हूँ, पर मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग है. मैं सेल्फ अवेयर हूँ और मैं जो लोग मुझे वैल्यू मेरे में वैल्यू देखते हैं वो तो मेरे लिए थ्रेट नहीं है, पर अगर मेरी वैल्यूज के ऊपर मतलब कि दे आर थ्रेटनिंग मी तो आई एम नॉट टेकिंग दोज, राइट. तो ह्यूमिलिटी पर्सनैलिटी में लाना बहुत जरूरी है. दिस इज वन ऑफ द रेयरर एट्रीब्यूट्स और ट्रेट्स ऑफ गुड लीडर्स बिकॉज इट रिक्वायर्स कंटेनमेंट ऑफ वन्स ईगो. अपनी ईगो को हम पैरों में लेके चलते हैं, क्योंकि हम ईगो को अगर सिर पे लेके चलेंगे तो हमें हर एक की बात बुरी लगेगी, हमें हर एक का कमेंट बुरा लगेगा, हम क्रिटिसिज्म में चले जाएंगे, हम पॉजिटिव सोच को नेगेटिव में बदल देंगे. पर अगर हम अपनी ईगो को अपने शूज में डाल के रखेंगे तो हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, जो हमारी सोच है, वो इतनी क्लियर होगी और वो हमारे गोल के ऊपर फोकस करेगी विदाउट एनी सेल्फिश इंटरेस्ट, राइट. इट मींस दैट यू आर विलिंग टू एडमिट यू कुड बी रॉन्ग, that you recognize you may not have the answers, but it means that you give credit where credit is due, which many people struggle to do. बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि हम कहते हैं कि ये flag तो हमारे कंधे पे ही लगना चाहिए. हम कभी भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं होते और हम अपनी गलतियां दूसरों के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं कि ये अगर गलत हुआ तो उसकी वजह से हुआ. मैं तो ठीक था, बिल्कुल. मैं तो टीवी टावर पे चढ़ रहा था. अगर वो डेफ नहीं होता तो वो किसको ब्लेम करता? जो नीचे से शाउट कर रहे थे फ्रॉग्स, जो आधे रास्ते से उनको कह रहे थे वापस चलो वापस चलो, जो नीचे से कह रहे थे ये तो पागल है, इनका तो दिमाग खराब है, टीवी टावर पे चढ़ के क्या करेंगे. पर इसका ये मतलब नहीं था कि वो नहीं चढ़े. पर उसने क्रेडिट किसको दिया? जो दो लोग दूसरे थे, दो फ्रॉग्स दूसरे थे, उसने क्रेडिट किसको दिया? जो डेफ था उसने उसको दिया कि मैंने तो कुछ सुना ही नहीं श्योर. और जो दो वो थे उसने बोला हमारा लीडर चढ़ रहा था तो हम भी चढ़ गए. लीडर एक दूसरे को क्रेडिट देना भी एक बहुत बड़ी कला है कि अगर हम कुछ अचीव करते हैं तो टीम की वजह से अचीव करते हैं, हम अकेले कुछ नहीं कर पाते हैं. तो क्रेडिट भी देना बहुत जरूरी है और ये अपनी पर्सनालिटी में आप इम्बाइब कर सकते हैं. ये जो तीन क्वालिटीज मैं ह्यूमिलिटी की बता रही हूँ ये बहुत लाइफ में पे करती हैं इन द लॉन्ग रन. इतनी ज्यादा पे करती है ना कि इसका इम्पैक्ट आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, राइट. और ये ऐसी क्वालिटीज हैं तीनों की वो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली आपकी पर्सनालिटी के साथ इतनी इम्बाइब हो जाती हैं कि आपकी पर्सनालिटी ही वही बन जाती है. तो अगर एक लीडर बनना है तो इसके ऊपर आप जरूर फोकस करिए और जो बाकी के तीन है ना, विजन, करेज और इंटेग्रिटी, ये अपने आप आ जाते हैं. बिकॉज इफ यू हैव दिस ह्यूमिलिटी एज योर पर्सनालिटी ट्रेट,
then the response is 100% sure. You will definitely get the response. Usme koi do raaye wali baat hi nahi hai. The best qualities mein teesra aa raha hai ye strategic planning. Leaders have the ability to anticipate trends well in advance of their competitors. Competitors to har ek jagah pe hi hote hain. NGOs mushroom kar rahi hain itni. Par hum unko threat na maan ke agar hum unke trends ko samajh lein ki wo kya kar rahe hain aur hum kya kare. Hum ek dusre ko compliment kare to ye bahut achhi baat hoti hai. They continually ask based on what is happening today, where is the market going, where is it likely to be in 3 months, 6 months or 1 year or 2 years. They do this through thoughtful strategic planning. For example, अब आप सब लोग production units भी चला रहे हैं और vocational centers भी चला रहे हैं. अब आने वाले time में जो NGOs policy level पे काम कर रहे हैं उनको funding नहीं मिल रही है. Because NGOs policy level पे काम कर रहे हैं उनको funding नहीं मिल रही है. Because सरकार कहती है हमें तो अभी मतलब कि grassroots में काम चाहिए, right? तो हम लोग क्या है, अगर हम अपने कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो हम एक बेटर स्टेक पे हैं कि हमारे फंड्स क्यों नहीं बंद हो रहे हैं, क्योंकि हम उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं जिनको जरूरत है, जिनके साथ हमें अभी काम करना है, उनको सक्षम बनाना है. तो दैट्स व्हाई द डोनर्स, जब मैं कह रही हूँ कि वो हमें पिछले 5 साल से 6 साल से सपोर्ट करें, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम ग्राउंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, ग्राउंड पे काम कर रही है. और जब हम मैं बिजनेस की बात करती हूँ तो ये सोच आपको बनानी है जब आप अपने सस्टेनेबल एंटरप्राइजेस की बात कर रहे हैं कि मार्केट क्या मांग रही है, अगले 3 महीने में मार्केट क्या मांगेगी, अगले 6 महीने में मार्केट क्या मांगेगी और अगले 2 साल में क्या ट्रेंड्स होंगे. They do this through thoughtful strategic planning. और ये इतना बड़ा गैप है हमारे लीडर्स में जो हमारे सेंटर्स चला रहे हैं कि हम इस पे सोच नहीं बना रहे हैं, राइट? हम आज के बारे में सोचते हैं और 1 महीने के बारे में सोचते हैं, पर उसके बियॉन्ड हम सोच ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम इतने इंग्रॉस्ड हैं और सब चीजों में, हम ये सस्टेनिंग एंटरप्राइज को लेके फोकस नहीं हो पा रहे. बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्पिटिटिवनेस ओनली द लीडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस दैट कैन एक्यूरेटली एंटिसिपेट फ्यूचर मार्केट्स कैन पॉसिबली सर्वाइव. ओनली लीडर्स विद फोरसाइट कैन गेन द फर्स्ट मूवर एडवांटेज. फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या होती है कि हम जितने लोग और भी काम कर रहे हैं उनसे हम आगे लोन कैसे, सबसे आगे कैसे स्टैंड करें. तो ये जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अब मैं बात रीड इंडिया की नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, अब मैं आपके इंडिविजुअल सेंटर्स की बात कर रही हूँ, उसको मैं नाम दे रही हूँ ऑर्गेनाइजेशन. हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे आगे लेके जा सकते हैं? क्या आप लोग मुझे 1 पेज विजनरी नोट लिख के दे सकते हैं दैट यू रिफाइन एंड मेक एज योर गोल, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर टेकिंग लीडरशिप ट्रेनिंग्स. दिस इज द प्रैक्टिकल एक्शन विच यू कैन डू फॉर योर सेल्फ, राइट? तो मैंने पिछली बार जब वो उनकी ट्रेनिंग हुई थी स्टोरी टेलिंग की सैटरडे को, तो मैंने बोला था कि आप अपने सेंटर्स के बारे में अपनी अपनी स्टोरी, जब से शुरू हुआ, कैसे हुआ, आप क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो. दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट कि आप जहां बैठे हो आपको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्या विजनरी हो उसको कहाँ लेके जाना चाह सकते हो. क्या आप लिख के दे सकते हो मुझे? That will be a great, great contribution from all of you, right? They focus on the strengths of the organization, on the things that the company does best in satisfying demanding customers in a competitive marketplace.
आप किस पे फोकस कर रहे हो? अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है? आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, आपके पास बुक्स हैं, आपके पास कंप्यूटर्स हैं,

को पहचानेंगे, हम एक पेपर पे लिखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे लोगों तक पहुंच सकते हैं, कैसे हम, हमारे कस्टमर्स कौन है, हमारे बेनिफिशियरीज, राइट, और हम उनको कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं अपनी सर्विसेज से, हम कैसे इसको सेल्फ सस्टेन बना सकते हैं, दैट यू पीपल हैव टू टॉक एंड डिसाइड, राइट. योर एबिलिटी एज ए लीडर टू कॉल द शॉट्स एंड मेक श्योर दैट एवरीवन इज फोकस्ड एंड कंसेंट्रेटेड ऑन द मोस्ट वैल्यूएबल यूज ऑफ देयर टाइम इज एसेंशियल टू द एक्सीलेंट परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज. मैंने जान के ये बिजनेस लैंग्वेज लिखी है यहाँ पे, बिकॉज हमारा 1/3 फोकस ऑर्गेनाइजेशन का एंटरप्राइज ही है. तो इसका ये भी मतलब है कि क्या हम अपना टाइम जो 8 घंटे 10 घंटे हम लगा रहे हैं वो हम फ्रूटफुली यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. एवरी डे वेदर इट्स एडिंग वैल्यू टू माई ऑर्गेनाइजेशन और नॉट, ये बहुत जल्दी आपके ऊपर भार आने वाला है. ये बहुत जल्दी अभी आप अपनी संस्था को चलाने के लिए आगे बढ़ेंगे और ये सारे पॉइंट्स आपको उस समय याद आएंगे कि गीता मैम ने ये सारे पॉइंट्स हमें बताए थे, राइट. द लास्ट पॉइंट इज कोऑपरेशन. गेन द कोऑपरेशन ऑफ अदर्स बाय मेकिंग ए कमिटमेंट टू गेट अलोंग वेल विद ईच की पर्सन एवरी सिंगल डे. रोज आप अपने कनेक्शंस, अपनी नेटवर्किंग, अपने स्टाफ का लाइक यू नो टीम वर्क को हमेशा ये सोचो कि हम कैसे रिफाइन करें इसको, हम कैसे इकट्ठे आगे बढ़ सकते हैं, किसमें क्या स्ट्रेंथ्स हैं. आपको मैं ये भी बोलूंगी कि आप ये एक एक्सरसाइज करो, मैं भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रीड में करूंगी कि हमारे जितना स्टाफ है 5 है 6 है, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं, हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच द ऑर्गेनाइजेशन हैज गिवन. सी दीज 5 जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैव बीन गिवन बाय द ऑर्गेनाइजेशन. These 5 qualities I have the strength, I can contribute additionally. Do this exercise. This will really help you to do that. Right? You always have a choice when it comes to a task. You can do it yourself or you can get someone else to do it for you. Which is it going to be? Ye exercise aapko bahut bahut help karegi. मैं दोबारा से ये पॉइंट्स पढ़ना चाहूंगी आपके सामने. बहुत इंपॉर्टेंट है विजन, करेज, इंटेग्रिटी, ह्यूमिलिटी, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, फोकस एंड कोऑपरेशन. ठीक है, आप इनको सेल्फ एनालिसिस भी करें और ये 7 पॉइंट टीम में बैठ के डिस्कस भी करें, और जो एक्शन पॉइंट्स मैंने बताया अगर आप उन पे फोकस करेंगे तो आई एम 100% श्योर यू कैन रीच द टीवी टावर, राइट. लीडरशिप स्टाइल, बहुत सारे लीडरशिप स्टाइल हैं, बहुत सारे, बट मैं जो हमारे को सूट करता है वो है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप. ट्रांसफॉर्मेशनल, हम कहते हैं ना ट्रांसफॉर्मिंग कम्युनिटीज, हम ऐसे ही थोड़ा लिख रहे हैं उसको. अभी हम डायरी प्रिंट करा रहे हैं आप सब लोगों के लिए, उसके ऊपर लिखा है 14 इयर्स ऑफ सर्विस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग कम्युनिटीज. झूठ तो नहीं लिख सकते ना, हम कर रहे हैं तभी तो हम लिख रहे हैं ना. इज ऑफन डिफाइंड एज ए सिंगल मोस्ट इफेक्टिव स्टाइल. दिस स्टाइल वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड ड्यूरिंग द लेट 1970s एंड लेटर एक्सपेंडेड अपॉन बाय रिसर्चर बर्नार्ड एम बास. मैं क्यों ये बोलना चाह रही हूँ कि ये जो जार्गन्स हैं ये कहीं ना कहीं सच हुए हैं और तभी हम इनको आगे लेके चल रहे हैं और हम इस पे बात कर रहे हैं. ठीक है, दीज लीडर्स टेंड टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट, एनर्जेटिक एंड पैशनेट. दे आर नॉट ओनली कमिटेड टू हेल्पिंग द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स गोल बट ऑल्सो टू हेल्पिंग ग्रुप मेंबर्स फुलफिल देयर पोटेंशियल. ये एक सेंटेंस में मैंने समराइज किया है जो लास्ट 7 पॉइंट्स मैंने बताए हैं एक लीडर की क्वालिटीज के बारे में. अब लीडर की क्वालिटीज तो बता दी कि लीडर को करना क्या है. पहले तो हमने गोल्स भी चेज करे, फिर हमने अपने वो पॉइंट्स भी यहाँ पे हाईलाइट करे बेस्ट क्वालिटीज के. फिर अभी हम कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप बेस्ट है क्योंकि वो इमोशनली इंटेलिजेंट है. इमोशन

0: इंटेलिजेंट का मीन्स है कि मैं दूसरों के पर्सनालिटी की कदर करती हूँ, उनके थॉट्स की कदर करती हूँ, उनके जो वॉट एवर दे आर शेयरिंग और सेइंग और हेल्पिंग, आई रिस्पेक्ट दैट। और ये एनर्जेटिक भी है और पैशनेट भी है, तो इन सबको कंबाइन करके हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं, ये हमें बहुत ध्यान रखना है। रिसर्च शोज दैट दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप रिजल्ट्स इन हायर परफॉर्मेंस। अगर आप ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप हैं तो उसकी परफॉर्मेंस हमेशा हायर होगी एंड मोर इम्प्रूव्ड ग्रुप सेटिस्फेक्शन। आपको सेटिस्फेक्शन होगी कि जो आपके साथ काम कर रहे हैं वो आपकी सोच के मुताबिक कर रहे हैं, हमारी सोच कॉमन है, हमारे हमारे थॉट्स कॉमन है और हमारे एक्शन भी कॉमन है। तो ये इस पे रिसर्च हो चुकी है कि जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल है ये हमेशा संस्था को आगे लेके जाता है, कभी भी संस्था को पीछे नहीं करता है, क्योंकि हम डिक्टेटर नहीं हैं। हम मींस रॉब से और दबाव से काम नहीं करा रहे हैं, हम लोगों को मोटिवेट करके काम करा रहे हैं, हम लोगों को इंस्पायर करके काम करा रहे हैं। तो यही एक ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाने का बेस्ट तरीका है। द लास्ट स्लाइड इज कि जब हम मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, मैंने अभी मोटिवेशन वर्ड यूज करा था, तो मोटिवेशन है क्या चीज? हम बहुत वर्ड यूज करते हैं कि हम मोटिवेशन कर रहे हैं, हम मोटिवेट कर रहे हैं, पर उसको समझने की भी जरूरत है। मोटिवेशन इज द प्रोसेस दैट इनिशिएट्स, गाइड्स एंड मेंटेन्स गोल ओरिएंटेड बिहेवियर्स। इट इज व्हाट कॉजेस यू टू एक्ट। मोटिवेशन ये नहीं कि हमने दो बात कर दी तो मोटिवेट हो गए हम, हमें उसको एक्शन में कैसे लाना है, अपने बिहेवियर में कैसे लाना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। थ्री पॉइंट्स हैं इसके, एक्टिवेशन, परसिस्टेंस एंड इंटेंसिटी। हम मोटिवेट तो करके हम अगर चुप करके बैठ जाएंगे तो कोई भी मोटिवेट नहीं होगा। उसके साथ हम बोलते हैं ना कि हम हैंड होल्डिंग कर रहे हैं। हैंड होल्डिंग का क्या मतलब है कि हम उनके साथ एक्टिवेशन, एक्टिवेशन मतलब कि वी आर वॉकिंग विद देम, राइट, वी आर डूइंग वर्क विद देम। और परसिस्टेंस जो मैंने बोला था, परसिवेरेंस, एक स्लाइड में पिछले 3-4 सेशन में मैंने बात की थी परसिस्टेंस की, हम कितना उसको कंटिन्यूअसली करते हैं चाहे फेलियर्स आए चाहे चैलेंजेस आए, और किस इंटेंसिटी के साथ करते हैं। अगर हम एक्टिवेशन, परसिस्टेंस और इंटेंसिटी को कंबाइन करके हम एक्शन ओरिएंटेड काम करते हैं तो तभी हम कह सकते हैं कि हम किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, राइट। हर एक इंपॉर्टेंट वर्ड का पीछे मीनिंग होता है। बहुत सारे, मैं इधर एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। हम ट्रेडमिल पे चढ़ते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, राइट, हम बटन दबाते हैं तो ट्रेडमिल चलता है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको एक्टिवेट कर देते हैं ट्रेडमिल को, हम चल रहे हैं, हम 2 मिनट करते हैं, हम थक जाते हैं, हमारी बॉडी हमें बोलती है कि नहीं, अब हम नहीं और भाग सकते। वही मैं ब्रिगेडियर वाला एग्जाम्पल ले रही हूँ कि पहले तो तुम अपनी लेग से भाग रहे थे, अब अपने माइंड से भागो। तो हम परसिस्ट करते हैं, हम घड़ी देखते हैं, अच्छा 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। जब हम 10 मिनट ट्रेडमिल पे भाग लेते हैं इंटेंसिटी के साथ, तो क्या हुआ, हमारा जो, हमारे पसीने भी छूटते हैं, हमारा वेट भी कम होता है, तो हम स्लोली अपने गोल पे पहुंच रहे हैं कि आज मुझे अगर 1 महीने में मुझे 10 किलो वेट कम करना है तो मुझे ट्रेडमिल में 10 मिनट से कम नहीं भागना है, राइट। दैट इज मोटिवेशन, दैट इज सेल्फ मोटिवेशन। और जो जिम में कोच होता है वो आपको मोटिवेट कर रहा है, इंटेंसिटी आपकी वर्ड आ रहा है, आपको परसिस्टेंस की बात कर रहा है, आपको बोल रहे ट्रेडमिल पे भागो। बहुत सिंपल एग्जाम्पल से मैंने आपको ये चीज समझाई कि मोटिवेशन है क्या। हमारे यहाँ पे लड़कियां आती हैं सीखने के लिए और हम बीच में ही छोड़ देते हैं उनको, वो चली जाती हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं हम उनको मोटिवेट इन तीनों पॉइंट से नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो ये बहुत जरूरी है। हेल्प इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ पीपल एज दे वर्क टूवर्ड्स गोल। एफिशिएंसी इम्प्रूव करने की जरूरत है। हेल्प पीपल टेक एक्शन। एनकरेज पीपल टू एंगेज इन हेल्थ ओरिएंटेड बिहेवियर्स. हेल्थ ओरिएंटेड बिहेवियर्स मतलब कि अगर तबीयत ही खराब हो गई तो वो सेंटर में तो आएगी नहीं, राइट? हेल्प पीपल अवॉइड अनहेल्थी एंड माल एडेप्टिव बिहेवियर्स. ये दूसरा रिस्क मैं बात कर रही हूँ कि जो अनहेल्दी प्रैक्टिसेस है उसको रोकने की जरूरत है, राइट? बहुत जरूरत है रोकने की, क्योंकि हम हमारा माइंड इतना नेगेटिव भागता है कि हम छोटी छोटी बात पे दूसरों के ऊपर डाउट करना शुरू कर देते हैं. हमें विश्वास ही नहीं बैठता, ये ह्यूमन टेंडेंसी है. पर इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? अगर हम ट्रांसपेरेंट हैं, है ना, ट्रांसपेरेंट हैं, ट्रस्टवर्थी हैं, जो मैंने पीछे क्वालिटीज बताई हैं, अगर उसको हम मद्देनजर रखेंगे तो हम एक दूसरे पे डाउट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट चल रहा है यहाँ पे. हेल्प पीपल फील मोर इन कंट्रोल ऑफ देयर लाइव्स. बहुत इस पे हम बात कर चुके हैं, 10 स्केल फॉर्मूला ही इस पे है. इम्प्रूव ओवरऑल वेलबींग एंड हैप्पीनेस. तो ये मैं आप सबको समझाना चाह रही थी थोड़ा, क्योंकि मेरी 7 प्रेजेंटेशंस थोड़ी लाइट थी. ये थोड़ी सी मैंने टफ की है, बिकॉज किस लिए टफ की है, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझने के लिए. एक लीडरशिप को करना क्या है, एक लीडर में क्या क्या होना चाहिए. अगर मैं इसको रिट्रेट करूं, आप प्रेजेंटेशन स्टाइल देखेंगे कि मैंने गोल्स की पहले बात की, फिर मैंने एक लाइट सी स्टोरी सुना दी, फिर उसके बाद मैंने बोला कि हम नेगेटिव ना सोचें, हम प्रॉब्लम्स को ना फोकस करें, हम उसमें जो एक सूर्य की किरण आ रही है उसकी तरफ देखें और आगे बढ़ें. फिर मैंने बेस्ट क्वालिटीज क्या है लीडरशिप की, उस पे मैंने 7 क्वालिटीज की बात की, विजनरी, करेज, इंटेग्रिटी, ह्यूमिलिटी, देन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, फोकस एंड कोऑपरेशन. ये एक संस्था के करेक्टरिस्टिक्स भी हैं. ये 7 करेक्टरिस्टिक्स इतने इम्पोर्टेंट है कि अगर हम इसको एक को भी इग्नोर कर देंगे तो ऑर्गेनाइजेशन नीचे चली जाएगी, वो ग्रो ही नहीं कर पाएगी. फिर उसके बाद मैंने लीडरशिप स्टाइल की बात करी कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या होता है. इमोशनली इंटेलिजेंट, वो वीक नहीं होता है, पर लोग उसको वीक समझते हैं, पर उसमें इतनी पावर होती है कि वो कैसे सबको अपने पैशन के साथ जोड़ के रखे, राइट? और लास्ट है कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की बात कर रहे हैं तो हम मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, पर मोटिवेशन का मतलब क्या है? आप हमेशा कहते हो कि हम अपनी कम्युनिटी को बहुत मोटिवेट करते हैं, पर अब आप इन 3 पॉइंट्स के साथ मोटिवेट करके देखना रिजल्ट में क्या चेंज आता है. एक्शन, परसिस्टेंस एंड इंटेंसिटी, राइट? इन तीनों के अगर मीनिंग चाहिए, एक्शन मतलब कि हम काम करें, परसिस्टेंस मतलब कि हम अपना उसको लगातार करें, और इंटेंसिटी कि हम अपनी पूरी एनर्जीज उस काम में लगा दें और उसको फेलियर नहीं होने दें. दैट इज द आउटकम ऑफ मोटिवेशन. दैट्स ऑल. आज मैंने बहुत बोला है, 4 बजने वाले हैं. तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, मैं एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ इसको. ठीक है, 5 मिनट है
1: यस
0: हमारे पास. हाँ, और ये स्लाइड्स रो हमेशा हर सेशन के बाद आपके पास आती हैं. मैं आप सबको एनकरेज करूंगी कि इस स्लाइड्स को पढ़ के आप अपनी एक डायरी लिखनी शुरू कर दें कि हर पॉइंट में आप कैसे अपनी लाइफ में उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, आप उसको कैसे इम्बाइब कर रहे हैं अपने एक्शन लेने के लिए, आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे चेंज कर रहे हैं इन पॉइंट्स के अलावा. अगर ये आप होमवर्क करेंगे तो इट विल हेल्प यू सो मच, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, राइट? आप प्लीज ये करिए. आपका जरूर 10 मिनट रात को ज्यादा जाएगा इस पे, पर अगर 8 स्लाइड्स है, 8 स्लाइड्स के ऊपर आप हर पॉइंट पे एक एक लाइन भी लिख लेंगे या एक स्लाइड के ऊपर एक पॉइंट लिखेंगे तो आपकी डायरी में 10 पॉइंट आ जाएंगे लिखने के लिए. आपका थॉट प्रोसेस बढ़ेगा, आपकी सोच बढ़ेगी, आपका विजन स्ट्रांग होगी और आप एनकरेज फील करेंगे और आप बहुत वेल डिफाइंड अपने अपनी शार्प कर लेंगे अपने विजन को और एक्शन उसी तरीके से लेंगे, ये मैं गारंटी लेती हूँ इस चीज की। आप करके देखिए, ये सारे मैनेजमेंट के लेसन्स हैं जो मैं बहुत मेहनत करके इसको आपके मतलब कि लाइक आई ब्रिंग दैट इन टू ए डिस्कशन लेवल कि कहाँ मैं ये लीडरशिप आपको समझा सकती हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जस्ट 5 मिनट्स फॉर एनी क्वेश्चन आंसर्स, आई एम ओपन फॉर दैट।
1: ये आपने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया कि ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए। ब्लेम करके ही हम अपने अपने अच्छे काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ फेलियर कहीं हो किसी बात में तो दूसरे को ब्लेम कर जाते हैं हम लोग।
0: हाँ
1: तो दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग यू टोल्ड अस कि ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए, एंड हर चीज में वी शुड ऑलवेज टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस, पर्सनल लाइफ में भी अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी।
0: बिल्कुल,
1: हमेशा कोई चीज
0: पर्सनल
1: हो
0: लाइफ
1: जाती है, घट जाती है।
0: बहुत बहुत मायने रखते हैं ये पर्सनल लाइफ में, मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमें ना सुनने की क्षमता होनी चाहिए। हम ना सुनने
1: मैम
0: की अपनी जो स्किल है ना, उसको हम हमेशा बहुत कम टाइम देते हैं। हम हमेशा अपने बोलने की स्किल को ज्यादा टाइम देते हैं। ये ह्यूमन
1: हाँ जी,
0: बिहेवियर है, टेंडेंसी है। वेरी नाइस,
1: यस
0: कंटिन्यू।
1: मैम, हाँ जी। हम प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे तो और हम डिमोरलाइज हो जाते हैं उन्हीं प्रॉब्लम्स को रिपीटेडली व्हेन वी टॉक अबाउट, तो लगता है तो गई, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब कैसे ठीक होगा। तो हो चुका, वो तो घट गया, उसको तो अब असाइड करके, तो उसके बाद फैमिली में भी बैठे हुए हैं या अपने स्टाफ के साथ भी आप बैठे हुए हैं, सबके व्यूज लेके फटाफट फटाफट आप सॉल्यूशंस के बारे में बात करो, फिर वो प्रॉब्लम फिर छोटी लगने लग जाती है। तो ये आपने बहुत ही सुंदर पॉइंट बताया कि रे ऑफ आप देखिए हर चीज में, पूरा डार्क नहीं होता कभी भी, कहीं ना कहीं एक सनशाइन होती है, एंड वी शुड चेज दैट एंड वी शुड फॉलो दैट, और हमेशा सॉल्यूशंस के बारे में बात, प्रॉब्लम्स को फटाफट रिजॉल्व करें। ये आप बता रहे थे, दिस वाज वेरी नाइस
0: वेरी
1: मैम,
0: नाइसली समराइज,
1: थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू सो मच फॉर समराइजिंग दिस वेरी वेल। एनीबडी एल्स? थैंक यू सीमा, आपने तो बड़ी प्रॉब्लम मेरी सॉल्व कर दी। मुझे लग रहा था कि मैं ही बोलती जा रही हूँ, पर आपने समराइज करके तो बहुत उसको इजी बना दिया।
1: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।
2: गुड इवनिंग मैम, अकबर बोल रहा हूँ रामपुर से। जी मैम, जैसा सीमा मैम ने बोला और आपके हमने ट्रेनिंग में ये सुना भी था, आपने बहुत पहले ही बोला था कि प्रॉब्लम्स को क्रिएटिव माइंड के थ्रू आप सॉल्व करते हैं। आपकी एक आदत है कि आप उस प्रॉब्लम को लेके बैठते नहीं है और उसको आप क्रिएटिव माइंड के थ्रू, अभी लास्ट स्मिता मैम ने भी हमें फ्राइडे में बताया था लाइफ स्किल्स की ट्रेनिंग में, आपका ये एग्जाम्पल देके, और मैंने उसको ना एक जेस्ट कर लिया इस पॉइंट को, और उस पॉइंट पे अब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ 3-4 दिन से। मैं इस पे बहुत फोकस करके प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे सामने जो भी प्रॉब्लम आ रही है, मैं पहले क्या होता था कि जो प्रॉब्लम आती थी अगर उसका सॉल्यूशन नहीं निकलता था तो मैं हार मान के बैठ जाता था, और एक टेंशन दिमाग को होती थी, बहुत ज्यादा डिप्रेशन सा लगता था कि यार अब क्या होगा, कैसे होगा। बट जब मैंने इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, मतलब जैसे सीमा मैम ने बोला कि प्रॉब्लम्स को हम असाइड कर दें और उसके सॉल्यूशंस के ऊपर बात करें, तो अब सेम वही मैं करना स्टार्ट करा है, तो इतना मतलब लग रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल ही जाता है जब उसके ऊपर दिमाग लगाओ और उस पे करते रहो फोकस, कि कुछ तो आएगा हल, कुछ तो आएगा। वो अल्टीमेटली आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, भले से थोड़ा सा ही आए लेकिन आता है। उससे मुझे बहुत फायदा हुआ, रियली थैंक यू मैम। आपने मतलब इतने अच्छे से उसको समझाया था कि वो दिमाग में एकदम बैठ गया है।
0: नहीं, बहुत अच्छी बात है। और ये अगर हम सोचते ही रहेंगे प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स, तो हमारे कंधे के ऊपर जो बैग है ना, वो इतना भर जाएगा कि एक दिन वो इतना भारी हो जाएगा कि हमें दबा देगा वो। पर अगर हम हर प्रॉब्लम का सलूशन लेके वो बैग हम खाली करते रहेंगे, तो वी विल फील लाइट, हमारा ब्रेन लाइट फील करेगा और हम कुछ नया सोच पाएंगे करने के लिए। तो जो अपने कंधे के ऊपर बैग लेके हम चलते हैं ना, उसको बस ये याद रखिए कि हमें लाइट ही रखना है। देयर एंड देन यू फाइंड अ सोल्यूशन एंड स्टार्ट एक्शन ऑन दैट, राइट?
2: यस मैम, बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज और कि हम कभी भी, मेरे साथ अक्सर ये होता है कि मैं बहुत आगे तक की सोचता हूँ कि यार कल क्या होगा, अगर मैं ऐसा एक्शन करूंगा तो इसमें फिर क्या होगा, आगे वाले नतीजे क्या रहेंगे। तो उसको लेके क्या होता था, एक स्टेप फॉरवर्ड होने के बजाय और बैकवर्ड हो जाता था। लेकिन अब मैंने ये सोचा है कि नहीं, जो होगा उसके लिए भी कोई ना कोई नया सॉल्यूशन निकाला ही जाएगा, अभी फिलहाल जो है उसको पूरा करो।
0: बिल्कुल, मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि जब हम प्रपोजल लिखते हैं तो हमें नहीं पता सक्सेस क्या होगी।
2: जी
0: हम तो डोनर को ये थोड़ा कर देते हैं कि हम 1 साल के बाद जी हम ये 100% करके दिखा देंगे आपको। हम प्रपोज करते हैं कि हम कोशिश करेंगे करने के, राइट।
2: यस
0: तो हमेशा जो एक्शन है उसको हम अगर सीधे रास्ते पे रखें या सीधी सोच के साथ रखें तो रिजल्ट्स तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है।
2: यस मैम,
0: थैंक यू सो मच। और मैं इनकरेज करूंगी अगर किसी के कोई और भी डाउट्स रहते हैं तो दे आर वेलकम टू राइट बैक टू मी, राइट, बिकॉज लीडर्स तो आपको बनना ही बनना है, राइट। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।

0: I would like to now invite Sonal Bate, who's been, you know, part of this journey from the very beginning when we started, when he just started this journey, and this started with Geechkar, where she said that, you know, we can do something with weaving and spinning, which was difficult to dream at that time, but she had that dream, and that dream has led us to this day where we are celebrating this event. So Sonal, please share your experiences.
1: वेलकम सबको, बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने इतना बड़ा मुहिम उठा रखा है, पढ़ाई का, स्किलिंग का, ग्रीन इकोनॉमी का, इतने सारे लेवल्स पे इतना सारा काम एक एकदम रिमोटेस्ट ऑफ एरियाज में जाके रीड कर रहे हैं और आप सब मिलके उनके साथ में कर रहे हैं. आई रियली वांट टू कांग्रेचुलेट रीड इंडिया टीम फॉर टेकिंग अप दिस ह्यूमंगस टास्क ऑफ गोइंग डीपेस्ट एंड डीपेस्ट इन टू द विलेजेस and implementing all of this. Smita had very rightly mentioned that it was a dream. और ये dream मेरा कहाँ से आया और क्यों ये important है. हम green economy की जो बात कर रहे हैं, green skilling की जो बात कर रहे हैं, इसकी importance क्या है, ये थोड़ा सा मैं आपको share करना चाहूंगी इस चीज के लिए जो आपको पता चलेगा इसकी importance क्या है. एक छोटी सी exercise करते हैं हम. If you can just hold your breath for 10 seconds and you can start the time now. And I'll count back. Please hold your breath. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. सांस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है हमारी लाइफ में. बिना सांस के कोई जीवन नहीं है. तो मेरा काम टेक्सटाइल्स के अंदर काम हुआ 20 साल पहले, जब मैंने देखा कि बहुत सारे केमिकल्स पानी में जा रहे थे. और तब मैंने थोड़ा रिसर्च स्टार्ट किया तो पता चला कि सिर्फ 100 साल पहले ये सारे केमिकल्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं. इसके पहले इंडिया में हजारों साल से सिर्फ और सिर्फ नेचुरल तरीके से काम होता था. सिर्फ सिर्फ हाथ से काम बनता था, सिर्फ हाथ से ही कपड़ा बनता था, सिर्फ नेचुरल कलर जैसे हल्दी है, अनार के छिलके हैं जिसके अंदर दवाई का रूप है, उसी से ही होता था. बच्चों को हल्दी के कपड़े से लपेटा जाता था ताकि उनको वो एंटीसेप्टिक एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज मिले. हजारों साल तक हमारे पूर्वजों के पास में इतनी ज्यादा नॉलेज थी इस चीज की जो हमारे सामने आती ही नहीं है, वो हमें पता ही नहीं चलती है वो चीज. और इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको होता है, हमारी धरती को होता है. जो बनाता है उसको होता है और जो पहनता है उसको भी होता है. हर एक जन को इसकी इफेक्ट होती है. एक एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूं तो एक टी शर्ट पे 2000 लीटर पीने का पानी बर्बाद होता है. 2000 लीटर्स ऑफ वाटर गेट्स डिस्ट्रॉयड इन जस्ट वन टी शर्ट फ्रॉम लैंड. जब से वो उगाया जाता है और जब तक कि वो हमारे हाथ में आता है तब तक 2000 लीटर पीने का पानी, अगर आप एक मैथ करें तो हर दिन 10 लीटर से ज्यादा पीने का पानी हमें नहीं चाहिए होता है. खाना पीना हर तरीके से अगर उसका आप रिविजन करें तो आप सोचिए कि कितना ज्यादा कपड़ा इस चीज के अंदर बर्बाद किया जाता है. तो यही सपना था जो मैं गीता से मिली थी. दसरा में हमने एक सोशल लीडरशिप प्रोग्राम किया था और उसमें मेरी और गीता की मुलाकात हुई थी. हमने एक साल का हार्वर्ड का प्रोग्राम किया था उसके अंदर और उसमें मैंने शेयर किया था ये विजन गीता के साथ में, क्योंकि मेरा काम ही इसी अंदर था. और मैं चाहती थी इस चीज को रिवाइज करना. आई वॉज ऑल्सो रीडिंग गांधी जी की, उनकी बायोग्राफी पे मैं पढ़ रही थी और गांधी जी ने इस चीज को रिकग्नाइज किया कि अगर हर गांव में ये काम हो रहा होगा तो हमारा कोई इंसान भूखा नहीं जाएगा और कोई भी इंसान बीमार नहीं पड़ेगा. अगर आप नोटिस करेंगे तो हमारी लैंड जिस तरह से रो रही है वही उसी तरह से हमारा शरीर भी रो रहा है. अगर आप नोटिस करेंगे तो हम हर एक जन को जानता है जिसको कैंसर हुआ है आज की डेट में. ये 20 साल पहले नहीं था, ये 100 साल पहले भी नहीं था, ये आज है. हर एक जन को एलर्जीज की प्रॉब्लम होती है. हर एक जन जानता है कि किसी को एलर्जीज की प्रॉब्लम है. हार्मोनल डिस्ट्रप्शन है, रिप्रोडक्टिव इश्यूज है. रिप्रोडक्टिव इश्यूज 30-40 साल पहले सुनने भी नहीं आती थी कि रिप्रोडक्टिव इश्यूज है. कि बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा है, बट अब ये हो रहा है। जब हमारी धरती नहीं उपज दे पा रही है, हमारा शरीर भी नहीं उपज कर पा रहा है, तो ये चीज की अंडरस्टैंडिंग गांधी जी को बहुत डीप में थी और उन्होंने ये चीज कहा। तब से मुझे ये सपना था कि हम किस तरह से गांव गांव में हैंड स्पिनिंग को, पेटी चरखा को या ऑर्गेनिक कॉटन को किस तरह से हम प्रमोट कर सकते हैं ताकि गांव गांव में इस चीज को उगाया भी जाए, ऑर्गेनिक तरीके से उगाया जाए। तब मैंने गीता जी से ये चीज शेयर करी थी और हमारी डिस्कशन हुई थी इस चीज के बारे में। शी सेड कि अलाइन किया उन्होंने भी मेरे साथ ये विजन देखा। एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू यू गीता टू बी एबल टू सी दैट विजन एंड टू हैव दैट विजन फॉर योर कम्युनिटीज। और इस चीज में उन्होंने जब मुझे इनवाइट किया तब हमने इनवाइट किए और भी मुझे हर चीज का नॉलेज नहीं था, तो हमने इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को भी बुलाया जिन्होंने हमें हैंड स्पिनिंग सिखाई। माधव जी को हमने कैसे न कैसे ढूंढ के निकाला जो हमें सिखा सके हैंड स्पिनिंग, क्योंकि ये भूल चुके थे लोग, हैंड स्पिनिंग कैसे करना है, वीविंग कैसे करना है, ये चीज लोग भूल चुके हैं। तब इसको वापस किस तरह से लेके आए, तो ये सब चीजों के बारे में हम लोगों ने कोशिश की कि किस तरह से हम स्टार्ट करें। तो हमने कई गांव में, अलग अलग गांव में हमने जाके असेसमेंट किया कि कहां पे ये चीज को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, और हमने इसको हैंड स्पिनिंग प्रोसेस को स्टार्ट किया, फिर वीविंग को प्रोसेस को स्टार्ट किया। और आज मुझे कहते हुए बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि ये इतने एडवांस लेवल पे चला गया है कि ये इंटरनेशनल सेल्स में भी जा रहा है। हमने इसको कई कस्टमर्स को भी दिखाया है एंड दे आर वेरी वेरी हैप्पी टू सी द क्वालिटी, किस तरह की क्वालिटी बन के आई है और ये किस तरह से इसको, इसकी एक आप देख रहे हैं इसका गिफ्ट हो रहा है, आप इतनी ब्यूटीफुल तरीके से ये चीज को इम्प्लीमेंट कर पाए हैं। और जहां पे जैसे स्मिता ने मेंशन किया कि हैंड स्पिनिंग का और किसी भी चीज का कोई नॉलेज ही नहीं था और कहां से कहां तक ये सब आ गए, और सबसे ज्यादा असर इस चीज को कम्युनिटी के लिए होता है। मैंने सोचा कि हम जाएंगे, हम कुछ चीज समझाएंगे सिखाएंगे, पर हम कितना ज्यादा कुछ सीख के आए हैं। जब हैंड स्पिनिंग प्रोसेस स्टार्ट किया ये तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि 70 साल की औरतें इसके साथ में जुड़ेंगी, 70 साल की औरतें इसके साथ जुड़ेंगी, जो सोच भी नहीं सकती हैं कि वो कुछ कमाई कर सकती हैं। अगर हम सोचें कि सबसे ज्यादा हायरार्की में सबसे लोएस्ट कौन होता है, वो एक बूढ़ी औरत घर में होती है जिनके ना दवाई का ना कपड़े का ना किसी भी चीज का, लास्ट अगर इनकम पहुंचेगी तो उनके पास पहुंचेगी। और जब वो एक औरत कमाती है और जब हम बैठे हैं और वो एक कहानी बताती है अपनी कि मैं अपने पोते के लिए गिफ्ट खरीद के लेके आई और उसकी आंखों में आंसू आते हैं और मुस्कुराहट आती है, तब लगता है कि हाँ हमने कुछ अचीवमेंट्स हुई हैं इस चीज के अंदर। तो ये ट्रूली ग्रीन इकोनॉमी की हम बात करें तो ग्रीन इकोनॉमी अब बोलना पड़ रहा है इसलिए क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन ने हर चीज में केमिकल घुसा दिया। हमारे इंडिया में कभी भी ये चीज नहीं थी, हम हर चीज को एकदम नेचुरल तरीके से बनाते थे। तो ये जो चीजें हैं अब हमें ग्रीन इकोनॉमी बोलनी पड़ रही है इस चीज को, और दुनिया भी अब रिकग्नाइज कर रही है। कोविड ने हमें दिखाया कि हेल्थ कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सांसें रुक जाती हैं जब, और सांसें जब रुक रुक के आती हैं तब हमें एहसास होता है कि हमारे जीवन की कितनी महत्व है। जब हम केमिकल्स यूज करते हैं तो धरती की सांस नहीं होती है, हम खुद भी सफोकेट होते हैं। अगर आप एक केमिकल को अपने नाक के पास रखेंगे, केमिकल में अगर आप पेंट का एक कमरे में आप खड़े नहीं हो सकते एक घंटे के लिए भी, तो आप इमेजिन करिए अपने शरीर के ऊपर अगर पूरा केमिकल पहन रखा है या जो भी जल काम कर रहा है इस चीज के ऊपर, उसने अगर वो केमिकल के साथ ही काम कर रहा है तो उसकी हालत कैसी होगी, क्या दिशा होगी, ऑब्वियसली हम इतने बीमार पड़ेंगे। तो ये सब ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हो गई है। अब तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा जोर दे रही है इस चीज के ऊपर कि ग्रीन की तरफ हम जाएं। कई कई कंपनीज तो एकदम कंपलसरी हो गया है कि आपको कई चीजें केमिकल्स आप यूज ही नहीं कर सकते हैं, वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा टाइट हो रही है। तो ये फ्यूचर, ये हमारा हमेशा से इंडिया का पास्ट रहा है और इंडिया हम दिखा सकते हैं दुनिया को कि किस तरह से इस चीज को वापस मेन स्ट्रीम में लाया जा सकता है। आज रीड का तो इतना ज्यादा रीच है और एकदम रिमोटेस्ट ऑफ एरियाज में जाके आप ये चीज कर रहे हो, तो ये और आपका विजन इतना अच्छा है कि आप लोग एक लाइवलीहुड का भी इतना बड़ा मुहिम उठा के रखा है इसके अंदर। तो इसमें वो सोसाइटी को इतना एम्पावर किया है आपने, आप एक एनवायरमेंटल एजेंडा भी आपने एक ले रखा है इस चीज के अंदर। सो इट्स अ वंडरफुल इम्पैक्ट दैट यू हैव क्रिएटेड। एक सोशल इम्पैक्ट है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट है, एनवायरमेंट एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोर्स तो है. इकोनॉमिक इम्पैक्ट इज अ पार्ट ऑफ इट. उसके बगैर कुछ भी नहीं आगे बढ़ता है क्योंकि सब काम रुक जाता है. बट द ह्यूजेस्ट इम्पैक्ट दैट कम्स इज द सोसाइटी इम्पैक्ट. लाइक आई सेड, लाइक हाउ इट इम्पैक्ट द कम्युनिटीज, हाउ दे कम टूगेदर. वेन आई वॉज टेलिंग द वुमेन कि आप घर जाके काम करिए, तो बोलते हैं नहीं हमें साथ में बैठ के काम करना है. तो हम पंचायती नहीं करते, हम गलत बातें नहीं करते, हम अच्छी प्रोडक्टिव बातें कर पाते हैं. तो एक मेंटल वेलबींग की भी एक चीज आती है इसके अंदर जो बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तो हमने जो ये खादी का प्रोग्राम स्टार्ट किया इसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं, नॉट ओनली फ्रॉम ट्रेनिंग द वुमेन और पूरी कम्युनिटी को ट्रेन करना है, उसकी इम्पोर्टेंस समझाना, क्यों ये चीज करनी है और क्या इसका वैल्यू है, कौन खरीदेगा. आज भी पूछते हैं हमें कि कौन खरीदेगा, इससे यही है जो चीज लोग बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं. एक बार जो ये चीज को यूज करने लगता है फिर वो दूसरा चीज चेंज नहीं करता है. इसके अलावा हमारे पास में चैलेंजेस है रिसोर्सेज के, सोर्स करना, कहीं से कहां कहां से हमने इसको सोर्स किया है, क्योंकि अब बनना बंद हो गया है तो इसकी रॉ मटेरियल मिलना भी थोड़ा सा मुश्किल हो गया है. तो उस चीज को वापस रिवाइव करना, किस तरह से हम रॉ मटेरियल्स को लेके आए. बहुत सारे सालों से हम इस चीज को धीरे धीरे धीरे धीरे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इस चीज को. Concluding me, I would like to say that the communities that Reed is working with, iti remote areas mein hai aur hum bahut sara baat kare migration ka, I think men, women, everybody needs to be included. Nobody should be left alone. Women ko jab hum empower karte to puri society empower hoti hai, but men also need to be empowered to empower the women. Thank you so much.
0: Thank you, Sonal ma'am. Men needs to be empowered to empower women. अगर हम दूसरे को empower, खुद empower होंगे तो खुद दूसरे को empower करेंगे.

0: अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे जो स्टार्स हैं, शाइनिंग स्टार्स, उनके जो लीडर्स हैं हमारे साथ, अंजू हैं, ऋतु हैं, फरा हैं, आप यू नो आप अपनी कुछ यू नो जर्नी बताएंगे शॉर्ट में, बिकॉज आई थिंक वी आर शॉर्ट ऑन टाइम ऑल्सो, एंड देन वी विल टेक द नेक्स्ट सेशन. सो प्रॉब्ली विथ फरा.
1: आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और मैं रीड इंडिया रामपुर सेंटर से फरहा. तो थोड़ा सुबह से चलती हूँ, मैंने सोचा था शायद मुझे आज बोलने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी दिल में था कि लास्ट मोमेंट पे 2 मिनट मुझे बोलना ही है. तो मैंने एक कविता भी लिख के फोटो खींच के रखी है कि अगर बोलने का मौका मिला तो जरूर आपको सुनाऊंगी. और एक और बात मेरे मन में सुबह से चल रही थी कि कब वो दिन आएगा कि मैं यहाँ स्टेज पे बैठूंगी. पता नहीं क्यों अंदर से ही फील हो रहा था कि कब मैं ऐसा कोई अच्छा काम करूंगी कि मुझे भी ऐसे बुलाया जाए. और जैसे सर का सारा दिखाया जा रहा था कि सर ने ये अचीव किया है, इतनी लाइब्रेरीज खोली हैं और लाइब्रेरीज के बारे में बताया है, तो वही मेरे मन में बहुत टाइम से सुबह से चल रहा था. बट जैसे ही स्मिता मैम ने मेरा नाम लिया, आई एम वेरी वेरी शॉक्ड कि मैं उठी फिर बैठी ही नहीं, मैं नहीं हो सकती, कोई और होगा. तो वही है कि हम सपने देखते हैं और लगता नहीं है कि कभी वो सपने साकार होंगे, लेकिन जैसे ही वो सपने साकार होते जाते हैं, हम एक छोटे से इतने से होते हैं, और जब हम इतना बड़ा बन जाते हैं तो पता ही नहीं चलता कि ये हमारी मेहनत का फल है या हम सबसे अलग हैं. मतलब समझ में नहीं आता कि हमने ऐसा क्या किया है कि हम यहाँ तक पहुंच गए. तो आप सब मुझे तो जानते हैं, थोड़ी सी मैं अपनी जर्नी को भी लेके जाऊंगी, टाइम कम है तो शॉर्ट में ही बताऊंगी. 7 ईयर्स पहले कुछ लोग मुझे जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं, उनको थोड़ा सा बताते हुए चलूंगी. 7 ईयर्स पहले जो रीड इंडिया हमारे आगापुर में खुला था, तो उसको रीड इंडिया के नाम को सुनके ही मैं बहुत शौक थी. और वहां पर मैंने जब सुना कि लाइब्रेरी, सिलाई, पार्लर, कंप्यूटर, लड़कियों के लिए काफी सारी चीजें सेंटर पे हमारे घर पर, घर के पास हमारे लिए आई है. बट एक मैं मुस्लिम इलाके से थी, वहां कोई भी लेडीजों को जाने का, कहीं भी घर से निकलने का कोई भी पेरेंट्स ने हुक्म नहीं दिया था. जाना है तो वही मुख्य से जाना है. जब हमारे सेंटर पे, जब हमारे घर के पास सेंटर खुला, तो वहां विजिट करने के लिए जब सेंटर पर गए तो वहां हमने बुक्स पढ़ी. और मुझे लाइब्रेरी में किताबें पढ़ने का वहां बहुत शौक था, और जो वहां एक्टिविटीज होती थी तो उससे मन करता था, क्योंकि एक खुशी मिलती थी लाइब्रेरी से. वही है कि हमारा सेंटर ही लाइब्रेरी से स्टार्ट होता है. तो मैंने लाइब्रेरी जाना शुरू किया. ऐसे ही मेरे पेरेंट्स का था कि 17 साल की उम्र में शादी कर देनी है और कुछ नहीं करना है, और वही जर्नी खत्म है, जाओ और रोटी बनाओ और खाओ पियो ऐश करो. तो वहीं से हमारी किताबें स्टार्ट हुई. मेरी मम्मी डैडी शुरू से ही बहुत मेहनत करते थे, और उन्होंने मेहनत करके ही मुझे पढ़ाया. मेरे रिलेशन में दूर दूर तक किसी भी लड़की ने पढ़ाई नहीं की थी. बहुत बातें बनाई लोगों ने, मतलब कि जो पास में लोग रहते थे उन्होंने भी, और जो मेरे रिश्तेदार थे उन्होंने भी, और जो मेरे सगे थे, मतलब सगे चाचा वगैरह, फुफो, उन्होंने मम्मी के ऊपर बहुत ज्यादा ऑप्शंस उठाए कि क्यों पढ़ा रही हो. मेरी मम्मी ने हाई स्कूल इंटर तक सुना कि ठीक है इंटर पढ़ा के बंद करके शादी कर देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने वहां पर सोचा कि लेकिन मैंने देखा कि मेरी मम्मी ने मुझे किस मेहनत से पढ़ाया है. जब वो रात को 8-8 बजे आके हमारे लिए खाना बनाती थी, और कैसे वो हमारी स्कूल की फीस भरती थी, हम तीनों बहनों को इतनी मेहनत से पढ़ाकर किसी की ना सुनकर आगे बढ़ती थी. तो मैंने एक मन में ठाना कि चाहे जैसे मेरी माँ ने सबकी सुन के हम लड़कियों को आगे बढ़ाया, ऐसे ही मुझे अपने मम्मी डैडी के लिए कुछ करना है. चाहे कुछ भी हो जाए, शादी कैसे भी ना करके, कुछ भी किसी से लड़ाई हो, बट मुझे शादी ही करनी है. तो वही सपना मेरा साकार होता गया. मेरे लिए एक मेरी पहली सीढ़ी रीड इंडिया खुली, वहीं से मेरी लाइब्रेरी की स्टार्ट हुई, और इसी दिन में मुझे वहां से जॉब मिली. मैंने इसी दिन को शुरुआत करके फिर मैंने कंप्यूटर सीखा. फिर मुझे कंप्यूटर में वहां पर लड़कियों को सिखाने का मौका मिला. वहां तो मेरा 5-6 किलोमीटर मुझे दूर आगापुर जाना पड़ता था, लेकिन जब मैम ने पटवाई सेंटर 15 किलोमीटर दूर खोला, तो वहां पर मेरे कोऑर्डिनेटर मुझे बना दिया गया. और वहां पर मैं किसी लोगों को भी नहीं जानती थी, बहुत फर्स्ट टाइम डर लगा जाने में, लेकिन इतनी ट्रेनिंग से मुझे यहाँ पर मिली है कॉन्फिडेंस मिलने की, आर्ट थेरेपी की, मोबिलाइजेशन करा लोगों से बातचीत करने की. तो वहां 15 किलोमीटर दूर जाके जब मुझे कोऑर्डिनेटर बनाया गया और मैंने सेंटर को संभाला, तो बहुत ज्यादा लोग वहां पर, जितने आज 7 साल बाद 4-5 हजार लोग मुझे जानते हैं, और बहुत ही आदर से, सम्मान से मेरा वेलकम करते हैं. और हम जो भी लड़कियां ट्रेंड हैं, उनके घरों में जाकर उनको कैसे बाहर निकालते हैं, उनको हम अपनी सक्सेस स्टोरी बताने की कि हम किस तरीके से यहाँ पर आए हैं, जब उनके पेरेंट्स अपने घर से वहां भेजते हैं. तो शायद टाइम कम है, मैं अपनी एक छोटी सी पोएम सुनाकर एंड करना चाहूंगी। राह में मुश्किल होगी हजार, राह में मुश्किल होगी हजार, तुम दो कदम बढ़ाओ तो सही। राह में मुश्किल होगी हजार, तुम दो कदम बढ़ाओ तो सही। हो जाएगा हर सपना साकार, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। मुश्किल है पर इतना भी नहीं, मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि तू कर ना सके। दूर है मंजिल लेकिन इतनी भी नहीं कि तू पा ना सके। तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। एक दिन तुम्हारा भी नाम होगा, एक दिन तुम्हारा भी नाम होगा, तुम्हारा भी सत्कार होगा। तुम कुछ लिखो तो सही, तुम कुछ आगे पढ़ो तो सही, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। सपनों के सागर में कब तक गोते लगाते रहोगे, सपनों के सागर में तुम कब तक गोते लगाते रहोगे। तुम एक राह है, चुनो तो सही, चुनो तो सही। तुम उठो तो सही, तुम कुछ करो तो सही, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। कुछ ना मिला तो, कुछ ना मिला तो कुछ सीख जाओगे, कुछ ना मिला तो कुछ सीख जाओगे। जिंदगी का अनुभव साथ लेके जाओगे, जिंदगी का अनुभव साथ लेके जाओगे। गिरते पड़ते संभल जाओगे, गिरते पड़ते संभल जाओगे, फिर एक बार तुम जीत जाओगे। तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।

0: कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगी श्रीमती अंशी देवजी भाई को, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भुज से, और वो किस तरीके से इस ब्यूटीफुल कल्चर को प्रिजर्व कर रहे हैं और एनहांस कर रहे हैं। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज।
1: धन्यवाद, नमस्ते। मैं गुजरात से आया हूं, कच्छ भुज से। मेरा नाम देवजी भाई है। एक्चुअली मैं विभिन्न का काम करता हूं और 1997 में मेरे को नेशनल अवार्ड मिला है और 2016 में मेरे को संत कबीर अवार्ड मिला है। मेरे साथ मेरी वाइफ है, उनका नाम माया बेन है और उनको भी 2006 में नेशनल अवार्ड मिला है। मेरे फादर को 2005 में शिल्प गुरु अवार्ड मिला है। मेरे सन को 2014 में नेशनल अवार्ड मिला है। हम चार भाई है, चारों को नेशनल अवार्ड मिला है और चारों को जो औरत है उन सबको नेशनल अवार्ड मिला है। तो ये नेशनल अवार्ड की गिनना करने के लिए मैं नहीं बैठा हूं, लेकिन जो अच्छा काम करता है उनका अच्छा पुरस्कार मिलता है। मैं जब सुबह आया तो मेरे को पता नहीं था ये स्टेज पर सब जो बैठे हैं वो स्टेज छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो स्टेज छोड़ के हमको स्टेज पर बिठाया है वो रीड इंडिया का काम है। तो हमको जो स्टेज मिला है वो दूसरे के लिए भी हम खाली करें और इतना अच्छा काम करें कि दूसरा लोग भी इधर बैठ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कच्छ में बारिश का बहुत कम आना होता है या तो फिर ज्यादा आ जाता है, तो ज्यादातर नुकसान ही नुकसान रहता है खेती वालों को। तो इसी सिलसिले में बहुत सारी कलाएं हैं जो हमारे कच्छ में लोग करते हैं। उसमें वीविंग है, टाई डाई है, ब्लॉक प्रिंट है, एम्ब्रॉयडरी है, लेदर वर्क है। ये सब कलाएं हैं जिसकी वजह से सबको रोजी रोटी मिलती है और बहुत अच्छा कारीगर है। मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूं उस गांव में मैंने जो गिना, इतना हमको नेशनल अवार्ड मिला, इतना नेशनल अवार्ड मिला, लेकिन 2000 की बस्ती है हमारे गांव का और 45 नेशनल अवार्ड है। तो कहने का मतलब है इतना अच्छा काम कर लेते हैं लोग कि उनको मार्केट ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ता है, मार्केट खुद इनके घर तक आती है। तो जो जैसे हमारे गांव की बात किया वो तो विविंग का है, लेकिन और गांव में भी बहुत सारे नेशनल अवार्ड है और वो भी एम्ब्रॉयडरी में है, लेदर वर्क में है, ब्लॉक प्रिंट में है, टाई डाई में है। लेकिन जो हमारा जो कच्छ का जो मेन सेंटर है वो भुज है। तो भुज के सिटी के अगल बगल में जो लोग रहते हैं उनको सबको अच्छा काम मिल जाता है, अच्छी इनकम हो जाती है, लेकिन भुज के बाहर जो रहते हैं, जो सिटी के बाहर रहते हैं, जो 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर पर जो रहते हैं उनको काम मिलना मुश्किल होता है। या तो फिर हमारे जैसे जो ट्रेडर रहता है वो उनसे काम करवाता है और कम पैसों में उनसे काम लेता है और ज्यादा पैसा खुद कमाता है। तो जब रेल इंडिया से मैं जुड़ा तो मेरे को पता नहीं था कि रेल इंडिया का इतना बड़ा काम होगा। पहले मेरे को फोन आया कि आपको मिलने के लिए हम आते हैं। मैंने बोला इतना नेशनल अवार्ड मिला है, हर कोई मिलने के लिए आता रहता है, तो मैंने बोला आप भी आ जाओ। तो बोला नहीं, आपके यहाँ 2-3 दिन रहना है। तब मैंने पूछा कि 2-3 दिन रहना है तो क्या सब्जेक्ट क्या है? तो उसने बोला सब्जेक्ट कुछ नहीं, आपको मिलना है। मैंने बोला आ जाओ। तो सब मेरा काम दिखाया। मैं एक हॉस्टल चलाता हूँ, स्टूडेंट के लिए, जिसमें जो मैं बात कर रहा हूँ 50-100 किलोमीटर के अंतर में जो गांव है उसी के बच्चे लोग यहाँ रहते हैं पढ़ने के लिए। तो वो मैं गीता मैडम को बताया और बोला कि यहाँ सब लड़के लोग पढ़ने के लिए आते हैं, तो उसने बोला यहाँ लाइब्रेरी खोलना है हमको। तो मैंने तुरंत तो कमरा दिखाया कि इधर खोलो, तो अच्छी बात है, लेकिन इतना बड़ा काम होगा वो भी तभी भी मेरे को पता नहीं था। फिर मेरे को बोला कि ऐसा कोई ट्रेनिंग हमको चालू करना है जो कारीगर लोग हैं उनको, जिसको स्किल है जिसमें उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो मैंने सोचा कि यहाँ तो कारीगर लोग जो गांव में जो कारीगर लोग रहते हैं ना, वो उसके घर में ही कारीगरी रहती है, उनको सब पता रहता है कैसे एम्ब्रॉयडरी करना है, कैसे वीविंग करना है, क्योंकि हमारा जब बच्चा पैदा होता है तो हमारा वीविंग का कपड़ा रहता है उसमें ही लपेटा जाता है, तो उनको पहले से पता है ये वीविंग का कैसे बनता है। तो फिर मेरे को आइडिया आया कि ये जो गांव में जो लोग रहते हैं उनको मार्केट तक कैसे ले जाना। काम तो सबको आता है लेकिन वो अपने अपने कपड़े के हिसाब से सब काम करते हैं। तो मैंने उनको सबको बताया कि ऐसा है मार्केट में क्या चलता है, कौन सा कलर चलेगा, कौन सा डिजाइन चलेगा, क्या करने से हमको मार्केट में एंट्री मिलेगी, वो हमको करना चाहिए। तो इसी सिलसिले में बहुत गांव में मैडम को भी ले गया था एक बार, बहुत गांव में ऐसी औरतें हैं जो जिसको काम की जरूरत थी, तो उसी औरतों को मैंने समझाया। लेकिन दिक्कत ये थी कि उन औरतों का जो मर्द लोग थे वो उनको बताया था कि किसी को आधार कार्ड नहीं देने का, वो सब अपने नाम से लोन ले लेगा। तो उनको सबको बताया कि आधार कार्ड दो तो मैं उधर आपका रजिस्ट्रेशन कराऊं, तो बोले नहीं आधार कार्ड तो नहीं देंगे हम, क्योंकि वो तो आप लोन ले लेंगे या और कुछ कर लेंगे तो भी हम क्या करेंगे। तो बोले आप पहले ऐसे करो, क्लास चालू करो, आधार कार्ड बाद में देना। तो क्लास चालू किया, फिर 15 दिन एक महीना बाद बोला कि अब तो भरोसा है आपको, ये आपका क्लास चालू हो गया है, आपको काम मिल रहा है, आपको धागा ये सब मटेरियल से वो मिल रहा है, तो ठीक है आप तो ले जाओ बोले। तो तब मेरे को ये मिला। तो बहुत लोगों को फायदा हुआ है। और एक गांव ऐसा है जिस गांव में झाड़ीजा लोग रहते हैं, वो तो बहुत पीने में 24 घंटा पीता है वो, तो औरत तो लोग हैं वो उनके पास पैसा नहीं रहता है घर चलाने के लिए भी। तो उस गांव में मैं गया, किसी ने बताया कि उस गांव में काम की बहुत जरूरत है और उधर आप जाओ। तो मैं उस गांव में गया, तो उधर सब औरत लोगों को पहले से बताया था कि इतने बजे मैं आऊंगा, आप सब इकट्ठे हो जाना। तो वो सब इकट्ठे हो गए थे, मैं गया और मेरे साथ एक लेडीज भी थी, क्योंकि लेडीजों के बीच जाना है तो कोई चाहिए साथ में, तो लेडीज भी थी। तो सबको बिठा के ये बात कर रहा था कि हमको काम मिले तो कैसे मिले, हम क्या करेंगे तो हमको काम मिलेगा। ये बात चल रही थी तो वो जो इस घर का मालिक था वो पी कर आया। उसने बोला कि क्यों ये औरतों के बीच आप बैठे हो, कहां से आए हो, क्या काम करते हो, पैसा सब हमारा आप खा जाते हो। फिर मेरे हाथ में बैनर था रेड इंडिया का, तो वो खोल के दिखाया कि देखो ये एक एनजीओ है, उनसे हमको हमको काम मिलेगा, ये गाइड मिलेगी। तो उसने खोल के देखा तो बैनर तो इंग्लिश में था, वो पढ़ नहीं पाया, तो बोले ओ ये तो पार्क की कंपनी लगती है कोई। मैंने बोला हाँ पार्क की कंपनी है। फिर उसने वहां से भगाया, बोले मैं दो को मारूंगा आपको, आप चले जाओ यहां से। तो ऐसे गांव में हम कैसे काम कर पाएंगे ये भी सोचने की है, क्योंकि

0: कहा कि जो सब उनका घर ये सब देखा ना, तो ऐसा लगता है कि उनको खाना मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा, ये भी एक क्वेश्चन है। लेकिन जो रेड इंडिया का जो प्रयास है वो बहुत ही बढ़िया है, और साहब ने बताया हर घर दस्तक हर हाथ पुस्तक। तो सेम थॉट्स मेरे को आया था कि लाइब्रेरी तक कोई पढ़ने के लिए नहीं जाता, क्योंकि किसी को फुर्सत नहीं है, जाएगा ही नहीं, क्यों जाएगा। तो मैंने सोचा था कि जैसे सब्जी बेचने वाला जो जाता है सब्जी बेचने के लिए, ऐसे हफ्ते में एक बार गाड़ी निकालना, गांव में घुमाना, उसमें बच्चों लोगों को जो कहानियां जो पसंद है ऐसी पुस्तकें ही रखना, और घर घर सबको कहना कि जिसको पढ़ना है वो ले जाओ, और वो दूसरे हफ्ते जब जाएगा तो पढ़ ले गया होता, उनके मम्मी को भी सुनाएगा, पापा को भी सुनाएगा, लाता लो, तब उनको पता चलेगा कि नहीं पढ़ने में तो ये बहुत ज्ञान मिलता है, सारा कुछ जानने को मिलता है। तो दूसरे हफ्ते जाएगा तो वो पुस्तक जमा कराएगा, दूसरा पुस्तक ले जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग है मेरे ख्याल से कि हमको जो आदमी है उनको आदमी बनाने का है, जो आदमी आदमी बनेगा तो जो मैडम ने कहा जो पोल्यूशन का जो हमारा काम है वो कुछ कंट्रोल में आएगा, क्योंकि बात समझ में नहीं आती ना क्या करना चाहिए। तो जिसको जितना काम हम करेंगे उतना काम कैसे फायदे में हम जाएंगे वो हमको थोड़ा सोचना चाहिए। तो मेरे को बोलना तो नहीं आता है, लेकिन जो कारीगर लोग हैं मैंने उनको ये ट्रेनिंग दी है। अभी 800-6000 मैडम को ट्रेनिंग दी है, उसमें से 200-250 लेडीज लोग ऐसा है जिसको काम मिलता रहता है रेगुलर, और सबको काम मिलता रहेगा। और दूसरा मेरा ऐसा है कि जो जिसको ट्रेनिंग मिल जाती है उनको मार्केट में जाके उस दुकानदार से मिलवा देता हूं कि ये कारीगर है इनको जितना काम चाहिए उतना आपको देगा, तो ये भी बेनिफिट है उनको, क्योंकि दूसरी मार्केट ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ता है। तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं, आप सबने मेरे को सुना, और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: थैंक यू देवजी भाई जी, आप जैसे पार्टनर्स की वजह से ही हमारा मिशन जो है वो सक्सेसफुल हो पा रहा है। थैंक यू फॉर बीइंग आवर पार्टनर एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी कि हम आपकी और हमारे मिशन में कामयाब हो।

0: partnership with Accenture in 2015. Till that, more than 40,000 women and girls have been trained across 30 plus locations in India. Through NEET centers, nearly 60% of them have self-reported to have received some economic gains in their lives post the skills training. With this, I'd like to call upon Mr. Amit Rai to share about the outcomes of skilling program.
1: Yeah, thank you, Smita. ये मतलब मेरे इंट्रोडक्शन में ये ऑडिटर वर्ड जुड़ते ही सडनली ना बहुत सीरियसनेस आ जाती है, जैसे बहुत ही कुछ सीरियस प्रोविजन वाली बातें होने वाली हैं, शायद हो भी, बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं रीड की नजर से रीड इंडिया ने जो काम किया है, जो एसडीजीज हैं और किस तरीके से हम उनसे जुड़े हुए हैं और हमारे क्या पर्सपेक्टिव्स अब तक बन पाए हैं, हम मैं उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा एक इंटरएक्टिव तरीके से. सो गुड मॉर्निंग एवरीबडी, एंड पीछे जितने लोग बैठे उनको नमस्ते सब लोगों को, क्योंकि हम लोगों ने ग्राउंड लेवल पे काम भी किया है तो हम लोगों की पहले से जानकारी है एक दूसरे के साथ. सो बिफोर आई मूव फर्दर, यू नो आई रियली थैंक रीड इंडिया एंड इट्स लीडरशिप एंड ऑल द पिलर्स हु हैव बीन हियर ऑन द डायस बिफोर अस व्हेन वी वर हियर टू एक्चुअली यू नो प्रोवाइड अस विद अ प्लेटफॉर्म टू शेड लाइट ऑन द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ लाइवलीहुड स्किल्स. सो ये मतलब मैं इतने सीनियर वेटरन्स एक्सपर्ट सबको सुन रहा था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हम डिजर्व भी करते हैं यहां पे खड़े होकर ये बातें बोलना, पर कहीं ना कहीं हम भी उसी जर्नी में जुड़े हैं और कुछ कुछ चीजें सीख के आगे बढ़ रहे हैं. यही हमारा मकसद है और इसी को हम लेकर, इसी पैशन को दिल में लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं. इट्स बिन नाउ ऑलमोस्ट 2 months दैट वी हैव बीन एंगेज विद रीड इंडिया फॉर अ स्पेशल एंगेजमेंट ऑफ कंडक्टिंग अ इम्पैक्ट असेसमेंट and of all the social interventions that REED introduces through its core programs. Honestly, I must admit that this is an opportunity for us for deep diving into the bodywork of REED India that has been constituted over a period of time and the way that it touches the lives of people across the communities. जब ये काम शुरू करते हैं तब बड़ा मेथोडिकल होता है, हर चीज पता होती है कि इस क्वेश्चन का जवाब, इस क्वेश्चन का जवाब, इस क्वेश्चन का जवाब चाहिए, बट जब आप उस काम में लग जाते हैं और जब जवाब खोजने की तह तक जाते हैं तो समझ में आता है कि काम हो कैसे रहा है, कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं, कौन कौन किस किस की लाइफ को कैसे कैसे टच कर रहा है और उसके पीछे एक मेथड है, उसके पीछे एक प्रोसेस है, उसके पीछे एक एंड गोल है जो पहले से डिसाइड किया गया है और उसको ऑर्केस्ट्रेट करके मतलब एक सिरे में पिरो के और फिर उसको ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट करना, ये एक अपॉर्चुनिटी है हम जैसे लोगों के लिए जिनको कि ऑडिटर है, हम लोग सोशल ऑडिटर कहा जाता है. तो इसलिए बहुत मजा आता है जब उसके अंदर एक थोड़ा सा ह्यूमैनिटी, रोमांस, पैशन, हर चीज जुड़ जाती है. तो इसलिए ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है टू गेट दिस, टू गेट द वर्क दैट वी आर डूइंग राइट नाउ. यू नो सो आई मीन इफ वी लुक एट इट, When we actually imagine a world where everyone has the opportunity to go ahead, to thrive, it appears to be a very extremely powerful thought. ऐसा लगता है कि अरे यही तो होना चाहिए, और कुछ होना ही क्यों चाहिए. एक free world हो, हर किसी के पास equal opportunities हो, access हो, equal access हो और हर कोई उससे prosper कर रहा हो. But इस काम को करने के लिए जैसे मैंने पहले बोला, method, process, organization level, इतना बड़ा network create करना, तभी ये चीजें संभव हो पाती हैं. So, you know what, so, I mean, of course, before we move further and before we move ahead on the topic that is there right now, which is probably, you know, to reflect upon the outcomes of the livelihood skills as a core intervention, as a core program that REED takes it through across its pivotal model of community libraries and resource centers. I would probably digress a little bit and I would move into the changing landscape of social sector. Very briefly, I would want to touch upon it because that is what is going to set the tone for what we are going to talk here onwards. And that is also the underlying essence of the impact assessment that we are doing. Even before that, you know, so the kind of work that we are doing, it's been almost 2 months, but probably we are midway in that work right now. So there are a lot of learnings which are subjective in nature, which are qualitative in nature, which is quantification of this is still in the process. So I'll try capturing all this in this conversation right now, or you know, it's more like a monologue in the moment, but yeah, like a monologue, what we are going to do. So the little bit of digression and reflection on how the landscape is changing right now. So, I would like to throw some light on the changing and evolving landscape of social sector and the emergence of regulated social stock exchange and related benefits and regulatory aspects. ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज कोई बहुत नया कॉन्सेप्ट नहीं है. आज से दो डिकेड पहले ये अलग अलग ज्योग्राफीज में अलग अलग जगह पे ये ट्राई किया गया है. एंड चाहे ब्राजील हो, चाहे कनाडा हो, चाहे यूएस हो, चाहे डेवलप्ड इकोनॉमीज हो, चाहे डेवलपिंग इकोनॉमीज हो, हर जगह पे इसको ट्राई किया गया. बट एक जो बेसिक प्रॉब्लम इनग्रेन थी कंसेप्चुलाइजेशन में, दैट वॉज बिकॉज इट वॉज ऑलवेज ट्रीटेड लाइक अ मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म वेयर देर इज there is a implementing agency and there is a donor and they are just, it's like a yellow pages directory. आप ये काम करते हैं, हम इस काम में काम करवाना चाहते हैं, अच्छा ठीक है आपका ये एड्रेस है हम फिर. एंड देन दे यूज टू मूव आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ द सोशल स्टॉक एक्सचेंज. द वे दैट इज इट हैज बीन कंसेप्चुलाइज्ड इन इंडिया, इट इज वेरी वेरी वेरी वेरी डिफरेंट. सो आई मीन आई वुड जस्ट ट्राई पुटिंग इट इन अ पर्सपेक्टिव दैट in Indian context, the social stock exchange is a set of processes. It is not only a place. मतलब वो कोई एक सिर्फ platform नहीं है कि matchmaking platform नहीं. It is also encapsulated the processes for people to come on board, for people of the entire social sector, social landscape, and play a participatory role in it. And it is this means that social

0: हमने सोनल को सुना, मिस्टर राय को सुना, यू नो हाउ वी आर ब्रिंगिंग इट टू द ग्राउंड लेवल. अब हम अपनी कम्युनिटी, अपने जो पार्टनर्स हैं, जो रियल ऑन ग्राउंड वर्कर्स हैं, उनको इनवाइट करना चाहेंगे टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस. सो नाउ आई लाइक टू इनवाइट सीमा जी एंड आरती राणा टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस.
1: सबको मेरा नमस्ते. मैं लखीमपुर खीरी से सीमा सिंह और मेरे साथ आरती राणा है. ये ट्राइबल सेंटर से हैं और ये ट्राइबल्स की बहुत बड़ी एक लीडर भी रही हैं. और अभी आई एम सो हैप्पी टू अनाउंस कि अभी हमारे साथ एज वीविंग ट्रेनर हमारे साथ काम कर रही हैं. पहले मैं हमारे सेंटर में, जैसे बाकी आपके सबके सेंटर्स में भी होता है, हम भी लाइब्रेरी और लाइवलीहुड के सारे ही प्रोग्राम्स करते हैं. और मुझे बहुत खुशी है कि मैं रूट लेवल से जुड़ी हुई हूं और रूट लेवल की सब अच्छी हुई चीजों को हम लोग बहुत आगे लेके जा रहे हैं. अच्छी चीजों को हम लोग और इन्हेंस कर रहे हैं, वुमेन को एम्पावर कर रहे हैं, अपनी छोटी छोटी छोटी मुहिम को हम बहुत आगे बढ़ा रहे हैं. एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगी. हम अपने सेंटर पे हर वीक एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं, कोई मूवी दिखाते हैं, कुछ भी करते हैं. एक हमारे सभी के गांव में एक प्रॉब्लम होती है कि ड्रिंक बहुत करते हैं. वहां पे एक लेडी मेरे पास आई, उन्होंने मुझे बोला आप एक जैसे मूवी चलाते हैं तो मेरा हस्बैंड मुझे बहुत परेशान करता है, मैं उसके बारे में उस मूवी के टाइम पे अनाउंस कर दूंगी. वो इतना डर गया इस बात को लेके कि नहीं, अब मैं दोबारा फिर ये नहीं करूंगा. तो इस तरह की छोटी सी चीज से उसका पूरा घर सुधर गया. तो आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू रील इंडिया की इतनी छोटी सी चीज से एक लेडी का पूरा घर सुधर गया और वो और लोगों के लिए भी एग्जाम्पल बनी कि ये भी हो जाएगा. डरते हैं लोग कि नहीं, हम ऐसा कुछ करेंगे तो वहां प्रॉब्लम होगी. और अभी हम लोग बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट में, बिल्कुल डीप इन द फॉरेस्ट हम लोग एक सेंटर हमने स्टार्ट किया है. वो आरती राणा उसको देखती हैं और वहां की वीविंग ट्रेनर हैं. और उधर हम हैंडीक्राफ्ट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि ओडीओपी का भी एक प्रोडक्ट जो है वो हम लोग वहां पे बना रहे हैं. ये हमारे ट्राइबल्स का एक ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है जिसको कि हम डिफरेंट डिजाइनिंग करके, अच्छा उनको करा के और बेटर डिजाइनिंग देके हम लोग उसको बहुत आगे बढ़ा रहे हैं. उसमें आरती हम लोगों को बहुत सपोर्ट कर रही हैं. और हनी बी वियरिंग की ट्रेनिंग बहुत अच्छी तरह से वहां पे लेडीज ने अटेंड करी और हनी बी के प्रोडक्ट्स भी हम लोग बना रहे हैं वहां पे. और काफी अच्छा उधर इम्पैक्ट है क्योंकि बीच जंगल में है, लोगों को हनी बी के बारे में ज्यादा पता नहीं था. और वहां बहुत अच्छा हम लोग काम करेंगे, इसके लिए भी हम लोग काफी चीजें आगे ट्राई कर रहे हैं. मैं आरती राणा से कुछ कहूंगी कि वो अपने बारे में थोड़ा बताएं. थैंक यू सो मच.
2: सभी लोगों को मेरा राम राम. मेरा नाम आरती राणा है. मैं किराम गुबरोला पोर चंद्र चौकी डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से. डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी एकदम नेपाल से सटा बॉर्डर सटा गांव है. जैसे वहां पे सटे गांव में जैसे हम लोगों का सन 2015 में मैं उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 350 स्वयं सहायता समूह बनाई थी. तो 16 में तुरंत रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार मिला था और 18 में ओडीओपी के अंतर्गत मेरा थारू क्राफ्ट को चयन किया गया था मैं. तो 21 में मुझे नारी शक्ति सम्मान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिला था. 22 में राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था मैं. जो हमारे जनपद लखीमपुर खीरी में सटे हुए नेपाल बॉर्डर जिसे हम लोग के गांव में कई संस्था आया, जैसे कि ये हथकरघा उद्योग चलाने के लिए, हैंडीक्राफ्ट के लिए. आज जैसे कि चलाने में तो चला दिए, फिर उसको देख रेख करने वाला कोई नहीं था. फिर उसके बाद जैसे कि अभी तो हमें ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 6-7 महीना हुआ है. पहले मैं गीता मैडम को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि अपने थारू जनजाति क्षेत्र की तरफ से और जैसे कि रीड इंडिया हम तक पहुंची. आज जितना हम लोगों का पीछे काम था, मैम हम लोग 97 से मैं काम कर रही हूँ मैं. और जैसे काम करते करते करते पीछे जैसे चलाने वाला कोई नहीं, रास्ता बताने वाला कोई नहीं. अभी हम 6-7 महीने से रीड इंडिया से हम लोग जुड़े हैं तो फिर से हम लोग को वापस आने का मौका मिला है. और जैसे कि तेजी से महिलाएं जुड़ रही हैं, अच्छे से काम भी कर रही हैं. और जैसे कि हम लोगों का मार्केटिंग का कोई दिक्कत नहीं है. हमें ट्राई पर ट्रैप इंडिया एक भारत सरकार की संस्था है, उससे हमारा लिंक है और काफी अच्छा उनका ऑर्डर है मैम. तो हम रीड इंडिया के सपोर्ट से, और रीड इंडिया का सपोर्ट रहेगा, हम लोग का मेहनत रहेगा तो अच्छी सफलता मिल जाएगी मैम. और इन इंडिया को फिर से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये अपने थारू जनजात क्षेत्र की तरफ से और अपने जनपद लखीमपुर खीरी के क्षेत्र की तरफ से धन्यवाद।
0: थैंक यू सीमा जी एंड आरती जी, बहुत ही सरलता से आपने बताया कि किस तरीके से हम अपने मिशन को ग्राउंड पे लेके आए हैं।

15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम के एक गरीब परिवार में जन्मा अब्दुल कलाम। खेलने कूदने की उम्र थी, लेकिन अब्दुल कलाम कभी अखबार बांटता या कभी कोई दूसरा काम करता। वो पढ़ना चाहता था, लेकिन दिलचस्पी विज्ञान में थी। किसी तरह तिरुचिरापल्ली से फिजिक्स में स्नातक परीक्षा पास की। हालात साथ नहीं दे रहे थे, मगर मन ऊंचे आसमान में छलांगे लगा रहा था। चेन्नई गए और अंतरिक्ष विज्ञान पढ़ा। इसके बाद DRDO ज्वाइन किया और वैज्ञानिक पारी शुरू की। जाने माने वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के मार्गदर्शन में काफी कुछ सीखा। सेना के लिए एक छोटा हेलीकॉप्टर बनाया। 1969 में अब्दुल कलाम ने भारतीय उपग्रह संस्थान केंद्र यानी इसरो में काम शुरू कर दिया। उन्हें भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट SLV-3 बनाने का काम मिला और कलाम ने कमाल कर दिखाया। अब्दुल कलाम कामयाबी की मंजिलें तय कर रहे थे। 1980 में रोहिणी 1 लॉन्च करने के बाद रॉकेट और बैलिस्टिक मिसाइल बनाकर अब्दुल कलाम कामयाबी की मंजिलें तय कर रहे थे। 1980 में रोहिणी 1 लॉन्च करने के बाद रॉकेट और बैलिस्टिक मिसाइल बनाकर दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। और संयोग देखिए, 80 के दशक में आर वेंकट रमन रक्षा मंत्री थे और अब्दुल कलाम उनके वैज्ञानिक सलाहकार। दोनों ही आगे जाकर देश के राष्ट्रपति बने। वेंकट रमन के जमाने में उन्हें एकदम नई मिसाइल तकनीक पर काम करने को कहा गया। फिर तो भारत की अग्नि और पृथ्वी श्रृंखलाओं ने दुनिया के बड़े बड़े देशों को चौंका दिया। वो भारत के मिसाइल मैन बन चुके थे। उन्हें पहले पद्म भूषण और फिर पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के तौर पर उनकी पारी बेमिसाल थी। पोखरण में भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण उनकी अगुवाई में हुआ और एक बार फिर दुनिया ने भारत की परमाणु क्षमता का लोहा माना। ১৯৯৭ का साल अब्दुल कलाम की सेवाओं के मूल्यांकन का साल था। उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न मिला और शायद यही वजह है कि 2002 में उनका नाम राष्ट्रपति पद के लिए प्रस्तावित हुआ तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों पार्टियों ने उन्हें समर्थन दिया। 25 जुलाई 2002 को वो देश के नए राष्ट्रपति बन चुके थे। एक बेहद सक्रिय राष्ट्रपति के तौर पर उनको याद किया जाता है। राष्ट्रपति भवन को उन्होंने इको फ्रेंडली बनाया और अपने आप को बच्चों के लिए समर्पित कर दिया। 27 जुलाई 2015 की शाम अब्दुल कलाम शिलांग के भारतीय प्रबंधन संस्थान में व्याख्यान दे रहे थे, तभी अचानक दिल का दौरा पड़ा और इस महानायक ने हमसे हमेशा के लिए विदाई ले ली।

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। श्रोताओं, आज कंप्यूटर हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, लेकिन जब किसी काम में बहुत बड़ी मात्रा में आंकड़ों का विश्लेषण करना हो, मौसम का पूर्वानुमान लगाना हो, बाढ़ का अनुमान लगाना हो, नई दवाओं की खोज में सहायता लेनी हो या अंतरिक्ष से जुड़े जटिल सवालों पर जवाब तलाश करना हो, तब सामान्य कंप्यूटरों से कहीं अधिक तेज कंप्यूटिंग क्षमता की जरूरत होती है। ऐसे कामों के लिए सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। सुपर कंप्यूटर बहुत तेज गति से बड़ी संख्या में गणनाएं कर सकते हैं और एक साथ कई काम कर सकते हैं। भारत ने भी सुपर कंप्यूटिंग के क्षेत्र में अपनी क्षमता लगातार बढ़ाई है। देश की यह यात्रा 1990 के दशक की शुरुआत में परम 8000 से शुरू हुई और वर्ष 2015 में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन यानी NSM की शुरुआत के साथ एक बड़े राष्ट्रीय अभियान में बदल गई। सितंबर 2026 तक भारत में 40 सुपर कंप्यूटर लगाए जा चुके हैं, जिनकी संयुक्त क्षमता 68 पेटाफ्लॉप्स है। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, भारत ने इस क्षेत्र में अब तक क्या प्रगति की है, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन का उद्देश्य क्या है और इनका इस्तेमाल आम लोगों के जीवन से जुड़े किन किन क्षेत्रों में किया जा रहा है। आइए सबसे पहले जानते हैं सुपर कंप्यूटर क्या होता है और भारत में इसकी जरूरत क्यों पड़ी।
2: श्रोताओं, सामान्य कंप्यूटर की तुलना में सुपर कंप्यूटर अत्यधिक तेज गति से बड़ी संख्या में गणनाएं कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोसेसर और सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम एक साथ काम करते हैं। इसे आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई बड़ा काम एक व्यक्ति करने के बजाय कई लोग मिलकर एक साथ करें तो वो काम जल्दी पूरा होगा। इसी तरह सुपर कंप्यूटर भी एक ही समय में कई गणनाएं करते हैं। सुपर कंप्यूटर की क्षमता को फ्लॉप्स यानी FLOPS में मापा जाता है। ये बताता है कि कंप्यूटर एक सेकंड में कितनी गणनाएं कर सकता है। एक टेराफ्लॉप्स का मतलब है एक सेकंड में लगभग 1 ट्रिलियन गणनाएं, जबकि एक पेटाफ्लॉप्स का मतलब है एक सेकंड में लगभग 1 क्वाड्रिलियन गणनाएं। श्रोताओं, सुपर कंप्यूटर केवल वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है। इनका इस्तेमाल ऐसे कई कार्यों में किया जा रहा है जिनका सीधा संबंध आम लोगों के जीवन से है। मौसम के पूर्वानुमान में सुपर कंप्यूटर बड़ी मात्रा में मौसम से जुड़े आंकड़ों का तेजी से विश्लेषण करते हैं। इससे भारी बारिश, तूफान और दूसरी मौसमी परिस्थितियों का पहले से अनुमान लगाने में सहायता मिलती है। इसी तरह बाढ़ की चेतावनी में भी सुपर कंप्यूटर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नदी में पानी का स्तर, बारिश और दूसरे आंकड़ों का विश्लेषण करके संभावित बाढ़ का पहले से अनुमान लगाया जा सकता है। इससे प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को समय रहते सावधान करने और बचाव की तैयारी करने में सहायता मिलती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सुपर कंप्यूटिंग का इस्तेमाल हो रहा है। बड़ी संख्या में दवाओं और रासायनिक पदार्थों का अध्ययन करके नई दवाओं की खोज और परीक्षण की प्रक्रिया को तेज करने में सहायता मिलती है। कृषि में फसल की पैदावार का अनुमान लगाने और मौसम का फसलों पर होने वाले प्रभावों को समझने में भी उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग उपयोगी है।
1: श्रोताओं, भारत में डिजिटल गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। देश में बड़ी मात्रा में डिजिटल डेटा तैयार हो रहा है। केंद्र सरकार ने अप्रैल 2015 में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन यानी NSM शुरू किया। इस मिशन को लगभग 4,500 करोड़ रुपए के पर व्यय के साथ शुरू किया गया था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY इस मिशन को संयुक्त रूप से संचालित करते हैं। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी CDAC पुणे और भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc बेंगलुरु इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन का उद्देश्य देश में सुपर कंप्यूटिंग की क्षमता बढ़ाना और इस क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके अंतर्गत वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी विकास और देश की सामाजिक आवश्यकताओं से जुड़े कामों में सुपर कंप्यूटिंग के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। श्रोताओं, इस मिशन के अंतर्गत केवल सुपर कंप्यूटर लगाने पर ही ध्यान नहीं दिया जा रहा है। भारत में सुपर कंप्यूटर के लिए जरूरी सर्वर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क और कूलिंग जैसी तकनीक भी विकसित की जा रही है। श्रोताओं, इसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज भारत अपने सुपर कंप्यूटिंग परितंत्र को और मजबूत कर रहा है। अब सवाल ये है कि सितंबर 2026 तक भारत ने इस क्षेत्र में कितनी प्रगति की है और इन सुपर कंप्यूटरों का इस्तेमाल किन महत्वपूर्ण कामों में किया जा रहा है, आइए अब जानते हैं।
3: श्रोताओं, सितंबर 2026 तक भारत ने 68 पेटाफ्लॉप्स की संयुक्त क्षमता वाले 40 सुपर कंप्यूटर लगाए हैं। इनमें 13 हाई एंड सुपर कंप्यूटर ऐसे हैं जिनकी क्षमता 1 पेटाफ्लॉप्स से अधिक है। इसके अलावा 12 सिस्टम ऐसे हैं जिनकी क्षमता 500 टेराफ्लॉप्स से 1 पेटाफ्लॉप्स के बीच है। अन्य 15 सिस्टम की क्षमता 500 टेराफ्लॉप्स से कम है। इन सुपर कंप्यूटरों को देश के अलग अलग शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों में लगाया गया है। श्रोताओं, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन की एक बड़ी उपलब्धि ये है कि भारत ने सुपर कंप्यूटर से जुड़े कई महत्वपूर्ण उपकरण और तकनीक देश में ही विकसित की हैं। इसी दिशा में रुद्र सर्वर श्रृंखला विकसित की गई है। रुद्र सर्वर सुपर कंप्यूटर को जरूरी कंप्यूटिंग शक्ति उपलब्ध कराते हैं। इन्हें सीडैक ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया है। इन्हीं स्वदेशी रुद्र सर्वरों और स्वदेशी सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से परम रुद्र सुपर कंप्यूटर तैयार किए गए हैं। सितंबर 2026 तक परम रुद्र सुपर कंप्यूटरों में 6000 रुद्र सर्वर लगाए जा चुके थे, जबकि 1500 अन्य सर्वर निर्माण के अधीन थे। भारत ने सुपर कंप्यूटरों के लिए हाई स्पीड इंटरकनेक्ट नेटवर्क भी विकसित किया है। इसका काम अलग अलग कंप्यूटिंग सिस्टम के बीच तेजी से डेटा का आदान प्रदान करना है। इसके अलावा स्वदेशी कूलिंग तकनीक भी विकसित की गई है। सुपर कंप्यूटर बहुत अधिक गर्मी पैदा करते हैं, इसलिए उन्हें ठंडा रखने के लिए विशेष व्यवस्था की जरूरत होती है। श्रोताओं, अब बात करते हैं कि इन सुपर कंप्यूटरों का फायदा देश और आम लोगों को कैसे मिल रहा है। स्वास्थ्य और दवा की खोज के क्षेत्र में सुपर कंप्यूटर बड़ी संख्या में दवाओं और अणुओं का अध्ययन करने में मदद करते हैं। इससे वैज्ञानिक को नई दवाओं की खोज और संभावित दवाओं के परीक्षण में तेजी लाने में मदद मिलती है। कोविड-19 के दौरान भी ऐसी कंप्यूटिंग क्षमता का इस्तेमाल मौजूदा दवाओं की जांच और उनके संभावित प्रभावों को समझने के लिए किया गया। मौसम और पर्यावरण के क्षेत्र में सुपर कंप्यूटर मौसम और वायु प्रदूषण से जुड़े बड़े आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं। बाढ़ की भविष्यवाणी के लिए भी सुपर कंप्यूटिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। जंगल की आग के फैलाव का अनुमान लगाने में भी सुपर कंप्यूटर मदद कर रहे हैं। इसके अलावा तेल और गैस की खोज, अंतरिक्ष अनुसंधान, खगोल विज्ञान, परमाणु विज्ञान, सामग्री विज्ञान और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में भी सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। श्रोताओं, सुपर कंप्यूटिंग के साथ साथ प्रशिक्षित लोगों की जरूरत भी होती है। इसी वजह से राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत छात्रों, शोधकर्ताओं और शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब तक 400 से अधिक संस्थानों में 16,000 से अधिक शोधकर्ताओं को मिशन के बुनियादी ढांचे से मदद मिली है। इनमें 2,900 से अधिक पीएचडी छात्र भी शामिल हैं। सितंबर 2026 तक इन प्रणालियों पर 1,50,00,000 से अधिक कंप्यूट जॉब यानी जटिल कंप्यूटर कार्य किए जा चुके हैं और 1,990 से अधिक शोध प्रकाशनों में इनका योगदान रहा है। श्रोताओं, देश में सुपर कंप्यूटिंग के इस्तेमाल को और बढ़ाने के लिए कार्यशालाएं, हैकथॉन और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क यानी NKN भी इस व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये देश के अलग अलग शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों को एक तेज नेटवर्क से जोड़ता है। इससे शोधकर्ताओं को कंप्यूटिंग संसाधनों तक पहुंचने और दूसरे संस्थानों के साथ मिलकर काम करने में मदद मिलती है।
1: श्रोताओं, भारत की सुपर कंप्यूटिंग यात्रा परम 8000 से शुरू होकर आज एक बड़े राष्ट्रीय परितंत्र तक पहुंच चुकी है। भारत को सुपर कंप्यूटिंग के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और देश की वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षमता को मजबूत करना है। सुपर कंप्यूटिंग का महत्व केवल बड़ी और तेज मशीनों तक सीमित नहीं है। इसका असली उद्देश्य विज्ञान और तकनीक की मदद से देश की वास्तविक समस्याओं का समाधान खोजने में सहायता करना है। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने, प्रस्तुति सहायक हरमनप्रीत सिंह। नमस्कार।
4: नमस्ते सबको। मैं आपको बताना चाहूंगी थोड़े कम शब्दों में, लेकिन क्योंकि टाइम भी कम है और थोड़ी नर्वस है, फर्स्ट टाइम में बोल रही हूँ मंच पे आकर, तो मैं इतना ही बताऊंगी कि मैंने जो ये ट्रेनिंग की ब्यूटी की, मैंने मोहम्मदपुर अहीर से ही सीखा था और अब मैं एज अ ट्रेनर सोन में जॉब कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच मैम ये आने के लिए और ये सेंटर वहाँ खोलने के लिए। थैंक यू सो मच।
5: नमस्ते सभी को, मेरा नाम सविता है, मैं सोन सेंटर में स्टिचिंग की जॉब करती हूँ और मैंने ये स्टिचिंग यहाँ से मोहम्मदपुर अहीर से सीखा था और मैं रीड में सीखकर रीड में ही काम कर रही हूँ और मैं इसके साथ साथ अपने घर भी बुटीक खोल रखी है और उसमें भी काम करती हूँ।
6: हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन, यू आर ऑल वेलकम इन टुडे सेशन। तो आज का जो सेशन है, मतलब अभी हमारा 12th नंबर सेशन था, जैसे तो ये अभी तक के सेशंस में हम करियर से रिलेटेड काफी कोर्सेज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, कई स्ट्रीम्स के बारे में हमने डिस्कस किया है और मेरे हिसाब से कई स्ट्रीम्स आपको ऐसी नहीं भी पता चली होंगी अभी जो शायद पहले आपको नहीं पता हूं, या कई स्ट्रीम्स के बारे में आपको ज्यादा जानकारी मिली होगी जो हो सकता है आपको आगे अपना करियर बनाने में काफी हेल्पफुल रहे। आज के सेशन में हम जो बात करेंगे कि 10th के बाद जो वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, जिसे हम पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कहते हैं, उनमें क्या क्या स्कोप रहता है, किस किस टाइप के डिप्लोमाज होते हैं। आप सब जानते हैं, आप जहां भी रहते हैं, जिस भी एरिया में आप हैं, तो आपके आसपास में काफी पॉलिटेक्निक कॉलेजेस होते हैं जो डिप्लोमा ऑफर करते हैं 10th क्लास के बाद में। ये जो 10th क्लास के बाद में डिप्लोमा होता है आपका, 3 ईयर का डिप्लोमा होता है और इक्वलेंट टू 12th माना जाता है। मतलब आप देखेंगे कहीं भी 12th के बेस पे कोई भी वैकेंसी निकलती है, कुछ भी एडमिशन अगर 12th के बेस पे है तो वहां लिखा होता है क्लास 12th और 3 ईयर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। तो ये जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होता है आपका, एक तरह से 12th के इक्वलेंट होता है। तो जो लोग 10th के बाद, मतलब एक तरह से ये डिसाइड नहीं कर पाते कि उन्हें किस स्ट्रीम में जाना है या वो आगे कॉमर्स, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल क्या लें, तो वो क्या करते हैं कि 10th के बाद वो डिप्लोमा में एडमिशन ले लेते हैं जो 3 ईयर का रहता है, विच इज इक्वलेंट टू क्लास 12th। अब डिप्लोमा की जो फिलॉसफी थी, ये एक तरह से वोकेशनल कोर्सेज का कॉन्सेप्ट था, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि आपको कुछ टेक्निकल नो हाउ प्रोवाइड की जाए, जिस भी स्ट्रीम में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, आपने उस फील्ड में डिप्लोमा किया और उसके बाद आप लोअर लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। जनरली देखा गया है कि आप डिप्लोमा करते हैं तो आपको जो जॉब मिलती है वो हम ये कह सकते हैं जैसे A to D क्लास में अगर हम जॉब्स को डिवाइड करें तो सी कैटेगरी की जॉब्स आपको मिलती हैं, और वही अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो आपकी जॉब जो है वो आपकी डी कैटेगरी की हो जाती है। जैसे आप किसी भी फैक्ट्री में देखिए, वर्कशॉप में, या इतनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, आज मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर भी कहां कहां वैकेंसीज निकलती हैं, ठीक है। आप इंटरनेट पे सर्च करके देखिए, आज ही मैं सर्च कर रहा था इंटरनेट के ऊपर कि डिप्लोमाज, मतलब वैकेंसीज आफ्टर डिप्लोमा, तो मतलब थाउजेंड्स ऑफ वैकेंसीज आर देयर जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में निकलती हैं या प्राइवेट कंपनीज है, प्राइवेट फैक्ट्रीज आप देखेंगे NCR एरिया के अंदर, गुड़गांव के अंदर इतनी सारी वर्कशॉप्स है, फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, तो वहां पर डिप्लोमाज की जॉब काफी निकलती है, ठीक है। थोड़ा सा लाइन हार्डवर्किंग होता है आपको, मतलब बिल्कुल लोअर लेवल से स्टार्ट करना रहता है और धीरे धीरे धीरे धीरे आपका लेवल इंप्रूव होता है इन टर्म्स ऑफ सैलरी। तो ये हमारा आज का ऑब्जेक्टिव रहेगा वोकेशनल कोर्सेज के बारे में। तो लेट अस स्टार्ट विद इट, थोड़ा ये समझें कि वोकेशनल कोर्सेज बेसिकली क्या होते हैं, थोड़ा सा उसकी थ्योरी के बारे में बताऊंगा आपको पहले, फिर हम बात करेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज होते हैं 10th के बाद। मैंने आपको पहले ही बताया कि 10th के बाद कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पेरेंटल, जो हमारे फैमिली जो है वो ज्यादा फाइनेंशियली हमें सपोर्ट नहीं कर सकते, तो उनका कहना ये होता है भी 2-3 सालों में आप कोई ऐसा टेक्निकल कोर्स कर लीजिए जिसके बाद उसको यूज करके आप अपना कोई छोटा मोटा काम स्टार्ट कर सकते हैं या कहीं पर आप अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारे पेरेंट्स का एक एम सा होता है कि 2-3 साल कुछ आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर दी और उसके बाद फिर आप अपना कुछ काम करना स्टार्ट कर सकें। तो वोकेशनल कोर्सेज एक तरह से करियर स्टार्ट करने का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इट इज अर्ली बिगिनिंग, ठीक है। मतलब वही अगर हम पहले 12th करें, फिर हम बीटेक करें 4 साल की, और फिर उसके बाद एमटेक करें, तो वो एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है। वही डिप्लोमा कोर्सेज में हमें बहुत जल्दी, मतलब 3 साल का डिप्लोमा आपने किया और उसके बाद आपको जॉब मिल जाती है प्राइवेट सेक्टर में। काफी गवर्नमेंट सेक्टर में भी काफी वैकेंसीज आती हैं डिप्लोमाज की, गवर्नमेंट पीएसयूज में भी काफी वैकेंसीज आती हैं। आप उसके बाद इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, वो भी मैं बात करूंगा आज के इस सेशन में कि उसका क्या प्रोसीजर रहता है। तो वोकेशनल कोर्सेज बेसिकली क्या होते हैं, वोकेशनल कोर्सेज ना स्पेसिफिक कोर्सेज होते हैं। आपने एक तरह से हैंडीक्राफ्ट में डिप्लोमा करना है, ब्यूटिशियन में डिप्लोमा करना है, ठीक है, इस तरह से मतलब बहुत स्ट्रीम है। अभी हम जनरली जो मानते हैं कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, ये 5-6 स्ट्रीम की हम बात करते हैं, बट अगर आप इनडेप्थ में जाओगे तो वोकेशनल कोर्सेज में काफी ज्यादा स्ट्रीम्स अवेलेबल होती है। कई जो गवर्नमेंट कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर स्ट्रीम ही बहुत कम होती है, पर वो तो जैसे भी आप जहां भी अप्लाई करेंगे, बाकी काफी ज्यादा स्ट्रीम्स होती हैं वोकेशनल कोर्सेज के अंदर, और उसमें आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि 3 ईयर स्पेंड करने के बाद में आप कहीं ना कहीं अपना वर्क करने की स्टेज में आए, आप अपना करियर स्टार्ट कर पाए डिप्लोमा करने के बाद। तो जैसे पॉलिटेक्निक्स को हम कहते हैं बेसिकली दैट इज वोकेशनल कोर्स, तो पहली चीज की 10th क्लास के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं और ये इक्वलेंट टू 12th क्लास होता है, तो इसका मतलब 3 साल में आपकी 12th भी हो जाती है और प्लस में आपका टेक्निकल एजुकेशन भी आप सीख जाते हैं जिस स्ट्रीम में आप अपना काम करना चाहें। इसके कई सारे किन किन स्ट्रीम में ये रहता है आप देखेंगे, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में, हेल्थ केयर में, ऑटोमोबाइल्स में, एनिमेशन में, फैशन एंड टेक्सटाइल में, मतलब इतनी स्ट्रीम्स हैं वोकेशनल कोर्सेज के अंदर। यस, स्टिचिंग में है, ब्यूटी कल्चर में है, तो ये सारी ट्रेनिंग जो है ना वोकेशनल में आती है। आप देखते हैं जैसे रीड के ऊपर भी एक तरह से हम ये कहेंगे, जैसे आप स्टिचिंग, जैसे बहुत आप में से लेडीज ऐसी हैं जो स्टिचिंग का कोर्स करती हैं, एक टाइप से जो ब्यूटिशियन का लेवल करती हैं, तो वही चीज आप ऐसे मतलब जो यहाँ रहता है वो इसे इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, मतलब उसका आपने सीखा और उसको आपने डायरेक्ट फिर इम्प्लीमेंट किया, अपना काम स्टार्ट किया। एक होता है कि 10th के बाद आपने फॉर्मली कोर्स में एडमिशन लिया, 2 या 3 साल का आपने कोर्स किया, ठीक है। तो ये मतलब इतनी सारी स्ट्रीम्स है कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना करियर चूज कर सकते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा जो लोग पॉलिटेक्निक में जाने से जो बचते हैं, या जी हम ये कहें कि काफी लोग ऐसे भी हैं आपको मिलेंगे जो आपको ये कहेंगे कि पॉलिटेक्निक के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी कम होती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज तो है बट आपको मतलब कुछ साल मेहनत करनी रहती है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे लेवल से एंट्री नहीं होती, एक तरह से बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल से आप किसी इंडस्ट्री में एंटर करते हैं और धीरे धीरे 2-5 साल मेहनत करने के बाद में फिर आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच पाते हैं, एक हैंडसम सी सैलरी आपकी हो जाती है, बट स्टार्टिंग में आपको 2-4 साल हार्डवर्क करना रहता है क्योंकि एज भी आपकी कम है ना। अभी 10th के बाद आपने 3 साल का डिप्लोमा किया, मतलब 20-21 साल के आसपास आपकी एज है, तो 20-21 ईयर्स के अंदर आपने अपना जॉब स्टार्ट किया और 4-5 सालों में आप जब आपकी एज 25 ईयर्स तक होती है तो आप एक ठीक ठाक सैलरी पे पहुंच जाते हैं अगर आपने स्टार्टिंग आपकी ठीक ठाक हो गई है तो, राइट। तो ये एक सारे एडवांटेजेस है डिप्लोमा कोर्सेज के। अब देखिए किन किन फील्ड्स में है, थोड़ा मैं टाइम जो है वो इस बात पे स्पेंड करूंगा कि किन किन फील्ड्स में है। थोड़ा सा डिप्लोमा की दिक्कत क्या है कि जैसे आप कोई हरियाणा से बिलोंग करता है, कोई आप में से उत्तराखंड से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, तो हमारे आसपास जो डिप्लोमा कॉलेजेस है, जो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस होते हैं, कुछ कॉलेजेस में उतने कोर्सेज अवेलेबल नहीं होते, एक स्पेसिफिक से कोर्स अवेलेबल है। एक बहुत बड़ी हमारे कॉलेजेस की प्रॉब्लम क्या रहती है कि कॉलेजेस में प्लेसमेंट की फैसिलिटी ज्यादा नहीं होती, मतलब जितने डिप्लोमा कॉलेजेस हैं वहां प्लेसमेंट पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तो अगर उस चीज को थोड़ा एक तरह से ध्यान दिया जाए तो बच्चों की अगर वहीं से ही प्लेसमेंट होनी स्टार्ट हो जाए तो डिप्लोमा कोर्सेज भी काफी मार्केट में वेटेज ले के आ सकते हैं। तो जैसे पहले हम बात करेंगे कि हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कोर्सेज, ठीक है, ये भी आपके डिप्लोमा के अंदर आते हैं, वोकेशनल कोर्सेज होते हैं। ये बेसिकली होटल से डील करते हैं या ऐसा इंडस्ट्री जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जिसे हम कहते हैं, इसमें आपका डिप्लोमा होता है फूड एंड बेवरेज सर्विस के अंदर। अब ये फूड एंड बेवरेज सर्विस जो है, जैसे जितनी भी आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स है, जैसे जो कोल्ड ड्रिंक जिसे हम कहते हैं, कोका कोला है, कोक है, तो आप अगर यहाँ से डिप्लोमा करते हैं तो उसमें जॉब आपको मिल जाती है एज ए फूड एनालिस्ट की, ठीक है, इस तरह की जॉब्स रहती हैं। डिप्लोमा इन बेकरी एंड कन्फेक्शनरी होता है। जैसे आप सोच के देखिए, गुड़गांव में या एनसीआर के अंदर अगर आप बेकरी का प्रोडक्ट जो बनाना सीखना चाहते हैं तो उसकी क्लासेस के काफी ज्यादा फीस चार्ज की जाती है प्राइवेट के अंदर, ठीक है। मतलब आपको बेकरी और जो कन्फेक्शनरी की आइटम्स होती हैं काफी ज्यादा हैवी फीस चार्ज की जाती है सिखाने के लिए, केक बनाना सिखाना और प्रोफेशनली काम करना। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है 3 साल का बेकरी के अंदर, तो उसके बाद आप अपनी बेकरी ओपन कर सकते हैं। और स्मॉल स्केल पे आप देखिए, आज के टाइम के अंदर जो बेकरीज हैं बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट से, देखिए ये वो चीजें हैं बेसिकली जो वोकेशनल कोर्सेज का कॉन्सेप्ट ही यही था कि आप लो इन्वेस्टमेंट से अपना काम स्टार्ट कर सके, ठीक है। जैसे अगर आपने बेकरी में कोर्स किया हुआ है तो आप बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट से अपनी बेकरी ओपन कर सकते हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती, राइट। डिप्लोमा 3 साल का होता है, जितने भी डिप्लोमाज होते हैं ना, देखिए 10th क्लास के बाद में जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं वो सभी 3 साल के होते हैं, ठीक है, कि जो डिप्लोमा होल्डर है वो 12th के इक्विवेलेंट है, तो 3 साल का डिप्लोमा रहता है। क्वेश्चन था जिसे मैंने आंसर किया उसका। हाँ जी, मैं बात कर रहा था बेटे बेकरी एंड कन्फेक्शनरी का, तो आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप देखिए आज के समय में केक्स की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा हो चुकी है, मेरे हिसाब से कोई विरला ही घर ऐसा होगा जिसमें बर्थडे सेलिब्रेशन किया जाता है बिना केक, ठीक है, छोटे छोटे बच्चा, ठीक है, तो वो मतलब अगर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है या फैमिली में कोई भी फंक्शन है, एनिवर्सरी है किसी की, तो केक तो बहुत छोटा, मतलब केक तो एक आप मान के चलिए एसेंशियल आइटम है, ठीक है। आप अपने आसपास में भी देखेंगे काफी बेकरीज होती हैं, तो अगर आपने प्रोफेशनली तरीके से कोर्स किया हुआ है तो आप उसको काम कर सकते हैं। और डिप्लोमा की एज लिमिट जो है वो मतलब 22 से 23 साल तक है, मतलब जैसे आपकी 10th जो है ना 17 ईयर में हो जाती है, ऑलमोस्ट 17 नहीं तो 18 में हो जाती है, तो उसके बाद 4-5 साल तक आप डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं। गैप ईयर के लिए आपको सर्टिफिकेट देना होता है, एक एफिडेविट आपको देना होता है कि ये जो गैप आपका है इसमें आपने कुछ किया है। ऐसे ही फूड प्रोडक्शन में क्राफ्ट कोर्स, आप देखिए रीड के सेंटर्स पे भी कई सेंटर्स पे ऐसी एक्टिविटी की गई है, जैसे जहां पर फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड, फूड मतलब एक तो हम खाना बनाते हैं एट अवर होम, ठीक है, एक हम प्रोफेशनल कुकिंग करते हैं। प्रोफेशनल कुकिंग मतलब हमें 50 लोगों का खाना बनाना है, 100 लोगों का खाना बनाना है। मैंने देखा है पीछे कई सेंटर्स के ऊपर, जैसे आपका एक तरह का जो कुमासपुर सेंटर है, कई सेंटर्स में इस तरह की ट्रेनिंग भी हुई है। तो जो डिप्लोमा की एज जो है वो आपकी मिनिमम 17 है, मैक्सिमम जैसे मैंने आपको बताया 4 से 5 साल है, बट भाईपाल जी ने आंसर किया कि 24 साल तक आप डिप्लोमा कर सकते हैं, तो 17 से 24 साल तक एज है इसमें, ठीक है। फिर डिप्लोमा इन कुकरी है, हाउस कीपिंग है, रेस्टोरेंट एंड काउंटर सर्विस है, होटल रिसेप्शन है, हॉस्पिटैलिटी ऑपरेशन मैनेजमेंट है। आप देखिए जैसे अगर आपको होटल इंडस्ट्री में काम करना है तो उसमें एक ऑप्शन तो क्या रहता है कि 12th के बाद आप होटल मैनेजमेंट करिए, कोर्स करिए, ठीक है, वो आपका 3 साल का कोर्स रहता है BSc इन होटल मैनेजमेंट। उनका भी हम एक अलग से क्लास लेंगे कि जिसमें मैं होटल मैनेजमेंट, फैशन डिजाइनिंग का भी हमने एक अलग से सेशन प्लान किया हुआ है। तो एक तरीका तो क्या रहता है कि पहले आपने 12th किया और 12th के बाद में आपने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया, 3 साल का आपका कोर्स रहता है, BSc इन होटल मैनेजमेंट होती है। सेकेंड ऑप्शन क्या रहता है कि आपने डिप्लोमा किया 3 साल का 10th के बाद, और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के किसी भी कोर्स में जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो वो करने के बाद आप उस इंडस्ट्री में काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप देखिए आपके आसपास में इतने होटल्स ओपन होते हैं, काफी रेस्टोरेंट्स हैं, तो उन रेस्टोरेंट्स में जो लोग काम करते हैं, पहले तो क्या होता था कि जो एक तरह से जो वेटर है या जो कुक है वो कोई भी एरा गेरा रख लिया जाता था, बट आज के समय में आप देखेंगे जैसे ही होटल का लेवल ज्यादा बढ़ता जाता है तो दे ऑल्सो नीड सम प्रोफेशनल पीपल, ऐसा लोग, ऐसे लोग जिनको उसके बारे में पता हो। तो एक ये हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का भी स्कोप है और इसमें भी सोचा जा सकता है डिप्लोमा करने का अगर आप इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो इसके बाद सेकंड आता है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मतलब जो हमारे एक तरह से जो टेक्निकल हम कहें जिसको, कि ज्यादातर बच्चे जिस लाइन में जाके डिप्लोमा करते हैं, मैक्सिमम आप देखेंगे जब जहां भी हम वोकेशनल कोर्सेज या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की बात करेंगे तो मैक्सिमम बच्चे जो है वो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा करते हैं, ठीक है, जिसमें आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप होता है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जॉब जल्दी मिल जाती है। आप देखेंगे इंडिया में इतनी कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, ट्रक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, ठीक है, जहां पर आपको अगर आपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है तो आपको मतलब जॉब मिल जाती है इजिली। स्टार्टिंग लेवल से आपकी एंट्री होती है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, फिर आप धीरे धीरे अपना करियर बना सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होता है, सिविल इंजीनियरिंग में होता है, सिविल इंजीनियरिंग में तो गवर्नमेंट जॉब्स भी काफी निकलती हैं अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो। रेलवेज में पीछे हमने बात किया था, जैसे रेलवेज में तो डिप्लोमाज की वैकेंसी ज्यादा आती है, जैसे आपको ध्यान हो मैंने अभी पीछे एक सेशन लिया था कि जॉब अपॉर्चुनिटीज इन रेलवे भी, जो हमारा रेलवे डिपार्टमेंट है उसमें अगर आपको नौकरी चाहिए तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन रहते हैं। तो रेलवे में जो भी हमारी टेक्निकल पोस्ट है, ठीक है, उन टेक्निकल पोस्ट में काफी पोस्ट ऐसी हैं जो डायरेक्ट आपसे डिप्लोमा मांगती है। तो उसमें अगर आपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, मतलब ये सारी स्ट्रीम्स हैं, इनमें इंजीनियरिंग भी होती है, इन सब में आप बीटेक भी कर सकते हैं। पर अगर आपने डिप्लोमा भी किया हुआ है इसके अंदर 3-3 साल का, अब तेरी समस्या थोड़ी ये रहती है, मैं आपको बताऊं एक्चुअल रूट कोज क्या है, दिक्कत कहां पर है। दिक्कत सारी यहां पर है कि हमारे इंडिया में वोकेशनल कोर्सेज या हम डिप्लोमाज को कहें, इनको इतना सीरियसली नहीं लिया जाता, ठीक है। उसके पीछे कारण क्या है कि इतना सीरियसली नहीं लेते, जो कॉलेज में टीचर्स हैं वो भी इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते, और दूसरा बच्चे भी नॉन सीरियस एटीट्यूड इसमें रखते हैं। अगर आप किसी अच्छे पॉलिटेक्निक से 3 साल का डिप्लोमा करते हैं, 3 ईयर बहुत बड़ा टाइम होता है, तो जिस भी फील्ड में आप डिप्लोमा करेंगे उस फील्ड में आपको एक अच्छा नॉलेज हो जाता है, अच्छा अवेयर हो जाते हैं उस फील्ड से रिलेटेड, आपको उस फील्ड से रिलेटेड जितने भी टेक्निकल नॉलेज काम करने में चाहिए उतना टेक्निकल नॉलेज आपको मिल जाता है। आप देखेंगे, जैसे मैं आप एक चीज और ऐड करूं यहां पर, काफी बच्चे ऐसे हैं जो दे गो फॉर ITI, वो क्या करते हैं ITI भी करते हैं, ठीक है। अब वही चीज देखिए, जो ITI है वो डिप्लोमा से भी लो लेवल में काउंट किया जाता है, मतलब ये 3 आपकी लेयर्स हैं। फर्स्ट लेयर जैसे सबसे लो लेवल पे अगर हम बात करें तो ITI आता है, सेकेंड लेवल पे आपके डिप्लोमाज होते हैं, पॉलिटेक्निक डिप्लोमाज होते हैं, और थर्ड लेवल पे आपका बीटेक होता है। तो एक तरह से ये तीनों ही टेक्निकल एजुकेशन की लेयर्स हैं, राइट। तो आप अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से जो भी करना चाहें, ठीक है, वो आप उसमें कर सकते हैं, राइट। तो जैसे इसमें ये सारी फील्ड्स में आप अपना डिप्लोमा कर सकते हैं कि जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो, और उसके बाद अगर आप उसी में अपना करियर बनाना चाहें आगे फर्दर, आप उसमें इंजीनियरिंग करना चाहें तो फिर अपना इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बताऊं स्टेट वाइज, जैसे हरियाणा की हम बात करें चाहे हम यूपी की बात करें, तो आपका जो बिजली बोर्ड डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, या टाउन एंड प्लानिंग का डिपार्टमेंट है, या काफी डिपार्टमेंट्स हैं वहां पर डिप्लोमा होल्डर की वैकेंसीज आती है। आपका जो बिजली बोर्ड डिपार्टमेंट है वहां पर डिप्लोमा होल्डर्स की, जिन्होंने इलेक्ट्रिकल्स में किया हुआ है, उनकी काफी वैकेंसी आती है। आपके जो एक तरह से टाउन प्लानिंग है उनमें सिविल इंजीनियरिंग की काफी वैकेंसीज आती हैं अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है। तो मतलब ये डिपेंड करता है कि आपने किस स्ट्रीम में डिप्लोमा किया है। लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण देखो जनरली क्या होता है, मैंने देखा बहुत बच्चों से मिलते हैं जिन्होंने डिप्लोमा किया और बाद में दे से भी डिप्लोमा करने का कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। वो क्या होता है कि वो बाहर जॉब अप्लाई नहीं कर पाते ज्यादा, मतलब लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि कहाँ वैकेंसी निकली हुई है, कॉलेज उसमें सपोर्ट नहीं करता प्लेसमेंट के अंदर, तो जिस कारण फिर वो दे फील कि डिप्लोमा का कोई ज्यादा यूज नहीं हुआ। बट काफी बच्चे ऐसे भी हैं NCR एरिया में स्पेशली, जो डिप्लोमा करने के बाद में एक ठीक ठाक कंपनी में जिनकी सेटलमेंट हो जाती है और एक अच्छा लेवल पे धीरे धीरे पहुंच जाते हैं। इसके साथ साथ और भी काफी फील्ड्स हैं जिसमें डिप्लोमा होता है, ट्रैवल एंड टूरिज्म में है, इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड पर्सनल दैट इज प्रेजेंटेशन स्किल्स में, टेक्सटाइल डिजाइनिंग में, फैशन डिजाइनिंग है, हेयर एंड स्किन केयर में। आप देखते हैं आजकल VLCC का नाम आप सबको पता ही होगा, VLCC एक तरह से आपका जो ब्रिटिशियन से रिलेटेड कोर्सेज कराते हैं, ठीक है, या उसमें आपका हेयर या जो स्किन केयर के कोर्सेज रहते हैं, तो वो एक तरह से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, बट वहीं गवर्नमेंट सेक्टर में भी ये इनसे रिलेटेड डिप्लोमाज होते हैं। ब्यूटिशियन का डिप्लोमा है, इवेंट मैनेजमेंट है, ऑफिस मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट है, कॉस्मेटिक एंड लाइफ प्रोडक्ट डिजाइनिंग है, कैटरिंग मैनेजमेंट है। तो मतलब इट्स अ वेरी वाइड एरिया, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा स्कोप है, काफी ज्यादा इसमें स्ट्रीम्स हैं, ठीक है, ज्यादा स्ट्रीम्स हैं, इसलिए आप अपना फ्यूचर बिल्डअप कर सकते हैं अगर आपने किसी भी कोर्स में डिप्लोमा किया है, बट स्टार्टिंग में थोड़ी मेहनत रिक्वायर्ड होती है इसके अंदर, क्योंकि इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलता, इमीडिएट बहुत अच्छी जॉब्स नहीं है डिप्लोमा में, डिप्लोमा करने के बाद कुछ टाइम आपको मेहनत करनी रहती है तभी आप अच्छी जॉब ले सकते हैं। अब क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, देखो डिप्लोमा तो आपने कर लिया, डिप्लोमा करने के बाद क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं, जैसे मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको देता हूं, वेब डेवलपर का आप काम कर सकते हैं। वेब डेवलपर मतलब जो एक टाइप से जो आप लोग की जो वेबसाइट्स होते हैं जो डेवलप करते हैं, अगर आपने कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा किया हुआ है और उसके बाद आपने किसी प्राइवेट कॉलेज से साल डेढ़ साल का कोई कोर्स भी किया है थोड़ा लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में, तो वेब एज ए डेवलपमेंट आप कर सकते हैं। साइट्स जो बनती हैं वो आप बन सकते हैं बना, जो डेटा एनालिस्ट का काम होता है, ब्यूटिशियन का आप अपना काम कर सकते हैं। आप देखो मैं काफी रीड के कई सेंटर्स पे मैं एज ए लास्ट ईयर मैंने कई सेंटर्स आपके देखे, जहां पर क्या होता है कि एक टाइप से ब्यूटिशियन का कोर्स करवाया जाता है, ठीक है, और ब्यूटिशियन का कोर्स में भी आपके लेवल्स हैं लेवल वन लेवल टू, और जब आप एडवांस कोर्स कर लेते हैं तो उसके बाद मोटिवेट किया जाता है फीमेल्स को कि आप अपना ब्यूटी पार्लर खोलें। कई जगह पर मैंने देखा है कि काफी सक्सेसफुल ब्यूटी पार्लर भी है, मैं जैसे रामपुर की बात करूंगा, रामपुर में मैं गया था पीछे हो गया मुझे साल सवा साल, तो वहां पर जैसे भी हमने जैसे विमेन एंटरप्रेनरशिप पे काम किया था, तो वहां पर काफी एग्जांपल्स ऐसे थे जिन्होंने रीड के सेंटर के थ्रू ब्यूटिशियन का कोर्स किया और ब्यूटिशियन का कोर्स करने के बाद फिर उन्होंने अपना जो पार्लर ओपन किया, और काफी पार्लर उसमें ऐसे हैं जो सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक टाइप से जो कुमासपुर में भी ऐसा चल रहा था आपका, माने मतलब काफी सेंटर्स पे ये कोर्सेज चलते हैं, तो मतलब वही चीज है कि वहां पर हम जो इनफॉर्मल कोर्स आपको दे रहे हैं वही अगर आपने 10th के बाद एक 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है तो एक तरह को हम कह सकते हैं ये फॉर्मल एजुकेशन है आपकी, तो ये चीजें आप सारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये आजकल जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ये भी एक बहुत फ्यूचर का एक तरह से हम ये कह सकते हैं इज अ करियर। SEO बेसिकली क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है कि आप देखते हैं आजकल लोग YouTube के थ्रू Facebook के थ्रू अपने चैनल्स बनाते हैं या काफी एक्टिविटी करते हैं ताकि उनको वहां से इनकम आनी स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो लोग साइट्स बनाते हैं और ये चाहते हैं कि जब सर्च किया जाए तो उनका साइट सबसे ऊपर आए, उनका नाम सबसे ऊपर आए, तो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, इसका एक कोर्स होता है, अगर आपने ये किया हुआ है SEO का कोर्स किया हुआ है तो फिर आप एज ए SEO पर्सन काम कर सकते हैं कंपनीज के लिए। हेयर ड्रेसर का भी काम रहता है, आपका ग्राफिक डिजाइनर है, सोशल मीडिया मैनेजर है, शेफ है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, मतलब इट्स अ वेरी वाइड स्ट्रीम। मैं आपको बताऊं जो अगर हम कई और कंट्रीज को कंपेयर करें, USA की बात करें, UK की बात करें, तो वहां पे अर्ली एज से ही टेक्निकल एजुकेशन पे ज्यादा जोर दिया जाता है, जबकि हमारे इंडिया में अलग है, हमारे इंडिया में टेक्निकल एजुकेशन का भी ज्यादा रोल नहीं है, अभी इतना ज्यादा मतलब क्रेज नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में काम किया गया है, थोड़ा सा उसमें कहा गया है कि वोकेशनल कोर्सेज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ एकेडमिक कोर्सेज, क्योंकि वोकेशनल कोर्सेज के बाद आप बहुत जल्दी सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, मतलब बहुत जल्दी आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपना कुछ काम कर सकते हैं। आप देखते हैं सुनते भी होंगे कि जो मोदी जी जितनी बार भी स्पीच देते हैं कई मैक्सिमम टाइम, चाहे वो अपने मन की बात में दे चाहे कहीं भी दे, तो उनका एक बहुत बड़ा एजेंडा रहता है कि एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप किया जाए, मतलब हम ये ना माने कि सरकार हमें जॉब देगी, हम खुद ही अपने एंड के ऊपर जॉब क्रिएशन की बात करें, ठीक है, मतलब अभी हमारे यहाँ ट्रेंड थोड़ा रिवर्स है, हम चाहते हैं कि हमने एजुकेशन कंप्लीट किया अपना कोर्स कर लिया। अब कोर्स करने के बाद में अब जो गवर्नमेंट है वो हमें जॉब देते, एक तरह से ये हमारे एक तरह से हम कह सकते हैं कि दैट इज साइकोलॉजी, हमारा सोच ये है। जबकि गवर्नमेंट के पास इतनी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होती।

तो डिप्लोमा के बाद एक ये काम हो सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप जो आपका डेवलपमेंट है वो काफी उसको हेल्प मिलती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो गवर्नमेंट जॉब्स है, ऐसा नहीं कि मतलब प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स हैं, एक तरह से काफी गवर्नमेंट जॉब्स भी निकलती हैं डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। ठीक है, मैंने पिछले जैसे अभी अक्टूबर और सितंबर की मैंने काफी जॉब्स निकाल के हमें शो करता हूँ किन किन कंपनीज में, किन किन ऑर्गेनाइजेशन में जॉब मिलती है या गवर्नमेंट जॉब्स मिलती है। देखिए, आप सब जानते हैं कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होता है, मतलब एक तरह से जो गवर्नमेंट की कंपनीज होती हैं, जिसमें सेल या आपकी स्टील की कंपनी है, भेल है, BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, बेल है, गेल है, IOCL है, मतलब पेट्रोलियम कंपनीज है, HPCL है, ONGC को तो सब जानते ही है कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जो है, तो मतलब ये सारी जो है ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है। ठीक है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनके इंडिया में कई कई जगह पर काफी बड़े बड़े प्लांट हैं। ठीक है, अब उन प्लांट्स में क्योंकि जब टेक्निकल काम होगा तो टेक्निकल लोग चाहिए काम करने के लिए, और टेक्निकल लोग जो काम करने के लिए चाहिए होते हैं उसमें प्राइमरी दो तरह के टेक्निकल लोग चाहिए होते हैं। पहले तो वो जो हायर क्वालिफिकेशंस के हैं, हायर क्वालिफिकेशंस का मतलब क्या है, जिन्होंने बीटेक किया हुआ है। ठीक है, सेकंड जो एक तरह से जो मिडिल लेवल जो एम्प्लॉयज होते हैं वो चाहिए होते हैं, जिसमें डिप्लोमा होल्डर्स को काफी एक तरह से उनकी डिमांड रहती है, तो इसमें डिप्लोमा होल्डर्स को जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी मिलती है या टेक्नीशियन की वैकेंसी मिलती है। आप देखिए, कहीं भी JEE की वैकेंसी निकलती है ना जूनियर इंजीनियर की, क्योंकि जो डिप्लोमा होल्डर एक तरह से जूनियर इंजीनियर ही है, टेलीकॉम डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, जहां भी JEE की वैकेंसी निकलती है, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकलती है, वो बेसिकली डिप्लोमा होल्डर्स के लिए होती है, तो वहां पर आप कर सकते हैं। हाँ सर, जो बीटेक में हाँ उनको अगर उसमें जाना है तो फिर गेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, ये आपने सही यहां बताया, मैं भी इसको बाद में पूरे उसमें डिस्कस करूंगा एक तरह से कि अगर जो बीटेक वालों को अगर इनमें जाना है, इन PSU में जाना है तो गेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद ही जा सकते हैं, पर डिप्लोमा होल्डर्स में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज डिप्लोमा करने के बाद ही उन्हें मिल जाती है। देखिए, ये स्ट्रीम्स है सारी, एग्रीकल्चर में भी डिप्लोमा होता है, ऑटोमोबाइल्स है, केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, तो ये अलग अलग वैकेंसीज के स्ट्रीम्स है, होटल मैनेजमेंट में है, मैरीन इंजीनियरिंग में है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में है, तो मतलब ये इतनी स्ट्रीम्स में इतने अगर आपने इन स्ट्रीम्स में डिप्लोमा किया हुआ है तो इनकी वैकेंसीज आती रहती हैं टाइम टू टाइम। ये मैंने कुछ पिछले कुछ टाइम की वैकेंसीज का मैं एक चेक कर रहा था, अभी इसमें हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा कंप्यूटर साइंस में वैकेंसी आई हुई है, राइट। तो ये सभी वैकेंसीज जो है वो अलग अलग कंपनीज में है, जैसे ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जैसे CMPDI है, ये अभी 29 सितंबर को वैकेंसी निकली है इसके अंदर, CMPDI, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये इसलिए आपको मैं यहां बता रहा हूं कि इसमें जो वैकेंसीज आती है ना अलग अलग पूरे इंडिया में PSU फैली हुई है, आप देखेंगे हमारे इंडिया में काफी बहुत बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं या बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, पर इसमें थोड़ा ये रहता है कि या तो हमारा घर ऐसी जगह पे हो जो मतलब जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया है, क्योंकि जॉब तो वहां मिलेगी। जैसे मैं आपको बताऊं, आप में से जो लोग रामपुर के पास हैं, उत्तराखंड से जैसे हैं, तो आप जैसे उत्तराखंड से हल्द्वानी की तरफ जाएंगे तो वहां पर अब काफी बड़ा इंडस्ट्रियल वो है, मतलब एक तरह से जो लाल कुआं है, पंत नजर है, वो जो बेल्ट है, तो वहां काफी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आई हुई है, मतलब वहां जॉब इजिली मिल जाती है। हाँ, दैट इज द रुद्रपुर। और वहीं अगर आप इधर आए अपना NCR एरिया में आते हैं, अगर आप गुड़गावा की बात करते हैं तो जैसे आपका मानेसर है, तो यहाँ पर काफी इंडस्ट्रीज है, तो बहुत इजीली डिप्लोमा होल्डर्स को जॉब्स मिल जाती है। या फिर अलग अलग प्लेसेस पर, जैसे कुछ स्टेट वाइज भी वैकेंसी निकलती हैं, जैसे देखो आप इसमें देखेंगे जो सेकंड पोस्ट है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की 1661 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसीज आई है। ठीक है, जो फ्रेशर्स के लिए है, जिसमें फिक्स किया होता है कि आपका ऑफिस एंड मैनेजमेंट में डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से मतलब वैकेंसीज काफी होती हैं, थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि अवेयरनेस आपके अंदर होनी चाहिए, आपके पास में
लिंक्स के सोर्सेज होने चाहिए भी, कहां से आपको पता चल पाए।

0: कि किस किस फील्ड की वैकेंसी कहां से आई है। आजकल तो इंटरनेट के थ्रू आप घर बैठे ही पता कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज और ऐड करूं कि आप में से जो लोग ऑलरेडी डिप्लोमा होल्डर है या कोई आगे डिप्लोमा करने की अभी सोच रहा है, तो टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ जो भी आपने 3 साल का जिस भी स्ट्रीम में आपने डिप्लोमा किया, तो टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ आप थोड़ा सा एजुकेशन अपने आप को इंटरनेट नो हाउ, जिसे हम कहते हैं कि अभी अगर हम इंटरनेट नो हाउ की बात करें तो हमें सभी को फेसबुक यूट्यूब तो सबको पता है, सभी लोग उसे यूज भी करते हैं, ठीक है। पर हम में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो गूगल अलर्ट यूज करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको जॉब्स के बारे में पता करना है, वैसे तो काफी एक तरह से साइट्स भी है जो आपको एक टाइप से जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स निकलती हैं वो आपको वहां से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फिर भी अगर आपको एक स्पेसिफिक जॉब चाहिए, जैसे आपने डिप्लोमा किया हुआ है, डिप्लोमा होल्डर से रिलेटेड आपको जॉब्स के बारे में पता करना है, तो आपने गूगल अलर्ट के अंदर जॉब्स आफ्टर डिप्लोमा डाल दिया, तो उसमें क्या रहता है कि एवरी डे पूरे इंडिया के अंदर किसी भी पेपर में, किसी भी वेबसाइट के ऊपर, गूगल पे किसी वेबसाइट के ऊपर अगर डिप्लोमा के बाद की जॉब निकली है ना, तो उसका एक तरह से आपको लिंक मिल जाता है, तो वहां से आप सर्च आउट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि वैकेंसीज काफी ज्यादा है, बस ये है कि थोड़ा सा एरिया फर्क पड़ जाता है कि आप अगर एनसीआर में रह रहे हैं और आपकी जॉब निकली है वो आपकी बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है, कहीं महाराष्ट्र में है, तो हम अप्लाई नहीं कर पाते, ठीक है, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। अदरवाइज हम अगर डिप्लोमा होल्डर्स की बात करें तो 12th, 10th के बाद में 3 साल कोर्स करने के बाद जॉब लेना कोई ज्यादा मुश्किल की बात नहीं है, और एक तरह से गवर्नमेंट सेक्टर में भी वैकेंसीज रहती है। पर एक प्रॉब्लम और भी है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो वैकेंसीज है उसके बाद एग्जाम होता है आपका, एग्जाम मतलब दे टेक द टेस्ट, और टेस्ट में जो आता है वो बेसिकली क्या रहता है कि एक तो आपका जो भी जिस फील्ड में आपने डिप्लोमा किया हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस भी फील्ड में आपने डिप्लोमा किया हुआ है उस फील्ड के बारे में नॉलेज आपको अच्छी हो, आपने अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रखी हो, और उसके साथ साथ जो सेकेंड पेपर आपका रहता है उसमें जनरल रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जो बेसिक आपके सब्जेक्ट होते हैं जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, तो वो भी आपको थोड़ा बहुत तैयार करना रहता है जो आपको हेल्प करते हैं जॉब लेने के लिए। ये और भी ये आप देखेंगे सभी अक्टूबर मंथ की वैकेंसीज हैं। आप देखिए ये 7th अक्टूबर, 6th अक्टूबर, 5 अक्टूबर, मतलब ये सारी वैकेंसीज जो है ये बेसिकली डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है, ठीक है। कहीं पर 500 वैकेंसीज है, कहीं 42 है, कहीं 21 है, कहीं 36 है, राइट। किसी में एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, कोई फ्रेशर के लिए है, ठीक है। और जनरली आप देखेंगे जितने भी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस मैंने लिखी हैं, सभी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो आपकी PSU या गवर्नमेंट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन, मैंने किसी प्राइवेट का नाम नहीं लिखा इसके अंदर, ये बताने के लिए आपको कि गवर्नमेंट में भी डिप्लोमाज की काफी ज्यादा वैकेंसी आती है, बशर्ते अगर हम उसमें थोड़ा सा अवेयर हो उनके बारे में, ठीक है, और अवेयर होने के साथ साथ हम अप्लाई भी करें। क्योंकि बहुत बच्चों की प्रॉब्लम क्या रहती है कि वो अप्लाई नहीं करते जॉब्स के लिए। आप मतलब मैं हम कई बच्चों को जानते हैं कि उनका एम तो है भी मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, बट उनसे पूछे अगर भाई कहाँ का फॉर्म अप्लाई किया, कहता जी मैंने तो कभी फॉर्म ही अप्लाई नहीं किया। फिर फॉर्म अप्लाई करता है तो वो तैयारी नहीं करता। तो मतलब ये सारी चीजें मैटर करती हैं कि अवेयरनेस होना भी, एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्म भी, उसके बाद प्रिपरेशन करना भी, मतलब एवरीथिंग प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। अब ये तो मैंने आपके ऑलमोस्ट सारी बातें आपको समझा दी क्या क्या डिप्लोमा में रहता है, और कुछ चीजें और भी हैं भी, जैसे जो अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो उसमें आप प्रोफेशनल स्किल साथ साथ सीख जाते हैं, ठीक है भाई। आपने जो टेक्निकल जो भी आपने ट्रेनिंग किया, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया, ठीक है, और वो टेक्निकल स्किल आपने सीख लिया तो जॉब लेने में आसानी रहती है। स्किल्ड एम्प्लॉयज की डिमांड हमेशा से रही है इंडिया में स्पेशली, और आप देखेंगे भी आने वाले टाइम में तो स्कोप और ज्यादा बढ़ेगा। जैसे आपने सुना होगा अभी कोविड के बाद में, जैसे कोरोना का अटैक हुआ COVID-19 के बाद में, वर्ल्ड वाइड चाइना को माना गया भी इसके पीछे जो एक तरह से चाइना वाज रेस्पॉन्सिबल, और स्टार्टिंग में तो यू हैव हर्ड इनटू द न्यूज, जैसे काफी वर्ल्ड में काफी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था कि हम चाइना में जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वहां से हम अपनी इंडस्ट्रीज को चेंज करेंगे, ठीक है, जैसे जिसमें जापान था, यूएसए था, फ्रांस था, तो वो मतलब वो चाइना से, दे आर नॉट हैप्पी विद चाइना, ठीक है। अब देखिए वहां से इंडस्ट्री अगर निकल के इंडिया में आती है, आप देखेंगे इंडिया ने उसमें फिर काफी इनिशिएटिव लिया और एक तरह से ऑफर भी किया भी आप इंडस्ट्रीज इंडिया में लगाइए, यहां पर आपको ये टैक्स इंसेंटिव दिया जाएगा, ये बेनिफिट दिया जाएगा, तो ये काफी ज्यादा बातें चल रही हैं। तो अगर इतनी इंडस्ट्रीज इंडिया में आएंगी तो आप सोच के देखिए भी उनमें काम करने वाले लोग भी तो चाहिए ना, और काम करने वाले लोग जो होते हैं वो ज्यादातर टेक्निकल लोगों की डिमांड होती है, और टेक्निकल लोगों में तो फिर जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं वही आपके सामने रहते हैं, ठीक है। तो ये एक हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर में अच्छा साइन है कि अगर जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज इंडिया में आएंगी, जितना प्रोडक्शन एक्टिविटी यहां पर होगा उतना ही डिप्लोमा होल्डर्स को जॉब मिलेगी, ठीक है। तो मतलब ये सारी चीजें मैटर करती हैं। दूसरा एक बहुत बड़ी बात और भी है कि जैसे आपके मेट्रो कॉरपोरेशन है, मैं आपको बताता हूं, जो डीएमआरसी है, जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, हजारों लोग ऐसे हैं, हजारों एम्प्लॉयज ऐसे हैं डीएमआरसी के अंदर जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे काम करते हैं डीएमआरसी में, और उसके लिए अगर हम क्वालिफिकेशंस की बात करें तो ओनली उसके अंदर क्या कहा गया है कि आपने डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास में 10th के बाद। काफी वैकेंसीज निकलती है, अब तो देखो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि सैचुरेशन आ चुका है क्योंकि डीएमआरसी ऑलरेडी काफी रिक्रूटमेंट कर चुका है, बट स्टार्टिंग में जब नया नया ये कॉरपोरेशन आपका बना था उसमें जब नई नई वैकेंसीज निकलनी स्टार्ट हुई थी तो बहुत बच्चे ऐसे थे जो डीएमआरसी के अंदर लग गए जिन्होंने थोड़ा बहुत मेहनत किया था और डिप्लोमाज किए हुए थे, और ऐसी अब हर स्टेट में आगे जो मेट्रो एक्सपेंड हो रही है तो जितनी ज्यादा एक्सपेंड होगी उतना ही जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं लोगों के लिए। फिर एक और बहुत बड़ी चीज है कि डिप्लोमा करने के बाद अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहें तो उसमें भी आपको लेटरल एंट्री मिल जाती है, ठीक है जी। मतलब क्या है कि देखो वैसे तो बीटेक आपकी 4 साल की होती है, ठीक है, अगर आप 12th के बाद करते हैं तो अगर आपने 12th, 10th के बाद डिप्लोमा किया है 3 साल का तो उसमें भी आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है, तो 1 साल आपका बच जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि वो इक्वलेंट ही हो जाता है, किसी बच्चे ने 10th क्लास के बाद में पहले डिप्लोमा किया फिर उसने बीटेक में एडमिशन लिया, या आपने पहले 12th किया फिर आपने बीटेक में एडमिशन लिया, तो टोटल टाइम स्पेंडिंग जो है वो ऑलमोस्ट इक्वली रहेगी आपकी, वो आपका 1 साल वेस्ट नहीं जाएगा, उसमें एडजस्ट हो जाएगा। हर स्टेट इस तरह का लेटरल एंट्री का अपना अलग अलग एग्जाम लेता है, जैसे हरियाणा के जो बच्चे हैं वो लीट का एग्जाम देते हैं, LEET, लेटरल एंट्री इंजीनियरिंग टेस्ट होता है आपका, लीट का पेपर होता है, हर स्टेट का एग्जाम होता है, उसमें जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं तो वो अपना एक टाइप से जो लेटरल एंट्री का एग्जाम लेते हैं, ठीक है। तो उसमें फिर क्या होता है कि आपको वो पेपर पास करना होता है डिप्लोमा के बाद में, और फिर आपका डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा स्कोप हो जाता है, भी आपको टेक्निकल नॉलेज भी आपने सीखा 3 साल के अंदर, अगर आपका उस फील्ड में करियर बनाने का इंटरेस्ट है, हाई से हम लीट कहते हैं लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट, तो अगर आप उस फील्ड में आगे फ्यूचर में और टेक्निकल नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप उसी फील्ड के अंदर बीटेक कर सकते हैं, और आपका कोई ईयर भी वेस्ट नहीं होगा, तो सेम उसमें आप अपनी इंजीनियरिंग करके अपना करियर आगे लेके जा सकते हैं। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले डिप्लोमा करते हैं फिर 2 साल जॉब करते हैं, ठीक है, उसके बाद दे टेक एडमिशन इन द बीटेक, राइट। तो ये एक अच्छी आपके लिए वो हो जाता है भी, आपकी हायर क्वालिफिकेशन भी हो गया और आपको इंडस्ट्री के बारे में पता भी चला, आपने इंडस्ट्री में काम भी किया, टेक्निकल एक्सपीरियंस भी आपका हुआ, तो ये भी एक स्कोप रहता है। और हर स्टेट में पेपर होता है, मैंने तो हरियाणा का आपको बताया जैसे लीट का पेपर है, ऐसे ही DTE केरला के अंदर होता है, वो मतलब एग्जाम का नाम अलग अलग है, बाकी पेपर जो है एग्जाम जो है वो हर स्टेट में होता है लेटरल एंट्री के लिए, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं लेटरल एंट्री की स्कीम के अंदर, ठीक है। तो ये आज का हमारा सेशन था, मैंने काफी चीजें आपको बताई इससे रिलेटेड, या एक दो चीजें मैं और भी ऐड करूंगा कि जैसे मैं PSU की बात कर रहा था, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की, जिसमें आपको मैंने ONGC, गेल, इन सब के बारे में बताया। देखिए उनमें क्या होता है ONGC में, गेल में, कि अगर आपको वैसे जॉब लेनी है इंजीनियर की तो बीटेक आप करते हैं तो बीटेक के बाद फिर आपको गेट का एग्जाम क्वालिफाई करना रहता है, ठीक है, और वही अगर आपको जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी अप्लाई करनी है तो जूनियर इंजीनियर की काफी वैकेंसीज निकलती हैं, जिसमें आपको एक आपके फील्ड से रिलेटेड, टेक्निकल नो हाउ से रिलेटेड आपने एग्जाम देना है, और उसके बाद फिर आपको अपना जो थोड़ा बहुत मैथ रीजनिंग का पेपर रहता है तो वो आप उसे दे सकते हैं। तो स्कोप इज वेरी वाइड, थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड लेके, क्योंकि अगर हम वर्ल्ड वाइड कंपेयर करते हैं तो डिप्लोमा कोर्सेज को काफी वेटेज दिया जाता है। और मैं एक चीज और यहाँ पर ऐड करूं कि अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप बाहर भी जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा जो डिमांड है वो उन लोगों की है जो टेक्निकल काम कर सके, मतलब टेक्निकल मतलब जिसको हम लोअर टेक्निकल कहते हैं, जैसे आप अपने यहाँ पर जो फिटर का काम होता है, ठीक है, मतलब ऐसे काम, क्योंकि बाहर की कंट्रीज में वहां के जो लोग हैं वो मतलब दे यू कैन से दैट दे हैव सो मच मनी, या हम ये कह सकते हैं कि वो छोटे काम नहीं करते। जबकि इंडिया से अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है किसी भी फील्ड के अंदर तो आप फॉरेन में जाके भी अपना एक ऐसे करियर स्टार्ट कर सकते हैं उसमें, और आपको वहां पे जॉब्स मिल जाती है, ठीक है। तो मतलब स्कोप इज वाइड, थोड़ा सा पॉजिटिव लेके आपने इस चीज को करना है, ठीक है। तो ये आज मैंने आपको अपनी ओर से बताया है। इसके अंदर एक चीज और ऐड करूं, जैसे फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होता है, अब फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो लोग डिप्लोमा करते हैं तो उसका भी काफी स्कोप है। अब देखिए आज इतनी इंडस्ट्रीज ओपन हो चुकी है फूड जो फूड से एसोसिएटेड है, तो मतलब स्कोप काफी रहता है, थोड़ा सा पॉजिटिविटी लेके आपको इसमें काम करने की जरूरत रहती है, ठीक है। तो दिस इज फ्रॉम माई साइड, बाकी आपकी कोई क्वेरी है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप फ्रीली पूछ सकते हैं, हम उस पर डिस्कस करेंगे।
1: हाँ दिनेश जी, इसमें है ना दो तीन पॉइंट ऐड था। टेंथ के पास, टेंथ पास करके जैसे कि फुटवेयर टेक्नोलॉजी जैसे कि आगरा में है, टेंथ पास
0: जी, जी सर जी बिल्कुल सर।
1: और आप जिस तरह ज्वेलरी मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी जैसे पुणे में है, आपको ऑलरेडी चेन्नई में भी है, जैसे ज्वेलरी पर भी आपको डिप्लोमा करना चाहता है उसका भी है। प्लस सबसे बड़ी बात है, शायद किसी को पता हो या नहीं भी हो, जो हमारे पूरे भारतवर्ष में जो है टेंथ पास करके 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स होती है, वो जो टेंथ पास करके भी लड़के अप्लाई करते हैं प्लस टू करके भी, जैसे इंडो डेनिश टूल रूम और इंडो जर्मन टूल रूम, इंडिया और डेनमार्क के कोलेब्रेशन से कॉलेज बनी हुई है, जमशेदपुर में है, और एक है इंडो जर्मन टूल रूम, इंडिया और जर्मनी के कोलेब्रेशन से कॉलेज बनी हुई है, वो है इंदौर में। ये दोनों टेंथ पास करके या प्लस टू पास आउट करके, टेंथ पास करके जाएंगे तो 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स है, प्लस टू करके जाएंगे तो 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स है, इसके लिमिटेड सीट होते हैं। तो ये लोग अप्रैल में भी अप्लाई कर सकते हैं, उनका मेन एग्जाम होता है और जुलाई से सेशन स्टार्ट होता है।
0: तो मतलब ये सारा बात यह है कि वोकेशनल कोर्सेज में स्कोप काफी है, ठीक है, मतलब इसमें आप ये कह सकते हैं कि बहुत छोटी एज में आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब अपना आपने जॉब स्टार्ट कर दिया और उसके बाद फिर आप धीरे धीरे उसमें यू कैन गेट प्रमोशंस, और अगर आप अपना भी काम करना चाहें तो इसमें लो इन्वेस्टमेंट पे अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये काफी वाइड एरिया होता है।
1: गोल्फ कंट्री में भी सर आपने बताया भी है, जैसे साउथ अफ्रीका हुआ, गोल्फ कंट्री में भी काफी डिमांड होती है डिप्लोमा के।
0: गोल्फ कंट्री में बहुत डिमांड,
1: बहुत बहुत सर। मेरा है कि वो स्टेट वाइज जो एनटीपीसी है, जैसे कि स्टेट वाइज जहाँ पे इनकी ये मतलब कॉर्पोरेट ऑफिस होती है, इंटरनल वो लोग शायद आईटीआई वालों को या अदरवाइज लेकर के डिप्लोमा वाले को भी वो लोग हायर करते हैं क्या, जैसे उनका ऑल ओवर इंडिया का एग्जाम नहीं होकर के जो कंडक्ट जो जहाँ पे इनकी ऑफिस है, जैसे कि चित्रकूट में उसका एनटीपीसी का है, फिर उसके बाद यहाँ दादरी में एनटीपीसी, तो ये लोग इंटरनल भी शायद निकालते हैं।
0: बेसिकली क्या है सर कि वैसे तो जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जिसमें एनटीपीसी भी है, नेशनल थर्मल पावर है, तो इनका तो प्रोसेस ये होता है सर कि ये अपनी दो तरह की जॉब्स निकालते हैं, एक तो सर जो परमानेंट बेसिस पे निकालते हैं और सेकंड वो जो एडहॉक बेसिस पे लगाते हैं। जो तो एडहॉक बेसिस पे लगाते हैं वो तो ये इंटरनल सोर्सेज से या कहीं से भी कर लेते हैं, बट जो परमानेंट पोस्ट निकालेंगे ना, परमानेंट पोस्ट में तो इनको नोटिफिकेशन निकालना पड़ता है और उसके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। मतलब जो एक तरह से जो परमानेंट पोस्ट रहती है वहां तो एक प्रॉपर प्रोसेस से ही वो काम चलता है, उसका टेस्ट भी लेते हैं ये लोग, सारी चीजें करते हैं। हाँ ये है कि कई बार कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जो आपकी एडहॉक इन नेचर होती है, 1 साल की 2 साल की या जो टेम्परेरी पोस्ट होती है, तो वहां तो ये इंटरनल सोर्सेज से कहीं से भी कुछ ना कुछ कर जाते हैं, बट एक्चुअल जो आपकी परमानेंट जॉब्स हैं जिसको हम जूनियर इंजीनियर की जॉब कहते हैं इसके अंदर, तो वो तो एक प्रॉपर प्रोसेस से निकालते हैं।
1: बहुत सारा स्कोप है टेंथ पास करने के बाद, आईटीआई करने के बाद या पॉलिटेक्निक, बहुत सारे स्कोप है। थैंक यू दिनेश जी।

0: आज हमारे साथ हैं डॉक्टर जेबी बब्बर और हम बात कर रहे हैं डेंगू पे। डॉक्टर बब्बर, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है और आज हम आपसे अपने श्रोताओं को जानकारी देंगे कि डेंगू से कैसे बचाव करना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा गीता जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हर साल हमारे दिल्ली में डेंगू फैल जाता है और बहुत सारे लोग मर जाते हैं और बहुत सारे लोगों को बुखार हो जाता है, डर फैल जाता है, फोबिया हो जाता है। किसी इंसान को जरा सा बुखार होता है वो डर जाता है कि उसको डेंगू तो नहीं हो गया। अगर डेंगू है और किसी को घर में, तो वो ये सोचता है कि इससे मुझे तो नहीं हो जाएगा। तो बहुत लोगों के मन में ऐसे ऐसे विचार आते हैं और ये आपने बहुत अच्छा किया कि जानकारी देने के लिए आपने ये लोगों को बताने के लिए कोशिश की है और मैं बड़ा आभारी हूँ कि लोगों को पता लगना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि डेंगू फीवर है क्या।
0: हाँ जी,
1: डेंगू फीवर एक मच्छर के काटने से होता है और उसको हम टाइगर मॉस्किटो कहते हैं एडिस, जो कि जो साफ पानी में होता है। जैसे कि आपने फ्लावर पॉट में पानी रखकर फूल रख लिए, कुछ लोग होते हैं वास्तु के चक्कर में पंखड़ियां रखकर फूल पानी रख लेते हैं, कुछ ऐसे हैं जो टायर फेंकते नहीं है और टायर को रखे रखते हैं उसमें पानी आ जाता है, कुछ गमलों में पानी आ जाता है, कुछ कूलर्स में पानी रख लेते हैं और कुछ वैसे पानी रख के रात को सोते हैं और वो भूल जाते हैं। उससे क्या होता है कि वो जो मच्छर है वो पनपता है और मच्छर वो घर में फैल जाता है। वो मच्छर ज्यादातर दिन में काटता है और वो जब दिन में काटता है तो उससे लक्षण जो है उसको आने शुरू होते हैं। सबसे पहले उसको बुखार होता है।
0: हाँ जी,
1: बुखार में बड़ा हाई ग्रेड फीवर होता है और उसकी बॉडी में बहुत पेन होती है, उसको ब्रेक बोन फीवर कहते हैं। उसके बैक पेन में बहुत होता है और गलती से अगर कोई आदमी उसको डिस्प्रिन या एस्प्रिन या ब्रूफेन, मैं फिर रिपीट करूंगा, डिस्प्रिन एस्प्रिन या ब्रूफेन खा लेता है और नहीं भी खाता तो उसको ब्लीडिंग होनी शुरू होती है। खून जो है उसके नाक से आ सकता है, मुंह से आ सकता है, लैट्रिन के रास्ते आ सकता है या उसके शरीर पे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, उसको पेटिकल हेमरेज कहते हैं। जोड़ों में दर्द हो सकता है। तो हम आपको ये बताएंगे कि अगर किसी को बुखार है पहले तो वो सिंपल क्रोसिन खाए, इसके अलावा कॉम्बिफ्लेन या डिस्प्रिन ब्रूफेन नहीं खाए। क्रोसिन जो है 500 मिलीग्राम की एक गोली आती है और अगर आपका शरीर का वजन 60 किलो से ज्यादा है तो आप 1.5 गोली ले लीजिए। अगर छोटा बच्चा है तो उसको सिरप आता है, ड्रॉप्स आते हैं, उस हिसाब से दीजिए। और आसपास किसी भी डिस्पेंसरी में जाकर अपना प्लेटलेट काउंट और हीमोग्लोबिन काउंट टेस्ट कराइए। अगर आपका 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच में प्लेटलेट काउंट है और हीमोग्लोबिन ठीक है तो डरिए मत। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपना पानी जरूर पिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन से भी किसी को डेथ हो सकती है। और इतना डरिए मत कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अगर आप प्लेन पैरासीटामोल ले रहे हैं और आपको कोई हेमरेज नहीं हो रही तो कोई जानलेवा खतरा नहीं है। अगर आपने डिस्प्रिन ले ली और ब्लीडिंग ज्यादा होगी और आपका प्लेटलेट काउंट 50 चला गया तो कुछ खतरा है, तो उसके लिए हॉस्पिटल जाइए। ज्यादातर लोग जो हैं थोड़ा बेहोश होते हैं या उनकी नसें सूख जाती हैं, कोलैप्स होने की कोशिश करते हैं। अगर अस्पताल में जाकर उनको पानी चढ़ा दिया जाता है, ग्लूकोज या प्लेटलेट दिए जाते हैं पैक्सेल, तो जान बच जाती है। ऐसा टेंशन लेने की नहीं है, पर उपाय से जो है वो बहुत जरूरी है। उपचार से उपाय यही है कि अपने आसपास पानी मत इकट्ठे होने दीजिए, कूलर को साफ रखिए, कूलर में मिट्टी का तेल डालिए, हफ्ते में उसको एक बार साफ करिए। छत पे या इसके आसपास कोई भी टूटे हुए बर्तन है, साफ बर्तन है या फ्लावर पॉट में पानी है उसको फेंक दीजिए। जब बारिश बंद हो जाएगी तो अपने घर की सजावट जैसे मर्जी करिए, पर अपनी सजावट के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वह पानी मत इकट्ठे होने।
0: डॉक्टर बब्बर, बहुत ठेले वाले और खाने वाले जैसे बाहर खड़े रहते हैं और वो एक ड्रम पानी का भी भर के रख लेते हैं जिससे वो बर्तन धोते हैं, और वो ड्रम भी खतरनाक हो सकता है।
1: नहीं नहीं, वो ड्रम जो धोता है पानी का वो उसको फेंक देता है, शाम को उसको फेंक के जाता है। क्योंकि एटलीस्ट जो साइकिल है वो उसका, पहले उसमें अंडा होगा, एग बनेगा, फिर लार्वा होगा, फिर प्यूपा होगा, फिर एडल्ट होगा, तो एक दिन तो नहीं होता ना, टाइम लगे।
0: हाँ जी,
1: सुबह उसने पानी भरा और शाम को उसको फेंक दिया, तो ऐसी कोई डेंजर नहीं है। क्योंकि आप भी तो घर में पानी भरते हो, जो आप जो भी पानी भरते हो सबसे बेस्ट है उसको ढक के रखिए। अगर आपने पानी ढक के रखा हुआ है तो कोई टेंशन नहीं, खुला पानी है और वो लगातार 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन है तो वो टेंशन। एक दिन में नहीं है कि उसने पानी भर के रखा और बर्तन धो रहा है तो नहीं, आप सब लोग धोते हैं, ऐसा कोई टेंशन हवा नहीं है, बस यही
0: पर
1: है।
0: ये एक मैसेज उनको जा रहा है कि अगर पानी भर के रख रहे हैं तो रोज तो उसको रोज बदलिए,
1: बिल्कुल रोज बदलिए, और हमेशा पानी, चाहे बर्तन धो रहे हैं कुछ क्या, पानी ढक करके खुला पानी कहीं भी मत रखे।
0: तो डॉक्टर साहब, ये जो पानी हम बाजार से पीते हैं या कुछ है जो मशीन में पानी आता है, हालांकि वो मशीन में ढका हुआ होता है, पर पहले कहाँ से वो डाल रहे हैं?
1: वो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो लोग बर्फ से पानी लेते हैं और बाजार से रेडी से पानी पीते हैं, अगर उसने पानी टैप वाटर से नहीं लिया, स्टोर्ड वाटर से लिया हुआ है और पानी में कुछ जर्म्स हैं जिसके बैक्टीरिया पहले ही पनप रहे हैं या वायरस पनप रहा है या फंगस का रहा है, और उससे तो लोग बीमार हो जाएंगे। सबसे पहले इम्पोर्टेंट पानी यह है कि पानी उबाल के पीजिए, ढक के रखिए। अगर आप पानी नहीं उबाल सकते तो 1 लीटर में 1 क्लोरीन की टैबलेट डालिए और आधे घंटे तक उसको रहने दीजिए। आधे घंटे के बाद क्लोरीन का इफेक्ट आ जाएगा, आप पानी का सेवन कर सकते हैं, वरना आप बाजार से फिल्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एक्वागार्ड लगा सकते हैं, जीरो भी लगा सकते हैं, पर सबसे इम्पोर्टेंट है खोंचे वालों से कुछ मत खाइए, खुला पानी मत पीजिए, हाथ धोकर कुछ भी खाइए। खुद भी और बच्चों को ये समझाइए कि हाथ धोए बगैर आप कुछ भी मत खाइए, नहीं तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है।
0: डॉक्टर साहब, ये जैसे घर के बाहर नालियां होती हैं, हालांकि वो नालियां प्रॉपर बनी नहीं हुई हैं, पर छोटी सी ऐसे जैसे एक धार पानी की बहती रहती है, पर पानी उसमें रुका हुआ है, क्या उसमें भी मिट्टी का तेल डालना
1: बहुत आवश्यक है? बहुत आवश्यक है, वहां से तो डेंगू का मच्छर बहुत ज्यादा हो सकता है। जहां भी कहीं भी पानी इकट्ठा हुआ है, आप ये सोच लीजिए कि मैं अपने लिए नहीं देश के लिए कुछ सेवा करना चाहता हूँ, तो आप मिट्टी का तेल वहां जरूर डालें।

रीड इंडिया प्रस्तुत करता है विज्ञान प्रसार द्वारा निर्मित विज्ञान और तकनीकी पर आधारित कार्यक्रम। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: वेलकम फ्रेंड्स, जीते रहो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अरे बबलू, ये क्या कर रहे हो?
1: खुजला रहा हूँ, और क्या, तुम्हें तो दिखता रहेगा फिर भी पूछोगी।
0: नहीं नहाओगे तो ऐसे ही होगा, ये सब गंदगी का नतीजा है।
1: तुम्हें तो मौका चाहिए बस। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मेरे पैर में ये छोटे छोटे दाने निकल रहे हैं, पर इसे कोई परवाह ही नहीं। जस्सी,
0: तो तुम खुजा के उसे और क्यों बढ़ा रहे हो? और तुम्हारे नाखून, देखो अपने नेल्स। दोस्तों, आप ये गलती कतई मत कीजिएगा। अगर दाने निकल रहे हों और दाने वाली जगह पर त्वचा लाल भी हो, तो प्लीज उसे नाखून से मत खुजाइएगा इस बुद्धू की तरह, बीमारी और बढ़ जाती है।
1: तुम इतना पैरानोइड क्यों हो रही हो? छोटा सा तो है, मैं तो बस चिढ़ा रहा था।
0: मैं जानती हूं तुम क्या कर रहे हो, और हम में से ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। हम त्वचा की बीमारी को गंभीरता से नहीं लेते हैं। दोस्तों, ऐसा करना उचित नहीं है। त्वचा हमारे शरीर का सबसे संवेदनशील स्थान है।
2: हम एक दिन में न जाने कितने ही सेंसेशंस महसूस करते हैं। इन सेंसेशंस के महसूस होने में त्वचा का अहम रोल है। त्वचा हमारे शरीर का बहुत संवेदनशील अंग है। जाहिर है, ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हमारी त्वचा हमेशा एक्सपोज रहती है। वातावरण में ऐसी कई चीजें हैं जो हमारी त्वचा को प्रभावित कर सकती हैं, जिनसे त्वचा की बीमारियां हो सकती हैं।
3: हमारी त्वचा को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है प्रदूषण से। प्रदूषण और हार्मफुल केमिकल से स्किन रैशेस, डर्मेटाइटिस जैसी त्वचा की परेशानियां हो सकती हैं। और अगर इतना काफी नहीं था तो परेशान करने के लिए मौजूद हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पूरा पारिवारिक समूह। जीवाणुओं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई भी त्वचा की बीमारियों की एक अहम वजह है। इनसे एक्ने, रिंगवर्म इन्फेक्शन और हर्पिस जैसी त्वचा की बीमारियां होती हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है अपनी स्किन का ध्यान रखा जाए। वैसे कुदरत ने भी कुछ हद तक त्वचा का ख्याल रखा है। त्वचा पर मौजूद बाल बाहरी तत्वों से इसको सुरक्षा प्रदान करते हैं और शरीर का सही तापमान बनाए रखने में मदद करते हैं। हमारी त्वचा स्वेट ग्लैंड्स के जरिए भी बॉडी टेम्परेचर नियंत्रित करती है। ज्यादा तापमान, शारीरिक परिश्रम और स्ट्रेस की स्थिति में ये स्वेट ग्लैंड्स पसीने का उत्पादन करते हैं। ये पसीना त्वचा में मौजूद पोर्स यानी रोम छिद्रों से बाहर निकलकर जब इवेपोरेट यानी वाष्पित होता है तो शरीर को ठंडक पहुंचती है। जाहिर है, पसीना पसीना होना महज एक मुहावरा ही नहीं बल्कि हमारे शरीर की जरूरत भी है। ग्लैंड्स और हेयर फॉलिकल्स के अलावा त्वचा में करोड़ों की संख्या में अन्य स्किन सेल्स भी मौजूद रहते हैं। ये सभी त्वचा की तीन अलग लेयर्स में बटे रहते हैं, पहला एपिडर्मिस, दूसरा डर्मिस और तीसरा सबक्यूटेनियस टिश्यू। त्वचा की सबसे ऊपरी लेयर जिसे एपिडर्मिस कहते हैं, कागज के टुकड़े जितनी मोटी होती है। एपिडर्मिस पर बाल और पोर्स यानी कि रोम छिद्र होते हैं। एपिडर्मिस की सबसे निचली लेयर में बेसल सेल्स मौजूद होते हैं। ये बेसल सेल्स टूटकर स्क्वेमस सेल्स बनते हैं जो केराटिन नामक प्रोटीन का उत्पादन करते हैं। यही केराटिन हानिकारक रसायन और इन्फेक्शन से त्वचा की रक्षा करता है। एपिडर्मिस के नीचे होती है त्वचा की सबसे मोटी परत जिसे डर्मिस कहते हैं। इसमें नर्व एंडिंग्स, स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स, मसल्स, ब्लड कैपिलरीज और डीप सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। तीसरी और अंतिम लेयर को सबक्यूटेनियस टिश्यू कहते हैं। इसमें मुख्यतः वसा होती है और इसके अलावा क्यूटेनियस नर्व्स और ब्लड वेसल भी होती हैं। क्यूटेनियस नर्व्स ही स्किन से सेंसेशन लाने और ले जाने का काम करती है। सबक्यूटेनियस टिश्यू ही गर्मी कैद कर हमारे शरीर को इंसुलेशन प्रदान करता है और गर्मी को शरीर के अंदर रखता है। जहां तक त्वचा के रंग का सवाल है तो इसके पीछे मेलेनोसाइट्स नामक सेल्स का हाथ है जो कि एपिडर्मिस में पाई जाती हैं। ये सेल्स मेलानोजेनेसिस प्रक्रिया के जरिए मेलानिन नाम का एक पिगमेंट बनाते हैं। जैसे ज्यादा चाय पत्ती डालने पर चाय का रंग काला हो जाता है, वैसे ही मेलानिन के ज्यादा बनने से स्किन भी डार्क हो जाती है। मेलानिन हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है। भारतीयों में मेलानिन की मात्रा यूरोपियन से ज्यादा होने की वजह से हम अल्ट्रावायलेट रेज से होने वाले स्किन कैंसर से काफी हद तक बचे रहते हैं। हमारी स्किन शरीर के किसी और हिस्से के मुकाबले सबसे तेज रिप्लेस होती है। त्वचा की एपिडर्मिस लेयर में ऑयल ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं, जिनमें से एक है सिबेशियस ग्लैंड। यही सिबेशियस ग्लैंड एक तरल पदार्थ का उत्पादन करते हैं जिसे सीबम कहते हैं, जो बाल और त्वचा का मॉइस्चर कंटेंट बनाए रखने में मदद करता है। गंदगी, अनुवांशिक कारणों या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कई बार सेबम ज्यादा मात्रा में बनने लगता है। यही सेबम जमा होकर मुहासे या पिंपल्स के रूप में त्वचा पर दिखाई देते हैं। सेबम के इस जमाव में बैक्टीरिया भी पैदा होने लगते हैं। जब बैक्टीरिया और सेबम त्वचा के सतह के नीचे रहते हैं तो वहाँ पर व्हाइट हेड्स दिखते हैं। त्वचा की सतह से बाहर निकल कर मेलानिन के साथ रिएक्ट कर ये जमाव ब्लैक हेड्स का रूप भी ले सकते हैं।
4: मुहासों का इलाज दो तरह से होता है, लगाने का भी है और खाने का भी है। एग्जामिनेशन जरूरी है ये देखने के लिए कि माइल्ड है या मॉडरेट है या सिवियर है। माइल्ड है जिसमें बोलते हैं सिर्फ कोमेडोन्स हैं, तो उसमें आपका लगाने का दवा जिसमें कई जेल्स आ जाते हैं, एंटीबायोटिक जेल्स हैं या बेंजोइल पेरोक्साइड जेल है या रेटिनॉइड जेल एक कैटेगरी आता है, वो जेल्स लगाएं। मॉडरेट में पस के दाने निकलते हैं जिसको पिंपल्स बोला जाता है कॉमन पार्लेंस में, उसके लिए एंटीबायोटिक्स खाने के लिए दिए जाते हैं और लगाने के लिए भी दवा दी जाती है।
3: एक्ने जैसे कॉमन डिसऑर्डर के अलावा त्वचा के कुछ और कॉमन डिसऑर्डर्स भी हैं, जैसे एक्जिमा जिसे डर्मेटाइटिस भी कहते हैं और सोरियासिस। एक्जिमा एक एलर्जिक बीमारी है जिसमें त्वचा पर रैशेज और लाल धब्बे दिखने लगते हैं। एक्जिमा की शुरुआत होती है सूजन और खुजली से। एक्जिमा के कारण त्वचा पर ब्लिस्टर्स या फफोले भी पड़ने लगते हैं। यदि एक्जिमा लंबे अरसे तक रहे तो त्वचा सूखी, बर्तीली और बदरंग भी हो सकती है।
2: ये एलर्जी एसिड और अन्य हानिकारक रसायनों के संपर्क में आने से हो सकती है। कुछ धातुओं जैसे निकल से बने चश्मों के फ्रेम और बटन के संपर्क में आने पर भी कई लोगों को स्किन एलर्जी हो जाती है।
3: एक्जिमा के मूल कारण और रैशेज के आकार और जगह के आधार पर एक्जिमा के प्रकार निर्धारित किए गए हैं। जैसे अटोपिक एक्जिमा, ये अमूमन उन लोगों को होता है जिनमें एलर्जी होने की जेनेटिक टेंडेंसी यानी आनुवांशिक प्रवृत्ति होती है। ये नियमित रूप से आता जाता रहता है। एक ही जगह बार बार खुजलाने और रगड़ने पर भी एक्जिमा हो सकता है। जहाँ एक्जिमा के पीछे बाहरी कारणों का हाथ है, वहीं त्वचा की एक ऐसी बीमारी भी है जिसकी मूल वजह जेनेटिक है। इस बीमारी का नाम है सोरियासिस। त्वचा की बाहरी लेयर एपिडर्मिस में कोशिकाओं के प्रोडक्शन और रिमूवल की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। जब बेसल लेयर्स द्वारा निर्मित सेल्स का उत्पादन बहुत ज्यादा हो जाता है, तब शरीर पर गठीले लाल रंग के पैचेस दिखने लगते हैं। इसी अवस्था को सोरियासिस कहते हैं। अधिकतर घुटने, कोहनी, पीठ, कूल्हे और सर, इन भागों पर सोरियासिस असर करता है। जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है तो सोरियासिस का इलाज उसकी तीव्रता पर निर्भर करता है। सोरियासिस होने पर इलाज के लिए स्किन पर मलहम या क्रीम लगाई जाती है। यदि इनसे राहत न पहुँचे तो फोटोथेरेपी भी की जाती है। इसमें ज्यादातर प्रभावित क्षेत्र पर अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रयोग किया जाता है। सोरियासिस के काफी बढ़ जाने पर डॉक्टर्स खाने की दवाएं और इंजेक्शन भी प्रिस्क्राइब करते हैं।
0: अरे बबलू, तुम ये लंगड़ाते हुए क्यों आ रहे हो?
1: देखो ना, जहां मुझे खुजली हो रही थी वहां कैसे घाव हो गए हैं। कोई इन्फेक्शन तो नहीं है?
0: ओ, मगर आपकी माने तो ये इन्फेक्शन वगैरह तो सब किताबी बातें हैं ना?
1: प्लीज कुहू, दर्द भी हो रहा है और जलन भी, देखने में भी कितना खराब लग रहा है, रोना आ रहा है मुझे।
0: अच्छा कोई बात नहीं, मैं अभी साफ कर दूंगी, ठीक हो जाएगा।
1: नहीं, और भी ज्यादा दर्द होगा। नहीं, मुझे
0: कुछ नहीं होगा बबलू। घाव कैसा भी हो साफ तो करना ही पड़ेगा ना, और मर्ज कैसा भी हो इलाज तो जरूरी है ना।
2: स्केबीज एक पैरासाइट इन्फेक्शन है जिसमें तेज खुजली होती है। ये बीमारी फैलाने वाले माइट स्किन के अंदर अपने को छुपा लेते हैं। इनके काटने से तेज खुजली होती है जो रात में अक्सर बढ़ जाती है। ये माइट्स बहुत छोटे होते हैं और मैग्नीफाइंग ग्लास से ही दिखाई देते हैं। ये इन्फेक्शन इन्फेक्टेड व्यक्ति के कपड़ों और बिस्तर के इस्तेमाल से फैल सकता है। स्केबीज का इलाज क्रीम या लोशन से आसानी से हो जाता है, लेकिन मरीज के कपड़ों और बिस्तर के कपड़ों को उबालना जरूरी है, जिससे माइट्स मर जाते हैं। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो माइट्स दोबारा इन्फेक्ट कर देंगे और किसी और को भी इन्फेक्शन लग सकता है। आइए अब बात करते हैं फंगल इन्फेक्शन की। हमें से काफी लोगों ने रिंगवर्म का नाम तो सुना ही होगा। दरअसल ये रिंगवर्म है क्या? इसके पीछे हाथ है टीनिया नामक फंगस का, जो हमारी त्वचा, बाल और नाखूनों में पनप सकता है। इसकी ग्रोथ गोलाकार स्वरूप लेती है, बीच में त्वचा नॉर्मल रहती है और इसके आसपास लाल, पथरीली और थोड़ी उभरी रहती है। इस कारण यह इन्फेक्शन रिंग जैसा दिखता है और यहीं से इसका नाम पड़ा रिंगवर्म। हालांकि हकीकत में त्वचा में कोई कीड़ा मौजूद नहीं रहता। ये बीमारी शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है, पैर के अंगूठों के बीच में, छाती, बांह और पांव पर अक्सर ये बीमारी असर करती है। इस फंगल इन्फेक्शन के होने के दो प्रमुख कारण हैं। पहला, ये किसी संक्रमित व्यक्ति को छूने से हो सकता है। दूसरा, फंगाई ज्यादातर नमी वाली जगहों पर, जैसे सार्वजनिक स्नान घर या शौचालय और स्टोरेज करने की जगहों में पनपती है। ऐसी जगहों से भी संक्रमण होने का खतरा रहता है।
5: देखिए, एंटी फंगल दवाइयाँ जो आती हैं वो दो तरह से आती हैं, एक तो क्रीम फॉर्म में आती हैं और एक टैबलेट फॉर्म में आती हैं। क्रीम फॉर्म के साइड इफेक्ट ये हो सकते हैं कि जहाँ पर भी क्रीम लगाई है वहाँ पे खुजली मचना, जलन मचना और कुछ तरह के दाने हो जाना, ये साइड इफेक्ट्स कई बार देखे जाते हैं। तो अगर आपको ये हो जाए तो पेशेंट को दवाई को रोक के डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ओरल जो दवाइयाँ आती हैं टैबलेट्स के फॉर्म में, उसके साइड इफेक्ट्स में एलर्जिक रिएक्शन होना वो बहुत कॉमन है, जिसके कारण से इसमें लाल चकत्ते पड़ जाना शरीर के ऊपर, या फिर पेशेंट को वॉमिटिंग हो जाना, उल्टी जैसा लगना, नौजिया लगना, पेट में दर्द होना, ये सब चीज़ें, कई बार भूख भी कम हो जाती है पेशेंट की। अगर ये सब हो जाए तो पेशेंट को दवाई रोक के फिर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।
2: इलाज से बेहतर है बचाव। रिंगवर्म या टीनिया इन्फेक्शन से बचाव के लिए त्वचा को साफ रखें और नमी से बचा कर रखें। कुछ और आम बातें हैं जो हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकते हैं। जब जरूरी ना हो तब जूते उतार दें, मसलन घर पर, ताकि पैरों को जरूरी हवा मिल सके। मोजे और अंडरवेयर रोजाना बदलना, खासकर गर्म मौसम में। नमी वाली जगहों पर, जैसे सार्वजनिक स्नान घर में, नंगे पाँव ना चलें। त्वचा पर होने वाले बॉयल्स या फोड़े हेयर फॉलिकल से होने वाला बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बॉयल्स त्वचा पर पस युक्त इन्फ्लेमेशन का रूप लेते हैं। बॉयल्स के इलाज में पस को सुखाया जाता है, इसके लिए डॉक्टर्स एंटीबायोटिक का इस्तेमाल भी करते हैं।

0: ब्रेक के बाद बबलू अपने इन टैटू वाले हाथों से आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता है।
1: टैटू बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो गए तो
0: ज्यादा पढ़े लिखे होने का यही नुकसान है, हर चीज में इन्फेक्शन ही दिखता है।
1: छोड़िए दोस्तों, इसको कुछ समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। आइए अब बात करते हैं वायरल स्किन डिसऑर्डर्स की।
2: वायरल स्किन डिसऑर्डर्स की श्रेणी में आने वाले दो कॉमन डिसऑर्डर्स हैं वॉट्स यानी मस्से और हर्पीज यानी खाज या दाग। वॉट्स एक किस्म की स्किन ग्रोथ है जिसके पीछे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या HPV का हाथ है। वॉट्स शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं, चेहरे, हाथ के पिछले भाग पर, पैरों के तलवे पर, मुंह के अंदरूनी भाग में और यहाँ तक कि जेनिटल एरिया में भी। वॉट्स कंटेजियस इन्फेक्शन है, यानी ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। शारीरिक कॉन्टैक्ट या फिर इन्फेक्टेड व्यक्ति के तौलिए, कपड़े इत्यादि इस्तेमाल करने पर ये इन्फेक्शन फैल सकता है। काफी मामलों में वॉट्स कुछ महीनों में खुद ब खुद गायब भी हो जाते हैं, पर कई बार इनका इलाज दवाइयों या अन्य किसी ट्रीटमेंट पद्धति के जरिए ही करना पड़ता है। इलाज के कुछ कॉमन तरीके हैं रासायनिक, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड या कैंथराइडिन वॉट्स पर लगाना, या फिर लिक्विड नाइट्रोजन के माध्यम से वॉट्स को फ्रीज कर देना। इस पद्धति को क्रायोथेरेपी भी कहते हैं। कुछ केसेस में वॉट्स को स्पेशल तरीके से जलाया जाता है, जिसे कॉटराइजेशन भी कहते हैं। जेनिटल वॉट्स बेहद कंटेजियस होते हैं और इनका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स की निगरानी में करना चाहिए।
3: वॉट्स टच करने से फैलते हैं, तो पेशेंट उस वॉट को बार बार अपने हाथों से ना छुए, और दवाई लगाने के बाद अगर क्रीम्स है तो अपने हाथों को साबुन से या पानी से अच्छी तरह धोए। दूसरी बात यह है कि वॉट्स, जेनिटल वॉट जो है, यौन संबंध करने से फैलते हैं। मतलब अगर एक सी आदमी को वॉट्स हैं तो वो अगर यौन संबंध बनाता है तो दूसरे उसके पार्टनर को वॉट्स हो सकते हैं।
2: वायरस से होने वाली त्वचा की एक और बीमारी है हर्पिस। ये बीमारी दो तरह के वायरस से फैलती है। पहला वायरस है हर्पिस सिंप्लेक्स, जो ओरल कैविटी और जेनिटल को इन्फेक्ट करता है। हर्पिस सिंप्लेक्स कॉन्टेजियस होता है और अधिकतर ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलता है। हर्पिस फैलाने वाला दूसरा वायरस है हर्पिस जोस्टर। ये वायरस एक ही नर्व को

0: अपनी चपेट में लेता है। जहाँ जहाँ वो नर्व निकलती है उस जगह पर दाने निकल आते हैं। इसमें बहुत दर्द होता है लेकिन ये कंटेजियस नहीं है। हर्पीस ज़ोस्टर वायरस चिकन पॉक्स वायरस का ही एक किस्म है। इसके ट्रीटमेंट में कुछ एंटीवायरल दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन संपूर्ण रूप से ये अपने आप ही ठीक होता है, जिसकी अवधि 3 सप्ताह से लेकर 1.5 महीने तक हो सकती है। सीरियस इन्फेक्शन में दाने खत्म हो जाने के बाद भी दर्द 6 महीनों तक रह सकता है। ऐसे हालत में कुछ समय तक दर्द निवारक दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है। स्कैल्प में होने वाली परेशानियां हैं डैंड्रफ। डैंड्रफ स्कैल्प की स्किन के ड्राई होने से होता है, जिसमें डेड स्किन के फ्लेक्स उतरने लगते हैं। डैंड्रफ एक हल्के फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। इसका इलाज क्रीम और लोशन से किया जाता है। हेड लाइस एक पैरासाइट है जिसे जू भी कहते हैं। ये सर के बालों में रहती है। इसके स्किन के अंदर छुपने से इचिंग और इन्फ्लेमेशन होती है। एलोपीसिया में बाल उड़ जाते हैं लेकिन ऐसा पैचेस में होता है। इसकी वजह इन्फेक्शन हो सकता है या कोई ट्रॉमा जिसमें हेयर फॉलिकल्स खत्म हो गई हो। लेकिन सबसे कॉमन एलोपीसिया, जिसे एलोपीसिया एरिएटा कहते हैं, के होने की वजह का पता नहीं चल पाया है। इलाज के लिए मेडिसिन और क्रीम के जरिए स्कैल्प के नरिशमेंट का ध्यान रखा जाता है। ज्यादातर मामलों में कुछ महीनों के बाद प्रभावित जगह पर बाल फिर से उगने लगते हैं। अब बात ल्यूकोडर्मा की। इसमें मेलेनिन की कमी से स्किन पर व्हाइट पैचेस हो जाते हैं। शुरुआत में और जब ये बीमारी शरीर के कुछ अंगों तक सीमित होती है तो इसका पूरा इलाज संभव है, लेकिन अगर ये बीमारी बहुत अधिक अंगों तक फैल जाए तो इस रोग का पूरा निवारण कई बार संभव नहीं होता। लेकिन गौरतलब है कि ये छूत की बीमारी नहीं है और इससे व्हाइट पैचेस के अलावा शरीर को कोई नुकसान नहीं होता। इसका इलाज मेडिसिन, क्रीम्स और फोटोथेरेपी से किया जा सकता है। इस इलाज के बाद मेलानिन का बनना बढ़ जाता है और स्किन का सामान्य रंग वापस आने लगता है। एल्बिनिज्म एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें जन्म से ही शरीर में मेलानिन नहीं पाया जाता, इसलिए रंग सफेद होता है। त्वचा पर मौजूद बाल शरीर का सही तापमान बनाए रखने में मदद करते हैं। त्वचा को 3 लेयर्स में बांटा गया है, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यूज। त्वचा में मौजूद मेलानिन हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है। एक्जिमा एक एलर्जिक बीमारी है जिसमें त्वचा पर रैशेस और लाल धब्बे दिखने लगते हैं। वॉट्स कंटेजियस इन्फेक्शन है और शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं। हर्पीस की बीमारी 2 तरह के वायरसेस से होती है, हर्पीस सिंप्लेक्स और हर्पीस ज़ोस्टर। स्कैल्प की स्किन के ड्राई होने से डैंड्रफ होता है। इसमें डेड स्किन के फ्लेक्स उतरने लगते हैं। एलोपीसिया में बाल उड़ जाते हैं। इसकी वजह इन्फेक्शन या ट्रॉमा हो सकती है जिसमें हेयर फॉलिकल्स खत्म हो गई हो। एलोपीसिया एरिएटा के होने की वजह का पता नहीं चल पाया है।
1: वाह कोकिला, क्या इलाज किया! आज मान गए तुमको, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आगे क्या बताओगी?
2: आगे वेल बबलू, समय हो गया है।
1: क्या बात करती हो कोकिला, अभी तो शुरू ही हुआ था। कोई बात नहीं, अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे।
2: जी हाँ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।

नमस्कार श्रोताओं, मेरा नाम डॉक्टर निधि गुलाटी, रीड इंडिया लखनऊ से, आपके साथ, आपके लिए कुछ सिखाने और सीखने के लिए। ये कार्यक्रम आओ सीखे के अंतर्गत आप तक लाया गया है। श्रोताओं, जैसे कि हम सब जानते हैं कि मॉनसून आ गया है, बारिश का मौसम आ गया है, और ये बारिश का मौसम अपने साथ बहुत सी बीमारियों को लेकर आता है। आज मैं उन्हीं बीमारियों में से एक बीमारी के बारे में बात करूंगी, जिसका नाम है टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर क्या होता है? टाइफाइड फीवर एक बीमारी है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होती है, और इसके बैक्टीरिया का नाम है सेल्मोनेला टाइफी। सेल्मोनेला टाइफी एक मेडिकल टर्म है, और ये बैक्टीरिया हमारे जब बॉडी के अंदर घुसता है तब हमें टाइफाइड फीवर के होने के बहुत चांसेस हो सकते हैं। ये बैक्टीरिया पानी और खाने के जरिए लोगों के अंदर जाता है, और इसके द्वारा बहुत से लोगों में ये फैल जाता है। सच ये है कि टाइफाइड का बैक्टीरिया जो होता है वो पानी या सूखे मल में हफ्तों तक जिंदा रहता है। इस तरह से वे दूषित पानी या खाद्य पदार्थों के जरिए शरीर में पहुंचकर संक्रमण का कारण बनता है। जब कोई व्यक्ति किसी संक्रमित व्यक्ति का जूठा खाद्य पदार्थ खाता है या पीता है, तो इससे दूसरे व्यक्ति को टाइफाइड रोग होने का संभावना बन सकती है। आमतौर पर प्रदूषित पानी पीना व संक्रमित या बासी भोजन का सेवन करना टाइफाइड होने के मुख्य वजह है। किसी भी व्यक्ति को अगर घर में टाइफाइड है तो घर के अन्य सदस्यों को भी टाइफाइड होने का खतरा हो सकता है। मॉनसून में बदलाव और कुछ गलत आदतों के कारण इस बुखार का वायरस बहुत परेशान करता है। टाइफाइड एक तेज बुखार से जुड़ा रोग है। श्रोताओं, आप जानते हैं कि टाइफाइड होने का कारण क्या है? टाइफाइड बुखार, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, सेल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से संक्रमित होता है। ये भोजन या पानी के सेवन से होता है, या इस बैक्टीरिया से जो पीड़ित व्यक्ति होता है या जिसको पहले से ही टाइफाइड होता है उसके जूठा खाने से या उसके आसपास बैठने से भी हमें टाइफाइड हो सकता है। दूषित खाद्य पदार्थ से भी ये संक्रमित हो सकता है। पाचन तंत्र से पहुंचकर इन बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है। शरीर के अंदर ये बैक्टीरिया एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचता है। श्रोता, आप जानते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं? बुखार होता है, इसमें 104 डिग्री तक बुखार जाता है। जैसे जैसे संक्रमण बढ़ता है वैसे वैसे भूख कम हो जाती है। टाइफाइड से ग्रस्त व्यक्ति को सिर में भी दर्द होता है। टाइफाइड के लक्षण के रूप में शरीर में दर्द होता है, ठंड की अनुभूति होती है, सुस्ती एवं आलस का अनुभव होता है, टाइफाइड से कमजोरी का भी अनुभव होता है, इसमें दस्त का भी अनुभव होता है, दस्त भी होने लग सकते हैं। आमतौर पर टाइफाइड से ग्रस्त व्यक्ति को 104 बुखार तक पहुंच सकता है। बड़े बच्चों को कब्ज की भी शिकायत हो सकती है तथा बच्चों में दस्त की भी शिकायत हो सकती है। श्रोताओं, आप जानते हैं टाइफाइड से बचाव का उपाय क्या है? आमतौर पर भोजन और जीवन शैली के असर के कारण भी टाइफाइड होता है। इसके लिए आहार और जीवन शैली को थोड़ा सा बदलाव करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि क्या बदलाव कर सकते हैं। टाइफाइड में प्याज और लहसुन या वो खाद्य पदार्थ जिसकी बहुत तीव्र स्मेल हो उससे हमें बचना चाहिए। टाइफाइड में सभी मसाले जैसे कि मिर्च, सौंफ, सिरका आदि से परहेज करें। इस बुखार में गैस बनने वाले आहार जैसे अनानास, कटहल आदि से परहेज करें। टाइफाइड के लक्षण महसूस होने पर घी, तेल से परहेज करें। टाइफाइड में बाजार की बनी हुई चीजें ना खाएं। टाइफाइड में मांसाहारी भोजन
से भी परहेज करें। पेट भरकर कुछ भी ना खाएं। ऐसा भोजन ना करें जो देर से पचता है। चाय कॉफी का भी कम सेवन करें। श्रोताओं, आप जानते हैं कि जीवन शैली में क्या बदलाव लाने चाहिए। उचित स्वच्छता बनाए रखें। अपने हाथों को गर्म पानी से साबुन के साथ बार बार धोएं। साफ उबला पानी पिए और केवल बोतल बंद पानी पिए। कच्चा आहार ना लें। उचित तरीके से पका भोजन गरम गरम ही खा लें। भारी दुकानों से पाए गए पदार्थ ना लें। संक्रमित व्यक्ति को घरेलू कार्यों से दूर रखें। संक्रमण को रोकने के लिए संक्रमित व्यक्ति की व्यक्तिगत उपयोग और वस्तुओं को अलग रखें। पानी को स्वच्छ कर ही पिएं। कूड़े कचरे को सही तरीके से फेंकें और अच्छा स्वास्थ्य भोजन करें। संक्रमित व्यक्ति को अपने बर्तन और भोजन किसी से भी नहीं शेयर करने चाहिए, बांटने चाहिए। संक्रमित व्यक्ति को भोजन भी नहीं पकाना चाहिए। कच्चे फल और सब्जियां खाने से बचें। ज्यादातर गर्म खाद्य पदार्थ का सेवन करें और अपने आसपास सफाई रखें। श्रोताओं, आप जानते हैं कि टाइफाइड का उपचार में घरेलू नुस्खे क्या होते हैं। टाइफाइड जैसे रोग अक्सर डिहाइड्रेशन का कारण बनते हैं, इसलिए रोगी को कुछ कुछ समय के बाद अपने पदार्थ में पानी, ताजे फल का रस या हर्बल चाय का सेवन करना चाहिए। उबले पानी का ही सेवन करें। यह टाइफाइड में कमजोरी की स्थिति में भी आपकी मदद कर सकता है और बीमारी से राहत दिला सकता है। टाइफाइड में तुलसी का पानी भी बहुत अच्छा इलाज है। सेब का जूस भी टाइफाइड में उपचार के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। सेब का जूस निकालें, इसमें अदरक का रस मिलाकर पिएं। इस तरह से बुखार में राहत मिलती है। आप टाइफाइड के उपचार के लिए लौंग का इस्तेमाल करें। लौंग में टाइफाइड ठीक करने के गुण होते हैं। 8 कप पानी में अगर आप 5 से 7 लौंग डालकर उबाल लेंगे, जब पानी आधा रह जाएगा तो उसे छानकर पी लें। इस उपचार को 1 हफ्ते लगातार करें, इससे टाइफाइड में हुई कमजोरी दूर हो सकती है। अगर बुखार तेज है तो ठंडे पानी की पट्टियां भी कर सकते हैं। टाइफाइड के उपचार के लिए शहद का सेवन भी बहुत अच्छा होता है। गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर पानी को पी लें। ये टाइफाइड के उपचार के लिए उपयोग में लाया जाने वाला बहुत फायदेमंद उपाय है। श्रोताओं, ये तो मैंने आपको कुछ घरेलू नुस्खे बताए थे, पर जब टाइफाइड होता है तो हमें डॉक्टर के पास भी जाना उतना ही जरूरी है। टाइफाइड के लक्षण दिखते ही हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसे अपनी बीमारियों के बारे में बताना चाहिए, नहीं तो ये एक बहुत गंभीर बीमारी बन सकती है। श्रोताओं, आप जो डॉक्टर आपको दवाई देता है उसका अच्छे से पालन करें, समय से दवाई खाएं और साथ साथ हम घरेलू उपाय भी कर सकते हैं। श्रोताओं, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो, और अगर आपके घर में कोई भी टाइफाइड का मरीज हो या आपको ही टाइफाइड हो जाए तो आपको ये सब जानकारी मिलने के बाद आप अपना और अपने घर वालों का अच्छे से ध्यान रख सकें। मेरा आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।

रीड इंडिया प्रस्तुत करता है विज्ञान प्रसार द्वारा निर्मित विज्ञान और तकनीकी पर आधारित कार्यक्रम। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: अच्छा
1: एक्चुअली मेरे एक दोस्त को बहुत जरूरी काम से अचानक शहर से बाहर जाना पड़ गया, तो पूरे एक हफ्ते मुझे उसकी बूढ़ी दादी की देखभाल करने का मौका मिल गया। अभी मैं उन्हीं के पास से आ रहा हूँ। तुम्हें तो पता है ना कोकिला, वृद्धावस्था में पहुँच चुके लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? गठिया। दादी जी भी इसी की मरीज हैं।
0: ओ, तो ये बात है। और अगर मैं ठीक गेस कर रही हूँ तो आज शायद तुम गठिया यानी आर्थराइटिस के बारे में विस्तार से जानना चाहोगे, राइट?
1: ऑफ कोर्स।
2: हर रोज ना जाने कितनी बार आप झुकते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, नाचते हैं। आप कभी नहीं सोचते आप ये सब इतनी आसानी से कैसे कर पाते हैं। सच मानिए, जब सब कुछ ठीक से चल रहा होता है तो आप चाहे जैसे अपने शरीर का इस्तेमाल करते रहते हैं, और इस लापरवाही का नतीजा निकलता है उफ, आह, आउच। हमें ये मोबिलिटी यानी गतिशीलता और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है जॉइंट से। चलिए एक बड़ी मशीन के जरिए समझते हैं हमारे जॉइंट्स यानी जोड़ों की बनावट।
3: बड़ी बड़ी मशीनें भी हमारे जॉइंट्स की नकल करके बनाई गई हैं। मशीन ठीक से काम करे इसलिए इसकी रेगुलर ऑयलिंग की जाती है। ऑयलिंग नहीं की तो मशीन के जॉइंट्स घिस जाएंगे और काम ठप हो जाएगा।
2: ग्रीस के इस्तेमाल से मशीन के जॉइंट स्मूथली काम करते हैं। इस मशीन की तरह हमारे जॉइंट्स को भी ऑयलिंग की जरूरत पड़ती है, और ये ऑयलिंग हमारे जॉइंट्स में नेचुरली होती है।
3: हमारे शरीर के जॉइंट्स को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला वर्ग है बॉल और सॉकेट जॉइंट्स, जैसे शोल्डर और हिप जॉइंट्स। दूसरा वर्ग है हिंज जॉइंट्स, जिनमें शामिल हैं एल्बो, नी और एंकल जॉइंट्स। बॉल और सॉकेट जॉइंट्स में जहां रेंज ऑफ मूवमेंट अधिक होती है, वहीं हिंज जॉइंट्स में रेंज ऑफ मूवमेंट लिमिटेड है।
2: इसको समझने से पहले आइए समझते हैं हमारे जॉइंट्स की संरचना। हमारे शरीर में दो हड्डियां जहां एक दूसरे से जुड़ती हैं, उनके जॉइंट्स पर एक नाजुक कवर होता है जिसे कार्टिलेज कहते हैं। इस गद्देदार कार्टिलेज से जॉइंट्स का लचीलापन भी बना रहता है, जिससे जोड़ों को मोड़ने में आसानी होती है। हड्डियों का जोड़ एक कैप्सूल जैसी संरचना में सुरक्षित रहता है। इस कैप्सूल पर पतली टिश्यू की परतें होती हैं, जिसे साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। जॉइंट्स में ऑयलिंग का काम भी ये साइनोवियल मेम्ब्रेन ही करते हैं। दरअसल साइनोवियल मेम्ब्रेन एक चिकना फ्लूइड पैदा करते हैं जो जॉइंट्स में ऑयलिंग का काम करता है और हड्डियों को रगड़ से बचाता है, और इसके साथ साथ कार्टिलेज और हड्डी को नरिशमेंट यानी पोषण देता है। अगर किसी वजह से कार्टिलेज घिस जाए या उसमें किसी तरह का बदलाव आ जाए तो जोड़ों में स्टिफनेस यानी अकड़न और इन्फ्लेमेशन यानी सूजन होने लगती है, जिसे हम आर्थराइटिस कहते हैं। जोड़ों को कई वजहों से नुकसान पहुंच सकता है और इन्फ्लेमेशन हो सकती है। कई बार आर्थराइटिस से जॉइंट्स की शेप ही बदल जाती है, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं और इससे बेहद दर्द भी होता है। गठिया या आर्थराइटिस का शाब्दिक अर्थ है जोड़ों की सूजन या इन्फ्लेमेशन। बुढ़ापे की दहलीज पर तो आर्थराइटिस जैसे हमारा इंतजार करते मिलती है। उम्र के साथ शरीर जर्जर होता जाता है, जोड़ों के सिरों की कार्टिलेज भी घिस जाती है। कार्टिलेज के घिसने से जॉइंट्स के जोड़ों में रगड़ से दर्द होता है। संतुलित आहार न लेने से शरीर में कैल्शियम की कमी से बोन की डेंसिटी यानी घनत्व कम हो जाता है और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। फैटी फूड खाने से शरीर का वजन बढ़ने लगता है, मतलब जोड़ों को ज्यादा और ज्यादा बोझ उठाना पड़ता है, और एक वक्त आता है जब शरीर में हड्डियों के ये जोड़ जवाब देने लगते हैं। इसके अलावा कुछ और किस्म की आर्थराइटिस भी हैं, जो किसी भी उम्र के लोगों में पाई जा सकती हैं।

0: वेलकम बैक। एपिसोड के इस भाग में हम बात करेंगे आर्थराइटिस के टाइप्स की। हालांकि आर्थराइटिस बहुत से रूपों में शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है, लेकिन
1: कोकिला मुझे अब तक एक बात समझ में नहीं आई, आखिर आर्थराइटिस होने की वजह क्या है?
0: बिल्कुल ठीक पॉइंट पर आए तुम बबलू। एक्चुअली एजिंग आर्थराइटिस की एक बहुत बड़ी वजह है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे रीजंस हैं जो आर्थराइटिस जैसी गंभीर बीमारी

0: की बड़ी वजह बन सकते हैं।
1: आर्थराइटिस के ज्यादातर मामले क्रॉनिक होते हैं, यानी लंबे समय तक इस बीमारी से जंग लड़नी पड़ती है। जोड़ों में दो हफ्ते से ज्यादा दर्द या स्टिफनेस और सूजन का मतलब है जल्द से जल्द डॉक्टर की सलाह लेने की चेतावनी। हो सकता है आप आर्थराइटिस के निशाने पर हों। पुरुषों के मुकाबले महिलाएं इस बीमारी की ज्यादा शिकार होती हैं। महिलाओं में ये बीमारी पुरुषों के मुकाबले 2 से 3 गुना ज्यादा पाई जाती है। समय पर इलाज से इस बीमारी पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। इस बीमारी के लक्षण कभी तो अचानक सामने आते हैं और कई बार सिम्टम्स लंबे समय में धीरे धीरे दिखाई देते हैं। आर्थराइटिस के प्रमुख लक्षण हैं जोड़ों में दर्द, सूजन और अकड़न। लेकिन सिर्फ डॉक्टर ही तय कर सकता है कि आर्थराइटिस है या नहीं, और अगर है तो किस तरह की, और फिर तय किया जाता है ट्रीटमेंट प्लान। आर्थराइटिस वैसे तो कई प्रकार की हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पर आर्थराइटिस 4 तरह से हड्डियों पर हमला बोलती है। पहला ऑस्टियोआर्थराइटिस, दूसरा गॉटी आर्थराइटिस, तीसरा रूमेटॉइड आर्थराइटिस और चौथा इन्फेक्टिव आर्थराइटिस। पहले बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की। इसे बुढ़ापे की बीमारी भी कहते हैं। बुढ़ापे में जॉइंट्स भी बूढ़े हो जाते हैं। हड्डियों में कैल्शियम की कमी से बोन डेंसिटी यानी हड्डियों में मिनरल्स कम होने लगते हैं और हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है। कार्टिलेज भी सालों के इस्तेमाल से घिसती जाती है और बची खुची कसर कमजोर मसल्स पूरी कर देते हैं। वीक मसल्स जॉइंट्स पर पड़ने वाले दबाव को ज्यादा रोक नहीं पाते, जिससे कार्टिलेज रगड़ खाते हैं और घिस जाते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में शरीर के बड़े जॉइंट्स जैसे कंधे का जॉइंट्स, घुटनों का जॉइंट, हिप जॉइंट और रीढ़ की हड्डी पर यह बीमारी ज्यादातर असर डालती है। लगातार हड्डियों में रगड़ होने से जोड़ों में टूट फूट या रिसाव भी होने लगता है। कभी कभी तो कार्टिलेज असामान्य रूप से हड्डियों के किनारे पर बढ़ जाता है, जिसे बोनी स्पर्स कहते हैं। और अब बात करते हैं गाउटी आर्थराइटिस की। ये आर्थराइटिस हमारे मेटाबॉलिज्म में होने वाली गड़बड़ी से पैदा होती है। मेटाबॉलिज्म में खराबी के चलते हमारे खून में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। ये यूरिक एसिड जब किसी जॉइंट पर जमा हो जाते हैं तो वहाँ तेज दर्द होता है। इस आर्थराइटिस का असर ज्यादातर छोटे जॉइंट्स पर जैसे पैर और हाथ के अंगूठे पर होता है। अक्सर किसी पैर के अंगूठे के जॉइंट में बहुत तेज दर्द होता है। रोगी को पसीना आता है और शिवरिंग महसूस हो सकती है। जॉइंट के ऊपर की त्वचा बाद में काफी नाजुक और लाल हो जाती है। खाने पीने की कुछ चीजों से ये बीमारी बढ़ सकती है, जैसे कि अधिक शराब पीने से गाउटी आर्थराइटिस के पेशेंट्स में बीमारी और बढ़ सकती है। अब बात करते हैं इन्फेक्टिव आर्थराइटिस की। इन्फेक्शन की वजह से जॉइंट्स में सूजन होने लगती है और इसे इन्फेक्टिव आर्थराइटिस कहते हैं। अक्सर जो जॉइंट इस बीमारी का शिकार होते हैं वहाँ पहले कभी चोट लगी होती है, जिस कारण वहाँ जर्म्स इन्फेक्शन फैलाने में कामयाब हो पाते हैं। अगर समय पर इस पर काबू ना पाया जाए तो ये बीमारी लंबे समय तक परेशान कर सकती है।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आर्थराइटिस कितना गंभीर रूप धारण कर सकती है। आप लोगों को एक बात बता दूं, हम में से बहुत से लोग आर्थराइटिस को वृद्धावस्था में होने वाला रोग समझते हैं, जबकि ये बीमारी किसी भी उम्र के लोगों को अपनी चपेट में ले सकती है। और तो और, ये कोई एक बीमारी नहीं बल्कि 100 से अधिक बीमारियों का एक बड़ा समूह है। आइए देखते हैं क्या है आर्थराइटिस के सिम्टम्स और इस बीमारी का पता लगाने के लिए डॉक्टर्स क्या क्या फिजिकल एग्जामिनेशंस यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं।
1: आर्थराइटिस का एक ऐसा प्रकार भी है जिसकी वजह हमारे इम्यून सिस्टम में आई गड़बड़ी होती है। दरअसल हमारा इम्यून सिस्टम शरीर में आने वाले किसी भी फॉरेन पार्टिकल पर हमला करता है और उसे खत्म कर हमें रोगों से बचाता है, लेकिन कई बार हमारा इम्यून सिस्टम शरीर के किसी अंग को ही फॉरेन बॉडी मानकर उस पर हमला कर देता है। इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जब जॉइंट्स पर असर करता है तो इसे रिमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं। इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी के बाद जॉइंट कैविटी और साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है। जॉइंट के इन्फ्लेमेशन से दर्द होता है, अकड़न पैदा होती है और जॉइंट के आसपास का एरिया गर्म और लाल हो जाता है। जैसे जैसे रिमेटॉइड अर्थराइटिस का असर बढ़ता है, कार्टिलेज खिसती जाती है, कभी कभी हड्डियाँ आपस में फ्यूज होने लगती हैं। अक्सर हम ऐसा सोचते हैं कि आर्थराइटिस केवल बुढ़ापे की समस्या है, पर यह रोग बच्चों और युवाओं को भी अपनी चपेट में ले सकता है। अगर सही समय पर इसके टेस्ट और ट्रीटमेंट नहीं कराए गए तो बच्चों को आगे चलकर चलने फिरने में भी दिक्कत हो सकती है। जुवेनाइल रिमेटॉइड आर्थराइटिस ऐसी ही एक आर्थराइटिस है जो बच्चों और युवाओं को शिकार बनाती है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस पर और बात करने से पहले जानते हैं ये बीमारी किस तरह ऑस्टियोआर्थराइटिस से अलग है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस किसी भी उम्र के लोगों को शिकार बना सकती है। इस बीमारी का असर शरीर पर छोटे जॉइंट्स पर होता है, जैसे उंगलियों और अंगूठों के जॉइंट्स। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस बुढ़ापे की बीमारी है और इसका असर बड़े जॉइंट्स पर होता है, जैसे कंधे का जॉइंट, नी जॉइंट, हिप जॉइंट आदि। रिमेटॉइड आर्थराइटिस में शुरू से ही सूजन और दर्द होता है और ये समय के साथ बढ़ता जाता है, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में पेन और दर्द काफी बाद में होता है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस में जॉइंट्स में दर्द अक्सर सुबह होता है, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में दर्द मूवमेंट करने से जॉइंट्स पर पड़ने वाले दबाव से होता है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस के डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर सबसे पहले पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं। पेशेंट को दर्द कहां पर हो रहा है और दर्द कितना सीवियर है और कितने वक्त से है, ये अच्छे से समझा जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में डॉक्टर दर्द वाली जगह की त्वचा, जोड़ और मसल स्ट्रेंथ का सही सही आकलन करते हैं। रिमेटॉइड आर्थराइटिस के डायग्नोसिस में एक खास तरह के ब्लड टेस्ट की भी मदद ली जाती है। दरअसल रिमेटॉइड फैक्टर, जिसे आर फैक्टर कहते हैं, एक खास तरीके का एंटीबॉडी प्रोटीन होता है जो कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट के ब्लड में पाया जाता है। हालांकि बीमारी की शुरुआत में ये आर फैक्टर एब्सेंट भी हो सकता है। इसके अलावा WBC और ESR टेस्ट के जरिए भी रिमेटॉइड आर्थराइटिस का डायग्नोसिस किया जाता है। ब्लड में सी रिएक्टिव प्रोटीन की मौजूदगी से इन्फ्लेमेशन की प्रेजेंस का पता चलता है, इसलिए सी रिएक्टिव प्रोटीन की मौजूदगी से भी RA की डायग्नोसिस में काफी मदद मिलती है। लेकिन ये टेस्ट रिमेटॉइड आर्थराइटिस होने के कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। इस टेस्ट से सिर्फ ये पता चलता है कि शरीर में इन्फ्लेमेशन प्रोसेस चल रही है। एक्सरे से रिमेटॉइड आर्थराइटिस के कारण हुई सूजन और जॉइंट्स को हुए नुकसान का आकलन किया जाता है। एक्सरे से सूजन काफी हद तक निर्धारित कर इलाज के निर्णय में डॉक्टर को आसानी होती है।
0: अब तो आप समझ ही गए होंगे, आर्थराइटिस बहुत से रूपों में शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है, लेकिन सही ट्रीटमेंट एक सामान्य जीवन की संभावना को बढ़ा सकता है।
1: ऑस्टियोआर्थराइटिस के मुख्य कारण हैं बढ़ती उम्र, ज्यादा वजन, असंतुलित आहार और व्यायाम की कमी।
2: व्यायाम करने से जो है, जो शरीर की मांसपेशियां हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं, और जब शरीर की मांसपेशियां स्ट्रांग हो जाती हैं तो वो जोड़ों को आपस में घिसने से बचाती हैं। तो एक प्रकार से ऑस्टियोआर्थराइटिस को रोकने के लिए और जल्दी उसको तकलीफ ना होने देने के लिए उसमें काफी फर्क पड़ जाता है। और मांसपेशियां अगर अच्छी होती है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस भी लेटर स्टेज में कम होती है। एक तो ये कि अपना वजन संतुलित रखें, और इस प्रकार का आप आपके जो खान पीन है उसमें इस प्रकार की है कि आपका वजन नहीं बढ़ना चाहिए। दूसरी बात यह है कि नियमित रूप से व्यायाम कीजिए ताकि मांसपेशियां आपकी स्ट्रांग हो जाए और वो जोड़ों को घिसने से बचाए। तीसरी चीज जो बहुत जरूरी है वो कि अपना पोस्चर ठीक रखें, आपके बैठने का तरीका, आपका लेटने का तरीका या इस तरह की चीजें जो हैं उसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको ये ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होगी।
1: गौटी अर्थराइटिस में चूंकि मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ होने से शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, इसलिए इसे दवाइयों और खानपान में बदलाव कर काबू में किया जाता है। मरीज को शराब पीने से परहेज करना होगा और कुछ खाने की चीजों से परहेज करना होगा। गौटी अर्थराइटिस के पेशेंट्स को NS8 के अलावा कुछ खास दवाई दी जाती है, जैसे कि एलोप्रिनॉल और कॉल्चाइसिन। आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में पेशेंट को पेन और इन्फ्लेमेशन कम करने की नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यानी NS8 जैसे एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन दी जाती है। कुछ पेशेंट्स को स्टेरॉयड्स भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। जरूरत पड़ने पर जॉइंट्स में स्टेरॉयड्स के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। इसके अलावा पेशेंट को कुछ एक्सरसाइज भी करने के लिए बताया जाता है। इन्फेक्टिव आर्थराइटिस में पेशेंट्स को NS8 दवाओं के अलावा एंटीबायोटिक दवाई दी जाती है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस में NS8 दवाओं के अलावा इम्यून सप्रेसेंट ड्रग दी जाती है। आर्थराइटिस के पेशेंट्स को हीट थेरेपी भी दी जाती है। हीट थेरेपी से रक्त का प्रवाह तेज होता है और मरीज की दर्द सहने की क्षमता भी बढ़ती है। आर्थराइटिस के बहुत बढ़ जाने पर कुछ पेशेंट्स को ऐसी डिवाइस इस्तेमाल करनी पड़ती है जिनसे जोड़ों को सपोर्ट मिलता है और जॉइंट्स मूवमेंट में दर्द कम होता है। इन डिवाइसेस की जरूरत तब पड़ती है जब बीमारी बहुत बढ़ जाती है। कुछ अति गंभीर मामलों में डॉक्टर सर्जरी भी करते हैं। इन सर्जरीज में आती हैं नी और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। जॉइंट्स हमारे शरीर को मोबिलिटी यानी गतिशीलता प्रदान करते हैं। हमारे जॉइंट्स पर मौजूद नाजुक कवर को कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज से जॉइंट्स में लचीलापन आता है और मूवमेंट आसान होती है। कार्टिलेज के घिसने, उसमें बदलाव आने और इन्फ्लेमेशन होने को आर्थराइटिस कहते हैं। आर्थराइटिस को मोटे तौर पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, इन्फेक्टिव आर्थराइटिस और गाउटी आर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस बुढ़ापे की बीमारी है। ज्यादातर इसका असर बड़े जॉइंट्स जैसे कंधे और घुटने के जोड़ों पर होता है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस किसी भी उम्र के लोगों को अपना शिकार बना सकती है। ज्यादातर इसका असर शरीर के छोटे जॉइंट्स जैसे उंगलियों और अंगूठों के जॉइंट्स पर होता है। संतुलित भोजन, एक्सरसाइज और वजन को नियंत्रण में रखकर ऑस्टियोआर्थराइटिस को काफी हद तक काबू में रखा जा सकता है। आर्थराइटिस के पेशेंट का सामान्यतः NSAID और स्टेरॉयड से इलाज किया जाता है। कुछ अति गंभीर मामलों में डॉक्टर सर्जरी भी करते हैं, जैसे नी और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। रिमेटॉइड आर्थराइटिस में NSAID के अलावा इम्यून सप्रेसेंट ड्रग दी जाती है।
3: कोकिला, आर्थराइटिस पेशेंट्स की पेनफुल लाइफ को देखकर दुख होता है, क्या हम इनके लिए कुछ कर सकते हैं?
0: क्यों नहीं कर सकते, वही कर सकते हैं जो तुम कर रहे हो। यस, ह्यूमन सपोर्ट। दोस्तों, मेडिकल साइंस और डॉक्टर्स तो अपना काम कर ही रहे हैं, मगर हम और आप भी आर्थराइटिस से जूझते लोगों की मदद कर सकते हैं। तो बस, बबलू जी की इस लाइफ के प्रति पॉजिटिव अप्रोच के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।
3: बाय।

एवरीवन, मेरा नाम काजल है। आज मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं एक स्कूलमेट हूँ और मुझे कई चीज़ों का शौक है, जैसे सिंगिंग, पेंटिंग, डांसिंग। और मैं आपको अपने सपने के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा सपना है कि मैं विदेश जाकर वहाँ घूमना चाहती हूँ, सब जो मतलब एक तरह से आज़ाद पंक्षी की तरह वहाँ पूरी तरह से घूमना चाहती हूँ। लेकिन कई कई बार प्रॉब्लम जो होती हैं उनके वजह से मेरा शायद ये सपना पूरा नहीं हो सकता। जैसे मेरे डैडी हैं जिन्हें पसंद नहीं है कि कोई लड़कियाँ घूमे, लेकिन मैं उन्हें कई बार कहती हूँ, उन्हें विश्वास दिलाती हूँ कि मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ। और एक बार मैं ये सोचती हूँ कि काश मैं अपने पापा को खुश देख सकूं, और ये सोचती हूँ कि मैं एक ना एक दिन अपने पापा का सर ऊंचा जरूर करूँगी। यही मेरी कामना है। और आज मैं आई हूँ, थोड़ा डर तो लग रहा है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं कुछ लोगों को कुछ बता पा रही हूँ, जो मैं बोलना चाहती हूँ वो मैसेज दे पा रही हूँ। मैं आपको एक छोटा सा गाना सुनाना चाहती हूँ।

हमारे देश में कृषि पर्यटन में काफी संभावनाएं हैं। देश में कुल 6.50 लाख गांव हैं। इसमें 14 करोड़ से ज्यादा किसान रहते हैं और इनमें लगभग 70% से ज्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर हैं। ऐसे में कृषि पर्यटन गांव में रहने वाले लोगों के लिए आय का अच्छा जरिया साबित हो सकता है। वैसे तो गांव की सुंदरता को रोजगार से जोड़ने के लिए कृषि पर्यटन की शुरुआत की गई, लेकिन कृषि पर्यटन शुरू करने के पीछे और भी कई कारण समझ आते हैं। जैसे कृषि जोत का आकार छोटा होना, युवाओं का शहर की तरफ पलायन और जलवायु परिवर्तन के कारण खेती में आने वाली परेशानियां, इन्हीं सब कारणों को ध्यान में रखते हुए कृषि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि पर्यटन खासकर उन शहरी लोगों के लिए अच्छा है जिनका बचपन आमतौर पर घर की चार दीवारी में ही बीत जाता है। वे अनाज, सब्जियां और दूध उत्पादन की प्रक्रिया को भी नहीं जानते। ऐसे लोगों को कृषि पर्यटन खेती के पारंपरिक तरीकों को देखने समझने का मौका देता है। कृषि पर्यटक स्थल पहाड़ी इलाकों में बनाए जा सकते हैं। अगर मैदानी इलाके में कृषि पर्यटक स्थल बनाना चाहते हैं, तो वहाँ की संस्कृति, पार्क और देसी तरीके से मिट्टी और बांस के बने आवास और खाने की सुविधा करनी चाहिए। कृषि पर्यटन स्थल बनाते समय कुछ जगहों को दृश्य स्थल में बदलकर वहाँ पर खेती के पुराने तरीकों और मशीनों का म्यूजियम बना सकते हैं। इसके अलावा कृषि पर्यटक स्थल पर आने वाले पर्यटकों के लिए खेती, बागवानी और पशु उत्पादन से जुड़े कामों का प्रदर्शन भी कर सकते हैं। पिछले काफी समय में लोगों की आय भी बढ़ी है और घूमने का शौक भी बढ़ा है। ऐसे में आने वाले समय में कृषि पर्यटन बहुत बड़ा विकल्प बन सकता है, जो न सिर्फ प्रकृति की गोद में जाने का मौका देता है, बल्कि ग्रामीण आबादी को रोजगार भी देता है।

क्या आप जानते हैं पपीता बहुत ही महत्वपूर्ण फल है। ये एक ऐसा फल है जो सबसे कम समय में फल उत्पादन देता है। इसके इसी गुण के चलते पूरे भारत में इसकी खेती बहुत अच्छे तरीके से की जा रही है। लेकिन ऐसे क्षेत्र जहां पर गर्मी बहुत अधिक होती है और ठंड बहुत पड़ती है, उन क्षेत्रों में पपीते की खेती में तरह तरह की बाधाएं या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इनसे बचने के लिए हमारे पास विकल्प भी बड़े सीमित से हैं। लेकिन यह जानना आवश्यक है कि जो वर्तमान में मौसम चल रहा है, ये मानसून का समय चल रहा है, मानसून पूरे भारत में सक्रिय है, ऐसे में हम पपीते की खेती में क्या कर सकते हैं। पहले जानना यह आवश्यक है कि वो कौन कौन सी किस्में हैं जिनका उत्पादन करना चाहिए। पपीते में दो तरह की किस्में होती हैं, एक द्विलिंगी होती है, दूसरा उभयलिंगी होती है। द्विलिंगी किस्में ऐसी हैं जिनका नाम है, जैसे पूसा नन्हा है, पूसा ड्वार्फ है, पंत पपीता एक है, दो है, इस तरह की किस्में द्विलिंगी कहलाती हैं। इसमें नर अलग होता है और मादा अलग होता है। इस तरह की किस्मों को उत्पादन करने में एक अच्छी बात यह होती है कि इसमें जितने भी मादा पौधे होते हैं उनमें समान रूप से फूल भी आता है, फल भी आता है और उत्पादन अच्छा होता है, खास करके उत्तर भारत और मध्य भारत और पश्चिम भारत के क्षेत्रों में। लेकिन समस्या ये होती है कि आपके खेत में जो 100 पौधे होंगे मान लीजिए, तो उसमें से 50 पौधे नर के होंगे, जिनको आपको जिसमें से 40 आपको हटाने पड़ेंगे, सिर्फ 10 रखने पड़ेंगे, ताकि जो परागण और निषेचन की प्रक्रिया हो अच्छे से पूरी हो सके। इसके चलते होता क्या है कि जब हम एक हेक्टेयर के लिए पपीता लगाते हैं तो हमें एक गड्ढे में 2 से 3 पौधे लगाने पड़ते हैं, ताकि अधिक से अधिक पौधे हमें मादा मिले और 80 से 90% जो पौधे हों उसमें फल आए और केवल 8 से 10% पौधे नर के रहें। अगर नर के पौधे अधिक दिखाई पड़ते हैं तो उन्हें हमें हटाना भी पड़ता है। लेकिन उभयलिंगी किस्में जैसे सिंटा रेड लेडी है, अर्का सूर्या है, अर्का प्रभात है, ये ऐसी किस्में हैं जिनमें नर और मादा की समस्या नहीं होती है। इसमें दो तरह के पौधे होते हैं, या तो मादा होगा या उभयलिंगी होगा। उभयलिंगी जो है ये दक्षिण भारत के क्षेत्रों में या ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो होती है उसमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस करता है। अनुकूल तापमान अच्छा यही रहता है कि 25 डिग्री सेल्सियस से लेके 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहे, तो पपीते की खेती बहुत अच्छे से हो सकती है। लेकिन उत्तर भारत के क्षेत्रों में और पश्चिम भारत में जो उभयलिंगी पौधे होते हैं, इसमें 2 से 3 तरह के फल होते हैं और मौसम के अनुसार फल का जो आकार है, चूंकि जो फूल आता है उसमें अंडाशय जो होता है उसका आकार बदलता है मौसम के अनुसार, इसीलिए परिणाम स्वरूप जो फल होता है उसका भी आकार बदलता है। इसलिए उन चीजों का ध्यान रख के ही किस्मों का चुनाव करें। अब आता है कि पौधे को किस समय लगाएं। पौधा जब भी आपको रोपाई करनी हो, पूरे भारत में अलग अलग मौसम है, लेकिन सामान्य रूप से 2 मौसम प्रमुखता पूरे देश में एडाप्ट किया गया है या पालन किया जाता है। एक है कि 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में रोपाई करें, दूसरा है 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में रोपाई करें। हालांकि दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में दिसंबर के महीने में भी रोपाई करते हैं, लेकिन ऐसे क्षेत्र बड़े सीमित हैं जो तमिलनाडु या उसके आसपास के क्षेत्र हैं। अगर आपको 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में रोपाई करनी है तो पौध उससे करीब 2 महीना पहले तैयार करना होगा। जो मौसम अभी चल रहा है इसमें या तो आपने अपनी पौध तैयार कर रहे होंगे या तैयारी शुरू कर दी होगी। अगर आपको अक्टूबर के मध्य में रोपाई करनी है तो यथाशीघ्र उस पौध की तैयारी शुरू कर दें। अगर पौध आपकी चल रही है तो उसकी अच्छे से देखभाल करें। ये नेट हाउस या पॉली हाउस में हो तो बेहतर है, क्योंकि खुले में इस मौसम में जो विषाणु फैलाने वाले कीड़े होते हैं, खास करके सफेद मक्खी और माहू, इनकी प्रचुर संख्या उपलब्ध रहती है। इससे खुले में उनमें विषाणु का जो प्रकोप है वो पौधे की शुरुआत में ही काफी फैल जाता है, और जब आप इसकी रोपाई करेंगे तो ये तेजी से प्रकट होगा। उससे बचने का तरीका है कि हम इनको नेट हाउस या पॉली हाउस मंगाए। साथ ही साथ अधिक बारिश होने से पौधे के सड़ने की भी संभावना रहती है, उससे भी बचाव हो जाता है। लेकिन ध्यान रखें, अगर पॉली हाउस है तो उसमें एग्जास्ट फैन या हवा अंदर से बाहर करने वाला अवश्य होना चाहिए, नहीं तो जब भी तापक्रम ऊपर हो जाएगा 37 डिग्री या 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा तो तना और जड़ सड़न रोग की समस्या नर्सरी में या पौधशाला में बढ़ जाएगी। एक बार आपकी पौध जब 6 से 8 सप्ताह की हो जाती है तो उसके हिसाब से आप उसकी रोपाई कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर आपको फरवरी और मार्च की रोपाई करनी है तो आपको पौध की तैयारी खास करके उत्तर भारत और मध्य भारत के क्षेत्रों में अक्टूबर महीने में की जाती है, क्योंकि दिसंबर और जनवरी के महीने में
अंकुरण नहीं हो सकता, तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है तो अंकुरण नहीं होता, इसलिए हमें उसकी तैयारी पहले करनी पड़ती है और दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक जो आपकी पौध है वो तैयार रहती है और कम तापक्रम के चलते नई बढ़वार नहीं होती है, पौध यथास्थिति में पॉली हाउसेज में बनी रहती है, बाद में हम उसी की रोपाई 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में करते हैं। अगर आपकी फसल पहले से लगी हुई है या फरवरी मार्च 2018 में आपने रोपाई करी है तो उस फसल में अभी फूल आ रहा होगा, नए फल लग रहे होंगे। सामान्य रूप से देखा यह जाता है कि जहां जहां उभयलिंगी किस्मों की प्रमुखता है उस क्षेत्र में इस मौसम में फल जो रुकता है वो कम, उसकी संख्या कम हो जाती है, खास करके उभयलिंगी पौधों में जहां पर जो उसका स्टिग्मा होता है वहां कोई ना कोई ऐसा इन्फेक्शन फफूद का हो जाता है, क्योंकि मौसम में आर्द्रता बहुत ज्यादा है और फफूद काफी फैला होता है। उससे बचने का तरीका ये किया है कि बीच बीच में 10 से 15 दिन के अंतराल पर हमें 1 ग्राम बॉबिस्टीन प्रति लीटर में जल में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। साथ ही साथ आप एक समस्या और देखते होंगे कि जो फल लग रहा है वो कुछ दिन के बाद गिर जाता है, फल गिरने की समस्या होती है। मूल रूप से उसका जो कारण यही होता है कि फल का निषेचन प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, उसको पूरा करने के लिए या कोई आपको रोग आया है फफूंद जनित जो स्टिग्मा के हिस्से में आता है वहां से रोग आता है, तो उससे बचने का तरीका यही है कि बॉबिस्टीन की 1 ग्राम मात्रा को 1 लीटर जल में घोल के छिड़काव करें। साथ ही साथ जो अन्य हार्मोन होता है उसकी 20 ppm की मात्रा को, मतलब 20 mg 1 लीटर जल में घोल के छिड़काव करेंगे तो ये जो हार्मोन से होने वाले फल गिरने की समस्या है वो कम हो जाएगी और जो आपके फूल आएंगे वो ज्यादा अच्छी क्वालिटी के आएंगे ताकि उनका परागण और निषेचन भी अच्छे से हो सके। यदि आपको किसी कारण से अन्य हार्मोन नहीं मिलता है बाजार में तो आप तमाम ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिनकी मात्रा का ध्यान रखें, खास करके जिंक सल्फेट और बोरान है। आजकल तमाम निजी क्षेत्रों की कंपनियां ऐसे उत्पाद को लिक्विड फॉर्म में तरल पदार्थ की मात्रा में भी बेच रहे हैं जिनकी सभी लोगों ने एक ही मात्रा रखी है कि 2.5 ml मात्रा 1 लीटर जल में घोलकर छिड़काव करें तो उसमें जिंक सल्फेट भी मिल जाता है पौधे को, बोरान भी मिल जाता है और मॉलिब्डेनम भी मिल जाता है, कॉपर भी मिल जाता है, आयरन भी मिल जाता है। इन सारे के होने से जो फूल और फल बनने की प्रक्रिया है उसमें काफी सुधार होता है और फल गिरने की समस्या कम हो जाती है। दूसरी समस्या ये आती है इस मौसम में कि आप देखेंगे तरह तरह के विषाणु रोग आते हैं। एक जिसे पर्ण कुंचन रोग कहते हैं या लीफ कर्ल वायरस कहते हैं, वो बहुत ज्यादा फैलता है इस मौसम में। पहला ध्यान ये रखें कि खेत में कोई भी खरपतवार ना होने दें। दो कीड़े जैसे सफेद मक्खी और माहू दोनों ही विषाणु फैलाते हैं। सफेद मक्खी पर्ण कुंचन या मरोड़िया रोग को फैलाती है और माहू जो है वो रिंग स्पॉट वायरस या पपीता रिंग स्पॉट वायरस, छोटे छोटे रिंग नुमा शक्ल बन जाती है पत्ते पे, पत्ते टेढ़े मेढ़े जाते हैं, उस रोग को फैलाता है। और दोनों को बचने का कोई सीधा तरीका नहीं है। एक तरीका यह है कि ये दोनों ही कीड़े जो फैलाते हैं रोग को, ये मूल रूप से पपीते के ऊपर रहते नहीं या उनके ऊपर इनका पोषण नहीं होता, ये आसपास की झाड़ियों में या खरपतवार के बीच में छुपे रहते हैं या आसपास की फसलों पर रहते हैं। तो पहला ध्यान ये देंगे आपके खेत में बिल्कुल भी खरपतवार ना हो, पानी ना रुकने पाए कहीं पर जिसके चलते कि कहीं जड़ सड़न की समस्या हो जाए या तना गलन की समस्या हो जाए। तो खेत ऊंचा हो या अगर पानी रुकता भी है तो जल निकास की उचित व्यवस्था करें कि जैसे ही बारिश हो पानी निकाल दें। अब आई बात कि खाद एवं उर्वरक की। अगर खाद और उर्वरक आपके यहाँ पहले से पड़ा हुआ है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी पड़ा है तो आपको उसकी टॉप ड्रेसिंग करनी चाहिए। पपीते में सामान्य रूप से 8 से 10 kg सड़ी गोबर की खाद हम डालते हैं जब हम पौध की रोपाई करते हैं, उससे ठीक 1 हफ्ते पहले या 2-4 दिन पहले। दूसरा है कि जो उर्वरकों की मात्रा है ये काफी आवश्यक है, क्योंकि नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम की आवश्यकता काफी बड़ी मात्रा में पपीते को होती है और पपीता अपने आप में एक ऐसा फल है कि जिसमें एक ही समय पर नए पत्ते भी आते हैं, पौधे की बढ़वार भी होती है, फूल भी आता है, फल का विकास भी होता है और कुछ फल पकने को भी तैयार हो जाते हैं। ये प्रक्रिया साथ साथ चलती है, इसलिए नाइट्रोजन और पोटाश की जो मात्रा है उसको हम बाकी की 3 से 4 बार अलग से डालते हैं। सामान्य रूप से 125 से 135 दिन के बीच में इसके फल पकने शुरू हो जाते हैं या पकने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन कई बार तापक्रम में घटाव या बढ़ाव के चलते ये दिन घट और बढ़ भी सकते हैं।
एक अच्छा तरीका यह है, आप कोई भी एक निडिल लीजिए जिसमें पहले से कोई इन्फेक्शन ना हो, उसको हल्का सा आप फल के ऊपर, जो फल आपको लगता है कि पुराना है, बड़ा हो गया है, और हल्का हल्का उसमें गाढ़ा हरा रंग है या हल्का पीला की तरफ जा रहा है, तो उसके ऊपर हल्का सा निडिल को छुआइए। अगर वहां से दूध निकलता है तो इसका मतलब फल बिल्कुल तैयार नहीं है तोड़ने के लिए या पकने के लिए। अगर दूध नहीं निकलता है, पानी हल्का सा पानी निकलता है और वो आपके फल की सतह पर ही रुक जाता है, गिरता नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपका फल पूरी तरह से पकने के लिए तैयार है। ऐसे फल को तोड़कर आप बाजार में बेच सकते हैं। दूसरी एजेंसियां हैं, जैसे आप कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से, दिल्ली के बाजार में फल आता है, या गुजरात से आता है, छत्तीसगढ़ से आता है, ये सारे कच्चे फल ही दिल्ली तक आते हैं, कलकत्ता तक या मुंबई तक जाते हैं। वहां पे जो अलग एजेंसियां हैं वो इनको जो इथिलीन के चैम्बर्स होते हैं उनमें डाल के पका के फिर जो आसपास के बाजार में होते हैं वहां इनका विपणन करती है। किसी भी ऐसे रसायन का प्रयोग ना करें जिससे कि स्वास्थ्य पे जो भी उपभोक्ता है उसका विपरीत प्रभाव पड़े, खास करके कार्बाइड जैसी चीजों का बिल्कुल प्रयोग ना करें। और इथरल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कभी भी फल पका के उसको फिर बाजार के लिए ना जाएं, क्योंकि पपीते का फल बहुत नाजुक होता है, जब भी आप इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तो बहुत जल्दी इसमें नुकसान होता है। इसलिए कच्चे फल का ही विपणन करें, लेकिन वो फल जो पकने के लिए तैयार हो।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: पपीता खाने के जबरदस्त फायदे। पपीता स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। इसका सेवन न सिर्फ पाचन तंत्र को मजबूती देता है बल्कि ये मोटापे को कम करने में भी सहायक है। हर रोज पपीता खाने से कई तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है। आइए जानते हैं इसके सेवन के फायदों के बारे में। पेट की बीमारी के इलाज में है पपीता लाभकारी। अगर आपको कब्ज की समस्या है तो रोजाना पपीते का सेवन करें, इससे पेट साफ होगा। आंखों की रोशनी बढ़ाने में पपीता लाभकारी। पपीते में विटामिन सी तो भरपूर होता ही है, साथ ही विटामिन ए भी पर्याप्त मात्रा में होता है। विटामिन ए आंखों की रोशनी बढ़ाने के साथ ही बढ़ती उम्र से जुड़ी कई समस्याओं के समाधान में भी कारगर है। हृदय संबंधी बीमारियों के इलाज में पपीता लाभकारी। पपीते में फाइबर, पोटेशियम और विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। इसलिए आपको रोजाना पपीते का सेवन जरूर करना चाहिए। पपीते का सेवन गठिया की बीमारी में भी फायदेमंद है। दरअसल इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी एंजाइम पाए जाते हैं, जो गठिया के कारण होने वाले दर्द को दूर करने में मदद करता है। एक अध्ययन के मुताबिक जो लोग नियमित रूप से पपीते जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करते हैं, उन्हें गठिया होने की संभावना ज्यादा होती है। मोटापे को कम करने में भी सहायक। एक मध्यम आकार के पपीते में 120 कैलोरी होती हैं। ऐसे में अगर आप वजन घटाने की बात सोच रहे हैं तो अपनी डाइट में पपीते को जरूर शामिल करें। इसमें मौजूद फाइबर्स वजन घटाने में मददगार होते हैं। कोलेस्ट्रॉल को कम करने में पपीता फायदेमंद। पपीते में उच्च मात्रा में फाइबर मौजूद होता है, साथ ही ये विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होता है। अपने इन्हीं गुणों के चलते ये कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में काफी असरदार है। इसी तरह से पपीते के सेवन करने से और भी अनेक फायदे हो सकते हैं, जैसे डेंगू बुखार को ठीक करने में कारगर, लीवर को रखे स्वस्थ, इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार, त्वचा के लिए फायदेमंद और बालों के लिए भी फायदेमंद।
1: गाजियाबाद भारत की राजधानी से सटे ऊपरी गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में स्थित है। इसी जिले के गांव चोलस से आते हैं हमारे सफल किसान शिव कुमार, जो दूसरे किसानों के सामने मिसाल पेश कर रहे हैं, जिन्होंने साधारण खेती नहीं बल्कि ऑर्गेनिक यानी कि जैविक खेती और पशु पालन दोनों को एक साथ चुना। शिव कुमार जैविक खेती से मिले फल सब्जियों का सेवन करने वाले लोगों का भी ध्यान रख रहे हैं, साथ ही साथ मोटा मुनाफा भी कमा रहे हैं। वो कैसे, तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं उन्हीं की जुबानी।
2: ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग करता हूं और नेचुरल फार्मिंग भी तो मैं अब से करने लगा हूं। पहले मैं जैविक खेती करता था। 2005-06 से मैं राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद के संपर्क में आया, जहां से ये केंचुए पालन मुझे सीखने को मिला और मैंने इनसे ट्रेनिंग लेकर के विधिवत तरीके से अपने यहां पर केंचुए पालन शुरू किया, जिससे मुझे केंचुए पालन के साथ साथ में वर्मी कंपोस्ट भी मिलता था और वर्मी वास भी मिलता था। इससे क्या हुआ, जब मैंने अपने खेतों में विधिवत तरीके से अप्लाई किया तो मैंने वर्मी कंपोस्ट से कुछ किसानों को बेचा भी कि भाई इस विधि से हम जैविक पे आ सकते हैं। और जो हम जहरीली खेती कर रहे हैं, जो कन्वेंशनल फार्मिंग कर रहे हैं या ये केमिकल फार्मिंग से पेस्टिसाइड से जो हम खेत में लगा रहे हैं, इससे हम लोगों को निजात मिल सकता है, जिससे हम जहर मुक्त भोजन ले सकते हैं।
1: आज भले ही शिव कुमार अपने गांव और आसपास के इलाकों में चर्चा का विषय बन रहे हों, लेकिन ये सब करना उनके लिए इतना आसान नहीं था। इसके लिए उन्हें मदद मिली गाजियाबाद के राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र से, जिनकी मदद और सही सलाह अपनाने के बाद शिव कुमार आज एक सफल किसान बनने की राह पर अग्रसर है। कैसे शिव कुमार और उनके जैसे हजारों लाखों किसान खेत की मिट्टी को बेहतर बना सकते हैं, बता रहे हैं राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र के उप निदेशक जगत सिंह।
3: कुमार जी, वर्ष करीब 2005 से ही एक इनोवेटर के रूप में उभरे हैं और वर्ष 2014 से ये राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र से जुड़े। तो जब इनसे मेरी पहली बार मुलाकात हुई तो इनसे मुझे पता चला कि इनके खेत की मिट्टी का पीएच हाई है और खेत में मोटे मोटे ग्रेवल्स हैं, माने कैल्शियम कार्बोनेट के पत्थर हैं, जो निशानी है ऊसर भूमि की या हाईली सैलाइन एल्किली की। तो उसी समय से हमने इनको जैविक खेती के परिपेक्ष में दो तीन चीजें बताई थी कि एक तो कंटिन्यू आपको ग्रीन मैन्योर का इस्तेमाल करना है, पकी और पची हुई खाद का इस्तेमाल करना है, जहां जहां पे सैलाइन एल्कली के पैचेज हैं वहां पे गोबर डाल के और थोड़ा मीठा डाल के उसको गलाना है, और जहां पे ज्यादा खारी सॉइल है वहां की मिट्टी उठा के उसमें मीठी मिट्टी और गोबर डालना है। तो पहले बार में इन्होंने ये काम किया। दूसरी बार में हमारे केंद्र से कुछ कल्चर दिए जाते थे जो डिकम्पोज करने का काम करते थे, शिव कुमार जी ने उस कल्चर का अपने खेतों में प्रयोग किया और उस कल्चर के प्रयोग से जो खेत का जो सैलाइन एल्कली का जो नेचर था हाई पीएच वो लो पीएच में कन्वर्ट हो गया, और साथ ही साथ जो खेत में 1.5 से 2 इंच मोटे पत्थर थे वो भी धीरे धीरे समाप्त हो गए।
1: अब ये जैविक खेती है क्या जिससे हमारे सफल किसान अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, जरा इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। जैविक खेती फसल उत्पादन की एक प्राचीन पद्धति है जिसमें फसलों के उत्पादन में गोबर की खाद, कंपोस्ट, जीवाणु खाद, फसलों के अवशेष और प्रकृति में उपलब्ध कई तरह के खनिज पदार्थों के जरिए पौधों को पोषक तत्व दिए जाते हैं। सबसे खास बात यह है कि ऐसी खेती में प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों को कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैविक खेती पर्यावरण की शुद्धता बनाए रखने के साथ ही भूमि के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखती है। जैविक खेती का मतलब एक ऐसी कृषि प्रणाली से है जिसमें फसलों के उत्पादन में रासायनिक खादों एवं कीटनाशक दवाओं के स्थान पर जैविक या प्राकृतिक खादों का प्रयोग किया जाता है। जैविक खेती को लेकर शायद हमारे सफल किसान शिव कुमार जी जानते हैं कि जिस तरह जैविक खेती बीते कुछ समय में लोकप्रिय हुई है उसी हिसाब से आने वाला समय जैविक खेती का ही है, इसलिए उन्होंने जैविक खेती को चुना।
2: जैविक हर किसी को चाहिए और नेचुरल उत्पाद हर किसी किसान को, हर किसी उसको चाहिए जिनको खाना है, तो उसको लेकर के जितना मेरे पास में उत्पाद था उसे डिमांड अत्यधिक थी मेरी, तो इसलिए मैं बंसी गोल्ड पहले से लगा रहा था। बंसी गोल्ड गेहूं मैंने एमपी वाला गेहूं लगाया था, उसका उत्पादन बहुत अच्छा आया और उसकी जो हमारी पैदावार थी वो थोड़ी सी इससे कम थी, लेकिन जो हमारा खाने में बहुत अच्छी गुणवत्ता देता था HD 226 उसका विकल्प HD 3226 वैरायटी करके मुझे राष्ट्रीय नेशनल सीड कॉर्पोरेशन से प्राप्त हुई। केवल 6 क्विंटल बीज मुझे मिल पाया था, तो मैंने विधिवत तरीके से अपने खेत में 17-18 नवंबर को मैंने इसको अपने खेत के अंदर लगा दिया था और इसको मैंने विजय सुपर सीडर से की, उसका सीड ट्रीटमेंट मैंने अपने जेल खाद से वही 1 चम्मच लेकर के और थोड़ा एक उसमें 1 लीटर पानी डाल करके और मैंने लगभग 3 क्विंटल गेहूं को पर्याप्त मात्रा में उसे बीज शोधन किया था और थोड़ा सा उसमें मैंने हल्का सा 250 ग्राम गुड़ घोल कर भी उसको मिला लिया था। उसका मैंने विधिवत तरीके से उसका उपचार किया और उपचार करने के बाद में जो मेरे पास में वर्मी कंपोस्ट था तो मैंने अपने उर्वरक की फर्टिलाइजर की जगह वर्मी कंपोस्ट अगले टापे में भर करके पिछले में सीड डाल करके और मैंने अपने सुपर सीडर से इन खेतों की बिजाई कर दी है और यील्ड शायद इस बार बहुत अच्छा आएगा। सर मुझे रेट बहुत अच्छा मिल रहा है।
1: शिव कुमार का मानना है कि गांव में खेतीबाड़ी आपसी सहयोग से की जाए तो काफी फायदा होता है और इससे आय में वृद्धि के साथ गांव का भी विकास होगा, तो वहीं सह फसली जैविक खेती पर सोने पर सुहागा का काम कर रही है जिससे शिव कुमार को 2 गुना लाभ हो रहा है। इस तरह सह फसली खेती करने से मेहनत मजदूरी के साथ साथ पानी, खाद, उर्वरक, बीज और कटाई का खर्चा निकल आता है।
2: पहले जैसे हम खेती कर रहे थे अभी भी और अच्छे तरह से उसको खेती को कर रहे हैं, हम फसल चक्र में लेकर आए हैं। एक तो फसल चक्र से फायदा क्या है कि जो हमारा ये जो वीड है ये वीड अपने आप ही कंट्रोल हो जाता है फसल चक्र से। जैसे हमने अब तिलहन यानी तिलहन लगाया है तो तिलहन के बाद में फिर हमने इसके तिलहन के बाद में जैसे मक्का लगाया है, मक्का के बाद में हम और सब्जी वर्गीय यानी कद्दू वर्गीय फसल इस तरह से घिया तोरई ककड़ी खीरा ये इस तरह से ले रहे हैं। और इससे जो है किसान भाई समझें कि इससे अत्यधिक बेनिफिट है, सब्जी से जो आदमी उस किसान को जो मिलता है उससे बहुत ज्यादा कुछ मिलता है।
1: इन फसलों में धान और गन्ना जैसी फसल मुख्य है। गन्ने के साथ सह फसली करने के एक नहीं कई फायदे हैं। जहां गन्ने की फसल को पकने में 10 से 12 महीने लग जाते हैं, वहीं 60 से 90 दिनों में दूसरी फसलें पक जाती हैं। इस दौरान बीच बीच में सब्जियों और दलहनी फसलों की खेती करने से 2 से 3 महीनों में दूसरी फसलों की उपज से पैसे मिल जाते हैं। अच्छी बात ये भी है कि ऐसा कर हमारे सफल किसान अपनी जैविक खेती से दूसरे किसानों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं।

अगर अपने भारत के शहरों में, भारतवर्ष के शहरों में अगर आप एक फलदार पौधा लगाना चाहते हैं वो तो आप जामुन लगाइए। जामुन जो है वो एवरग्रीन भी होता है, जामुन में घनत्व बहुत होता है, इसका जो हरियाली का इसकी जो क्षमता है, इसका क्राउन बहुत अच्छा होता है, बहुत ही प्यारा, बहुत तेज उगने वाला है, जल्दी कीड़ा नहीं लगता और नो नॉनसेंस पौधा है। इसको एक बार आपने लगा दिया, इसको आपने दो साल इसकी सेवा कर दी, पानी वानी अच्छा डाल दिया तो ये बहुत बढ़िया निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको कभी भी जिंदगी में इसको परवाह करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत बढ़िया निकलेगा। जामुन मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि जब देखिए बाकी जो हमारे जितने भी फलों के वृक्ष है ना वो छोटे साइज के रह जाते हैं, जैसे चीकू हुआ, फिर आप नींबू ले लीजिए, आप अमरूद ले लीजिए, आम जो है स्लो ग्रोइंग है, वो धीरे धीरे उगता है, तब तक जो है गाय भैंस बकरी उसको अटैक कर जाती है। जामुन एक ऐसा है, आप देखेंगे हम अपने एक्सपीरियंस से आपको ये चीज शेयर कर रहे हैं, मैक्सिमम सर्वाइवल हुआ उसका, गाय ने भी खाया, भैंस ने भी खाया, नीलगाय भी आके खा गई, उसको बकरी भी चर गई, लेकिन फिर भी वो इतना रॉबस्ट पेड़ है, जैसे पीपल का वृक्ष होता है ये उगता ही रहता है, उगता ही रहता है। अब जैसे यहां से भी बहुत जगह से इसकी प्रूनिंग हुई थी, ये देखिए यहां कोई काट के गया है, यहां काट के गया है, ये ब्रांच, ये वाली एक ब्रांच किसी ने काटी है, चॉप की है, फिर यहां से निकलना शुरू हो गया। तो इसकी जो ग्रोथ की क्षमता है, इसकी जो फैलने की क्षमता है वो बड़ी प्यारी है, इसीलिए मैं जामुन प्रेफर करता हूं शहरों के लिए भी, है ना। और इरिगेशन कैनाल्स हैं, आपकी जो मेड़े हैं फार्म्स में, जो खेतों में, आप वहां पर भी जामुन लगा सकते हैं। जामुन का जो फल है उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी है, आपको अगर आप उसको कमर्शियली भी करना चाहते हैं, मार्केट में भी उसको बेचना चाहें, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। पक्षियों के लिए बहुत अच्छा है, बंदरों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, गिलहरी बहुत अच्छी आती हैं, इंसेक्ट पॉपुलेशन बहुत आती है और फर्स्ट क्लास छाया आती है, इसमें बहुत ही ठंडी छाया है इसकी। तो जामुन का पेड़ आप जरूर लगाएं।

अरंडी चौड़े पत्तों का छोटे कद वाला पौधा होता है जो प्राकृतिक रूप में जन्म लेता है। यह पौधा भारत में आम पाया जाता है। इसके बीजों से तेल निकाला जाता है जो औषधीय रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके पत्ते भी औषधीय रूप में बहुत काम आते हैं। यहाँ अरंडी के पत्ते, बीज और तेल से जुड़े फायदे बताए जा रहे हैं, जिसे अपनाकर आप कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अरंडी की जड़ 20 ग्राम को 400 मिलीलीटर पानी में पकाएं। जब यह 100 मिलीलीटर शेष बचे तो इसे पिलाने से त्वचा संबंधी रोगों में लाभ होता है। अरंडी के तेल की मालिश करते रहने से शरीर के किसी भी अंग की त्वचा फटने का कष्ट दूर होता है। ऐसे बच्चे जिनके सिर पर बाल नहीं उगते हो या बहुत कम हो, या ऐसे पुरुष स्त्री जिनकी पलकों व भौहों पर बहुत कम बाल हो, तो उन्हें अरंडी के तेल की मालिश नियमित रूप से सोते समय करना चाहिए। इससे कुछ ही सप्ताह में सुंदर, घने, लंबे, काले बाल उगने लग जाएंगे। सिर पर अरंडी के तेल की मालिश करने से सिर दर्द की परेशानी दूर होती है। अरंडी की जड़ को पानी में पीसकर माथे पर लगाने से भी सिर दर्द में राहत मिलती है। अरंडी का तेल थोड़े से चूने में फेंटकर आग से जले घावों पर लगाने से वे शीघ्र भर जाते हैं। अरंडी के पत्तों के रस में बराबर की मात्रा में सरसों का तेल फेंटकर लगाने से भी यही लाभ मिलता है। यदि मल त्यागने में कठिनाई का अनुभव हो तो अरंडी के तेल को दूध के साथ देने से लाभ होता है। अरंडी का तेल गर्म पानी के साथ देना चाहिए या फिर अरंडी का रस शहद में मिलाकर बच्चों को पिलाना चाहिए। इससे बच्चों के पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं। अरंडी के पत्तों का रस रोजाना 2 से 3 बार बच्चे की गुदा में लगाने से बच्चों के पेट के कीड़े मर जाते हैं। अरंडी के तेल में कपूर का चूर्ण मिलाकर दिन में 2 बार नियमित रूप से मसूड़ों की मालिश करते रहने से पायरिया रोग में आराम मिलता है। पत्ते पर थोड़ा चूना लगाकर तिल पर बार बार घिसने से तिल निकल जाता है। अरंडी के तेल में कपड़ा भिगोकर मस्से पर बांधने से मस्से मिट जाते हैं। अरंडी का तेल लगाने से जख्म भी भर जाते हैं और इसको मस्सों पर लगाने से मस्सा ढीला होकर गिर जाता है। अरंडी के तेल को सुबह और शाम 1 से 2 बूंद हल्के हाथ से मस्से पर मलने से 1 से 2 महीनों में मस्से गिर जाते हैं। अरंडी के बीज की मींगी को दूध में पीसकर रोगी को पिलाने से गर्दन और कमर दोनों जगह का दर्द चला जाता है। 10 ग्राम अरंडी की जड़ को छाछ के साथ पीसकर पिलाने से

पत्ती और दस्त बंद हो जाते हैं। अरंडी के पत्तों का क्षार 3 ग्राम, तेल एवं गुड़ आदि को बराबर मात्रा में मिलाकर चाटने से खांसी दूर हो जाती है। अरंडी के तेल की 10 बूंदों को रात को सोते समय पानी में मिलाकर सेवन करने से कब्ज की बीमारी में लाभ होता है। एरंड का तेल 30 ग्राम को गर्म दूध में मिश्री के साथ पीने से कब्ज दूर हो जाता है। 1 कप दूध में 2 चम्मच एरंड का तेल मिलाकर सोते समय पिलाएं। इससे पेट की कब्ज नष्ट हो जाती है। चोट लगकर खून आने लगे, घाव हो तो एरंड का तेल लगाकर पट्टी बांधने से लाभ होता है। एरंड के पत्ते पर तिल का तेल लगाकर गर्म करके बांधने से चोट से सूजन एवं दर्द में लाभ होता है। एरंड के पत्ते पर सरसों और हल्दी गर्म करके मोच वाले स्थान पर लगाएं और पत्ते को उस पर रखकर पट्टी बांध दें। अरंड के बीज की गिरी 10 ग्राम काले तिल 10 ग्राम दूध में पीसकर हल्का गर्म करके मोच पर बांध दें। अरंडी के तेल की 2 चम्मच मात्रा को गर्म दूध में मिलाकर सेवन करने से लाभ होता है। जय हिंद।

0: नमस्कार, मैं अदिति शर्मा दूरदर्शन किसान चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे कार्यक्रम सफल किसान में हम देश के कोने कोने से उभरती हुई प्रतिभाओं से आपको रूबरू करवाते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि कृषि, पशुपालन और कृषि स्टार्टअप से संबंधित जानकारियां आप तक पहुंचा सके। आज के हमारे इस कार्यक्रम में जिन दो सफल किसानों से हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं, ये सफलता का परचम लहरा रहे हैं अपनी मेहनत के आधार पर। तो फिर आइए इनसे मुलाकात करने के लिए रुख करते हैं गुजरात के नवसारी का।
1: कृषि के क्षेत्र में गुजरात राज्य की अहम भूमिका है। राज्य सरकार का कृषि किसान कल्याण और सहकारिता विभाग अपने प्रभार में कृषि और संबंधित विधाओं जैसे बागवानी, मृदा संरक्षण, डेयरी विकास, पशुपालन और सहकारी गतिविधियों में नीतियों व योजनाओं के सदैव तत्पर रहा है। राज्य में बागवानी खेती और बागवानी गतिविधियों के लिए बढ़ते कृषि क्षेत्र के महत्व को देखते हुए कृषि विभाग ने अलग से बागवानी विभाग की स्थापना की है। इसलिए राज्य में बागवानी से जुड़े किसान बेहतर आयाम हासिल कर पा रहे हैं। ऐसी ही एक बागवान दंपति है नायक। ये दंपति पिछली दो पीढ़ियों से बागवानी कर अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। नवसारी जिले के सराओ गांव में रहने वाला ये परिवार मुख्य रूप से चीकू और आम की बागवानी कर रहा है। करीब 30 बीघा में फैले इनके बाग में आम की केसर किस्म, चीकू की काली पत्ती किस्म लगी है। विपुल जी ने शिक्षा लेने के बाद नौकरी में जोर आजमाइश की, लेकिन नौकरी में संतोष ना होने पर अपने पैतृक कार्य यानी बागवानी को ही चुना। पिता के साथ बागवानी की हर बारीकी को सीखते हुए विपुल जी बड़े हुए और आज ये बाग ही उनकी संपत्ति है।
2: 1992 में मैंने खेती करना चालू किया है, तब मेरे पास 300 से 350 हजार थे। उसके बाद फादर के साथ रह के मैंने वो सब रोजगारी डेवलप की है। जो कुछ दिक्कत आती है तो हम हमारी नवसारी यूनिवर्सिटी या कृषि यूनिवर्सिटी वहाँ जाके हम मार्गदर्शन लेते हैं। 30 बीघा की खेती है और 600 हजार चीकू का है। और चीकू में क्या है कि वो अक्टूबर महीना से जो चालू होता है तो अप्रैल तक उसका फल हमको मिलता है, तो 21 दिन में होता है। लेकिन अभी जो चौमासा में जो फूल बैठते उसका हमको 180 दिन के बाद वो फल के रूप में मिलते हैं। आम का है 150, उसमें क्या जब ठंडी ज्यादा रहेगी तो दिसंबर से वो उसकी मौर बोलते हैं, मौर आना चालू होते हैं। उसके बाद कड़ी पड़ते हैं, वो उस पर ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो मई और जून की 15 तारीख तक वो माल निकाल देते हैं हम। वो चीकू में काली पत्ती और कैरी में केसर है।

0: आम के पेड़ों की उम्र तो 45 साल तक की है। वहीं समय के साथ आए बदलाव में विपुल जी ने खुद भी कई पौधों को रोपा है जो इस समय अच्छी पैदावार दे रहे हैं। 30 बीघा बाग में 600 पेड़ चीकू, 150 पेड़ आम के लगे हैं। हर साल इनकी पैदावार में इजाफा हो रहा है, जिसके पीछे वजह है सही समय पर सही देखभाल।
1: साल में देख रेख तो वो बोल मजदूर के पास वो कैरी निकालते हैं और पानी पाते हैं और खाता डालते हैं दो टाइम। वो अक्टूबर महीने में पहले खेर करने के बाद डालता हूँ और मई महीने में खेर करने के बाद डालता हूँ। कटिंग तो मई महीने में करते हैं नीचे साफ सफाई रखने के लिए, वो ज्यादा बहुत नहीं है और दूसरा वो जंगली वेला फेला वो चढ़ नहीं जाए इसीलिए नीचे से काटते हैं।
2: कार्यक्रम में जानते हैं भारत में फलों की खेती के बारे में और साथ ही विपुल जी से ये भी जानते हैं कि उन्होंने चीकू की किस किस्म को चुना है और कैसे उसका बेहतर उत्पादन ले रहे हैं।
0: भारत में चीकू की खेती मुख्य रूप से कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में की जाती है। चीकू की खेती करीब 65,000 एकड़ की भूमि पर की जाती है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के द्वारा जारी आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2022-23 के पहले अग्रिम अनुमान के तहत वर्ष 2022-23 में कुल बागवानी उत्पादन 350.87 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो 2021-22 अंतिम की तुलना में लगभग 3.69 मिलियन टन यानी 1.06% अधिक की वृद्धि है। फलों का उत्पादन वर्ष 2021-22 में 107.51 मिलियन टन की तुलना में 107.75 मिलियन टन होने का अनुमान है। बढ़ते हुए इन आंकड़ों के पीछे समय और मांग के अनुसार किसानों के बदले तौर तरीके और आधुनिक कृषि को अपनाना शामिल है, जिसमें विपुल नायक जैसे किसानों का योगदान सराहनीय है। विपुल जी अपने बाग में चीकू की काली पत्ती किस्म को उगाते हैं। काली पत्ती किस्म को अधिक उपज देने वाली किस्म कहा जा सकता है। इसके पौधे को वर्ष 2011 में विकसित किया गया था। इस किस्म के एक पूरे पके हुए फल में 3 से 4 बीज मिल जाते हैं और फल भी अधिक गुणवत्ता वाला होता है। इसके एक पूर्ण विकसित पेड़ से एक साल में 150 किलोग्राम तक का उत्पादन मिल जाता है।
2: किसान भाइयों बहनों, यहाँ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे विपुल जी की पत्नी से, जो बागवानी में उनका पूर्ण सहयोग दे रही है। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान।
3: रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए, गोल्डी सब्जी मसाले
4: जहां जाए रिश्ते बढ़ाए।
5: अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ?
6: अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज?
5: मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित।
6: अरे ये तो कोई रसीद लगती है।
5: कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है।
6: WDRA
5: भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है।
6: अच्छा,
5: अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया।
7: ये तो कमाल हो गया।
5: कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा।
8: अरे वाह
5: मुन्नी।
9: पापा, आप मेरा नया बैग लाए?
5: हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके।
10: WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास।
2: ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब आपको मिलवाते हैं विपुल जी की पत्नी प्रीति जी से।
0: अपने पति के काम में बराबरी से हाथ बटा रही ये प्रीति जी, जो घर तो संभाल ही रही है वहीं बाग में भी समय दे रही है। पेड़ को कब किसकी जरूरत है इसके बारे में प्रीति जी बखूबी जानती हैं। इसीलिए पेड़ों की कटाई कब करना है, कब भूमि को खैरना है और कब

0: हाथ डालने हैं, प्रीति जी ये सब भली भांति जानती है। हालांकि इसके लिए उनके बाग में करीब 10 लोग श्रम देकर कार्य को आसान बना रहे हैं।
1: आज 600 पेड़ है चीकू के और आम के 150 पेड़ है। इसकी कटिंग हम मई महीने में करते हैं, जो नीचे पूरा मतलब लग गया होगा तो वो काट देते हैं। हर रोज हमारे घर पे 10 लेबर आते हैं, उनसे हम लोग वो सब चीकू का वो काम करवाते हैं। और साल में 2 बार जमीन पूरी खेड़ लेते हैं, एक मई महीने में और एक दिवाली के ऊपर। और दोनों टाइम जब भी खेड़ते हैं तब बाद में वो खातर उसमें डालते हैं, और दोनों टाइम खातर उसमें डाल देते हैं। और पानी का तो क्या है, वो एक मतलब एक कियाड़े में हो गया चीकू का काम खत्म, तो दूसरे कियाड़े में जाएंगे तो वहां पे पानी चालू कर देते हैं।
2: कार्यक्रम में जानते हैं इनकी फलों की बिक्री के बारे में और साथ ही साथ बिकवाली से होने वाले मुनाफे के बारे में।
0: बाग में तैयार होने वाले फल सीधे बाजार नहीं भेजे जाते, बल्कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से मंडी में दिए जाते हैं, जहां इन्हें अपने फलों का वाजिब दाम मिल जाता है। मंडी में देने के कारण इन्हें कई समस्याओं से बचना आसान हो जाता है, साथ ही फलों को आसानी से कई राज्यों में पहुंचाया जा सकता है। नायक दंपति बागवानी करके सालाना 7 से 8 लाख रुपए आसानी से कमा लेते हैं। वहीं आगे की रणनीति पर प्रीति जी का कहना है कि वो भविष्य में फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी किस्मत आजमाएंगी।
1: एग्रीकल्चर मतलब वो चीकू और आम में भी जो घर पे लेडीज लोग बैठे हैं वो भी यहाँ पे आके मतलब कुछ भी मतलब चीकू का वो प्रोसेसिंग करके घर पे वो चिप्स बनाकर उसको सुखा कर उसका मतलब मार्केटिंग कर सकते हैं, उसमें भी हम लोग थोड़ा कमा सकते हैं। और कैरी का भी वो जब हम लोग को पक जाती है तब हम लोग को ज्यादा पैसा नहीं मिलता है, तो उसका भी प्रोसेसिंग करके वो हम लोग उसमें भी थोड़ा अपना आत्मनिर्भर हो सकते हैं। तो हम लोग को ये काम करना चाहिए कि जिससे हमें वो पैसे मिले और हम अपने पैरों पे खड़े हो सके।
2: नायक दंपति की इस सफलता के पीछे कृषि विशेषज्ञों और साथ ही साथ सरकार का किस तरह का योगदान रहा है, आइए अब इसके बारे में जानकारी लेते हैं।
0: विपुल जी बताते हैं कि समय समय पर सरकार का पूरा सहयोग मिला है, यहाँ तक कि ट्रैक्टर पर सरकार से सब्सिडी भी मिली है। वहीं बेहतर बागवानी के लिए नवसारी कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों से पूरा सहयोग दिया है। वहीं बेहतर बागवानी के लिए नवसारी कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने पूरा सहयोग दिया है, चाहे उन्नत किस्म हो या सही रखरखाव। विशेषज्ञ मोबाइल के माध्यम से और जरूरत होने पर खुद भी खेत या बाग का मुआयना करते हैं और समस्या का समाधान करते हैं।
3: सरकार की तरफ से ट्रैक्टर पे भी सब्सिडी मिलती है, वो पाइप पे भी मिलता है सब्सिडी, और वो कैरेट है ट्रैक्टर का जो औजार है उसमें भी सब्सिडी सरकार देती है, खातर पे भी देती है सब्सिडी।
4: अभी हम सराव जो गांव है वहां पे है, यहाँ ये सराव गांव जो है जलालपुर तहसील में आता है, नवसारी जिले की, और ये गुजरात में है। और यहाँ जो श्री विपुल भाई नायक और श्रीमती प्रीति बहन के फार्म पे है, इन्होंने इनके पास 30 बीघा जमीन है और इस जमीन में इन्होंने 600 जो पेड़ है, ये काली पत्ती जो चीकू की वैरायटी है उसके लगा रखे हैं, और 150 जो पेड़ है वो आम के लगा रखे हैं जिसमें केसर वैरायटी है। और जो काली पत्ती वैरायटी चीकू में और केसर वैरायटी जो है आम में, यहाँ की बहुत ही लोकप्रिय किस्में हैं। और इनका जो भी ये उत्पादन होता है चीकू का और आम का, ये सारा अब्रामा जो या कोऑपरेटिव सोसाइटीज की जो मंडली है वहां पे देते हैं, और वहां से ये देश के विभिन्न कोनों में जाता है। और जो विपुल भाई जो है अपने जो बगीचे में इसको 2 बार जुताई करते हैं, एक बार अक्टूबर में, दूसरी बार मई में, और इसको मेंटेन करते हैं।
2: किसान भाइयों बहनों, इस इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे महिलाओं के एक ऐसे समूह से जो प्रसंस्करण का दामन थामे हुए है और इस क्षेत्र में सफलता हासिल किए हुए है। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान।
5: रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए, गोल्डी सब्जी मसाले
6: जहां जाए रिश्ता बढ़ाए।

0: ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब आपको महिलाओं के उस समूह से रूबरू करवाते हैं।
1: गुजरात में जिन लोगों के पास कृषि भूमि नहीं है वो भी अपनी किस्मत लिख रही हैं, वो भी खाद्य प्रसंस्करण करके। हमारी मुलाकात ऐसे ही एक महिला समूह से हुई जो कई तरह के खाद्य उत्पाद बनाती है और भी उन्हें मेलों दुकानों के माध्यम से बेचती है। करीब 10 से 12 महिलाओं का ये समूह पापड़, कुकीज, हेयर ऑयल, कुड़ई, चकली जैसे उत्पाद बना भी रही है और बेच भी रही है। इसके अलावा वो दालें, मोटे अनाज और चावल की पैकिंग करके भी बाजार पहुंचा रही है। समूह की एक महिला से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो किसानों से अनाज लाती है और उन्हें साफ करके पैक करती है। वो बताती है कि उनके पति पेशे से वाहन चालक है, ऐसे में घर की जरूरतें पूरी करने में परेशानी आती थी, लिहाजा सुनीता ने खुद इस समस्या का समाधान निकाला और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में लग गई। आलम ये है कि उनका उत्थान ग्राम सखी संघ सालाना 12 से 15 लाख कमा रहा है।
2: हमारे यहाँ पे केवीके में नीतल बेन करके है और नीतल बेन लोगों ने हम लोगों को समझाया कि आप ऐसे सब प्रोडक्ट, हमारे यहाँ पे मेन रागी है सर, हमारे यहाँ पे रागी होती है, तो ये रागी की प्रोडक्ट कैसे बनाए, उसमें से कैल्शियम कैसे मिलता है, सब यो सब हमको समझाया और उसके बाद हम लोगों ने ये सब बनाना चालू किया। हम लोग खाली समय में 10 बहने मिलके ये सब काम करते हैं। मेरा ग्रुप का नाम है क्रिमिसा सखी मंडल। हम लोग 10 मेंबर है। 10 मेंबर मिलके हम लोग सब ये प्रोडक्ट सब बनाते हैं, जिसमें नागली की बिस्किट है, ये सब नागली का पापड़ है, सब ये चकरी है और ये गेहूं की कुड़ई है और ये साबुदाना है और उसकी चकरी है और ये नागली का बड़ा पापड़ है और ये सब चावल है, आटा है, ये सब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सब है। हम लोग ये खेडू से लेके आते हैं और साफ सफाई करके हम लोग मेले में सब बेचने के लिए जाते हैं।
1: सुनीता के सफर में उनकी बेटी भी सहयोग कर रही है, हालांकि वो समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास कर रही है, इसलिए उत्पादों को ऑनलाइन बिक्री करने के क्षेत्र में जानकारी ले रही है।
3: मैं एग्रीकल्चर में डिप्लोमा के मार्केटिंग सीखने वाली हूँ और उससे ही मैं अपनी मम्मी के साथ इस क्रिमिसा सखी मंडल में भी हूँ, उनकी हेल्प भी करती हूँ और साथ ही मैं मतलब मम्मी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मार्केटिंग सीखने को मिलती है, इसीलिए मुझे उस पर मतलब ज़्यादा ए और वो मैं वही सीखना चाहती हूँ एग्रीकल्चर में जाके। हम यूथ से ये कहेंगे कि आप पढ़ाई के साथ साथ ये सारे काम भी कर सकते हो और एग्रीकल्चर में बहुत सारे स्कोप है, जैसे मतलब बहुत सारे स्कोप है, उससे आप अपने खुद का भी कुछ कर सकते हो उसमें पढ़ाई करके, और पढ़ाई के साथ साथ आप अपना ये दूसरा काम भी कर सकते हो जिससे आपको इनकम भी मिलेगी और आपके पढ़ाई में भी आपको वो काम आएगी। तो हम वघई ट्राइबल्स में है जहाँ पर ज़्यादातर महिलाएं काम नहीं करती है और फिर ये सब शुरू किया, मतलब एक यूथ शुरू किया कि उसमें महिलाएं सब काम करें और उससे वो अपने घर से बाहर निकल कर काम करती और फिर काम करके वो मतलब आगे भी गई है, अहमदाबाद, सूरत, मुंबई तक गई है वो सब। और हमारी जो पहले की स्थिति थी और उससे हम कहीं बेहतर हो गए हैं और उसमें ही हम धीरे धीरे उन्नति कर रहे हैं।
0: महिलाओं के ऐसे समूहों को केवीके का पूरा पूरा सहयोग मिल रहा है, तभी तो हमारी महिलाएं कृषि और हस्तशिल्प के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और सफलता की ऊंचाइयों को छू रही हैं।
4: नवसारी कृषि यूनिवर्सिटी का ये वघई कैंपस हमारे यूनिवर्सिटी के तीनों मैंडेट्स जो है, टीचिंग, रिसर्च और एक्सटेंशन एजुकेशन, उसमें काम कर रहा है। हमारे पास यहाँ पे कॉलेजेस और केवीकेज में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फार्मर्स के लिए हम चला रहे हैं, उसमें ज़्यादातर मशरूम का हमारे पास बहुत बड़ा यूनिट है, उसमें हम स्पॉन प्रोडक्शन, उनको मशरूम कल्टीवेशन की ट्रेनिंग करवाते हैं। नर्सरी का बहुत बड़ा यूनिट है तो उसमें भी हम नर्सरी की ट्रेनिंग करवाते हैं। वर्मी कंपोस्ट का यूनिट है तो वर्मी कंपोस्ट में भी हम उनको ट्रेनिंग करवाते हैं और उनकी जो स्किल डेवलपमेंट है, और हमारा जो केवीकेज है कृषि विज्ञान केंद्र, वो भी फार्मर्स के साथ मिलके ऐसे शॉर्ट कोर्सेज करके फार्मर्स को हर सब्जेक्ट में, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के रिलेटेड में, हर सब्जेक्ट में स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग करवाते हैं। हमारा एरिया बांबू का है, फॉरेस्ट एरिया है, ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है, तो बाम्बू की भी हम हमारे नवसारी में बाम्बू यूनिट है, उसके माध्यम से उनको यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट और 2 दिन 3 दिन 1 वीक की ट्रेनिंग करवाते हैं। हमारा ये सेंटर इंडिया में भी बेस्ट सेंटर में भी अवार्ड मिला है, स्कॉच अवार्ड भी मिला है, तो काफी काफी प्रचलित और बहुत सारी। और एक हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा ये सेंटर ने एक गिराक नाम की वेराइटी मिलेट की नागली की बनाई है, जो हमारे मोदी साहब ने एफओ को दान की है। तो ये बायो फोर्टिफाइड वेराइटी है, कैल्शियम रिच है, आयरन रिच है, जिंक रिच वेराइटी है। तो यहाँ पे नागली जो है उसमें भी हम बहुत सारा काम कर रहे हैं, बहुत सारे फार्मर्स को डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। स्ट्रॉबेरी पर हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, स्ट्रॉबेरी का भी डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, फार्मर्स से करवा सकते हैं। तो हम पॉकेट ढूंढ ढूंढ के जहाँ जहाँ जो कुछ स्कोप्स है, तो हमारे केवीके के माध्यम से हम उनको उन तक पहुँचते हैं और उनके उनके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम देने की ट्राई करते हैं।
0: तो आज के कार्यक्रम में देखा आपने कि बागवानी और साथ ही साथ प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी सफलता हासिल की जा सकती है। संसाधन भले ही कम हो, लेकिन अगर कड़ी मेहनत की जाए तो इसमें भी सफलता की ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे सफल किसानों से मिलकर आप इनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे और साथ ही हम भी वादा करते हैं कि ऐसे ही प्रेरणादायी किसानों की दास्तानें आप तक पहुंचाते रहेंगे। साथ ही आपको बता दें, अगर आपको हमारा यह कार्यक्रम दोबारा देखना है तो कर सकते हैं आप हमारे YouTube चैनल का, या फिर कोई ऐसी दास्तान आप हमसे साझा करना चाहते हैं तो आप ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं, पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसके साथ आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।

0: डॉक्टर पद्मा ग्योरमेद, एक उपचारक जिसने पुनर्जीवित किया एक खत्म होती विरासत को, हिमालय की खामोशी में 2500 साल पुरानी उपचार परंपरा दम तोड़ रही थी। सोवा रिग्पा, नाड़ी देखकर बीमारी समझना, दुर्लभ जड़ी बूटियों से इलाज करना। डॉक्टर पद्मा ग्योरमेद मानते थे कि कुछ विरासतों को बचाना बेहद जरूरी है। सोवा रिग्पा को बचाने का उनका सफर बड़ी ही कम उम्र में शुरू हुआ। वो अक्सर अपने पिता को दवाइयां बनाते और लोगों का इलाज करते हुए देखा करते थे। उन्होंने सोवा रिग्पा को नहीं चुना, सोवा रिग्पा ने उन्हें चुना। शुरुआत में वो इसे सीखना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके पिता ने उन्हें समझाया। डॉक्टर ग्योरमेद ने अपना जीवन इस चिकित्सा पद्धति को बचाने में समर्पित किया। उन्होंने सोवा रिग्पा पर कई किताबें भी लिखी, लेकिन परंपरा को बचाना आसान नहीं होता।
1: शुरुआत में सिस्टम को दोबारा खड़ा करना बहुत मुश्किल था। अपने ही लोगों को समझाना कि ये भारत की विरासत है, काफी घुटन भरा था। छात्रों के लिए सोवा रिग्पा आखिरी विकल्प होता था। हमारी परंपरा दम तोड़ रही थी।
0: डॉक्टर ग्योरमेद ने कई सोवा रिग्पा चिकित्सकों को एक साथ लाया, अनेक सम्मेलन आयोजित किए और पुराने ग्रंथों को इकट्ठा किया। उनकी पहल पर माननीय प्रधानमंत्री के सहयोग से लेह में राष्ट्रीय सोवा रिग्पा संस्थान की स्थापना हुई। पर संघर्ष यही खत्म नहीं हुआ।
1: 2014 में मुझे भारत में चीनी दूतावास से एक प्रेस रिलीज मिली, जिसमें लिखा था कि वो इस चिकित्सा पद्धति को यूनेस्को में अपनी सांस्कृतिक विरासत के रूप में दर्ज कराएंगे।
0: डॉक्टर ग्योरमेद ने सभी संबंधित दस्तावेज इकट्ठा किए, फाइल बनाई और पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़े। इस लंबे सफर में कई लोगों ने डॉक्टर ग्योरमेद का साथ दिया।
1: मेरे परिवार ने बहुत त्याग किया है। 25 सालों में मैंने शायद ही कभी छुट्टी ली होगी। जब मेरे पिता स्वस्थ थे, वो मुझसे कहते थे, मेडिसिन बुद्धा तुम्हारे साथ है, अगर तुम अच्छा काम कर रहे हो तो एक दिन जरूर सफल होगे।
0: आज एक नई पीढ़ी इस प्राचीन ज्ञान की ओर लौट रही है। डॉक्टर ग्योरमेद की अथक मेहनत से सोवा रिग्पा सिर्फ बचा ही नहीं, उसे मिली एक नई जिंदगी। एक उपचारक के बेटे से भारत में सोवा रिग्पा सूत्रधार तक का सफर वाकई प्रेरणादायक है। डॉक्टर पद्मा ग्योरमेद, पद्मश्री 2026, कोटि कोटि नमस्कार।
2: रीड इंडिया माने रूरल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, ग्रामीण शिक्षा एवं विकास। हमारा काम तो लाइब्रेरीज बनाना है, और आज के समय में जो चर्चा हो रही है, लाइब्रेरीज खाली किताब पढ़ने के लिए नहीं है। लाइब्रेरीज एक ऐसी जगह है जहां हम बहुत कुछ अपने लिए भी कर सकते हैं और समुदाय के लिए भी कर सकते हैं। माने पढ़ें तो हम अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, हम बड़ों को भी पढ़ाएं, हम छोटे बच्चों के साथ भी एक्टिविटीज करें कि किताब क्या चीज है और किताब उनके जीवन में क्या महत्व रखती है। पर ड्यूरिंग द जर्नी इस समय के साथ साथ हमने ये सोचा कि हमें महिलाओं के लिए भी कुछ कार्यक्रम करने चाहिए। अगर महिला अपने आप को निखार सकती है, अपने आप को सक्षम बना सकती है और जिम्मेदारी अपने शोल्डर्स पे ले सकती है कि अपने बच्चों का विकास कैसे करना है, वो भी रीड इंडिया अपने कम्युनिटी लाइब्रेरीज और रिसोर्स सेंटर्स में करती है। हमने औरतों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए, जैसे सिलाई सिखाना, ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग देना और भी बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग्स हैं जो हम अपने सेंटर्स में करते हैं। पर उसका जो आउटकम है, जो हम समझ रहे हैं कि एक महिला इतनी सक्षम हो जाए कि वो अपने परिवार की भी सोच बदल सके, अपनी भी सोच बदल सके और अपने बच्चों को एक मकाम तक लेके जा सके। इसी दौरान हमने पिछले 3 सालों में उनको बहुत सारी ऐसी स्किल्स दी जिससे वो अपना बिजनेस भी शुरू कर सकती हैं, और हम उनको रेगुलरली ट्रेस भी करते हैं, ट्रेस इन द सेंस कि हम उनसे बातचीत भी करते हैं कि वो अपने बिजनेस के बारे में क्या सोच रही हैं, अपना बिजनेस कैसे आगे लेके जा सकती हैं, और इसी दौरान हमने ये सोचा कि हम क्यों इतने बड़े बड़े बीबीए और एमबीए की बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो हम इतने पैसे कहाँ से लाएं कि हम इन महिलाओं को बोलें कि ये कोर्सेज ज्वाइन कर लो। तो रीड इंडिया ने क्या किया, अपने प्रपोजल में ये सारे एपिसोड्स लिख दिए। मैं इनको एपिसोड्स ही कहूंगी, मॉड्यूल्स नहीं कहूंगी, क्योंकि ये एपिसोड्स उनके जीवन में बहुत सा बदलाव ला सकते हैं, उनको एक उद्योग क्या है उसके बारे में ज्ञान दे सकते हैं, और उद्योग करने के लिए उनको क्या क्या सीखना है वो भी ट्रेनिंग्स हम देने के लिए तैयार हैं। और हम महिलाओं को बोलते हैं, यंग लड़कियों को बोलते हैं जो बीए कर चुकी हैं या 12वीं पास कर चुकी हैं, वो अपना नाम आके रीड इंडिया की लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर में लिखवाएं, और हम बिल्कुल तैयार हैं उनको इनके ऊपर ट्रेनिंग देने के लिए। और आगे आने वाले समय में अगर नौकरी नहीं भी मिलती है, तो अगर वो अपना एक लघु उद्योग शुरू कर लेती है और अपने परिवार की देखभाल अच्छे ढंग से कर लेती है और अपने हस्बैंड के साथ, अपने परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के अपने परिवार को आगे लेके जाती है, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकती है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज उनकी जिंदगी में क्या हो सकती है। तो श्रोताओं, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आप रीड इंडिया के मिशन को समझें, रीड इंडिया की लाइब्रेरी के बारे में जानें, और जितना भी आप अपने आप को सक्षम कर सकते हैं, रीड इंडिया के सेंटर पे आके अपना नाम लिखवाएं। धन्यवाद।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
1: मेरा नाम प्रियंका है, मैं शाबान मोहम्मदपुर में रहती हूँ। मेरा जन्म यहीं हुआ है। हम परिवार में 5 सदस्य हैं, मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा और 3 बहन भाई। मेरा भाई 9th क्लास में है, बहन मेरी जॉब करती है, पापा टूरिज्म में है और मम्मी ने यहाँ से रीड इंडिया सेंटर से नर्सिंग का कोर्स किया था। आज वो जॉब कर रही हैं हॉस्पिटल में। मैंने 5 साल पहले रीड इंडिया सेंटर से कंप्यूटर कोर्स किया था, उसके बाद मैंने एनटीटी किया और आज मैं एज अ लाइब्रेरियन रीड इंडिया सेंटर में जॉब कर रही हूँ। मेरा जो एम था वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होना था। अब मैं रीड इंडिया सेंटर की मदद से यहाँ से कोर्स करने के बाद मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गई हूँ। मुझे रीड इंडिया सेंटर के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ काम करने के साथ साथ मैं अपने घर पे भी बहुत सारे काम करती हूँ। जैसे मैं अपनी जिम्मेवारी घर पे निभाती हूँ, वैसे ही मैं अपनी जिम्मेवारी यहाँ रीड इंडिया सेंटर के साथ निभाती हूँ। अपनी ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से, पूर्ण तरीके से करती हूँ। मेरे परिवार में सभी वर्किंग है, तो छोटे भाई की जिम्मेवारी सारी मेरे ऊपर है, तो मैं अपनी जिम्मेवारी अच्छे से निभाती हूँ। मैं उसको स्कूल छोड़ के आती हूँ, स्कूल से लेके आती हूँ। उसके अलावा मैं उसकी स्टडी में हेल्प करती हूँ, उसको अच्छी अच्छी बातें सिखाती हूँ और उसके अलावा उसकी सारी जिम्मेवारियां मैं निभाती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। उसके अलावा मैं अपने पेरेंट्स का भी बहुत ध्यान रखती हूँ, उनकी केयर करती हूँ, उनके काम भी करती हूँ।
2: हेलो, मेरा नाम निशा सैनी है। मैं जब छोटी थी, 10 साल की थी और 6th क्लास में थी, तो मैं शुरू से ही यहीं पे आना शुरू किया है। और एनजीओ के लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, शुरू से पसंद रहा है मेरे लिए, अच्छा लगता है मुझे। हाँ, मैं ना पिछले 7 साल से आती रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और मैं अपने करियर में बहुत कुछ करना चाहती हूँ, मतलब एनजीओ में बहुत सारे कोर्सेस हैं, मैं कर लूँगी, अगर कर सकी तो कर लूँगी, अगर जो मुझे इंटरेस्ट रहा जिस चीज़ में, मैं वो करूँगी और एनजीओ में आऊँगी। शुरू से आती रहूँगी। यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, लाइब्रेरी में बुक्स वगैरह है, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, मैंने पढ़ा भी है, लेके भी गई हूँ घर, बहुत अच्छी बुक्स हैं और टीचर्स भी अच्छे हैं, यहाँ के मैम सब अच्छे हैं। अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती हूँ। अब जो बॉयज़ होते हैं ना, पेरेंट्स ना सिर्फ बॉयज़ की मानते हैं, आजकल के ना बॉयज़ की बहुत डिमांड वगैरह, और गर्ल्स से जो कुछ कर दे, जैसे बॉयज़ के तरह जॉब करना चाहती हैं या कुछ आगे बढ़ना चाहती हैं, तो उनके पेरेंट्स पता नहीं क्यों पीछे रोकते हैं, क्यों मना करना चाहते हैं। आखिर लड़की भी तो है, करके दिखा सकती है वो लड़की, जो लड़के काम कर सकते हैं ना वो करके दिखा सकते हैं। लड़की को सब लोग कमज़ोर पता नहीं क्यों समझते हैं, आज के देश में नहीं समझना चाहिए। और वो लड़की ताकतवर होती है, वो अच्छी भी होती हैं और वो समझ सकती हैं, वो पेरेंट्स को खुद अच्छे से कमा के खिला सकती है, जितने बॉयज़ कमा के नहीं खिला सकते। और बॉयज़ है ना बहुत मतलबी होते हैं, बड़े होते होते ना अपने पेरेंट्स को उल्टा सीधा बोलते हैं और घर से बाहर निकाल देते हैं। मुझे बॉयज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए बॉयज़ है ना पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना नहीं जानते और ना ही गर्ल्स को रिस्पेक्ट करना जानते। जो अच्छे से बात करते हैं पता नहीं कैसी नज़रों से देखते हैं, बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे को। वो बॉयज़ है ना बहुत गंदे होते हैं, बॉयज़ की तरफ तो बहुत ही कमी, जितना होता है उतना ही तक बात रखें, फ्रेंड है तो फ्रेंड ही तक रहे, उससे आगे बढ़ने की कोशिश बिल्कुल ना करें। बॉयज़ से ना एकदम जैसे आगे आगे अपना करियर करते हैं वैसे वैसे ना लोग नए नए मिलते हैं और पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि उन्होंने पाल पोस के इतना बड़ा किया, खिलाया पिलाया। शादी हो जाती है तो उसके बाद अपनी वाइफ की ही सुनते हैं, पता नहीं क्यों सुनते हैं। मेरा मानना है कि जो हमें पढ़ाया लिखाया हमारे पेरेंट्स ही है, जो कुछ है उनकी रिस्पेक्ट करें और उनकी अच्छे से देखभाल करें, जैसे हमें बचपन से पेरेंट्स ने रखा हम उनकी तरह बड़े होके अच्छे से रखें। मैं एक महिला और लड़की के ऊपर एक कविता है मैं सुनाने जा रही हूँ। मैं चाहती थी कि जींस पहनूँ, मैं चाहती थी कि मैं जो सूट पहनूँ, मैं चाहती थी कि मैं सब सारी ज़िंदगी जीऊँ, पर पेरेंट्स ने मेरे को ये सब करने नहीं दिया। जो बॉयस होते हैं उन सबको आज़ादी दी। शादी होने के बाद ससुराल में गई, शादी होने के बाद मैं ससुराल में गई, सास ने बोला ये करो वो करो, लेकिन कुछ भी करने ना दिया। जो कुछ था सब उसके नाम का था, सिंदूर उसके नाम का, चूड़ी उसके नाम की, पायल उसके नाम का, साड़ी उसके नाम की, बिछिया उसके नाम का, नाम प्लेट भी उसके नाम का, नेम भी उसके नाम का, आखिर मेरा क्या है मेरे नाम का। थैंक यू।

नमस्कार बहनों, मैं दिनेश मिगलानी आपका रीड इंडिया की कार्यशाला में स्वागत करता हूं। यह कार्यशाला रीड इंडिया के द्वारा आयोजित की गई है। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य व्यापार कैसे किया जाए, स्वरोजगार पैदा करना एवं आपको आत्मनिर्भर बनाना है। इस कार्यशाला को हमने तीन भागों में बांटा है। पहले भाग के अंदर हम यह सीखेंगे कि व्यापार क्या होता है, उद्यमी कैसे बना जाता है, इसके अलावा एक सफल उद्यमी या सफल व्यापारी में क्या क्या गुण होते हैं, तथा एक व्यापार करते समय या आप जब अपना कार्य करते हैं उसको करते समय किन किन कार्य को आपने करना है। इसके अलावा हम यह भी सीखेंगे आत्मनिर्भरता का हमारे जीवन में, हमारे परिवार में क्या महत्व है। कार्यशाला के दूसरे भाग के अंदर हम यह सीखेंगे कि व्यापार की शुरुआत कैसे की जाती है और शुरुआत से लेकर व्यापार को खड़ा करने में हम कैसे छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें ताकि हम एक सफल व्यापार की तरफ अग्रसर हो सकें। कार्यशाला के तीसरे भाग के अंदर जो व्यापार हमने स्थापित किया है उसकी वृद्धि कैसे की जा सके एवं उस व्यापार के आंतरिक चीजों को में क्या क्या आपने ध्यान रखना है, कैसे अपने व्यापार के अकाउंट्स या लेखा बनाने हैं, किन किन चीजों को आपने संभाल के रखना है ताकि भविष्य में अगर आप किसी बैंक के पास जाएं तो कैसे उस व्यापार की वृद्धि की जा सके। तो बहनों चलो हम स्टार्ट करते हैं, हम शुरुआत करते हैं हमारे कार्यशाला के पहले भाग से जिसका मुख्य उद्देश्य यह समझना है व्यापार क्या है। मैंने बोर्ड पे एक छोटा सा चार्ट भी बनाया है आपको समझाने के लिए। तो पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन देता हूं व्यापार क्या है। बहनों आप देखते हैं आपके आसपास में कुछ लोग बैंक में नौकरी करते हैं, कुछ शिक्षक ऐसे होंगे जो किसी स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, इसके अलावा कोई किसी कारखाने में कार्य करता है। तो यह नौकरी करना जीविका कमाने का एक साधन है। तो इस तरह के जीविका कमाने को हम कहते हैं कि नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोग आपके आसपास ऐसे भी होंगे जो एक छोटी मोटी दुकान चलाते हैं या किसी ने कोई कारखाना खोला हुआ है। तो जीविका कमाने के इस साधन को हम कहते हैं स्वरोजगार या व्यापार। ये तो हम जानते हैं कि जीवन जीने के लिए पैसा बहुत जरूरी है और पैसे से ज्यादा जरूरी है हमारा आत्मनिर्भर होना। यदि आप आत्मनिर्भर हैं तो हमारे अंदर एक अलग सा विश्वास होता है। एक सफल गृहिणी या एक महिला जो आत्मनिर्भर है वह उस आत्मनिर्भरता से पूरे परिवार का पालन पोषण कर लेती है। आज के समय में सरकारी नौकरियां काफी कम हैं और हमारी बहनें जो गांव में रहती हैं कम पढ़ी लिखी हैं। यदि आप शहर में रहते हैं तो छोटी मोटी नौकरी या जीविका का कोई साधन आसानी से बनाया जा सकता है, पर गांव में रहने के कारण छोटी मोटी नौकरी भी नहीं मिल पाती। तो हमारी बहनों के पास में अपना कार्य शुरू करने के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाता, क्योंकि गांव में आप देखेंगे काम भी नहीं मिलता आजकल। क्यों? क्योंकि गांव में कोई रोजगार का साधन तो है नहीं, तो इसके लिए हमें छोटा मोटा कार्य तो करना पड़ेगा और वो जो कार्य है वो एक तरह से हमें व्यापार करने या उद्यमी बनने की तरफ अग्रसर करता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे मन में पहली चीज अब ये आती है कि ये तो हमें समझ में आ गया कि हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा आत्मनिर्भर होने के लिए। अब वो करना जो है वो कोई ना कोई आपको व्यापार करना है या कोई ना कोई आपको आत्मनिर्भर होने के लिए स्वरोजगार शुरुआत करनी है। तो स्वरोजगार की आप जो शुरुआत करेंगे, शुरुआत करते समय सबसे पहले हम यह समझें कि जो एक सफल उद्यमी है, जो एक सफल व्यापारी है, उसमें क्या क्या ऐसे गुण होते हैं जिसके कारण वह एक व्यापारी बन पाया या एक उद्यमी बन पाया, ठीक है। तो मैंने एक पहला चार्ट बनाया यहाँ पर आपको ये समझाने के लिए कि एक सफल उद्यमी में क्या क्या गुण होते हैं। सबसे पहला जो गुण है, सबसे पहली जो चीज है जो हमारी बहनों में भी है, वो होती है पहल।
पहल से हमारा क्या मतलब है, जैसे ही हमारे आसपास आप देखते हो रोजाना हमारे मन में कई तरह के नए नए विचार आते हैं, ठीक है। वो विचार आने के बाद हम उनके बारे में थोड़ा सोचते हैं और फिर हिचक के उनको कार्यान्वित नहीं करते, ठीक है। अब एक जो सफल व्यापारी है, अगर उसके सामने कोई विचार आता है तो विचार आने के बाद वह उसके बारे में चीजों को समझता है और समझने के बाद वह ये देखता है कि यदि उससे कोई बिजनेस बनाया जा सकता है, कोई व्यापार किया जा सकता है, तो वह उसके तरफ अग्रसर हो जाता है। तो सबसे पहली चीज होती है पहल। तो हमारी बहनें जो अब यहां बैठी हैं, अगर आपके मन में कोई भी विचार है, कुछ बहनों को ऐसा लगता होगा कि वो अचार बहुत अच्छा बनाती हैं, या पापड़ बहुत अच्छे बनाती हैं, ठीक है, या चटनी अच्छी बनाती हैं, इसके अलावा हमारी बहनों के पास में सिलाई कढ़ाई बुनाई या गांव के अंदर मिट्टी के बर्तन या हम कहें मिट्टी के खिलौने या आजकल साज सज्जा की जो चीजें हैं जो गांव की महिलाओं को बचपन से सिखाई जाती हैं, जो उनको आती हैं, तो इस तरह का अगर आपको लगता है कि आपके मन में कोई ऐसा विचार है जहां आपको ये लगता है कि उसमें आप काफी अच्छे हैं, तो पहल अगर आप करेंगे तो एक सफल व्यापारी की तरफ यह आपका पहला स्टेप होगा, ठीक है। एक सफल उद्यमी का दूसरा जो सबसे गुण होता है वह होता है जोखिम उठाने की इच्छा शक्ति। अब देखो, आप कोई भी व्यापार करते हैं, सबकी इच्छा यह होती है कि व्यापार आपका सफल हो, पर ऐसा होता नहीं है, हर व्यापार सफल नहीं होता। फिर भी हमारे अंदर जोखिम उठाने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। यदि हम जोखिम ही नहीं उठाएंगे, यदि हम किसी भी कार्य में जोखिम नहीं उठाएंगे, तो वह कार्य कभी भी सफल नहीं हो सकता। तो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वह है हमारा जोखिम उठाना, क्योंकि जोखिम उठाने से ही कार्य होगा। फिर होता है अपने अनुभव से सीखना। व्यापार करते समय, कोई भी कार्य करते समय गलतियां तो होती हैं, ठीक है। अगर उन गलतियों से हम नहीं सीखेंगे तो हमें ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ज्यादा नुकसान जो होगा उसको हम सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी जोखिम उठाने की शक्ति काफी कम है। तो इसलिए हमें अपने अनुभव से सीखना चाहिए। एक बार गलती हो जाए कोई बात नहीं, पर यदि दोबारा वह गलती फिर से होगी तो यह हमारी बहुत भारी गलती होगी। फिर प्रेरणा, हमारे अंदर एक प्रेरणा होनी चाहिए, हमें प्रेरित होना चाहिए। मान लीजिए हम बहनों के बीच में कोई एक बहन ऐसी है जो कुछ कार्य करती है, कार्य करना मतलब वो आत्मनिर्भर है, कुछ ऐसा कार्य करती है जिससे धन कमाया जाता है, पैसा कमाया जाता है, तो हमें उससे प्रेरित होना चाहिए। अगर आप उससे प्रेरित होंगे तभी आपके मन में यह इच्छा जागेगी कि मुझे भी उस बहन की तरह आत्मनिर्भर होना है। इसके अलावा आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, आपको अपने पर विश्वास होना चाहिए। जीवन में वही सफल होता है जो अपने पर विश्वास करता है। यदि आप अपने पर विश्वास ही नहीं करेंगे तो आप सोच के देखिए दूसरा कोई व्यक्ति आप पर क्यों विश्वास करेगा, इसके पीछे कोई भी कारण नहीं है। तो आप अपने पर विश्वास पैदा कीजिए। आपको यह समझना चाहिए कि आप यह कार्य कर सकती हैं। व्यापार करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक महिला जो सुबह से लेकर शाम तक अपने पूरे घर को संभाल सकती है, अपने बच्चों को पाल सकती है, खाना बना, आप देखो, आप कार्य देखिए, एक महिला की सुबह से आप दिनचर्या की शुरुआत करें आखिर तक शाम तक देखें, तो एक महिला इतना कार्य करती है कि अगर उसी कार्य को व्यापार के रूप में रूपांतरित कर दिया जाए तो एक बहुत अच्छा आत्मनिर्भरता होने का जरिया बन सकता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट है, सबसे जो महत्वपूर्ण है, वह होता है निर्णय लेने की योग्यता, ठीक है, या निर्णय लेने की क्षमता। आप देखेंगे आपके जीवन में या कोई भी कार्य करते समय काफी बार ऐसे मौके आते हैं जहां आपको कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ता है। यदि आप उस निर्णय लेने की में क्षमता रखते हैं,
तो निर्णय लिया, आपका निर्णय गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। देखो धरती पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि जिसके सभी निर्णय सही होंगे, निर्णय हमारे गलत भी हो सकते हैं, निर्णय हमारे सही भी हो सकते हैं, बट हमें निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, हमें निर्णय लेने का आत्मविश्वास होना चाहिए। तो एक सफल जो व्यवसायी है उसमें यह गुण तो सबसे पहले है, और मेरे हिसाब से हमारी बहनें जो यहाँ बैठी हैं, इन सब बहनों में ये सब बातें हैं, इन सब बहनों में ये सब बातें हैं, बट उन्हें उनको बस अपने अंदर झांकना है, उनको अपने अंदर से प्रेरणा लेके आनी है, उनको यह करना है कि हमें भी कुछ करना है, हमें भी आत्मनिर्भर होना है, हमें भी स्वरोजगार पैदा करना है जिससे हम अपने परिवार का अच्छे ढंग से भरण पोषण कर सके, अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा सके, ताकि उन बच्चों को भविष्य में इस तरह की मुसीबतों का सामना न करना पड़े जो शायद आज हमारी बहनें गांव में रहकर कर रही हैं। इसके बाद दूसरा जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट, गांव में रहकर कर रही हैं। इसके बाद दूसरा जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि अगर आप एक उद्यम शुरुआत करना जा रहे हैं तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि उसकी शुरुआत के बाद आपको किन किन कार्यों को करना पड़ेगा। ठीक है, तो जिन कार्यों को आपने करना पड़ता है मैंने चरणबद्ध उन कार्यों को लिखा है ताकि आप यह समझ सके कि आप अगर एक बिजनेस या कोई भी व्यापार या कोई भी स्वरोजगार की शुरुआत करते हैं तो यह कार्य आपको जरूर करने होंगे। सबसे पहला जो

0: सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वह होता है अवसर की पहचान करना। ठीक है, हमारे जीवन में अवसर आते जाते रहते हैं। आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, घूमते घूमते आपने देखा कि फला जगह पर काफी लोग आते हैं, वहां खाने पीने का कोई भी सामान नहीं है। ठीक है, अगर आपने यह सोच लिया क्यों ना मैं हर रोज दोपहर के वक्त वहां जाकर कुछ खाने का सामान बनाकर, जो घर में बनाया जा सकता है, ऐसा सामान जिसको आसानी से बनाया जा सकता है और वह खाने लायक है और आसानी से लोग खाते हैं, अगर आप वहां जाकर बेचना शुरू कर दें, हो सकता है शुरुआत में लोग ज्यादा ना खरीदे, पर अगर वह सामान आपका बिकने लग जाए तो यह अवसर होता है। इसे हम अवसर कहते हैं। अवसर कहीं भी आपको मिल सकता है। अवसर को पहचानने वाली आंखें होनी चाहिए। हर जगह पर अवसर है। ठीक है, तो सबसे पहला जो उद्यमी का कार्य है, जो आपके लिए भी है, आपके लिए पहला कार्य यह है कि आप उस अवसर की पहचान करिए। आप यह देखो कि ऐसी क्या चीज आपके पास में है, ऐसा क्या मौका आपके पास में है। यदि आप उसे उस मौके को फायदा उठा पाए, उस मौके को व्यापार में बदल पाए, तो सबसे पहला काम है हमारा है अवसर को पहचान। अवसर को पहचानने के बाद विचारों को कार्यान्वित करना। कई बार क्या होता है कि मैंने पहले भी आपको बोला कि आपको पहल करनी है, अवसर तो मिल गया, आपको लग गया हाँ भी ये कार्य किया जा सकता है। अब उस कार्य को करने के बाद आपको यह देखना है कि उस विचार जो आपके मन में आया है उसको कैसे एक व्यापार के फॉर्म में लाया जाए, कैसे उसको जमीनी स्तर पर आप उस पर कार्य करिए। तो यह एक उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है वह होता है अपने विचारों को जमीनी स्तर पर लाकर कार्यान्वित करना, ताकि कुछ शुरुआत की जा सके। इसलिए मैंने यहां सबसे पहले ही आपको बताया पहल सबसे इम्पोर्टेंट है। पहल आपकी सबसे इम्पोर्टेंट है, और पहल विचारों को कार्यान्वित करना तभी हो पाएगा जब हमारे अंदर कुछ करने की इच्छा होगी। फिर संसाधनों को उपलब्ध कराना। जब आपके मन में यह बात बिल्कुल बैठ जाए कि अब तो मुझे कुछ कार्य करना है, आपने यह फाइनल कर लिया, यह आपने निश्चित कर लिया कि यह कार्य आप करेंगे, इस तरह का व्यापार आप शुरुआत करेंगे, तो फिर आप ये देखेंगे उसको करने के लिए किन किन संसाधन आपको चाहिए, क्या क्या संसाधन आपको चाहिए। तो एक व्यापारी को इन सभी संसाधनों को इकट्ठा करना और उन संसाधनों को उपलब्ध कराना उसका कार्य होता है। जैसे मान लीजिए मैं खाने की बात, अब मैं देखो अगले भाग के अंदर मैं अलग अलग एक एक उस पे आऊंगा, अभी मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। मान लीजिए कहीं हमने खाने का छोटा मोटा सामान बेचना शुरुआत किया, तो खाने को बनाने से लेकर उसकी पैकेजिंग तक, हर तरह का संसाधन आपने जुटाना है। और क्योंकि हमारे पास में पैसा भी कम है, जोखिम उठाने की क्षमता कम है, तो इसलिए हमें यह सोचना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि कैसे कम से कम पैसे से हम अपनी शुरुआत कर सकें। स्थापना करना, व्यापार को स्थापित करिए, शुरुआत करिए, उसके बाद प्रबंधन करना, ये सब एक व्यापारी का कार्य है। शुरुआत हो जाती है कई बार, शुरुआत में हमें रेस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता, बट धीरे धीरे अगर हम डटे रहेंगे, अगर हमारी पहल ठीक थी, अगर हमारा अवसर ठीक था, तो उसमें वृद्धि भी होगी और उसमें फायदा भी होगा। आप देखेंगे जीवन में कभी भी ऐसा, कई बार ऐसा मौका आ जाता है हमें यह लगता है कि अब यह कार्य करना हमारे बस की बात नहीं है। अगर हम कुछ समय और कार्य करते रहे तो वह कार्य सफल हो जाता है। वही चीज व्यापार में होती है। ठीक है, तो यह सब चीजें हमें अपने दिमाग में बिठाकर फिर हम सोचेंगे कि क्या हमारी बहनें व्यापार करने के लिए उनमें इच्छा शक्ति है या नहीं है। अगर नहीं है तो प्रेरित होके वो अपने अंदर इच्छा शक्ति लेके आए, आत्मविश्वास पैदा करें, और उनके साथ साथ इन बातों का भी ध्यान रखें कि ये कार्य उन्हें करने पड़ेंगे। अंत में इस कार्यशाला के अंतिम भाग में मैं यह जरूर बात करूंगा कि आपको स्वरोजगार के फायदे क्या है, व्यापार का आपके जीवन में क्या फायदा है। ठीक है, देखो व्यापार का हमारे जीवन में सबसे पहला सबसे मुख्य फायदा जो होता है वह होता है आत्मनिर्भर होना। हम अपने जीवन में जब तक आत्मनिर्भर नहीं होंगे, जब तक हम दूसरों पर आधारित रहेंगे, तब तक हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता, हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा नहीं होता, और आत्मनिर्भर होने के बाद हम अपने परिवार का भरण पोषण बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आत्मनिर्भरता के साथ साथ जो आत्मविश्वास हमारी बहनों में आएगा और उसके साथ जो उनके परिवार की तरक्की होगी, क्योंकि परिवार की तरक्की होगी तभी देश की तरक्की होगी। अगर परिवार ही हमारा उन्नति नहीं करेगा तो देश उन्नति नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से दो चीजों में फायदा होता है, एक तो हमारी परिवार उन्नति करता है और परिवार के साथ साथ देश भी उन्नति करता है, परिवार आगे बढ़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, हमारी एक विशिष्ट पहचान बनती है। अब हमारी जो बहनें बैठी हैं, मैं कहना चाहूंगा कि इसमें कुछ बहनें ऐसी होंगी जो आत्मनिर्भर है, जो कुछ ना कुछ कार्य करती है और उस कार्य करने से धन कई अर्जन होता है उन्हें, तो वो जो उनकी एक विशिष्ट पहचान बन जाती है समाज में, उनकी एक विशिष्ट पहचान होती है। तो जो विशिष्टता आपके अंदर आएगी, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपका परिवार और देश उन्नति करेगा। तो अंत में कार्यशाला के पहले भाग के अंदर मैं यह आपको फिर से कहना चाहता हूं कि हमारी बहनें जो घर में रहती हैं, वो कृपया करके अपने मन में यह जरूर लेके आए। देखो, सबसे पहली चीज आपकी इच्छा शक्ति है। जब तक आपके मन में इच्छा शक्ति नहीं होगी, तब तक आप कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। तो पहले हमें अपने मन में इच्छा शक्ति जागृत करनी पड़ेगी, आत्मविश्वास अपने अंदर लेके आना पड़ेगा। उसके बाद ही हम यह सोचेंगे कि किस तरह का व्यापार हमें करना है, कितना जोखिम हम उठा सकते हैं और उस व्यापार को करने के लिए संसाधनों को कहां से एकत्रित करेंगे। रीड इंडिया हमारी बहनों को काफी सपोर्ट करती है, सहायता भी करती है। तो इस कार्यशाला के माध्यम से हमने व्यापार के बारे में सीखा। कार्यशाला के दूसरे भाग में हम व्यापार की स्थापना से लेकर व्यापार के बाकी भागों के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।
1: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
2: माय नेम इज नौशाबा अंसारी, मैं आगरा से बिलोंग करती हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन 10th है और मैंने हॉस्पिटल में जॉब की है। उसके बाद मेरी पढ़ाई बीच में रुक गई थी, मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी उसकी वजह से मेरी पढ़ाई बीच में रुक गई थी। फिर मैंने जॉब की 2 साल आगरा में ही हॉस्पिटल में। उसके बाद मेरी शादी हो गई थी, मेरा 1.5 साल का बेटा है। उसके बाद मुझे रीड इंडिया के बारे में पता चला, तो यहाँ पर मैंने TG का एंड NTT का कोर्स किया, कर रही हूँ मैं यहाँ से। हाँ, मुझे अच्छा लगता है यहाँ करके, मुझे लगता है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, अपना फ्यूचर बना सकती हूँ, अपने बेटे का भी फ्यूचर बना सकती हूँ। मेरे इन-लॉज भी एग्री हैं, मेरे हस्बैंड भी एग्री हैं यहाँ के लिए। यहाँ पर अभी तक भी कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है NGO के सिवा, और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर और भी खुलने चाहिए ऐसे, जो उससे सभी लेडीज़ को, लड़कियों को बाहर निकलने का मौका मिले, जिनके फादर मदर निकलने नहीं देते घर से। यहाँ अच्छा लगता है, टीचर्स भी अच्छे हैं यहाँ के सारे।
3: हेलो, मेरा नाम दीपा है, मेरी उम्र 23 साल है और मैं मैरिड हूँ। मेरा एक बेटा है और मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। मैं 12th तक की पढ़ाई की है, उसके बाद मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर के फॉर्म भी भरे थे, पर मैं 6 महीने का ही कोर्स कर पाई कि बीच में मेरी शादी आ गई, जिसके कारण मैं आगे की पढ़ाई अपनी पूरी नहीं कर पाई। शादी के 1.5 साल बाद मेरा बेटा हुआ। जैसे बेटे होने के बाद तो जैसे मैं डिप्रेशन में रहने लगी। उसके बाद मुझे रीड इंडिया के बारे में पता चला, तो मैंने अपने इन लॉज को कन्वेंस करने की कोशिश की, पर राजी नहीं हो पा रहे थे। लेकिन काफी समझाने के बाद उन्होंने मुझे परमिशन दे दी। उन्होंने तो परमिशन दे दी, उसके बाद मुझे अपने हस्बैंड को मनाने में भी काफी कोशिश करनी पड़ी, क्योंकि मेरा बेटा अभी 1.5 साल का ही हुआ था। लेकिन धीरे धीरे वो भी मान गए। उसके बाद मैं यहाँ आई तो मैंने NTT का कोर्स किया, उसके साथ साथ ही मुझे वहाँ पे सर्वे करने आए तो मुझे यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स के बारे में भी पता चला। फिर मैंने यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स में भी एडमिशन ले लिया, कंप्यूटर का कोर्स भी किया। उससे मुझे बहुत अच्छा फील होने लगा। उसके रीड इंडिया आकर मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा, मुझे काफ़ी कम महसूस होता था और मैं अपने आप को काफ़ी आज़ाद महसूस करती थी। मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था। मैं शादी के बाद और बच्चों के बाद काफ़ी डिप्रेशन में चली गई थी, उसमें भी मुझे काफ़ी ये लगा कि मेरा डिप्रेशन दूर हो रहा है, खुल के सांस ले पा रही थी मैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने सारे काम अपने आप से खुद कर सकती हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ और मैं अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर दे सकती हूँ, मैं अपने आप को अच्छा फ्यूचर दे सकती हूँ, मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है। मुझे कंप्यूटर सीखने के बाद तो मुझे काफ़ी कुछ ऐसा लगता है कि हाँ भाई मैं कुछ कर रही हूँ, मेरे काफ़ी काम बहुत ही आसानी से हो जाते हैं, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग या फिर बिल पे करना, टिकट करना और भी काफ़ी बैंक में के काम सभी घर पे हो जाते हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है खुद से अपना काम करके, या फिर भाई पहले बहुत बहुत देर तक धूप में लाइन में जाना पड़ता था, अब मैं घर बैठे ही अपना सब कुछ कर सकती हूँ। थैंक यू रीड इंडिया।
4: मेरा नाम रिया है, मैं 10th में स्टडी करती हूँ और मेरी क्लास बीच में अभी कुछ दिनों से बंद हो गई थी, क्लास आना बंद हो गया था मेरा और मेरे घर वाले एग्री नहीं थे, लेकिन मैम ने कॉल करके समझाया, फिर मेरे घर वाले एग्री हुए, मेरे को भेजा। मैम भी बहुत अच्छी है यहाँ की, और जो भी कोर्स आता है, मैं पहले टीचर ट्रेनिंग भी कर रही थी, फिर उसके बाद अब मैंने कंप्यूटर क्लास ज्वाइन किया है। ये महसूस किया मैंने कि हाँ, जो मैं चाहती हूँ फ्यूचर में बनना, अपने करियर में कुछ करना, उससे ये हुआ है कि हाँ मैं बिल्कुल, मेरे को वो हो गया है, घर वालों का सपोर्ट हो गया है, टीचर्स ने समझाया था, कॉल की थी कि हाँ ये कर सकती है कुछ।
5: परिवर्तन की शांत लहर, श्री मोहन नागर, पद्मश्री 2026। कुछ लोग बदलाव की बातें करते हैं और कुछ लोग बदलाव लाते हैं। मध्य प्रदेश के श्री मोहन नागर जी को प्रकृति और पानी से प्रेम संस्कार में मिले थे।
6: हमने अपने काम की शुरुआत शिक्षा के माध्यम से की, भारत भारती के माध्यम से 500 गांवों में एकल विद्यालय प्रारंभ किया।
5: पर असल समस्या और थी।
7: जमीन बेकार हो गई थी, खेती बंद हो गई, लोग गांव छोड़ रहे थे।
6: पदयात्रा के समय अध्ययन किया तो ध्यान में आया कि दिवाली के समय पानी की बहुत समस्या हो जाती है और लोग पलायन कर जाते हैं। पर्याप्त बारिश होने के बाद भी कुएं, बावड़ी, तालाब और स्टॉप डैम की कमी के कारण अधिकांश पानी बह जाता था।
5: श्री मोहन नागर जी ने नदी नालों में बहते पानी को रोकने का एक अनोखा रास्ता निकाला।
6: हमने सीमेंट की खाली बोरियों में रेत भर के नदी नालों में बोरी बंधान बनाए, जिसके कारण पानी की समस्या कम हुई और पलायन बंद हुआ।
5: इसके बाद बारी थी जमीन के जलस्तर को बढ़ाने की।
6: हमने गंगा अवतरण अभियान के माध्यम से जन भागीदारी से सोना घाटी की पहाड़ी पर 8,000 कंटू टेंच बनाए और 32,000 पौधे लगा करके ताप्ती उपन उगाए, जिसके कारण उस क्षेत्र का भूजल स्तर बढ़ गया। लैंड माफिया, रेत माफिया, इसका हमको विरोध का सामना करना पड़ा। हमने अपने काम को नहीं रोका, हमने लोगों का विश्वास जीता और धीरे धीरे जो हमारे विरोधी थे वो भी हमारे सहयोगी बन गए।
5: प्रकृति और पानी बचा के मोहन जी ने वर्तमान बचाया और अब उनका लक्ष्य था एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करना।
6: भारत भारती विद्यालय के माध्यम से हम बच्चों को शिक्षा देकर आने वाले कल के लिए एक संस्कारी, प्रतिभाशाली और उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता वाले युवा तैयार करते हैं। हमने बाचा गांव को ग्रामवासियों के सहयोग से एक आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया है। बाचा गांव शांति, प्रगति और समृद्धि का प्रतीक बन गया है।
5: लेकिन अनगिनत बदलाव लाने वाले श्री मोहन नागर जी की एक चीज कभी नहीं बदली, उनके परिवार का अटूट भरोसा। मोहन जी को कई सम्मान मिले, पर उनका असली सम्मान तो भरे हुए तालाब, लहराते पहाड़ और मुस्कुराते चेहरे हैं।

लीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो लीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

नमस्कार बहनों, मैं रीड इंडिया द्वारा आयोजित वर्कशॉप के दूसरे भाग में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम दिनेश मिगलानी है। इस वर्कशॉप के पहले भाग में हमने यह सीखा था कि हमारे जीवन में आत्मनिर्भरता की क्या उपयोगिता है, कैसे हमारी जो महिलाएं हैं, हमारे जो घर की बहनें हैं, कैसे वो आत्मनिर्भर होकर अपना एवं अपने परिवार को आगे बढ़ा सकती हैं एवं देश की उन्नति में अपना योगदान प्रदान कर सकती हैं। पहले भाग में हमने यह भी सीखा था कि व्यापार करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके अलावा व्यापार यदि आप करते हैं तो उसमें क्या क्या कार्य आपको करने पड़ सकते हैं। यह हमारा भाग दो है वर्कशॉप का। इस भाग दो के अंदर हमारा जो मेन प्वाइंट है सीखने का, वह यह है कि व्यापार की शुरुआत कैसे की जाए। व्यापार की शुरुआत कैसे की जाए। व्यापार जो होता है, व्यापार करने के लिए हमारी एक व्यापारिक मानसिकता होनी चाहिए, ठीक है। व्यापारिक मानसिकता क्या होती है? व्यापारिक मानसिकता होती है कि अपनी आर्थिक स्वतंत्रता के लिए, अपने आप को आर्थिक रूप से आजाद करने के लिए हम जोखिम उठाते हैं। तो व्यापार का पहला मूल मंत्र क्या है? जोखिम उठाना, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे मन में यह दृढ़ इच्छा होनी चाहिए कि हमें व्यापार करना है, ठीक है। अब तक के सेशन में हमने यह तो समझ लिया था कि आत्मनिर्भरता का हमारे जीवन में क्या महत्व है, बट अब इस सेशन में हमारा ऑब्जेक्टिव है कि व्यापार का पहला कार्य क्या है। व्यापार का सबसे प्रथम कार्य होता है अवसर की तलाश करना, सबसे पहला जो कार्य है। अगर आपके पास अच्छा अवसर है, ठीक है, अगर आपको यह पता चल गया कि मैं अगर ये काम करूं तो इससे मैं आत्मनिर्भर हो सकता हूं, तो आप मान लीजिए आधा कार्य आपका हो चुका है। जैसे हम जनरल एक हिंदी में बात कहते हैं ना कि किसी कार्य की शुरुआत अगर अच्छी हो जाए तो इसका मतलब ये है कि वो आधा कार्य तो वहीं पर हो जाता है। ऐसे ही व्यापार में सबसे इम्पोर्टेंट यह होता है, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वह यह होती है कि अवसर की तलाश हो जाए, ठीक है। अब देखो, यदि हम व्यापार करने का विचार कर रहे हैं तो हमारे मन में कई तरह की संभावनाएं आती हैं, कई तरह की बातें आती हैं, क्यों ना ऐसा कर लिया जाए, क्यों ना ऐसा कर लिया जाए, ठीक है। कई तरह के अवसर हमारे दिमाग में आते हैं, तो हमें हर जगह संभावना दिखती है, ठीक है। पर ऐसा नहीं कि अगर मुझे किसी कार्य में संभावना दिख रही है तो मात्र उत्तेजना में आकर मैं वह कार्य शुरू कर दूं। पहले हमें यह समझना होगा कि क्या जो कार्य क्षेत्र में मुझे संभावना दिख रही है, क्या उस कार्य क्षेत्र के अंदर वो कार्य क्षेत्र व्यवहारिक है या नहीं है, क्या व्यवहारिक है उसमें व्यापार करना। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा, ठीक है। तो चलिए हम यहां बात करेंगे पहले कि क्या क्या अवसर हमारे पास में, हमारी बहनों के पास में हो सकते हैं जो गांव में रहती हैं या ऐसी जगहों पर रहती हैं जो शहरों से ज्यादा दूर नहीं है, शहरों के आसपास है, ठीक है। या हमारी बहनें जो कम पढ़ी लिखी हैं, जो वैसे नौकरी नहीं कर सकती बट कुछ अपनी ओर से कुछ कार्य करके पैसा कमाना चाहती हैं, तो इसमें देखिए, वैसे आजकल के समय में सबसे ज्यादा जो लोग इन्वॉल्व है, सबसे ज्यादा जो लोग शामिल है, वह खाने पीने की चीजों से रिलेटेड व्यापार में है। क्यों? क्योंकि आज के समय में हर आदमी अपना कुछ पैसा खाने पर खर्च करता है। आप देखिए, अगर आप दिल्ली के पास किसी गांव में रहती हैं या आप चंडीगढ़ के पास कहीं रहती हैं या कोई बहुत बड़ा शहर या छोटा शहर भी आपके पास में है, तो अगर शाम को मार्केट में घूमने भी चले जाएं तो आप यह देखेंगे कि जगह जगह

0: लोगों ने अपने ठेले लगा रखे हैं, ठीक है, और उन ठेलों पर वह वो सामान बेच रहे हैं, वो खाने पीने की चीजें बेच रहे हैं जो घर में बड़े आसानी से बनाई जा सकती हैं। जैसे कि मैं बहुत छोटे छोटे एग्जांपल दूंगा आपको, क्योंकि देखो हमारी जो महिलाएं हैं उनके साथ जो पुरुष उनके घर में है या उनके कुछ बच्चे जो एज में उनकी काफी एज है तो वो उनकी सहायता कर सकते हैं बाहर जाके खाने पीने चीजों को बेचने में। जैसे कि गोलगप्पे हैं, पानीपुरी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, आप देखिए पानीपुरी को बनाना कितना आसान है, कुछ भी नहीं लगता उसके अंदर, ठीक है, और एक पानीपुरी 2 या 3 रुपए की ज्यादा की आपकी बिकती है, और अगर आप किसी बड़े शहर में उसे बेच रहे हैं तो वो ज्यादा की आपकी बिकने वाली है। पानी तो बेचना आपने, ठीक है, तो चीजें आसान है तो आपको अवसर तलाशता है। तो खाने पीने की चीजों में आप और बहुत कुछ देख सकते हैं, ऐसी ऐसी सूखी चीजें होती हैं जो खाई जाती हैं, ठीक है, जो लोग पसंद करते हैं खाना तो उनको बेचा जा सकता है। इसके अलावा कढ़ाई बुनाई और सिलाई से रिलेटेड बातें हैं, जैसे कि हमारी गांव की महिलाएं कढ़ाई और सिलाई में काफी तेज होती हैं, मतलब क्योंकि यह प्रशिक्षण उन्हें अपने परिवार से ही मिलता है, ठीक है। तो आज के समय में सभी महिलाएं शहर में आप देखेंगे या सभी लोग अपने घरों को चमकाना चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि उनके घर में साज सज्जा हो, तो जो हाथ से बुनाई हुई चीजें काफी ज्यादा अच्छी होती हैं, काफी ज्यादा आकर्षित करती हैं। तो यदि आप में हाथ की कला है जिसमें आप सिलाई कर सकती हैं, कढ़ाई कर सकती हैं, तो आप छोटी-छोटी कपड़ों पर कढ़ाई करके उसको एक डिजाइनिंग पीस में बना के शहर में बेच सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा स्वेटर एवं डिजाइनदार कपड़े, आज के युग में, आज के समय में जो महिलाएं शहरों में रहती हैं, नौकरियां करती हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वे अपने बच्चों के लिए स्वेटर बना सकें। तो जनरली वो महिलाएं क्या करती हैं, दुकानों पर जाकर स्वेटर खरीदती हैं। तो अगर आप किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर, जैसे मान लीजिए आप जहां रहते हैं आपसे पास कोई शहर या गांव है, आप उस गांव में अगर आप थोड़ी सी कोशिश करके देखें तो आपको स्वेटर बनाने के ऑर्डर मिल सकते हैं, तो आप एक बच्चे का नाप लेके उसकी स्वेटर बना सकती हैं। तो यह एक तरीके से आपका आत्मनिर्भर होने का जरिया हो सकता है। इसमें आपको फायदा क्या होगा, क्योंकि ऊन जो है वह तो जिस परिवार ने बनवानी है अपने हिसाब से आपको देगा, ठीक है, तो आपको तो ओनली जो आप अपने हाथों से काम कर रही हैं उसी की ही मेहनताना आपको मिलना है। इसके अलावा साज सज्जा का सामान है, मैंने पहले ही आपको बताया कि सभी लोग अपने घरों को ऐसा चाहते हैं कि उनका घर चमका चमका रहे, घर उनका शानदार सा दिखे, ठीक है, तो घर को शानदार दिखाने के लिए हम साज सज्जा का सामान बनाते हैं। तो यदि हमारी कुछ महिलाएं, अगर आप में कुछ ऐसा हुनर है जो आप ऐसे डिजाइन बना सकती हैं मिट्टी के उससे कपड़े के ऊपर जो घरों में यूज किए जा सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा सौंदर्य से आधारित, हर महिला अपने आप में सुंदर दिखना चाहती है, चाहे कोई भी महिला, मैं कहता हूं चाहे गांव हो चाहे शहर हो, हर महिला यह चाहती है कि वह सुंदर दिखे, अगर वह कहीं से जाए तो लोग माने कि हाँ वो सुंदर है, ठीक है। तो आज के समय में चाहे आपके पास पैसा है चाहे पैसा नहीं है, चाहे आपके आमदनी के साधन है चाहे आमदनी के साधन हमारे कम है, फिर भी हमारी महिलाएं जो भी उनके पास में चीजें अवेलेबल है उनको यूज करके सुंदर दिखना चाहती है। तो यदि आप सौंदर्य से आधारित कार्य कर सकते हैं जिसमें छोटा मोटा आपका ब्यूटी पार्लर हो सकता है, मैं एक ब्यूटी पार्लर नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि आप अपने घर से ही जिसमें छोटी छोटी महिलाओं की जो जरूरतें हैं वह कार्य सीख के आप अपना कार्य शुरुआत कर सकती हैं। जैसे कि हमारी जो संस्था है रीड इंडिया है, यह हम अपनी लाइब्रेरीज या अपने सेंटर्स के माध्यम से आपके ब्यूटिशियन कोर्स की ट्रेनिंग देती है, ठीक है, और यदि आप हमारी संस्था के थ्रू जुड़े हैं और आप अगर आप ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग लेते हैं तो इतना तो आप सीख ही जाते हैं कि कैसे महिला को सुंदर दिखाया जाए, ठीक है, तो यह एक आपका अच्छा कार्य हो सकता है। इसके अलावा आप बच्चों के खिलौने बना सकते हैं, लकड़ी से खिलौने बनाए जाते हैं, मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं, यह वो चीज है जो हमेशा चलती है। देखो कोई भी इंसान है जब उसका बच्चा कुछ भी मांगे उससे, ठीक है, जब छोटा बच्चा है तो खेलने के लिए इंसान, आप चाहे उसका इनकम सोर्स है या नहीं है, फिर भी वह बच्चों के लिए काफी पैसा खर्च करता है। तो आप कोई भी, जैसे आप देखेंगे शहरों के अंदर शाम को या सुबह में जो गुब्बारे वाले होते हैं वह भी एक अच्छी कमाई कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपका बच्चा गुब्बारे की डिमांड कर रहा है, गुब्बारा मांग रहा है, तो आप उसे गुब्बारा लेके देंगे। और आप सोच के देखिए, एक गुब्बारे को फुलाकर और उसको एक डोर से बांधने में आपका कुल खर्च कितना है और कुल कितना पैसा उसके लिए लिया जाता है। 10 रुपए से कम गुब्बारा नहीं बिकता, ठीक है। और यदि आप उस गुब्बारे पे खर्चे की बात करें तो आपका 1 से 2 रुपए का गुब्बारा आता है, 1-2 रुपए आप यह मान लीजिए उससे जो आपने डोर बांधी है, तो 3 से 4 रुपए के खर्च को आप 10 रुपए तक बेच सकते हैं, ठीक है। ये एक सोच की बात है, अभी देखने में हमें लगता है कि यह बेचना बहुत मुश्किल होगा, पर आप देखिए हजारों लोग ये कार्य करते हैं, ठीक है। इसके अलावा मिट्टी के डिजाइनदार बर्तन आप सकते हैं बना। देखो गांव में हम बहुत तरह की कलाएं सीखते हैं, अगर हमारे हाथ में हुनर है, तो हम ऐसी कोई भी चीज बनानी सीख सकते हैं। और यह सब चीजें शहरों में बड़ी आसानी से बेची जा सकती हैं। आप देखिए किसी भी बाजार के अंदर, कोई जो बड़े बड़े शहर है वहां तो सड़कों पर बाजार लगता है, ठीक है, सड़कों पर बाजार लगता है, तो लोग आते हैं अपने से जो भी सामान उन्हें चाहिए उन्हें खरीदते हैं। तो यदि आप कोई ऐसी चीज बनाने में अगर आप में हुनर है तो यह भी आपकी आत्मनिर्भर होने का रास्ता खोल सकती है। इसके अलावा पापड़, अचार, जो ऐसी सूखी चीजें हैं, देखो अचार है, जो लोग बहुत साफ सुथरा ढंग से अचार बनाते हैं, यदि वह शहर में जाकर उसका विपणन करें, उसकी मार्केटिंग करें, तो अचार बिकना शुरुआत हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से ताजी चटनी, कटी हुई सब्जियां, देखो आजकल के युग में जो महिलाएं कार्य कर रही हैं, जो महिलाएं जॉब करती हैं, चाहे वह सरकारी नौकरी है चाहे वह प्राइवेट नौकरी है, तो वो महिलाएं चाहती हैं कि उनके घर के छोटे मोटे कार्य जो हैं वह उन्हें किए मिले। तो आजकल आप देखोगे पहले मार्केट में जाते थे तो वहां सब्जी खरीदी जाती थी, ठीक है, बट आज जमाना ऐसा आ गया है कि मार्केट में कटी हुई सब्जियां खरीदी जाती हैं। अब आप आलू वाले भैया को बोलोगे कि भैया मुझे 1 किलो आलू देना, अब आप ये नहीं कहोगे 1 किलो आलू देना, आप उसे ये कहेंगे मुझे आलू की सब्जी बनानी है तो 1 किलो कटे आलू देना, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि यह वो सारी बातें हैं जिनको जिनमें से आप यह देख सकते हैं कि व्यापार की, इन सब चीजों में व्यापार की अपार संभावनाएं हैं। इसके अलावा भी बहुत चीजें ऐसी हो सकती है, क्योंकि जब आप अवसर के बारे में सोचती हैं, अवसर के बारे में तलाश शुरू करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमें क्या आता है, ठीक है। और कई बार ऐसी चीज होती है जो हमें आती नहीं है, बट हमारे मन में आता है कि इस चीज से कोई ना कोई व्यापार किया जा सकता है। तो इस तरह से इन सभी अवसरों को कुछ मैंने यहाँ पर बताए हैं, या इसके अलावा बहनें हमारी इतनी सारी यहाँ बैठी हैं, और मैं तो यह मानता हूं कि हमारे बहनों की जो सोचने की शक्ति है वह सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि वो बहनें आपस में एक समूह में होती हैं। जब आप किसी समूह में बैठे होते हो तो इतने सारे दिमाग एक साथ कार्य करते हैं, तो आप आपस में शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं भी यह आइडिया आपके मन में है। तो जो भी आइडिया आपके मन में आए, जो भी व्यापार करने की बात आपके मन में आए, आप यह उस व्यापार करने के मुद्दे को अपने सहेलियों के साथ में उनसे बात करिए, क्योंकि जब आप किसी आइडिया को दूसरे के साथ में शेयर करते हैं, उससे बात करते हैं, तो हो सकता है दूसरा व्यक्ति आपको उसमें से कुछ और अच्छी बात सुझा सकता है। तो पहला जो हमारा मुद्दा है वह है अवसर को तलाश करना। मैं फिर बार बार इस बात पे जोर डाल रहा हूं, यहाँ पर हमारी महिलाएं जो यहाँ पर बैठी हैं, यदि उनके मन में कोई भी अवसर है, यदि उन्होंने किसी अवसर को अगर तलाश लिया, ठीक है, और उत्तेजना में आकर व्यापार शुरू कर दिया, उत्तेजना मैं नहीं कहूंगा, पहले सोच समझकर अगर उन्होंने सारी बातें सोच समझकर कार्य करना शुरू करा, तो 100% उनका कार्य यह है सफल होगा, ठीक है। अब अवसर तो तलाश लिया, ये मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है, मैं मान रहा हूँ कुछ बातें मैंने बताई हैं, कुछ आप लोग भी आपस में बात करेंगे, तो यह मैं मान के चल रहा हूँ कि अवसर तो हमने तलाश लिया। अब अवसर तलाशने के बाद में यह नहीं है कि जैसे ही आपने अवसर तलाशा तो मतलब आपका व्यापार चल पड़ा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अवसर तलाशने के बाद में हमारी जंग शुरू हो जाती है। हमारी जंग शुरू हो जाती है किसके साथ में? हमारी जंग शुरू हो जाती है भाग्य के साथ में। हमारी जंग की शुरुआत हो जाती है जो मार्केट में दूसरे लोग हैं जो उसी तरह के सामान को बेचते हैं, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा जो कार्य हमारे करना होता है वह होता है विपणन अनुसंधान। विपणन अनुसंधान, अब आपको लगेगा कि विपणन क्या होता है और अनुसंधान क्या चीज होती है, तो विपणन अनुसंधान से हमारा मतलब यह होता है कि आइडिया या जो हमने अवसर के बारे में बात करी है, अब हम यह देखेंगे कि उस अवसर में कितना दम है। क्या जो हमारा ग्राहक है क्या वह उसे पसंद करेगा कि नहीं करेगा? क्या हमारा ग्राहक जो हमारा जिसको हमें सामान बेचना है वो उसमें अलग क्या चाहता है? तो विपणन अनुसंधान के अंदर सबसे पहले हम ग्राहक की बात करते हैं। सबसे पहला हम क्या बात करते हैं? ग्राहक की, क्योंकि अंत में पैसा तो आपको ग्राहक नहीं देना है। मतलब सारी बातें अपनी जगह, कोई भी अगर हम इसमें से सामान को चुनाव करते हैं, कोई भी व्यापार करने की शुरुआत करने की बात करते हैं, तो अंत में जो पैसा है, जो सामान बेचा जाएगा, वह तो किसको बेचा जाएगा? ग्राहक को ही बेचा जाएगा। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें ग्राहक के बारे में सोचना होता है कि ग्राहक क्या हमारी वस्तुओं को पसंद करेगा या नहीं करेगा, और क्या ग्राहक हमारी चीजों के बारे में खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, ठीक है। तो ग्राहक को समझने के लिए हम क्या करते हैं? ग्राहक को समझने के लिए हम पहली चीज यह देखते हैं कि हमारी चीजों में क्या क्या विशेषता है, ठीक है, और ग्राहक की क्या क्या आवश्यकता है। दोनों में हमें एक तरह से बांध बनाना होता है। भाई ग्राहक की आवश्यकता क्या है? क्या हमारी जो वस्तु जो हमने बनाई है क्या उसकी आवश्यकता को पूर्ण करता है या नहीं करता है, ठीक है। जैसे कि हम छोटा सा एग्जांपल लें, मान लो खाने पीने की चीजें हैं, ठीक है। अब देखो हर तरह के ग्राहक है। कुछ ग्राहक ऐसे हैं जो स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक है, ठीक है, तो वो ऐसी वस्तुएं खाना पसंद करते हैं जो काफी साफ सफाई से बनाई गई हों, इसके अलावा ज्यादा मसालेदार न हो, ठीक है। तो हमें उन ग्राहकों को हमें देखना होगा कि हम किन ग्राहकों को टारगेट करके अपना कार्य कर रहे हैं, क्योंकि अंत में पैसा तो ग्राहक ने ही देना है। इसके अलावा मार्केट में जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, जो सामान हम बना रहे हैं, उससे दूसरे सामान और क्या क्या अवेलेबल है, ये हमें जरूर देखना होता है। ऐसा नहीं कि उत्तेजना में आकर हम अपना कार्य शुरुआत कर दें और जब हम मार्केट में सामान बेचने जाएं तो हमें यह पता चले कि हमारे सामान के अलावा जो दूसरे सामान मार्केट में उपस्थित है वह क्वालिटी वाइज या उनमें गुणता हमसे ज्यादा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें दूसरों के प्रोडक्ट्स को भी देखना है, उनको समझना है कि उनके प्रोडक्ट्स में क्या है और हम अपना जो सामान बनाएंगे हम उनसे कैसे बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि यदि हमारा सामान दूसरों के सामान से बेहतर होगा तभी उसका मार्केट में बिकने के चांसेस ज्यादा है, तभी हम एक अच्छी बाजार में अपने आप को अच्छा शो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें दूसरों के सामान को भी देखना होगा। सामान को देखने के बाद फिर हम यह देखेंगे कि हम अपने सामान को दूसरों के सामान से कैसे अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। और फिर यह भी आपको समझना है कि क्या हमारा सामान जो हमने बनाया है क्या वह ग्राहक की इच्छाओं को पूरा करता है, क्या वह ग्राहक की आवश्यकताओं को पूरा करता है। यदि हमारा सामान ग्राहक की आवश्यकताओं को दूसरों के सामान से ज्यादा पूरा करता है तो इसका मतलब हमारे सामान को मार्केट में चलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसके अलावा एक मैंने एक वर्ड लिखा है यहां पर इंग्लिश के अंदर, पायलट टेस्टिंग। पायलट टेस्टिंग, अब हमारी कुछ बहनें हैं, वह नहीं समझ पाएंगी कि पायलट क्या होता है। अब ये तो आपको पता ही है बहनों कि पायलट का मतलब होता है जो जहाज उड़ाता है, ठीक है। अब देखिए, ऐसा तो नहीं है कि किसी को हम जहाज दे रहे हैं तो पहले ही उसे कहें जा बेटा जहाज उड़ा, हजार सवारी ले जा साथ में, ऐसा तो नहीं है। पहले हम कुछ थोड़े से पोर्शन पे ट्राई करके देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप बाजार में नमक खरीदने चले, और हमने जो सड़क के किनारे नमक बेच रहे हैं उनसे बात करनी शुरुआत करी, वहां दो ढेरियां लगी हुई थी, ठीक है। एक ढेरी में नमक था और दूसरी ढेरी में भी नमक था। हमें यह देखना था किस ढेरी का नमक हम लें। तो हम क्या करते हैं, चुटकी भर लेते हैं, अपनी जीभ पर लगाते हैं और टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें जो नमक पसंद आता है उसको हम लेते हैं। सेम यहां पर है, यदि आपके मन में कोई अवसर आ गया और आपका मन पूरा बन गया कि मुझे इस अवसर पे व्यापार करना है, तो अपने ज्यादा पैसा खर्च करने की बजाय पहले हम थोड़ा सामान बनाकर देखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सामान बनाकर देखेंगे और उसे, उस थोड़े से सामान को मार्केट में बेचने का प्रयास करेंगे, यह समझने के लिए कि क्या हमारा सामान मार्केट में बिकने लायक है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि यदि हमारा सामान मार्केट में बिकने लायक नहीं है और हम काफी ज्यादा सामान बना लेते हैं तो इसमें हमारा जोखिम ज्यादा होगा, ठीक है। तो पहले कुछ सामान बनाकर हम मार्केट में बेचने की ट्राई करें, बेचने की कोशिश करें, और यदि हम अपनी कोशिश में सफल हो जाते हैं और ग्राहकों के फीडबैक से, जो ग्राहक हमें बताते हैं कि इसमें क्या क्या और चीज, इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, तो हम आगे नए से नई चीजें बना सकते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस में आगे हम ज्यादा सामान नहीं बनाना चाहिए। पहले हमें उस सामान की मार्केट में पायलट टेस्टिंग करनी चाहिए, हमें देखना चाहिए कि क्या वह हमारा सामान जो है मार्केट में बिकने लायक है या नहीं है। इसके अलावा साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए। आज के युग में, आज के समय में साफ सफाई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोई भी ग्राहक, कोई भी, मान लीजिए मैं ही हूं, मुझे अगर कुछ भी खरीदना है तो पहली बात मैं सामान को देखूंगा क्या साफ सफाई है, या जहां पर वह बनाया जा रहा है या जहां पर बैठ के आप उसे बेच रहे हो, क्या वह साफ सुथरी जगह है या नहीं है। तो सामान को बनाने से लेकर उसको बेचने तक, किसी भी सामान को बनाने से लेकर और उसे बेचने तक साफ सफाई का ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए, क्योंकि साफ सफाई हमारे देश की पहचान है। मोदी जी का नारा है ना, स्वच्छ भारत। तो ये जो स्वच्छ भारत की बात है वो इसी बात से निकली हुई है, साफ सफाई का ध्यान होना चाहिए, ठीक है। खाने पीने की चीजें हैं, बच्चों के खिलौने हैं, जितनी ज्यादा साफ सफाई होगी उतना ही आपके लिए अच्छा है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है पैकेजिंग। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है, पैकेजिंग। पैकेजिंग आकर्षित होनी चाहिए। देखो आप मान लीजिए आप बाजार में जाते हैं, आप कुछ भी खरीदना चाहते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आप सामान को देखते हैं। जो सामान सबसे ज्यादा आकर्षित ढंग से जिसको पैक किया जाता है, हमारा मन पहला उसी पे टिकता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी क्या उपयोगिता है, उसमें क्या चीजें हैं, ठीक है। और देखो सामान तो जब आप यूज करते हैं उसके बाद ही समझ में आता है कि वो कितना आपके लिए कारगर होगा, बट सबसे पहली चीज जो ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करती है वह होती है सामान की पैकिंग। तो पैकिंग आपको सीखना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर हम एक छोटे बच्चों के गिफ्ट की बात भी करें तो हर चीज को पैक किया जाता है, पैक करने का एक उपयुक्त तरीका होता है। तो रीड इंडिया के सेंटर्स के माध्यम से पैकेजिंग कोर्स भी चलाए जाते हैं, जिसमें यह बताया जाता है कि सामान को कैसे पैक किया जाए, कैसे रैप किया जाए अच्छे रैपर्स के अंदर। तो पैकेजिंग हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए आप अचार बेच रहे हैं, आप चटनी बेच रहे हैं, तो उसको किस ढंग से पैक किया जाए, ठीक है। पैक करने के बाद उसके ऊपर क्या क्या लिखा होना चाहिए ताकि ग्राहक उसको देखते ही समझ जाए कि इसके अंदर क्या चीज है, ठीक है। और अंत में हम बात करेंगे मूल्य निर्धारण की। अब यह काफी ज्यादा कठिन प्रश्न हो जाता है कि सामान का मूल्य क्या रखा जाए, सामान का मूल्य क्या रखा जाए, ठीक है। तो जो सामान हाथ से बनाया जाता है वैसे तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। हम तो एक चीज कहते हैं कि जो हाथ से बनाई जाती है वह अतुलनीय चीज है, वह मतलब बेशुमार कीमती है। पर ऐसा नहीं है, ग्राहक तो कीमत के हिसाब से ही, अपने सामान उपयोगिता के हिसाब से ही सामान खरीदेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, ऐसा नहीं कि हम यह चाहें कि इतना मुनाफा कमा लें कि एक ही सामान को बेचकर मुनाफा कमाएं। देखो, मुनाफा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए दो तरीके हैं, या तो हम अपने सामान की कीमत को ज्यादा रखें, ठीक है। दूसरा, हम अपने सामान की कीमत में हमने मन में सोच लिया कि यदि मेरी 100 रुपए लागत है, 100 रुपए की लागत के ऊपर मैं कम से कम 15 से 20% का लाभ चाहता हूं, ठीक है। तो मैंने एक परसेंटेज अपने मन में फिक्स कर ली, तो मैं सामान की कीमत को इस तरह से रखूंगा कि लागत के बाद जितना मुझे लाभ चाहिए उतना मैं लाभ उसमें जोड़ दूंगा, ठीक है। या हम क्या करें कि अपने सामान की सेल को बढ़ाएं, यदि ज्यादा सेल होगी तो ज्यादा सामान बिकेगा, तो ज्यादा सामान बिकेगा तो कम, अगर कीमत कम भी है, कीमत अगर कम भी है तो भी हमें लाभ उतना ही होगा। तो हमें यह सोचना चाहिए कि एक बार में लाभ न कमा लिया जाए, लाभ कमाएं, मुनाफा कमाएं, बट ऐसा ना हो कि इतना ज्यादा मुनाफा कमाएं कि ग्राहक दूसरी बार हमारे पास आए ना। तो हमारे सामान में क्वालिटी के हिसाब से, सामान की उपयोगिता के हिसाब से हमें उसका मूल्य निर्धारण करना होता है। मूल्य निर्धारण करते समय हमें यह भी देखना चाहिए कि मार्केट में जो दूसरे प्रोडक्ट बिल्कुल सेम जो हैं उनका मूल्य कितना है। ऐसा ना हो कि हमारे सामान का मूल्य उनके मूल्य से काफी ज्यादा हो, जिससे कि हमारे सामान के बिकने के जो चांसेस हैं वह कम हो जाएं। तो हमें मूल्य निर्धारण पे भी काफी ध्यान देना चाहिए। तो इस भाग के अंदर हमने कई बातों पर बात करी, तो आशा है मुझे कि हमारी जो बहनें यहां बैठी हैं उनको यह समझ में आया होगा कि व्यापार करना जितना बाहर से आकर्षित करता है अंदर से उतना आसान नहीं है। हमें मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है हर हिस्से में, व्यापार के हर भाग में। ये नहीं कि हमने सामान बना लिया और हम यह सोचें कि हमारे घर से बिक जाएगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। इसके अलावा सामान तो हमने बना लिया अपनी सोच के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से बनाया गया सामान ग्राहक की सोच से यदि मैच नहीं करता तो वह सामान हमारा बिकने वाला नहीं है, ठीक है। तो ग्राहक हमारे लिए देवता है, जैसा ग्राहक चाहेगा सामान तो हमें वैसा बनाना पड़ेगा। इसके अलावा उत्तेजना में आकर बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पर, बड़े स्केल पर सामान बना दिया जाए और फिर हम उसे बेचने जाएं मार्केट के अंदर, तो यह भी मूर्खता होगी। पहले हमें यह देखना चाहिए, थोड़ा बहुत सामान बनाकर बेचने की ट्राई करनी चाहिए और यह पता करना चाहिए कि किन किन मुश्किलों का हमें सामना करना पड़ सकता है या हमारे सामान में किन किन बातों, किन किन चीजों से सुधार किया जा सकता है। इसके अलावा पैकेजिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। जो चीज जितनी अच्छी पैक्ड होगी, जितनी अच्छी पैकेजिंग होगी उसकी उतनी ही उपयोगिता ज्यादा है, उतने ही वह ग्राहकों को आकर्षित करती है और उसके बिकने के चांसेस उतने ज्यादा हो जाते हैं। और मूल्य तो एक बहुत बड़ा कारण है ही है कि ग्राहक आपका सामान तभी खरीदता है जब वह सामान उसकी उपयोगिता के हिसाब से, जो मूल्य आप उसे बता रहे हैं उसके साथ यदि वह मैच कर जाता है तो ग्राहक आपका सामान जरूर खरीदेगा। आशा है इस भाग को, वर्कशॉप के इस दूसरे भाग को समझने के बाद आपको यह जरूर समझ में आया होगा कि व्यापार करने की शुरुआत कैसे की जाती है और कैसे कैसे हम अपने व्यापार को आगे बढ़ाते हैं। इसी वर्कशॉप के भाग 3 के अंदर हम यह सीखेंगे कि मार्केटिंग कैसे की जानी चाहिए। सामान तो आपने बना लिया, मूल्य भी निर्धारण कर लिया, कंपेयर भी कर लिया, कैसे मार्केटिंग करी जाए। और इसके अलावा, मार्केटिंग के अलावा, हम यह भी देखेंगे कि कैसे अपने खाते बनाए जाए। मतलब आप कुछ ना कुछ खाता बना जरूर होना चाहिए ताकि आप यह देख पाएं कि कितनी हमारी लागत लग रही है, कितना हमारा खर्चा आ रहा है और महीने या 2 महीने के अंत में हमें कितने का लाभ होगा। तो हम इस वर्कशॉप के भाग 3 में सीखेंगे। आशा करता हूँ आपको यह सेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।
1: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम। सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
2: हेलो, मेरा नाम नीलम है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैं घर में रहती हूँ। मुझे यहाँ पे एक बार रीड इंडिया वाले हमारे उधर सर्वे करने आए थे, उनके थ्रू मुझे रीड इंडिया के बारे में पता लगा। फिर मैं इधर आने लग गई, मैं रीड इंडिया से जुड़ गई। यहाँ आने के बाद मैंने यहाँ से पार्लर भी सीखा है और कंप्यूटर भी। इस टैग के कोर्स में मैंने IT बनाना और किसी की लोकेशन सेंड करना, और पहले मैं घंटों उसकी लाइन में, बैंक की लाइन में खड़ी रहती थी। बट जब से फ़ोन, मतलब इसकी नॉलेज मुझे हुई है कंप्यूटर की, तब से मैं अपने फ़ोन में ये डाउनलोड करके कहीं भी पैसे सेंड कर सकती हूँ, पैसे भेज सकती हूँ, और उससे मतलब कैब करके मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ। अब मुझे किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता। और सबसे बड़ी बात जो रीड इंडिया से जुड़ने के बाद मेरे साथ हुई है वो ये कि मैं घर में रह के डिप्रेशन में रहने लगी थी। अब मैं फ्री माइंड हो गई हूँ, मैं मतलब आज़ाद होकर सोच सकती हूँ, और थोड़ा मेरा दिमाग भी मतलब सही रहने लग गया है। पहले मैं बहुत परेशान रहती थी घर में रह के, मैं बाहर भी कहीं नहीं जाती थी, और घर में रह के यही रहने लग गया था, बस डिप्रेशन ही रहने लग गया था। अब यहाँ आके मैं बिल्कुल ठीक रहने लग गई हूँ। हाँ, मैं हाउसवाइफ के लिए ये कहना चाहूँगी कि आप लोग बाहर आइए, आपको नहीं सीखना नहीं है वो ठीक है, बट आप आइए, सीखने के बहाने से ही आइए, ताकि आप मतलब मेंटली तौर पर सही रह सकें, और आपको एक दूसरे से बात करके कुछ नया पता लगे। मतलब किसी चीज़ की नॉलेज ना हो तो कुछ अच्छा ही पता लगे, अपने परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में, उनकी परवरिश के बारे में, बहुत कुछ आप यहाँ आके जान सकते हैं। थैंक यू रेड इंडिया।
3: Hello everyone, my name is Lancy and I passed 10th class. Then I think to join Read India Academy to improve my condition. मैंने Academy join की Read India, और उसमें हमारा course start हुआ TEG, Technology Empowering Girls. ये एक course है जो women और girls के लिए है। ये women और girls की बैड कंडीशन को इम्प्रूव करता है। जैसे पहले घरों में महिलाएं निकलती नहीं थी और कोई निकलने नहीं देता था, भाई और उनके पिता, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज ये प्रोग्राम चला है तो इसके लिए सब यहाँ पे वुमेन और गर्ल्स आती हैं, कंप्यूटर कोर्स करती हैं और सिलाई करती हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी करती हैं जिनसे वो इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं, और आगे भी एक प्रोग्राम चल रहा है। मैंने एक कंप्यूटर कोर्स किया है 21 डेज का भी, और मैं बेसिक कंप्यूटर भी कर रही हूँ, और मैंने इंटरनेट के थ्रू मेलिंग सीखी है, वेबसाइट से लिंक बनाना सीखा है, और मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें सीखी है। पहले मतलब मुझे कुछ नहीं करना आता था, मुझे किस सब की ज़रूरत होती थी, लेकिन आज कल मैं खुद कर रही हूँ ये सब, और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं होती। बस मैं बहुत इंडिपेंडेंट फील करती हूँ। थैंक यू रीड इंडिया एकेडमी।
4: गुड आफ्टरनून, माय नेम इज तनु तनवर। आई पास 10th क्लास एंड आई जॉइन रीड इंडिया एकेडमी इन शाहबाद मोहम्मदपुर। दिस इज ओनली वन एकेडमी हु टीच अस कंप्यूटर। दिस एकेडमी हेल्प्स टू बी अ वुमेन इंडिपेंडेंट। रीड इंडिया स्टार्ट्स टैग प्रोग्राम फॉर गर्ल्स एंड वुमेन्स ओनली टू इम्प्रूव द बैड कंडीशन फॉर वुमेन्स। And it helps us in form filling, and also we helps our parents. Then we also reserve tickets. Thank you.
5: I'm Shweta. I study in IGNU University, or I done NPTT course for Polytechnic Institute, Rajouri Garden. और हमारे जो यहाँ पे शाहबाद में ये है ना NGO, मैं यहाँ से क्लासेस ले रही हूँ टैग की, तो इससे मेरे को काफ़ी चेंजेस आए हैं, और थोड़ा सा लगा के भाई यहाँ पे आके, हाँ बाकी को भी करना चाहिए, क्योंकि एक तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और काफ़ी हेल्प है, मतलब टीचर्स अच्छे से समझाते हैं, कोई दबाव नहीं, किसी का कोई प्रेशर नहीं है। और दूसरा फिर इससे ये है कि नॉलेज बढ़ती है यहाँ पे आके एक दूसरे को, मतलब हम जाके जैसे हम आ रहे हैं किसी को बता रहे हैं डिटेल दे रहे हैं, तो इससे काफ़ी चेंजेस आते हैं, मतलब किसी को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि एक तो पास में है और ऊपर से यहाँ पे कोई ऐसे प्रेशर वाली बात नहीं, ऐसे कोई मतलब फोर्स कर रहा है किसी चीज़ के लिए, कोई बता नहीं रहा, इसमें ये होता है। और मतलब होना चाहिए कि हर घर से कोई एक भी आए ना, तो ये नहीं मतलब कि सिर्फ घर में या एक फैमिली में, इसमें पूरे एरिया में चेंजेस आ सकते हैं अगर हम लाना चाहें तो। और उसके बाद जैसे होती है ना फैमिली, टाइम से पहले मतलब लड़कियों को मतलब घर बिठा लेते हैं, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल कंडीशन लगा लो, कुछ भी हो, जिससे लड़कियां घर बैठ जाती हैं, पढ़ाई कर नहीं पाती, तो उससे भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है इससे, इसमें लाइन में आने से, क्योंकि इसमें मतलब इतना कोई ज़्यादा हाई फाई फीस वगैरह भी नहीं लगती कि जिससे भाई कोई अफोर्ड नहीं कर पाए, इसमें नॉर्मली होता है। फाइनली मतलब ये कि जैसे नॉर्मली फैमिली होती है वो भी कर सकती है, और जो मतलब बिल्कुल लो होती हैं वो भी कर सकती हैं। और जैसे मतलब भाई होती है कुछ फैमिली जो लड़कियों को सपोर्ट नहीं करती, सिर्फ लड़कों को करती हैं कि भाई लड़के ही आगे बढ़ सकते हैं, लड़कियां नहीं बढ़ सकती, और शादी वादी कर देते हैं, उनकी पढ़ाना नहीं चाहते उनको आगे, तो उनके लिए भी मतलब है कि भाई वो कर सकती हैं आके, तो उनको लगेगा, खुद ही लगेगा, मतलब चेंजेस आ जाते हैं। और इससे मतलब इतना कुछ सिखाते हैं हमें यहाँ पे ये कि मतलब हमें खुद लगता है कि हम अपने पेरेंट्स की भी हेल्प कर सकते हैं, जैसे बैंकिंग वर्क में, और हमें ऑनलाइन शॉपिंग करना या ऑनलाइन मतलब कुछ भी वर्क है वो हम कर सकते हैं। तो इससे हमें हमारे लाइफ में भी चेंजेस आते हैं और घर वालों के में भी आते हैं, और इससे ये आगे हमारा जो फ्यूचर होता है ना वो सेव हो जाता है, क्योंकि अगर हम आज अपने पैरों पर खड़े तो तभी तो अपने बच्चों को हम बना सकते हैं मतलब इंडिपेंडेंट। अगर बच्चों को कुछ सिखाना तो उसके लिए पहले खुद स्टैंड लेना पड़ेगा, इससे बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि उससे पहले हमें कुछ जानकारी होगी, हमें कुछ डिटेल्स होंगी, तभी हम किसी के सामने मतलब रख सकते हैं। एक शादी करना और मतलब लाइफ को घर में दबा के रखना, ख़त्म कर देना, सब कुछ नहीं होता आज के टाइम में, मतलब जितना बढ़ो आगे उतना कम है, और हर किसी को बढ़ना चाहिए, किसी एक को नहीं, हर किसी को, जहाँ से जैसी हेल्प मिलती है, जो मिलती है वो करनी चाहिए। इसमें कोई वो नहीं है कि सिर्फ यही कर सकता है, यही बोल सकता है, मैं नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं है। सबको है मतलब एक फ्रीडम होती है अपने आप में, लाइफ अपनी है, किसी का प्रेशर नहीं होता कोई के मतलब हम किसी के प्रेशर में आके अपनी लाइफ ख़राब कर दें, या मतलब बोल लें नहीं, कुछ नहीं करें, आगे नहीं बढ़े। एक दो बार मतलब होता है भाई, डर होता है एक, लेकिन बार बार निकलने से ना सब डर खत्म होने लग जाता है धीरे धीरे, क्योंकि डर एक ऐसी चीज़ है, ख़त्म करने से ख़त्म होएगा, ऐसे डरने से तो डर बढ़ता ही है, कोई मतलब दूसरा उसको ख़त्म नहीं कर सकता आके। अब हम हैं जैसे कुछ होती हैं लड़कियाँ, ज़रूरी नहीं है कि हर लड़की को फ्रीडम होता है, फैमिली का सपोर्ट होता है, जैसे कि मैं हूँ, मेरे सिर्फ पेरेंट्स ने मेरे को सपोर्ट किया है, बाकी फैमिली वाले नहीं चाहते थे कि मतलब मैं आगे बढ़ूँ, क्योंकि सबको ये था 12th कर लिया, पास आउट हो गया, स्कूल शादी कर दो, ये वो, लेकिन मेरे पेरेंट्स शुरू से वर्किंग है, तो वो चाहते हैं, उनको पता है पैसे की कीमत क्या है, तो वो चाहते हैं मतलब तो बच्चे कुछ अच्छा करें, ताकि उनको इस लाइन में ना जाना पड़े, और वो अपने पैरों पर खड़े हो, मतलब अच्छे से अच्छा काम करें, और दुनिया में मतलब उनकी एक अलग पहचान हो। तो इसलिए उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, मतलब मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मेरा साथ दिया और आज मैं यहाँ हूँ। और एक शादी की तो एक लास्ट में एक वो होता है कि भाई अब तो करनी है, वो तो एक लास्ट मोमेंट होता है कि अब तो भाई स्टेप लेना ही है, उससे पहले ना सिर्फ स्टडी के बारे में सोचना चाहिए, कैसे लाइफ को इंडिपेंडेंट बनाया जाए। ज़रूरी नहीं होता कि मतलब घर वालों ने बोल दिया आप सुन के बैठ गए, चलो भाई कोई नहीं, उनको समझाना चाहिए अपने तरीके से, ऐसे भी नहीं कि लड़ लो, ये कर दो वो कर दो, नहीं, प्यार से समझाओ, पढ़ाई की इंपॉर्टेंस बताओ, क्या चल रहा है लाइफ में, क्या दुनिया में क्या हो रहा है, कितनी इंपॉर्टेंस है। और वैसे भी आजकल तो हर कोई लड़का भी अच्छा नहीं मिलता, हर कोई फैमिली भी अच्छी नहीं मिलती, वो तो किस्मत की बात है, सुख दुख तो किस्मत का होता है। तो इसलिए हमें जितना हो सके ना अपने पैरों पर खड़ा होकर इंडिपेंडेंट होकर मतलब सोचना चाहिए, लास्ट एक मोमेंट होता है जो स्टेप लेना है, उससे पहले अपनी लाइफ बनाओ, जो करना है वो करो, बाकी करो सिर्फ ऐसा ही कि घर वालों को भी अच्छा लगे और खुद का भी एक स्टैंड और दुनिया में अपनी पहचान हो।
6: प्रयासों की बुनाई, सम्मान की कमाई, खेमराज सुंदरियाल, पद्मश्री 2026। हजारों की उम्मीद और उनकी जीविका के मार्गदर्शक हैं खेमराज सुंदरियाल, जिन्हें सब स्नेहवश गुरुजी कहते हैं। खेमराज जी का जन्म 1943 में पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। आर्थिक अभाव के कारण उन्होंने बचपन में बहुत कठिनाइयों का सामना किया।
7: मैं जब पढ़ रहा था एक दिन संत कबीर जी के बारे में जाना, उनका बड़ा नाम है और हम इतनी किताबें पढ़ती हैं उनके, तो मैं तो उन्हीं के जैसा काम सीखूंगा। मैंने ठान लिया कि मैं बुनकर बनूंगा।
6: हैंडलूम टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा करने के बाद खेमराज सुंदरयाल जी की काम की तलाश ने उन्हें यह बता दिया कि रोजगार के लिए उन्हें दिल्ली जाना ही होगा। लेकिन खेमराज जी के पास पौड़ी से दिल्ली आने तक के पैसे नहीं थे। तभी एक दिन उनके चचेरे भाई को चोट लग गई और उन्हें इलाज के लिए दिल्ली ले जाना पड़ा। उनकी देखभाल के लिए इन्हें भी साथ भेजा गया और यही सफर खेमराज जी को पहली बार दिल्ली ले आया। दिल्ली क्लॉथ मिल में काम करने के बाद खेमराज सुंदरयाल बुनकर सहायता केंद्र में कार्यरत हो गए। 9 से 10 साल गुजर गए। काशी के बुनकर सेवा केंद्र में खेमराज जी की मुलाकात एक टेक्सटाइल आर्टिस्ट एसवी निकम जी से हुई। उन्होंने इनकी प्रतिभा को पहचान कर इन्हें केंद्र से लौटने के बाद आर्टिस्ट लोगों के लिए टैपेस्ट्री बनाने की सलाह दी।
7: उन्होंने मुझे 175 रुपए दिए लूम खरीदने के लिए।
6: इसी दौरान खेमराज सुंदरयाल बुनकर सेवा केंद्र की पानीपत शाखा में आ गए और जल्द ही देश के कई सुप्रसिद्ध कलाकारों के लिए टैपेस्ट्री बुनने लगे। जिस लड़के के पास पौड़ी से दिल्ली आने तक के पैसे नहीं थे, उनका काम उन्हें देश विदेश ले गया। जामदानी तकनीक पर खेमराज जी की पकड़ देखते ही बनती थी और साथ ही उन्होंने हत्ता तकनीक और पॉलिएस्टर की बुनाई भी शुरू कर दी। अपनी इसी लगन से उन्होंने पानीपत की दरी और खेस को एक बार फिर से प्रसिद्ध कर दिया। रिटायर होने के बाद खेमराज जी ने विष्णु हैंडलूम कोऑपरेटिव शुरू किया, जिसमें वो अब तक 10,000 से ज्यादा युवाओं को काम सिखा चुके हैं। भारत के कई प्रख्यात संस्थानों के छात्र भी खेमराज जी से बुनाई की कला सीखने आते हैं।
7: इस कला ने मुझे मान सम्मान और पहचान दिलाई। अब लगता है मैंने इस कला को नहीं, इस कला ने मुझे अपना है।
6: खेमराज सुंदरयाल, पद्मश्री 2026। कोटि कोटि नमस्कार।

नमस्कार बहनों, रीड इंडिया द्वारा आयोजित व्यापार को कैसे स्थापित किया जाए एवं आत्मनिर्भर कैसे बना जाए की वर्कशॉप के भाग तीन में मैं दिनेश मिगलानी आपका स्वागत करता हूं। अभी तक के दो चरणों में या दो भागों में हमने यह सीखा था कि आत्मनिर्भरता की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है एवं भाग दो के अंदर हमने यह सीखा कि व्यापार कैसे किया जाए, व्यापार की शुरुआत कैसे की जाए, शुरुआत करने के बाद हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे ग्राहकों की आवश्यकताओं को हमें देखना है और कैसे मूल्य निर्धारण करना है। भाग तीन के अंदर हम दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जिसमें पहला भाग हमारा जो है कि सामान को कैसे बेचा जाए, सामान की मार्केटिंग कैसे करी जाए, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। देखो, वैसे तो मार्केटिंग जो सामान को बेचना है यह एक तरह की कला है, यह एक तरह की कला है और कला ऐसी होती है जो इंसान में आंतरिक तौर पर होती है, वंशागुणत होती है। मैं तो ये कहता हूं कि वह जन्म जाती होती है। हम देखते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ महिलाएं बहनें हमारी ऐसी हैं जो बातों को बहुत अच्छे ढंग से बताती है और इतने अच्छे या रोचक ढंग से बताती हैं कि सामने वाला उनकी बातों पर विश्वास कर लेता है और सारा जो बाजार का खेल है वह केवल विश्वास का खेल है। यदि ग्राहक आपकी बातों पर विश्वास कर रहा है वह आपसे सामान खरीदेगा, उसके बाद सामान का उपयोग करेगा और यदि वह आप सामान का उपयोग और आपकी की गई बातें अगर आपस में मेल खाती हैं तो ग्राहक संतुष्ट ग्राहक माना जाता है, जो एक व्यापार अच्छे व्यापार का सूचक है। ठीक है, तो इस भाग के अंदर हम दो भागों में बात कर रहे हैं। पहला भाग जो है सामान को कैसे बेचा जाए। देखिए, सामान बेचने के लिए सबसे पहले हमारी अपनी सकारात्मक सोच होनी चाहिए, हमारी सकारात्मक सोच होनी चाहिए अपने सामान के बारे में। हमें यह लगना चाहिए कि हमारा सामान औरों से क्यों अच्छा है, हमारा सामान औरों से क्यों अच्छा है। यदि हमें यह लगेगा कि मेरा सामान बहुत अच्छा है तभी मैं अपने ग्राहक को यह बता पाऊंगी कि मेरा सामान औरों से क्यों अच्छा है। तो पहली जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हमारी चीजों के तरफ एक सकारात्मक सी सोच होनी चाहिए, हमारे मन में यह कॉन्फिडेंस होना चाहिए या हमारे मन में यह आत्मविश्वास होना चाहिए कि जो सामान हम बेच रहे हैं यह मार्केट में उस दाम पर सबसे अच्छा मिलने वाला सामान है। ठीक है, सकारात्मक सोच के साथ साथ आपको अपने सामान के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए, सिंपल सी बात है, एक साधारण सी बात है, मैं अपने सामान के बारे में तभी बता सकता हूं जब मुझे अपने सामान की हर बात के बारे में जानकारी होगी। मैंने सामान कैसे बनाया, किस किस कच्चे माल का उसमें प्रयोग करा, बनाते टाइम मेरी विधि क्या थी, क्या मैंने साफ सफाई का ध्यान रखा या नहीं रखा, हर चीज के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। क्योंकि आप जब किसी दूसरे व्यक्ति को अपने सामान के बारे में बताते हैं तो आप तभी बता सकते हैं जब आपको उसके बारे में एक पूर्ण रूप से जानकारी होगी। ठीक है, तो सामान की जानकारी होना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है एक अच्छे मार्केटिंग के लिए। हम ये कहें अच्छे जो सामान बेचने वाला होता है उसके लिए महत्वपूर्ण बात यही होती है कि सामान की जानकारी और उसका सामान दूसरे सामान से कैसे अच्छा है। क्योंकि जब हमें अपने सामान की जानकारी होगी तो हम अपने ग्राहक को यह बता पाएंगे कि हमारा जो सामान, अगर जो सामान हम बेच रहे हैं वह दूसरे सामान से कैसे अच्छा है, कितना अच्छा है। ठीक है, क्योंकि तभी ग्राहक हमारा सामान खरीदेगा। तो सामान की विशेषताएं, जानकारी एवं दूसरे जो मार्केट में सामान अवेलेबल है उससे कंपैरिजन करना, या हम कहें कि उससे हम नाप पाएं कि हमारा सामान उनसे कितना अच्छा है। इसके बाद हमारी वाक्पटुता होनी चाहिए। देखो, वाक्पटुता बोलने की कला है। बोलने की कला मतलब यदि कोई ग्राहक हमारे पास में आता है तो हमें बात करनी है उससे, ग्राहक से। ठीक है, क्योंकि हम यदि ग्राहक ने मान लीजिए मुझसे किसी सामान के बारे में पूछा और मैं उसे एक रूखा सा जवाब दे दूं तो सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है कि ग्राहक मेरा सामान नहीं खरीदेगा। और यहीं यदि मैं एक बहुत अच्छे ढंग से उसे जवाब दूं, अच्छे ढंग से अपने सामान की विशेषताओं के बारे में बताऊं तो ग्राहक उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और ग्राहक हमारा सामान खरीदता है। तो आपकी बातचीत की कला सामान बेचने के अंदर बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक अच्छे बातचीत कला व्यक्ति या महिला
अपने सामान को बहुत अच्छे तरीके से बेच सकती है। और कुछ कार्य हमारे ऐसे हैं, मैंने शुरुआती लेक्चर में आपको बताया था कि कुछ कार्य हमारे ऐसे होते हैं जिन कार्यों में हमारा व्यापार जो है वह सारा जो आधारित होता है, जैसे कि एक ब्यूटिशियन का कार्य है, जो ब्यूटी पार्लर वाली महिला है जो साथ सज्जा का सामान या सौंदर्य से आधारित जो काम करती है, तो उसको बातचीत में परंगत होना चाहिए। यदि वह जिस महिला के सौंदर्य पे कार्य कर रही है, यदि वह उससे बातचीत करती है बहुत अच्छे ढंग से, उसे हर चीज को समझाती है, हर चीज की उपयोगिता बताती है, हर चीज का महत्व बताती है, तो जो दूसरी महिला है जो उसके पास एज ए ग्राहक आई है, अगली बार उसी के पास ही आएगी। ठीक है, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, मैं अपनी बात करूं, देखो मैं बाल कटवाता हूं, ठीक है, बाल कटवाता हूं तो मैं उसी नाई के पास जाना पसंद करता हूं जो बड़े प्यार से बोलता है। बोल तो मेरे घर के आसपास काफी नाइयों की दुकानें हैं, ठीक है, बट फिर भी हम हर बार एक ही नाई के पास जाते हैं। या मान लीजिए आप कहीं से सामान खरीदते हैं, तो ज्यादातर आप देखोगे, ज्यादातर आप एक ही दुकान पे जाएंगे, बार बार उसी दुकान पे जाएंगे। यदि वह दुकानदार आपसे कुछ पैसा ज्यादा भी लेगा तो भी आपको यह लगेगा कि उसी दुकान पर जाना ही आपके लिए लाभदायक है। क्यों? क्योंकि हम यह देखते हैं कि सामान खरीदने के साथ साथ हम जिससे सामान खरीद रहे हैं क्या वह हमसे अच्छे ढंग से बातचीत करता है या नहीं करता है, क्योंकि उसकी जो बातचीत है, जो उसकी बात करने की कला है, वह हमें सम्मोहित कर लेती है। तो हमारी बहनें जो यहां बैठी हैं वह बातचीत करने में काफी अच्छी हैं। मैं पर्सनली जानता हूं, बहुत लोगों से हम बात करते हैं तो महिलाओं की जो वाक्पटुता होती है, महिलाओं की जो बात करने की कला होती है, वह पुरुषों के मुकाबले काफी अच्छी होती है। तो उनकी जो बातचीत करने की कला है वह आपको अपना सामान बेचने में काफी ज्यादा सहायता करती है। इसके साथ साथ हमें कभी संकोच नहीं करना चाहिए। देखिए, मार्केटिंग का पहला नियम यही है कि अपने सामान के बारे में बताते समय कभी संकोच ना करें, मन में कभी संशय ना लाएं, ठीक है, ना ही कभी आपको ऐसा लगे कि मैं बार बार वही चीज बता रहा हूं, हर ग्राहक को बताता हूं और ग्राहक मेरे सामान को पसंद नहीं कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि कोई ग्राहक सामान खरीदना ही नहीं चाहता, तो यदि आप उसे विशेषताएं बताएंगे, उपयोगिता बताएंगे, तो आपकी बातों पर ध्यान न दे। तो हमें निरंतर बिना संकोच किए एक अच्छे तरीके से अपनी चीजों के बारे में ग्राहकों को बताना चाहिए। साफ सुथरा रहें, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। यदि आप मार्केट में जाके सामान बेचते हैं, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं, तो वहां पर कोई भी ग्राहक अगर आपके पास आता है तो ग्राहक पहले ये देखता है कि जो व्यक्ति सामान बेच रहा है वो किस वेशभूषा में है, कैसे बैठा है। यदि आप देखिए, मुझे कुछ खाने का सामान खरीदना, मान ली छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूं, मुझे पानी पूरी खानी है, ठीक है, अब मेरे सामने तीन पानी पूरी वाले ठेले हैं, ठीक है, मैं किसी उस ठेले पर जाना ज्यादा पसंद करूंगा जहां जिस ठेले पर जो पानी पूरी खिला रहा है वह साफ सुथरा व्यक्ति होना चाहिए, हाथ साफ हो, कपड़े साफ हो, क्योंकि तभी देखो आज के युग में कोई भी ग्राहक है वह आपसे तभी बात करना पसंद करेगा, तभी आपकी दुकान पर आना चाहेगा जब आप एक साफ सुथरे होंगे, ठीक है। तो हमें अपने ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा मेहनत तो देखो पहली चीज है, मेहनत के बिना कोई भी व्यापार नहीं चल सकता, ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि आपने एक बार मेहनत कर दी फिर आप मेहनत करना बंद कर दें, तो ऐसा नहीं होता। किसी भी व्यापार को चलाने के लिए मेहनत कश होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिना मेहनत के आप कोई भी व्यापार नहीं चला सकते। इसके साथ साथ हमारा जो उद्देश्य व्यापार का है, लाभ कमाना तो है ही है, लाभ कमाने के साथ साथ ग्राहक की संतुष्टि लक्ष्य है। तो मार्केटिंग में या सामान बेचने में आप जो आपने ज्यादा ध्यान रखना है, एक तो ग्राहक की संतुष्टि, क्योंकि एक संतुष्ट ग्राहक मार्केटिंग से एक संतुष्ट ग्राहक उस पैसे खर्चने से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एक संतुष्ट ग्राहक जब दूसरे ग्राहकों को आपके सामान के बारे में बताएगा तो दूसरे ग्राहक भी आपके सामान के लिए आकर्षित होंगे। तो हमें यह हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम जो भी सामान बेचें, जिस तरह का सामान बेचें, जिस ग्राहक को हम बेचें, वह ग्राहक हमसे संतुष्ट होकर जाए, वह हमारे सामान से संतुष्ट हो, क्योंकि एक संतुष्ट ग्राहक आपका बेस्ट मार्केटिंग वाला पर्सन होता है, क्योंकि वह हर जगह जाकर आपकी बात को बताएगा। इसके अलावा
अगर हम कुछ पैसा खर्च करके मार्केटिंग करना चाहें तो हम कुछ पैम्पलेट छपवा सकते हैं अपने सामान के बारे में, हमें पता है भी इस पर्टिकुलर एरिया के लोग हमारे सामान को खरीद सकते हैं, तो हम उनके घरों पे जाकर एक एक पर्चा फेंक सकते हैं। तो ये कई सारे माध्यम हो सकते हैं। आप देखो वैसे तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं बिल्कुल छोटे स्केल पर, मतलब उन महिलाओं की बात कर रहे हैं जिनके पास ना तो काफी ज्यादा पैसा है, वह जो उनके पास साधन उनके पास है उन्हीं को ही यूज करके, उन्हीं का ही उपयोग करके आत्मनिर्भर होने की ट्राई कर रही हैं। तो यदि कुछ पैसा आ जाता है, यदि हमारा कार्य चलने लग जाता है, तो हम फिर अपनी मार्केटिंग के तरीकों को उसमें बदलाव कर सकते हैं। हम पर्चे छपवा सकते हैं, हम एक बैनर बनवा सकते हैं जिसपे जो भी सामान हम बेच रहे हैं उस सामान से, उससे सामान में क्या क्या है, उस सामान में क्या क्या विशेषता है, जो मार्केट में दूसरा सामान अवेलेबल है वह सामान उनसे कितना अच्छा है, उस सबके बारे में उस पर बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप सामान बेचने की ट्राई करिए, सामान बेचने की कोशिश करनी चाहिए, और जो एक मेहनत कश कार्य है जिसमें काफी मेहनत लगती है, और संतुष्ट ग्राहक को करना हमारा पहला उद्देश्य है। ये हुआ हमारा पहला पार्ट। भाग तीन के दूसरे पॉइंट, जो दूसरी बात हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो होती है, खातों में हिसाब रखना। देखिए हम व्यापार तो शुरू कर देते हैं, ठीक है, और व्यापार शुरुआत करने के बाद शुरुआती दौर पर जब हमारे पास में कुछ जमा पूंजी होती है तो हम उसे खर्च करते हैं। ठीक है, कई बार हमारी बहनें या काफी लोग ऐसे होते हैं जो हिसाब किताब नहीं रखते, और कुछ समय के बाद में उनको यह नहीं समझ में आता कि उनका कितना पैसा किस चीज पर खर्च हुआ और उन्होंने कुल कितना पैसा खर्च किया, और जो अब वह लाभ कमा रहे हैं क्या वह उस उनकी कॉस्ट या उसके खर्चे के अनुरूप है या नहीं है। तो इसमें बहुत ज्यादा न जाते हुए मैं इतना जरूर कहूंगा आपको कि अगर आप कोई भी व्यापार करते हैं तो आप एक अपनी डायरी जरूर बनाइए, एक डायरी अपनी जरूर बनाइए। ठीक है, उस डायरी में कुछ भागों में आप उसे बांट सकते हैं। ठीक है, क्या क्या भाग बना सकते हैं? एक भाग के अंदर तो आप यह देखो, मान लीजिए ये मेरा पहला पेज है, आपने आगे जो लिखना था लिख दिया, ओम नमः शिवाय, भगवान जी का नमस्कार करके अपना स्वास्तिक का चिन्ह बना दिया जो लक्ष्मी माता का प्रतीक है। उसके बाद पहले पेज पर आप ये देखिए, हमने इसके दो भाग कर दिए। ठीक है, एक भाग हुआ हमारा खर्चे का और एक भाग हो गया हमारा आय का। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहां लिखेंगे सारा खर्चा, जो भी खर्चा होता है आपको एक एक करके रोज का खर्चा लिखना है, और यहां हमने लिखनी है आय, मतलब उससे हमें कितने का सामान बिका। मान लीजिए अगर मैं एक महीने की बात करूं तो एक महीने में मैं उस महीने में मैंने जितना भी खर्चा किया वह मैं सारा एक तरफ लिखता जाऊंगा। ठीक है, और जितनी भी मुझे आय हुई सामान बेचने से, जहां जहां से पैसा आया वह मैं सारा यहां पे लिखता जाऊंगा। ठीक है, और महीने के अंत में हम जोड़ कर लेंगे दोनों तरफ का और यह देखेंगे हमें लाभ कितना हुआ। ठीक है, ऐसी अगले महीने आपने करना है। मतलब आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि यदि आपने 100 रुपए व्यापार में लगाए हैं तो 100 रुपए किस किस जगह पे आपने खर्च किए हैं। ठीक है, और यदि महीने के अंत में हमारी जेब में 500 रुपया है तो हमें यह जरूर पता हो कि वह कहां से हमारे पास में आया है। तो इससे हमें दो बातों में फायदा होता है, एक तो हम यह कंपेयर कर सकते हैं, यह हम आपस में तुलना कर सकते हैं कि मान लीजिए जो कच्चा माल मैंने आज खरीदा, अगले महीने अगर मैं वह कच्चा माल खरीदने दोबारा जा रहा हूं तो क्या उसकी लागत में कुछ बदलाव हुआ है या नहीं, उसकी मूल्य बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। यदि मैं कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करूंगा, यदि मैं कोई खाता नहीं बनाऊंगा, तो मैं इस चीज को ढूंढ नहीं पाऊंगा कि पिछले महीने मैंने जो सामान खरीदा था उसकी लागत क्या थी, उसका मूल्य क्या था, और इस महीने जो मैं सामान खरीदने वाला हूं उसका मूल्य क्या होगा। क्योंकि यदि सामान का मूल्य बढ़ रहा है तो हम उसी के हिसाब से अपनी जो वस्तु है, अपना जो सामान है, उसका भी मूल्य बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यदि अगर आपकी लागत बढ़ेगी तो हम अपनी वस्तुओं का मूल्य भी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप इस चीज को जरूर बनाइए, खर्चा सारा लिखो, आय सारी लिखो। ठीक है, इसके अलावा आप यह देखो कि व्यापार चलाने के लिए आपने किन किन चीजों को खरीदा है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे एसेट हैं, एसेट का मतलब होता है कि जो लंबे समय तक हमारे साथ रहेंगे, वह भी उस डायरी में आप एक जगह पर लिखिए क्या क्या सामान आपने व्यापार के लिए खरीदा है। इसके अलावा
आप जब ग्राहकों से मिलते हैं तो जो आपके संतुष्ट ग्राहक है, आप ट्राई करिए, कोशिश करिए उन संतुष्ट ग्राहकों के पते भी आपके पास में हो। यदि ग्राहकों के पते आपके पास में होंगे तो किसी कारणवश अगर कोई ग्राहक आप तक सामान लेने नहीं आ रहा है तो आप अपने सामान को वहां तक जाकर बेच सकते हैं। जैसे जैसे आपका व्यापार आगे बढ़ता है फिर हम और चीजों पर ध्यान देते हैं। मान लीजिए शुरुआती दौर पर हमने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, ठीक है, और 6-8 महीने की मेहनत के बाद में वह व्यापार में काफी वृद्धि हो गई। अब मुझे ये लगता है कि मैं अकेला उस व्यापार को नहीं संभाल सकता क्योंकि ऑर्डर ज्यादा आ रहे हैं और लागत बढ़ रही है, तो मैं अकेला उस व्यापार को नहीं संभाल सकता। तो फिर हम यह सोचते हैं क्यों ना किसी को साझेदार बना लिया जाए, तो फिर हम साझेदारी में आ जाते हैं। तो इस तरह से समय की मांग के साथ साथ, देखो मैं तो अंत में फिर ये कहूंगा, समय की मांग के साथ साथ हमें किस तरह के व्यापार के स्वामित्व पे जाना चाहिए, एकल व्यापार करना चाहिए या साझेदारी का व्यापार करना चाहिए, वह सब बात जो आती है वह बात आती है कि हमारे व्यापार का स्केल कितना है, क्या हमारे व्यापार में वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही है। और जैसे जैसे आपका व्यापार बढ़ता जाएगा फिर आप बैंक में खाता खुलवा सकते हैं, जो पैसा हमारे पास में एक्स्ट्रा होता है, मान लीजिए मुझे पता है कि अगले 6 महीने मेरे पास में इतना पैसा ज्यादा आएगा, फिर पैसा नहीं आएगा, तो वो पैसा मैं अपने बैंक में डाल सकता हूँ जिसपे मुझे कम से कम ब्याज तो मिलेगा ही, ठीक है। उसमें आप अपना फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं, यदि आपका सेविंग खाता है या आपका बचत खाता है तो कुछ ब्याज गवर्नमेंट आपको देती है, सरकार की तरफ आपसे मिलता है, तो इस तरह से आप बैंक खाता खुलवाइए। तो धीरे धीरे एक अच्छे व्यापार की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और यदि इसके बाद

बाद हमें अपना समान बनाना होता है। समान बनाते समय किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसकी पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, इसके अलावा उसका मूल्य निर्धारण कैसे करना चाहिए, और उसके बाद सामान बनाने के बाद उसको कैसे बाजार में बेचा जाए, और बेचते समय हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो हमने सामान बेचा है या जो हमने खर्चा किया है या जो हमारी आय हुई है, उस आय को कैसे एक लेखा के तौर पर एक उसके खाते बनाए जाने चाहिए, एक कॉपी में जरूर, आप एक डायरी में जरूर उसको एंट्री करिए, और धीरे धीरे जब आपका व्यापार बढ़ जाता है तो किन किन बातों का आपने आगे ध्यान रखना है। आशा करता हूं मैं कि इन वर्कशॉप के तीन भाग जो मैंने आपको, आपने जो मेरे तीन भाग देखे, इनको सुनने के बाद आपके मन में यह इच्छा तो जरूर पैदा होगी कि आत्मनिर्भर होना चाहिए आपको। आत्मनिर्भर हुआ जा सकता है। हमारी बहनें, हमारी महिलाएं जो घरों में रहती हैं, जो कम पढ़ी लिखी हैं, जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है और परिवार की जिम्मेवारी भी उनके ऊपर है, तो उन महिलाओं को उन महिलाओं में सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जरूर आना चाहिए कि वह भी आत्मनिर्भर होकर अपने परिवार को पाल सकती हैं और अपना गुजारा कर सकती है। अंत में रीड इंडिया के माध्यम से मैं दिनेश मिगलानी आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने इतनी तत्परता से और इतने अच्छे ढंग से, इतने प्यार से, इतने अच्छे ढंग से मेरे लेक्चर्स को सुना। धन्यवाद। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

हम तीन बहने हैं और मेरा एक छोटा भाई है और घर में कुछ मतलब दो हम सात लोग हैं, मम्मी पापा है। फैमिली इस तरीके से है कि गांव का माहौल वही जो सबका होता है और वही सब कुछ कि घर से नहीं निकलना है। मुस्लिम फैमिली से हूँ और वही घर के हालात मेरी पुप्पो मेरी मामी मेरे मतलब जितने भी फैमिली मेंबर हैं कोई भी इतना पढ़ा भी नहीं है लाइफ में और ना ही कोई इतना बाहर निकला है जितना कि मैं यहाँ तक पहुंच गई हूँ। इस सब में सपोर्ट रहा है मेरी अम्मी जान का जिनको मैं बहुत बहुत प्यार करती हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है। जैसे मेरे और फैमिली मेंबर में क्या करते हैं कि उन्होंने ना ही पढ़ाया अपने बच्चों को और ना ही आगे पढ़ाया और उनकी शादियां कर दी टाइम से, तो हमारे यहाँ भी यही होता है। लेकिन मेरी दिल से इच्छा थी कि मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ करूँ। जब मैं 10 साल की थी तो मम्मी रात को 8 बजे आती थी, किस तरीके से वो हमें खाना बनाती थी खिलाती थी। जब मैं स्कूल जाती थी तो हमारा स्कूल हमारे घर से 15 किलोमीटर दूर था, तो हमारे पास इतना भी अफोर्ड नहीं था कि हम रिक्शा के पैसे भी दे पाए। तो मैं और मेरा छोटा भाई हम दोनों हाथ पकड़ के स्कूल जाते थे और स्कूल से आते थे। कभी कभी मैं इतना थक जाती थी कि मैं सोचती थी कि पढ़ू नहीं, अगर घर वाले शादी कर रहे हैं तो कर दे, क्योंकि मैं 1 बजे आती थी, फिर घर में कामकाज करना, बहन भाइयों को देखना, उनका स्कूल का देखना, उनके खाने पीने का भी देखना। और मम्मी भी बहुत सपोर्टिव थी लेकिन जितना उनसे होता था वो उतना करती थी। इसी तरीके से मैंने कैसे ना कैसे इंटर किया और इंटर करने के बाद मैंने सोचा कि मैं भी कुछ करूं। मम्मी और पापा को तो यही था कि मतलब अब शादी कर दो, फर्क इतनी बड़ी हो गई है, हमारी फैमिली में सबकी शादी हो गई है, अब 16-17 साल की हो गई है, यह है वो है, मतलब उन्होंने बहुत कहा। इसी बीच हमारे गांव में रीड इंडिया सेंटर खुला। जब रीड इंडिया सेंटर खुला

तो वहां पर मुझे पता चला कि लाइब्रेरी है, सिलाई सीखने के लिए लड़कियों के लिए आया है, पार्लर है, कंप्यूटर है और काफी सारी लड़कियां वहां पर, मेरी फ्रेंड थी जो जॉब पर रखी गई। तो जब मुझे पता चला वहां आया है तो मैंने अम्मी से कहा कि मैं वहां सिर्फ घूमने के लिए जा सकती हूँ। तो अम्मी बोली अपने पापा से पूछ लो। पापा ने डायरेक्ट मना कर दिया क्योंकि जाने का था ही नहीं, बस स्कूल से घर, घर से स्कूल और कुछ नहीं। फिर दूसरे दिन मेरी फ्रेंड गई कि फायदा चल रहे, चलो ऐसे घूम ही आते। फिर मैंने पापा से बोला, ज्यादा जिद की तो उन्होंने भेज दिया। सेंटर में जाके मुझे मतलब बहुत ही अच्छा लगा कि वहां पर लाइब्रेरी की बुक्स नाइस से ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों को, वहां ईसीटी में छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां लड़कियां सिलाई सीख रही हैं, वहां कुछ लड़कियां पार्लर सीख रही हैं और मेरी खुद की दो फ्रेंड वहां पर जॉब भी कर रही है। तो मुझे सिलाई और पार्लर में तो शुरू से इंटरेस्ट नहीं था बिल्कुल भी, मुझे था कि कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है और करना है, ये सब चीजें नहीं करना है। तो वहां पर एक ईसीडी की सेक्शन की जगह खाली थी जिसमें टीचर चाहिए थी और मुझसे मतलब जो वहां के सर थे वो बहुत मुझे जानते थे। तो उन्होंने मुझसे बोला कि फरा यहाँ पर ईसीडी की जगह खाली है, अगर आप यहाँ पर करना चाहो जॉब तो कर सकते हो। एक खुशी मिली अंदर से कि कहीं से तो कुछ ऑफर मिला है और मेरी पढ़ाई भी इससे ज्यादा रहेगी, शादी भी घर वाले रोक देंगे और मैं घर वालों के लिए कर सकती हूँ। तो मैंने घर पे जाके वही बात कही और मैंने उनसे कहा सर आप घर पर आइएगा और अम्मी पापा से जरूर कहिएगा इस बारे में। तो पापा से जैसे मैंने कहा, पापा ने डायरेक्ट मना कर दिया कि नहीं, हम रिश्ता देख रहे हैं, शादी करेंगे। फिर वही सवाल, शादी शादी शादी। फिर मैंने उनको घर पे बुलाया, अम्मी से बहुत जिद की, रोई एक दिन में बहुत की अम्मी आप लोगों ने इतना कुछ किया है, मुझे भी कुछ करने का मौका दो। मैं आपसे विश्वास दिलाती हूँ, पूरा भरोसे के साथ दिलाती हूँ कि मैं कुछ ऐसा गलत नहीं करूंगी जिससे आप भी कभी भी मेरी वजह से ना खराब हो या आपको कोई कुछ भी करे। अम्मी ने पापा को मनाया, जैसे तैसे उन्होंने हाँ कर दी और मेरी वहां से एक वो कहते नहीं कि जिंदगी की लाइफ शुरुआत हो गई। ईसीडी से मैंने वहां पर जॉब स्टार्ट की, लोगों को जाना पहचाना। फर्स्ट टाइम जब गीता मैम और शायद नाहिद सर, कमलेश सर आए थे तो मेरी वहां पर फर्स्ट ज्वाइनिंग नहीं थी, मतलब एक थोड़ा सा प्रोग्राम चला था, वहां पर एक नाटक की जरूरत थी, नाटक में एक रोल की जरूरत थी शराबी की। वहीं से मुझे किसी ने खींच लिया और बोला फरा तुम मतलब ये रोल कर दो, मुझे एक बार बताया, मैंने ठीक है करते रहती हूँ। वो फर्स्ट रोल था मेरी लाइफ का कि कुछ मतलब कभी मैंने स्कूल में भी पार्टिसिपेट नहीं करा, तो मैंने वो फर्स्ट रोल किया। वो रोल भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा हुआ, लोगों को बहुत पसंद आया और वहीं मेरा सिलेक्शन हो गया। वहीं मैं गीता मैम से, स्मिता मैम से मिली और दिल बाग बाग हो गया और ऐसा लगा कि हाँ आज जिंदगी की शुरुआत हो गई। और मैम ने ज्वाइनिंग दी और अगले दिन से मेरी वहां पर स्टार्टिंग हो गई। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर में क्या क्या वर्क होता है मैंने कभी नहीं देखा। जब हमें अखिलेश जी ने इंटर पास किया था तो लैपटॉप हमें मिला था, उसमें भी मुझे जानकारी नहीं थी कि कैसे ओपन होता है कैसे बंद होता है। बस हाँ ये खुशी थी कि लैपटॉप मिला है। हाँ भाई गांव में सब लोग मेरे घर आए थे, अरे फरा को लैपटॉप मिला है तो वो देख ले, तब उसकी मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। जब मैं सेंटर में गई वहां पर मैंने कंप्यूटर्स देखे, वहां पर जो टीचर्स थे उनसे मिले, उन्होंने मुझे बताया कैसे ओपन बंद करते हैं, इन सब चीज की जानकारी थी। दिल में तमन्ना उठी कि क्यों अब कंप्यूटर भी सीखा जाए, तो मैंने वहां से कंप्यूटर सीखा, 6 मंथ का कोर्स किया सेंटर से। और कंप्यूटर कोर्स करने के बाद जब मेरा ईसीडी का वहां पर मतलब पढ़ाती गई 6 मंथ हो गए तो मुझे पोस्ट चेंज कर दी गई मेरी और मुझे कंप्यूटर टीचर बना दिया गया। वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था कि मतलब सैलरी भी बढ़ी और मेरी पोजिशन भी चेंज की गई। इसी बीच फैमिली में बहुत ज्यादा गांव वाले बोलते थे कि अरे उसने तो लड़की को निकाल दिया। मेरे मतलब खुद के खानदान वाले बोलते थे अरे वो तो जॉब कराने लगी, अब तो लड़की ने नाक कटवा दी, अब तो बहुत गलत हो गया, अब तो ये हो गया वो हो गया, बहुत कुछ सुनना पड़ता था मेरी फैमिली वाले को। लेकिन कभी भी मेरी फैमिली ने ये नहीं कहा मुझसे कि ये नहीं करना है, ये नहीं होना है या फरा नहीं जाएगी। हमेशा मेरी अम्मी ने एक बार मेरी बात सुनी, उन्होंने उसी में विश्वास कर लिया। फिर हमारा दिल्ली में मैम ने ट्रेनिंग कराई और दिल्ली का नाम सुनके तो मेरे घर वाले ही घबरा गए कि कहाँ दिल्ली और कहाँ आगरपुर, जो 2 मिनट के रास्ता नहीं जाने देते वो कहाँ इतनी दूर जाने देंगे। मैंने अम्मी की डायरेक्ट गीता मैम से बात कराई कि अम्मी मैम से बात करिए, वहां बहुत अच्छा होगा। मतलब मैं भी बहुत एक्साइटेड थी कि निकलूं तो यहाँ से कुछ आगे की दुनिया देखूं, मतलब मन में था कि घर वालों ने इतना करा तो और भी करेंगे। मैम ने जब अम्मी से बात की, उनसे कहा, तो अम्मी ने डायरेक्ट हाँ कर दिया कि ठीक है मैम मैं
खाऊंगी फरा के साथ। फर्स्ट टाइम फर्स्ट ट्रेनिंग में मेरी माँ मेरे साथ आई थी, और जिसमें हमें ये भी नहीं पता था कि दिल्ली की ट्रेन किधर जाती है, कहाँ कैसा होटल होता है, कैसी ट्रेनिंग होती है, मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। वहां से मेरी ट्रेनिंग की स्टार्ट हुई, और मतलब एक आपके सामने आज मैं बोल भी रही हूँ, उस दिन तो मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी कि अपना नाम बताने के लिए। और जब वो ट्रेनिंग मैंने ली, और इतनी सारी ट्रेनिंग मैंने आगापुर सेंटर्स पे ली, तो मेरे अंदर बहुत सारे बदलाव आए और मैं चेंज होती गई। उसके बाद मैंने चार साल तो हम लोग वहीं पर हमने काफी सारी ट्रेनिंग ली। उसके बाद मैंने 25 शायद करवाई, मैम ने वहां पर सेंटर खोल दिया और वहां पर मुझे कोऑर्डिनेटर बना दिया। इस बात की ताली हो जाए प्लीज। इतनी बढ़ गई और मैं कोऑर्डिनेटर हो गई। आगापुर के लोग तो मुझे जानते थे, जहां मैं निकलती थी वहां पर यही बोलते थे कि ये फरहा की मम्मी है, साथ में जो मम्मी जाती थी, ये फरहा के पापा है, ये फरहा का भाई है, ये फरहा की बहन है। तो उस बात से मेरे घर वाले बहुत खुश होते थे। और जब मैं पटवाई गई पहली बार शुभम सर के साथ में, वो जो कार का सफर था ना, वो ऐसा लगता था कि कौन से जंगल में या फिर हम कहां पर जा रहे हैं, फिर हम जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। लेकिन जब वहां का माहौल देखा, वहां पर लोग जानने लगे, वहां पर लोग आने लगे, और वहां पर हमने मतलब हार्ड वर्क करते रहे, तो वहां के लोग बहुत ही अच्छे थे, आगापुर से भी अच्छे थे, और सब कुछ इतना अच्छा होता गया कि शायद आज मुझे पूरी पटवाई के आसपास के 10 किलोमीटर दूर या फिर 15 किलोमीटर दूर के लोग भी जानने लगे। वहां के प्रधान जी हो गए, जिला पंचायत में कोई हो गया, या फिर वहां पर मतलब पुलिस स्टेशन के लोग हो गए, या फिर किसी स्कूल के टीचर्स हो गए या प्रिंसिपल हो गए, ऐसा कोई बंदा नहीं है जो मुझे नहीं जानता है। क्योंकि वही बात की हमें डाटे की जरूरत पड़ती है और हमें मोबिलाइजेशन की भी जरूरत पड़ती है, तो हमें हर कहीं जाना पड़ता है। और मुझे अब किसी के सामने भी हेजिटेशन या शर्म नहीं आती बोलने में, या फिर अपनी डीड के बारे में बताने में, या फिर कोई डर नहीं लगता, क्योंकि हम वर्क ही इतना अच्छा कर रहे हैं कि हर कोई हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है और हमारा साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। आज मुझे लोग इतना पहचानने लगे हैं, जानने लगे हैं, जिसकी मैंने कभी शायद उम्मीद भी नहीं की थी। और मेरे सपने तो बहुत देखे हैं लाइफ में कि मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, लेकिन मेरे सारे सपने भी सच होते हैं। हमेशा गीता मैम का, स्मिता मैम का, मेरी माँ का, इन तीनों का हाथ मेरे सर पर है, और इंशाल्लाह आगे भी होंगे। जब मैंने जॉब स्टार्ट की, तो सबसे पहले सैलरी से मैं अपने माँ बापों के लिए कपड़े लाई थी, क्योंकि माँ बाप ने मेरे कपड़े बहुत बनाए हैं, उन्होंने कभी अपने लिए पता नहीं लिए या नहीं, और एक सपना था कि मैं अपने ही खुद की मेहनत के पैसों से कुछ लाऊं। तो मैं उनके लिए कपड़े लाई थी, उसमें मेरी मम्मी बहुत रोई, उन्हें लगा कि फरहा मेरी बेटी नहीं बेटा है। आज भी उनसे कोई बात करता है तो वो ये नहीं कहती है कि फरहा मेरी बेटी है, वो हमेशा ही कहती है कि मेरा बड़ा बेटा है। मेरा एक सपना था कि मैं अपनी फैमिली की एक छोटा सा घर बनाऊं, अपनी मम्मी पापा को हज भी कराऊं अपनी शादी से पहले। ये सपना तो लड़कों का होता है, लड़के ही कराते, बट जब उन्होंने मुझे लड़का बोला है तो वो मैं सब कुछ करना चाहती हूँ लाइफ में। अभी सब लोग मेरी शादी की बात कर रहे थे, क्योंकि 8 साल हो चुके हैं डेट में, और कहां 8 साल पहले मेरी शादी हो रही थी। तो मेरे घर वाले तो नहीं करते, लेकिन आसपास के लोग बहुत कहते हैं कि फरहा शादी कब करोगी, फरहा शादी कब करोगी। आज ये आ गया है कि फरहा के लिए मेरे मतलब हमारे जो मोमडन इलाका है और जो मतलब कास्ट, उस कास्ट में फरहा के लायक कोई लड़के नहीं है, क्योंकि फरहा ने इतना कुछ कर दिया। पापा जिससे भी बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि शादी के लिए कोई लड़का बताओ, आपने इतनी लड़की को पढ़ा क्यों लिया कि लड़का ही नहीं मिल रहा है। तो पापा बोला क्या करें, लड़की पढ़ ली है, आगे बढ़ गई। और जो लोग कहते थे ना कि जॉब कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, आज वो लोग इतनी तारीफ करते हैं मेरी कि शायद मैंने सपने भी नहीं सोचा था कि मेरे माँ बाप को इतना सीना थोड़ा हो जाता है कि मेरी वजह से। फिर लाइफ में इतना कुछ इंटर किया, बीए किया, एमए किया, कंप्यूटर कोर्स किया, बीटीसी की, मॉडलिंग की, आज टेट सुपर टेट की तैयारी कर रही हूँ, और बहुत आगे बढ़ती गई। सिर्फ किस वजह से कि गीता मैम हमेशा मुझे सपोर्ट करती हुई बोलती, फरहा तुम बहुत कुछ कर सकती हो। और जब मैं ये वर्ड सोचती हूँ और सुनती हूँ, तो मैं कहती हूँ मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। कभी भी मैं दुखी भी होती हूँ ना, तो मैं यही सोचती हूँ कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। फरहा अभी हार नहीं मानना है, जिंदगी में बहुत कुछ किया और अभी बहुत कुछ करना है। इसी बीच लाइफ की जर्नी स्टार्ट हुई और यहाँ तक आ गई। हाँ, छोटा सपना था घर बनाने का। अभी मम्मी बोली कि ये हमने पैसे जमा कर लिए और हम शादी कर लेते हैं, फरहा एज भी हो गई है और ठीक भी है, कहीं देख लेते। मैंने कहा अम्मी शादी तो हो जाएगी, लेकिन मैं इकलौता भाई, उसके ऊपर
जाओगे तो उन्हें कहाँ बिठाओगी? अगला ससुराल वाले तो कहेंगे कि उनको मतलब बिठाने की जगह नहीं, शादी पहले करनी। तो मेरी मम्मी बहुत खुश हुई और अभी लॉकडाउन के बीच में मैंने अपना छोटा सा घर बनाया है जो बहुत प्यारा सा है, बट मेरे लिए बहुत प्यारा है और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैंने उस घर को तैयार करवाया है। अब मेरा बस एक छोटा सा सपना और है कि अभी मैंने अपने पेरेंट्स के लिए हज को और भेजना है, उसके बाद मुझे शादी करनी है, चाहे मुझे 2 साल लग जाए या 3 साल लग जाए या 5 साल लग जाए। मैं सबसे ज्यादा अगर दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ तो रीड इंडिया को देना चाहती हूँ। शायद रीड इंडिया ना आई होती लाइफ में मेरी, और ना मैं यहाँ से यहाँ होती, ना आज मैं यहाँ खड़ी होती और ना मेरी जिंदगी में चेंज होता। और मैं चाहती हूँ अपनी जैसी हजारों लाखों करोड़ों फराए बना दूं कि कभी भी उन्हें किसी भी लड़के को, मतलब किसी भी लड़की को किसी लड़के का मोहताज ना होना पड़े। थैंक यू।

0: I welcome everybody, all our viewers who've joined us today in another inspiring episode of Imbibing Grassroots Leaders. This program is an initiative of Read India supported by Read Connect Council and Folk Brain. Today's guest, as everybody shared, that's Dr. Nidhi Gulati. Welcome, Dr. Nidhi, to our channel.
1: Thank you so much. Thank you, Read India and Read Council, Read Connect Council, for letting me take part in this wonderful episode.
0: So how this journey has been of your childhood, education, what kept on inspiring you?
1: Smita, since childhood, I had a dream. Mera bahut dream tha ki mujhe kuch life mein karna hai. डॉक्टर बनना है एंड माय पेरेंट्स बोथ माय मॉम एंड माय डैड उनका भी बहुत ड्रीम था कि मैं हम अपने बेटी को कुछ अच्छे से एजुकेशन देकर उनको उसको डॉक्टर बनाएंगे एंड वी डिड इट आई डिड इट एंड मैंने डेंटल किया मैंने सुभारती डेंटल कॉलेज से डेंटल का स्टडी किया एंड उसके बाद इट वॉज अ जर्नी ऑफ 5 ईयर्स उसके बाद मैंने आकर अपना गुड़गांव में ही कुछ डॉक्टर के साथ ज्वाइन होकर अपनी प्रैक्टिस शुरू करी थी बट उसके बाद फिर आई गॉट मैरिड टू अ लखनऊ एंड देन आई स्टार्टेड विद द कॉलेज आई वेंट टू द कॉलेज सरस्वती डेंटल कॉलेज एंड हेयर इन लखनऊ एज अ लेक्चरर Then I quit it after 2 years because of my family journey went on. But since childhood, mera bahut dream tha ki main kuch apne life mein banu aur apne society ke liye, apne community ke liye main kuch kar sakun.
0: Ye jo passion tha, isko pura karne ki jo aapne ek zid thi, usko aapne kis tarike se apne haathon mein liya? Kya opportunities aayi aur aapne kaise usko mold kiya? अपने डॉक्टर के जो रोल था उसको आपने कैसे मोल्ड किया एक सोशल इंस्पायरिंग लीडर के रूप में
1: स्मिता व्हेन आई गॉट इनटू अ फैमिली वे तब मैंने कुछ नहीं किया था आई वाज एट होम बिकॉज़ डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू स्टे एट होम बट आफ्टर माय डॉटर वाज बोर्न समायरा वाज बोर्न इनिशियली आई डिडंट वर्क फॉर बिकॉज़ आई वाज लुकिंग आफ्टर हर मैं उसकी देखभाल कर रही थी एंड वो छोटी थी तो आई कुडंट लीव हर एट होम आफ्टर एन ईयर एंड अ हाफ और टू रीड इंडिया केम टू माय लाइफ एंड विद माय हस्बैंड सपोर्ट सौरभ का बहुत सपोर्ट था मेरे साथ कि आप ज्वाइन करो आपने कुछ नहीं अब डेंटल में कुछ नहीं किया एंड यू बिकमिंग बीइंग अ डॉक्टर आप डॉक्टर हो तो आपको अपनी लाइफ में कुछ करना चाहिए एंड रीड इंडिया इज एन एनजीओ जहां पर आप हेल्थ को लेकर अपना कर सकते हो तो ही वाज अ बिग सपोर्टर बाय माय साइड एंड मैंने किया मैं रीड इंडिया को ज्वाइन किया इनिशियली आई वेंट टू गोसाईगंज एंड बाराबंकी सेंटर्स टू गिव द हेल्थ सेशंस टू द कम्युनिटी वर्कर्स देयर इटसेल्फ और बहुत इंस्पायर किया मुझे ये चीज मुझे एक अंदर से बहुत पैशनेट था कि मैं ऐसे लोगों को अपनी एजुकेशन अपनी अंदर का एक एजुकेशन है अपनी अंदर की एक सोच मैं उनको बता रही हूँ कि हाँ आप ये कर रहे हैं आपको ऐसे करना है अपनी हेल्थ के साथ आपको हाइजीन मेंटेन करनी है आपको साफ सफाई रखनी है और मैंने उनको बहुत समझाया 2 साल तक मैंने उनको बहुत एजुकेशन दिया हर एक बेसिक हेल्थ एंड हाइजीन पे और बहुत सारी डिजीजेस पे भी मैंने उनको बहुत समझाया एंड नाउ वो इतना अपनी उसको इतनी लाइफ में फॉलो करते हैं एंड दे कॉल मी कि मैम आपका समझाया हुआ इतना काम आ रहा है आजकल कि थैंक्स टू यू टू गिव मी सच एन एजुकेशन टू अस
0: डू यू वांट टू शेयर सम
1: मैं अपनी डॉटर को स्कूल छोड़ती थी मतलब शी वॉज इन अ प्ले ग्रुप मैं अपनी डॉटर को प्ले ग्रुप में छोड़कर देन आई यूज टू गो टू गोसाईगंज वहां पर मैं सेशन लेती थी हेल्थ का और लाइफ स्किल का उसके बाद जो स्कूल का टाइम होता था मैं कम्युनिटी पे डिवोट करती थी एंड देन आकर मैं अपनी डॉटर को पिक कर कर घर आकर देन आई यूज टू स्पेंड टाइम विद हर. सो ये जो टाइम था जो कम्युनिटी के साथ था वो मेरी फैमिली ने सपोर्ट दिया कि नहीं आपको कुछ करना है आप जाओ वी विल टेक केयर ऑफ द होम. डॉक्टर मेरी स्कूल में थी मैं कम्युनिटी पे देन आई यूज टू पिक हर अप फ्रॉम द स्कूल एंड टेक हर बैक टू होम और फिर अपना टाइम डॉटर के साथ स्पेंड करना.
0: वेरी नाइस. आप ये जो पिक्चर्स हैं इनके बारे में आप कुछ हमारे व्यूअर्स को यू वांट टू एक्सप्लेन वेयर दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पिक्चर अबाउट द कम्युनिटी.
1: दिस इज गोसाईगंज. ये गोसाईगंज की पिक्चर्स हैं. यहाँ पर मैंने अराउंड 200 अबव औरतों को हेल्थ के बारे में शिक्षित किया है. यंग गर्ल्स को हम लोगों ने लाइफ स्किल्स के बारे में बताया है. ये गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं जिनको मैंने प्यूबर्टी के बारे में बताया था. लड़कियां हैं जिनको कुछ नॉलेज नहीं थी प्यूबर्टी एंड मेंसेस के बारे में उनको मैंने शिक्षित किया था. इसमें ऐसे बहुत सी प्रोग्राम सेशंस मैंने हेल्थ के ऊपर गोसाईगंज वालों के साथ लिए हैं जहाँ पर मैंने उनको हेल्थ एंड हाइजीन डेंटल हाइजीन एंड आपका डेंटल डिजीजेज ओरल हेल्थ के डिजीजेज बिकॉज डेंटिस्ट थी तो मैं इसका ज़्यादा इनको बता सकती थी. पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे मैंने बहुत सेशंस लिए थे यंग गर्ल्स के साथ गोसाईगंज में. या मैंने ये वाला जो फोटो है ये हमने हैंड वॉश के ऊपर सेशन लिया था बीच गांव में जाकर जहां पर लोग आ नहीं पा रहे थे सेंटर में. सो आई वांटेड टू टेक अ सेशन विद देम.
0: एंड इफ आई एम नॉट दिस वाज बिफोर कोविड.
1: दिस वाज बिफोर कोविड.
0: हमें कोई अंदाजा भी नहीं था आज दुनिया में ऐसा कोविड सा कुछ आएगा. तब से हम ये हेल्थ के वॉश के सेशन आपके थ्रू कर रहे हैं.
1: एग्जैक्टली ये हम बिफोर कोविड के बारे में था एंड अब जब कोविड आया है तो ये सारी इंफॉर्मेशन इन लोगों के पास है. सो दे आर वेल अवेयर कि हमें कब हाथ धोने चाहिए कैसे हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए कैसे अपने आसपास की सफाई रखनी चाहिए.
0: ये आपकी दिखा रहे हैं. तो आज का जैसे कोविड का टाइम है अभी ऑफलाइन से हमें ऑफलाइन से तुरंत ही ऑनलाइन मोड पे आना पड़ा. सो जो हमारी कम्युनिटी से कनेक्ट था फिजिकल हमारी विजिट्स और हमारा जो फिजिकल कनेक्ट बना हुआ था उसको हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके आए थ्रू योर सेशंस जिसमें आपने कई तरीके के सेशंस होस्ट करे हैं एज अ डॉक्टर. वुड यू लाइक टू शेयर अबाउट दोस सेशंस.
1: मैंने बहुत अभी नॉट इन गोसाईगंज या लखनऊ मैंने बाकी सारी रीड इंडिया सेंटर्स जो अलग अलग जगह भी सिचुएटेड हैं उनके साथ भी हेल्थ सेशंस लिए हैं कोविड के ऊपर साफ सफाई के ऊपर हेल्थ के ऊपर हाइजीन के ऊपर हैंड वॉश के ऊपर एंड आपको कैसे प्रिकॉशंस लेनी है कोविड में क्या क्या आपको करना चाहिए ये सब चीज़ें मैंने ऑफलाइन अब जूम के थ्रू कोविड जब चल रहा था तब सारी इंफॉर्मेशन बेनिफिशरीज को दिया था. ये वाला जो फोटो आप अभी देख रहे हैं ये वुमेन्स डे था इंटरनेशनल वुमेन्स डे. दिस इज ऑल्सो बिफोर कोविड पिक्चर जहाँ हमने बाराबंकी का पिक्चर है ये जहाँ हमने वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया था.
0: सो आप अपना बैक जर्नी बताना चाहेंगे हाउ यू मेक योर कंटेंट सूटेबल फॉर देयर अंडरस्टैंडिंग एंड हाउ यू ब्रिंग दैट एस्पेक्ट टू देयर अंडरस्टैंडिंग लेवल्स.
1: स्मिता मैं कहना चाहूंगी कि इनकी इनके सोच तक जाने के लिए आपको खुद इनके साथ लगना पड़ता है. तो मैंने इनके साथ पहले बातचीत करी इनसे पूछा कि इनको किस चीज के बारे में कौन सी हेल्थ के बारे में इनको जानकारी चाहिए. आपको इनकी नॉलेज जितनी नॉलेज है उसके बारे में पता होना चाहिए. देन आई मेक माई कंटेंट फ्रॉम दैट कि इनको उसी इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है नॉट टेकिंग द डेंट आपका पूरा मेडिकल टर्म्स ना लेकर बहुत बेसिक टर्म्स यूज कर सारा हमने मैंने अपना कंटेंट बनाया था चाहे वो मेंसेस के ऊपर हो चाहे प्यूबर्टी या कोई सिंपल एक डिजीज मलेरिया डेंगू के बारे में भी कंटेंट जो बनाया था बहुत सिंपल लैंग्वेज में यूज किया था बिकॉज इनकी समझ ही उतनी है जितनी क्योंकि ये लोग पढ़े नहीं होते तो समझ भी थोड़ी होती है, तो इसलिए उस समझ को सोच कर वही कंटेंट मैंने इनको एक्सप्लेन किया था, नॉट यूजिंग द मेडिकल टर्म्स.
0: So would you like to share about the center that you opened in Lucknow, the community, how you opened that center? चैलेंज क्योंकि कोविड में वो सेंटर खुला था, क्या चैलेंजेस आए वो, उसके बारे में आपको क्लियर करना चाहते हैं.
1: स्मिता, जब वो सेंटर खुला था दैट वाज दिस नवंबर 2018, एंड मार्च दिसंबर से कोविड आना शुरू हो गया था. तो मैंने वो सेंटर जब खोला था तब हार्डली वी गॉट 3 मंथ्स बेनिफिशरीज के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, उनको बताने के लिए कि हम रीड इंडिया क्या क्या काम करता है एंड हम लोग यहाँ पर आए हैं तो हम किस मोटिव से आए हैं. पर वो सेंटर खुला और 3 मंथ्स के बाद जब कोविड आया तो बहुत एक बैकलॉग हो गया था. हमने बहुत मुश्किल से बेनिफिशरीज को अपने फोन के थ्रू कांटेक्ट कर कर उनको जूम के बारे में समझा कर कि ऐसे आपको लिंक करना है, ऐसे आपको लिंक खोल कर आपको क्लासेस लेनी है. सो वी एंड विद माई टीम, नो डाउट माई टीम इज सो हार्ड वर्किंग, कि विद माई टीम आई स्टार्टेड दैट थिंग. उनको जूम एक्सप्लेन करना, पहले जूम के ऊपर बताया, एक सेशन लिया, फिर एक सेशन हमने लिया कि आपको कैसे जूम के थ्रू एंटर कर कर आपको अपनी अपनी क्लासेस लेनी है. सो माई टीम वर्कर्स डू दैट, अपनी क्लासेस वो लेते थे. पहले टीम को समझाना, फिर बेनिफिशरीज को समझाना. समहाउ वी मैनेज टू, कोविड में हमने ये किया था. इट वॉज अ बिग चैलेंज टू अस. आई होप ये तो सबके लिए था बट हमने इसको किया एंड हमने अपने चैलेंजेस को मीट करकर, हमने काफी ट्रेनिंग्स देकर आज बहुत लोग वी एक्ट के थ्रू जो ट्रेनिंग्स दी थी हमने उसमें अपना काम कर रहे हैं. दे आर अर्निंग वे.
0: Nidhi, would you like to share about the women who've become financially independent or who've started to earn something out of this particular, livelihood component of your skilling?
1: आई वुड लाइक, स्मिता, मेरे यहाँ पर एक औरत है जिसने जिसके हस्बैंड का केटरिंग का काम था. कोविड के दौरान केटरिंग पे सबसे ज्यादा इफेक्ट आया था, तो उसने अपना एक स्टिचिंग खोला था, ब्यूटी खोला, साथ ही साथ उसने पार्लर भी खोला. एंड कोविड के दौरान ये उसने ऑनलाइन या अपने क्लाइंट के थ्रू उसने अपने अर्निंग करी. नाउ द सिचुएशन इज दैट कि उसके पास 2 पार्लर हैं एंड 2 ब्यूटीक है. शी इज अर्निंग वेल ऑफ बिकॉज उसके हस्बैंड का केटरिंग का बिजनेस इतना कोविड के दौरान ठीक नहीं चल रहा था.
0: Wonderful, Nidhi. I think it's the right time to call our mentor on the screen. We would like to invite Dr. Geeta Malhotra, our mentor, and we welcome her on the show.
2: Nidhi, I am very confident that you handle the community one by one. It's not that you were handling 20 women altogether, because 20 women were thinking what they can imbibe and what they cannot imbibe. But your topics were so important that you wanted to instill everything into their minds, because it in turn takes a shape of behavioral acceptance. How you handle this challenge?
1: आई वुड लाइक टू से, मैंने उनके कम्युनिटी में जाकर उनकी पहले लाइफ हिस्ट्री के बारे में समझकर, क्योंकि लाइफ स्किल के सेशंस जब मैं लेती थी तो वो अपनी प्रॉब्लम्स मेरे से शेयर करते थे आकर, तो जब उनकी प्रॉब्लम्स को मैं समझती थी तो मैंने उस पे डेप्थ पे सोचा कि इनको ज़्यादा एडवांस स्टडी ना देकर बेसिक स्टडीज पे अगर हम इनको एजुकेशन देंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अभी इन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं देखा है. अपनी जिंदगी को वो वहीं कंस्ट्रेन कर देते हैं, 4 लोगों के बीच में या 10 लोगों के बीच में. और इनको मोटिवेट करना कि आप आगे जाकर कुछ करो, आपने आगे जाकर कुछ करना है, तो पहले मैंने उनको लाइफ स्किल्स के बारे में बताया. वो स्किल्स इनकी एनहांस कर कर देन आई टुक इट टू हेल्थ की मेरे को इनको अब हेल्थ के बारे में जानकारी देनी है, क्योंकि अगर ये बाहर जाएंगे तो ये अपनी हेल्थ को भी मेंटेन करें, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी को भी इनको एनहांस करके, क्योंकि आगे जॉब करनी है या कुछ कॉलेज में भी एडमिशन लेना है, सो दे नीड टू एनहांस देयर पर्सनालिटी. सो यू नीड टू गिव अ सर्कल कि आपको पहले लाइफ के बारे में जानकारी देनी है, देन हेल्थ, देन देयर पर्सनालिटी. So this all three together worked.
2: Community health workers, you as a coordinator and medical doctors whom we enrolled on our programs, you made a bridge between the communities as well as the medical doctors who were addressing COVID prevention precautions and the medicines they had to take. Would you like to reflect on that, how you played that role?
1: जब मैंने उनको ट्रेनिंग्स दिया था कम्युनिटी हेल्थ के ऊपर, तब काफ़ी क्वेश्चंस मेरे ऊपर, मतलब उन्होंने मेरे से पुट करे थे कि मैम हम कैसे करेंगे ये सब. देन मैंने उनको बताया था कि आप अपनी कम्युनिटी पे, अपने गांव में जो आशा वाली हैं या आशा दीदीज हैं, आंगनवाड़ीज हैं, उनके साथ जाकर बात करो, उनको बताओ कि हम लोगों को ऐसी ट्रेनिंग्स मिल रही है और हम आपके साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं. सो उन्होंने जाकर आशा दीदी, आंगनवाड़ीज के साथ बात करी, डॉक्टर्स के साथ जाकर बात करी, कम्युनिटी के साथ जाकर बात करी. नाउ दे आर कमिंग अप विद कि उनको ये इस किसी भी एक बीमारी के बारे में जानना है. तो मैंने डॉक्टर्स उनको बोला, डॉक्टर्स से संपर्क कर आप अपनी बीमारी के बारे में उनसे पूछ सकते. एंड आशा दीदी के साथ आपको कॉन्टैक्ट रखना है, बिकॉज बच्चे हैं, उनको किस टाइम पे इम्यूनाइजेशन चाहिए, किस टाइम पे आपको प्रेग्नेंट लेडी को डॉक्टर्स को दिखाना है, आयरन कब देना है, ये सब जानकारी मैंने कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स में ट्रेनर्स को दी है.
2: बहुत सारे ऐसे लोग हैं कम्युनिटी में जिनके पास मोबाइल एक्सेस नहीं है एंड दे कैन नॉट लिसन टू योर प्रोग्राम्स व्हाइल सिटिंग एट होम. Then how do you invite those women to your center and the children so that we can create a commonality? We should not discriminate between the haves and have-nots. So how did you handle that?
1: मैंने जब कोविड के दौरान अपना सेशंस लेने, जिनके पास मोबाइल नहीं थे, तो मैंने औरतों को स्टाफ के साथ मिलकर मैंने औरतों को बुलाया. 10-10 के ग्रुप्स में औरतें आती थी, सेंटर आती थी, एंड दे यूज टू मेंटेन सोशल डिस्टेंस एंड वेयरिंग मास्क. हमने ऑनलाइन मैंने उसको सेशंस दिए थे एंड उन्होंने भी बहुत इसको सीरियसली लेकर सेशंस लिया एंड अपनी लाइफ में उसको अपनाया. कोविड में मैंने उनको सेशंस लिए कोविड के बारे में, क्या आपको खाना चाहिए, कैसे प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या सेफ्टी रूल्स मेजर करने चाहिए आपको. तो उनको ये सेशंस बहुत इंफॉर्मेटिव लगे थे जब कोविड आया था.
2: नाउ व्हाट आई अंडरस्टैंड कि पूरी हेल्थ का भार समुदाय के ऊपर है अभी, और उनको क्या चाहिए, एक समझ चाहिए, एक राइट इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट नॉलेज चाहिए और राइट कॉन्टेंट चाहिए डॉक्टर्स के साथ, जो उनको ट्रस्टवर्दी इंफॉर्मेशन दे सके और राइट काइंड ऑफ मेडिसिन एट राइट टाइम दे सके व्हाइल सिटिंग इन देयर होम्स ओनली. दे डोंट वांट टू गो टू द हॉस्पिटल, दे डोंट वांट टू टॉक टू एनीवन एल्स एक्सेप्ट द पर्संस हु आर ट्रस्टवर्दी. सो वेयर डू यू स्टैंड इन द होल प्रोसेस व्हिच आई हैव शेयर्ड.
1: इस टाइम पे हमारे पास सेंटर पे ही ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर्स हैं, बीपी मशीन्स हैं, वी हैव अ थर्मामीटर्स. सो जिनको हमने ट्रेनिंग दी है वो उनको हम ये मशीन्स देते हैं, जिसकी भी घर में कोई प्रॉब्लम्स है आप चाहे आप उनका चेकअप करें, आप मेरे को आकर बताएं, देन आई कैन गिव देम बेसिक मेडिसिन जो उनको नीड में. वी आर गिविंग द फुल फैसिलिटीज कि अगर वो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, जो ट्रेनर्स हैं कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स के, वो ये इक्विपमेंट्स लेकर जाकर उनका चेकअप कर सकते हैं एंड दे कैन टेल मी व्हाट इज द सिचुएशन. ये करने में वी आर पेइंग टू देम, हम कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को इसको पे करते हैं उनको कि आप आग जा रहे हो तो आप इसको पेमेंट्स ले कर,
2: और फिर आप डॉक्टर्स को कनेक्ट करके कंसल्ट करके देन यू कनेक्ट देम विद द डॉक्टर, राइट?
1: एग्जैक्टली.
2: सो दैट इज द वंडरफुल इनिशिएटिव, आई शुड से दैट रीड इंडिया इज गेटिंग डन फ्रॉम द कम्युनिटी लीडर्स लाइक दिस.
0: थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस एंड टेकिंग द टॉक टू डॉक्टर नीति फर्दर.

नमस्कार, आज का टॉपिक है मकोई और उसके बेनिफिट। दोस्तों, मकोई ब्लैक नाइट और नाइट शेड काकमाची और भटकोइया पिलपोटन भी कहते हैं। ये एक छोटा सा पौधा है जो भारतवर्ष के छाया युक्त स्थानों में हमेशा पाया जाता है। मकोई में पूरे वर्ष फूल और फल देखे जा सकते हैं। मकोई में शाखा युक्त 1.5 फुट तक ऊंची तथा शाखाओं पर उभरी हुई रेखाएं होती हैं। इसके पत्ते हरे, अंडाकार या आयताकार, दंतुर या खंडित, 2 से 3 इंच लंबे, 1.5 इंच तक चौड़े होते हैं। फूल छोटे, सफेद वर्ण रंग, बहिकक्षीय फूल दंडों पर 3 से 8 के गुच्छों में नीचे झुके होते हैं। मकोई का फल छोटे, चिकना गोलाकार, अपरिक्व अवस्था में हरे रंग के और पकने पर नीले या बैंगनी रंग के, कभी कभी पीले या लाल होते हैं। बीज छोटे, चिकने, पीले रंग के, बैंगन के बीजों की तरह होते हैं, परंतु बैंगन के बीजों से बहुत छोटे होते हैं। पकने पर फल मीठे लगते हैं। दोस्तों, अब बताता हूँ कि मकोई किन किन बीमारियों में फायदेमंद है। मकोई पंचांग, जड़, तना, पत्ता, फूल और फल के काढ़े का सेवन गठिया का दर्द, सूजन, खांसी, घाव, पेट फूलने, अपच, मूत्र रोग में फायदा पहुँचाता है। कान दर्द, हिचकी, जुकाम, आँखों के रोग, उल्टी और शारीरिक कमजोरी में भी लाभ होता है। इसके पत्ते एवं फल का सेवन से पेट का अल्सर ठीक होता है। इसके बीज भ्रम, बार बार प्यास लगने, सूजन और त्वचा रोग में फायदेमंद है। मकोई की प्रकृति डायूरेटिक होती है। अगर आपको कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि किसी कारणवश आपको रात में नींद नहीं आती या फिर काफी डर लगने लगता है, तो मकोई का सेवन करना नियमित रूप से शुरू कर लें। इससे आपको चिंता आदि कम करने में भी राहत मिलती है। इसमें चिकित्सीय गुण होते हैं जो ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने में मदद करते हैं। मकोई में फाइटोकेमिकल्स होते हैं और साथ में ही एंटीमाइक्रोबियल गुण होते हैं, जिससे यूटीआई बार बार नहीं होता है। मकोई का सेवन करने से वेजिनल सेक्रेशन और यूरिन आउटपुट में इजाफा होता है। इससे शरीर के अंदर मौजूद सारे बैक्टीरिया बाहर आने में मदद होती है, जिस कारण सारे बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स फ्लश आउट हो जाते हैं और अगली बार यूटीआई होने का रिस्क भी कम हो जाता है। दोस्तों, अब बताता हूँ कि किस रोग में कैसे प्रयोग करें। मकोई के पत्ते, पान का पत्ते तथा हल्दी से पेस्ट बना लें। इसका लेप करने से पुराने घाव, चोट लगने से होने वाले घाव, रोम छिद्र की सूजन, मवाद वाले घाव, दाद, खाज, हर्पीज आदि, एंथेक्स आदि में लाभ होता है। मकोई के पके फल को मधु के साथ सेवन करें, इससे टीबी की बीमारी में फायदा होता है। मकोई फलों को पीसकर सुखा लें, इसे गर्म करके लेप के रूप में लगाएं। इससे शरीर के सभी अंगों में होने वाले सूजन में लाभ होता है। मकोई के सेवन से हमारी किडनी हेल्दी रहती है। अगर किसी को बार बार पेशाब आने की समस्या हो, किडनी एरिया में सूजन की समस्या हो, तो मकोई का रस या मकोई से बहुत अधिक लाभ होता है। ये फाइबर से भरपूर फल होता है, इसीलिए पेट को साफ रखने में मददगार होता है। मकोई फल खाने के साथ साथ 10 से 15 मिलीग्राम मकोई के अर्क को रोज पिलाने से किडनी में सूजन, किडनी के दर्द तथा किडनी रोगों आदि बीमारी में लाभ मिलता है। आजकल कैंसर की समस्या एक चिंता का विषय बन चुकी है। मकोई के फल में कैंसर रोधी गुण होते हैं। मकोई कैंसर सेल्स के डेवलपमेंट को रोकता है। ये ट्यूमर के निर्माण को रोकने के लिए भी लाभकारी बताया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या में मकोई का सेवन प्रभावी हो सकता है। इसमें हाइपोग्लाइसेमिक इंडेक्स होते हैं, जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करके डायबिटीज को मैनेज करने के लिए जाने जाते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण कई घातक स्वास्थ्य समस्याएं होने का खतरा बढ़ जाता है। मकोई से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है और कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी नियंत्रित रहता है, जिससे हार्ट स्ट्रोक और हार्ट डिजीज का खतरा कम हो जाता है। पीरियड क्रैम्प्स में महिलाओं को दर्द और ऐंठन का सामना करना पड़ता है, जो बहुत असहनीय होता है। ऐसे में वह पेन किलर्स का सहारा लेती है। दर्द निवारक दवाइयों पर निर्भर होने की जगह आप इस शक्तिशाली जड़ी बूटी का इस्तेमाल कर सकती है, खासकर मकोई बेल। मकोई फल में ब्लैक नाइट शेड होते हैं, जिनमें एंटीपायरेटिक एजेंट मिलते हैं, जिनको पेन किलर में उपयोग किया जाता है। यह जल्दी दर्द में राहत दे सकते हैं। लीवर तथा तिल्ली के रोगों के लिए मकोई स्वरस, भूमि आंवला स्वरस यथा पुनर्नवा स्वरस का सेवन अति उत्तम अकाट्य उपचार है। तो दोस्तों, है ना मकोई फायदेमंद आपके और हम सबके लिए

0: और मैं ग्रेट नोएडा तुगलकपुर गांव से आती हूँ। और यहाँ पे सर मैं आई थी मतलब अपने बच्चों का ही एडमिशन कराने के लिए, और मुझे पता लगा कि यहाँ पे लेडीजों को भी पढ़ाते हैं, तो मैं यहाँ पे कम से कम एक साल करीब पढ़ी हूँ सर यहाँ पर। फिर सर यहाँ पे मार्क्स वगैरह बने थे तो उन चीजों वो भी हम लोगों ने निकाले थे, तो हमें सर ने मार्क्स दिए बनाने के लिए, हम लोग यहाँ मार्क्स बनाते थे। तो कम से कम उसमें हमने 15-16 हजार रुपए का काम किया था सर 2-2.5 महीने में। तो सर मैंने अपनी बेटी को एक फोन दिलाया उससे, मेरी लड़की तो 12th में पढ़ती थी, हमारे पास फोन वगैरह कुछ नहीं थे, तो मतलब बेटी भी बहुत खुश हुई और मुझे भी लगा कि मैंने कुछ मेहनत की है, तो उस मेहनत से मैंने अपनी बेटी को फोन दिलाया सर, मेरी बेटी बहुत खुश हुई। कभी सोचा भी नहीं था सर कि हम लोग मतलब हम भी पैसे कमा सकते हैं, कभी नहीं सोचा था हमने। तो पहली बार जब हमें पैसे मिले थे यहाँ से मार्क्स बना लेके, बहुत खुशी हुई थी सर सच्ची में, इतनी खुशी हुई थी कि मतलब हम लोग घर में इतनी सालों से ऐसे ही पड़े हैं, अगर हम पहले ऐसा कुछ सोचते तो आज हम कहाँ से कहाँ होते।
1: मेरा नाम सुषमा है, मैं रहती हूँ तुगलकपुर में, मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ी एक साल में, तो आज लगा मेरे पे पढ़ना। तो अब मैं फिर अब ये सेंटर खुल गया था इसका सिलाई करती, मुझे अच्छा लगा, पैसे कमाए, मास्क भी बनाए थे मैं सर मैंने, तो पैसा भी कमाया था 4,000 रुपये मैंने कमाया यहाँ पे। एक फोन खरीदा मैंने अपने पैसों से और घर वाले को दे दिया मैंने।
2: मेरा नाम मोनी है और वो पार्लर का कोर्स किया, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ बिल्कुल भी। फिर मुझे मतलब बोलने में कंफ्यूज रहती थी कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, फिर मुझे यहाँ के बारे में किसी ने बताया यहाँ पढ़ाई वढ़ाई भी होती है, फिर मैं यहाँ किसी के थ्रू आई, फिर मैंने यहाँ से पढ़ना सीखा, काफी कुछ सीखा यहाँ से। फिर मुझे यहाँ पे बिनटेक से पार्लर वालर भी मिला, काफी कुछ काफी हेल्प मिली मुझे यहाँ से। पहले मुझे सर किसी से भी पैसे वैसे लेने में मुझे डर लगता था, मैं काम कर लेती थी, मैं सोचती थी कैसे मांगू पैसे इससे, कैसे नहीं, अपने पैसे मांगने में मुझे डर लगता था, पर अब वो चीज नहीं है, अब मैं मांग लेती हूँ सीधे। तो काफी कुछ चीजें यहाँ से सीखने को मिली है, मेरा जो डर था वो यहाँ पे आके सारा निकल गया है।
3: सर मेरा नाम मिथिलेश है, तुगलपुर में रहते हैं। पहले हम बोलना भी नहीं झिझकते थे, बहुत ज्यादा डरते थे कि हम ये देखो लेडीजों के साथ, क्यों गांव के आदमी ऐसे ही है, नहीं जाने देते, नहीं बोलने देते। थोड़ी हमारी झिझक खत्म हुई यहाँ से, थोड़ा हम अपने आप को संभालने लगे, वो कहने लगे अपने लिए जीना सीखो, कब तक ऐसे दबके रहोगे। तो हम थोड़ा सा आने लगे यहाँ पे, फिर पढ़ने लगे, पढ़ाने लगे, हम पे कुछ नाम वाम कुछ नहीं आता था, अब तो हम नाम भी थोड़ा मिला मिला के किताब भी पढ़ लेते हैं। लॉकडाउन में बहुत हालत खराब थी, हम पे मास्क मशीन चलाना नहीं आता था, फिर मैं उस पर लड़की ने मेरे चलाया सिखाया, फिर बेटी ने और मैंने हेल्प बहुत ली यहाँ से, फिर उन्होंने मार्क्स दिए, उससे मार्क्स बनाए हमने 10-12 हजार रुपए कमाए थे सर। हाँ, तो उससे मैंने 1 महीने का राशन उससे लिया था, मेरे हस्बैंड की बहुत दिमाग की हालत ऐसी थी, उनसे दवाई गोली ली उनसे सर, बहुत हेल्प हुई हमारे इसमें।
4: मेरा नाम संध्या सिंह है, मैं वाराणसी की हूँ, यहाँ तुगलपुर में रहती हूँ। मैं यहाँ सिलाई सीखने के लिए आती हूँ अभी, और पढ़ने भी आती थी, थोड़ा अच्छा लगता है, माइंड फ्रेश हो जाता है, सबके बीच में रहना, अलग अलग चीजें सीखने को मिलती हैं। और बाकी अगल बगल मेरे यहाँ जो भी रहती हैं, अगर खाली बैठी हैं तो मैं उनको बोलती हूँ चलो कुछ टाइम पास हो जाएगा, मान लो कुछ सीखने को भी, यहाँ पे आने का मतलब कुछ सीखने को तो जरूर ही मिलता है।
2: जून में हुआ कि अनलॉक होने लगा, तो काफी लोगों का डिमांड आने लगी कि मैम पैसे नहीं है, घर नहीं चल रहा, कैसे करे क्या करे। तो लगा कि उनको सपोर्ट करने के लिए लॉकडाउन में, तो हम लोगों ने जो गरीब लेडीज थी उनको हमने एनवलप का एक वो दिया कि हमको रख भी दे के आते थे, वो एनवलप बनाते थे, हम उनकी एनवलप मेकिंग देते थे, क्योंकि ऐसे हम उनको कैसे वो करते तो पेमेंट देते। तो हमने सोचा कि आइडियल फॉर्म में एक स्मार्ट फॉर्म में हम लोग पेमेंट देते तो उनकी, जिससे उनकी उसको भी ना कोई लगे चोट लगे। तो फिर वहां से हम लोगों को ख्याल आया कि अब कैसे इनको अर्निंग करी जाए, तो देखा कि मास्क की डिमांड बहुत है मार्केट में। तो एक हमारे यहाँ लेडीज थी बेनिफिशियरी थी गीता, तो हम लोगों ने उनसे पूछा कि गीता क्या तुम मास्क बना सकती हो। गीता ने कहा मैम मेरे को यूट्यूब दिखाइए, हम लोगों ने बैठ के यहाँ यूट्यूब देखी और यहीं पर बैठ के हम लोगों ने एक दिन एक डेमो मास्क बनाए, एक बनाया अच्छा नहीं बना, दूसरा बनाया अच्छा नहीं बना, तीसरे चौथे में हमारी बड़ी अच्छी फिनिशिंग आ गई। तो हम लोगों ने जब दूसरों को दिखाया बाहर वालों को, तो उन्होंने बड़े अच्छे रिव्यूज दिए कि नहीं नहीं बड़ा अच्छा लग रहा है यार, ये तो ऐसे लग रहा है मार्केट में बनाया। तो हम लोग भी बड़े मोटिवेट हुए, वहां से हम लोगों ने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, 1000 मास्क बनाते हैं और उनको कुछ पैसा मिलेगा। वो 1000 की हम लोगों का टारगेट था और हम लोगों ने करीबन 20,000 मास्क हम लोगों ने बनाए और उससे लोगों को फर्स्ट टाइम हम लोगों ने अर्निंग कराई।
5: कोविड में जिस समय सारा दुनिया बंद थी, लोगों के रोजगार छूट रहे थे, एक अवसाद में लोग बम जा रहे थे और उनके पास में रोजगार के साधन खत्म से होते जा रहे थे, खासतौर से लोअर मिडिल क्लास, वो इसमें सबसे ज्यादा सफलर था। ऐसे समय में रीड इंडिया और कुछ अन्य संस्थाएं साथ में आई और हमने यहां मास्क बनाने का कार्य, पहले प्रशिक्षण दिया इन महिलाओं को और उसके बाद में इनसे मास्क बनवाए गए, जिससे इन 3 महीनों में लगभग 20 परिवारों को औसतन 5,000 रुपए प्रति परिवार की आय में बढ़ोतरी हुई। ये बहुत बड़ा अमाउंट तो नहीं है, लेकिन ऐसे समय में जबकि कुछ भी नहीं हो रहा था, सारा बंद पड़ा था, तो ऐसे समय ये बहुत बड़ा सहयोग था।

ग्रीड इंडिया के माध्यम से अब यहां पर एडवांस प्रोग्राम्स इन आईटी जैसे साइबर सिक्योरिटी, ऑडियो एंड वीडियो मेकिंग डॉक्यूमेंट्रीज, टैली, इस तरीके के कई प्रोग्राम, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स जो है रीड इंडिया ने यहां लॉन्च किए हैं। उन्होंने अपने ट्रेनर्स हमको प्रदान किए हैं एवं कई अन्य प्रकार की भी सहायता वो प्रदान कर रहे हैं, जिससे कहना चाहिए फाइनेंशियली वीकर सेक्शन है उसको एक बड़ा फायदा होने वाला है।

So today I am going to talk about, do we realize our own potential? See, we feel low sometimes. We feel less energetic. We feel lethargic. We feel demotivated. Our thought process go negative. तो क्या हम हर समय रियलाइज करते हैं कि हमारा पोटेंशियल क्या है? क्या मैं बस इसी सीमित दायरे में ही काम करना चाहती हूँ या मैं इस दायरे से बाहर भी निकलना चाहती हूँ? तो ये जो रियलाइजेशन है एक लीडर को, वो हमेशा अपने सामने ये क्वेश्चन रखना ही चाहिए, कभी भी इस क्वेश्चन को भूलना नहीं चाहिए। बहुत सारे प्रेशर्स आते हैं, बहुत सारी नेगेटिविटीज आती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, पर अगर ये क्वेश्चन हम अपने सामने हमेशा रखें कि डू वी रियलाइज आर ओन पोटेंशियल, बिकॉज अपने दायरे को हम लिमिट नहीं करें, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। व्हेन वी से दैट वी आर लीडर्स एंड वी वांट टू बिकम लीडर्स, इस क्वेश्चन को जरूर याद रखना है। तो जो ट्रू लीडर्स हैं, दे लर्न टू राइज अबव देयर सर्कमस्टांसेस। कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, लीडर्स को अपने आप को ट्यून करना है उसके ऊपर उठने के लिए। कुछ बुरा नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है, कुछ गलत नहीं है, कुछ नहीं है। लीडर्स को हमेशा इंट्रोस्पेक्ट करना है और एनालाइज करना है। मैं आगे प्रेजेंटेशन में आपको इसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगी। तो हमें हमेशा अपने जो सर्कमस्टांसेस है उससे ऊपर उठना है। दे डू नॉट अलाउ एडवर्सिटी टू डैम्पन देयर ड्रीम्स ऑफ मेकिंग इट बिग। जो लीडर्स है वो हमेशा विजनरी होता है, वो बहुत दूर अंदेशी होता है, वो दूर की सोचता है। तो जो भी एडवर्सिटी होती है, द सिचुएशंस अराउंड अस शुड नॉट लेट आर ड्रीम्स गो डाउन द ड्रेन। हमें अपने ड्रीम्स को अब बहुत ऊपर उठा के रखना है, एंड देन वी हैव टू राइज आर सेल्फ अबव द सर्कमस्टांसेस विच आर हैम्परिंग आर ड्रीम्स। ये हमेशा हमारी कोशिश होनी चाहिए और हमें करना भी है। वी हैव टू डू दैट। What happens at retreat centers? We provide opportunities to those who deprive themselves to learn under any circumstances. See, when I say that you are the leaders in the community, of course you are the leaders because you are the visionaries among those who even don't know themselves. आपको ये पता है ना कि आप उनके साथ काम करते हैं जिनको अपने बारे में भी नहीं पता वो क्या हैं, उनके अंदर कितना पोटेंशियल है, वो क्या कर सकते हैं। तो यू पीपल आर द विजनरीज फॉर देम, एंड द वुमेन डजंट रियलाइज द पोटेंशियल दे हैव। सो वंस दे कम टू द लाइब्रेरी, विच इज ऑफ कोर्स अ मैजिकल प्लेटफॉर्म फॉर देम, they want to learn stitching, they want to learn beauty and culture, they want to learn computers, they want to bring their children to the library. So many things they want to do together, but under adversities. घर के काम का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, नेगेटिविटी, हस्बैंड की लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बच्चों का प्रेशर, बट they are also somewhere we have to make them leaders of their own life. So once given the chance, many women and girls have learned multiple skills. They have beliefs what they can do. And earlier, most of these women were having beliefs that they cannot do. Is it the truth? मेरा ये कहने का मतलब है कि जो औरतें आती हैं सेंटर पे, उनको पहले अपना पोटेंशियल नहीं पता था। वो ये सोचती थी कि ये सब कुछ हमारे लिए नहीं है, हम सीख ही नहीं सकते, हम टाइम ही नहीं निकाल पाएंगे, हमारे घर का इतना प्रेशर है, हमारी फैमिली का इतना प्रेशर है। बट इन सारी एडवर्सिटीज में से निकल कर वो सेंटर पे आई और उन्होंने सीखा, एक स्किल में रजिस्टर करने के बाद
उन्होंने बहुत सारी और भी स्किल्स सीखने की जिज्ञासा रखी और वह अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं। तो क्या ये सच्चाई है? सच्चाई है ना, आप लोग सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये सब चीजें, राइट? सो इन अ वे व्हाट यू आर डूइंग, मैं आपको बता रही हूँ लीडरशिप क्या है और आप इनडायरेक्टली उनको भी बता रहे हो लीडरशिप क्या है। तो दे आर बिकमिंग द मास्टर्स।

0: सोसाइटी में मेनी पीपल से कि दिस इज नॉट फॉर मी, आई एम नॉट मेंट फॉर दिस टू डू, आई एम, मैं बहुत ही अभी यंग हूँ, बहुत लाइफ पड़ी है, मैं कभी भी कर सकती हूँ. या फिर हम कहते हैं कि हम अब बूढ़े हो गए, अब हमें क्या करना है ये करके, लाइफ तो चली गई, अभी क्या सीख के करेंगे. बट इट्स नेवर लेट. वी ग्रो अप बिलीविंग आर लिमिटेशंस और आर वीकनेसेस. हम अपनी पूरी जिंदगी हम उसी में निकाल देते हैं, अपनी सोच को छोटा रख के, लिमिटेशन में रख के, अपने दायरे को छोटा करके, और ये हमारी वीकनेसेस बन जाती हैं. आर बिलीव्स मेक अस लिमिट आर अचीवमेंट्स. और इसका क्या इफेक्ट होता है कि जो हमारी सोच है वो हमारी अचीवमेंट्स के आगे एक दीवार बन के खड़ी हो जाती है, और हमारी जो अचीवमेंट्स है वो लिमिटेड हो जाती हैं. आप एग्री करते हैं जो मैंने ये 4-5 पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं? ये बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट्स रखे हैं जो हम करते हैं, मैंने उसी को प्रेजेंटेशन में डाला है. डू यू एग्री विथ मी? एनीबॉडी कैन अनम्यूट द माइक एंड से
1: जी यस मैम, आई एम एग्री। यस
0: हाँ.
1: मैम,
0: हाँ, आपको पता है ना कि यही होता है जब औरतें, अब सबके सबकी आंखों के सामने एक मूवी चल रही है कि औरतें कैसी थी पहले, अभी सेंटर में आई, हम लोगों ने उनके साथ इंटरेक्ट किया, उनकी सोच बदल गई, और उनकी सोच बदलने के बाद अब वो मल्टीपल चीजें सीखना चाहती हैं. पर एक्चुअली में क्या होता है कि हम अपनी सोच को इतना लिमिटेड कर लेते हैं कि वो हमारी वीकनेस बन जाती है और हमारी अचीवमेंट के आगे रुकावट आ जाती है. आपने बहुत बहुत लोगों से सुना सुना होगा. मैं तो अपनी लाइफ में ये करना चाहता था पर मैं कर ही नहीं पाया, मैं कुछ और करना चाहती थी पर मैं इस प्रोफेशन में आ गई, मैं तो सर्विस करना चाहती थी पर फैमिली में मैं लाइक आई बिकेम अ हाउसवाइफ, मेरे को तो डॉक्टर बनना था पर मैं तो टीचर बन के रह गई. ये सब क्या नतीजे हैं कि हमने अपनी जो सोच है, जो हमारी बिलीव्स है, जो हमारा विश्वास है अपने ऊपर, आत्मविश्वास को कहीं ना कहीं एक लिमिटेड दायरे में कर लिया और वो हमारी वीकनेस बन गई और हमारी अचीवमेंट्स जो है वो लिमिटेड रह गई.
1: ही राइट मैम, एग्जैक्टली ऐसा। मतलब एक्सपीरियंस में पिछले 2 साल से कर रही हूँ। मेरे सेंटर पे जो लड़कियां आ रही हैं या वुमेन्स, तो वो कुछ इसी तरह का कुछ मेरे आगे सवाल रखती हैं कि हम तो ये बनना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ आकर उनको हमारे सेंटर पे इतना फायदा हुआ, उनको उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा हुआ और कुछ करने की क्षमता उनको यहाँ से मिली।
0: बिल्कुल बिल्कुल. और ये सबके साथ है, उन औरतों के साथ भी है, कहीं ना कहीं हमारे साथ भी हुआ है,
1: जी मैम, जी
0: ना
1: जी
0: कहीं हमारे साथ भी हुआ है. तो मैं यहाँ पे ये भी एक पॉइंट मेंशन करना चाहूंगी कि इट्स नेवर लेट. मैंने अपनी फर्स्ट प्रेजेंटेशन में ये एक सेंटेंस लिखा था कि टाइम को लिमिटेड मत समझिए, टाइम को बॉन्डिंग मत समझिए, कभी भी किसी भी टाइम पे आप सब कुछ सीख सकते हैं. मैं एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पे बताती हूँ, मतलब इट्स मैंने किसी बुक में पढ़ी थी, किसी फॉरेन कंट्री के बच्चे की स्टोरी है, पर मैं आपको बड़ी सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ कि एक बच्चा था, वो उसके घर में म्यूजिक बहुत चलता था, मतलब कि क्लासिकल म्यूजिक अगर वो सुन रहा है तो वो उसके पेरेंट्स बात करते थे, ये तबला है, ये तानपुरा है, ये हारमोनियम है, ये गिटार है. वो नेचुरली जब आप देखते हैं कोई म्यूजिक कंसर्न तो सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजते हैं तब गाना बजता है, ऐसे ही होता है ना. पर इंडिविजुअल बंदा जो सीखता है वो एक बंदा एक इंस्ट्रूमेंट पे बैठ के सीखता है, कभी भी आप गाने के कोई भी प्रोग्राम देखिए तो ऐसे ही होता है. पर वो जब बच्चा छोटा था उसने कहा कि इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं, दैट मीन्स विजुअली उसने वो देखा नहीं था कभी, उसने कहा कि ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स इकट्ठे ही बज रहे हैं और एक सिंगल आदमी बजा रहा है. और उसने अपने आप को इतना कमिट कर लिया वो सीखने के लिए, तो वो एक हाथ से तानपुरा बजा रहा है, दूसरे हाथ से हर

0: बजा रहा है, अपने गले में उसने गिटार डाली हुई है और अपने पैर से वो ड्रम बजा रहा है। उसने कभी ये सोचा ही नहीं था कि ये सब कोई इंडिविजुअल बजाते हैं। तो सी द काइंड ऑफ बिलीफ ही हैड, और वो वर्ल्ड क्लास म्यूजिशियन बना सिर्फ इसी प्रैक्टिस पे कि उसने अपनी जो सोच थी वो एक दायरे में नहीं रखी, उसको इतना बड़ा कर दिया कि मुझे तो सब कुछ ही सीखना है, और वो सब कुछ ही इंडिविजुअली करा। और क्या अकॉम्प्लिश करा कि 5 लोग जो 5 इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, वो अकेला ही 5 इंस्ट्रूमेंट्स बजा के ही बिकेम द वर्ल्ड रेनाउंड म्यूजिशियन। तो ये हमारी सोच पे डिपेंड करता है कि हमने करना क्या है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं, इफ यू वॉन्ट टू चेंज द आउटकम इन योर लाइफ, यू नीड टू स्टार्ट बाय चेंजिंग योर बिलीव्स। वो स्टोरी बिल्कुल फिट हो रही है इस सेंटेंस से कि अगर हमें अपने लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करना है, आउटकम्स मतलब कि जो हम काम करते हैं उसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है, तो अगर वो हमने उसका दायरा बड़ा करना है तो हमें अपनी सोच को बदलना होगा, उस दायरे को भी बड़ा करना होगा। अ लीडर कैन हेल्प द टीम अचीव इट्स पोटेंशियल बाय कॉन्स्टेंटली चैलेंजिंग द टीम मेंबर्स टू डू मोर, बाय स्ट्रेचिंग देम एंड हेल्पिंग देम ब्रेक थ्रू देयर लिमिटेशंस एंड स्टार्ट बिलीविंग इन देयर एबिलिटीज। ये सेंटेंस हमारे पे सब पे बहुत लागू करता है। कोई भी लीडर है, हम सब लीडर हैं, हम सब किसी ना किसी से कुछ ना कुछ काम करवाते हैं, राइट? और अगर हम अपनी टीम मेंबर्स को हमेशा चैलेंज करते रहें कि इससे आगे बढ़ना है, अभी आपने ए अचीव किया है तो ए प्लस बी अचीव करना है, फिर ए प्लस बी प्लस सी अचीव करना है। आप ट्रेनिंग्स में भी ऐसे करते हैं ना, आप 3 महीने के प्रोग्राम को वीकली डिवाइड कर लेते हैं और उसको एक एक हफ्ता सिखाने के बाद इसका 3 महीने का कोर्स कंप्लीट करते हैं, और उसके जो चैलेंजेस आते हैं, फॉर एग्जांपल बच्चा बीमार है, घर में कुछ काम है, खुद की तबीयत ठीक नहीं है, पर हम उसको मोटिवेट करते हैं कि नहीं, ये तो 3 महीने का कोर्स है, तुम्हें पूरा करना ही करना है, तुम जैसे मर्जी आओ। हम उसको काउंसिल भी करते हैं, हम उसको बोलते हैं कि यू रिजॉल्व योर इश्यूज पर डोंट लीव दिस ट्रेनिंग। तो हम क्या हेल्प कर रहे हैं उनको, हम उनकी लिमिटेशंस को ब्रेक करते हैं और उनको विश्वास दिलाते हैं कि यू कैन डू एंड यू मस्ट डू, राइट? यही आप कर रहे हैं। तो यही मैं आपको बता रही हूँ कि एक लीडर की क्वालिटी क्या होती है। तभी मैं बार बार बोलती हूँ कि आप सब लीडर्स हैं, सिर्फ आपको अपने अंदर जो लीडर छिपा हुआ है उसके पोटेंशियल को रियलाइज करना है, और यही टाइटल है मेरी स्लाइड का, डू वी रियलाइज आर ओन पोटेंशियल। अब आप आज से कुछ भी करेंगे, पहले उसको रियलाइज करेंगे कि यस आई एम अ लीडर, मेरे को दूसरों की लाइफ चेंज करनी है, मुझे दूसरों में आत्मविश्वास बढ़ाना है, मुझे दूसरों को हेल्प करना है, काउंसिल करना है उनके चैलेंजेस को दूर करने के लिए। देखिए, काउंसलिंग एक बहुत बड़ा कोर्स है। एक होता है कि मैं काउंसिल कर रही हूँ, काउंसलिंग होती है कि उस बंदे को उसी की बातें सुनकर उसको हेल्प करना अपना डिसीजन लेने के लिए, राइट? हम डिसीजन नहीं थोपते हैं काउंसलिंग में, हम काउंसलिंग में उसके साथ इस तरीके से बातचीत करते हैं, उसको उस पॉइंट पे लाते हैं कि वो अपने डिसीजन खुद ले, राइट? तो जो लीडर है वो भी कुछ हद तक ऐसे ही काम करता है। दूसरों के अंदर जो लीडरशिप क्वालिटीज छिपी हुई हैं, जो उनकी एबिलिटीज छिपी हुई हैं, उनको हम उभारने की कोशिश करते हैं और उनके पोटेंशियल को हम इंक्रीज करते हैं। पर वो हम तभी कर पाएंगे ना जब हम अपने पोटेंशियल को रियलाइज करेंगे कि वेयर डू वी स्टैंड, राइट? सो व्हेन यू आर नॉट एबल टू डू, योर माइंड गेट्स कंडीशन टू लुक फॉर डिफिकल्टी इन अपॉर्चुनिटी. देखिए सेंटेंस बहुत मीनिंगफुल है कि जब हम नहीं कर पाते हैं तो हम डिफिकल्टीज का बहाना बना लेते हैं. ओ मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ, मेरे पास ये भी बहुत दूसरी प्रायोरिटीज हैं. तो हम क्या करते हैं, अपने गोल को शिफ्ट कर देते हैं. हम अपने गोल में और अपने में एक बहुत बड़ा डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं. हम अपने आप को एट्यून कर लेते हैं उन उन सारे इश्यूज को लेके. तो हम उस कार्यक्रम में अपॉर्चुनिटी ना ढूंढते हुए हम डिफिकल्टीज को मद्देनजर रखते हैं, अपने आगे रख लेते हैं और अपनी अपॉर्चुनिटी को गवा देते हैं, राइट? बट व्हेन यू आर एबल टू डू, योर माइंड लुक्स फॉर अपॉर्चुनिटी इन डिफिकल्टी. पर जब हम पूरे ऑड्स को, ऑडिटीज को और एडवर्सिटीज को रिजॉल्व करके हम कुछ अचीव कर लेते हैं तो उन्हीं डिफिकल्टीज में हमें अपॉर्चुनिटी नजर आती है. सो व्हाट इज दिस, इट्स ऑल माइंड्स गेम. ये पूरे आपके सोच का, आपके मन की एक गेम है, आपका थॉट प्रोसेस है, आपके अपने बिलीव्स हैं और आपका अपना कॉन्फिडेंस है. तो अब आप खुद ही मास्टर बन गए इन सारे 5 पॉइंट्स को सोचने के ऊपर. जब ये स्लाइड्स आपके पास आएंगी, आप इन 5 पॉइंट्स को बार बार पढ़िए और अपने आप को एनालाइज करिए, और जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं उनको भी एनालाइज करिए, और इन 5 पॉइंट्स को मद्देनजर रख के, हर इंडिविजुअल फर्क है, जो आपके पास सीखने के लिए आ रहा है आप उसी तरीके से उसको काउंसिल करिए, उसका मनोबल बढ़ाइए और उसको बोलिए कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं. और लीडरशिप क्वालिटीज, इट्स नॉट ए एकेडमिक डिग्री. अब मैं क्यों बोल रही हूँ कि आप दूसरों के साथ काम करिए, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटीज करने से आती हैं. आप सोच लो, आप थीसिस पढ़ लो, आप जो मर्जी कर लो, पर जब आप प्रैक्टिकली नहीं इसको करोगे तो ये क्वालिटीज कहीं ना कहीं आपसे दूर जाती जाएंगी और आप इनको प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे. तो लीडरशिप क्वालिटीज जो होती हैं वो डे टू डे प्रैक्टिस में लाने की जरूरत होती है. तभी मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि आप जिन लोगों के साथ काम करते हैं उनके साथ प्रैक्टिकली आप ये सब करिए, आपकी अपनी लीडरशिप क्वालिटीज शार्पन हो जाएंगे. जब हम अनसक्सेसफुल होते हैं, राइट, बहुत ये मैं बिल्कुल आज बिहेवियर को लीडरशिप के साथ लिंक कर रही हूँ, तो हम क्या करते हैं कि हम दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं. आप बच्चे से ले लीजिए, बच्चे के मार्क्स कम आते हैं ना, पेरेंट्स पूछते हैं इस बार मार्क्स क्यों कम आए, तो वो बच्चा ब्लेम किसको करता है, दूसरों को करता है. वो अपने आप को ब्लेम नहीं करता. वो कभी भी आपने उसके मुंह से ये नहीं सुना कि मैं नहीं पढ़ा जितना मुझे पढ़ना चाहिए था. वो कोई ना कोई और बहाने ढूंढेगा, दूसरों को ब्लेम करेगा. और ये फैमिली लाइफ में भी होता है. व्हेन वी आर अनसक्सेसफुल वी टेंड टू ब्लेम अदर्स, दोज हु आर अराउंड अस, एंड फाइंड एक्सक्यूजेस फॉर अस. इज इट ट्रू? कोई जवाब देगा? ये होता है सबके साथ या मेरे साथ ही होता है?
1: जी मैम, बिल्कुल होता है, बच्चे भी यही करते हैं।
0: है ना?
2: वेरी वेरी वेरी वेरी ट्रू मैम.
0: हाँ, तो ये इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है. और इसमें हमें क्या करना है, परसिवरेंस इज द फोर्थ वर्ड अलोंग विथ पैशन, हंगर एंड डिसिप्लिन वी हैव टू ऐड. परसिवरेंस क्या होता है, एक चीज को बार बार करना, बार बार करना, वो इतनी बार करना कि वो आपकी हैबिट बन जाए. ये हमारी सोच पे भी मतलब कि हमें असर करता है, हमारी लैंग्वेज में भी असर करता है, हमारे बिहेवियर में भी असर करता है, हमारे एटीट्यूड में भी असर करता है और हमारी प्रैक्टिस में भी असर करता है जो हम काम करते हैं. आप शुरू से देखिए, एक बच्चा है वो बहुत गंदा लिखता है, हैंडराइटिंग ये अच्छी नहीं है. हम उसको तरह तरह के हैंड राइटिंग बुक्स ला कर देते हैं कि इसकी हैंड राइटिंग अच्छी हो जाए, हैंड राइटिंग अच्छी हो जाए। हम प्रैक्टिस करवाते हैं हर एक चीज की। जब बच्चा बोलना सीखता है हम उसको एक एक वर्ड दिन में 20 बार बुलवाते हैं। क्या करवा रहे हैं? प्रैक्टिस करा रहे हैं कि वो उसका लाइफ का एक पार्ट बन जाए। ऐसे ही जब हम बड़े होते हैं हम ग्रो करते हैं, और अगर हमें अपने में लीडरशिप क्वालिटीज लानी है तो लीडरशिप की क्वालिटीज जो हैं उनको हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। और अगर हम नहीं सक्सेसफुल हो रहे, ये तो कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि आपने आज एक अच्छा काम किया और आप लीडर बन गए, आपके बहुत सारे चैलेंजेस भी आएंगे। पर अगर हम कॉन्टिन्यूसली ये सब करते जाएंगे, परसिवेरेंस से करेंगे, परसिवेरेंस रखेंगे, तो नो डाउट अबाउट दैट आपको अचीवमेंट मिलेगी, आप सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। दैट इज द मंत्रा। सो इफ यू डू दैट सक्सेस इज श्योर टू कम। दैट मीन्स कॉन्टिन्यूड एफर्ट्स टू डू समथिंग टू अचीव सक्सेस। सो यहाँ तक तो क्लियर है? बिल्कुल, ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल सेशन है आज जो मैं ले रही हूँ, बिकॉज मैं बहुत ये इन सब चीजों पे स्ट्रेस करना चाह रही थी कि हम डे टू डे लाइफ में हम कैसे अपनी लीडरशिप क्वालिटी एक्शन में लेकर आए, राइट? सो हम हमेशा, हमारी लाइफ में सब गुडीज गुडीज नहीं होता है, दो वी एक्सपेक्ट कि सब अच्छा ही हो, बट हमें अच्छा करना है, अच्छा एक्सपीरियंस करने के लिए। ये बात जरूर याद रखिएगा, हमें अच्छा करना है, अच्छा एक्सपीरियंस। क्वालिटीज होती है कि हमें अपनी लाइफ में अच्छा ही करना है, सो दैट इन रिटर्न भी हमें अच्छा आए और हम सोसाइटी में दूसरों की हेल्प करें। तो देयर विल बी टाइम्स व्हेन यू फील क्रश्ड, स्टैम्प्ड, और योर गोल और ड्रीम गोज डाउन द ड्रेन। ऐसे होता है ना, बहुत ही डिमोटिवेटेड होते हैं, हमने बहुत मेहनत से कुछ किया पर उसका कुछ फल नहीं आया। हम बोलते हैं कि हमारा गोल ही शैटर्ड हो गया, पता नहीं क्या हो गया। सेल्फ वर्थ, जो आपकी सेल्फ वर्थ है, जो आप कर सकते हैं, उसको इन फेलियर से कभी भी नीचे नहीं आने दें। एवरी टाइम यू रेज योर हेड एंड से अभी नहीं तो कल, इस समय नहीं तो अगले समय, कभी भी उसको नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। ये लीडरशिप क्वालिटी का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। रिमेम्बर यू आर स्टिल द टेरिफिक पर्सन यू वर जब आपने काम किया था, आपने यू वर द वेरी अमेजिंग पर्सनालिटी, पर अगर आपको सक्सेस नहीं मिली तो आप अपने आप को कभी भी डीमीन नहीं करिए। आप वही हो जो आप पहले थे, वही आप में पोटेंशियल है, वही आप में एनर्जी है। अगर अचीवमेंट आज नहीं मिली तो कल जरूर मिलेगी, ये विश्वास अपने माइंड में आप हमेशा बनाए रखिए। जस्ट बिकॉज समवन चूजेस टू क्रश यू, दैट डज नॉट चेंज योर वर्थ वन बिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने 10 स्केल फॉर्मूला बनाया था उसमें भी मैंने ये पॉइंट रखा था, एंड आई ऑलवेज टॉक टू मैनी पीपल ऑन दिस पॉइंट कि अगर कोई आपको डीमीन करता है, क्रश का मतलब वही है डीमीन करना, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बिहेवियर के अंतर्गत हम जीते हैं, दैट डज नॉट चेंज योर वर्थ वन बिट। एक पॉइंट भी आपकी वर्थ पे उसका इफेक्ट नहीं आना चाहिए। आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड माइंड पे आता है, साइकी पे आता है, बट यू अट्यून योर माइंड लाइक दैट कि नेक्स्ट मोमेंट यू आर सो कॉन्फिडेंट बिकॉज यू ऑलवेज रियलाइज योर वर्थ। यू आर अ टेरिफिक पर्सन, यू हैव ऑल द क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप। सो अपनी सेल्फ वर्थ को कभी भी कम नहीं होने दें। नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, ये आपका मंत्र होना चाहिए, राइट? आज मैंने जितनी भी स्लाइड्स, मैंने कम स्लाइड्स बनाई थी, पर मैंने इनको इस तरीके से डिजाइन करा था कि ये जो आपकी लाइफ के साथ डायरेक्टली लिंक हो। अब हम थोड़ी सी होली बुक्स में लीडरशिप के बारे में क्या कहा गया उन क्वालिटीज को भी जान लेते हैं, राइट? हम जो भी होली बुक्स पढ़ते हैं या जो भी मॉरल बुक्स पढ़ते हैं, उसमें ट्रूथफुलनेस एक फर्स्ट पॉइंट आता है। व्हेन वी आर ट्रू वी डू, द एनवायरमेंट अराउंड अस आल्सो बिकम ट्रूथफुल। व्हेन यू आर पॉजिटिव, योर एनवायरमेंट बिकम पॉजिटिव, योर बॉडी एनर्जीज बिकम पॉजिटिव, और जो आपके अंदर लाइक व्हाट शुड आई से, दो जो फीलिंग्स होती हैं वो भी पॉजिटिव होती हैं, और जो आप काम करते हो वो भी पॉजिटिव एनर्जी से करते हो, तो एंड रिजल्ट भी पॉजिटिव आता है। डू गुड टू अदर्स, गुडनेस ग्रोज एंड ऑलवेज कम बैक। सब जानते हैं इस चीज को, राइट? हेल्प अदर्स इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। सक्सेस लाइज इन योर ओन स्ट्रेंथ। सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है। हमारे सामने बहुत सारी चीजें ऐसे आती हैं कि हम अनड्यू एडवांटेज उठा लें, हम अनडिजर्व्ड क्रेडिट ले लें, हम कहीं कुछ ऐसा गलत कर लें, पर जो लीडर होता है उसका सेल्फ कंट्रोल होना बहुत बहुत जरूरी है। डिफाइनिंग द गोल एंड योर ओन रिजोल्यूशन। गोल तो डिफाइन कर लिया, पर अपने आप को कमिट नहीं करा तो हम गोल नहीं अचीव कर पाएंगे। सो डिफाइनिंग द गोल एंड योर ओन रिजोल्यूशन विल हेल्प टू अचीव द गोल। एडहेयर टू द लॉज एंड रेगुलेशंस। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं और हमें हर एक चीज का पता होना चाहिए कि एक जो ह्यूमन जो सोसाइटी है उसमें कौन से रेगुलेशंस हमें फॉलो करने हैं, कौन से लॉज फॉलो करने हैं, ये हमें नॉलेज होनी चाहिए। लास्टली, गुड कर्मास डू हेल्प टू वॉक ऑन द स्टेयर्स ऑफ सक्सेस। अगर हम अच्छे कर्म करते जाएंगे, अच्छे काम करते जाएंगे, तो जो सामने सीढ़ियां हैं हमारे, हमारी जो वॉक है, जो हमने क्लाइम करना है सीढ़ियों को, वो सक्सेस की तरफ ही जाएगा, हम नीचे नहीं गिरेंगे। That's all I just wanted to say today. I hope you correlated each and every word. आपने हर एक word को अपने साथ जोड़ा, अपनी community के साथ जोड़ा जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, और इसको आप practice भी करेंगे, right? Thank you so much.

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: कैसे हैं सभी लोग?
1: गुड मैम, गुड है मैम। गुड
0: गुड आफ्टरनून
1: आफ्टरनून
0: मैम। बहुत गर्मी के बाद बहुत अच्छी बारिश हो रही है। ठीक
1: और सब कैसे हैं? ठीक
0: है मैम।
1: है। कोई और कैसे हैं?
2: गुड आफ्टरनून मैम, सब ठीक है? आप कैसी हैं मैम? गुड
1: सब ठीक है जी। और कैसे हैं सब?
3: आफ्टरनून मैम, हम
1: मैम
3: अच्छे
1: अच्छे। गुड अच्छे हैं। और कैसे
4: मैम
1: हैं?
4: अच्छे हैं। आपको देख के थोड़ी एनर्जी फील होने लगी अब।
1: एनर्जी है। और कैसे हैं सब?
5: ठीक है मैम। कुछ
1: ठीक हैं। और कैसे हैं सब? क्या इमोशन है इस
5: है
1: वक्त?
5: मैम, बहुत बढ़िया।
1: बढ़िया है। और कैसे हैं?
5: मैम को आज सबकी वॉइस सुननी है।
1: मुझे ये जानना है सब हैं कैसे। अभी तक मुझे ये पता है कि पांच छह लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं।
3: मैम सब कुछ ठीक है, बट मौसम खराब है तो गला खराब हो जाता है मैम
1: ठीक है,
3: सबका।
1: लेकिन गला खराब है, थोड़ी तबीयत खराब है, लेकिन वैसे ठीक है ना?
3: मैम
1: आपको सिर्फ सुनना है, ज्यादा बोलना तो है ही नहीं, तो कम से कम वीडियो ऑन कर सकते हैं, है ना? कैसे हैं? मेरे को अभी भी जवाब नहीं मिला है। सिर्फ ठीक है, अच्छे हैं, चार पांच लोगों ने बोला है यहाँ पे, तो 30 से ज्यादा लोग हैं। कुछ तो और महसूस कर रहे होंगे, कुछ कोई तो होगा जो अच्छा नहीं फील कर रहा है कि सब अच्छे हैं।
4: सब अच्छे हैं मैम।
1: सब अच्छे हैं। यहाँ कुछ प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं, स्वर्णा जी आपके साथ, मेरे ख्याल से आपका ही आंखें दिख रही हैं शायद, है ना?
3: हाँ
1: हाँ जी। बच्चे कैसे हैं आप लोग? सांगले,
3: सांगले अच्छे हैं।
1: सांगले का
3: मराठी
1: क्या
3: में
1: मतलब?
3: बात करते मैम वो
1: हाँ, तो सांगले का क्या मतलब होता है? अच्छे
3: अच्छे हैं हम सब।
1: हैं, सब अच्छे हैं। और कैसे हैं? महाराज
3: तुम्हें
1: आपके पीछे मुझे
3: बोला
1: है तो सब अच्छे हैं, ठीक है। अच्छे के अलावा और किसी को नहीं पता कि वो कैसे हैं, उनका फीलिंग कैसा है, आज मन में क्या है। जब हम किसी से मिलते हैं, पूछते हैं अच्छा और कैसे हो, तो हम बोलते हैं सब ठीक है, या फिर जैसा ऋतु जी ने बताया सब ठीक है लेकिन मौसम खराब है तो थोड़ी तकलीफ हो रही है, देर से पहुंचे कि जहां पहुंचना था, खांसी जुकाम हो गया। बट हम कैसे फील कर रहे हैं ज्यादातर हमें पता ही नहीं होता, या तो अच्छे हम बोलते हैं कि हम अच्छा ही फील कर रहे हैं, है ना? अभी ये सवाल मैंने कम से कम 15 से 20 बार ही पूछा और सिर्फ यही जवाब मिला कि हम अच्छे हैं। सब मानते हैं यही जवाब मिला हमको, यस।
5: यस मैम,
3: यस मैम,
1: तो
4: यस
1: आज
4: मैम।
1: इसी चीज पे बात करेंगे जिस पे मैम ने कल छोड़ा था। मैम ने कल अपने सेशन में 10 E's की बात करी थी। जो लोग इस सेशन में थे कल, हम वहीं से आगे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि जैसा मैम ने बताया था कि हम किसी चीज को अधूरा नहीं छोड़ना चाहेंगे, इन डेप्थ हम जानना चाहेंगे हर एक चीज का मतलब क्या है हमारी जिंदगी से। ये जो सेशंस हैं इसमें हम कुछ सिखा नहीं रहे, कुछ सीख नहीं रहे, बस कोशिश ये है कि अपने आप को थोड़ा बेहतर हम पहचान सके और थोड़ी जो हमारी शक्तियां हैं, जो स्किल्स हैं, जो स्ट्रेंथ्स हैं, हम उसको और पॉलिश कर सकें, ताकि हम एक बेहतर ह्यूमन बीइंग बन सके, सोशली, इमोशनली एंड प्रोफेशनली। क्योंकि सभी यहाँ पे जो हमारे साथ जुड़े हैं वो कुछ ना कुछ आगे जिंदगी में या तो कुछ कर रहे हैं या तो कुछ करना चाहते हैं। जो कर रहे हैं वो आगे बढ़ना चाहते हैं, और जो कुछ करना चाहते हैं वो अपनी राह ढूंढ रहे हैं। सही बात है, या कोई और भी जुड़े हैं किसी और रीजन से? सही
2: सही बात है मैम, बिल्कुल।
1: बात। चुप तो रह नहीं सकते ना, मैं पांच बार बार पूछती रहूंगी ताकि खुद देखूं सो तो नहीं गया कोई, है ना? तो आज का हमारा ये 40-45 मिनट होंगे, हम उस चीज पे बात करेंगे जो पहला ई था। पहला ई क्या था? किसी ने सुना था ना कल, सबने 10 E नोट किए होंगे। पहला ई क्या था बता सकता है कोई?
4: एम्पावर
1: पावर ऑफ व्हाट?
5: मैम, इमोशनल स्ट्रेंथ।
1: एब्सोल्युटली। मैं तब से यही बात कर रही हूँ कि इमोशनल स्ट्रेंथ हमारी क्या है, हम कैसा फील करते हैं, हमारी जिंदगी में इमोशंस क्या रोल फील करते हैं, क्या रोल प्ले करते हैं। हम सुबह उठने से लेके जब तक सोने जाते हैं और सोने के बाद भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, यानी कि हमारे सपनों में भी हमारे इमोशंस प्ले करते हैं, हाँ कि ना? अगर आप उदास हैं, अगर आप दुखी हैं और उस फॉर्म में हम सो जाते हैं, तो हमारे सपने भी हमें उसी तरीके के आते हैं। ऐसा होता है क्या कभी? अगर हम खुश हैं, हमारा दिन अच्छा बीता है, हमने जो चाहा था हमें मिला है, या जो हम अचीव करना चाहते थे, अच्छा सा परिवार भी सुखी है, तो हम अच्छी नींद अगर सोते हैं तो हमें सपने भी अच्छे आते हैं, ऐसा होता है? तो इसका ये मतलब है कि इमोशंस का रोल हमारी जिंदगी में सबसे बढ़ के है। जितना जरूरी खाना पीना, अपने कपड़े, हमारे रहन सहन, हमें अपने फिजिकल नीड्स, जो हमारी फिजिकल नीड्स हैं उनको पहचानना है, उतना ही या शायद कभी कभी उनसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमें हमारी इमोशनल नीड्स को पहचानना। मुझे कोई बता सकता है कि कितने इमोशंस हैं, ह्यूमन एक इंसान में कितने इमोशंस हैं? आपको क्या पता है इस बारे में? कोई गूगल नहीं करेगा इस वक्त, ये नहीं कि जो लोग स्क्रीन पे नहीं है आप गूगल करना शुरू करें, गूगल में सबसे पहले सबसे ऊपर आ जाएगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर आप सच्चे हैं तो प्लीज गूगल मत करिए, क्योंकि सबकी स्क्रीन ऑन नहीं है। आप, ये कोई टेस्ट नहीं है, इसमें कोई मार्क्स नहीं मिल रहे, बस आप अपनी समझ से जितना हम पढ़े हैं, कोई यहाँ पे 20 साल का है, कोई 25, कोई 30, कोई 40, कोई 50 साल का है, इन 50, 20, 30 सालों में आपने कितने इमोशंस महसूस करे होंगे, कोई भी बोल सकता है। और जो नहीं बोल रहे, मैं इनकरेज करूंगी वो भी बोले, क्योंकि यहाँ कोई गलत और सही जवाब नहीं है। कितने
0: मैम बहुत सारे इमोशंस होते हैं, लाइक खुशी
1: होते
0: होती
1: हैं? 5, 6। खुशी होती है, और बताइए। हेलो,
0: हम जैसा फील कर रहे थे वैसा इमोशनल हो जाते हैं हम,
1: जैसे कि दुखी हो गए, खुश
0: जैसे
1: हो गया, गुस्सा
0: हम
1: हो
0: गुस्सा आ
1: गया।
0: जाते हैं, कभी कभी अंदर से
1: पांच,
0: नाराजगी होती है बोल नहीं पाते हैं तो
1: छः,
0: वो फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, कभी कभी
1: सात,
0: कभी गुस्से भी होता है।
1: आठ, आठ इमोशंस हो गए। तो बिल्कुल ठीक, 7 या 8 कोर इमोशंस होते हैं जो हमारी जिंदगी में हमें रूल करते हैं। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ, मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन भी बनाई है, होस्ट को रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज मुझे अलाउ करेंगे स्क्रीन शेयर करने के लिए। आई रिक्वेस्ट द होस्ट टू अलाउ मी टू शेयर द स्क्रीन प्लीज। तो अब कायदे से तो मुझे गुस्सा आना चाहिए ना, क्योंकि मेरी स्क्रीन ही नहीं अलाउ हो रही आज शेयर करने के लिए, है ना? मेरा इमोशन इस वक्त क्या होना चाहिए? मेरे को घबराहट हो जानी चाहिए, मैंने इतनी मेहनत करके प्रेजेंटेशन बनाई और होस्ट मुझे अलाउ नहीं कर रहे स्क्रीन शेयर करने को। या मेरे को घबराहट हो जानी चाहिए कि अब मैं आगे क्या बोलूंगी, मैंने तो स्क्रीन से देख के पढ़ना था और अब तो मेरे को डर लग रहा है, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं मैं आगे क्या बोलूंगी, लेकिन मैं फोन करके स्क्रीन शेयर के लिए बोलती हूँ। सो राहुल ने मुझे अलाउ करा है स्क्रीन शेयर करने के। आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं?
5: यस मैम,
1: फुल
5: यस
1: स्क्रीन
5: मैम,
1: दिख रहा है। सो आज हम पहले ई पे बात करेंगे, जो मैम ने बताया था, इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसको कि हम EQ भी बोलते हैं। जो फॉर्मल लैंग्वेज होती है, ये एक प्रॉपर स्टडी है साइकोलॉजी में, इमोशनल क्वोशेंट इसको बोलते हैं। लेकिन हम इस पे बहुत ही बेसिक लेवल पे बातचीत करने जा रहे हैं। ये कोई साइकोलॉजी का सेशन नहीं है, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, बट प्रैक्टिकली इस चीज के क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, हम इस पे आपस में बात करेंगे। मैं कुछ आपको सिखा नहीं सकती, क्योंकि आपके इमोशंस आपके हैं, मेरे इमोशंस मेरे हैं, बट मैं ये बता सकती हूँ कि इमोशंस का रोल क्या है, और इसको पहचानना और इसको मैनेज करना। हम इमोशंस चेंज तो कर नहीं सकते, गुस्सा आ रहा है तो आ रहा है, लेकिन गुस्से में क्या मैं किसी को थप्पड़ मार रही हूँ, क्या मैं किसी पे चीख चिल्ला के बात कर रही हूँ, या मैं समझ बूझ के, समझ से सिचुएशन को हैंडल करके बातचीत कर रहे हैं। और हर बार ही जरूरी नहीं है कि एक ही रिएक्शन होता है, हर एक सिचुएशन में हमारे इमोशन अलग होते हैं। तो हम बोलते हैं कि अच्छा, हम ये सेशंस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई ना कोई हमारे एक ख्वाब है, हमारा एक गोल है लाइफ में, उसको हमें अटेन करना है, बट उस गोल को अचीव कैसे करना है। तो हमने सोचा चलो हम वो ईज की बात कर रहे हैं, तो इमोशनल इंटेलिजेंस से बात करते हैं। जैसा कि सना ने बताया, हमारे कुछ 8 या 9 जो कोर इमोशंस हैं वो हमारी लाइफ में रोल प्ले करते हैं, जिसमें कि हो गया हैप्पी हूँ, सैड हूँ, वरिड हूँ, नर्वस हूँ, गुस्से में आ गई मैं। ये सारे इंग्लिश के, मैंने जो यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये कुछ 12-14 अलग अलग इमोशंस हैं। ये इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन इसके हमारे को हर भाषा में कोई ना कोई इसका एक वर्ड जरूर मिल जाएगा। तो हम आमतौर पे, हमें लगता है कि हमारे करीबन 12 या 13 अलग अलग इमोशंस होते हैं जो हमारी लाइफ। कुछ इमोशंस नेगेटिव होते हैं और कुछ इमोशंस पॉजिटिव होते हैं। दोनों ही हमारे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बिहेवियर को दर्शाते हैं। अगर मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है, इसको कहते हैं ना, अरे इसको तो बहुत जल्दी गुस्सा आता है, इससे ज्यादा बात मत करो, ये तो एकदम बिगड़ जाएगा या बिगड़ जाएगी, इससे ज्यादा ज्यादा इससे कुछ बात करने की जरूरत नहीं है, तो वो क्या होता है, वो हमारा बिहेवियर हो गया। क्योंकि जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो हमारे बिहेवियर को बहुत उसपे, हमारे हमारे जो एक्शन है उसको हमारे को गाइड करता है। कुछ लोग होते हैं, इसे कितना भी बात कर लो ना, इसे गुस्सा नहीं आता, अब ये तो कहना गलत है कि गुस्से वाला इंसान ठीक नहीं है और जो प्यार से बात कर रहा है वो ही ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना। हो सकता है जो गुस्से वाला इंसान है वो ज्यादा समझदारी की बात कर रहा हो, लेकिन उसका बताने का तरीका ऐसा है कि वो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने इमोशंस को दो भागों में बांटा है, आमतौर पे नेगेटिव इमोशंस और पॉजिटिव इमोशंस बोला जाता है। नेगेटिव इमोशंस में गुस्सा आ गया, शर्मिंदा हूँ, उदास हूँ, मुझे डर लग रहा है, मुझे नफरत है किसी से, मुझे अफसोस है, इन सब शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। पॉजिटिव इमोशन में मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अपने ऊपर मुझे प्राइड है, यानी कि मुझे गुरूर है अपने काम पे, मुझे गर्व है अपने काम पे, मुझे आशा है, होप है, खुशी है, जॉय है, लव है, ये हमारे अच्छे इमोशंस होते हैं। लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका यहाँ मैंने नाम दिया है रॉबर्ट, इन्होंने जब स्टडी किया, ये साइकोलॉजिस्ट माननीय साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं, इन्होंने ये प्रूफ किया अपनी थ्योरी से कि जो ये 7 या 8 इमोशंस होते हैं ये करीबन 34,000 इमोशंस ह्यूमन बीइंग में कॉम्बिनेशन में पैदा कर सकते हैं। हमें ये सब जानने की जरूरत इस वक्त पे नहीं है, हम कोई स्टडी नहीं कर रहे, हम कोई एनालिसिस नहीं कर रहे, बट मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इमोशंस का इतना इम्पोर्टेंट रोल है हमारी जिंदगी में, हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन हमारे एक्शंस इन्हीं से दर्शाए जाते हैं। इसलिए हमें इनको मैनेज करना आना बहुत जरूरी है। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं आपको बताऊंगी और आप अपने इमोशंस मैनेज करना शुरू करोगे, लेकिन हम सबको ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि मेरा प्राइम इमोशन क्या है। कोई भी चीज अगर खराब होती है दिन भर में तो क्या मुझे गुस्सा आ जाता है, क्या मैं उदास रहती हूँ, या मैं उसको कोशिश करती हूँ कि मैं उसका सॉल्यूशन निकाल सकूँ उस सिचुएशन के, मैं कोशिश करके उसको पॉजिटिविटी की तरफ ले जा सकूँ। मकसद यही है कि हम अपने इमोशंस को पहचाने, इसको हम इमोशनल क्वोशेंट कहते हैं प्रोफेशनल लैंग्वेज में या फॉर्मल लैंग्वेज में, लेकिन जब हम उठते हैं, उठने से सोने तक, सोने के बाद भी हम इसी 34,000 के जो चक्र है इसमें फंसे रहते हैं। कोई कुछ ऐड करना चाहता है या किसी को कुछ लग रहा है कि गलत है या सही है? हम 1 मिनट के लिए रुक सकते हैं। जब नेगेटिव इमोशंस होते हैं तो उसकी फीलिंग कैसी होती है? हम इरिटेटेड रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन होती है, नर्वसनेस होती है हमें, जैसे एग्जाम देने जाना है और नेगेटिव इमोशन है, डर है हमारे अंदर, तो डर से क्या होगा? वरी होगी, नर्वसनेस होगी, तो क्या कोई फायदा होगा हमें एग्जाम देने में? नहीं। लेकिन अगर हम तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, हमने बार बार अपना रिविजन किया है, तो उस नेगेटिव इमोशन को हम पॉजिटिव में कैसे बदल सकते हैं? वरी को हम कॉन्फिडेंस में लेके आ सकते हैं, हम वरी जो है हमारी उसको बदल के हम कॉन्फिडेंस में डाल सकते हैं। क्यों हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं पहले से तैयारी करो, आखिरी मोमेंट पे कुछ मत छोड़ो, लिखित में प्रैक्टिस करो, बार बार उसका रिविजन करो, ताकि जो डर है, जो नर्वसनेस है, वो हमारा एक्शन क्या होगा कि हम आधा पेपर भूल जाएंगे, पेपर देख के डर जाएंगे, हमें समझ नहीं आएगा आंसर क्या लिखना है, हो सकता है गलत मलत लिखा है। लेकिन अगर हमने उस नेगेटिव इमोशन को पॉजिटिव में अपने एक्शन से बदला हो तो हम कॉन्फिडेंट होंगे, हम रिस्पॉन्ड करेंगे। ऐसा भी कोई क्वेश्चन आ गया कि मान लीजिए उसकी तैयारी हमने नहीं करी, तो भी चैप्टर्स तो हमने सारे पढ़े हैं, तो अपनी समझ बूझ से हम रिस्पॉन्ड करेंगे, ना कि रिएक्ट करेंगे। घर से निकलने से पहले किसी ने कुछ बोल दिया तो उस पे भी हम नाराज हो जाते हैं, कभी कभी हमारे मन मुताबिक बात नहीं होती, पूरा दिन खराब हो जाता है, या रास्ते में जा रहे हैं, आजकल बारिश का मौसम है, गाड़ी तेज निकली, कपड़े खराब हो गए, कीचड़ कीचड़ हो गया, गुस्सा आ गया, बस इतना अच्छे से मैं बन ठन के जा रही थी और सारा खराब हो गया, मेरी तो मीटिंग थी, मेरा मेरा तो अच्छा काम होने जा रहा था, बट मैं क्या कर सकती हूँ, ये तो हो गया, ये तो सिचुएशन सामने आ गई, अब ये मेरे ऊपर है, मैं अपना इमोशन कैसे संभालूंगी? गाड़ी वाला तो निकल गया, हो सकता है उसकी भी कोई इमरजेंसी हो, तो हम एम्पैथी में बदल सकते हैं अपने इमोशन को, क्योंकि भाई अब तो ये हो गया ना, अब मैं इसका क्या कर सकती हूँ, अब अगर मेरे को अच्छे मीटिंग में जाना है तो मुझे सॉल्यूशन निकालना है ना उसका, हो सकता है मैं रुक के धो लूँ उसको, मेरे चलते चलते तक शायद वो सूख जाए, लेकिन उससे जो मैंने अपना इम्पोर्टेंट काम करना है उस पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसको हम इमोशनल क्वोशन्ट बोलेंगे कि सिचुएशन आने के बावजूद हम उसको मैनेज कर पाए। ये कोई गुट्टी नहीं है कि हमने घोली पानी में डाली और पी गए, ये प्रैक्टिस से आता है, बार बार प्रैक्टिस से ही आएगा। और अगर हम चाहेंगे तभी ये होगा। अगर हमें लगेगा कि इसके कोई फायदे हैं हमारी जिंदगी में, अगर हमें लगेगा कि नहीं जैसे हम हैं हम वैसे ही ठीक है, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। जैसे हम आज तक रिएक्ट करते आए हैं ऐसे भी हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लीडरशिप के सेशंस ले रहे हैं और अगर हम इमोशनल इंटेलिजेंस को वैल्यू दे रहे हैं, तो इमोशनल इंटेलिजेंस को समझना बहुत जरूरी है और उस पर फोकस करना बहुत जरूरी है कि प्रॉब्लम को ना समझ के, प्रॉब्लम को पर्सनलाइज ना करके, सिचुएशनलाइज करके हमें उसके कैसे आंसर्स ढूंढने चाहिए। कई बार बहुत गुस्सा आता है तो हम कहते हैं कि अच्छा आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। किसी ने तेरे नाम पिक्चर देखी होगी तो देखा होगा ना, सलमान खान उसमें वो 10 तक गिनती करता है। किसी ने देखी है वो मूवी? उसमें, उस पिक्चर में सलमान खान को बहुत गुस्सा आता है, वो मार मारता रहता है सबको, लेकिन बाद में शायद जो हीरोइन होती है वो बोलती है कि तुम 10 तक गिनती करो तो शायद तुम्हारा गुस्सा कम हो जाएगा। देखिए किसी ने ये मूवी, या मैं ही सबसे पुरानी हूँ यहाँ पे? सबने
2: मैंने देखी है मैम,
3: देखी
1: है। तो वो क्यों करता है, उसको
3: मैम
1: उसने एक मैनेजमेंट टेक्निक बना ली कि मेरे को गुस्सा आता है तो मैं गुस्से में रिएक्ट कर जाता हूँ, तो रिएक्ट ना करके मैं कैसे उसे कंट्रोल करूँ और उसको मैं पॉजिटिव। मैंने ये एज ए एग्जाम्पल ही दिया है, लेकिन ये कोई सिंगल तरीका नहीं है, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, ऐसी बहुत सारी किताबें हैं। हमारी लाइब्रेरी में भी बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो इमोशनल क्वोशंट के ऊपर हैं। ऑनलाइन भी बहुत सारा मेटीरियल अवेलेबल है, जिनको कि लगता है उनकी जिंदगी में नेगेटिव इमोशन बहुत ज्यादा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जाएं और कुछ कुछ स्पीकर्स हैं या कुछ कुछ किताबें ऐसी हैं, आप पढ़ने की कोशिश करिए उनको, वो आपको शायद एक बेहतर सोशली एंड पर्सनली वो आपको हेल्प करेगा। और जहां तक लीडरशिप की बात हो रही है, ये बहुत जरूरी है। आपने मैम को कभी रेयरली गुस्से में देखा होगा, आपने हमेशा देखा है कि वो कितनी बारीकी से इमोशंस को, सिचुएशंस को सिचुएशन पे रखती हैं, पर्सनलाइज नहीं करती। ये बहुत मेहनत से आता है, बहुत एक्सपीरियंस से आता है, ओवरनाइट नहीं आ सकता, बट एज ए लीडर ये हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमें गोल पे फोकस करना है, इमोशन पे नहीं। मेरे को कैसे बोल दिया इसने, अरे मैं तो ये हूं मैं तो वो हूं, मुझे बोल कैसे दिया इसने। बट वो आप उसे पर्सनलाइज ना लीजिए। अगर कोई फीडबैक दे रहा है तो आप उसे एक्सेप्ट करिए, अपनी गलतियां, अपनी वीकनेस को पहचानिए एज ए लीडर और उस पर वर्क करिए। अगेन आई वुड से इट इज अप टू अस कि हम इसकी वैल्यू पहचानना चाहते हैं कि नहीं पहचानना चाहते। इस स्लाइड में हम ये बोल रहे हैं, इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है, इसके ऊपर हम कई चीजें बात कर चुके हैं। कई बार क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि नेगेटिव इमोशंस खराब होते हैं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट ने ऐसा भी स्टडी किया है कि जरूरी नहीं है हर बार और हर नेगेटिव इमोशंस हमारे लिए नेगेटिव ही रिजल्ट लेके आए। कभी कभी आपने सुना होगा ये इंसान ना स्ट्रेस में बड़ा अच्छा काम करता है, ऐसे सुना है किसी ने कि भाई इसको जब बिल्कुल सर पे आ जाती है ना तब इसकी, ये किसी की नहीं सुनता, ये देखना बहुत अच्छा काम करता था, क्योंकि उनको मैनेज करना आ गया है ये आर्ट कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं। पूरा दिन कुछ, कई हमारी फ्रेंड ऐसी होती थी कुछ नहीं पढ़ती थी, सारा साल ऐसे ही इधर उधर डोलती रहती थी, लेकिन जब एग्जाम का प्रेशर आता था तो दिन रात पढ़ाई करके, क्योंकि उनको डर था कि मैं पीछे ना रह जाऊं, तो उस डर को उन्होंने पॉजिटिव इमोशन बनाया और दिन रात पढ़ाई करके अच्छे रिजल्ट लेके पास हो गए, है ना। और कुछ लोग हैं पॉजिटिव चीज को भी नेगेटिव बना लेते हैं, हाय मतलब प्रैक्टिस करे जा रहे करे जा रहे करे जा रहे, इतना प्रैक्टिस कर लिया है कि डर आ गया है कि यार मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो इसी को बैलेंस करने की जो कला है उसको इमोशनल क्वोशंट हम कहते हैं। तो हमें हर बार नहीं सोचना कि हमें पॉजिटिव ही रहना है, कई बार ही नेगेटिव इमोशंस बहुत जरूरी होते हैं लाइफ में, हमें सीख देने के लिए, ये समझाने के लिए कि शायद हम कहीं गलत जा रहे हैं, शायद हमें जरूरत है अपने कोर्स करेक्शन की। कभी कभी फेलियर बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब फेलियर ही नहीं है तो हमें ये पता ही नहीं है कि हम राह पे, किसी राह पे चल भी रहे हैं कि नहीं, ऐसे अंधाधुंध चले जा रहे हैं, एक रैट रेस में सब सब चल रहे हैं तो हम भी चल रहे हैं। तो हमने ईक्यू समझा, इमोशनल क्वोशंट समझा, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो जो पजल है जो हम 10 E's की बात कर रहे हैं वो हमें हेल्प करेगा हमारा गोल डिफाइन करने में, हमारी लाइफ के गोल्स क्या हैं। तो इमोशनल क्वेश्चन को अब हम लिंक करेंगे कि हम गोल्स कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि हमने बात करी कि यहाँ सभी लोग किसी ना किसी गोल से या किसी ड्रीम को अचीव करने के लिए ही यहाँ पे जुड़े हैं। किसी को 12th में अच्छे मार्क्स लाने हैं, किसी को ग्रेजुएशन करना है, किसी को कोई स्पेसिफिक कोर्स करना है, नर्सिंग का करना है, पार्लर का करना है, स्टिचिंग का करना है, कोई एम्ब्रॉयडरी करके कुछ करना चाहता है, सब कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। लेकिन वो कुछ क्या है वो भी तो हमें डिफाइन करना है ना। लेकिन अगर हम नेगेटिव इमोशंस में ही घिरे रहेंगे, मेरे घर में तो बहुत परेशानी है, मेरे को तो निकलने नहीं दिया जाता, मेरे पास तो वक्त नहीं है, मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, अरे जाके भी मुझे काम करना पड़ता है, मुश्किल से 1 घंटा निकालती हूँ, अगर हम इन सब चीजों में फंसे रहेंगे तो हम लाइफ में गोल ही सेट नहीं कर पाएंगे, और अगर गोल ही सेट नहीं होगा तो हम उस राह पे चलेंगे कैसे। किसी को कुछ क्वेरी है, कुछ सजेशन, कोई पॉइंट शेयर करना चाहता है? ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि हम अपना गोल डिफाइन कर कैसे सकते हैं। ये 10 क्वेश्चन है, ये स्लाइड हम आपसे शेयर कर देंगे। अगर हम इन 10 क्वेश्चन के आंसर करने शुरू करें तो हो सकता है हम लाइफ में क्या करना चाहते हैं ये हम खुद से पहचान पाए। ये मैं आपके लिए नहीं कर सकती, आप किसी और के लिए नहीं कर सकते, आप अपने बच्चों के लिए भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या करना चाहते हैं ये वो ही डिफाइन करे, तभी वो लाइफ में खुश रहेंगे, सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि गोल उनका होना चाहिए। हम गाइड कर सकते हैं, हम हेल्प कर सकते हैं उस राह पे चलने के लिए, लेकिन इन क्वेश्चंस का आंसर तो हमें ही पता है ना, क्योंकि हम सच्चाई से आंसर देंगे इन इन सब क्वेश्चंस का। मैं लाइफ में क्या करना चाहती हूँ, तो मुझे खुश क्या करता है? किसी को सिलाई खुशी देती है। अभी हम पीछे किसी कुछ बच्चों से बात कर रहे थे तो उन्होंने बोला मुझे, मैं सीख तो सुइंग रही हूँ लेकिन मुझे बनना पार्लर का काम करने में बहुत मजा आता है, तो मैं स्विंग सीख के पार्लर भी करूंगी। ठीक है, आप स्विंग सीख लो, बट वो बहुत क्लियर थी कि मुझे ब्यूटी का काम करने में बहुत मजा आता है, बट हो सकता है उनके परिवार वाले इस वक्त अलाउ ना कर रहे हो या सीट खाली ना हो ब्यूटी और वेलनेस में, तो इसलिए उन्होंने अभी अपना ब्यूटी का बाद में रखा। तो उनको बहुत क्लियर था कि उनको मजा किस चीज में आता है, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, मैं अपनी स्ट्रेंथ्स को एडवांटेजेस में कैसे बदल सकती हूँ, मुझे अपना गोल अचीव करने के लिए फाइनेंसेस क्या क्या चाहिए होंगे और इन फाइनेंसेस को मैं अरेंज कैसे कर सकती हूँ। क्या कभी कभी हमारा गोल ऐसा होता है कि हमें लगता है ये फुलफिल नहीं हो सकता, कि मैं डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहती हूँ लेकिन वो तो महंगी होती है, मैं पायलट बनना चाहती हूँ लेकिन वो तो बहुत महंगी होती है। उसको आप पहले डिफाइन करेंगे तभी तो आप पहले पहचानेंगे, तभी तो आप उसको ब्रेक डाउन करके उस लेवल तक लेके आएंगे कि उसे पूरा किया जाए। तो पहला ऑब्जेक्टिव है उसको पहचानना कि वो ऐसा काम क्या है जो आप रोज उठ के करीबन 30, 40, 50 साल तक आगे करना चाहते हैं। जो बच्चे आज 20 साल के हैं वो कम से कम 60 साल तक काम करेंगे, तो 20 से 60 साल की जो जर्नी, यानी कि 40 साल अगर आपको काम करना है, मैं मिनिमम की बात कर रही हूँ, आजकल तो 80, 90 साल के भी जो हमारे मेंटर्स हैं वो भी हमें गाइड करते हैं अभी तक, तो आप सोचिए काम करने की तो कोई उम्र ही नहीं होती। तो अगर आपको 40, 50, 60 साल तक आगे काम करना है तो ऐसा क्या काम है कि रोज सुबह उठेंगे तो उतने ही खुशी से आगे बढ़ेंगे, चैलेंजेस रोज आएंगे, ऐसा नहीं है कि मेरी मर्जी का काम होगा तो चैलेंज नहीं आएगा, चैलेंज तो रोज आएंगे, क्योंकि चैलेंज के बिना तो आई थिंक लाइफ का सर्कल पूरा नहीं है। लेकिन उन चैलेंजेस को हम तभी एंजॉय करेंगे अगर काम हमारी पसंद का है। अगर आज वो काम हम नहीं कर सकते तो मैं उनकी तरफ आगे कैसे बढ़ सकती हूँ, उनको भी हमें छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ना है। बट ज्यादातर लोग जो है ना, फियर ऑफ फेलियर, यानी कि मैं कहीं फेल तो नहीं हो जाऊंगी, अगर मैं सिलाई सीखने गई और मेरी सिलाई सबसे अच्छी नहीं हुई तो शायद मेरे पास कोई ग्राहक नहीं आएगा, अगर मैंने अचार बनाना सीखा और मेरे अचार खराब हो गए तो हो सकता है मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा, हो सकता है मैंने बिजनेस करना शुरू किया और मेरे पास कोई ऑर्डर ही नहीं आया तो मेरे पैसे तो खराब हो जाएंगे, तो मैं नहीं करूंगी। ये जो फियर ऑफ फेलियर है ये हमें आगे बढ़ने से हमेशा रोकता है, और फियर ऑफ फेलियर हम सब में ही है। ये लाइफ स्किल के सेशन देने से पहले मेरे अंदर फियर ऑफ फेलियर था, अगर लोगों को मेरे सेशन में नींद आने लग गई तो मैं क्या करूंगी, अगर उनको मेरे सेशन अच्छे नहीं लगे, अगर मेरी बातें समझ नहीं आई, अगर वो सिर्फ स्क्रीन ऑन करके बैठे रहे और मेरी बात का कोई मतलब नहीं समझे तो मुझे कैसे लगेगा। तो ये फियर ऑफ फेलियर था मेरे अंदर, पर मैंने अपना काम पूरी जस्टिफिकेशन से किया, जो टॉपिक था उसे समझा, उसमें जितनी मेरी समझ थी उसके सारे जो पॉइंट्स थे मैंने लिखे। हो सकता है एक बच्चे को भी या एक बेनिफिशियरी को भी उससे फायदा हो जाए, तो वो जो फियर ऑफ फेलियर है ना मेरे, उससे मैं मोटिवेट हुई कि चलो एक शायद मेरी 4-5 घंटे की मेहनत से हो सकता है एक इंसान को कुछ मोटिवेशन मिल जाए और वो अपने इमोशंस को पॉजिटिव की तरफ मोड़ना चाहे और हो सकता है वो अपना गोल डिफाइन करने में सक्षम हो सके। तो इसलिए फिर वो फियर ऑफ फेलियर को मैंने कन्वर्ट किया कि नहीं, मुझे ये काम करना है तो मुझे अच्छे से करना है, फियर ऑफ फेलियर से उसको बांध के नहीं रहना। बट हम सभी आगे बढ़ने से डरते हैं, कुछ नया काम करने को बोलो तो हमें डर लगता है कि दूसरे लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे, हमारे ऊपर हमारे लिए ओपिनियन बनाएंगे, लेकिन हमें क्या करना है हमारे लिए वो बहुत जरूरी है। सो नेवर बी शाय, नेवर बी अफ्रेड, मतलब कभी डरिए मत कि हम हार जाएंगे, हमें हमें लोग हंसेंगे, हो सकता है मैं फेल हो जाऊं। फेल होंगे ही होंगे, आप कितने बड़ी कंपनी के लोगों की बायोग्राफीज पढ़ी, हमारी लाइब्रेरी में इतनी बायोग्राफीज हैं, ऑटोबायोग्राफीज हैं, ऐसा कहीं भी नहीं हुआ होगा। बड़ी सी बड़ी कंपनी उठा लीजिए जिसके जो बायोग्राफी है उसमें ये नहीं लिखा होगा ये ऑटोबायोग्राफी में कि मैं कभी फेल ही नहीं हुआ या मैं कभी फेल ही नहीं हुई। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कभी फेल नहीं हुआ होगा, कुछ ना कुछ कदम तो गलत हुए ही होंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बड़े बन गए और एक छोटी सी गलती से भी वापस नीचे आ गए। ऐसे बहुत किताबें हमने पढ़ी हैं कि कैसे बड़े बड़े एम्पायर्स जो हैं वो नीचे आ गए। तो फेलियर तो पार्ट ऑफ सक्सेस है ही, अगर आप सक्सेस का कर्व पढ़ेंगे तो सक्सेस में फेलियर कहीं ना कहीं तो आएगा, लेकिन क्या हम उसे डर के रुक जाए, ये आपकी मर्जी है। अगर आपको डर के रुकना है तो आप डर के रुकिए, बट अगर आपने हमारे सेशन ज्वाइन किया है तो हम कभी भी नहीं कहेंगे कि आप फियर ऑफ फेलियर से रुक जाएं, थम जाएं। कोशिश करिए उसको आइडेंटिफाई करें, उन जो फेलियर्स हो सकते हैं पहले से उसकी तैयारी करके हम चले आगे। रास्ते में अगर रुकावटें आएंगी तो उसको मैनेज करना हमें सीखना है। आप जो भी अकम्प्लिश करना चाहते हैं, मैम ने भी सबको बताया, एक डायरी जरूर मेंटेन करिए। जैसे कि इस स्लाइड में आप देख रहे हैं, हम उसको छोटे छोटे स्टेप्स में अगर तोड़ेंगे, यानी कि हमें एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उस बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ना बहुत जरूरी है। अगर मैं ये कह रही हूँ कि 1 साल के अंदर अंदर मैं अपनी बुटीक खोल लूंगी, तो उसको मुझे ये स्टेप्स में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, बुटीक खोलूंगी तो आज से 3 महीने तक तो पहले मैं बेसिक स्टिचिंग सीखूंगी। बेसिक स्टिचिंग सीखने के बाद मुझे 10 या 15 लोगों के फ्री में बनाने पड़ेंगे, तभी तो मुझे पता चलेगा कि मेरी क्वालिटी ठीक है कि नहीं ठीक है। हो सकता है मुझे पैसे मिले उस चीज के, हो सकता है मुझे मेरे मुंह पे आके फेंक दे कि ये क्या क्वालिटी तुमने दिया है। क्या मैं रुक जाऊंगी तब, ये आपकी मर्जी है। अगर आप सीख के आप बोलेंगे अच्छा ठीक है मैं दोबारा ठीक करके देती हूँ, मैं इसके कोई पैसे भी नहीं दूंगी, ये आपके ऊपर है, मैं ये नहीं कह रही आप ऐसा ही करिए। लेकिन अपने लक्ष्य को ब्रेक करिए कि अगर 1 साल में बुटीक खोलना है तो पहले 3 साल में मेरे को बेसिक स्टिचिंग सीखनी है। अब मैं बेसिक स्टिचिंग पे करके सीख रही हूँ कि रीड के सेंटर पे जाके सीख रही हूँ, जहाँ पे मैं सेफ भी हूँ, मुझे अच्छे टीचर मिले हैं। बेसिक के बाद मैंने 3 मंथ्स का एडवांस स्टिचिंग लिया, उसके बाद मैंने छोटा बुटीक खोला, और उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर मैंने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके बड़ा बुटीक खोला। 1 साल में नहीं खोल पाई, हो सकता है 1.5 साल में खोला। अपने गोल को रीएडजस्ट करिए। तो मेरा मतलब यह है कि अपने गोल को पहले डिफाइन करिए और उसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़िए, और हमेशा उसे रिविजिट करिए कि जो मैं करना चाहती थी वो मैं कर पाई कि नहीं कर पाई। जहां फेलियर हुआ उस फेलियर को एक्सेप्ट करिए, आइडेंटिफाई करिए, उससे कुछ सीखिए। एवरी टाइम वी हैव समथिंग टू लर्न फ्रॉम आवर फेलियर, फ्रॉम द ऑब्स्टेकल्स, फ्रॉम द रोड ब्लॉक्स। जो भी बीच में रोड ब्लॉक्स आए हैं, अनहैप्पी सिचुएशंस आई हैं, कोविड आ गया, कोई प्रॉब्लम और आ गई, तो उसको आइडेंटिफाई करते हुए हमें उसको पॉजिटिव में ही बदलना है। यही एक रास्ता है आगे बढ़ने का, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पे हम सॉफ्ट स्किल की बात करें, बार बार इमोशन आ जाते हैं कि हमें घबराना नहीं है, उनको नेगेटिव इमोशंस में नहीं बदलना है। सॉरी मैंने टाइम भी नहीं देखा। यहाँ पे कुछ किताबें हैं जरूरी नहीं है ये सारी किताबें हमारे लाइब्रेरी में हो, लेकिन इसके कई कई जो एक्सर्ट्स हैं, यानी कि जो जो चीजें इम्पोर्टेंट हैं, वो ऑनलाइन फ्री अवेलेबल है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, बाकी किस लैंग्वेजेस में है मैं रिसर्च कर सकती हूँ अगर किसी को इंटरेस्ट है तो। और ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, मैं ये बताना चाह रही हूँ ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो हम चाहें तो उनको पढ़ के हम और अच्छे से अपना गोल डिफाइन करके आगे खुद से बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। लाइफ इज टू शॉर्ट नॉट टू फॉलो योर ड्रीम्स, दैट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव, कि अपना गोल आइडेंटिफाई करिए और अपने पॉजिटिव इमोशंस को पहचानिए, नेगेटिव इमोशंस को हम किस तरीके से पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं, दैट इज अनदर थिंग। सो दिस वॉज अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन सेशन ऑन द 10 E's। जो पहला ई था हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस का, आज हमने वो कवर किया है। अगले सेशन में मैम का लीडरशिप का सेशन होगा, 2nd E पे हम उसके बाद बात करेंगे, राइट। अब इसके साथ कोई अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता है या कोई गोल, या अब जिसने डायरी रखनी शुरू करी है कोई फीडबैक देना चाहता है, बिकॉज क्या है ना, हम सुन के बंद कर देंगे ये जूम सेशन और कहीं आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जहां थे वहीं पे ही रहेंगे। इसलिए वी शुड बी एनकरेजिंग ईच अदर टू इंटरैक्ट। सो आई एम स्टॉपिंग नाउ एंड आई एनकरेज एवरीबडी, आपके साथ बेनिफिशरीज भी अगर हैं तो उनको भी एनकरेज करिए कि कुछ इस इन सेशन से अगर समझ में आया या कुछ सीखा, और मुझे भी फीडबैक दीजिए कि अगर ये सेशन बहुत वर्बोस था, यानी कि वर्ड्स बहुत ज्यादा थे, तो मैं इसे और कम और सरल तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगी।
2: हेलो मैम, इट्स संगीता फ्रॉम बाइरेडीपल्ली.
1: हेलो संगीता जी।
2: यस मैम, जो आपने अभी इमोशंस के बारे में बताया, आई डोंट रिमेम्बर कोविड टाइम पे मैंने एक चैप्टर था घृणा का महत्व, हिंदी में किसी बच्चे को एक्सप्लेन करना था. दैट वाज अ डिग्री स्टूडेंट, मुझे याद नहीं है. बट वो इमोशंस जो हमारा हेट्रेड इमोशंस है, जैसे आप एक्सप्लेन कर रही थी, उसको बहुत डिटेलली उस चैप्टर में एक्सप्लेन किया था कि जब तक हम घृणा नहीं करेंगे तो जो बुराई है उसके प्रति लोगों का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, नहीं तो उससे डर के, अरे लोग क्या बोलेंगे क्या सोचेंगे, इससे डर के गलत काम नहीं करेंगे. वो पूरा बहुत अच्छे से था, तो आप जब समझा रहे थे तो वो चैप्टर में रिकॉल कर रही थी मैम.
1: एब्सोल्युटली राइट। हम कभी कभी इतना डर जाते हैं नेगेटिव इमोशन से ना, जब मैंने पूछा, मैं 100% ये श्योर हूँ कि आज जो 60 लोग हमारे साथ जुड़े हैं सभी अच्छा नहीं फील कर रहे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो हमें परेशान कर रहा होगा, कोई ना कोई ऐसी परेशानी, सबको ये टाइम सूट करता है ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि सभी लोग अपना वक्त निकाल के एग्जैक्टली 3 बजे आ गए और वो अच्छा भी फील कर रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं। लेकिन हम नहीं बोला नहीं, क्योंकि हम डरते हैं कि हम कुछ नेगेटिव बोलेंगे तो नेगेटिव ही सोचा जाएगा, भाई मेरे को नहीं, मेरा सिर दर्द हो रहा है, मैंने सुबह खाना नहीं खाया वक्त से, मेरा सिर में दर्द हो रहा है, मेरा नहीं मन है सेशन अटेंड करने का, मेरा नहीं मन है वीडियो पे आने का, मेरा नहीं मन है कुछ बोलने का। तो वो हमारा मन है, हम उसको नहीं चेंज कर सकते, मैं आपकी जिंदगी में आके उसको चेंज नहीं कर सकती, लेकिन ये हम पे है कि हम उसे मैनेज कैसे करेंगे। ये हम पे है कि दिन भर में जो हमारे सामने आता है हम उसे एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ में कुछ बदलाव करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, ये सब हमारे हाथ में, क्योंकि ये हमारी लाइफ है।
2: नाउ फॉर दिस आंसर मैम, कि आप कैसी हैं? मैं खुश हूँ मैम.
1: आप खुश हैं, अच्छा, वेरी गुड। और आप खुश हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है, बिकॉज पॉजिटिव इमोशन से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो बिहेवियर है, मतलब इमोशन से हमारे एक्शन होते हैं। मैं जब ये सेशन बना रही थी तो मैंने कई वीडियोस और कई साइकोलॉजिस्ट की जो थ्योरीज थी उनको पढ़ने की कोशिश की, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को ना हल्के में नहीं लेना चाहिए, और ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और मेरे ब्रदर ने तो इस सब्जेक्ट पे PhD, डबल PhD करी है, ह्यूमन साइकोलॉजी पे, तो वो अभी भी पढ़ रहा है, उसको करीबन 12 साल हो गए हैं ये सब्जेक्ट पढ़ते हुए, और अभी भी वो पढ़ रहा है, प्रैक्टिस भी कर रहा है और पढ़ भी रहा है। तो हम आधे घंटे के सेशन में तो इस चीज पे बात भी नहीं कर सकते, और मैं तो इस चीज पे बोल भी नहीं सकती क्योंकि मेरी कोई अथॉरिटी नहीं है। तो जब हम इन इन चीजों पे मैं पढ़ रही थी तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे सामने आई कि जो पॉजिटिव इमोशन है इमोशन जो बना है ना, ये एक फ्रेंच वर्ड का डेराइवेटिव है. इंग्लिश का जो वर्ड है इमोशन, ये एक फ्रेंच वर्ड का डेरिवेटिव है. इमोशन यानी कि जो हम फील कर रहे हैं उससे हमारा मोशन होगा, उससे हमारा रिस्पॉन्स होगा. जो हमारा इमोशन है उससे हम रिस्पॉन्ड करेंगे. हम खुश हैं तो सब खुश हो जाएगा, हमारे आसपास के लोग खुश होंगे, हम खुशियां फैलाएंगे. अगर हम उदास हैं, गुस्सा है, अब ये इमोशन भी जरूरी तो है हमारे लिए, ये हमारी लाइफ से कोई ले नहीं सकता. तो अगर मैं चिड़चिड़े मूड में हूँ तो अगर कोई बच्चा आके, मेरा बेटा आके मुझे हग भी कर रहा है, मेरे पीछे डर, मेरे को नहीं करना, मेरा मूड नहीं है, तो उस बेचारे की क्या गलती है? दिन तो मेरा खराब गया है और चिड़चिड़ी तो मैं हूँ, इमोशन तो मेरा खराब था, मैंने अपना खराब इमोशन उसको भी पास ऑन कर. ऐसा ही सेम रिलेशनशिप इश्यूज जो है वो इमोशन

0: वेरी गुड आफ्टरनून। आप कैसे हैं?
1: मैं बढ़िया हूँ मैम, आप कैसे?
0: मैं अच्छी हूँ, मुझे खुशी हो रही है। इतना सारा इन्फॉर्मेशन जो मैंने इकट्ठा किया था पिछले 1.5 दिन में, मैंने सारा शेयर कर दिया। कुछ कुछ चीजें बच गई हैं, मैंने बहुत सारा पढ़ा था लेकिन फिर भी काफी कुछ शेयर कर दिया, तो मुझे अच्छा लग रहा है।
1: यस मैम, काफी टाइम ना, मतलब कुछ चीजों पे ऐसी धूल सी जम जाती है, तो वो सेशन के जरिए आगे चल के आता है हमारे सामने और फिर से लगता है कि नहीं, हमें ये ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। और काफी टाइम पे तो मैम ऐसे होता है कि निगेटिव जो चीजें हमारे साथ घड़ती है सुबह से लेकर शाम तक, वो ज्यादा टाइम तक हमारे माइंड में घूमती रहती है, और जो कुछ अच्छी बातें होती है ना, तो वो बहुत कम टाइम के लिए रहती है। तो ऐसा कुछ बताइए कि हम निगेटिव चीजों के जल्दी से भूल जाए।
0: ये जब मैं रिसर्च कर रही थी इस टॉपिक पे, ये सबसे पहले उठ के आया था कि नेगेटिव इमोशंस जो है ना, वो सबसे ज्यादा भारी हो जाते हैं। हो सकता है नेगेटिव इमोशन एक होगा, वो इमोशन या सिचुएशन हुई, मान लीजिए लड़ाई हो गई सुबह सुबह किसी से, तो वो हमारा इमोशन नेगेटिव हो गया, या कोई बीमार हो गया घर में तो नेगेटिव इमोशन हो गया हमारा। अब वो नेगेटिव इमोशन पूरा दिन हमारे साथ रहता है, पूरा दिन, पूरे दिन में चाहे 100 से भी ज्यादा अच्छे एक्सपीरियंसेस आए हों, लेकिन जो उसका भार है, जो उसका बोझ है यहाँ पीछे दिमाग में, वो घर कर जाता है, उसको हम जाने ही नहीं दे सकते। अब ये डॉक्टर्स ने, साइकोलॉजिस्ट ने नेगेटिव इमोशन पे बहुत ज्यादा स्टडी करी है। इस पे आप काउंसलर्स जो होते हैं, जो आपने सुना होगा कि काउंसलिंग के लिए जाना पड़ता है, हमारे यहाँ तो इंडिया में मेंटल इलनेस को तो मतलब इतना बढ़ावा नहीं दिया जाता, इसकी इसके बारे में ज्यादा बात भी नहीं करी जाती, लेकिन बाहरी देशों में ये एक कॉमन टॉपिक है। अगर मुझे डिप्रेशन है, या मुझे दुख है, या मैं नेगेटिव इमोशन से घिरे रहती हूँ, तो हम वो लोग डरते नहीं हैं अपने साइकोलॉजिस्ट के पास जाने में, या फिर ऐसे एक्सपर्ट्स के पास जाने में जिनसे वो अपनी बात कर सके। 1-1 घंटे का सेशन होता है और वो उनसे बात करते हैं। हम यहाँ पे अपनी सहेलियों से बात करके मन हल्का कर लेते हैं। ऐसा होता है, एक सहेली सबकी होती है जिससे इतना पूरे दिन की भड़ास निकाल दो, ऐसा ऐसा ऐसा हुआ, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, अब ठीक लग रहा है, अब मुझे ठीक लग रहा है, अब ठीक। तो ये एक्चुअली हम रियलाइज नहीं करते, ये हमारा नेगेटिव इमोशन मैनेजमेंट का तरीका बन गया है। कुछ कुछ लोग होते हैं अपनी मदर से बात करके बहुत खुश होते हैं, या कुछ अपनी डॉटर से, क्योंकि वो एक ऐसा बॉन्ड है कि कोई चेंज नहीं कर सकता। तो हम किसी से बात कर लेते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। मैंने कई कई लोगों को देखा है कि वो भगवान की मूर्ति से बात करते हैं, कि भाई हम किसी से नहीं बात कर सकते। कभी कभी ना भगवान के पास बैठ के वो अपने मन की पूरी बात कह देते हैं कि अब मैंने आपको बता दिया, अब आप देखो कि क्या हो सकता है। वो और कुछ नहीं है, वो अपने दिल की जो बातें हैं वो बाहर निकाल रहे हैं, बाहर निकाल रहे मतलब उसको एक्सेप्ट करे कि हाँ ये चीजें मुझे तकलीफ दे रही है। जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो बोझ कम होने लगता है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह कि हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कई बार कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। वो एक सिचुएशन प्रॉब्लम है, ये क्या मैं उसे सॉल्व नहीं कर सकती? अगर मैं उसे नहीं सॉल्व कर सकती तो वैसे भी दुखी होने का मेरा कोई रीजन ही नहीं। अगर मैं उसे सॉल्व कर सकती हूँ तो मुझे ये देखना है कि परेशान होने की बजाय मैं ऐसा क्या करूं कि मैं उसे सॉल्व कर सकूं। कुछ लोग डायरी मेंटेन करते हैं अपने दिन भर की, जो भी दिन भर की परेशानियां हैं, अच्छी चीजें है, उसमें जरूर लिखते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो सीक्रेट डायरी मेंटेन करते हैं, वो किसी को भी पता नहीं होता, सीक्रेट डायरी होती है, आज के दिन की ये 4 बातें हैं वो उसमें मैंने लिख दी, और मेरी सीक्रेट डायरी सिर्फ मेरे पास रहेगी। ये भी एक तरीका होता है कुछ लोगों का। अब ये तरीका आपका क्या है, ये तो आप ही को ढूंढना पड़ेगा, राइट? लेकिन नेगेटिव इमोशन को अपने ऊपर हावी होने देना एक वक्त से ज्यादा वो आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ चारों को खराब कर सकता है। फिजिकल हेल्थ कैसे? आप परेशान रहेंगे, डायबिटीज का प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, सिर में दर्द, चक्कर आना, डिप्रेशन होना। फिजिकल कैसे? भूख नहीं लगेगी आपको, गुस्से में है, परेशान है, डिप्रेशन में है, तो फिजिकल हेल्थ वैसे ही खराब हो जाएगी। इमोशनल हेल्थ कैसे? सब आप दुखी हैं, आपके बच्चे दुखी रहेंगे, आप चिड़चिड़े रहेंगे, आपके हस्बैंड, आपकी मदर सब आपसे थोड़ा थोड़ा थोड़ा दुखी, क्यों तो दुखी रहती है, पता नहीं क्या है, बोलती भी नहीं है क्या प्रॉब्लम है ना। प्रोफेशनल कैसे? आप अपने काम पे ही ध्यान नहीं दे पाएंगे, अब आपके इमोशंस तो कोई मैनेज नहीं कर सकता, लेकिन उसे आइडेंटिटी, उसको पहले अपनाना बहुत जरूरी है कि, और ये मानना बहुत जरूरी है कि सिर्फ मैं ही ऐसी नहीं हूँ शायद कि जिसको

0: बड़ी दिक्कत है। और भी लोग हैं दुनिया में जो शायद इससे भी बड़ी बड़ी दिक्कतों से, इसमें अमीर गरीब का कोई वो नहीं है। हो सकता है बहुत अमीर लोग हैं, पैसा भरपूर है, फिर भी नेगेटिव इमोशन बहुत सारे हैं। और एक इंसान है जो अपना काम करता है, सिंपल लिविंग है, रोजी रोटी है, घर परिवार है, और आप देखेंगे वो इतना खुश है, इतना खुश है कि पूछिए ही मत। वो कोई मेटीरियलिस्टिक चीजों से खुशी नहीं कभी कभी भी बंधी होती। नेगेटिव पॉजिटिव इमोशंस सारे हमारे अंदर हैं, कितनी तवज्जो हमें किसको कब किस वक्त पे देनी है, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल भी, जैसा कि संगीता जी ने भी कहा कि जो नेगेटिव इमोशन है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, टू कम बैक टू से कि पॉजिटिव इमोशन की महत्व क्या है हमारी लाइफ में। उनसे दोस्ती करने के लिए नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होना भी बहुत जरूरी है।
1: एंड वन मोर थिंग मैम, मेरे साथ तो ऐसे होता है मोस्टली, आई थिंक सबके साथ, जब हम हमारे नेगेटिव इमोशंस की वजह से जब दुख है किसी के साथ शेयर करते हैं तो वो कम हो जाता है, एंड हैप्पीनेस वो डबल हो जाती है व्हेन आई शेयर विद समबडी एल्स।
0: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ये फॉर्मूला भी है कहीं पे, मैंने ये भी पढ़ा था, ऐसा हैप्पीनेस का फॉर्मूला एंड जो नेगेटिव एंगर का जो फॉर्मूला है, बिल्कुल आपने जो बोला ऐसा है, एक उन्होंने डिराइव करके लिखा हुआ। मैं इतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ साइकोलॉजी में कि वो फॉर्मूला डिराइव कर दूँ, लेकिन आई रेड अबाउट इट।
1: यस मैम, जब गुस्सा होता है बर्स्ट हो जाता है तो वो अपने आप कम हो जाता है, और दुख रहते हैं किसी से बोल के रो देते हैं तो भी वो इमोशन बस कम हो जाता है, और हैप्पीनेस किसी से
0: लेकिन
1: भी कितना भी शेयर करो डबल ट्रिपल होता जाता है।
0: हमें ये ध्यान रखना है कि गुस्से में हम गुस्सा कर किस पे रहे हैं, कहीं गुस्से में हम ऐसा गुस्सा किसी पे ना कर दें कि जो हमारा पूरा रिलेशनशिप उससे खराब है। उसको इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। उस पॉइंट पे, उस ट्रिगर पॉइंट पे हमारा रिएक्शन क्या है, हमारा रिएक्शन यानी कि हमारा एक्शन क्या है, उसको पहला ई जो मैम ने कल बताया था, EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल क्वोशंट, उस बैलेंस को, कि नेगेटिव इमोशन पॉजिटिव इमोशन का जो वो बैलेंस है, कहाँ भाई नेगेटिव इमोशन कहीं ना कहीं तो निकलेगा, या तो मैं रो के निकालूंगी, गुस्सा करके निकालूंगी, भड़कूंगी किसी पे, या लिख के, या किसी को बोल के, या किसी और तरीके से नेगेटिव इमोशन तो निकलेगा ही निकलेगा। नहीं निकलेगा तो वो प्रेशर कुकर हो जाएगा, फट जाएगा किसी को, तो उसको निकलना भी जरूरी है। बट उसको मैनेज कैसे करेंगे, और मैनेज करने का तरीका हम सबका अपना है, और उसका रिएक्शन का एक्शन भी हमारा अपना है, और उसका रिजल्ट भी हमारा अपना है, राइट? बट इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमारे को गोल डिफाइन करने के लिए अपने आप को पॉजिटिव की तरफ कैसे लेके जाना है। तो आज हमने दो चीजों को रिलेट करा है। हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, कॉम्प्लेक्स हो, हम दोनों चीजों को अलग अलग भी समझ सकते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस और गोल सेटिंग, कि हमें लाइफ में गोल कैसे सेट करना चाहिए।
1: हेलो मैम,
0: हाँ जी ज्योत्सना जी,
1: मुझे भी आज ये फील हुआ है कि मैं भी अपना जो नेगेटिव इमोशन है वो मतलब कैसे यूटिलाइज करती थी। आज तक पहले मुझे आइडेंटिफाई नहीं हुआ था, जैसे मैं मुझे कभी बहुत ज्यादा किसी से लड़ाई हुई, गुस्सा हुआ तो मैं बहुत ज्यादा काम करती थी, जितने मेरे पेंडिंग्स काम होते थे मैं सारे कंप्लीट कर देती थी उस दिन, जबकि मैं वैसे भी बहुत अच्छा करती थी ऐसा नहीं है, लेकिन जिस दिन मेरे किसी से गुस्सा हो गया या किसी से फाइट हो गई या कोई बात हुई तो मैंने उस दिन सारे पेंडिंग काम कंप्लीट कर दिए। तो मुझे आज पहली बार ये आइडेंटिफाई हुआ है कि जब मैं गुस्से में आती थी तो मैं ज्यादा काम करती थी, तो अब मुझे ये चीज और याद है, अंडरस्टैंड हो रहा है कि मुझे अपने नेगेटिव इमोशन को और कैसे बैलेंस करना है और कैसे आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं मैम जो लोग बहुत डरते हैं कुछ भी मतलब करने से पहले, करना चाहते हैं प्रैक्टिस करते हैं और करने के बाद उन्हें ये डर लगता है कि हम कर नहीं पाएंगे, वैसे तो ये डर सबके अंदर होता है,
0: हम सब
1: लेकिन सबके अंदर होता है वन टू ऑल अपने अपने लेवल पे मैम, सबके अंदर होता है, लेकिन स्टूडेंट्स को फिर हम धीरे धीरे धीरे धीरे पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं, पर ठीक है आज हमें और गाइडेंस मिली है कि वो अपना स्ट्रेस कैसे निकाल सकते हैं, कैसे उसको चेंज कर सकते हैं, कैसे गाइड कर सकते हैं। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपका सेशन, थैंक्स
0: हमेशा,
1: यू।
0: मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी मदर जब गुस्से में आती थी तो बहुत अच्छा खाना बनाती थी। तो जिस दिन उसका खाना बहुत अच्छा बना होता था ना, तो हम उसको कहते हैं आज मम्मा गुस्से में थी क्या। ऐसा बहुत होता है कि हम अपने नेगेटिव इमोशंस को भी पॉजिटिव में चेंज कर पाते, हमें पता नहीं होता लेकिन हम वो कर सकते हैं।
1: जी
0: हाँ जी, तुषार आप बोलना चाह रहे,
1: मैम जी, 1 साल पहले आप हमारा जो कारेगांव का सेंटर था पुणे में, वहाँ आप मैम आई थी, तब
2: तब आपसे जो बात हुई थी मैम, उससे जो पॉजिटिव वाइब्स हमें मिले थे, वो आज भी हमें काम करने के लिए इनकरेज कर रहे हैं। हर हमारा जो सेंटर है सर मैम, यहाँ पर इंडस्ट्री वर्क और माइन वर्कर्स के बच्चे यहाँ पर आते हैं। तो उन बच्चों में जो पुअर बैकग्राउंड होते हैं, उनका कोई भी एजुकेशन की वैल्यू नहीं होती उनके घर वालों को, तो यहाँ पर काम करने पर जो बच्चे आते हैं, तो उनको नहीं क्या पुराने जमाने में जो टीचर थे, हाथ में लाठी लेकर बड़ा बड़ा चश्मा पहनते थे और गुस्से से बोलते थे, ऐसा ऐसा कंसेप्ट उनके दिमाग में बैठ गया था। लेकिन जब से मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पर ट्रेड के साथ, तो जो तारे जमीन पर में जो आमिर खान सर ने जो कैरेक्टर प्ले किया था, कि ऐसा भी टीचर होता है जो बच्चों के साथ उनका उनके जैसा रहकर काम करता है, और जो बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो डरते हैं सभी चीजों से, नई चीजें करने में, तो उनके साथ वैसा रहकर इनकरेज करके उनके अंदर भी जो क्वालिटी होती है वो बाहर निकलने का काम आपके जो सेशंस होते हैं मैम, उससे हमें इनकरेजमेंट होता है, मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच मैम, आप जो मोटिवेट करते हैं हमें और गाइडेड करते हैं, इसलिए।
0: थैंक यू तुषार। हमने ये देखा है कई बार बच्चे डरते हैं साइकिल चलाने से क्योंकि मैं गिर जाऊंगा या गिर जाऊंगी, लेकिन पेरेंट्स जो है वो छोड़ तो नहीं देते ना, वो फिर भी इनकरेज करते हैं, नहीं आप साइकिल चलाओ, गिरोगे तो क्या हुआ, कोई वहां पे कुछ बांध देता है, कपड़ा बांध देता है, अच्छा घुटने नहीं छिलेंगे, कभी हेलमेट पहना देते, अच्छा चोट नहीं लगेगी, तो हम उसको मैनेज करने का तरीका, लेकिन हम रुक तो नहीं जाते ना, तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम फियर ऑफ फेलियर नहीं लेके आएंगे, फेल तो होना ही है, लेकिन फियर ऑफ पहले से ही क्यों मान ले कि हम फेल होंगे। अभी पीछे कोई बातचीत चल रही थी तो हमने ये सुना था कि हम एक मैग्नेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं क्योंकि अर्थ की जो रेडिएशंस है वो खींच रही है हमको अपनी तरफ, ग्रेविटी खींचती है ना, तभी तो हम उड़ते नहीं रहते, हम अर्थ से चिपक के रहते हैं, जमीन पे रहते हैं, तो हम एक मैग्नेटिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, और जो हम सोचते हैं पावर ऑफ माइंड, वो बात कभी कभी सच हो जाती है। हम कहते हैं ना कि हम आज ये सोच ही रहे थे, अरे और को हो ही गया, क्यों, क्योंकि ये साइकोलॉजी में या कई कई किताबों में आप देखो कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि जो हम सोचते हैं वो हम खींचते हैं अपनी तरफ, वो रेडिएशंस हमारी तरफ आती हैं और हम उसी रास्ते पे चल पड़ते हैं, तो अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तभी तो हम पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, पहले ही सोच लेंगे कि मैं फेल हो जाऊंगी, लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, तो वैसे ही नहीं कर पाओगे आप तो, है ना, आप मैं कोई भी नहीं कर पाएगा। मुझे इस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता था, मैम ने मुझे बताया कि हम इस तरीके से करते हैं, हमने कल पढ़ाई करी, थोड़ा सा तो कुछ मैं निकाल के ला पाई, मैं नहीं कह रही कि मैं एक्सपर्ट हो गई इस टॉपिक में, बट मुझे भी नहीं पता था कि 34,000 इमोशंस होते हैं हमारे अंदर, मुझे लगता था गुस्सा, हंसी, खुशी, यही 4, 5, 8, 10 इमोशन होते हैं, पर सोचो मुझे भी कुछ पता चला, मैं अब और पढ़ूंगी इस बारे में, हो सकता है मैं भी जान पाऊं कि मैं हमेशा हंसती तो नहीं रहती, गुस्सा मुझे भी आता है, लड़ती मैं भी हूँ, बट इन चीजों का हमारी जिंदगी पे क्या असर हो रहा है वो चीज समझना बहुत जरूरी। तो आज पहला ई हम समझ के गए हैं, और अगर आप चाहें तो आज से लेके अगले सेशन तक आप ये लिख सकते हैं कि हर दिन के एंड सुबह आप कैसा फील करते थे और शाम को आप कैसा फील करते थे, जरूरी नहीं है इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, मराठी, तमिल, तेलुगु, जिस लैंग्वेज में आप लिखना चाहते हैं हम लिखते हैं, हम भी देखेंगे 34,000 इमोशन होते कैसे हैं, है ना। सो थैंक यू एवरीबॉडी मेरी बहुत सारी बातें सुनने के लिए, आई विश यू अ वेरी गुड वीकेंड, और आप एंजॉय करिए, अच्छा काम करिए, अपने सपनों को बड़ा करिए, ये सेशन जितने लोगों से शेयर कर सकते हैं करिए। हाँ
1: मैम, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ 2 मिनट।
0: जी, हाँ जी, बिल्कुल बोलिए सुमन जी।
1: जी मैम, सबसे पहले तो थैंक यू रीड इंडिया का और आप सबका, क्योंकि जो रीड से जुड़ जाता है तो मुझे नहीं लगता वो उसमें नेगेटिविटी इतनी रहती है।

0: नमस्कार, मैं अदिति शर्मा दूरदर्शन किसान चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे कार्यक्रम सफल किसान में हम देश के कोने कोने से उभरती हुई प्रतिभाओं से आपको रूबरू करवाते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि कृषि, पशुपालन और कृषि स्टार्टअप से संबंधित जानकारियां आप तक पहुंचा सके। आज के हमारे इस कार्यक्रम में जिन दो सफल किसानों से हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं, ये सफलता का परचम लहरा रहे हैं अपनी मेहनत के आधार पर। तो फिर आइए इनसे मुलाकात करने के लिए रुख करते हैं गुजरात के नवसारी का।
1: कृषि के क्षेत्र में गुजरात राज्य की अहम भूमिका है। राज्य सरकार का कृषि किसान कल्याण और सहकारिता विभाग अपने प्रभार में कृषि और संबंधित विधाओं जैसे बागवानी, मृदा संरक्षण, डेयरी विकास, पशुपालन और सहकारी गतिविधियों में नीतियों व योजनाओं के सदैव तत्पर रहा है। राज्य में बागवानी खेती और बागवानी गतिविधियों के लिए बढ़ते कृषि क्षेत्र के महत्व को देखते हुए कृषि विभाग ने अलग से बागवानी विभाग की स्थापना की है। इसलिए राज्य में बागवानी से जुड़े किसान बेहतर आयाम हासिल कर पा रहे हैं। ऐसी ही एक बागवान दंपति है नायक। ये दंपति पिछली दो पीढ़ियों से बागवानी कर अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। नवसारी जिले के सराओ गांव में रहने वाला ये परिवार मुख्य रूप से चीकू और आम की बागवानी कर रहा है। करीब 30 बीघा में फैले इनके बाग में आम की केसर किस्म, चीकू की काली पत्ती किस्म लगी है। विपुल जी ने शिक्षा लेने के बाद नौकरी में जोर आजमाइश की, लेकिन नौकरी में संतोष ना होने पर अपने पैतृक कार्य यानी बागवानी को ही चुना। पिता के साथ बागवानी की हर बारीकी को सीखते हुए विपुल जी बड़े हुए और आज ये बाग ही उनकी संपत्ति है।
2: 1992 में मैंने खेती करना चालू किया है, तब मेरे पास 300 से 350 हजार थे। उसके बाद फादर के साथ रह के मैंने वो सब रोजगारी डेवलप की है। जो कुछ दिक्कत आती है तो हम हमारी नवसारी यूनिवर्सिटी या कृषि यूनिवर्सिटी वहाँ जाके हम मार्गदर्शन लेते हैं। 30 बीघा की खेती है और 600 हजार चीकू का है। और चीकू में क्या है कि वो अक्टूबर महीना से जो चालू होता है तो अप्रैल तक उसका फल हमको मिलता है, तो 21 दिन में होता है। लेकिन अभी जो चौमासा में है जो फूल बैठते हैं उसका हमको 180 दिन के बाद वो फल के रूप में मिलते हैं। आम का है 150, उसमें क्या जब ठंडी ज्यादा रहेगी तो दिसंबर से वो उसकी मोर बोलते हैं, मोर आना चालू होते हैं। उसके बाद कड़ी पड़ते हैं, वो उस पर ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो मई और जून की 15 तारीख तक वो माल निकाल देते हैं हम। वो चीकू में काली पत्ती और कैरी में केसर है।
0: विपुल जी की बागवानी के बारे में आइए जानने के लिए सबसे पहले

0: चलते हैं उनके बागों की ओर।
1: बारिश के मौसम में विपुल जी का बाग हरियाली की चुनर ओढ़े नजर आता है। पेड़ हरे हरे पत्तों से ढके हैं तो जमीन हरी भरी घास से। कहीं कहीं पानी भी भरा नजर आ जाता है, जो सुंदर दृश्य प्रतीत होता है। बाग में ज्यादातर आम के पेड़ काफी पुराने हैं। पूछने पर विपुल जी बताते हैं कि बागवानी उनके पिताजी के समय से की जा रही है। ज्यादातर आम के पेड़ उन्हीं के लगाए हुए हैं। लगभग 100 आम के पेड़ों की उम्र तो 45 साल तक की है। वहीं समय के साथ आए बदलाव में विपुल जी ने खुद भी कई पौधों को रोपा है, जो इस समय अच्छी पैदावार दे रहे हैं। 30 बीघा बाग में 600 पेड़ चीकू, 150 पेड़ आम के लगे हैं। हर साल इनकी पैदावार में इजाफा हो रहा है, जिसके पीछे वजह है सही समय पर सही देखभाल।
2: साल में देख रेख तो वो मजदूर के पास वो कैरी निकालते हैं और पानी पाते हैं और खाता डालते हैं दो टाइम। वो अक्टूबर महीने में पहले खेर करने के बाद डालता हूँ और मई महीने में खेर करने के बाद डालता हूँ। कटिंग तो मई महीने में करते हैं, नीचे साफ सफाई रखने के लिए। वो ज्यादा बहुत नहीं, और दूसरा वो जंगली वेला फेला वो चढ़ नहीं जाए, इसीलिए नीचे से काटते हैं।
0: आइए अब कार्यक्रम में जानते हैं भारत में फलों की खेती के बारे में, और साथ ही विपुल जी से ये भी जानते हैं कि उन्होंने चीकू की किस किस्म को चुना है और कैसे उसका बेहतर उत्पादन ले रहे हैं।
1: भारत में चीकू की खेती मुख्य रूप से कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में की जाती है। चीकू की खेती करीब 65,000 एकड़ की भूमि पर की जाती है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के द्वारा जारी आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2022-23 के पहले अग्रिम अनुमान के तहत वर्ष 2022-23 में कुल बागवानी उत्पादन 350.87 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो 2021-22 अंतिम की तुलना में लगभग 3.69 मिलियन टन यानी 1.06% अधिक की वृद्धि है। फलों का उत्पादन वर्ष 2021-22 में 107.51 मिलियन टन की तुलना में 107.75 मिलियन टन होने का अनुमान है। बढ़ते हुए इन आंकड़ों के पीछे समय और मांग के अनुसार किसानों के बदले तौर तरीके और आधुनिक कृषि को अपनाना शामिल है, जिसमें विपुल नायक जैसे किसानों का योगदान सराहनीय है। विपुल जी अपने बाग में चीकू की काली पत्ती किस्म को उगाते हैं। काली पत्ती किस्म को अधिक उपज देने वाली किस्म कहा जा सकता है। इसके पौधे को वर्ष 2011 में विकसित किया गया था। इस किस्म के एक पूरे पके हुए फल में 3 से 4 बीज मिल जाते हैं और फल भी अधिक गुणवत्ता वाला होता है। इसके एक पूर्ण विकसित पेड़ से एक साल में 150 किलोग्राम तक का उत्पादन मिल जाता है।
0: किसान भाइयों बहनों, यहाँ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे विपुल जी की पत्नी से, जो बागवानी में उनका पूर्ण सहयोग दे रही है। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान।
3: रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए, गोल्डी सब्जी मसाले
4: जहां जाए रिश्ते बढ़ाए।
5: अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ?
6: अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज?
5: मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित।
6: अरे ये तो कोई रसीद लगती है।
5: कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है, जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है।
6: WDRA
5: भारत सरकार की एक संस्था है, जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है।
6: अच्छा,
5: अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया।
7: ये तो कमाल हो गया।
5: कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे, उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा।
8: अरे वाह
5: मुन्नी।
9: पापा, आप मेरा नया बैग लाए?
5: हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके।
10: WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास।
0: ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब आपको मिलवाते हैं विपुल जी की पत्नी प्रीति जी से।
1: अपने पति के काम में बराबरी से हाथ बटा रही ये प्रीति जी, जो घर तो संभाल ही रही है, वहीं बाग में भी समय दे रही है। पेड़ को कब किसकी जरूरत है, इसके बारे में प्रीति जी बखूबी जानती हैं। इसीलिए पेड़ों की कटाई कब करना है, कब भूमि को खैरना है और कब खाद डालने हैं, प्रीति जी ये सब भली भांति जानती है। हालांकि इसके लिए उनके बाग में करीब 10 लोग श्रम देकर कार्य को आसान बना रहे हैं।
8: आज 600 पेड़ है चीकू के और आम के 150 पेड़ है। इसकी कटिंग हम मई महीने में करते हैं, जो नीचे पूरा मतलब लग गया होगा तो वो काट देते हैं। हर रोज हमारे घर पे 10 लेबर आते हैं, उनसे हम लोग वो सब चीकू का वो काम करवाते हैं। और साल में 2 बार जमीन पूरी खेड़ लेते हैं, एक मई महीने में और एक दिवाली के पर। और दोनों टाइम जब भी खेड़ते हैं तब बाद में वो खातर उसमें डालते हैं, और दोनों टाइम खातर उसमें डाल देते हैं। और पानी का तो क्या है, वो एक मतलब एक कियाड़े में हो गया चीकू का काम खत्म, तो दूसरे किया जाएंगे तो वहां पे पानी चालू कर देते है।
0: कार्यक्रम में जानते हैं इनकी फलों की बिक्री के बारे में और साथ ही साथ बिकवाली से होने वाले मुनाफे के बारे में।
1: बाग में तैयार होने वाले फल सीधे बाजार नहीं भेजे जाते, बल्कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से मंडी में दिए जाते हैं, जहां इन्हें अपने फलों का वाजिब दाम मिल जाता है। मंडी में देने के कारण इन्हें कई समस्याओं से बचना आसान हो जाता है, साथ ही फलों को आसानी से कई राज्यों में पहुंचाया जा सकता है। नायक दंपति बागवानी करके सालाना 7 से 8 लाख रुपए आसानी से कमा लेते हैं। वहीं आगे की रणनीति पर प्रीति जी का कहना है कि वो भविष्य में फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी किस्मत आजमाएंगी।
8: एग्रीकल्चर मतलब वो चीकू और आम में भी जो घर पे लेडीज लोग बैठे हैं वो भी यहाँ पे आके मतलब कुछ भी मतलब चीकू का वो प्रोसेसिंग करके घर पे वो चिप्स बनाकर उसको सुखा कर उसका मतलब मार्केटिंग कर सकते हैं, उसमें भी हम लोग थोड़ा कमा सकते हैं। और कैरी का भी वो जब हम लोग को पक जाती है तब हम लोग को ज्यादा पैसा नहीं मिलता है, तो उसका भी प्रोसेसिंग करके वो हम लोग उसमें भी थोड़ा अपना आत्मनिर्भर हो सकते हैं। तो हम लोग को ये काम करना चाहिए कि जिससे हमें वो पैसे मिले और हम अपने पैरों पे खड़े हो सके।
0: नायक दंपति की इस सफलता के पीछे कृषि विशेषज्ञों और साथ ही साथ सरकार का किस तरह का योगदान रहा है, आइए अब इसके बारे में जानकारी लेते हैं।
1: विपुल जी बताते हैं कि समय समय पर सरकार का पूरा सहयोग मिला है, यहाँ तक कि ट्रैक्टर पर सरकार से सब्सिडी भी मिली है। वहीं बेहतर बागवानी के लिए नवसारी कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों से पूरा सहयोग दिया है। वहीं बेहतर बागवानी के लिए नवसारी कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने पूरा सहयोग दिया है, चाहे उन्नत किस्म हो या सही रखरखाव। विशेषज्ञ मोबाइल के माध्यम से और जरूरत होने पर खुद भी खेत या बाग का मुआयना करते हैं और समस्या का समाधान करते हैं।
2: सरकार की तरफ से ट्रैक्टर पे भी सब्सिडी मिलती है, वो पाइप पे भी मिलता है सब्सिडी, और वो कैरेट है ट्रैक्टर का जो औजार है उसमें भी सब्सिडी सरकार देती है, खातर पे भी देती है सब्सिडी।
11: अभी हम सराव जो गांव है वहां पे है, यहाँ ये सराव गांव जो है जलालपुर तहसील में आता है, नवसारी जिले की, और ये गुजरात में है। और यहाँ जो श्री विपुल भाई नायक और श्रीमती प्रीति बेन के फार्म पे है, इन्होंने इनके पास 30 बीघा जमीन है और इस जमीन में इन्होंने 600 जो पेड़ है, ये काली पत्ती जो चीकू की वैरायटी है उसके लगा रखे हैं, और 150 जो पेड़ है वो आम के लगा रखे, जिसमें केसर वैरायटी है। और जो काली पत्ती वैरायटी चीकू में और केसर वैरायटी जो है आम में, यहाँ की बहुत ही लोकप्रिय किस्में हैं। और इनका जो भी ये उत्पादन होता है चीकू का और आम का, ये सारा अब्रह्मा जो या कोऑपरेटिव सोसाइटीज की जो मंडली है वहां पे देते हैं, और वहां से ये देश के विभिन्न कोनों में जाता है। और जो विपुल भाई जो है अपने जो बगीचे में इसको दो बार जुताई करते हैं, एक बार अक्टूबर में, दूसरी बार मई में, और इसको मेंटेन करते हैं।
0: किसान भाइयों बहनों, इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे महिलाओं के एक ऐसे समूह से जो प्रसंस्करण का दामन थामे हुए हैं और इस क्षेत्र में सफलता हासिल किए हुए हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान।
3: रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए, गोल्डी सब्जी मसाले
4: जहां जाए रिश्ता।

0: ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब आपको महिलाओं के उस समूह से रूबरू करवाते हैं।
1: गुजरात में जिन लोगों के पास कृषि भूमि नहीं है वो भी अपनी किस्मत लिख रही हैं, वो भी खाद्य प्रसंस्करण करके। हमारी मुलाकात ऐसे ही एक महिला समूह से हुई जो कई तरह के खाद्य उत्पाद बनाती है और भी उन्हें मेलों दुकानों के माध्यम से बेचती है। करीब 10 से 12 महिलाओं का ये समूह पापड़, कुकीज, हेयर ऑयल, कुड़ई, चकली जैसे उत्पाद बना भी रही है और बेच भी रही है। इसके अलावा वो दालें, मोटे अनाज और चावल की पैकिंग करके भी बाजार पहुंचा रही है। समूह की एक महिला से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो किसानों से अनाज लाती है और उन्हें साफ करके पैक करती है। वो बताती है कि उनके पति पेशे से वाहन चालक है, ऐसे में घर की जरूरतें पूरी करने में परेशानी आती थी, लिहाजा सुनीता ने खुद इस समस्या का समाधान निकाला और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में लग गई। आलम ये है कि उनका उत्थान ग्राम सखी संघ सालाना 12 से 15 लाख कमा रहा है।
2: हमारे यहाँ पे केवीके में नितल बेन करके है और नितल बेन लोगों ने हम लोगों को समझा है कि आप ऐसे सब प्रोडक्ट, हमारे यहाँ पे मेन रागी है सर, हमारे यहाँ पे रागी होती है, तो ये रागी की प्रोडक्ट कैसे बनाए, उसमें से कैल्शियम कैसे मिलता है, सब ये सब हमको समझाया और उसके बाद हम लोगों ने ये सब बनाना चालू किया। हम लोग खाली समय में 10 बहनें मिलके ये सब काम करते हैं। मेरा ग्रुप का नाम है क्रिमिसा सखी मंडल। हम लोग 10 मेंबर है। 10 मेंबर मिलके हम लोग सब ये प्रोडक्ट सब बनाते हैं, जिसमें नागली की बिस्किट है, ये सब नागली का पापड़ है, सब ये चकरी है और ये गेहूं की कुड़ई है और ये साबुदाना है और उसकी चकरी है और ये नागली का बड़ा पापड़ है और ये सब चावल है, आटा है, ये सब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सब है। हम लोग ये खेडू से लेके आते हैं और साफ सफाई करके हम लोग मेले में सब बेचने के लिए जाते हैं।
1: सुनीता के सफर में उनकी बेटी भी सहयोग कर रही है। हालांकि वो समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास कर रही है, इसलिए उत्पादों को ऑनलाइन बिक्री करने के क्षेत्र में जानकारी ले रही है।
3: भी एग्रीकल्चर में डिप्लोमा के मार्केटिंग सीखने वाली हूँ और उससे ही मैं अपनी मम्मी के साथ इस क्रिमिसा सखी मंडल में भी हूँ, उनकी हेल्प भी करती हूँ और साथ ही मैं मतलब मम्मी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मार्केटिंग सीखने को मिलती है, इसीलिए मुझे उस पर मतलब ज़्यादा ए और वो मैं वही सीखना चाहती हूँ एग्रीकल्चर में जाके। हम यूथ से ये कहेंगे कि आप पढ़ाई के साथ साथ ये सारे काम भी कर सकते हो और एग्रीकल्चर में बहुत सारे स्कोप है, जैसे मतलब बहुत सारे स्कोप है, उससे आप अपने खुद का भी कुछ कर सकते हो उसमें पढ़ाई करके, और पढ़ाई के साथ साथ आप अपना ये दूसरा काम भी कर सकते हो जिससे आपको इनकम भी मिलेगी और आपके पढ़ाई में भी आपको वो काम आएगी। तो हम वघई ट्राइबल्स में है जहाँ पर ज़्यादातर महिलाएं काम नहीं करती है और फिर ये सब शुरू किया, मतलब एक यूथ शुरू किया कि उसमें महिलाएं सब काम करे और उससे वो अपने घर से बाहर निकल कर काम करती है और फिर काम करके वो मतलब आगे भी गई है, अहमदाबाद, सूरत, मुंबई तक गई है वो सब, और हमारी जो पहले की स्थिति थी और उससे हम कहीं बेहतर हो गए हैं और उसमें ही हम धीरे धीरे उन्नति कर रहे हैं।
0: महिलाओं के ऐसे समूहों को केवीके का पूरा पूरा सहयोग मिल रहा है, तभी तो हमारी महिलाएं कृषि और हस्तशिल्प के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और सफलता की ऊंचाइयों को छू रही हैं।
4: नवसारी कृषि यूनिवर्सिटी का ये वघई कैंपस हमारे यूनिवर्सिटी के तीनों मैंडेट्स जो है, टीचिंग, रिसर्च और एक्सटेंशन एजुकेशन, उसमें काम कर रहा है। हमारे पास यहाँ पे कॉलेजेस और केवीकेज में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फार्मर्स के लिए हम चला रहे हैं। उसमें ज़्यादातर मशरूम का हमारे पास बहुत बड़ा यूनिट है, उसमें हम स्पॉन प्रोडक्शन, उनको मशरूम कल्टीवेशन की ट्रेनिंग करवाते हैं। नर्सरी का बहुत बड़ा यूनिट है तो उसमें भी हम नर्सरी की ट्रेनिंग करवाते हैं। वर्मी कम्पोस्ट का यूनिट है तो वर्मी कम्पोस्ट में भी हम उनको ट्रेनिंग करवाते हैं और उनकी जो स्किल डेवलपमेंट है, और हमारा जो केवीकेज है कृषि विज्ञान केंद्र, वो भी फार्मर्स के साथ मिलके ऐसे शॉर्ट कोर्सेज करके फार्मर्स को हर सब्जेक्ट में, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के रिलेटेड में हर सब्जेक्ट में स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग करवाते हैं। हमारा एरिया बांबू का है, फॉरेस्ट एरिया है, ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है, तो बाम्बू की भी हमारे नवसारी में बाम्बू यूनिट है, उसके माध्यम से उनको यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट और 2 दिन 3 दिन 1 वीक की ट्रेनिंग करवाते हैं। हमारा ये सेंटर इंडिया में भी बेस्ट सेंटर में भी अवार्ड मिला है, स्कॉच अवार्ड भी मिला है, तो काफ़ी काफ़ी प्रचलित और बहुत सारी। और एक हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा ये सेंटर ने एक गिराक नाम की वेराइटी मिलेट की नागल की बनाई है, जो हमारे मोदी साहब ने FAO को दान की है। तो ये बायो फोर्टिफाइड वेराइटी है, कैल्शियम रिच है, आयरन रिच है, जिंक रिच वेराइटी है। तो यहाँ पे नागली जो है उसमें भी हम बहुत सारा काम कर रहे हैं, बहुत सारे फार्मर्स को डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। स्ट्रॉबेरी पर हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, स्ट्रॉबेरी का भी डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, फार्मर्स से करवा सकते हैं। तो हम पॉकेट दून दून के जहाँ जहाँ जो कुछ स्कोप्स है, तो हमारे KVK के माध्यम से हम उनको उन तक पहुँचते हैं और उनके उनके हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम देने की ट्राई करते हैं।
0: तो आज के कार्यक्रम में देखा आपने कि बागवानी और साथ ही साथ प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी सफलता हासिल की जा सकती है। संसाधन भले ही कम हो, लेकिन अगर कड़ी मेहनत की जाए तो इसमें भी सफलता की ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे सफल किसानों से मिलकर आप इनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे और साथ ही हम भी वादा करते हैं कि ऐसे ही प्रेरणादायी किसानों की दास्तानें आप तक पहुंचाते रहेंगे। साथ ही आपको बता दें, अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम दोबारा देखना है तो कर सकते हैं आप हमारे YouTube चैनल का, या फिर कोई ऐसी दास्तान आप हमसे साझा करना चाहते हैं तो आप ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा, सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसके साथ आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

रीड इंडिया प्रस्तुत करता है विज्ञान प्रसार द्वारा निर्मित विज्ञान और तकनीकी पर आधारित कार्यक्रम। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: भगवान ने अगर बड़ी बड़ी आंखें दी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे और बड़ा करके तुम सामने वाले को घूरते रहो।
1: क्या क्या कह रहे हो तुम?
0: मैं कह रहा हूँ कि अपनी इन बड़ी बड़ी आंखों को थोड़ा छोटा कीजिए और प्रोग्राम शुरू कीजिए।
1: राइट, फिर आज किस बारे में जानना चाहोगे तुम बबलू?
0: ये आंखें उफ युम्मा।
2: खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है, मगर आंखें खोलते ही देखने की प्रक्रिया जितनी सरल प्रतीत होती है उतनी है नहीं। इसके पीछे विज्ञान है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जीव से लाइट रिफ्लेक्ट या अपवर्तित होकर कॉर्निया पर पड़ती है। कॉर्निया के बाद लाइट एंटीरियर चेंबर से होकर गुजरती है, जिसमें एक तरल पदार्थ होता है जिसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं। ये तरल पदार्थ इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर पैदा करता है, जिससे आई बॉल्स की शेप बनी रहती है। कॉर्निया के बाद लाइट आयरिस पर पड़ती है, जो लाइट की तीव्रता के हिसाब से कम या ज्यादा खुलता है। कैमरे का अपर्चर कुछ ऐसे ही काम करता है। अगर रोशनी ज्यादा होती है तो कैमरे का अपर्चर और हमारी आंख का आयरिस कुछ बंद हो जाता है, और कम रोशनी में अपर्चर और आयरिस ज्यादा खुल जाते हैं। आयरिस से होकर लाइट प्यूपिल और लेंस से होती हुई रेटिना पर पड़ती है, और इससे रेटिना पर जो इमेज बनती है वो उल्टी होती है। इन इमेजेस को आंखों से ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती है ऑप्टिक नर्व्स। ब्रेन में कुछ कोशिकाएं होती हैं जिनकी मदद से रेटिना पर बनने वाले इमेज को ब्रेन पढ़ता है। ब्रेन इमेज को सीधा करके देखता है। इसके अलावा महत्वपूर्ण ये है कि आंखें सामने देखते वक्त अपने दोनों तरफ भी देख पाती हैं, और इसे आंखों का फील्ड ऑफ विजन कहते हैं। अक्सर जब आंखों के देखने की क्षमता कम हो जाती है तब फील्ड विजन कम हो जाता है। कई बार आंखों में डिफेक्ट आ जाते हैं, जिससे देखने की प्रक्रिया में मुश्किल होने लगती है। कभी लेंस में दिक्कत आने से रेटिना तक रोशनी पूरी नहीं पहुंचती और धुंधला दिखने लगता है। कई बार इमेज रेटिना पर ना बनकर उसके आगे और पीछे बनने लगती है, जिससे हमें चीजें साफ नहीं दिखती और चश्मा लगवाना पड़ता है। कई बार आंखों के इन्फेक्शन या आंख में चोट लगने से भी हमारी दृष्टि पर असर पड़ता है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। इस बीमारी में धीमी लाइट में और अंधेरे में दिखना बहुत कम हो जाता है। इसके इलाज के लिए जरूरी है कि मरीज को विटामिन ए से भरपूर भोजन दिया जाए। इन बीमारियों का इलाज तो हो सकता है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें लापरवाही करने से आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। वजह कुछ भी हो, पर आंखों की बीमारी यदि गंभीरता से ना ली जाए तो नतीजा एक ही निकलता है, दृष्टिहीनता। गंभीरता से ना लेने की एक बहुत बड़ी वजह होती है इन बीमारियों का धीरे धीरे बढ़ना।
1: ये तो हम जानते हैं कि हमारे शरीर में एक चमत्कारिक शक्ति है सेल रिपेयर करने की, यानी किसी भी अंग द्वारा क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को रिपेयर या रिप्लेस करने की क्षमता। मगर आंखों की स्थिति जरा भिन्न है। इसके लेंस की कोशिकाओं को ना तो रिपेयर किया जा सकता है और ना ही रिप्लेस। इसलिए अगर लेंस को कोई भी नुकसान पहुंचता है तो ये धीरे धीरे जमा होकर बीमारी का रूप धारण कर लेता है। ये बीमारी है कैटरैक्ट, यानी मोतियाबिंद। इस बीमारी में आंखों से धुंधला दिखाई देता है। आइए देखते हैं ये बीमारी होती कैसे।
2: मोतियाबिंद की बीमारी में लेंस की पारदर्शिता कम होती जाती है और लेंस क्लाउडी यानी कि धुंधला होता जाता है। इसकी वजह से लेंस से होकर जाने वाली रोशनी रेटिना तक पूरी नहीं पहुंचती और धुंधला दिखने लगता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ लेंस के प्रोटीन में बदलाव आता है, जो लेंस को अपारदर्शी बना देता है। इसे अंडे के उबलने और ऑमलेट के बनने जैसी साधारण प्रक्रिया से समझा जा सकता है। अंडे की सफेद जर्दी प्रोटीन से बनी होती है और सेमी ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन जब अंडे को उबाला जाता है या पकाया जाता है तो अंडे के प्रोटीन में बदलाव आ जाता है जिससे वो अपारदर्शी हो जाता है। कैटरेक्ट में भी लेंस के प्रोटीन में आया बदलाव उसे अपारदर्शी बना देता है। कैटरेक्ट के बहुत अधिक बढ़ जाने पर आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। मोतियाबिंद के सामान्य लक्षण हैं: धुंधला दिखना, और ये धुंधलापन बीमारी के साथ बढ़ता जाता है। अगर इलाज न किया जाए तो पूरी तरह दिखना बंद भी हो सकता है। रात में रोशनी वाली जगह पर चमकीले स्पॉट्स दिखना, चश्मे के नंबर में बार बार बदलाव आना और डबल विजन यानी हर चीज दो दिखना। बढ़ती उम्र के साथ होने वाला मोतिया सिनाइल कैटरेक्ट कहलाता है। इसमें दो स्थितियां हो सकती हैं। पहली स्थिति में लेंस के प्रोटीन में बदलाव के कारण प्रोटीन के क्लंप यानी थक्के रेटिना तक पहुंचने वाली इमेज की शार्पनेस को कम कर देते हैं। प्रोटीन के क्लंप के कारण लेंस की पारदर्शिता खत्म हो जाती है जिससे रेटिना तक समुचित मात्रा में रोशनी नहीं पहुंच पाती। दूसरी स्थिति में पूरे लेंस की पारदर्शिता धीरे धीरे खत्म होने लगती है जिससे दृष्टि में धुंधलापन आने लगता है। जैसे जैसे लेंस की पारदर्शिता कम होती जाती है वैसे वैसे धुंधलापन बढ़ता जाता है। जब आंख की किसी दूसरी बीमारी की वजह से आंख के लेंस में होने वाले इन्फेक्शन से कैटरेक्ट होता है तो इसे सेकेंडरी कैटरेक्ट कहते हैं। अगर कैटरेक्ट की सर्जरी के बाद हुए इन्फेक्शन से दोबारा कैटरेक्ट हो जाता है तो इसे भी सेकेंडरी कैटरेक्ट कहते हैं। आंख में किसी चोट जैसे फायर क्रैकर के स्प्लिंटर्स या चिंगारियों से हुआ घाव और बिजली के झटकों से होने वाले कैटरेक्ट को ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट कहते हैं। आंख में गहरी चोट जो कॉर्निया से होते हुए लेंस को भी नुकसान पहुंचा दे उससे ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट हो सकता है।
0: ब्रेक के बाद एक बार फिर मैं और कुहू आपका स्वागत करते हैं। ये आंखें उफ यम्मा। अरे कोकिला, तुम मुझे दो क्यों दिख रही हो?
1: पता नहीं एपिसोड के अंत तक दिखूंगी भी कि नहीं। जाओ जाकर अपना इलाज करा लो, वरना आंखों की एक ऐसी बीमारी भी है जिसमें शुरुआत में इलाज ना कराने पर आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाती है।
0: वो तो मैं करा लूंगा, मगर आपने तो सिर्फ बीमारी के बारे में बताकर छोड़ दिया मैडम कुहू MBBS। इलाज नहीं है क्या?
1: बबलू, मैं इलाज के बारे में ही बताने जा रही थी। जानते हैं फ्रेंड्स, पुराने जमाने में मोतियाबिंद का इलाज करने के लिए उसके पूरे पकने का इंतजार करते थे, मगर आज किसी भी स्टेज में उसका इलाज किया जा सकता है। असल में इसे तीन स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। शुरुआती दौर में इसे ट्रेस कैटरेक्ट कहते हैं, फिर माइल्ड या मॉडरेट, और जब मोतियाबिंद पूर्ण रूप से बढ़ जाता है तो उसे पक्का मोतिया कहते हैं।
0: अब इलाज की बात करें।
2: मोतियाबिंद का डिटेक्शन व्यापक जांच के बाद होता है। इनमें आते हैं विजुअल एक्यूटी टेस्ट, डायलेटेड आई एग्जाम और अल्ट्रासाउंड। विजुअल एक्यूटी टेस्ट में एक चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। टेस्ट के दौरान व्यक्ति 6 मीटर की दूरी से चार्ट के अक्षरों को पढ़ता है। इसकी रीडिंग फ्रैक्शन में लेते हैं। फ्रैक्शंस के आधार पर आंखों के पावर का निर्धारण ऑप्टोमेट्रिस्ट करता है। ये टेस्ट आंखों की दूसरी बीमारियों की जांच के लिए भी किया जाता है।
3: जांच के दौरान डायलेशन में आंखों में ऐसे आई ड्रॉप्स दिए जाते हैं जो प्यूपिल को बड़ा कर देते हैं। इससे प्यूपिल के पीछे का हिस्सा जांचना आसान हो जाता है। पिछला हिस्सा देखने के लिए ऑप्थेल्मोस्कोप नामक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इससे किसी भी प्रकार की आंख की बीमारी पकड़ में आ जाती है।
4: ओपेक लेंस को सर्जिकली रिमूव करके ही कैटरेक्ट का पूरा इलाज किया जाता है। कैटरेक्ट के शुरुआती दिनों में डॉक्टर कई बार चश्मा लगाने की सलाह देते हैं। इसके पश्चात सर्जरी की जाती है, जिसके जरिए लेंस को हटाकर उसकी जगह कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। ये सर्जरी दो तरह की होती है, एक्स्ट्रा कैप्सुलर सर्जरी और फैको इमल्सिफिकेशन सर्जरी।
3: एक्स्ट्रा कैप्सुलर सर्जरी में कॉर्निया में चीरा लगाकर खराब हो चुके लेंस को बाहर निकाल लिया जाता है। इसके बाद निकाले गए लेंस की जगह कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। जहां लेंस नहीं लगाया जाता, वहां मरीज को सर्जरी के बाद चश्मा लगाया जाता है। दूसरी सर्जरी है फैको इमल्सिफिकेशन सर्जरी, जो एक मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी है। इसमें कॉर्निया में एक बहुत छोटा सा सुराख किया जाता है, फिर इस सुराख के जरिए अल्ट्रासाउंड वेव्स प्रवाहित की जाती हैं। इन अल्ट्रासाउंड वेव्स के कारण मोतिया यानी कि अपारदर्शी लेंस मुलायम होकर टूट जाता है और उस जगह पर कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। अल्ट्रासाउंड टेस्ट की मदद से लेंस लगाने से पहले लेंस का पावर और साइज तय किया जाता है। कैटरेक्ट सर्जरी आजकल लगभग आधे घंटे का मामूली ऑपरेशन है, जिसमें मरीज को लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स। मोतियाबिंद तो एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज मुमकिन है, लेकिन आंखों की एक ऐसी बीमारी भी है जिसमें अगर एक बार आंखों की रोशनी चली गई तो फिर उसे वापस नहीं लाया जा सकता। ये बीमारी है ग्लॉकोमा। आइए देखते हैं ये बीमारी क्या है और इसका इलाज क्या है।
1: ग्लूकोमा यानी काला मोतियाबिंद, ये आंखों की एक ऐसी बीमारी है जिसमें आंखों के अंदर का प्रेशर बढ़ जाने से ऑप्टिक नर्व्स के क्षतिग्रस्त होने का खतरा बढ़ जाता है। ऑप्टिक नर्व ही इमेज को आंखों से ब्रेन तक पहुंचाती है। दरअसल कॉर्निया और लेंस के बीच एक्वस ह्यूमर नामक एक तरल पदार्थ मौजूद होता है जो कि आई बॉल का आकार मेंटेन रखने के लिए एक दबाव आंखों में पैदा करता है जिसे इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर कहते हैं। प्राकृतिक रूप से एक्वस ह्यूमर आंख के एक हिस्से में लगातार बनते रहते हैं और दूसरे हिस्से से लगातार निकलते भी रहते हैं। इससे आई प्रेशर संतुलित रहता है, लेकिन कभी कभी एक्वस ह्यूमर का निर्माण जरूरत से ज्यादा होने लगता है या इनका निकलना बाधित होने लगता है। ऐसी स्थिति में आई प्रेशर बढ़ जाता है। एक्वस ह्यूमर के बहाव में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर ग्लूकोमा दो तरह का होता है। पहला ओपन एंगल ग्लूकोमा, ट्रैबेक्युलर मेशवर्क जिससे होकर एक्वस ह्यूमर बाहर निकलता है उसमें धीरे धीरे आने वाली रुकावट से ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है तथा दोनों आंखों को प्रभावित करता है। दरअसल ट्रैबेक्युलर मेशवर्क टिश्यूज कॉर्निया के पास होते हैं और इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर मेंटेन करने के लिए एक्वस ह्यूमर को बाहर निकालते हैं। अगर इनमें कोई रुकावट आ जाती है तो एक्वस ह्यूमर का लेवल बढ़ने लगता है और इससे इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर भी बढ़ जाता है जो आंख को बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकता है और आंखों की रोशनी भी जा सकती है। दूसरी तरह का ग्लूकोमा है क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा, जिसमें आयरिस एक्वस ह्यूमर के फ्लो में रुकावट पैदा करता है। नतीजतन एक्वस ह्यूमर के बाहर निकलने का रास्ता बंद हो जाता है और इससे इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर भी बढ़ जाता है जो आंख को बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकता है और आंखों की रोशनी भी जा सकती है।
2: क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा में आंख का प्रेशर बढ़ने के कारण आंख की नस को नुकसान पहुंच जाता है जिसके कारण आपकी आंख की रोशनी जा सकती है। इसमें एक तो आंख में दर्द होता है, रेडनेस हो जाता है, सिर में दर्द होता है, जब आप लाइट को देखोगे कलर्ड हेलोस दिखेंगे, कभी कभी उल्टी भी हो जाती है। अगर आपको ये सब सिम्टम्स है तो आपको जल्द से जल्द आई स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए।
1: ये एक इमरजेंसी की अवस्था है और अगर मरीज के इलाज में 24 से 48 घंटे की देरी हो जाए तो आंखों की रोशनी हमेशा के लिए भी जा सकती है। कोई भी इसका शिकार हो सकता है, बेशक वो अपने आंखों के डॉक्टर से नियमित रूप से जांच करवा रहा हो और आंख इससे पहले बिल्कुल ठीक हो। और अब बात सेकेंडरी ग्लूकोमा की। इन्फ्लेमेशन, आंखों का ट्यूमर और वेनस प्रेशर के बढ़ने से होने वाले ग्लूकोमा को सेकेंडरी ग्लूकोमा कहते हैं। आमतौर पर क्रॉनिक ग्लूकोमा में कोई निश्चित लक्षण नहीं दिखाई पड़ते और ये किसी को भी अपनी चपेट में ले सकता है, लेकिन कुछ लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे जिनकी उम्र 50 वर्ष से ऊपर हो, जिनके परिवार में ग्लूकोमा की फैमिली हिस्ट्री हो, डायबिटीज, माइग्रेन या हाइपरटेंशन के मरीज हों, लंबे समय से स्टेरॉइड्स का सेवन कर रहे लोग या जिनकी आंखों में चोट लगी हो। ग्लूकोमा के डायग्नोसिस के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं उनमें प्रमुख है टोनोमेट्री। इसमें मोतियाबिंद के टेस्ट की ही तरह एक विशेष इंस्ट्रूमेंट द्वारा आंखों के प्रेशर को नापा जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण टेस्ट है ऑप्थैल्मोस्कोप टेस्ट, जिसके जरिए आंखों के पीछे ऑप्टिक नर्व की जांच की जाती है। तीसरा टेस्ट है विजुअल फील्ड असेसमेंट। इस टेस्ट में एक स्क्रीन पर रोशनी की छोटी छोटी स्पॉट्स डाली जाती है और मरीज को रोशनी वाले स्थान को पहचानने के लिए कहा जाता है। इससे पता चलता है कि मरीज के विजन पर कितना असर पड़ा है। ग्लूकोमा का इलाज उसके वर्ग पर निर्भर करता है। ओपन एंगल ग्लूकोमा का आई ड्रॉप्स या खाने वाली दवाओं से इलाज किया जाता है। यदि दवाओं से इलाज न हो सके तब सर्जरी से इसे कंट्रोल करते हैं। सर्जरी में एक्वस ह्यूमर के आउटफ्लो के लिए एक नया रूट बनाया जाता है, इसको ट्रैबेक्यूलोक्टोमी कहते हैं। क्लोज एंगल ग्लूकोमा का इलाज कारगर रूप से सर्जरी के द्वारा होता है। सर्जरी में आयरिस की बाहरी सीमा पर एक छोटा छेद करते हैं, इससे एक्वस ह्यूमर बाहर निकल जाता है। इसके लिए ज्यादातर लेसिक सर्जरी या फिर मामूली ऑपरेशन किया जाता है और एक्वस ह्यूमर के निकलने के लिए दूसरा रास्ता बना दिया जाता है।
3: यो फ्रेंड्स, ब्रेक के बाद हम लाए हैं कुछ खट्टी मीठी बातें। चलिए बताइए कि हम एक मिनट में कितनी बार पलकें झपकाते हैं। कोकिला, तुम शुरू करो।
0: यही कोई 15 बार।
3: क्या आप जानते हैं कि आंसू क्यों बहते हैं?
0: बबलू, तुम वही बताओगे जो सबको पता है, कुछ नया नहीं बता सकते।
1: विजन लॉस का एक और कारण है कॉर्नियल अल्सर या कॉर्नियल डैमेज। दरअसल कॉर्निया शीशे जैसा एक पारदर्शी टिश्यू है। इसका व्यास लगभग 11 से 12 मिलीमीटर होता है। ये आंख के काले हिस्से का आवरण है। किसी भी प्रकार की चोट, इन्फेक्शन या अधिक ताप से कॉर्निया डैमेज हो जाने पर कॉर्नियल ट्रांसप्लांट ही एकमात्र उपाय है। अगर कॉर्निया के उस हिस्से में डैमेज हुआ है जहां से विजन पर असर नहीं पड़ता तो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता। चूंकि कॉर्निया का पोषण रक्त से नहीं होता है बल्कि आंख के

0: आंखों का एक और गंभीर इन्फेक्शन है जिसे पैन ऑप्थल्माइटिस कहते हैं। इसमें लेंस, कॉर्निया, आयरिस और रेटिना पर असर पड़ सकता है। अगर समय पर इसका इलाज न हो तो आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है और कई मामलों में पूरी आंख को ही निकालना पड़ सकता है। ट्राइकोमा आंखों का एक और इन्फेक्शन है जो एक इन्फेक्टेड व्यक्ति से दूसरे में एक दूसरे के सामान के इस्तेमाल से फैल सकता है। एक बच्चे से दूसरे बच्चे में और माँ से बच्चे में ट्राइकोमा का इन्फेक्शन ज्यादा फैलता है। ये इन्फेक्शन अक्सर वहाँ होता है जहाँ गंदगी फैली होती है और साफ सफाई के लिए पानी की कमी होती है। ड्रायर क्लाइमेट्स यानी अति शुष्क जलवायु वाले इलाकों में ये इन्फेक्शन ज्यादा होता है। अगर इस बीमारी का इलाज नहीं किया जाए तो आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है।
1: So, कैसा रहा? खूब सारी बातें बता दी, नहीं?
2: अब बातें ही करते रहोगे या कुछ कंक्लूजन भी होगा?
1: ओहो, मेरे डायलॉग की चोरी। खैर, बच्चों को भी कभी कभी छूट दे देनी चाहिए।
2: बबलू,
1: बाय फ्रेंड्स,
2: तुमसे मैंने
1: नेक्स्ट वीक मिलेंगे, बाय।
2: सॉरी फ्रेंड्स, मुझे ना इसके बड़बोलेपन पर रोक लगानी पड़ेगी, इसलिए आपसे इजाजत चाहूंगी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बबलू।
0: आइए अब एक नजर इस एपिसोड की कुछ खास बातों पर। आंख में लाइट कई जगह पर फोकस होती है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जीव से लाइट रिफ्लेक्ट होकर कॉर्निया पर पड़ती है। रेटिना के ऊपर उल्टी इमेज बनती है। मस्तिष्क में हमें सीधा दिखाई देता है। मोतियाबिंद में धुंधला दिखने लगता है। ऐसा आंखों के लेंस में मौजूद प्रोटीन के आकार में परिवर्तन के कारण होता है। मोतियाबिंद का इलाज एक छोटे से ऑपरेशन से किया जाता है। ग्लूकोमा में आंखों की ऑप्टिक नर्व्स क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। ग्लूकोमा काफी खतरनाक हो सकता है, इसलिए इसका तुरंत इलाज कराना जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि स्टीरॉयड आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत वतन का राग कार्यक्रम में आज हम स्मरण कर रहे हैं वीरांगना रानी दुर्गावती को।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जी। अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय

भारतीय इतिहास की अमर वीरांगना रानी दुर्गावती का जन्म चंदेल राजा शालिवान के घर हुआ था। सन 1542 में उनका विवाह गौंड शासक दलपति शाह से हुआ और उनका वैवाहिक जीवन मात्र 8 सालों का रहा। 26 साल की उम्र में वो विधवा हुई और अपने अवयस्क पुत्र वीर नारायण की ओर से उन्होंने शासन संभाला। दुर्गावती ने 16 सालों तक जिस कौशल से गोंडवाना राज्य का शासन चलाया उसकी प्रशंसा के पन्ने इतिहास में भरे पड़े हुए हैं। इतना बड़ा राज्य तब मध्य और उत्तर भारत में कोई दूसरा नहीं था। आईने अकबरी में मुगल इतिहासकार अबुल फजल ने तत्कालीन गोंडवाना राज्य की समृद्धि और व्यवस्था का वर्णन करते हुए लिखा है कि दुर्गावती की प्रजा स्वर्ण मुद्राओं और हाथियों से लगान अदा किया करती थी। 1400 हाथी तो केवल राजधानी गढ़ा मंडला के हाथी खाने में ही थे। अपने विशाल राज्य के 23,000 गांवों की देखरेख करने के लिए रानी दुर्गावती ने आधे से अधिक गांवों में एक एक शीतकार नियुक्त किया था। उन्होंने इतने तालाब खुदवाए कि पीने के अलावा सिंचाई कार्य के लिए किसानों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध था। आज के जबलपुर नगर में रानी ताल, चेरी ताल और आधार ताल है जिसका निर्माण दुर्गावती ने करवाया था, जिन्हें रानी, उनकी सेविका और दीवान आधार सिंह के नाम से जाना जाता है। उनके शासित भूखंड की संपन्नता और प्रसिद्धि ने उनके कई शत्रु पैदा कर दिए। मालवा का राजा बाज बहादुर हो या दिल्ली के शहंशाह अकबर, सबकी नजर गोंडवाना के अकूत खजाने पर थी। बाज बहादुर के आक्रमण से रानी ने न केवल अपनी वीरता से मुंहतोड़ जवाब दिया बल्कि 2 बार ऐसी जबरदस्त पराजय दी कि फिर उसने गढ़मंडला राज्य पर हमला करने की हिम्मत नहीं की।

सन 1561 में बाज बहादुर का मालवा भी अकबर के अधीन हो गया। कहते हैं बाज बहादुर ने ही अकबर को गोंडवाना पर चढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। अकबर ने रानी दुर्गावती से उनका विख्यात सफेद हाथी सरमन मांगा था और साथ ही उनके बुद्धिमान मंत्री आधार सिंह की भी मांग की थी। रानी ने दोनों के लिए स्पष्ट इनकार करते हुए अकबर बादशाह के संदेश की अवहेलना की। इस बात से अकबर ने स्वयं को अपमानित महसूस किया और अपने एक सेनापति असफ खां के नेतृत्व में गोंडवाना पर धावा बोलने के लिए विशाल फौज भेज दी। आसफ खां ने 10,000 घुड़सवारों, 12,000 पैदल सैनिकों और सशक्त तोपखाने के साथ 1564 में चढ़ाई कर दी। उसने सबसे पहले रानी के निवास स्थान सिंगोरा गढ़ किले पर कूच किया। रानी को अचानक हमले का अंदाजा नहीं था, पर वीर रानी पीछे नहीं हटी। रानी के पास लगभग 2,000 पैदल सेना थी। सभी ने युद्ध करने का निश्चय किया। रानी ने वस्तु स्थिति को भापकर गढ़ा में युद्ध करने की योजना बनाई। नरहरी ग्राम के निकट विंध्य पर्वत श्रेणी के मध्य एक सकरी घाटी में उन्होंने मोर्चा जमाया। रानी की योजना अनुसार मुगल सेना चारों तरफ से घिर गई। 500 मुगल सैनिक मारे गए और बचे हुए सैनिक भाग गए। इस तरह से पहला दिन रानी की जीत का रहा, लेकिन दूसरे दिन मुगलों की सेना में तोपखाना आ गया। रानी के पास तोपखाना नहीं था। तीर कमानों और तलवारों से तोपखाने का मुकाबला नहीं किया जा सकता था। फिर भी सैनिकों ने अदम्य साहस का परिचय देकर शत्रुओं पर बाणों की अटूट वर्षा की।

हाथी पर सवार रानी ने रौद्र रूप धारण किया और बाण पर बाण चलाए। तभी एक तीर रानी की आंख में आकर लगा। रानी तीर निकालकर पुनः मोर्चे पर सक्रिय हो गई। अचानक नदी में बाढ़ आ गई। तब आगे तोप थी और पीछे नदी का तूफान। फिर भी वीरांगना दुर्गावती डटी रही। महावत द्वारा नदी पार के आग्रह पर रानी ने कहा कि या तो मैं शत्रु को मार भगाऊंगी या स्वयं यही मर जाऊंगी। पर नियति का फैसला कुछ और ही था। एक तीर आकर रानी के गले में लग गया। राजकुमार वीर नारायण ने रानी की हिफाजत करने की कोशिश की, लेकिन वो शहीद हो गए। रानी की घायल अवस्था, प्रकृति का दुष्चक्र, दुश्मनों की तोपों की बरसात और राजकुमार वीर नारायण की मृत्यु, इन सभी के आगे रानी की सेना ने आत्मबल खो दिया और तितर बितर हो गई। रानी को अपनी हार और पराधीनता साफ दिखाई देने लगी। रानी ने महावत से कटार छीन कर देश के लिए प्राण उत्सर्ग कर दिए। 24 जून सन 1564 को रानी दुर्गावती वीर गति को प्राप्त हुईं। इतिहास ने बड़े गर्व के साथ अपने सीने पर रानी दुर्गावती की कहानी को अंकित किया है। एक ऐसी रानी जो पराजित होकर भी कभी पराजित नहीं हुई, रानी दुर्गावती जो आज भी अमर हैं।

अभी आप सुन रहे थे आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन श्री शिव शेखर शुक्ल, समन्वय श्री संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: सबको नमस्ते।
1: आज हम पानी से फैलने वाली बीमारियों के बारे में बात करेंगे। जो पानी से फैलने वाली बीमारियां हैं वो बहुत इन्फेक्शियस होती है, इन्फेक्शन होता है उसमें, और पानी के अंदर कितने कीटाणु हैं हमें नहीं पता चलता। उसमें बहुत सारे कीटाणु होते हैं जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखते। रोजमर्रा के टाइम में या रोजमर्रा में हम बहुत सारी हम पानी से काम करते हैं, मतलब पानी हमारे लिए बहुत एसेंशियल है। जैसे हम पानी पीने के लिए, हाथ धोने के लिए, नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए, पानी के बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। तो हम जब पानी के साथ काम करते हैं रोजमर्रा के टाइम पे, तो हमें नहीं पता कि उस पानी में कितनी गंदगी है। तो और इस गंदगी से हम रोज जूझते हैं। पानी दिखने में तो साफ है, पर हमें जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं तब भी हम बीमार पड़ सकते हैं। फिर अगर हम बात करें कि क्या तरह कैसे बीमारी फैलती है, जब वाटर पानी से होने वाली जो बीमारी है वो कैसे फैलती है। सबसे पहले हम बात करें तो ड्रिंकिंग वाटर की बात करें। हम पानी रोज हमें चाहिए पीने के लिए, 2 से 4 लीटर चाहिए पानी रोज पीने के लिए। और हमें सरवाइव, इंसान खाने के बिना तो फिर भी रह लेता है, पर पानी के बिना वो एक दिन भी नहीं रह सकता है। तो हमें कम से कम 8 गिलास पानी रोज दिन में पीना चाहिए। हमारा जो बॉडी है उसमें 70% पानी है, 60 से 70% पानी ही है। तो आपका 20% खाना और वो है। तो हमें पानी की कमी, शरीर में कमी नहीं होनी चाहिए। और बहुत से लोग जो पीछे से पानी आता है, म्युनिसिपल का, एमसीडी वालों का, या पाइप वाटर जो आता है उसको कंज्यूम करते हैं। उसको कंज्यूम करने से क्या होता है कि बहुत लोगों को, जिनको नहीं सूट करता है, उनको वॉमिटिंग, डायरिया हो सकता है। तो ये पानी से फैलता है। फिर नहाते समय आप, बहुत लोगों की स्किन जो है वो सेंसिटिव होती है। अगर वो गंदे पानी से नहाएंगे तो उनको इन्फेक्शन हो सकता है। और बच्चे जो हैं, खेल खेल में क्या होता है, पानी सिप कर लेते हैं अंदर, तो उनको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनको इन्फेक्शन हो सकता है, पेट में इन्फेक्शन हो सकता है, स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। अगर वो जिसको चोट लगी है, जिसके पस होता है या चोट लगी है, पस फॉर्मेशन आ जाती है, क्योंकि वो गंदे पानी से जब नहाते हैं, चोट पे अगर वो पानी जाता है तो पस फॉर्मेशन भी हो सकती है। फिर हम बात करें नहाने के बारे में या बर्तन धोने के बारे में। तो गंदे पानी से जब हम बर्तन धोते हैं या सब्जियां धोते हैं या कपड़े भी धोते हैं, तब भी हमें बीमारी लग सकती है। क्योंकि गंदे पानी से बर्तन धोएंगे तो कहीं ना कहीं मिट्टी उसके ऊपर बर्तन में लग जाएगी, और आप खाना उसी बर्तन में बनाएंगे, फिर वो इन्फेक्शन हो सकता है। या कपड़े धोने में आपके कपड़े सही नहीं धुलेंगे, और नहाने में आपको इन्फेक्शन होगा। हम अगर पानी से बर्तन धोते हैं या कपड़े धोते हैं तो ये हार्म करता है पर्सन को भी, लोगों को भी पानी ये इफेक्ट करता है। गंदी सब्जियां अगर हम गंदे पानी से धोएंगे तो वो हम कच्ची खा लेंगे, तो भी वो हमें इफेक्ट करता है, हम बीमार पड़ सकते हैं। फिर गंदे पानी से खाना बनाना, बाहर रोड साइड पे अगर आप खाना खाते हैं या गोलगप्पे खाते हैं, तो वो पानी कौन सा पानी है हमें नहीं पता है, तो वो पानी से भी हमें इन्फेक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले जो बीमारी है गंदे पानी से जो होती है, वो टाइफॉइड फीवर की होती है। टाइफॉइड फीवर जो है सेल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है। ये गंदे पानी और गंदा खाना खाने से होता है, या आप किसी ऐसे बंदे से कांटेक्ट में आए हो, मतलब उसके संपर्क में आए हो जिसको टाइफॉइड फीवर है। हल्का है, ज्यादा होता है तो आपको फैल सकता है। ऐसे टाइफॉइड फीवर मोस्टली जो होता है वो आपको गंदे पानी और खाने से होता है। इसमें फीवर होएगा, सिर में दर्द होएगी, पेट में दर्द होएगी, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है और डायरिया भी हो सकता है। बहुत से लोग टाइफॉइड ठीक हो जाता है थोड़े टाइम के बाद, अगर वो एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं, और कम से कम ये 15 से 20 दिन आपको एंटीबायोटिक खानी है, उसके बाद आप फिर एक बार ही टाइफॉइड का टेस्ट कराएंगे तो आप को ठीक लगेगा। वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। जब कोई इंसान उस टाइफॉइड की जगह पे जहाँ टाइफॉइड बहुत ज्यादा फैला हुआ है वहां जाता है, तो उनके लिए वो वैक्सीनेशंस अवेलेबल हैं। क्या साइंस दिखते हैं? जो बुखार है वो 100 से 104 तक भी जा सकता है, कम से बहुत तेज भी हो सकता है। सिर में दर्द होना, वीकनेस बहुत आना, मांसपेशियों में दर्द, पसीने भी बहुत आते हैं, किसी किसी को कफ भी हो जाता है बाद में, भूख नहीं लगना, वेट लॉस हो जाना, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन जैसी चीज, रैशेस भी हो सकते हैं बहुत लोगों को, और पेट में सूजन भी आ सकती है। फिर हम बात करें क्या कारण क्या है। बहुत लोग ये इन्फेक्शन लेते हैं गंदे पानी के सेवन से, या वो गंदा पानी आपने इस्तेमाल किया है खाना बनाने में जो आपको टाइफॉइड फीवर दे रहा है, या आपके आसपास की जगह जो साफ नहीं है, पानी बहुत ब्लॉक है, गंदा पानी ब्लॉक है, आपको उससे भी हो सकता है। तो कैसे इससे बचा जाए? सेफ ड्रिंकिंग वाटर लें, पानी जो है वो सेफ ड्रिंकिंग होना चाहिए, मतलब उबला हुआ पानी, अगर म्युनिसिपल का एमसीडी का पानी पी रहे हैं या घर में टैप वाटर पी रहे हैं तो पानी को उबाल कर रखें, पानी को उबाल कर और ढक कर रखें, अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं और उसको सुखा लें टॉवल से या सैनिटाइजर से अपने हाथों को साफ कर लें। पानी को उबाल कर लेना है, पानी को ऐसे गंदा नहीं पीना है। इवन तक खाना बनाने में भी आप उबले हुए पानी का ही इस्तेमाल करें। ये स्पेशली तब टाइफॉइड फीवर और ये सब बीमारियां तब फैलती है जब बारिश का सीजन आता है और पानी जगह जगह जमा हो जाता है, और पीछे से भी जो एमसीडी का पानी आता है वो बहुत गंदा होता है। तो ये तब चीजें हमें, तब बीमारियां ज्यादा आती है। जो सब्जियां हैं या जो फल आप लेकर आए हो उसको भी उबले हुए पानी से धोएं, कच्ची सब्जियों को ना खाएं, सब्जियों को छिलका उतार कर और फ्रूट्स का भी छिलका उतार कर ही खाना चाहिए। और जो खाना है वो गरम जितना खाएंगे, ताजा खाना जब खाएंगे तभी अच्छा होता है। टाइफॉइड फीवर का पता कैसे चलता है? ब्लड टेस्ट से पता चलता है। आपको अगर टाइफॉइड फीवर है तो आपको सिम्टम्स जो हैं, लक्षण जो है, बुखार, सिर में दर्द, ठंडा लगना और रैशेज हो जाना, ये कम से कम 5-6 दिनों तक आता है, और 5-6 दिनों के बाद भी अगर वो नहीं कम हो रहा है, जैसे बहुत लोगों को सुबह के टाइम बुखार चढ़ता है फिर शाम तक आते आते ठीक हो जाते हैं, या बहुत लोगों को शाम के टाइम पे बुखार चढ़ता है, वीकनेस हो जाती है, बॉडी एक होती है, पैरों में दर्द होती है, तो ये अगर 4-5 दिन तक सिम्टम्स चल रहे हैं तो आप टाइफॉइड का टेस्ट कराएं, और पॉजिटिव आता है तो एंटीबायोटिक्स लिया जाए। क्या ट्रीटमेंट है? एंटीबायोटिक्स लें, पानी उबला हुआ ही पिए, जितना पी सकते हैं पानी को उबला हुआ ही पिए। बुखार है तो ठंडी पट्टियों का सेवन करें, ORS का घोल लें, वीकनेस आती है तो, या डायरिया होता है तो, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का सेवन करें, जितना हो सके उसको छील कर साफ कर कर ही खाएं, और दही और छाछ का भी सेवन कर सकते हैं। फिर पानी से एक और बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसको हम कहते हैं हेजा, कॉलरा, डायरिया जिसको हम कहते हैं। तो हेजा जो बीमारी है या डायरिया जो बीमारी है, ये भी बहुत बैक्टीरियल डिजीज है और ये भी पानी से ही होती है। बहुत ज्यादा सिवियर लूज मोशंस हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है, तो जिसकी वजह से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। जब शरीर में पानी की कमी हो जाएगी और उसको हम नहीं ट्रीट करेंगे, अगर हम पानी का कंपनसेशन नहीं करेंगे तो हमें ही दिक्कत हो सकती है। वैसे तो हैजा और कॉलरा जैसी बीमारियां बहुत अच्छे से आसानी से ट्रीट हो सकती हैं, और आजकल इसका इलाज हर जगह पे अवेलेबल है। सिर्फ जो हमको शरीर में पानी की कमी है उसको हम पानी से ही कंपनसेट कर सकते हैं, पर पानी जो है वो आप उबला हुआ ही पिए। क्या कारण है क्यों हैजा जैसी या कॉलरा जैसी या हम डायरिया, सिवियर डायरिया, लूज मोशंस जैसी बीमारी लगती है? ये यूजली हम या तो गंदा खाना खाते हैं, गंदे पानी से बना हुआ खाना खाएंगे, या पानी जो है वो गंदा है इसलिए हो सकती है। यूजली जैसे एमसीडी का पानी पीछे से आता है, लोग उसको ही इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, या फ्रिज में बर्फ जमाने के लिए भी हम उसी का इस्तेमाल करते हैं, तो हम बीमार पड़ सकते हैं। बहुत टाइम पे जो सिम्टम्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं, लोगों को नहीं समझ आता है, और धीरे धीरे जब ये सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, 10-14 दिन के बाद जब ये सिम्टम्स बढ़ते हैं तो लोगों को समझ आता है, और फिर लोग अपना दवाई लेना शुरू करते हैं। जैसे डायरिया होता है, डायरिया बहुत ज्यादा सिवियर हो जाता है, बिल्कुल वॉटरी लूज मोशंस हो जाते हैं, और कम से कम आप 5 से 6 बारी अगर वॉशरूम जाएंगे डायरिया जैसी बीमारी में, तो वीकनेस आ जाती है शरीर में, उठने का भी मन नहीं करता, और शरीर में पानी की भी कमी हो जाती है। साथ ही साथ नौजिया वॉमिटिंग भी हो सकता है, इरिटेशन होएगी, थकावट रहेगी, आंखें अंदर चली जाएंगी, क्योंकि डायरिया है, शरीर में पानी की कमी है तो आंखें अंदर चली जाएगी, मुंह सूखेगा, प्यास लगेगी पर आप पानी पीने का मन करेगा नहीं, पर पानी पीना बहुत जरूरी होगा। स्किन जो है वो ड्राई हो जाएगी, यूरिन बंद हो जाएगा या यूरिन बहुत कम आएगा, ब्लड प्रेशर जो है वो बिल्कुल ही लो चला जाएगा, और हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर होनी शुरू हो जाएगी। तो जब हमें सिवियर डायरिया होता है तो ये 7 सिम्टम्स भी हमें नजर आते हैं। कैसे बचा जाए, वही है, आपको अपने हाथ साबुन और पानी से फ्रीक्वेंटली साफ करने हैं, गंदगी बिल्कुल नहीं मचानी है, पानी जो है साबुन और पानी से फ्रीक्वेंटली साफ करने हैं, गंदगी बिल्कुल नहीं मचानी है, पानी जो है उबाल कर ही पिए, ब्रश का कुल्ला भी हमें उबले हुए पानी से करना चाहिए, और गरम खाना खाएं जितना हो सके, फ्रेश जो है फ्रेश खाना और गरम खाना खाएं, कच्ची सब्जियां या कच्चे फल का इस्तेमाल करना है तो उसको छील कर ही इस्तेमाल करें। ट्रीटमेंट जो इसका है, डायरिया का है, वो इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए, बिकॉज आपका अगर शरीर में बहुत ज्यादा पानी की कमी हो जाती है तो कभी कभार कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। तो रिहाइड्रेशन, ORS का घोल पिए, कभी कभार इतना शरीर में पानी की कमी हो जाती है कि आपको ग्लूकोज भी चढ़ाना पड़ जाता है, एंटीबायोटिक्स लें, और नींबू और चीनी का घोल ले सकते हो, अपने खाने में प्याज का सेवन कर सकते हो, दही का सेवन कर सकते हो, छाछ का सेवन कर सकते हो, ये और नींबू का सेवन कर सकते हो, ये सब सेवन करने से हम डायरिया जैसी बीमारी से भी बच सकते हैं। पर जिसके शरीर में पानी की कमी होगी डायरिया में, उनको ORS का घोल और पानी का सेवन ज्यादा करना है। फिर हम बात करें हेपेटाइटिस ए की। हेपेटाइटिस ए भी बीमारी जो है वो भी पानी से ही होती है, गंदे पानी के सेवन से, या गंदा पानी कहीं पर डिपॉजिट है या कहीं पर ब्लॉक है, वहां से हेपेटाइटिस ए की बीमारी फैलती है। हेपेटाइटिस ए जो है आपको लिवर को इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्शन करता है। जब आप खाना या पानी गंदा पीते हैं, या आपने बाहर से खाना और पानी गंदा लिया है, खाया है, कंज्यूम किया है तो आपको हेपेटाइटिस ए हो सकता है, और ये सीधा जाकर आपके लिवर सेल्स को, लिवर में इन्फेक्शन देता है। यहाँ आप एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पर हेपेटाइटिस ए बहुत फैला हुआ है, वहां पर साफ सफाई नहीं होती है, जैसे गाँव में साफ सफाई नहीं होती है। वैक्सीनेशन इसकी अवेलेबल है, हम वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं बच्चों को। और सिम्टम्स क्या दिखते हैं, लक्षण क्या दिखते हैं, आपको थकावट दिखेगी, वीकनेस होगी आपके, नौजिया, वॉमिटिंग, मतलब चक्कर आना, वॉमिटिंग आना, पेट में दर्द रहना, डायरिया होना, भूख ना लगना, हल्का फीवर आएगा पर ज्यादा फीवर नहीं आएगा, यूरिन का कलर डार्क हो जाना,

0: में दर्द होना, बहुत ज्यादा इचिंग होना, ये जो है जॉन्डिस जैसा सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, पीला पड़ जाना, स्किन पीली पड़ जाना या सफेद आंखें हो जाना, ये जॉन्डिस जैसे सिम्टम्स भी आपको दिख सकते हैं। पर हेपेटाइटिस ए जो है वो ब्लड टेस्ट कराने के बाद ही आपको पता चलेगा कि हेपेटाइटिस ए है या जॉन्डिस है, ये आपको ब्लड टेस्ट कराने के बाद ही पता चलेगा। क्या कारण क्या है? हेपेटाइटिस ए जो है वो वायरस जो है इन्फेक्शन आपके लिवर सेल्स को करता है, आपके लिवर सेल्स जो है उसमें वो सूज जाते हैं, और ये जो है आपके पानी पीने से और खाना खाने से ही होता है, ये आपके खांसी जुकाम से नहीं फैलता। आपने या तो बहुत गंदा खाना बाहर से खाया है जो फ्रेशली प्रिपेयर नहीं है, या वो इंसान बिना हाथ धोए खाना बना रहा है जिसको ऑलरेडी हेपेटाइटिस ए है, तो आपको हो सकता है। कैसे बचा जाए? आप सब्जी और फल छीलकर खाएं, कच्चा सेवन ना करें, बॉटल भी पानी भी उबाल कर ही पिएं, ब्रश करते हैं तब भी आप उबला हुए पानी से ही कुला करें, और हाइजीन बनाकर रखें, थॉरली अपने हैंड वॉश करें, आसपास हाइजीन बनाकर रखें, बिल्कुल भी गंदगी ना होने दें, और वैक्सीन अवेलेबल है, बच्चों को वैक्सीन लगवाएं हेपेटाइटिस ए की। ट्रीटमेंट ये है कि अगर ऐसे पानी से फैलने वाली जो बीमारियां होती हैं उनमें आपको डायरिया होता है, पानी की कमी हो जाती है शरीर में, तो बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाती है, जो जितना हो सके रेस्ट करना चाहिए। अगर नौजिया है या वॉमिटिंग आती है तो उसकी दवाई अलग से भी ले सकते हैं, थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद आपको, मतलब हर 2 घंटे बाद या 3 घंटे के बाद कुछ ना कुछ जरूर खाना है, पर ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा जंक फूड खा रहे हैं, तला हुआ खा रहे हैं, फ्रूट ले सकते हैं या जूस पी सकते हैं, छाछ पी सकते हैं, ये सब थोड़े टाइम के बाद ले। हेपेटाइटिस ए जैसे मैंने आपको बताया कि लिवर सेल को इन्फेक्ट करता है, लिवर के आपको इन्फेक्ट करता है, जो जो एल्कोहल लेते हैं, जो शराब पीते हैं, अगर उनको हेपेटाइटिस ए है तो एंटीबायोटिक्स के साथ उनको एल्कोहल का सेवन नहीं करना है, और क्योंकि ये आपके लिवर सेल को डैमेज कर रहा है हेपेटाइटिस ए, तो अगर आप एल्कोहल भी पियेंगे और हेपेटाइटिस ए भी लेंगे तो वो हेपेटाइटिस ए की दवाइयां भी लेंगे तो वो ठीक नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हेपेटाइटिस ए अगर किसी को है और वो अगर ड्रिंक करते हैं तो उनको ड्रिंक छोड़नी पड़ेगी जब तक एंटीबायोटिक्स का सेवन चल रहा है। किसी को कुछ पूछना है?
1: हाँ जी मैम, मुझे पूछना है। मैं संगीता बोल रही हूँ
0: हाँ जी बताएं।
1: मैम। मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे, जैसे हेपेटाइटिस बी है मेरे बहन के बच्चों को, तो उनके साथ खाना भी ना खा सकते हैं या नहीं?
0: हेपेटाइटिस बी हाँ
1: दोनों बच्चों को, मेरी बहन के बच्चों को काफी दिन से उनका इलाज चल रहा है लेकिन अभी ठीक नहीं है।
0: उन्होंने दवाइयां नहीं ली अभी।
1: दवाई मैम चल रही है, सफदरजंग से दवाई तो खा रहे हैं लेकिन फिर भी अभी एक को तो भूख बिल्कुल ही नहीं लगती। कल भी उसे फीवर था, भूख नहीं लग रही थी, और 1 साल हो गए उन्हें दवाई खाते खाते, काफी दिन हो गए।
0: कितने साल के हैं?
1: एक तो 19 साल का है मैम और एक है 22 साल का। अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं मैम वो।
0: क्या सिम्टम्स देखे उन्होंने? टेस्ट वेस्ट कराया हेपेटाइटिस बी? आपको कैसे पता चला कि उसको है? आपने टेस्ट कराया था?
1: हाँ जी मैम, सफदरजंग में उनका लीवर का, उनके खून के बहुत से टेस्ट हुए थे मैम।
0: वैसे तो हमें प्रिवेंशन लेनी चाहिए। अगर
1: हाँ जी
0: किसी को
1: मैम,
0: भी ऐसी बीमारी है तो हमें उनके का टॉवल, उनका खाना शेयर नहीं करना चाहिए।
1: जी मैम,
0: हाँ, तो अगर आप खाना वो वहां बैठकर खा सकते हैं पर उनका खाना ना ले, थोड़ा
1: अभी
0: प्रिकॉशंस तो लेनी पड़ेगी।
1: भी टेस्ट बताए मैम ने, वो कराने जाना है, डेट दी है, अभी आराम तो है नहीं मैम उन्हों को, दोनों बच्चों को हो गया।
0: तो प्रिकॉशंस तो लेनी पड़ेगी आपको, क्योंकि खाना उनका खाना और उनके कपड़े या उनका टॉवल ना इस्तेमाल करें।
1: जी मैम,
0: और हाँ, और खाना वहां पर बैठकर खा रहे हैं तो उन्हीं के साथ खाते हैं।
1: नहीं मैम मैं भी खा लेती हूँ, उनके साथ आते हैं तो बच्चों को डाल देती हूँ, यही बूझ रही थी मैम आपसे।
0: उनका खाना आप उन्हीं की प्लेट में उनका ही खाना दें, अपने बच्चों को मतलब अपना और घर वालों का अलग और उनका अलग प्लेट में डालकर दें। और प्रिकॉशंस तो लेनी पड़ती है, ऐसे बीमारियां फैलती हैं।
1: मैम
0: कोई और मैम से कुछ सवाल पूछना चाहता है तो वो पूछ सकते हैं।
1: मैम वैसे ये चला जाता है क्या, हेपेटाइटिस बी है कि नहीं
0: हाँ जी,
1: जाता?
0: हाँ जी, चला जाता है। तो
1: जी मैम, थैंक यू मैम।
0: थैंक यू।
2: मैम आई डोंट थिंक सो किसी को कुछ पूछना है, तो कैन वी कंक्लूड द सेशन फॉर टुडे?
0: यस यस, वी कैन कंक्लूड। वी आर मीटिंग
2: ओके,
0: टुमारो अगेन एट द सेम टाइम।
2: यस मैम, ओके,
0: थैंक
2: थैंक यू सो मच।
0: यू।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका सफल किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं किसानों की सफलता की कहानियां। किसान न सिर्फ अपने परिवार के भोजन की व्यवस्था करता है, बल्कि वो खेतों में जीतोड़ मेहनत करता है ताकि आपकी और हमारी थाली तक भी भोजन पहुंचता रहे। हमारे देश में कई ऐसे किसान हैं जो कि आज के दौर में नवाचार, नई तकनीक को अपनाकर कृषि के क्षेत्र में अपनी पहचान स्थापित कर रहे हैं। ये किसान कृषि स्टार्टअप, पशुपालन और कृषि में नए नए प्रयोगों के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे किसान भी हैं जो कि अपनी मेहनत के चलते आज अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए हैं। ये किसान इस बात को भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारी थाली तक जो भोजन पहुंचे वो रसायन मुक्त हो और पोषण से भरपूर हो। आज के सफल किसान में हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से संबंध रखने वाले शिव कुमार से, जो कि मुख्य रूप से जैविक यानी ऑर्गेनिक खेती के लिए जाने जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सफल किसान की।
1: गाजियाबाद भारत की राजधानी से सटे ऊपरी गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में स्थित है। इसी जिले के गांव चोलस से आते हैं हमारे सफल किसान शिव कुमार, जो दूसरे किसानों के सामने मिसाल पेश कर रहे हैं, जिन्होंने साधारण खेती नहीं बल्कि ऑर्गेनिक यानी कि जैविक खेती और पशु पालन दोनों को एक साथ चुना। शिव कुमार जैविक खेती से मिले फल सब्जियों का सेवन करने वाले लोगों का भी ध्यान रख रहे हैं, साथ ही साथ मोटा मुनाफा भी कमा रहे हैं। वो कैसे, तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं उन्हीं की जुबानी।
2: ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग करता हूं और नेचुरल फार्मिंग भी तो मैं अब से करने लगा हूं। पहले मैं जैविक खेती करता था। 2005-06 से मैं राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद के संपर्क में आया, जहां से ये केंचुए पालन मुझे सीखने को मिला और मैंने इनसे ट्रेनिंग लेकर के विधिवत तरीके से अपने यहां पर केंचुए पालन शुरू किया, जिससे मुझे केंचुए पालन के साथ साथ में वर्मी कंपोस्ट भी मिलता था और वर्मी वास भी मिलता था। इससे क्या हुआ, जब मैंने अपने खेतों में विधिवत तरीके से अप्लाई किया तो मैंने वर्मी कंपोस्ट से कुछ किसानों को बेचा भी कि इस विधि से हम जैविक पे आ सकते हैं, और जो हम जहरीली खेती कर रहे हैं, जो कन्वेंशनल फार्मिंग कर रहे हैं या ये केमिकल फार्मिंग से पेस्टिसाइड से जो हम खेत में लगा रहे हैं, इससे हम लोगों को निजात मिल सकता है, जिससे हम जहर मुक्त भोजन ले सकते हैं।
1: आज भले ही शिव कुमार अपने गांव और आसपास के इलाकों में चर्चा का विषय बन रहे हों, लेकिन ये सब करना उनके लिए इतना आसान नहीं था। इसके लिए उन्हें मदद मिली गाजियाबाद के राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र से, जिनकी मदद और सही सलाह अपनाने के बाद शिव कुमार आज एक सफल किसान बनने की राह पर अग्रसर है। कैसे शिव कुमार और उनके जैसे हजारों लाखों किसान खेत की मिट्टी को बेहतर बना सकते हैं, बता रहे हैं राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र के उप निदेशक जगत सिंह।
3: कुमार जी, वर्ष करीब 2005 से ही एक इनोवेटर के रूप में उभरे हैं और वर्ष 2014 से ये राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र से जुड़े। तो जब इनसे मेरी पहली बार मुलाकात हुई तो इनसे मुझे पता चला कि इनके खेत की मिट्टी का पीएच हाई है और खेत में मोटे मोटे ग्रेवल्स हैं, माने कैल्शियम कार्बोनेट के पत्थर हैं, जो निशानी है ऊसर भूमि की या हाईली सैलाइन एल्कली की। तो उसी समय से हमने इनको जैविक खेती के परिपेक्ष में दो तीन चीजें बताई थी कि एक तो कंटिन्यू आपको ग्रीन मैन्योर का इस्तेमाल करना है, पकी और पची हुई खाद का इस्तेमाल करना है, जहां जहां पे सैलाइन एल्कली के पैचेज हैं वहां पे गोबर डाल के और थोड़ा मीठा डाल के उसको गलाना है, और जहां पे ज्यादा खारी सॉइल है वहां की मिट्टी उठा के उसमें मीठी मिट्टी और गोबर डालना है। तो पहले बार में इन्होंने ये काम किया। दूसरी बार में हमारे केंद्र से कुछ कल्चर दिए जाते थे जो डिकम्पोज करने का काम करते थे, शिव कुमार जी ने उस कल्चर का अपने खेतों में प्रयोग किया और उस कल्चर के प्रयोग से जो खेत का जो सेलाइन एल्कली का जो नेचर था हाई पीएच वो लो पीएच में कन्वर्ट हो गया, और साथ ही साथ जो खेत में 1.5 से 2 इंच मोटे पत्थर थे वो भी धीरे धीरे समाप्त हो गए।
1: अब ये जैविक खेती है क्या जिससे हमारे सफल किसान अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, जरा इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। जैविक खेती फसल उत्पादन की एक प्राचीन पद्धति है जिसमें फसलों के उत्पादन में गोबर की खाद, कंपोस्ट, जीवाणु खाद, फसलों के अवशेष और प्रकृति में उपलब्ध कई तरह के खनिज पदार्थों के जरिए पौधों को पोषक तत्व दिए जाते हैं। सबसे खास बात यह है कि ऐसी खेती में प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों को कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैविक खेती पर्यावरण की शुद्धता बनाए रखने के साथ ही भूमि के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखती है। जैविक खेती का मतलब एक ऐसी कृषि

0: बंसी गोल्ड पहले से लगा रहा था, बंसी गोल्ड गेहूं मैंने एमपी वाला गेहूं लगाया था, उसका उत्पादन बहुत अच्छा आया और उसकी जो हमारी पैदावार थी वो थोड़ी सी इससे कम थी, लेकिन जो हमारा खाने में बहुत अच्छी गुणवत्ता देता था एचडी 226, उसका विकल्प एचडी 3226 वैरायटी करके मुझे राष्ट्रीय नेशनल सीड कारपोरेशन से प्राप्त हुई। केवल 6 क्विंटल बीज मुझे मिल पाया था, तो मैंने विधिवत तरीके से अपने खेत में नवम्बर में यानी 17-18 नवंबर को मैंने इसको अपने खेत के अंदर लगा दिया था और इसको मैंने बिजाई सुपर सीडर से की। उसका सीड ट्रीटमेंट मैंने अपने जेल खाद से वही 1 चम्मच लेकर के और थोड़ा एक उसमें 1 लीटर पानी डाल करके और मैंने लगभग 3 क्विंटल गेहूं को पर्याप्त मात्रा में उससे बीज शोधन किया था और थोड़ा सा उसमें मैंने हल्का सा 250 ग्राम गुड़ घोल कर भी उसको मिला लिया था। उसका मैंने विधिवत तरीके से उसका उपचार किया और उपचार करने के बाद में जो मेरे पास में वर्मी कंपोस्ट था तो मैंने अपने उर्वरक के फर्टिलाइजर की जगह वर्मी कंपोस्ट अगले टापे में भर करके पिछले में सीड डाल करके और मैंने अपने सुपर सीडर से इन खेतों की बिजाई कर दी है और यील्ड शायद इस बार बहुत अच्छा आएगा सर, मुझे रेट बहुत अच्छा मिल रहा है।
1: शिव कुमार का मानना है कि गांव में खेती बाड़ी आपसी सहयोग से की जाए तो काफी फायदा होता है और इससे आय में वृद्धि के साथ गांव का भी विकास होगा। तो वहीं सह फसली जैविक खेती पर सोने पर सुहागा का काम कर रही है जिससे शिव कुमार को 2 गुना लाभ हो रहा है। इस तरह सह फसली खेती करने से मेहनत मजदूरी के साथ साथ पानी खाद उर्वरक बीज और कटाई का खर्चा निकल आता है।
0: पहले जैसे हम खेती कर रहे थे अभी भी और अच्छे तरह से उसको खेती को कर रहे हैं, हम फसल चक्र में लेकर आए हैं। एक तो फसल चक्र से फायदा क्या है कि जो हमारा ये जो वीड है ये वीड अपने आप ही कंट्रोल हो जाता है फसल चक्र से। जैसे हमने अब तिलहन यानी तिलहन लगाया है तो तिलहन के बाद में फिर हमने इसके तिलहन के बाद में जैसे मक्का लगाया है, मक्का के बाद में हम और सब्जी वर्गीय यानी कद्दू वर्गीय फसल इस तरह से घिया तोरई ककड़ी खीरा ये इस तरह से ले रहे हैं और इससे जो है किसान भाई समझें कि इससे अत्यधिक बेनिफिट है। सब्जी से जो आदमी उस किसान को जो मिलता है उससे बहुत ज्यादा कुछ मिलता है।
1: इन फसलों में धान और गन्ना जैसी फसल मुख्य है। गन्ने के साथ सह फसली करने के एक नहीं कई फायदे हैं। जहां गन्ने की फसल को पकने में 10 से 12 महीने लग जाते हैं वहीं 60 से 90 दिनों में दूसरी फसलें पक जाती हैं। इस दौरान बीच बीच में सब्जियों और दलहनी फसलों की खेती करने से 2 से 3 महीनों में दूसरी फसलों की उपज से पैसे मिल जाते हैं। अच्छी बात ये भी है कि ऐसा कर हमारे सफल किसान अपनी जैविक खेती से दूसरे किसानों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं।
2: इसी के साथ ही सफल किसान में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे जैविक खेती से जुड़े कुछ खास पहलुओं के बारे में। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें सफल किसान।
3: आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें एलपीजी सिलेंडर जरूर कराएं फ्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होश खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा।
2: सफल किसान में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से संबंध रखने वाले शिव कुमार के बारे में जो कि जैविक खेती करते हैं। जैविक खेती की बात करें तो वो आज के समय की मांग भी है। जी हाँ, हमने दशकों रसायन युक्त खाना खाया यानी ऐसे फसलें उगाई गई जिनमें रसायनों का उपयोग किया गया, इसकी वजह से मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित हुई और ये मानव स्वास्थ्य के लिए भी काफी हानिकारक है। वहीं अगर हम जैविक खेती करें या फिर ऑर्गेनिक खेती करें तो उससे रसायनों को हम दूर कर सकते हैं, यानी ये रसायन मुक्त खेती होती है और इसीलिए ये हमारे लिए काफी लाभकारी भी है, पर्यावरण के अनुकूल भी है और मानव स्वास्थ्य पर भी इसका कोई विपरीत असर नहीं है। आइए देखते हैं जैविक खेती से जुड़ी कुछ खास बातें।
1: जैविक खेती को लेकर शिव कुमार का मानना है कि जैविक खेती पशु पालन के बिना मुश्किल है। शिव कुमार ने जैविक खेती को और बेहतर तरीके से करने के लिए ही पशु पालन करना

0: शुरू किया था किसान शिव कुमार अपने खेतों के लिए जीवामृत बनाने के लिए गोबर गौमूत्र बेसन प्याज का रस डीकम्पोजर नीम का पत्ता मिर्च लहसुन इत्यादि का प्रयोग करते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि जीवामृत बनाने के लिए इन्हें बाजार से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं पड़ती। खाद का इंतजाम भी पशुओं के अपशिष्ट से ही हो जाता है, मतलब आम के आम और गुठलियों के भी दाम।
1: ये हमारे पास एक गिर गाय है जो हमारी देसी नस्ल की गाय है और इसका दूध बड़ी गुणवत्ता युक्त है। देखने में आया है कि यदि हम कितनी भी पूरे दिन की मेहनत हमने हार्डवर्क कितना भी परिश्रम किया हो, यदि एक गिलास दूध हमें शाम को मिल जाता है तो सुबह को पुनः हम कोई भी हार्डवर्क करने के लिए पूरे दिन के कार्य करने के लिए हम तत्पर रहते हैं। और जैविक खेती ऑब्लिक प्राकृतिक खेती गौ आधारित खेती है, बगैर गाय के या बगैर पशुधन के हमारी खेती संभव नहीं है। तो हम ये गाय पालन भी कर रहे हैं और भैंस पालन भी कर रहे हैं। इसी के गोमूत्र से हम जो अपना इंसेक्ट है उसको भगाने का कार्य करते हैं और जो हमारे न्यूट्रिशन वैल्यू है इसी से हम कर लेते हैं। गाय के गोबर से इसी के झिल्ली को उतार करके हम जो सफल खाद है और सरल खाद है उसका प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों, ये हमारी पशुशाला है और गायों को और भैंसों को हम अलग अलग रखते हैं, और क्योंकि गाय की गुणवत्ता बहुत अत्यधिक होती है, भैंस की थोड़ी सी कम होती है, इसका दूध भी भारी होता है, और जैविक खेती बिना पशु के संभव नहीं है। तो इसीलिए किसान भाइयों, पशुपालन से भी हम लोगों को बहुत आमदनी होती है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। हमारे घर में यानी भैंस या गाय होनी चाहिए, कई पशु होने चाहिए, 10 पशु किसान को कम से कम रखने चाहिए, जिसमें से 6 पशु कम से कम हर समय मिल्क पीरियड में होने चाहिए, तो किसान की आमदनी में इजाफा होगा।
0: जैविक खेती वाकई सभी के लिए फायदेमंद है, लेकिन इसके बावजूद किसानों के लिए एक दिक्कत जैविक फसल को बाजार में सही दामों पर बेचने की है, क्योंकि इसमें मेहनत थोड़ी अधिक होने के चलते जैविक फसल दूसरे फल सब्जियों से थोड़ी महंगी होती है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जैविक खेती से उपजी फसल आपको सेवन के लिए फायदेमंद कितनी है।
1: जैसे मैंने देखा है सुना है कि जैविक के दाम बहुत ज्यादा होते हैं, तो जो अच्छा है शुद्ध खाना हर कोई चाहता है। मैं तो इसको नॉर्मल रेट पर बेचना चाहता हूं, क्योंकि अब उत्पादन, पहले जब हम जैविक खेती में आए थे तो हमारा उत्पादन घटा था, अब हमारा उत्पादन पहले से भी अधिक होने लग गया है, और मैं इसको नॉर्मल रेट पर मैं चाहता हूं कि जो गरीब आदमी है वो भी इसको खाए, वो भी अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत है। ऐसा नहीं कि भाई जिनके पास सब कुछ है, दाता का दिया हो, कुदरत की मौज है, वही ऑर्गेनिक भोजन है, नेचुरल जो हमारा उत्पाद है उसको खरीद पाए। मेरी ये ललक होती है कि हम डोर टू डोर हर किसी के घर से जो भी, मतलब जिनको भी चाहिए या जिनको नहीं भी चाहिए उनको भी हम तो ऐसे ही दे के आ जाते हैं कि सर आप हमारे ये सैंपल है, इसको आप चेक करके देखिएगा, जिनको पसंद आता है सर दोबारा से हम लोगों को कॉल करते हैं, दोबारा से उनको दरवाजे खटखटाते हैं, सर जो भी आपने उत्पाद की डिमांड की थी वो उत्पाद आपके सामने है।
2: यहाँ पर जो हमारे बड़े भाई श्री शिव कुमार जी हैं, जो आजकल पूरे जनपद में जैविक का काम कर रहे हैं, इनके फार्म पर हम लोग आते रहते हैं, पूरी हमारी टीम आती रहती है, हमारे हेड भी आते रहते हैं। मैंने इनके वार्ता से ये यहाँ पर देखा है कि जो इनकी जो फार्म की जो मिट्टी थी पहले कुछ ऊसर टाइप की थी और कुछ रेहयुक्त थी, और इन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से पूरा ऑर्गेनिक ट्रेनर लेकर के और इन्होंने अपने फार्म को आज बहुत अच्छा बना रखा है, और यहाँ पर इन्होंने काफी ऑर्गेनिक पर काम कर रखा है इन्होंने, जिसको हम देखते हैं इनके नेडा कम्पोस्ट, वर्मी कम्पोस्ट, और इन्होंने वर्मी वास के द्वारा इनकी बहुत अच्छी खेती होती है, और हम कृषि विज्ञान केंद्र साइंटिस्ट की टीम इनके खेत पर भ्रमण करती रहती है, और आज के जनपद के अंदर बहुत अच्छा अपना जैविक उत्पाद कर रहे हैं। इनके पास में काफी मधुमक्खी पालन का भी इनके बॉक्स हैं, और इन पर इनके पास अपना जैविक का अपना नींबू भी है, काफी अच्छा इनका काम रहता है यहाँ पर, और मिट्टी की जांच के कृषि विज्ञान केंद्र समय समय पर अपने इस फार्म की कराते रहते हैं, और इनके साथ में पूरा जनपद क्या पूरा सभी विभाग का इनका कोरिलेशन रहता है। मिस्टर शिव कुमार जी बहुत अच्छी जैविक पर काम कर रहे हैं, और समय समय पर हमारे जो जैविक केंद्र है गाजियाबाद में, वहां भी अपना प्रशिक्षण समय समय पर जैसे लेते रहते हैं, और इनको बहुत अच्छी जानकारी है जैविक के ऊपर, और ये बहुत ही अच्छा अपना काम कर रहे हैं।
0: जैविक खेती के लिए मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी होना बेहद जरूरी है, लेकिन इन दिनों रसायनों का इस्तेमाल बहुत अधिक बढ़ चुका है। नतीजा ये हो रहा है कि इनसे स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है और खेत की मिट्टी भी कमजोर पड़ रही है। रासायनिक पदार्थ पानी के साथ मिलकर जमीन के नीचे स्थित पानी तक भी पहुँच रहे हैं। और उसे भी प्रदूषित कर रहे हैं। यही वजह है कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र।
3: इसी के साथ ही यहाँ वक्त है थोड़ी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती संस्थान किस तरीके से इस दिशा में प्रयास कर रहा है। छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं सफल किसान। अब बात करते हैं राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती संस्थान के बारे में। जी हाँ, इस संस्थान का मुख्य मकसद यही है कि किसानों को बताया जाए कि कैसे वो जैविक या फिर प्राकृतिक खेती को अपना सकते हैं, इसके लाभ के बारे में भी उन्हें जानकारी दी जाए और साथ ही ये भी बताया जाए कि कैसे जैविक खेती को अपना कर भी वो अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और बाजार में इसके अच्छे दाम भी प्राप्त किए जा सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।
0: जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र और इससे जुड़े वैज्ञानिक किसानों को समय समय पर खेती किसानी से जुड़ी सही और जरूरी जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इस तरह से किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रेरित किया जाता है और कैसे ये केंद्र किसानों की मदद के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करते हैं, बता रहे हैं राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र के निदेशक डॉक्टर जगनीश शर्मा। साथ ही संस्थान के उपनिदेशक जगत सिंह बता रहे हैं कि कैसे किसान सही जानकारी के जरिए अपने खेत में बढ़िया उपज पा सकते हैं।
4: हमारा जो संस्थान है वो देश में जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रमुखतया यहाँ पर कार्यरत है और हमारे जो संस्थान है इसके चार मुख्य मैंडेट्स हैं जो कार्य हैं हमारे। सबसे पहला जो है हमारा कार्य वो ट्रेनिंग है, कैपेसिटी बिल्डिंग है किसान भाइयों से लेके और सभी जितने भी एक्सटेंशन ऑफिसर्स हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, उन सब के साथ मिलके जो है हम कृषि के जितने भी जैविक कृषि के ट्रेनिंग्स हैं, हमारे जो प्रशिक्षण के प्रोग्राम हैं वो चलाते हैं और कैपेसिटी बिल्डिंग करना सभी स्टेक होल्डर्स की, ये हमारा सबसे पहला दायित्व है। दूसरा जो है हमारा प्रमाणीकरण है कि प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाना है देश में। आपको पता ही है कि दो प्रकार की प्रमाणीकरण की प्रक्रियाएं हैं देश में। पहली तो है थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन जो अपेडा एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स उनके द्वारा चलाई जाती है, जो एक्सपोर्ट के लिए और डोमेस्टिक ट्रेडिंग के लिए दोनों के लिए कार्य करती है। हमारे यहाँ पर पीजीएस सेक्रेटरिएट है जिसका नाम है पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम ऑफ सर्टिफिकेशन। तो ये सर्टिफिकेशन ग्रुप बेस्ड सर्टिफिकेशन है और जैसे कि आपने नाम सुना पार्टिसिपेटरी, मतलब किसानों द्वारा खुद का निरीक्षण खुद करके और खुद ही अपना पीयर इंस्पेक्शन पीयर अप्रेजल्स के द्वारा डिक्लेयर करना कि हाँ हम जो है केमिकल फ्री फार्मिंग कर रहे हैं और हमारी जो है जैविक खेती हम जैविक कर रहे हैं और स्टैंडर्ड्स और जो मानक हैं उनके आधार पर जैविक खेती कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया है वो भी हमारा दूसरा दायित्व है। और तीसरा जो हमारा मैंडेट है वो है टेस्टिंग का। हमारे यहाँ पर हमारे संस्थान के साथ हमारे पांच और संस्थान हैं जिनका हम क्षेत्रीय संस्थान कहते हैं और जो रीजनल सेंटर हैं हमारे अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में हैं, जैसे कि हेडक्वार्टर गाजियाबाद से शुरू करें यहाँ पर। तो ये जो संस्थान है यहाँ पर लेबोरेटरी भी है जो ऑर्गेनिक जो इनपुट्स हैं जैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं, बायो फर्टिलाइजर्स हैं, जो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 है उसके तहत हमारी लैब्स जो हैं वो नोटिफाइड हैं और हमारी जो हेडक्वार्टर की लेबोरेटरी है वो तो NABL एक्रेडिटेड भी है। और इसके अलावा बेंगलोर की लेबोरेटरी है RCONF बेंगलोर और RCONF नागपुर है। हाँ, और इसके अलावा जो है हमारी RCONF भुवनेश्वर है, इसके अलावा हमारे RCONF मणिपुर है। तो हमारी पांच संस्थान हैं क्षेत्रीय जो ट्रेनिंग भी करते हैं, टेस्टिंग भी करते हैं और उसके साथ साथ में सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया को भी सुचारू रूप से चलाने में सहायक हैं।
5: जैविक खेती के लिए जो इम्पोर्टेंट इनपुट हैं आज इसके ऊपर में चर्चा करेंगे। और जब जैविक खेती की बात करते हैं तो जैविक खेती में जो सॉइल हेल्थ या मृदा स्वास्थ्य जैविक खेती का मेरुदंड है। और मृदा स्वास्थ्य में जो ऑर्गेनिक कार्बन है इसको इसका नर्वस सिस्टम कहा जा सकता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जैविक खेती में भूमि स्वास्थ्य की एक अहम भूमिका है, और भूमि स्वास्थ्य में जो ऑर्गेनिक कार्बन है या ऑर्गेनिक मैटर है, ये एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है। क्योंकि पिछले 60-70 सालों में भारत वर्ष की मृदाओं में जो मृदा कार्बन जो कंटेंट है, जैसे जैसे फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन बढ़ा है, वैसे ही वैसे जो ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट है या मृदा में जो जैवांश पदार्थ है, इसमें कमी आने लगी है। तो कमी आने की वजह से जो फर्टिलाइजर का रेस्पॉन्स भी कम होने लगा है। और जहां तक हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो ऑर्गेनिक कार्बन का या ऑर्गेनिक मैटर का इम्पोर्टेंट बहुत जरूरी है। हमारे देश में ऑन एन एवरेज जो सॉइल का जैवांश कार्बन स्तर है वो 0.2 से 0.3 के बीच है। और एक सफल जैविक खेती करने के लिए हमारी जमीनों का जो ऑर्गेनिक कार्बन है या जैवांश कार्बन है वो करीब करीब 0.5 से तो बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए। ये कन्वेंशनल फार्मिंग के लिए है। और अगर बढ़िया आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में आना है तो हमारी खेती का जो जैवांश कार्बन है वो करीब करीब 0.7 के ऊपर होना चाहिए, 0.7 से लेके 1.2 के बीच होना चाहिए। यदि इतना हमारा जैवांश कार्बन है तो हमारी जैविक खेती जो है उसको सफलतापूर्वक कर सकते हैं।
0: कृषि वैज्ञानिकों की सलाह लेकर शुरू की गई खेती के बाद शिव कुमार की आमदनी साल दर साल लगातार बढ़ती जा रही है। साल 2017 के बाद से जब उन्होंने अपने खर्च और मुनाफे का लेखा जोखा रखना शुरू किया तो उन्होंने पाया कि उनकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन लगातार घट रही है जबकि मुनाफा लगातार बढ़ता जा रहा है।
1: किसान भाइयों, पहले से तो हिसाब किताब नहीं लगाया था, लेकिन 2017 से मैं थोड़ा अपने खेतीबाड़ी के बारे में लेखा जोखा रखता हूँ। उससे पहले क्या था कि मेरा खर्चा आ जाता, लगभग 4-4.5 लाख खर्चा आ जाता था मेरे पास में। अपनी तो केवल 10 एकड़ जमीन है, लेकिन 5-6 एकड़ जमीन में लीज पे लेकर के उसमें कार्य करता था, अभी भी करता हूँ। तो उससे क्या होता था कि मेरा जो है लगभग 4-4.5 लाख रुपए उसमें खर्चा आ जाता था और लगभग 5-6 लाख रुपए मुझको टोटल आमदनी होती थी। तो जिसमें शुद्ध बचत मुझको सालाना मुश्किल से 1-1.5 लाख मुश्किल से निकल आती थी और जिसमें परिवार का भरण पोषण पालन बड़ा मुश्किल होता था। 2017 से जैसे मैं अब हिसाब किताब लगाने लगा हूँ, तो जब मैंने हिसाब किताब लगाया था तो मेरी जो बिक्री थी वो मेरी लगभग 7.5 लाख के आसपास में पहुंची थी और खर्चा मेरा वही था, लगभग 4-4.25 के समथिंग में हो गया था। उसके बाद में मैंने 2018-19 में डाटा निकाला था तो तब मेरी आमदनी बढ़ करके लगभग 8.5-9 लाख हो गई थी और मेरा जो खर्चा है वो थोड़ा सा और डाउन चला गया था, लगभग मैं 2.25 लाख के आसपास में चला गया था। और 2021-22 के सेशन में भी मैंने अपने हिसाब का कैलकुलेशन किया है तो उसी स्थिति में देखने में आया तो मेरी आमदनी लगभग 11-11.5 लाख के करीब पहुंच गई और मेरा जो खर्चा है वो 1.25 लाख मुश्किल से रह गया। और अभी का जो हिसाब है, अभी का हिसाब मैंने कैलकुलेशन नहीं किया है, लेकिन मुझे परिपूर्ण विश्वास है कि मेरी जो आमदनी है वो 23-24 लाख पार कर गई है और मेरी जो खर्चा है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन मुश्किल से 60-65 हजार रुपए प्रति वार्षिक होगी। तो इस तरह से मेरी आमदनी में इजाफा हुआ और बहुत खुशहाली से मैं खेती कर रहा हूँ।
0: शिव कुमार आज के समय में नजीर बन दूसरे किसानों को प्रेरित तो कर ही रहे हैं, खुद भी अच्छा मुनाफा कमाकर गांव के कई और परिवारों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। तो वहीं जैविक खेती को अपनाकर समाज के कल्याण के लिए भी एक कदम बढ़ा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि हमारे सफल किसान शिव कुमार आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं।
3: तो ये था हमारा आज का सफल किसान, जिसमें आपने जाना कि कैसे ऑर्गेनिक खेती आज के समय की मांग भी है और इस क्षेत्र में किसानों के लिए बहुत तरह के अवसर भी हैं। बस आवश्यकता है कि आप इसे करने की ठाने और शुरुआती चुनौतियों से डरे नहीं, जैसा कि शिव कुमार जी ने किया। आशा करते हैं कि उनके जीवन से आप भी कुछ न कुछ जरूर सीखेंगे। आज के सफल किसान में फिलहाल इतना ही। अगर आपके कोई सुझाव है, अगर आप चाहते हैं किसी विषय पर हम सफल किसान लेकर आए, किसी किसान की कहानी को कार्यक्रम में दिखाएं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें, सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। हम ऐसे किसानों की कहानियां जानना चाहते हैं जिन्हें आप हमें बताएं, ताकि उन्हें भी एक मंच मिल सके। सफल किसान में सफलता की कुछ और कहानियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: एंड वेलकम टू जीते रहो।
1: हाय फ्रेंड्स।
0: कुहू, मैं बहुत दिनों से एक बीमारी के बारे में जानना चाह रहा था, पर
1: ऐसी कौन सी बीमारी है जिसके बारे में जानने से तुम झिझक रहे हो?
0: एक्चुअली थोड़ा पर्सनल हो जाता है। इस बीमारी के बारे में सोचते ही मुझे मासी का दर्द याद आ जाता है।
1: ओ, यू मीन कैंसर? आई नो, ये बीमारी एक साथ कई जिंदगियां बदल देती है।
0: हाँ, हमेशा सुनता रहता हूँ, रेगुलर आर्टिकल्स भी निकलते रहते हैं, पर मैं समझ नहीं पाता हूँ कि ये है क्या और इसका नाम कैंसर कैसे पड़ा।
1: आइए देखते हैं।
2: कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका संबंध हमारे शरीर की मूलभूत इकाइयों से है। हमारे शरीर की ये मूलभूत इकाइयां हैं कोशिकाएं यानी सेल्स। शरीर में इनकी संख्या अरबों में होती है। ये कोशिकाएं शरीर के हर एक अंग के आधार पर अलग अलग होती हैं, जैसे लिवर सेल्स, ब्रेन सेल्स, ब्लड सेल्स इत्यादि। इन्हीं कोशिकाओं के विकास के आधार पर हमारा शारीरिक विकास होता है और इन्हीं से बनते हैं उत्तक यानी टिश्यूज। टिश्यूज असल में कोशिकाओं का एक समूह है। हम सबके शरीर में स्टेम सेल्स पाई जाती हैं, जो विभाजित होकर अलग अलग ऑर्गन्स की सेल्स में बदल सकती हैं और उस ऑर्गन का विशेष काम करने लगती हैं, जैसे किडनी और लिवर की सेल्स। कुछ स्टेम सेल्स किडनी सेल्स में परिवर्तित होती हैं तो कुछ लिवर सेल्स में, वहीं कुछ स्टेम सेल्स ब्रेन सेल्स में बदल जाती हैं तो कुछ मसल्स की सेल्स में। सामान्य स्थिति में कोशिकाओं के विभाजन के द्वारा नई कोशिकाएं बनती हैं। ये एक सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। नई कोशिकाएं बनती हैं और पुरानी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। कोशिकाओं के विकास चक्र में जब संतुलन पूरी तरह से गड़बड़ा जाता है तो उसे कैंसर कहते हैं। इस परिस्थिति में कोशिकाओं का विभाजन बहुत तेजी से होने लगता है और इसी वजह से नई कोशिकाएं भी बहुत तेजी से बनने लगती हैं। लेकिन दूसरी तरफ कोशिकाओं के नष्ट होने की प्रक्रिया पर लगाम कस जाती है। इससे टिश्यूज में अतिरिक्त कोशिकाएं जमा होने लगती हैं, जिसे ट्यूमर कहा जाता है। जहां तक इस बीमारी के नामकरण का सवाल है तो इसके पीछे भी इन्हीं ट्यूमर्स का हाथ है। आज से हजारों साल पहले हिप्पोक्रेट्स, जिन्हें मेडिकल साइंस का जनक कहा जाता है, ने जब एक ममी के ट्यूमर को देखा तो उन्हें जो आकृति दिखी वो केकड़े यानी क्रैब के पैरों से मिलती जुलती थी। लैटिन में केकड़े को कैर्सिनोस कहा जाता है, लिहाजा उन्होंने इसका नाम रखा कैर्सिनोमा, जो आगे चलकर कैंसर कहलाने लगा। कैंसर दो तरह से शरीर में फैलता है, इनमें एक तो इन्वेजन है और दूसरा मेटास्टेटिस। इन्वेजन के तहत कैंसर सेल्स अपने ओरिजिनेटिंग यानी उत्पन्न होने वाले अंग के पड़ोसी टिश्यूज में घुस जाते हैं। ब्रेस्ट कैंसर की प्रारंभिक अवस्था में बनने वाली गांठ इसका एक उदाहरण है। लेकिन मेटास्टेसिस में कैंसर सेल्स ओरिजिनेटिंग अंग के साथ साथ दूसरे अंगों के सेल्स में भी प्रवेश कर जाते हैं। मेटास्टेसिस में कैंसर सेल्स पहले लिम्फ यानी लसिका और ब्लड वेसल्स में प्रवेश करते हैं। उसके बाद ये ब्लड स्ट्रीम के जरिए शरीर के दूसरे अंगों तक फैल जाते हैं। कैंसर के सिम्टम्स यानी लक्षण कई बार कैंसर से प्रभावित अंग की ओर इशारा करते हैं, इसलिए इन्हें स्पेसिफिक सिम्टम्स कहा जाता है, जैसे कोलन कैंसर में दस्त, कब्ज और मल के साथ खून का आना, और ब्लैडर कैंसर में पेशाब में खून आ सकता है। लेकिन कुछ सिम्टम्स नॉन स्पेसिफिक होते हैं, मतलब ये सिम्टम्स कैंसर से प्रभावित अंग की ओर इशारा नहीं करते, जैसे हमेशा थकान लगना, क्योंकि कैंसर सेल्स शरीर की ऊर्जा का इस्तेमाल अपने विकास के लिए करने लगते हैं। इसके अलावा वजन का घटना, भूख न लगना, बुखार आना, त्वचा का काला हो जाना, खुजली होना और असहनीय दर्द होना नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स के उदाहरण हैं। लेकिन शुरुआती दौर में इन सिम्टम्स का या तो पता नहीं चलता या फिर उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है।

0: वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कैंसर के सिम्टम्स की। इसके अलावा हमने ये भी जाना कि कैंसर शरीर में फैलता कैसे है। लेकिन शायद आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि कैंसर कोई एक बीमारी नहीं है, बल्कि 100 से अधिक बीमारियों का एक जटिल समूह है जो शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है, चाहे वो मस्तिष्क हो, चाहे पाचन तंत्र, हड्डियां या फिर कोई और अंग।
1: मोटे तौर पर कैंसर को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, मसलन कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा और ल्यूकेमिया। कार्सिनोमा ये कैंसर का सबसे सामान्य रूप है। शरीर के किसी भी अंग की बाहरी या अंदरूनी सतह यानी एपिथेलियल टिश्यूज में होने वाले कैंसर इस श्रेणी में आते हैं। लंग्स, ब्रेस्ट, कोलोन कैंसर, सर्वाइक्स यानी बच्चेदानी का कैंसर और माउथ कैंसर कार्सिनोमा के प्रमुख उदाहरण हैं।
2: कैंसर की दूसरी कैटेगरी है सार्कोमास। इस कैटेगरी में कैंसर सपोर्टिव या कनेक्टिव टिश्यू की कोशिकाओं में होते हैं, जैसे हड्डी, कार्टिलेज, वसा और मांसपेशियां। कैंसर की अगली कैटेगरी है लिम्फोमास। लिम्फ नोड्स में होने वाले कैंसर को लिम्फोमास कहा जाता है।
1: लिम्फोमा के बाद आता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया व्हाइट ब्लड सेल्स का कैंसर है।
2: अब सवाल उठता है कि कैंसर होता कैसे है। आम धारणा तो यही है कि इसका कोई प्रत्यक्ष कारण नहीं है। कुछ प्रमुख कारणों के आधार पर इन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है। इनमें एक तो शरीर के अंदरूनी कारण है, जैसे हेरिडिटी, असंतुलित भोजन और हॉर्मोन्स। कुछ बाहरी कारण भी हैं, जैसे सिगरेट और तंबाकू का सेवन, शराब, कुछ कार्सिनोजेनिक रसायन, अल्ट्रावायलेट किरणें और न्यूक्लियर रेडिएशन इत्यादि। इन दोनों वर्गों के अलावा कुछ वायरसेस और बैक्टीरिया भी हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से कुछ खास किस्म के कैंसर के लिए जिम्मेदार हैं।
0: अब बात आती है इनके डायग्नोसिस की। कैंसर के केस में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब अर्ली स्टेज में इसका पता लगाया जा सकता है।
3: अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। पर अर्ली स्टेजेस में सिर्फ पता ही लगाते हो या फिर ठीक भी करते हो तुम लोग?
0: जी हाँ बबलू जी, अर्ली स्टेजेस में पता चलने पर कैंसर काफी हद तक ठीक किया जा सकता है। लेकिन आइए पहले ये तो देख लें कि कैंसर का पता कैसे चलता है, यानी क्या है इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट्स।
2: कैंसर का पता अगर शुरुआती अवस्था में ही लग जाए तो इलाज में काफी फायदा होता है और इसे जड़ से भी मिटाया जा सकता है। अक्सर कैंसर के मरीज डॉक्टर के पास एडवांस स्टेज में पहुंचते हैं, जब किसी अंग में कैंसर के कारण सूजन हो जाती है या कोई अल्सर जब लंबे समय तक ठीक नहीं होता या ब्लीडिंग होने लगती है। ऐसे में इलाज के विकल्प सीमित हो जाते हैं, मगर अब कुछ ऐसे स्क्रीनिंग मेथड्स उपलब्ध हैं जिनसे अर्ली स्टेजेस में ही कुछ खास तरह के कैंसर का पता चल जाता है। ऐसा ही एक टेस्ट है पैप स्मियर। ये एक ऐसी स्क्रीनिंग टेक्निक है जो सर्वाइकल कैंसर के अर्ली डायग्नोसिस में मील का पत्थर साबित हो रही है। इस प्रोसेस में एक छोटे ब्रश या स्क्रेपर से सेल्स का सैंपल ले लिया जाता है, फिर इन सेल्स को एक स्लाइड में रखकर माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। माइक्रोस्कोप से देखने पर यदि किसी तरह की असामान्यता यानी एबनॉर्मलिटी दिखाई देती है तो ये कैंसर का इंडिकेटर हो सकता है। ठीक इसी प्रकार मैमोग्राफी भी एक तरह की एक्सरे तकनीक है जो खास तौर पर ब्रेस्ट कैंसर के डायग्नोसिस में काफी कारगर है। इसके अलावा अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन और एमआरआई के जरिए भी कैंसर का पता चल जाता है। अगर पेशेंट को नॉन हीलिंग ओरल इन्फेक्शन है तो माउथ कैंसर के लिए उसकी जांच की जाती है। लंग कैंसर में मरीज को लंबी खांसी हो सकती है, बलगम के साथ खून भी आ सकता है और मरीज की सांस भी उखड़ी रहती है। ऐसे सिम्टम्स दिखाई देने पर मरीज की लंग कैंसर के लिए जांच की जाती है। अगर बार बार दस्त या कब्ज हो जाए जो 3 सप्ताह से ज्यादा चले तो बाउल कैंसर के लिए जांच जरूरी हो जाती है। उल्टी के साथ खून आने पर लिवर कैंसर की जांच जरूरी होती है।
1: अगर 2 और 3 सप्ताह से ज्यादा लो ग्रेड फीवर हो और उसकी वजह का पता न चले तो ब्लड कैंसर के लिए टेस्ट करवा लेना चाहिए, क्योंकि लो ग्रेड फीवर कई तरह के कैंसर का सिम्टम्स हो सकता है। इसके अलावा बार बार किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो या बगैर किसी वजह से वजन घटे तो भी ब्लड कैंसर के लिए जांच करवाई जा सकती है।
2: अगर पेशेंट में कैंसर जैसे लक्षण दिखाई देते हैं तो FNAC करते हैं। FNAC यानी फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। इसमें एक बारीक पतली सी सुई ट्यूमर स्थित जगह पर डालकर कुछ कोशिकाएं निकालते हैं। पैथोलॉजिस्ट फिर इसका परीक्षण करते हैं। ट्यूमर, लिम्फ नोड और बोन मैरो कैंसर का पता लगाने के लिए FNAC या बायोप्सी की मदद ली जाती है। बायोप्सी के लिए कैंसर वाली जगह से टिश्यू का एक छोटा टुकड़ा लिया जाता है, फिर इसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है। माइक्रोस्कोप में देखने पर कैंसर टिश्यूज नॉर्मल टिश्यूज से एकदम अलग दिखते हैं। नॉर्मल टिश्यूज जहां सुव्यवस्थित होते हैं वहीं कैंसर टिश्यूज का कोई निश्चित आकार नहीं होता, ये टेढ़े मेढ़े अव्यवस्थित से लगते हैं। कैंसर सेल्स जितने अव्यवस्थित होते हैं कैंसर उतना ज्यादा जानलेवा होता है।
4: एक बार डायग्नोसिस हो जाए कि ये गांठ, जैसे गले में गांठ है और गांठ के अंदर कैंसर का डायग्नोसिस आया है, तो ये गांठ का कैंसर कहां से आया है इस विषय में हम फिर कुछ और जांचें की जाती हैं, जैसे हम CT स्कैन करते हैं, एक्सरे करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, जिससे हम पता लगाते हैं कि ये कैंसर किस स्टेज का है, कहां तक गया है। पहले कैंसर का डायग्नोसिस होने के बाद उसका स्टेजिंग किया जाता है, स्टेजिंग के लिए कुछ जांचें होती हैं जो मैंने अभी बताई वो की जाती है, और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है।
1: कैंसर को मोटे तौर पर चार भाग में बांट सकते हैं। कैंसर जिस अंग में हुआ है अगर उसमें ही रहे और उसका फैलाव और गहराई थोड़ी हो तो इसे फर्स्ट स्टेज का कैंसर कहते हैं। कैंसर का फैलाव अगर बढ़ जाए और आसपास के अंगों में फैल जाए तो इसे सेकेंड स्टेज का कैंसर कहते हैं। कैंसर फैलकर आसपास के रीजन और लिम्फ नोड्स में फैल जाए तो इसे थर्ड स्टेज का कैंसर कहा जाता है। फोर्थ स्टेज में कैंसर भयानक रूप ले चुका होता है। अब कैंसर सेल्स लिम्फ नोड्स के जरिए शरीर के दूसरे अंगों जैसे लिवर, हड्डी और फेफड़ों तक फैल जाते हैं।
4: यदि कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ा जाए तो इससे पूरे बचने की पूरी पूरी संभावना है। अर्ली स्टेज में कैंसर पकड़ने के बहुत से फायदे हैं। एक, कि आप बीमारी को जड़ से मिटा सकते हैं। दो, इसका इलाज बहुत सरल है। कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं, खर्चा इलाज का, वो भी बहुत कम हो जाता है। तीसरा, डिसफिगरमेंट यानी कि अगर बड़ा ट्यूमर होगा तो उसको निकालने के लिए उतना बड़ा ऑपरेशन की जरूरत है, उतना ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, उतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशन के चांसेस रहते हैं। और यदि छोटा सा ट्यूमर है तो उसका छोटा सा ऑपरेशन है, दो तीन दिन अस्पताल में रहना है, उसके बाद घर चले जाना है, नॉर्मल लाइफ आपकी जल्दी आ जाती है और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसको कहते हैं उसमें भी कोई फर्क नहीं आता। आजकल कई टेस्ट आ गए हैं जिससे हम कैंसर को बड़ी अर्ली स्टेज में, इवन स्टेज वन से पहले की स्टेज में भी हम पकड़ सकते हैं। जैसे कि आजकल हम मैमोग्राफी करते हैं, मैमोग्राफी में छोटा सा छोटा लीजन भी हमें दिखाई दे जाता है, जब तक गांठ बनी ना हो उससे पहले भी हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये कैंसर है कि नहीं है। दूसरा, हम स्त्रियों में करते हैं पैप टेस्ट जो गर्भाशय यानी बच्चादानी के मुंह के कैंसर को डिटेक्ट करने में बहुत फायदेमंद है।
3: वेलकम बैक फ्रेंड्स। कोकिला, एक बात बताओ, अगर अर्ली स्टेजेस में कैंसर का पता चल जाए तो क्या वाकई कैंसर का इलाज संभव है?
0: देखो बबलू, ये दावे के साथ तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे मरीज की उम्र क्या है, उसकी सेहत कैसी है, बीमारी किस स्टेज में है और
3: ये सब तो ठीक है मैडम कुहू जी, लेकिन ये तो बताइए कि कैंसर का इलाज क्या है?
0: बबलू, एक सवाल का जवाब खत्म नहीं होता तुम दूसरा सवाल दाग देते हो। खैर, आइए देखते हैं क्या है कैंसर का इलाज।
2: कैंसर का मरीज कितना ठीक होगा वो इस बात पर निर्भर करता है कि कैंसर किस तरह का है और किस स्टेज में पहुंच चुका है। कैंसर के शुरुआती स्टेज में इलाज का मुख्य उद्देश्य होता है पूर्ण उपचार। एडवांस स्टेज में पहुंच जाने के बाद प्राथमिकता होती है बीमारी की रोकथाम कर मरीज की जिंदगी को ज्यादा से ज्यादा आरामदायक बनाना। इसी आधार पर कैंसर के इलाज को 4 वर्गों में बांटा गया है, सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी और हार्मोन थेरेपी।
1: सर्जरी में ट्यूमर और उसके आसपास जिन जगहों पर कैंसर सेल्स होते हैं उन्हें निकाल दिया जाता है। कुछ कैंसर के एडवांस स्टेजेस में सर्जरी का इस्तेमाल रेडिएशन और कीमोथेरेपी के साथ भी किया जाता है। रेडियोथेरेपी लगभग 6 दशक से कैंसर के इलाज का एक प्रमुख विकल्प बन गया है। चाहे कैंसर फर्स्ट स्टेज में एक अंग तक सीमित हो या एडवांस स्टेज में शरीर के कई अंगों तक फैल चुका हो, और शायद यही वजह है कि आज कैंसर के 50% मामलों में रेडियोथेरेपी का उपयोग हो रहा है। रेडिएशन एक खास तरह की ऊर्जा है जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से मशीनों के जरिए बीम के रूप में प्रवाहित की जाती है। गामा रेज कैंसरस सेल्स को मार देती हैं।
4: इसमें ना ऑपरेशन की जरूरत है ना कोई डिसफिगरमेंट होता है, सिर्फ रेज आती हैं और ट्यूमर को बर्न करती हैं और ट्यूमर जब खत्म हो जाता है। रेडियोथेरेपी का उपयोग मुंह के कैंसर, गले के कैंसर, टट्टी के मार का कैंसर, स्वरपेटी का कैंसर, इनमें बहुत ज्यादा, और कभी कभी छाती स्तन के कैंसर में भी यूज किया जाता है। रेडिएशन बच्चेदानी के मुंह के कैंसर में भी यूज की जाती है। रेडिएशन के अपने बहुत से फायदे हैं, बिना ऑपरेशन बिना किसी के आप ट्यूमर को ट्रीट करते हैं। दूसरा, ऑर्गन सेव होता है, जैसे कि स्वरपेटी आपकी बच सकती है, आप आवाज बोल सकते हैं। मगर इसके साथ साथ कुछ इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म में मुंह में लार बननी बंद हो जाती है, पेशेंट को सॉलो करने में प्रॉब्लम आती है, कभी कभी खाने का स्वाद नहीं आता है, और लंबे टर्म में ये फाइब्रोसिस वगैरह करती है जिससे पेशेंट को बाल, जहां जहां रेडिएशन लगती है वहां बाल चले जाते हैं, जो आजीवन चले जाते हैं, दोबारा कभी नहीं आते हो लाइफ में बाल।

0: जीते रहो में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कैंसर के इलाज की। तो कैंसर के विरुद्ध हमारी लड़ाई कई फ्रंट्स पर जारी है और यकीन मानिए इसके नतीजे भी सामने आ रहे हैं।
1: कैंसर के इलाज की अगली कैटेगरी है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी असल में एक ड्रग थेरेपी है। इसके तहत मरीज को जो दवाइयां दी जाती हैं, वो मैलिग्नेंट सेल्स के विकास यानी ग्रोथ और विभाजन यानी डिवीजन को प्रभावित करती हैं। कीमोथेरेपी की दवाइयां किसी भी स्टेज में कैंसर की कोशिकाओं को मारकर उनका विभाजन रोक देती हैं। इस प्रक्रिया की वजह से कई बार कैंसर सेल्स के साथ साथ स्वस्थ कोशिकाएं भी खत्म हो जाती हैं। तुरंत दिखने वाले साइड इफेक्ट्स हैं वॉमिटिंग टेंडेंसी, चक्कर आना, कमजोरी, कभी डायरिया या कभी कब्जियत, बालों का झड़ना, मुंह आना, मुंह में छाले पड़ना। ल्यूकेमिया, लिम्फोमास और टेस्टिकुलर कैंसर के मामलों में कीमोथेरेपी का इस्तेमाल सर्जरी और रेडिएशन के मुकाबले ज्यादा किया जाता है। कुछ खास परिस्थितियों में सर्जरी या रेडियोथेरेपी के बाद मरीज को कीमोथेरेपी दी जाती है ताकि कैंसर फिर से ना हो। हार्मोन थेरेपी भी कीमोथेरेपी का एक प्रकार है। कुछ कैंसर जैसे ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर में हमारे शरीर के हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन ही कैंसर सेल्स को बढ़ने में मदद करने लगते हैं। इसलिए हार्मोन थेरेपी में ऐसी दवाएं दी जाती हैं जो उन हार्मोन्स के बनने को कम करती हैं जो कैंसर को फैलाने में मदद कर रहे होते हैं।
2: जानती हो कोकिला, मुझे अंकुश फिल्म का वो गाना याद आ रहा है।
0: अच्छा, कौन सा गाना? जरा हम भी तो सुने।
2: इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना।
0: तुमने ठीक कहा बबलू। दोस्तों, इस बीमारी के विरुद्ध जो सबसे बड़ी शक्ति है वो है पेशेंट का आत्मविश्वास। इसीलिए अपना विल पावर स्ट्रांग रखिए और हाँ, एक अच्छी जीवन शैली अपनाइए। अपने खान पान में हरी सब्जियों के साथ साथ फलों का सेवन ज्यादा से ज्यादा कीजिए, क्योंकि हाल ही में ये स्पष्ट हो चुका है कि एक अच्छी जीवन शैली, अच्छे खान पान से हम काफी हद तक इस भयावह बीमारी से बचाव कर सकते हैं। इसी विश्वास के साथ आपसे विदा लेते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।
2: बाय एंड डू टेक केयर। जीते रहो।
1: हमारे शरीर में लगातार नई कोशिकाएं बनती रहती हैं और पुरानी कोशिकाएं नष्ट होती रहती हैं। कोशिकाओं के विकास चक्र में जब संतुलन पूरी तरह से गड़बड़ा जाता है तो उसे कैंसर कहते हैं। मोटे तौर पर कैंसर को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, मसलन कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा और ल्यूकेमिया। कैंसर का पता अगर शुरुआती अवस्था में ही लग जाए तो इसे जड़ से भी मिटाया जा सकता है। अगर पेशेंट में कैंसर के लक्षण दिखाई देते हैं तो FNAC या बायोप्सी करते हैं। कैंसर का इलाज चार तरीकों से किया जाता है, सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी और हार्मोन थेरेपी।

that is where we reach. And we, I mean, if we have to broadly speak, then I would say that in general, of course, we have touched upon most of the points, and since you are working on ground, so you understand it better. But still, if we have to look at it broadly speaking, firstly, the livelihood skills, social intervention that Read India or any other implementing agency would carry through for a livelihood skill program would lead to increased employability by providing individuals with relevant training and marketable skills. They become attractive to employers, thus expanding their job opportunities and income potential. Aur ye humne ground level pe feel kiya hai. Humne ye jab kaam kiya hai, to ye feel kiya hai ki kaise corporate linkages karke, product ke liye linkages karke, community ko jod ke jab kaam hota hai, to ye opportunities create hoti hai aur sab log passionately aake community cohesion ke andar aake kaam karna shuru karte hain. वो हमने बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स देखे, हमने बरान में देखा, स्पाइसेस के साथ देखा, गीजगढ़ में आज तक हम कोशिश कर ही रहे हैं, हमने एपीरी मैनेजमेंट में बी कीपिंग में डॉक्टर नितिन के साथ देखा. सो ये एक एफर्ट है जिससे कि अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं और कम्युनिटी कोहेजन आता है, कम्युनिटी इकट्ठे आती है, उससे कम्युनिटी के अंदर एक रेजिलियंस बनती है. सो लाइवलीहुड स्किल का ट्रेनिंग प्रोग्राम, उस ट्रेनिंग प्रोग्राम से इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ी, इनकम बढ़ी, कम्युनिटी इकट्ठे आई, कम्युनिटी का कोहेजन हुआ, उससे रेजिलियंस आया कम्युनिटी के अंदर. तो आप मतलब हम अलग अलग करके इन बातों को बात कर लें, इसको एलैबोरेट कर लें, बट दिस इज हाउ इट रिलेज एंड इट एक्चुअली परकुलेट्स इन द सोसाइटी, इन द कम्युनिटी. आई मीन बियॉन्ड इकोनॉमिक आउटकम्स, इफ यू लुक एट इट, दीज इंटरवेंशन आर ऑल्सो हेल्पिंग इन बूस्टिंग दी यू नो लेट्स से द सेल्फ एस्टीम एंड द कॉन्फिडेंस ऑफ द कम्युनिटी. ऑफकोर्स जब कोई पैसे कमाता है उसकी अपनी एक ऑटोनॉमी मिलती है उसके पास, तो उनका सेल्फ एस्टीम, उनका कॉन्फिडेंस, उनका से, उनका स्टेचर विद इन द फैमिली, विद इन द सोसाइटी, विद इन द कम्युनिटी, एंड देन वी कैन गो ऑन जूमिंग आउट, वो बनता है, उनको वो जगह मिलती है. सो उनसे और अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाने की. एंड आई मीन अगर थोड़ा सा एलैबोरेट करना हो तो ऑफकोर्स यू नो व्हेन वी लुक एट व्हाट वी डू इन टर्म्स ऑफ when there is a livelihood skill program that is running and these all outcomes are being experienced by the community, so there is a capacity building in the community which is happening. We think of capacity building in a very different way. When we think of capacity building, we think that capacity building of the trainers and the people on the ground who have to alleviate their own capacities. But this is a capacity building of a community to address their own specific needs and challenges which only they would understand better. So जब कम्युनिटी कोहेजन होता है तो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी होती है एज अ कैपेसिटी. ऑफकोर्स वी हैव रिफ्लेक्टेड अपॉन द इम्प्रूव्ड सोशल स्टेटस, एनहांस सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, रिड्यूस्ड वल्नरेबिलिटी टू यू नो एक्सप्लॉयटेशन. आई हर्ड मैम टॉकिंग अबाउट कि अगर एक्सेस ही नहीं होगा इन्फॉर्मेशन का तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे होगा. सर आप भी यही बात बोल रहे थे अलग अलग शब्दों में. सो ऑफकोर्स जब एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन मिलेगा थ्रू लाइब्रेरी मॉडल, लाइवलीहुड स्किल ऑन टॉप ऑफ इट, तो आपकी वल्नरेबिलिटी इन द सोसाइटी टू गेट एक्सप्लॉयटेड ऑल्सो गेट्स रिड्यूस्ड. दिस इज देन इट लीड्स टू यू नो ऑफकोर्स बेटर हेल्थ आउटकम्स एज वेल, बिकॉज यू आर लीडिंग अ मोर इन्फॉर्म्ड, मोर हेल्दी एंड मोर प्रॉस्परस लाइफ. सो ऑफकोर्स इट दिस इज ऑल दिस इज वाई वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर लुकिंग एट वन इंडिविजुअल बेनिफिशरी, बट ग्रुप ऑफ बेनिफिशरीज कमिंग टूगेदर इज फॉर्मिंग अ कम्युनिटी. सो इसका इम्पैक्ट कम्युनिटी में रिले होता है. और ये सब हम अपनी इम्पैक्ट असेसमेंट जो इस समय में कर रहे हैं उसमें ये सारे एस्पेक्ट्स अलग अलग जगह पे, अलग अलग इंटरवेंशन पे दिख रहे हैं. सो व्हाट आई एम शेयरिंग विथ यू राइट नाउ इज नॉट समथिंग विच वॉज द एंड गोल टू अचीव, बट वी आर रियलाइजिंग व्हाइल वी आर डूइंग द इम्पैक्ट असेसमेंट दैट इट वुड हैव बीन एन एंड गोल फॉर रीड, बट इन आवर जर्नी एज एन ऑडिटर व्हेन वी आर एग्जामिनिंग एवरी सोशल इंटरवेंशन अलॉन्ग विद द data which is existing there and our interaction at the community level, these are things which are actually happening. So these words are emerging out of our assessment, not out of our end goal or targeted goal that was already there, and now we see that there is so much of sync between what was targeted and what is being achieved. So in essence, if we look at it, we have talked about the resilience and sustainability as well, but in essence, if we look at livelihood skills intervention program, skills to succeed, what we do is not just about imparting knowledge. It's not only about skill de diya aur baat khatam ho gaya. It's about unlocking the human capacity and human potential by supporting them, by sustaining that initiative even further from the training to ensure that they are able to

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं महिपाल और मेरे साथ हैं आज आशा।
1: श्रोताओं, मेरा भी आपको प्यार भरा नमस्कार।
0: हम अपने कार्यक्रम से नए जुड़े दोस्तों को भी बता दें कि इस कार्यक्रम में हम खासकर उन विषयों पर बात करते हैं
1: जो हमारे समाज और स्वास्थ्य से जुड़े होते हैं।
0: तो आशा, आज हम कौन से विषय पर चर्चा करने वाले हैं?
1: महिपाल, हमारे देश में ऐसे कई ऑटिस्टिक बच्चे हैं जिनके सपने भी बहुत हैं, वह रिश्ते भी बनाना चाहते हैं पर बना नहीं पाते। उनका दुनिया को देखने का अपना ही तरीका है।
0: आज हम अपने कार्यक्रम में ऑटिज्म विषय पर ही बात करेंगे।

0: दोस्तों, ऑटिज्म एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें बच्चे अलग ढंग से अपने आप में खोए रहते हैं और चीजों के प्रति उनका अलग तरह का लगाव होता है। कई बार पास बुलाए जाने पर भी वे कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं।
1: साथ ही वे दूसरे बच्चों के साथ मेलजोल और खेलने में कठिनाई महसूस करते हैं। भय, संकट या वास्तविक खतरों की समझ से अनजान होते हैं।
0: आशा, ऑटिज्म की अक्सर मानसिक असंतुलन या बीमारी से तुलना की जाती है, लेकिन ऑटिज्म के लक्षण और इलाज पूरी तरह से अलग होते हैं।
1: दोस्तों, यह लक्षण बचपन में ही दिखने शुरू हो जाते हैं और फिर ये सारी जिंदगी रहते हैं, लेकिन बच्चा देखने में आम बच्चों की तरह ही दिखता है।
0: आशा, कई बार देखा जाता है कि ऑटिस्टिक बच्चे और उनके परिवार वालों को कई सामाजिक मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है।
1: आप बिल्कुल सही कह रहे हो महिपाल। ऑटिस्टिक बच्चों को आम बच्चों से अलग रखा जाता है, चूँकि इन बच्चों के विकास का मापदंड दूसरे बच्चों से अलग होता है और इनकी विकासात्मक असमर्थता के कारण ही इन्हें समाज हीन दृष्टि से देखता है
0: और इस कारण उनके परिवार वाले काफी चिंतित और मायूस हो जाते हैं।
1: ऐसे में ऑटिज्म से ग्रस्त बच्चे के माता पिता के सामने चुनौतियों की कमी नहीं होती।
0: दोस्तों, ऐसे ही एक माँ से हमने बात करी जिनका नाम है पूनम।
2: मेरे बेटे को बहुत थोड़ा सा है ऑटिज्म, मतलब उसका ऑटिज्म डायग्नोज हुआ है माइल्ड ऑटिज्म, तो इसलिए उसका सिर्फ स्पीच इफेक्ट हुआ है और कुछ एक उसका व्यवहार में जो कुछ अलग है दूसरों से। तो इसके लिए क्या होता है, कई बार जैसे लोग हैं सोचते हैं कि ये बच्चा ऐसे है और ठीक दिख रहा है, लेकिन इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है, इस तरह से क्यों उसका व्यवहार अलग सा क्यों है, तो उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है उस टाइम पर कि इस बच्चे के साथ एक प्रॉब्लम है। लेकिन और मेरे बच्चे का जो सामाजिक व्यवहार है वो उसको सिखाने में मुझे काफी वक्त लगा उसको।
1: दोस्तों, हमारे साथ शिखा जी भी हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं।
2: मेरे बेटे को जब डायग्नोसिस मिला था वो 4 साल का था, वो स्कूल जाता था, तो वो स्कूल की अगर मैं बात करूं तो मुझे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। टीचर्स की लगातार कंप्लेन्स आती थी, प्रिंसिपल ने मुझे कई बार बुलाया कि आपका बेटा ये नहीं करता, उसका जॉइंट अटेंशन में प्रॉब्लम है, क्लास में लेट जाता है और दूसरे बच्चों को पुश करता है, इस तरह की दिक्कतें थी। वो उसको समझ नहीं पा रहे थे कि वो इस तरह क्यों करता है। जैसे ही उसका जब डायग्नोसिस मिला मुझे, तो मैंने बिल्कुल भी देर नहीं करी और मैंने खुद को अपने आप को ट्रेन करना शुरू करा और उसको समझने के लिए मैंने काफी बुक्स पढ़नी शुरू करी ऑटिज्म रिलेटेड, और काफी लोगों से मिलके और जो जो लोग इसके बारे में ज्यादा जानते हैं उनसे बात करना शुरू किया, ट्रेनिंग करना शुरू करा। और उसके बाद मैंने देखा, जब मैंने स्कूल वालों से जाके मिली, उनको बताया, उनको डिस्क्लोज करा कि ये प्रॉब्लम है, इसीलिए मेरे बेटे को ये चीजें फेस करनी पड़ी है, तो फिर मुझे जो पॉजिटिव रिस्पांस मिला स्कूल वालों की तरफ से वो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो इसलिए जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है, डायग्नोसिस बहुत जरूरी है और एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। जिस दिन आप अपना बच्चे को जैसा है उसी तरीके से एक्सेप्ट कर पाएंगे, सोसाइटी भी एक्सेप्ट करने में कोई देर नहीं करेगी। जरूरत सिर्फ ये है कि आपको भी कदम बढ़ाना है, और आप कदम बढ़ाएंगे तो सोसाइटी अपने आप रिस्पॉन्स पॉजिटिव देना शुरू करेगी।

0: ऑटिस्टिक बच्चे का अभिभावक होना अपने आप में एक चुनौती है।
1: श्रोताओं, इस बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है शुभांगी वैद्य।
2: मेरा खुद का बच्चा ऑटिस्टिक है और मैंने अपने शोध के दौरान कई ऐसे परिवारों से बात की है जिनके बच्चों को ऑटिज्म डायग्नोज हुआ है, और इन सारे अनुभवों के दौरान मुझे ये बात देखने को मिली है कि ऑटिज्म के बारे में लोगों की जानकारी बहुत सीमित है। हमारे बच्चों के कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं, कुछ ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो लोगों को बहुत विचित्र टाइप के लगते हैं। मिसाल के तौर पर हाथ फड़फड़ाना, एक जगह पे गोल गोल घूमना, खुद से बातें करना, बिना किसी वजह हंसना या रोना, और इसकी वजह से पेरेंट्स भी काफी हद तक मायूस हो जाते हैं। वो अपने बच्चों को कहीं पब्लिक प्लेसेस में लेके जाना ही पसंद करते हैं क्योंकि उनके अंदर ये एक एहसास होता है कि लोग हमारे बच्चे को देख रहे हैं, हंस रहे हैं, जजमेंट पास कर रहे हैं, उसको पागल के नाम से मतलब आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और ये पेरेंट्स के लिए बहुत अधिक डिप्रेसिंग एक्सपीरियंस होता है। और जब तक पेरेंट्स और बच्चों के साथ रहने वाले लोग ये समझ नहीं पाएंगे कि जो हमारा बच्चा है वो जैसा भी है वो पहले हमारा बच्चा है, इस एक्सेप्टेंस तक आने में नेचुरली टाइम लगता है। ये कहना बहुत आसान है लेकिन इस बात को अपने डे टू डे लाइफ में इसका अनुकरण करना ये बहुत मुश्किल होता है। एक और बहुत अहम मुद्दा जो ये है कि बच्चे का जो केयर है, बच्चे की परवरिश, और सिर्फ बचपन में नहीं उम्र भर, जीवन भर जो बच्चे का केयर है ये पूरी तरह से परिवार के ऊपर निर्भर है। और परिवार के अलावा और ऐसी कोई भी संस्था नहीं है जो ऐसे मतलब डिसेबल लोगों की सहायता करता है या उन्हें सपोर्ट देता है। हम लोगों के बाद हमारे बच्चों का क्या होगा, इसका जिम्मा कौन लेगा।

0: आशा, कल मैं एक किताब पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था कि पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ कैसे समझौता करते हैं। उस किताब में एक माँ ने लिखा है कि साज की अगर एक तार भी टूट जाए तो संगीतकार उसे छोड़ता नहीं, बल्कि उसे और भी सुंदर तरीके से बजाता है।
1: इसी संदर्भ में मुझे एक पिता द्वारा अपने बेटे के लिए लिखी बात याद आ गई है। उन्होंने अपने बेटे पर लिखा है कि बेशक मेरा बेटा कुछ दूसरे बच्चों की तरह नहीं कर पाता, पर वो मुझे पूरी सहानुभूति प्यार देता है और अपनी जिंदगी की परिस्थिति से जूझता है, इसलिए मैं मानता हूँ कि मेरा बेटा ही मेरा हीरो है।
0: श्रोताओं, ऑटिज्म एक ऐसी आजीवन रहने वाली जटिल विकासात्मक असमर्थता है जिससे आज भारत में लगभग 20 लाख लोग प्रभावित हैं।
1: और महिपाल, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑटिज्म लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में 4 गुना ज्यादा पाया जाता है।
0: दोस्तों, इस विषय पर और अधिक बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इंदु जैसवाल, जो एक्शन फॉर ऑटिज्म ओपन डोर स्कूल के एजुकेशन डायरेक्टर हैं। इंदु जैसवाल जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है।
2: धन्यवाद।
0: सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, इसका क्या उद्देश्य है?
2: ऑटिज्म जो है ये एक काफी कॉमन विकार है, परंतु इसके बारे में सिर्फ इंडिया में ही नहीं, सारे विश्व में देखा जाए तो ज्यादा जानकारी नहीं है, तो इसीलिए हम मनाते हैं वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे। लेकिन इसको डे न कह के इसको वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे का नाम दिया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आज के दिन हम ज्यादा से ज्यादा जागरूकता जो है, अवेयरनेस जो है ऑटिज्म की क्रिएट कर सके, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत है। ये एक बहुत कॉमन कंडीशन है, परंतु इसके बारे में नॉलेज बहुत कम है।
0: इंदु जी, क्या ऑटिज्म वंशागत है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है?
2: कई परिवार हैं जिनमें एक से अधिक बच्चे पाए जाते हैं जिनमें ऑटिज्म है, या कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जिनमें कुछ लक्षण ऑटिज्म से मिलते जुलते हो, परंतु आज तक ये सिद्ध नहीं हुआ कि ये पारिवारिक है। बहुत अनुसंधान चल रहा है, रिसर्च बहुत चल रही है, और ये माना जा रहा है कि ऑटिज्म जो है किसी एक कारण से नहीं होता, ये कॉम्बिनेशन होते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और हाँ, शायद उनमें से एक कारण पारिवारिक भी हो सकता है।
0: इंदु जी, माता पिता को कैसे पता लगेगा कि उनके बच्चे को ऑटिज्म है?
2: ये कई बार बहुत कठिन होता है। जब बच्चा छोटा होता है तो वो सामान्य बच्चों की तरह लगता है, क्योंकि उसमें कोई, उसको देखने में कुछ अटपटापन दिखता नहीं है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस आम बच्चों की तरह होती है। जब बच्चों की उम्र होती है बात करने की, लोगों से संपर्क बनाने की, रिलेशनशिप्स बनाने की, तब पेरेंट्स नोटिस करते हैं, माता पिता ये देखते हैं कि उनके बच्चों के व्यवहार कुछ अजीब से हैं। जैसे जब उसे नाम से पुकारा जाए तो वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाता, माता पिता को ऐसा लगता है कि वो सुन ही नहीं रहा, परंतु वो म्यूजिक तो सुनता है और दूसरी आवाजों के प्रति भी वो संवेदनशील होता है, फिर अपना नाम सुन के वो एक रिएक्शन या एक रिस्पॉन्स क्यों नहीं देता। उसके बाद आंख मिलाकर संपर्क बनाने में, जिसे हम आई कॉन्टैक्ट कहते हैं, उसमें इन बच्चों को दिक्कत आती है। अपनी उम्र के दूसरे बच्चों के साथ घुलने मिलने में, उनके साथ खेल में उनको परेशानी होती है, और माता पिता देखते हैं कि एक 1.5 साल का बच्चा हो गया, 2 साल का भी हो गया, खिलौनों से वो नए नए खेल नहीं रचा पा रहा, वो एक बहुत ही, जिसको हम बोलते हैं रूढ़िबद्ध, एक स्टीरियोटाइप्ड मैनर में खेल रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनसे माता पिता थोड़े से अलर्ट हो जाते हैं, और इस उम्र तक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा बोलने भी लगेगा, और यहाँ पे वो बोल भी नहीं पाता, या बोलता है तो बहुत अटपटे ढंग से बोलता है। तो लगभग 2 साल की एज पे आकर माता पिता थोड़े से अवेयर होते हैं कि शायद बच्चा थोड़ा अलग है।
0: इंदु जी, क्या ऑटिज्म को रोका जा सकता है?
2: ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं है, तो इसीलिए इसका कोई रोकथाम भी नहीं है। बच्चा इस दुनिया में ऑटिज्म के साथ ही आता है, और ये लाइफ लॉन्ग कंडीशन है। कोई दवा ऐसी नहीं है जो इसका उपचार हो। हाँ, कई बार ऑटिज्म के लक्षण बहुत तीव्र हो जाते हैं और माता पिता को और दूसरे लोगों को काफी दिक्कतें आने लगती हैं, तो कुछ ऐसी दवाएं हैं जो उन लक्षणों को कुछ कम कर देंगी, लेकिन ऑटिज्म हमेशा रहेगा।
0: इंदु जी, ऑटिज्म और मंदबुद्धिता में क्या अंतर है?
2: ऑटिज्म और मंदबुद्धि में काफी अंतर है। पहली चीज तो ये है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति को ऑटिज्म है उसकी उसे मंद बुद्धि भी होगी, हो सकता है कि उसकी जो इंटेलिजेंस है वो उसकी उम्र के और लोगों की तरह हो। जो मुख्य दोनों चीजों में फर्क है वो ये है कि जब किसी को मंद बुद्धि होती है तो उसका जो इंटेलिजेंस होता है और यहां बोल सकते हैं उसकी जो डेवलपमेंट होती है, उसका विकास हर एरिया में एक ही तरह से अफेक्टेड होगा। आपके पास एक 10 साल का बच्चा है और जिसका मानसिक विकास अभी 4 साल पर चल रहा है, तो उसका सभी कुछ, उसका उठना बैठना, बात करना, अपने शरीर का इस्तेमाल करना, बोलना, उसका सामाजिक व्यवहार, सब कुछ 4 साल के लगभग होगा। परंतु ऑटिज्म में हम कहते हैं एक बहुत ही उतार चढ़ाव वाली डेवलपमेंट होती है। बच्चे के विकास में हम देखते हैं कि कई बार ये देख कि उसकी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो उसकी उम्र के दूसरे बच्चों की तरह ही होती हैं, जैसे कि उसने उठना बैठना चलना सही एज में स्टार्ट किया है और वो अपना शरीर सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। कुछ उसके कौशल ऐसे भी हो सकते हैं जो उसकी उम्र से बहुत अधिक भी हो। बहुत से ऐसे ऑटिस्टिक व्यक्ति हैं कि जिनमें बहुत ही गणित के बहुत ही गुण होते हैं, वो मल्टीप्लिकेशंस और नंबर्स में बहुत स्किल होती है उनकी, तो कुछ उनके ऐसे स्पेशल स्किल भी हो सकते हैं जो उनकी एज से बढ़कर हों। और जैसे हमें मालूम ही है कि कम्युनिकेशन में और सामाजिक व्यवहार में उनके जो कौशल हैं वो बहुत कम रहते हैं अपनी एज से। तो मेन फर्क दोनों चीजों में ये है कि जहां मानसिक मंदता होने से बच्चे का विकास एक ही तरह से, हम बोलते हैं एक इवन तरह से वो अफेक्टेड है, लेकिन ऑटिज्म में उसकी डेवलपमेंट ऊपर नीचे होती है और इससे कई बार उनके साथ काम करने वाले जो लोग हैं, उनके जो माता पिता हैं, वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि इसका लेवल है क्या।
0: इंदु जी, ऑटिस्टिक बच्चों को जीवन की मुख्य धारा में किस हद तक शामिल किया जा सकता है और उनके लिए कौन से विशेष प्रावधान हैं?
2: कोई भी बच्चा हो जिसे किसी भी प्रकार की परेशानी हो, चाहे वो ऑटिज्म हो या कुछ और हो, हम जानते हैं कि आजकल UNCRPD और सर्व शिक्षा अभियान और इन सभी चीजों के अंतर्गत पूरी कोशिश की जा रही है कि इन्हें मुख्य धारा में जितना शामिल किया जा सके कोशिश करनी है। परंतु ये स्थिति हम लोग पूरी तरह यहाँ पहुंचने में काफी समय लगाएंगे और हर एक बच्चा जिसे ऑटिज्म है वो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस दिखा सकता है और उसे मुख्य धारा में हम लोग शामिल कर सकते हैं, लेकिन उसे कुछ सपोर्ट जरूर चाहिए होगा इस समाज में एडजस्ट करने के लिए। हम जानते हैं कि कितना कठिन है समाज में एडजस्ट करना, जो चीजें हम लोग इतनी आराम से कर लेते हैं वो बुनियादी चीजें भी इन बच्चों को सिखानी पड़ती हैं। तो उनको एक, हम जो बोलते हैं कि साथ साथ एक और प्रोग्राम चाहिए होता है जो उन्हें हेल्प करता है मुख्य धारा में बने रहने के लिए। और स्पेशल प्रावधान इन बच्चों के लिए है। ये बड़े दुख की बात है कि अभी ये खाली मेट्रोज में ही उपलब्ध हैं और छोटे शहरों में अभी भी ऑटिज्म की ही जानकारी नहीं है। इन बच्चों को सिखाने के तरीके अलग होते हैं, इनको हम लोग जितना ज्यादा से ज्यादा विजुअल्स की हेल्प से सिखा सके और इनकी ट्रेनिंग में जितना हम भाषा लैंग्वेज प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कर सके उतना अच्छा होगा।
0: इंदु जी, सरकार की ओर से क्या इस दिशा में कोई प्रयास किए जा रहे हैं?
2: जी हाँ, हाल ही में ऑटिज्म से प्रभावित व्यक्तियों के लिए एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, पहले काफी दिक्कत थी सर्टिफिकेट कोई बना नहीं पा रहे थे कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए असेसमेंट का, तो अब पिछले साल इनके लिए एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी मिल रहा है और उस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के आधार पर काफी जो ऑटिस्टिक व्यक्ति हैं उनको सुविधाएं भी मिल रही हैं, जैसे कि इनकम टैक्स में रिबेट मिलना, और दूसरी चीज है कि अगर ये कोई लाइक यात्रा पे जा रहे हैं, रेल यात्रा पे जा रहे हैं, तो उसमें कंसेशन मिल पाना। नेशनल ट्रस्ट में ऑटिज्म एक डिसेबिलिटी के रूप में इसको रिकग्निशन मिला है। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ऑटिज्म के लिए टीचर ट्रेनिंग का कोर्स चला रही है, तो इस प्रकार से काफी कुछ हो रहा है। कुछ संस्थाएं जो ऑटिस्टिक बच्चों के लिए स्कूल चला रहे हैं उनके प्रोग्राम्स को थोड़ी बहुत सहायता भी मिलती है सरकार से, तो इस दिशा में कार्य शुरू तो हुआ है, लेकिन क्योंकि हम देखते हैं कि नंबर्स बहुत हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ऑटिज्म है, तो और भी सुविधाओं की जरूरत है, लेकिन प्रयास अभी आरंभ हुए हैं।
0: इंदु जी, ऑटिज्म के लिए कोई हेल्पलाइन है जिनसे लोग जानकारी प्राप्त कर सकें?
2: ये जो अर्थ आस्था नाम से एनजीओ है, नेशनल ट्रस्ट की हेल्पलाइन इनके संस्था से चलती है, इसका नंबर है 011-264-66-250, और एक बार और दोहराती हूँ, 011-264-66-250, ये है नंबर अर्थ आस्था का। इसके अलावा और भी कई संस्थाएं हैं जो ऑटिज्म के लिए काम कर रही हैं। एक्शन फॉर ऑटिज्म का नंबर लिया जा सकता है, ये दिल्ली में है, और इनका फोन नंबर है 011-40-54-0991, और इन नंबर्स पे फोन करें तो जरूर सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी।
0: इंदु जी, जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: मैं ये कहना चाहूंगी कि ऑटिज्म जो है ये एक काफी, जो हम बोलते हैं कि व्यापक स्थिति है, कि बहुत हम लोग देखते हैं कि हर 150 में से एक व्यक्ति में कुछ न कुछ ऑटिज्म के लक्षण होते हैं। हालांकि ये जो आंकड़े हैं ये हिंदुस्तान से नहीं, हमारी कंट्री में नहीं मिले हैं, क्योंकि कभी कोई ऐसा सर्वे ही नहीं हुआ, कोई डेटा ही नहीं कलेक्ट हुआ, अब ये सब काम शुरू हो रहे हैं। तो जब ये कॉमन डिसऑर्डर है तो बहुत जरूरी है कि लोगों में इसकी जागरूकता हो, ताकि जिन लोगों को ऑटिज्म है वो भी हमारी सोसाइटी में आराम का जीवन व्यतीत कर सके, और दूसरे लोगों की तरह इसकी इसमें हर चीज में शामिल हो सके, और जो उनकी कैपेबिलिटीज हैं, जो वो कर सकते हैं, उसका वो पूरा योगदान हमारे समाज को दें और उस समाज का एक हिस्सा बन के रहें। तो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे के दिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जितनी अवेयरनेस, जितनी जानकारी ऑटिज्म की दे सके हम दें।
0: इंदु जी, आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ी, हमें और हमारे श्रोताओं को बहुत उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।

0: दोस्तों, इंदु जी से हमने ऑटिज्म के बारे में जाना कि है क्या है और किस तरह से ऑटिस्टिक लोग भी जिंदगी की मुख्य धारा में शामिल हो सकते हैं।
1: आशा सरकार के साथ बहुत सी गैर सरकारी संस्थाएं भी इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, जैसे एक्शन फॉर ऑटिज्म, तमन्ना, राजकुमारी अमृत कौर चाइल्ड स्टडी सेंटर, स्कूल ऑफ होप, आसमान आदि। ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जो इस विषय पर कार्य कर रही हैं।
0: दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि ऑटिज्म एक आजीवन रहने वाली जटिल विकासात्मक असमर्थता है,
1: पर प्रारंभिक निदान और उचित प्रशिक्षण द्वारा महत्वपूर्ण प्रगति और विकास देखे जा सकते हैं।
0: ऑटिस्टिक बच्चे भी अपने आप में बहुत सारी काबिलियत रखते हैं, पर वे अपनी काबिलियत को साबित करते हैं तो इनके माता पिता के लिए इससे बड़ी खुशी की बात कुछ हो ही नहीं सकती।
1: दोस्तों, ऑटिस्टिक लोगों की काबिलियत को पहचानते हुए उनके खास गुणों को समाज के साथ जोड़ना जरूरी है। दोस्तों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। दोस्तों, अगले कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आशा और महिपाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ दलजीत सचदेवा
1: और मैं चांदनी वर्मा।
0: नमस्कार
1: दलजीत, कहते हैं कि किसी भी चीज को देखने का सबका अपना अपना नजरिया होता है, क्यों?
0: बिल्कुल, तभी तो कहते हैं कि चीज खूबसूरत नहीं होती बल्कि उसे देखने वाले की निगाहें अच्छी होती हैं, उनका नजरिया खूबसूरत होता है।
1: बिल्कुल, और एक नजरिया होता है विज्ञान का, जो किसी भी घटनाक्रम को या किसी भी स्थिति को या फिर किसी भी वस्तु को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मापता है और फिर पहुंचता है एक ठोस नतीजे पे।
0: और तभी तो कहते हैं कि विज्ञान ने हमें जीने के नए मायने दिए हैं और हमारी सोच को नई दिशा,
1: और इसी विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और लोगों में वैज्ञानिक चेतना जगाने का बीड़ा उठाया है विज्ञान प्रसार ने।
0: जी हाँ दोस्तों, विज्ञान प्रसार के माध्यम से आपको मिलती है विभिन्न विषयों की रोचक, दिलचस्प और महत्वपूर्ण जानकारियाँ।
1: और दोस्तों, आज वैज्ञानिक कार्यक्रमों की इस श्रृंखला में हम प्रस्तुत करते हैं एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विद्या पर आधारित कार्यक्रम, और इसके अंतर्गत आज हम जानेंगे सन यानी सूरज के बारे में।
0: तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया है कि आज हम सूरज के बारे में विस्तार से जानेंगे, तो चांदनी शुरू करें सीखने सिखाने का ये सिलसिला।
1: बिल्कुल, तो चलो सबसे पहले हम सूरज का परिचय प्राप्त करते हैं। सूरज पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बाकी तारों की अपेक्षा ये पृथ्वी से हजारों गुना ज्यादा निकट है, और तारों के बारे में हम जितना भी जानते हैं उनके बारे में हमें सूरज के अध्ययन से ही पता चला है। जैसा कि हमने कहा कि ये बाकी तारों की अपेक्षा पृथ्वी से हजारों गुना ज्यादा नजदीक है, इसीलिए खगोल शास्त्रियों ने इसका विस्तृत अध्ययन करने में सफलता हासिल की है।
0: और खगोल शास्त्रियों के अध्ययन से ये पता चला कि सूर्य G2 टाइप मेन सीक्वेंस तारा है, जो लगभग 5 करोड़ वर्ष से चमक रहा है। पृथ्वी, चंद्रमा और उल्कापिंड की रेडियो सक्रियता से ये पता चला कि ये इतने ही वर्षों से हैं, और पृथ्वी का तापमान शुरू से ही सुखद है और सूर्य की ऊर्जा से ही ये संभव हो पाया है।
1: बिल्कुल ठीक, लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि सूर्य की इतनी शक्तिशाली ऊर्जा का स्रोत क्या है। अब प्रयोगों और अध्ययनों के बाद ये पता चला है कि सूर्य के साथ साथ बाकी तारों की असीम ऊर्जा का स्रोत है न्यूक्लियर फ्यूजन। दलजीत, अब बात आती है सूर्य के आकार की, तो इसके बारे में तुम क्या कुछ बता सकते हो?
0: देखो चांदी, सूर्य अभी तक सौर मंडल का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसके 0.5 डिग्री कोणीय आकार और तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर दूरी के आधार पर इसके व्यास का आकलन किया गया है, जो करीब 1,392,000 किलोमीटर है। ये व्यास पृथ्वी के व्यास का करीब 109 गुना है और सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति से 10 गुना ज्यादा है। चांदनी, यहाँ एक खास बात और बता दूं कि सूर्य के अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण की वजह से सारे ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं।
1: हाँ, सूर्य पृथ्वी के आकार से करीब 3,33,000 गुना ज्यादा और बृहस्पति से करीब 1,000 गुना ज्यादा बड़ा है। ये कहा जा सकता है कि सूर्य इतना बड़ा है कि ये अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न कर लेता है, और इसकी यही खासियत तारों को ग्रहों से अलग कर देती है। दलजीत, ये बताओ कि सूरज की संरचना कैसी है?
0: देखो चांदनी, ये अच्छा सवाल वैसे तुमने पूछा। स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से ये पता चलता है कि ये मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा 94% और हीलियम की 6% है। बाकी के तत्व बहुत ही थोड़ी मात्रा में, लगभग 0.13% में है।
1: लेकिन दलजीत, कम मात्रा में पाए जाने वाले ये तत्व कौन कौन से हैं?
0: देखो चांदनी, सूरज की संरचना में जो तत्व काफी कम मात्रा में पाए जाते हैं उनमें नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम और आयरन है। तो ये तो बात थी कि सूरज किन किन चीजों से मिलकर बना है। चांदनी, अब तुम इसकी अंदर की संरचना के बारे में कुछ बताओ।
1: जरूर, सूरज का बीच का हिस्सा या इसका अंतर्भाग सूरज के आकार का 10% हिस्सा है। सूरज का यही वो हिस्सा है जहां न्यूक्लियर फ्यूजन से ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसके ऊपर के सभी हिस्सों के गुरुत्वाकर्षण दबाव के कारण ये हिस्सा काफी ज्यादा गर्म और सघन होता है। जाहिर सी बात है कि न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए काफी ज्यादा तापमान और घनत्व की जरूरत होती है।
0: सूरज का अंतर्भाग करीब 16 मिलियन के है और इसका घनत्व पानी के घनत्व से करीब 160 गुना ज्यादा है और लोहे के घनत्व से 20 गुना ज्यादा है। हालांकि काफी ज्यादा तापमान होने की वजह से सूरज का अंदरूनी हिस्सा सिर्फ गैसों से भरा हुआ है। इसके अंदरूनी हिस्से में कहीं भी पृथ्वी की तरह पिघले चट्टान नहीं पाए जाते हैं। चांदी, अब तुम ये बताओ कि सूरज का रेडिएटिव जोन और कन्वेक्टिव जोन क्या है?
1: बताती हूँ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो श्रोताओं, जाइएगा मत, हम अभी हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
2: विज्ञान प्रसार सूचना सेवा यानी विप्रिस भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न विषयों का संग्रह है। विज्ञान प्रसार अपने होम पेज दैट इज www.vigyanprasar.com को व्यवस्थित एवं सामयिक करने के अतिरिक्त सीडी रोम एवं अनेक सीखने वाले सॉफ्टवेयरों को विकसित करता है। ये होम पेज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित मुख्य वेबसाइट है। विप्रिस 125 हिंदी एवं अंग्रेजी समाचारों को संकलित करके एक पुस्तक क्लिप सेट ग्राहकी आधार पर हर पखवाड़े प्रकाशित करता है। विप्रिस अन्य वैज्ञानिक निकायों एवं संस्थाओं की भी वेबसाइट बनाता है।
1: ब्रेक के बाद आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, दलजीत ने मुझसे सूरज के रेडिएटिव जोन और कन्वेक्टिव जोन के बारे में पूछा था, क्यों दलजीत?
0: बिल्कुल ठीक, तो जल्दी बताओ भाई।
1: देखो, सूरज के त्रिज्या का करीब 85% भाग रेडिएटिव जोन कहलाता है। और ये वो हिस्सा है जहाँ गर्म अंदरूनी भाग से ऊर्जा फोटॉन्स के जरिए बाहरी परतों तक पहुँचाई जाती है।
0: और कन्वेक्टिव जोन?
1: सूर्य की त्रिज्या के बाहरी 15% हिस्से में ऊर्जा जिस विधि से पहुँचाई जाती है उसे कन्वेक्शन कहते हैं। फोटोन रेडिएशन का प्रवाह ठंडे हिस्सों में आयनों द्वारा बाधित कर दिया जाता है और इन हिस्सों में गैसों के प्रवाह से ऊर्जा पहुंचाई जाती है। सूरज की सतह के ठीक नीचे का ये हिस्सा कन्वेक्टिव जोन कहलाता है।
0: बिल्कुल ठीक। और अब बात करते हैं सूरज की सतह की। सूर्य की सबसे अंदरूनी सतह फोटोस्फीयर है, इसे ही सूरज की सतह मानते हैं क्योंकि इसी के ऊपर से फोटॉन्स अंतरिक्ष में निकलते हैं। ये फोटोस्फीयर तकरीबन 500 किलोमीटर घना है और इसका तापमान करीब 5840 के है।
1: बिल्कुल ठीक। और इसी संदर्भ में गैलीलियो ने पाया था कि सूरज की सतह पर छोटे छोटे गहरे हिस्से थे जिन्हें सन स्पॉट्स कहते हैं और ये हिस्से फोटोस्फीयर के ठंडे हिस्से माने जाते थे। चूंकि ये हिस्से बाकी के फोटोस्फीयर से 1000 से 1500 के गुना ज्यादा ठंडे हैं, इसीलिए इनसे रोशनी उत्पन्न नहीं होती और ये गहरे नजर आते हैं। इन सनस्पॉट्स या गहरे हिस्सों की उम्र सिर्फ कुछ दिनों से कुछ महीनों तक की ही होती है।
0: और गैलीलियो ने ज्यादा लंबे समय तक टिके रहने वाले सनस्पॉट्स की मदद से सूर्य की घूर्णन विधि का अंदाज लगाया। चूंकि सूरज गैसों से बना है इसलिए इसके सभी हिस्से सामान गति से नहीं घूमते हैं। सूरज की भूमध्य रेखा 25 दिनों में एक बार घूमती है, जबकि भूमध्य रेखा के 30 डिग्री ऊपर और नीचे का हिस्सा 26.5 दिनों में एक बार घूमता है और भूमध्य रेखा से 60 डिग्री ऊपर और नीचे का हिस्सा घूमने में 30 दिनों का वक्त लेता है।
1: दलजीत, बिल्कुल सही कहा तुमने। सूर्य पर पाए जाने वाले ये सनस्पॉट्स काफी दिलचस्प हैं। वर्षों तक इन सनस्पॉट्स का अध्ययन करने पर ये पता चला कि इन सनस्पॉट्स की संख्या एक नियत वक्त के साथ बदलती रहती है। इस सनस्पॉट साइकिल की शुरुआत में सनस्पॉट्स की संख्या न्यूनतम होती है और उनमें से ज्यादातर सनस्पॉट सूरज की भूमध्य रेखा से 35 डिग्री के कोण पर स्थित होते हैं। करीब 5.5 सालों के बाद इन सनस्पॉट्स की अधिकतम संख्या होती है और उस वक्त ज्यादातर सनस्पॉट्स भूमध्य रेखा के 5 डिग्री कोण पर होते हैं।
0: बिल्कुल, ये सनस्पॉट्स अत्यधिक चुंबकीय शक्ति वाले क्षेत्र हैं और ये सनस्पॉट स्पेक्ट्रा की स्पेक्ट्रल लाइंस को प्रभावित करते हैं। हर स्पेक्ट्रल लाइन कई भागों में बढ़ जाती है और इन भागों के अंतर से चुंबकीय शक्ति की माप की जाती है।
1: बिल्कुल, और ये भी माना जाता है कि सनस्पॉट साइकिल के जिम्मेदार यही चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। 11 साल के एक चक्र में सनस्पॉट ग्रुप का सबसे आगे वाले सनस्पॉट का उत्तरी ध्रुव चुंबकीय होता है, जबकि सबसे पीछे वाले सनस्पॉट का दक्षिणी ध्रुव चुंबकीय होता है। अगले 11 साल के चक्र में बिल्कुल उल्टा हो जाता है और इस तरह से इस पूरे चक्र की अवधि होती है 22 सालों की।
0: जब सूर्य में सनस्पॉट की संख्या अधिक होती है उस वक्त ये हिस्से काफी चमकीले और धधकते नजर आते हैं। ये चमकीले हिस्से गैसों के बादल होते हैं जो सनस्पॉट्स के ऊपर बनते हैं और चुंबकीय क्षेत्र का अनुसरण करते हैं।
1: और सूरज की सतह से 40,000 किलोमीटर ऊपर का हिस्सा कोरोना या सूरज का वायुमंडल कहलाता है, जो अपेक्षाकृत शांत क्षेत्र होता है। कभी कभी चुंबकीय क्षेत्रों में बने घेरों का अनुसरण करने वाले हाइड्रोजन गैस के घेरे भी बन जाते हैं। ये शांत क्षेत्र कुछ दिन से कुछ हफ्तों तक ही रहते हैं। कुछ ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जो सिर्फ कुछ घंटों तक ही टिकते हैं और उनसे काफी मात्रा में गैस निकलती है जो फोटोस्फेयर से करीब 3,00,000 किलोमीटर ऊपर तक चली जाती है।
0: सूरज के जो धधकते हिस्से हैं वो इसके शांत क्षेत्र से काफी ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। ये केवल कुछ मिनटों से कुछ घंटों तक ही जीवित रहते हैं और इन धधकते हिस्सों से काफी प्रायोनिक तत्व भी निकलते हैं। इन हिस्सों की खासियत ये होती है कि इनके द्वारा छोड़े गए तत्व इतनी ऊर्जा से निकलते हैं कि इन पर सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का भी असर नहीं पड़ता है। कभी कभी तो इन आयनों का विस्फोट जब पृथ्वी पर पहुंच जाता है तो रेडियो कम्युनिकेशन में बाधा भी डालता है।
1: और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बाहर यात्रा करने वाले इंसानों को इन शक्तिशाली आयन विस्फोटों के प्रभाव से बचने के लिए रक्षा कवच का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए।
0: सूर्य की सतह का विस्तार पूर्वक अध्ययन करने से ये पता चला कि इस पर एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह संरचना है जिसे ग्रैनुलेशन कहा जाता है। ग्रैनुलेशन चमकीले बिंदुओं से बना है और ये करीब 700 से 1000 किलोमीटर तक फैला है। हर ग्रैनुल के बीच से गर्म गैस निकलती है जो इसके अंदर से बाहर की सतह तक ऊर्जा का संचार करती है। एक ग्रैनुल करीब 8 मिनट तक जीवित रहता है। चांदनी, अब तुम हमें सूर्य के वायुमंडल के बारे में कुछ बताओ।
1: देखो, हम सूर्य के अंदर के हिस्से से जैसे जैसे बाहर की तरफ जाते हैं तापमान और घनत्व घटता जाता है और जैसे जैसे हम सूर्य के वायुमंडल की तरफ जाते हैं घनत्व के घटने का क्रम जारी रहता है। हालांकि फोटोस्फेयर के ऊपर तापमान बढ़ता जाता है। हालांकि इस तापमान वृद्धि का सही सही कारण तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन कुछ सिद्धांतों के आधार पर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सोनिक वेव्स या मैग्नेटिक वेव्स तापमान वृद्धि में सहायक होते हैं।
0: अब बात करते हैं क्रोमोस्फीयर की। देखो, सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा के किनारे पर एक पतली गुलाबी परत देखी जा सकती है। ये रंगीन परत क्रोमोस्फीयर है जो करीब 2000 से 3000 किलोमीटर मोटी है। क्रोमोस्फीयर का तापमान अंदर से बाहर की ओर बढ़ता है। चूंकि इसका घनत्व कम है इसलिए इस पर हाइड्रोजन की रेखाएं या हाइड्रोजन लाइंस देखी जा सकती हैं। चांदनी, क्रोमोस्फीयर के बारे में जानने के बाद हमें अब तुम ये बताओ कि ये कोरोना क्या होता है।
1: बताती हूँ भाई, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करो क्योंकि हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
3: विज्ञान प्रसार की स्थापना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 1989 में एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में बड़े पैमाने पर विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के कार्यों को पूरा करने के लिए की गई थी। विज्ञान प्रसार का प्रमुख उद्देश्य बड़े पैमाने पर जहां तक संभव हो समाज में वैज्ञानिक तथा तर्कसंगत दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना तथा प्रसारित करना है।
2: आरंभ से ही विज्ञान प्रसार लोकप्रिय विज्ञान पुस्तकों एवं मासिक न्यूज़लेटर का प्रकाशन करता रहा है। विज्ञान प्रसार ने लगभग 100 से अधिक शीर्षकों की पुस्तकें प्रकाशित की हैं। ये पुस्तकें अंग्रेजी, हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में हैं। पिछले वर्षों में प्रकाशित कुछ श्रृंखलाएं इस तरह से हैं: वैज्ञानिक जीवनी श्रृंखला, भारतीय विज्ञान की कालजयी कृतियों की पुनर्मुद्रण श्रृंखला, भारतीय वैज्ञानिक विरासत श्रृंखला, प्राकृतिक इतिहास श्रृंखला और स्वास्थ्य श्रृंखला। विज्ञान प्रसार द्विभाषी मासिक न्यूज़लेटर ड्रीम 2047 प्रकाशित करता है। ड्रीम 2047 में प्रकाशित बहुत से लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में भी पुनः प्रकाशित हुए हैं। ब्रेक के बाद आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे कोरोना की।
0: और तुम हमें कोरोना के बारे में बताने वाली थी।
2: बिल्कुल, सुनो, जब पूरा सूर्य ग्रहण होता है तो उस स्थिति में चंद्रमा फोटोस्फेयर को पूरी तरह से ढक लेता है। और इस गहरे चंद्रमा के चारों ओर सफेद मोती सा नजर आता है कोरोना, और इसका तापमान करीब 10 से 20 लाख के, या यूं कहें कि बहुत ज्यादा होता है।
0: कोरोना अत्यधिक तापमान वाला क्षेत्र है, क्योंकि अणुओं से काफी इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद यहाँ काफी आयन बचे हुए होते हैं।
2: लेकिन दलजीत, यहाँ एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है। अणुओं से इलेक्ट्रॉन बाहर कैसे निकल जाते हैं?
0: भाई, वही तो बताने जा रहा हूँ। काफी ज्यादा तापमान होने की वजह से इनके अणु आपस में टकराकर इतनी ऊर्जा पैदा करते हैं कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, और ये प्रक्रिया आयनाइजेशन कहलाती है। कभी कभी तो शक्तिशाली सौर गतिविधियों की वजह से तापमान 36 लाख केल्विन तक पहुंच जाता है।
2: दलजीत, यहाँ मैं ये बताना चाहती हूँ कि कोरोना का ज्यादातर हिस्सा सूर्य के चुंबकीय शक्ति के प्रभाव से सूर्य के नजदीक ही होता है। एक्सरे से देखने पर ये हिस्से चमकीले नजर आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हिस्से भी हैं जो चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में नहीं है, और चुंबकीय क्षेत्र से दूर होने की वजह से ये गहरे नजर आते हैं, और इन्हें कोरोनल छिद्र कहते हैं। दलजीत, क्या तुम बता सकते हो कि सोलर विंड क्या है?
0: देखो चांदनी, तेज गति के आयन सूर्य के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से बाहर निकल आते हैं, और इनकी गति इतनी ज्यादा होती है कि ये एक सेकंड में कई सौ किलोमीटर की दूरी तय कर लेती हैं।
2: अच्छा।
0: और तेज गति से घूमते हुए ये धनात्मक और ऋणात्मक आयन सौर मंडल के अंतिम छोर तक पहुंच जाते हैं, और इन्हें सोलर विंड कहते हैं।
2: बिल्कुल ठीक। और इसी सोलर विंड के कण जब किसी ग्रह के नजदीक से गुजरते हैं तो ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से ग्रह के चारों तरफ बिखर जाते हैं। कुछ कण ग्रह के चुंबकीय ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। जब ये आवेशित कण ग्रह के वायुमंडल में पहुंच जाते हैं तो यहाँ वायुमंडल में मौजूद गैस इमिशन स्पेक्ट्रा बनाती है, जो उत्तर में ऑरोरा बोरेलिस और दक्षिण में ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहलाती है।
0: और इसी तरह पृथ्वी पर लाल ऑरोरा वायुमंडल के ऊपरी सतह पर हाइड्रोजन के उत्सर्जन से बनती है, जबकि इससे थोड़ा नीचे बनती है हरी या ग्रीन ऑरोरा, और ये बनती है ऑक्सीजन के उत्सर्जन से। जब सूर्य की गतिविधियां काफी तेज होती हैं, उस वक्त इन सोलर विंड के कणों की संख्या और ऊर्जा दोनों बढ़ जाती हैं, और इस वक्त पृथ्वी के वायुमंडल में दिखने वाले ऑरोरा भी काफी बढ़ जाते हैं। चांदनी, ये बताओ कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है?
2: दलजीत, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा तुमने। सूरज लाखों करोड़ों वर्षों से हर पल प्रकाश उत्पन्न कर रहा है। ये एक दिलचस्प विषय भी है। काफी अध्ययन के बाद खगोल शास्त्रियों को अब ये पता चल गया है कि सूरज अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन करता है। इतने लंबे समय से इतनी ऊर्जा का उत्पादन करना अपने आप में एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। दलजीत, क्या तुम्हें पता है कि सूरज से कितनी ऊर्जा निकलती है?
0: चांदनी, वैज्ञानिकों को गणना के आधार पर ये पता चला कि सूरज से लगभग 4×10^26 वाट ऊर्जा निकलती है। ये ऊर्जा पृथ्वी पर स्थित सबसे बड़े पावर प्लांट से भी 8×10^16 गुना ज्यादा है। जानती हो हमारा सबसे बड़ा पावर प्लांट करीब 5,000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन करता है।
1: हाँ, और इसे यूं भी कहा जा सकता है कि हमारे 2.5×10^9 बड़े पावर प्लांट एक साल में जितनी ऊर्जा का उत्पादन करते हैं उतनी ऊर्जा सूरज से एक सेकंड में निकलती है। अब सवाल ये आता है कि इतनी ऊर्जा का संभावित स्रोत क्या है?
0: और इसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की। दो हाइड्रोजन के अणु एक ऑक्सीजन के अणु से मिलकर रासायनिक अभिक्रिया द्वारा पानी बनाते हैं और इस प्रक्रिया में कुछ ऊर्जा निकलती है। अब अगर हम ये मान लें कि सूरज अपने अंदर के समूचे हाइड्रोजन का इस्तेमाल इस अभिक्रिया में कर ले तो इससे निकली ऊर्जा सूर्य को केवल 18,000 साल तक चमकाने के लिए काफी है। वैसे तो ऑक्सीजन की मात्रा हाइड्रोजन से काफी कम है, इसलिए ये अभिक्रिया सूरज को सिर्फ 30 साल तक ही ऊर्जा प्रदान कर सकती है।
1: दलजीत, इसका मतलब ये हुआ कि कोई और ज्यादा प्रभावशाली अभिक्रिया होनी चाहिए, बल्कि ऐसी अभिक्रिया हो जो ऊर्जा उत्पादित करने में 100% सक्षम हो, और ऐसी अभिक्रिया सूरज को 10^13 वर्षों तक ऊर्जा प्रदान कर सकती है।
0: और इसी संबंध में अध्ययन होते गए और लोगों की नजर में ग्रेविटेशनल सेटलिंग का सिद्धांत आया।
1: और क्या है वो ग्रेविटेशनल सेटलिंग का सिद्धांत?
0: देखो, इसे मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। जब हम किसी चट्टान को जमीन के ऊपर हवा में पकड़ते हैं तो इसकी ऊर्जा स्टोर्ड एनर्जी के रूप में होती है।
1: बिल्कुल।
0: और जब हम इस चट्टान को जमीन पर छोड़ते हैं तो इस ऊर्जा का निकास होता है। ये ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी कहलाती है और ये चीजों को गर्म कर सकती है। ऐसा ही हुआ होगा सूरज की परतों के साथ। अगर सूरज की ये परतें केंद्र की तरफ दबें तो इससे गैसीय दबाव पैदा होगा और तापमान भी बढ़ेगा और गैसों से रोशनी भी निकलेगी।
1: बिल्कुल ठीक। इस शतक की शुरुआत तक तो वैज्ञानिक इसी धारणा के पक्ष में तर्क देते रहे, लेकिन बाद में ये पाया गया कि ये गुरुत्वाकर्षण की ऊर्जा या ग्रेविटेशनल एनर्जी सूर्य को सिर्फ 30 मिलियन साल तक शक्ति प्रदान कर सकती है। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने रेडियो सक्रिय तत्वों की सहायता से सौर मंडल की पूरी उम्र का अंदाज लगाया और ये पाया कि सौर मंडल यानी कि सूर्य भी तकरीबन 4.6 करोड़ वर्ष पुराना है। तो फिर वैज्ञानिक ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर वो कौन सा स्रोत है जो सूर्य को इतने वर्षों से ऊर्जा दे रहा है।
0: और काफी अध्ययन के बाद पता चला कि ये स्रोत है न्यूक्लियर पावर या नाभिकीय शक्ति द्वारा उत्पन्न ऊर्जा। न्यूक्लियर पावर ही एकमात्र ऐसा कारण है जो सूर्य के प्रकाश को इतने लंबे समय से बनाए हुए है।
1: हाँ, और इसी के अंतर्गत आते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन। इन दोनों ही प्रक्रियाओं से एक अणु का केंद्र दूसरे अणु के केंद्र या न्यूक्लियस में परिवर्तित हो सकता है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे काफी बड़े यूरेनियम के केंद्र हीलियम और लेड के छोटे न्यूक्लियाई या केंद्र में टूटते हैं फिजन की प्रक्रिया में, और इस प्रक्रिया में काफी ज्यादा ऊर्जा भी निकलती है।
0: बिल्कुल। और इसी तरह फ्यूजन की प्रक्रिया में दो छोटे न्यूक्लियाई जुड़कर बड़े न्यूक्लियाई बनाते हैं और इस तरह फ्यूजन की प्रक्रिया में भी ऊर्जा निकलती है।
1: बिल्कुल।
0: एटॉमिक पावर प्लांट्स और एटम बॉम्ब ऊर्जा के लिए फ्यूजन प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं, जबकि तारे और हाइड्रोजन बॉम्ब फ्यूजन से ऊर्जा अर्जित करते हैं। क्यों जाने?
1: बिल्कुल। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हमने सूरज के बारे में विस्तार से जाना, जिसे हम देखते तो हर रोज हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ये अपने अंदर इतनी जानकारी छिपाए हुए है।
0: बिल्कुल। और ये संभव हो पाया विज्ञान प्रसार के माध्यम से। तो यूं ही सुनते रहिए विज्ञान प्रसार के कार्यक्रम और अपनी सोच को दीजिए एक नई दिशा।
1: जी हाँ दोस्तों, और हमें लिख भेजिए कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016।
0: पता एक बार फिर, विज्ञान प्रसार C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, न्यू दिल्ली 110016।
1: तो आपके लिए तमाम खुशियों की कामना करते हुए मैं चांदनी
0: और मैं दलजीत
1: आपसे लेते हैं इजाजत।
0: नमस्कार।
1: श्रोताओ, ये कार्यक्रम आप तक किन लोगों के माध्यम से पहुंचाया गया ये हम आपको बताना चाहेंगे। कार्यक्रम के श्रृंखला निर्देशक हैं डॉक्टर टीवी वेंकटेश्वरन, शोध मृदुला बालाकृष्णन, सलाहकार डॉक्टर बीवी कामले, विमान वसु, डॉक्टर जीके मदे, वाचन स्वर चांदनी वर्मा और दलजीत सचदेवा का, रिकॉर्डिंग संपादन और मिश्रण सदन लाल मेहता और प्रस्तुति सहयोग प्रिया नटराजन और मृदुला बालाकृष्णन।
3: विज्ञान वाणी के विज्ञान वार्ता प्रसारण में आपका स्वागत है। उपग्रह संचार क्या है? उपग्रहों के बिना विश्वव्यापी संचार प्रणाली की बात सोची भी नहीं जा सकती है। जाने माने विज्ञान कथाकार आर्थर सी क्लार्क ने 1945 में अपनी पुस्तक वायरलेस वर्ल्ड में विश्वव्यापी संचार प्रणाली के बारे में कल्पना की थी। यह प्रणाली ऐसे मानव युक्त अंतरिक्ष केंद्रों पर आधारित थी जो धरती के अपने अक्ष पर घूमने की रफ्तार से ही अंतरिक्ष में पृथ्वी का चक्कर काटते थे। भूस्थिर उपग्रहों की कल्पना भी उनके मन में तभी पैदा हो चुकी थी। भूस्थिर उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले वे उपग्रह हैं जो भूमध्य रेखा के ऊपर आकाश में एक खास ऊंचाई पर घूमते हैं। इन्हें अपनी कक्षा में एक चक्कर लगाने में उतना ही समय लगता है जितना पृथ्वी को अपने अक्ष में एक बार घूमने में लगता है। ये उपग्रह भी पृथ्वी के घूमने की दिशा में चक्कर लगाते हैं, इसलिए धरती के सापेक्ष एक ही स्थान पर रहते हैं और जमीन से देखने वाले किसी व्यक्ति को स्थिर नजर आते हैं। अगर भूतलीय माइक्रोवेव संचार प्रणाली से तुलना की जाए तो ऐसे उपग्रहों की वही भूमिका होती है जो रिपीटर स्टेशनों की होती है। भूतलीय रिपीटर स्टेशन सिग्नल प्राप्त कर उनकी प्रबलता बढ़ाते हैं और फिर इसे और बड़े क्षेत्र में प्रसारित कर देते हैं। लेकिन उपग्रहों को रिपीटर स्टेशनों की तरह इस्तेमाल करने का फायदा यह होता है कि इनका प्रसारण का दायरा, जिसे फुटप्रिंट कहा जाता है, काफी बड़ा होता है। धरती की आधी सतह से कुछ ही कम क्षेत्र में एक भू स्थित उपग्रह के दायरे में आ जाता है। इसलिए अगर पृथ्वी के ऊपर अंतरिक्ष में 88,000 किलोमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों में तीन उपग्रह स्थापित कर दिए जाएं तो ध्रुवीय क्षेत्र को छोड़कर बाकी सारी पृथ्वी इनके दायरे में आ जाती है। इस तरह दूर दराज के इलाकों को भी इस संचार प्रणाली के अंतर्गत लिया जा सकता है और उनसे सीधा संपर्क कायम किया जा सकता है। उपग्रह संचार प्रणाली के लिए प्रसारण भू केंद्र तथा अभिग्रहण भू केंद्र और इनके बीच संपर्क के लिए उपग्रह की आवश्यकता पड़ती है। दो भू केंद्रों के बीच रेडियो आवर्ती संपर्क को उपग्रह संपर्क कहा जाता है। उपग्रह संपर्क में उपग्रह को सिग्नल भेजने के लिए अपलिंक प्रणाली और उपग्रह से आए सिग्नलों को ग्रहण करने के लिए डाउनलिंक प्रणाली लगी रहती है।

सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: टीवी के साथ बदलते भारत की शान।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। जी हाँ, हम हिंदुस्तानी दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न चले जाएं, पर ये दिल हमारा हमेशा हिंदुस्तानी ही रहता है।

नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। हमारे देश में आज भी पशुपालन को पढ़े लिखों का काम नहीं माना जाता है, लेकिन दुष्यंत भाटी इस माइंडसेट को तोड़ रहे हैं। कौन है दुष्यंत भाटी और क्या है उनकी स्टार्टअप जर्नी, ये जानने के लिए आज हम आए हैं नोएडा के सेक्टर 61 में। तो चलिए मेरे साथ।

0: Hello and welcome to our show, Krishi Startup Strategy. तो दुष्यंत भाटी जी अब मेरे साथ हैं यहाँ पर और मैं चाहूंगी दुष्यंत जी आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को खुद दें।
1: देखिए मैं मेरा नाम दुष्यंत भाटी है। मैंने अपना जो एजुकेशन करी है वो लंदन से करी है MBA और वहां से आकर के हम लोगों ने 2018 में अपनी डेयरी फार्मिंग शुरू करी थी और उसके साथ ही जो उसके साथ के और जो ब्रांचेज हैं उनको भी स्टार्ट किया है।
0: स्टार्टअप में आपने डेयरी फार्मिंग को चुना है, क्या रीजन रहा इसके पीछे?
1: वर्ल्ड में जैसे हम 2 साल लंदन में रहे तो हमने देखा कि वहां पर बड़े फार्म्स का सारा ही जितना भी मिल्क इंडस्ट्री वहां पे है वो बड़े फार्म्स के ऊपर है। तो एक ये था कि भी फार्म्स की एक शुरुआत करी जाए और उस हिसाब से जो बेस्ट प्रोडक्ट हम लोग मार्केट में ला सकते हैं विद इन आवर्स, उसकी एक सोच थी और उसकी वजह से हम लोगों ने डेयरी फार्मिंग को चुना और कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स हमको लेके जाने थे मार्केट के अंदर, ताकि जो आज मिलावटी प्रोडक्ट्स हैं उसको थोड़ा सा एड्रेस करना था कि भाई अच्छा काम भी हो सकता है। तो उसी हिसाब से हम लोगों ने सोचा कि भाई डेयरी फार्मिंग और फिर इंडियन रूट से जुड़ने का भी एक मन था, तो इसलिए इसको आके चुना कि भाई डेयरी फार्मिंग ही करनी है और इसी को आगे बढ़ाना है।
0: तो कभी मन में नहीं आया ऐसा कि नहीं व्हाइट कॉलर जॉब ही करना है, भाई 2 साल लंदन वाला लड़का हो जाता है तो मन में यही रहता है ना कि अगर वापस भी आना है तो कुछ ऐसा करेंगे कि ऑफिसर टाइप्स?
1: देखिए वो भी तरीके थे बट जब करके आए वहां से मालूम चला तो ये रहा कि भाई किसी भी तरीके से किसानों की मदद करनी है और अपने को भी बढ़ाना है थ्रू एग्रीकल्चर, बिकॉज इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है और उसी के तहत सारी चीजें गवर्न होती हैं और जो इंडस्ट्रीज भी होंगी या प्रोसेस इंडस्ट्रीज भी चलेंगी तो जब तक मेन रॉ मटेरियल ही नहीं होगा हमारे पास तो हम प्रोसेस किस चीज को करेंगे। इसलिए यह था कि भाई डेयरी फार्मिंग ही करेंगे और बाहर से एक एक्सपीरियंस था कि भाई टेक्नोलॉजी को कैसे जोड़ा जाए उसके साथ। तो जो हमारे यहाँ अभी स्कैरसिटी थी कि भाई साइंटिफिकली डेयरी फार्मिंग नहीं हो रही है तो उसी को लेकर के हम लोगों ने कोशिश करी कि भाई हम डेयरी फार्मिंग करेंगे विद अ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड डेयरी फार्म।
0: सच बताइएगा कि जब आप लंदन गए थे तो मन में यही था कि मैं जब लंदन से वापस आऊंगा

0: तो डेयरी का स्टार्टअप भी खोलूंगा।
1: नहीं, एक्चुअली मैं मन ये नहीं था, फादर ने तो ऑप्शन दिया था कि वे लंदन में ही सेटल होने के लिए, बट मेरा थोड़ा इंडियन फूड से लगाव ज्यादा है, तो फूड की बड़ी वहां प्रॉब्लम है, तो मुझे ये था कि वे इंडिया ही वापस चलना है, और मैं थोड़ा सा फैमिली बेस्ड भी ज्यादा रखता हूँ मन अपना, तो मैं बिना फैमिली के भी वहां पे मुझे सेटलमेंट में टाइम लगा था, तो फिर ये था कि भाई कम से यहाँ आकर के कुछ करेंगे तो इंडिया में ही करेंगे।
0: तो बिल्कुल यही होता है एक हिंदुस्तानी मन के, कहीं भी चले जाएं, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, लेकिन जो यहाँ का जो फूड है, जो यहाँ की रूट्स है, उनसे हम जुड़े रहते हैं। तो आपने बताया पापा ने कहा था लंदन में सेट हो जाइए,
1: जी
0: तो जब आपने ये डेयरी वाला प्रपोजल उनके सामने रखा तो क्या रिएक्शन थी उनकी, क्या कैसा लगा उनको?
1: उनको ये था, मतलब ही वॉज बिट डाइसी के भाई एजुकेशन डेयरी फार्मिंग से नहीं है, बैकग्राउंड डेयरी फार्मिंग से नहीं है, बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं है फैमिली में, तो कैसे उसको परफॉर्म कर पाओगे, कैसे आप एफिशिएंटली डेयरी फार्म की परफॉर्मेंस, बिजनेस की जितनी भी इकोनॉमिक्स है उसको प्रॉपरली प्रॉफिट्स में लाना, तो वो मैंने कहा कि भाई अब जब करना है तो फिर करना ही है, तो तब उसको प्लान किया और आज काफी अच्छी सिचुएशन में है।
0: रिलेटिव स्पेशली जो होते हैं वो कहते हैं, अरे भाई लंदन से तो लड़का पढ़ के आ गया लेकिन देखो कर डेरी रहा है। तो ऐसी रिएक्शंस मिली आपको लोगों से?
1: बहुत मतलब नेगेटिव थॉट्स मिले लोगों के कि भाई लंदन जाना था तो यही सब क्यों करना था, भाई यही कर लेते, इसके लिए तो कोई एजुकेशन चाहिए नहीं, बट मुझे ये था कि भाई कम से कम बाहर की टेक्नोलॉजी को जोड़ना और उसको प्रोफेशनली कैसे कर सकते हैं, और इट इज वी कैन रन लाइक अ इंडस्ट्री ऑल्सो, तो बहुत लोगों ने डिप्राइव किया, बहुत लोगों ने डिमोटिवेट किया कि क्या कर लिया, एजुकेशन नहीं है, वेटनेरियन आप नहीं हो, साइंटिस्ट आप नहीं हो, बाकी कोई भी आपके पास प्रॉपर डिग्रीज की नहीं है, तो मेरे पास एमबीए इन मार्केटिंग है, तो तब भी मैंने कहा कि भाई जब मुझे करना है तो करना है, तो इसीलिए मैंने उसको ध्यान रखते हुए कि काम को आगे बढ़ाया।
0: डेयरी हम मानते हैं कि कोई भी जो कम पढ़ा लिखा आदमी है या पढ़ा लिखा नहीं भी है वो भी चला सकता है, और आप फिर जब लंदन से एमबीए करके आए तो कहीं ना कहीं वो एक माइंडसेट रहा होगा कि अरे भाई जब इतनी बड़ी डिग्री हासिल करने के बाद आपको डेयरी ही चलानी है तो कोई नहीं पूछता उसमें कि आपके पास डिग्री है या नहीं है।
1: डिग्री की बात आती है कि भाई जो हमारे पुराने किसान जितने भी आजकल इंडिया में पुराने समय से करते हुए आ रहे हैं, तो उनकी आप अगर परफॉर्मेंस देखोगे, पर एनिमल मिल्क एवरेज देखोगे, तो जब वर्ल्ड वर्ल्ड से उसे कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं डिफरेंस मिलेगा, तो उसमें क्या है कि आपके पास डेयरी फार्म को लेकर के नंबर ऑफ सेक्शंस हैं जिनको आपको साथ में लेके चलना है, वो उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना आप सोचते हो कि भाई हमने गाय को एक चारा डाल दिया और हमारा काम हो गया।
0: तो बिल्कुल ये सवाल इसीलिए था क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी है कि एग्रीकल्चर को भी पढ़ाई की जरूरत होती है, उसमें भी जो टेक्निक है उसको जानने की जरूरत होती है। तो आप जो पढ़े लिखे होते हैं तो आपको पता होता है क्या चीज कैसे करनी है, और जैसा कि दुष्यंत जी ने बताया कि जब हम वर्ल्ड के स्टैटिस्टिक्स देखते हैं दूध को लेके तो हमें समझ में आता है कि क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए देश में। तो ये आपने बेहद अच्छा काम किया है कि आपने इस जो डेयरी फार्मिंग है उसको छोटा नहीं समझा, लंदन से डिग्री लेने के बावजूद आपने इस स्टार्टअप को चुना है, बेहद अच्छा आपने काम किया है। तो जब आपने ये शुरू कर दिया तो इनिशियल लेवल पे चैलेंजेस क्या थे?
1: हम लोगों ने इसको एज ए इंडस्ट्री पहले दिन से अडॉप्ट करने की कोशिश करी थी, तो इंडस्ट्री में और डेयरी फार्मिंग में क्या है कि वहां पे आप मशीन से डील कर रहे हो, वो लिविंग बींग नहीं है, और ये आपके पास अगर 100 काउज हैं तो वो सारे लिविंग बींग्स हैं, तो जिस तरीके की प्रॉब्लम्स ह्यूमन वर्किंग में आती हैं वो आपको फेस करनी पड़ती है डेयरी फार्म के अंदर, क्योंकि हर काउ का बिहेवियर अलग है, उसका वेदर को फील करने का तरीका अलग है, ईटिंग हैबिट अलग है, तो पहले तो उसको जज करना और एग्जामिन करना वो बड़ी चीज थी, और जब आप मशीन में, आपको पता है कि भाई आपने मशीन का ऑन किया बटन, वो आपको परफॉर्मेंस उसी तरीके से देगी, बट इनका हर मंथ हर डे डिफरेंट है, तो डिफरेंटली आपको प्रोडक्शन देगी, तो उस हिसाब को आपको उसके हिसाब से मैनेज करना है, क्योंकि मशीन में क्या है, आपने एक कोडिंग कर दी या एक तरीके से डिजाइंड है वो आपको वैसे ही परफॉर्मेंस देगी, इसमें क्या है कि आपको काउस के साथ एडजस्ट होना है, उनके हैबिट्स को देख के आपको अपने डेयरी फार्म को चलाना है जिसको आप एक इंडस्ट्री का रूप देना चाह रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी थी, और धीरे धीरे उसको एड्रेस किया, सीखा, समझा, मुझे 3 साल लगे पूरे उसको एड्रेस करने में, बट आज की डेट में हम वेल सेटिस्फाइड हैं, वेल इक्विप्ड हैं, और बहुत ही अच्छी हेल्थ है हमारी काउस की।
0: तो दुष्यंत जी आपकी बातों से लग रहा है कि काफी अच्छी रिसर्च अब आपने इस पे कर ली है, आपने बताया कि काऊ का बिहेवियर भी अब आप समझने लगे हैं, और व्यूअर्स सारी कहानी हमने जान ली है कि व्हाट मेक्स हिम चूज डेयरी फार्मिंग। अब हम यहां से सीधे चलेंगे इनकी हाईटेक डेयरी पर और जानेंगे क्या टेक्नोलॉजी ये यूज कर रहे हैं। जब तक हम वहां पहुंचे आप ले लीजिए एक छोटा सा ब्रेक।

0: तो ये है आपकी हाईटेक डेयरी। तो दुष्यंत जी, मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपने किसी भी गाय को बांध के नहीं रखा है।
1: ये एक लूज हाउसिंग कॉन्सेप्ट होता है जिसमें गाय के ऊपर हम लोग किसी भी तरीके का बांध के इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि उसको हम लोग चाहते हैं कि बेटर क्वालिटी उसको मिले खाने के भी, और एन नंबर ऑफ टाइम में उठ के वो खा सकती है और प्रोडक्टिविटी का फर्क पड़ता है क्योंकि अगर बांध के रखेंगे तो वो हमारे मन से खाएगी, हमारे मन से पिएगी। और इसमें क्या है कि उसके पास अपना टाइम है कि भाई कभी भी खाना है, कभी उठना है। हमारे यहाँ दो टाइम मिलके फीडिंग होती है, तो दो टाइम में सुबह और शाम, तो सुबह के टाइम में भी वो पूरे दिन खा सकती है और शाम को भी पूरे दिन खा सकती है। और अगर हम लोग उसको बांध के रखेंगे तो पानी हमें पिलाना पड़ेगा, जिस टाइम पे हम खाना डालेंगे उसी टाइम पे वो खाना खाएगी, तो उससे क्या होता है कि प्रोडक्शन भी डाउन जाती है और उतना बेटरमेंट भी फील नहीं होता उसको। तो आप अगर समझिए कि प्रोडक्टिविटी हमें किसी आदमी से भी चाहिए तो उसको जितनी व्यवस्था देंगे उतना ही अच्छा वो परफॉर्म करके देगा, तो उसी हिसाब से इनके ऊपर भी है।
0: जी, ये लूज हाउसिंग कॉन्सेप्ट क्या इंडिया में है या ये आपने कहीं और से अडॉप्ट किया है?
1: जी, मतलब ये है तो इंडिया में भी और खासकर इन ब्रीड्स में ज्यादा इसको अडॉप्शन लिया गया है। इंडिया के अंदर भी काफी स्टेट्स में ये अडॉप्टेड है और वेस्टर्न कल्चर तो इसका है ही मेन।
0: और अगर हम ब्रीड्स की बात करें तो कौन कौन सी ब्रीड्स यहाँ पर हैं?
1: यहाँ पे होलस्टीन है और जर्सीज हैं और कुछ मिक्स ब्रीड्स हैं जिसमें इंडियन और वेस्टर्न ब्लड दोनों।
0: तो इन तीनों ही अगर मैं बात करूं जो आपने ब्रीड्स बताई हैं, इनके मिल्क में क्या कुछ डिफरेंस होता है, किसका ज्यादा आपके हिसाब से बेटर होता है?
1: मैं तो इस चीज को नहीं मानता हूं कि भाई कोई भी डिफरेंस है, बिकॉज सारी चीजें इनके ईटिंग हैबिट्स में है कि आप उनको कितनी साइंटिफिक और बैलेंस डाइट दे रहे हो। अगर बैलेंस डाइट हम दे रहे हैं तो उसमें दूध का कोई भी फर्क नहीं आएगा। जो भी मैंने आसपास के फार्म के डेयरी फार्म हैं उनसे भी मैंने दूध को प्रिक्योर करके अपने टेस्टिंग कराई है, हमारे अपने दूध की भी टेस्टिंग करी है, और जो A1 A2 कॉन्सेप्ट है उसमें भी हमने देखा है कि हर काउ के अंदर अवेलेबल है। और जो हम सीमन लगाते हैं इन काउस के अंदर तो हम वही लेते हैं जिसमें A2 हो, तो इसलिए वो भी कॉन्सेप्ट इतना लागू नहीं होता है। बट लेकिन एक मार्केटिंग आजकल के ट्रेंड चल रहा है जिसको A1 A2 का बड़ा लोग मानते हैं, बट मैं इस चीज को नहीं मानता हूं कि भाई कोई भी डिफरेंस है, और अगर है भी तो हम उसको भी एड्रेस करते हैं। A2 काउस भी हमारे पास है जिसका सीमन हम A2 ही लगाते हैं
0: जी।
1: तो वो चीज भी है, और टोटली ऑटोमेटिक हमारा डेयरी फार्म है, तो इंडियन ब्रीड्स थोड़ा सा जो अपनी ऑटोमेटिक मशीन्स हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करती हैं, ये इजीली उसमें अडैप्टेबल है, इसलिए हम लोगों ने इन्हीं ब्रीड्स को कॉमर्शियली अपने डेयरी फार्म में रखा है।
0: आपने बात की कि आप जैसा फोडर चारा इनको खिलाते हैं उसी तरह का आपको जो मिल्क प्रोडक्शन है इनसे मिल जाता है, तो फोडर पे आप इनको क्या दे रहे हैं और क्या देना चाहिए? जो किसान आपको आज सुन रहे हैं उनको आप क्या कहेंगे?
1: देखिए, बैलेंस डाइट होना बहुत जरूरी है अगर आपको कमर्शियल डेयरी फार्मिंग में करना है और उसको प्रॉफिटेबिलिटी मिलाना है, बिकॉज हर गाय का एक अलग कॉन्सेप्ट है, अलग ही उसका बॉडी वेट है, अलग ही उसकी मैकेनिज्म है, तो उस हिसाब से एक बैलेंस डाइट बनती है जिसमें कि कॉन्सेंट्रेट कितना है, ग्रीन फॉडर कितना है, साइलेज कितना है, विटामिंस मिनरल्स कितने हैं और अपना हे कितना है। जिस तरीके से हम लोग इनको जो भी चारा हम डालते हैं उसमें मिक्स राशन और बैलेंस डाइट, जो टोटल मिक्स राशन मशीन है हमारे पास, उसी से हम ऑटोमेटिकली इसको डालते हैं। तो उसमें क्या होता है कि पर ग्रुप वाइज जितने भी हमारे पास बॉडी वेट्स हैं, जितना भी मिल्क यील्ड है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद हम देखते हैं किस गाय को कितनी रिक्वायरमेंट है, तो उसी हिसाब से कॉन्सेंट्रेट, ग्रीन फॉडर, साइलेज और हे, जिसको हम तूड़ी बोलते हैं, और जो कॉन्सेंट्रेट को हम लोग अपनी खलचूरी चोकर बोलते हैं, तो उसकी एक हम लोग फीड लेते हैं किसी एक कंपनी की, तो वही हम बिल्कुल उसको संतुलित करके इनको डालते हैं ताकि अच्छा दूध मिल सके, नंबर ऑफ जो बीमारियां हैं वो कम हो, दूध की क्वालिटी बहुत अच्छी हो। और कहीं पे भी हम लोग ये देखते हैं कि भाई टाइम एंड टेम्परेचर मिल्क में बहुत मैटर करता है, उसको हम लोग मेंटेन करते हैं कि जितनी देर में मिल्किंग हो उतने ही देर में वो अपने चिलिंग सेंटर में पहुंच जाए। तो इसीलिए फॉडर का बहुत बड़ा रोल है डेयरी फार्मिंग में, कॉमर्शियली वायबल भी करने के लिए और इनकी हेल्थ को कंट्रोल करने के लिए।
0: तो जिस तरह से ह्यूमन बींग को एक बैलेंस डाइट की जरूरत होती है, हमारे इन कैटल्स को भी एक बैलेंस डाइट की जरूरत होती है। आपने जान लिया इनको क्या कुछ जरूरी है। अगर बात करूं दुष्यंत जी ट्रेनिंग की, तो आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली है डेयरी?
1: देखिये, ट्रेनिंग एसस तो मैंने एक्सपीरियंस लेके ही ली है, कोई कोर्स वगैरह इसका नहीं किया है, बट लेकिन मैं नंबर ऑफ डॉक्टर्स के साथ कनेक्टेड हूँ, नंबर ऑफ साइंटिस्ट के साथ कनेक्टेड हूँ, और नंबर ऑफ जितने भी किसान हैं, चाहे यूपी के हों, पंजाब के हों, हरियाणा के हों, उन सबसे मेरा टेलीफोनिकली भी बातचीत होती रहती है, मिलते जुलते भी रहते हैं, वर्कशॉप्स भी होती रहती है, हमारी कुछ समस्याएं होती हैं तो हम उन्हें बताते रहते हैं, तो ऐसे ही करके हम लोग सीखे हैं। NDRI में भी कई डॉक्टर्स हैं जिनके मेरे साथ कनेक्शंस हैं, उन्होंने काफी चीजें सिखाया है। बहुत सारे किसान हैं जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है कि गाय को कैसे पालते हैं, कैसे खाना खाती है गाय, किस तरीके की उसकी हैबिट्स हैं, तो वो सारी चीजें ये 4 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है उसी से सीखने को मिला है।
0: और वैसे भी कहते हैं कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है वही आपको सक्षम बनाती है।
1: जी, उसको भी मैं मानूंगा कि भाई वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए। तो उसी हिसाब से हमें सारा ही डेटा, सारी ही चीजें वहीं से मिली हैं। जैसे एफी मिल्क से हम कनेक्टेड हैं इसराइल से, तो वहां के कुछ फार्म मैनेजर्स वगैरह हैं, उनकी विजिट्स हमारे यहाँ हुई हैं, उनसे हमने कंसल्ट किया है, बिकॉज वेदर बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है, समर्स में कैसे मेंटेन करना है, विंटर्स में कैसे मेंटेन करना है। तो इस तरीके से उनसे भी डेटा मिला है, नंबर ऑफ एंड यूजर्स से डेटा मिला है, कुछ डेयरी फार्मर्स जुड़े हुए हैं, तो सबकी समस्याएं सुन के अपनी समस्या बता करके इस तरीके से इसमें सुधार आता जा रहा है दिन पर दिन।
0: इसीलिए शायद आपने जो शावर्स हैं इनको लगाया हुआ है।
1: जी, ये समर्स की रिक्वायरमेंट है, तो जब ह्यूमिडिटी ज्यादा बढ़ती है तो शावर्स, फैंस, इसको कूलिंग सिस्टम बोलते हैं, तो ये इसराइल में बहुत इसका यूज किया जाता है, अपने पंजाब में बहुत यूज किया जाता है, तो वहीं से, ताकि गायों को क्या है कि इनके स्वेट ग्लैंड्स कम होते हैं या होते ही नहीं है, तो उसको पूरा करने के लिए, तो इनको हीट कंट्रोल करने के लिए हम लोग फैंस और फॉगर्स का यूज करते हैं, और इनको हर 3 घंटों में शावर भी देते हैं ताकि ये पूरी तरीके से कूल डाउन रहें और अपनी चारे को पूरा खत्म करें शाम तक।
0: हाँ, दुष्यंत जी, आपने MBA किया है, आपका स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग में है, तो उस डिग्री को आप इस अपने स्टार्टअप में कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं?
1: देखिए, उस चीज को हम ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम लोगों ने इसको एज अ इंडस्ट्री पहले दिन से लेके चले हैं। नंबर ऑफ डिपार्टमेंट जो एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए होते हैं वो हमने अपने यहाँ बना रखे हैं। उसके साथ साथ हमने जितने भी प्रोडक्ट्स दूध से बन सकते हैं वो सारे बनाए हैं और उसको सबको मार्केटाइज कर रहे हैं हम। तो आज हमारी नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अंदर 400 डिलीवरीज हैं जो हम ऑनलाइन डायरेक्ट फार्म टू होम कर रहे हैं, और ये लास्ट 4 ईयर से हम लोग इस काम को कर रहे हैं। तो एंड यूजर तक हमने प्रोडक्ट को पहुंचाया है ताकि कोई भी बीच में मिडिलमैन ना हो, और जो हम कर रहे हैं वो सीधा कस्टमर तक पहुंचे, तो उस चीज को हमने वहां एप्लीकेबल किया है।
0: बिल्कुल, जो लंदन से डिग्री लेके आए हैं वो भी वेस्ट नहीं हो रही है, पूरी तरह से यूटिलाइज हो रही है इस डेयरी फार्म में।
1: जी बिल्कुल, तो उसी तरीके से आप देख सकती है कि इसका जो इंफ्रा बनाया हम लोगों ने, इनकी हैबिट्स हैं, ये टोटली ऑटोमेटिक कंट्रोल्ड हैं, इनके गले में नॉब पड़ी हुई है जिससे हमें इनका डेटा मिलता है कंप्यूटर के ऊपर कि इन्होंने मैस्टिकेशन, जिसको जुगाली बोलते हैं, वो कितनी करी है। तो इस गांव में आप देख भी सकते हैं ये गले में डला हुआ है। इस तरीके से हमें सारा कंप्यूटर पे डेटा भी मिलता है इनका कि ये कैसे परफॉर्म कर रही है, कितने घंटे इन्होंने खाया है, किस तरीके से इन्होंने परफॉर्म करा है, तो इनका हीट पे आने का सिस्टम कब है, तो वो भी इंडिकेशन हमें पहले मिलती है 12 घंटे। तो उससे हम पहले से प्रिपेयर रहते हैं कि भाई हमारे फार्म में क्या होने वाला है, तो उसको हम पहले से ही क्योर कर लेते हैं।
0: तो दुष्यंत जी यहाँ पर मिल्क प्रोडक्ट्स बना रहे हैं अपने ही ब्रांड नेम के साथ, और यहाँ पर मिल्क किस तरह से आप निकालते हैं वो भी हम जानना चाहेंगे, क्या टेक्निक यूज कर रहे हैं आप?
1: जी, तो
0: मैनुअली होता है या
1: नहीं? मैनुअली नहीं है, टोटली ऑटोमेटिक है, विदाउट हैंड टच है, मशीन्स लगती हैं, एक पैडॉक जोन बना हुआ है मिल्क पार्लर का, तो वहां पे गाय आती है, पहले वो उनका बेथिंग लगा हुआ है, स्प्रेज लगे हुए हैं ऊपर, तो बेथिंग करके फिर उनको उसमें जाती है मिल्किंग पार्लर में, वहां से दूध निकलता है और वो डायरेक्टली सीधा चिलिंग सेंटर में पहुंचता है प्रोसेसिंग के लिए विदाउट हैंड टच, पाइप्स के माध्यम से ही वो पहुंचता है, और LSA भी वहां रहता है हमारे, और जो मिल्कर्स हैं वो भी रहते हैं, तो वो प्रत्येक थन को चेक करते हैं, दूध की गुणवत्ता को देखते हैं। उस तरीके से फिर हमारे पास अपनी लैब भी है, उस लैब में हम लोग दूध की टेस्टिंग करते हैं, फिर हम उसको प्रोसेसिंग के बाद पैकेजिंग में, प्रोसेसिंग से पैकेजिंग के बाद डिलीवरीज में जाता है कस्टमर्स को।
0: तो हम जानेंगे कि किस तरह से जो दूध निकालने का प्रोसेस है मशीनों द्वारा यहाँ पे किया जाता है, लेकिन उससे पहले यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं जाएगा नहीं, बने रहे हमारे साथ डीडी किसान पर।
2: इसका जो माइंडसेट था काम के प्रति वो ये था कि भाई मुझे कुछ अलग करना है, इसीलिए उसने इस फील्ड को चुना। लोगों ने इसको बहुत कुछ बोला कि भाई ये कैसे काम है, पढ़ा लिखा के ये करा वो करा, लेकिन उसके बाद बच्चे ने अपने आप को सीधे रास्ते पे काम करते हुए, नफा नुकसान तो जिंदगी के साथ होता है, लेकिन बच्चे ने अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस के साथ इसको आगे ले गए हैं और आज उसको इतनी कामयाबी उसमें मिली है। उसके काम से उसके नाम से आज हम बहुत खुश हैं। और ये बच्चों को प्रेरणा लेना चाहिए कि भाई इस तरह के माइंड को सेट करें और इन जमीनी चीजों से, ये हमारी इंडिया का एक कल्चर है और हम लोगों को इसे आगे ले जाना चाहिए। बच्चों को काम छोटा बड़ा नहीं है, बच्चों को ईमानदारी से और सहलगन से काम करना चाहिए।
0: तो ये एक नई जनरेशन के लिए एक इंस्पिरेशन है, जैसे वो लंदन से पढ़ के आया है, उसने एमबीए किया है और अपने रूट से आके वो जुड़ा है और सारी जो चीजें उसने की हैं ये बहुत हाईटेक लेवल पे की हैं। तो इसे देख के हमको और हम पूरे घर वालों को एक बहुत मतलब खुशी मिलती है।
3: ये हमारा प्रोसेसिंग सेक्शन है जिसमें जहाँ से मिल्किंग होती है डायरेक्टली वो ऊपर आता है और उसमें चिलर में आता है फर्स्ट, वो सेकेंड पैश्चराइजेशन में आता है। पैश्चराइजेशन होने के बाद हम लोग उसको प्रोसेस करते हैं और जैसे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो बनने होते हैं, जैसे मिल्क जाना है अगर मार्केट में तो काउ मिल्क के बैच बनेगा, बफलो मिल्क का बैच बनेगा, FCM है जो फुल क्रीम मिल्क के नाम से आता है, वो 6 लीटर की पैकिंग है हमारी, वो उसके हिसाब से बनेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स हैं जिसमें पैश्चराइजेशन, होमोजेनाइजेशन, क्रीम सेपरेटर, जब घी बनाना होता है तो उसके लिए क्रीम सेपरेटर है, बाकी उसकी बॉइलिंग केटल्स हैं, तो और डिफरेंट जैसे स्वीट्स के लिए जाना है तो डिफरेंट डिफरेंट मिल्क का कैटेगरीज बैच बन करके वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में अपना इन्हीं मशीनों के द्वारा चला जाता है। CIP स्टेशन है, बाकी नीचे एक पैडॉक जोन है जिससे कि जो हमारा हापुड़ वाला कलेक्शन सेंटर है वहां से भी दूध आता है तो डायरेक्टली वो यहाँ आ जाता है, उसका भी नीचे पैडॉक जोन है।
0: तो काफी सारी मशीन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, तो क्या आपने इस सेटअप को तैयार करने के लिए गवर्नमेंट से कोई एड लिया है?
3: जी, अभी हम लोग एप्लीकेबल है उसमें और प्रोसेसिंग के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, तो उसमें यह है कि पहले आप बैंक को अप्रोच करेंगे, उसके बाद आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपना प्रोजेक्ट DPR सबमिट करेंगे, आफ्टर दैट वो लोग उस पर टेक ऑफ करेंगे कि भाई कैसे लेना है, कि कितना आपको मिलेगा, किस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं। तो अभी हम लोगों ने 20,000 लीटर का प्रोसेसिंग प्लांट लगाया है पर डे।
0: जी, और काफी बड़ा सेटअप यहाँ पर मैं आपका देख पा रही हूँ, तो अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो कितने लोगों को आपने एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर?
3: अभी करीबन 105 लोगों को हमने एम्प्लॉय कर रखा है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और 20 गांव अलग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हमारे लिए डायरेक्टली मिल्क को हमारे लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं।
0: ये तो काफी अच्छी बात है, क्योंकि जब कोई स्टार्टअप शुरू होता है तो स्टार्टअप की अच्छी बात यही होती है कि आप दूसरों को भी रोजगार दे पाते हैं, क्योंकि जब हम जॉब में जाते हैं तो सिर्फ हम अपने लिए एक रोजगार डेवलप करते हैं अपनी काबिलियत के हिसाब से, लेकिन जब आप एक स्टार्टअप शुरू करते हैं तो आप दूसरों का भी भला कर पाते हैं।
3: जी,
0: और जैसे कि आपने बताया था कि आपके काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ,
3: जी,
0: तो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो क्या कुछ प्रोडक्ट्स हैं आपके जो यहाँ पर तैयार हैं?
3: देखिए, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में सारे प्रोडक्ट्स हैं अपना, काउ मिल्क, बफलो मिल्क, FCM, और फिर छाछ है दो टाइप की, तड़का और प्लेन, घी है 4 टाइप के, काउ, बफेलो, देसी गाय, मिक्स मिल्क का जो घी है जैसे देसी घी हम लोग मार्केट में जानते हैं वो है, खोया है, और वर्मी कम्पोस्ट है, हम लोग जो गाय का गोबर है उससे वर्मी कम्पोस्ट भी बना रहे हैं और वो भी मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं विद अ मोबाइल ऐप, तो ऑनलाइन हमारी ऐप के थ्रू सभी लोग उसको परचेज कर पाएंगे विद इन 5 or 10 days।
0: और जो अवेलेबिलिटी रहेगी वो ऑल ओवर इंडिया रहेगी या कुछ?
3: नहीं, वो अभी 2 districts है, गौतम बुद्ध नगर एंड गाजियाबाद, बिकॉज हमारे पास उतनी ही प्रोडक्शन है जो हम 2 जिलों को केटर कर सकते हैं अभी, और प्राइमरी फोकस हमारा क्वालिटी पे है तो उसी के तहत हम लोग काम कर रहे हैं अभी।
0: जी बिल्कुल, हम तो चाहेंगे आपका प्रोडक्शन जल्दी से जल्दी बढ़े और आप और लोगों को रोजगार दें। और अगर मैं दुष्यंत जी आपसे आपके फ्यूचर विजन की बात करूं तो क्या है वो आपका?
3: तो फ्यूचर में हमारा प्लान ये है कि पहले तो 20,000 लीटर को प्रोसेसिंग करके ऑप्टिमाइज लेवल पे लेके आए प्लांट को, उसके बाद हमारा 1,00,000 लीटर का प्लान लगाने का भी है और FMCG प्रोडक्ट्स में भी हमारा आने का प्लानिंग है, कि जिससे कि जितने भी फार्मर्स हैं जो ऑयल्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोल्ड प्रेस ऑयल है, दाल है, मसाले हैं, चावल हैं, सीरियल्स हैं, तो नॉन पॉलिश्ड जितने भी ऑर्गेनिकली हम लोग उसको प्रिक्योर करके पैक करके कस्टमर्स को देना चाहते हैं विद द सेम नेम ऑफ धनश्री, तो इसी के तहत हम लोग फ्यूचर प्लानिंग के चल रहे हैं।
0: तो बहुत अच्छा विजन आप लेके चल रहे हैं, बड़ा विजन आप लेके चल रहे हैं। और मैं सबसे पूछती हूँ, आपसे भी जानना चाहूंगी कि इस वक्त जो हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, उनके लिए स्पेशली यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
3: डेयरी फार्मिंग में आए और उससे क्या है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ईच एंड एवरी प्रोडक्ट का करें, जैसे गाय का मूत्र है तो उसको खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं, गोबर है तो गोबर को आप वर्मी कम्पोस्ट में कर सकते हैं, वो भी एक्सपोर्ट तक जा रही है, बाकी जितने भी ठंडे प्रदेश हैं उनमें उसकी रिक्वायरमेंट है, यूरिया का अच्छा रिप्लेसमेंट है तो उसकी भी आपको कॉस्ट मिलेगी, अच्छे मिल्क प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो उसकी भी डिमांड अच्छी है मार्केट के अंदर। देखिए, अच्छे प्रोडक्ट की हर जगह सेल्स आपको मिल जाती है, प्रॉब्लम कहाँ आती है बेचने में, जहाँ आपके क्वालिटी में दम नहीं है, आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है, अगर आपके पास अच्छा प्रोडक्ट है तो वो आप कैसे भी करके उसको बेच लेंगे, और एक अच्छी लगन और मेहनत के साथ अगर कोई भी काम करना चाहेगा, वो किसी भी फील्ड में करना चाहेगा, तो वो सक्सेस जरूर करेगा। तो मेरा सभी युवा साथियों के लिए यही मैसेज है कि मेहनत करके और एक विजन को लेकर के और प्लानिंग के साथ चलें, जरूर कामयाब होंगे।
0: एक बेहद अच्छा जो मैसेज है वो यहाँ दुष्यंत जी ने आपको दिया है, और दुष्यंत जी की जो स्टार्टअप जर्नी आज हमने जानी है उसको पूरा सुनकर और जानकर दो लाइनें मुझे यहाँ याद आती है जो यू है कि साहिल के सुकू से कब इनकार है मुझे, साहिल के सुकू से कब इनकार है मुझे, लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। तो आपकी जर्नी काफी आसान थी, चाहते तो आप भी एक कोई व्हाइट कॉलर जॉब कर सकते थे, बट आपने डेयरी जैसे स्टार्टअप को चुना जो अपने आप में एक चैलेंजिंग है और मेहनत वाला काम है
3: जी।
0: तो हम तो आपको यही कहेंगे कि आपके जल्दी से सारे ड्रीम्स पूरे हों, आप अपने जल्दी से टारगेट्स को पूरा करें। वेरी ऑल द बेस्ट फ्रॉम डीडी किसान चैनल एंड फ्रॉम आवर प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप, एंड आई एम रियली डिलाइटेड टू हैव यू इन माय शो।
3: थैंक यू सो मच। थैंक यू
0: दोस्तों, हम आपको आगे भी ऐसे ही प्रोग्रेसिव एंटरप्रेन्योर से मिलवाते रहेंगे जो कृषि जगत में नए आयाम गढ़ देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। अगर आपको लगता है आपकी स्टार्टअप जर्नी भी दिलचस्प है और ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है digital.agrikisan@gmail.com। साथ ही हम उम्मीद करते हैं दोस्तों जो आपका फीडबैक हमें मिलता है आगे भी इसी तरह मिलता रहेगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगी एक नई स्टार्टअप जर्नी को लेकर, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।

0: गुड आफ्टरनून। किसी को लास्ट सेशन, कल के सेशन में कुछ पूछना है? आज हम एयरबॉर्न डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे, मतलब हवा से फैलने वाली बीमारियों के बारे में। तो सबसे पहले एयरबॉर्न डिजीजेस होता क्या है? जो हवा में हमारे बहुत सारे कीटाणु होते हैं जो हमें नहीं दिखते हैं, और ये जो एयरबॉर्न डिजीज है या जो हवा में फैलने वाली बीमारियां हैं, ये यूजली खांसी जुकाम एक दूसरे से भी फैलती है। खांसी जुकाम जैसी बीमारियां होती हैं जो एक दूसरे से फैलती हैं। तो एक इन्फेक्शन अगर किसी को हुआ है, तो उसको कैसे हुआ है एक इंसान को इन्फेक्शन? उसने, क्योंकि हम हवा में सांस लेते हैं, आसपास हमारे इतने कीटाणु हैं, अगर हमारे आसपास कोई व्यक्ति को खांसी जुकाम है और उसने खुली हवा में छींका या खांसा है, तो उसके जो कीटाणु है वो हवा में मिक्स होकर हमें लग सकते हैं और हमें भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो जब ये कीटाणु हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, तो ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत जल्दी फैल जाते हैं शरीर में और ये हमको बीमार कर देते हैं। तो ये कैसे, जब हमारे शरीर के अंदर ये जब मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कम से कम एक हफ्ते के बाद हमें वो इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत हमें स्ट्रोंग रखना पड़ता है ऐसी बीमारियों से लड़ने के लिए। सबसे पहले हम टीबी के बारे में बात करेंगे। ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी की है बीमारी, वो भी हवा से ही लगती है। टीबी एक बहुत सीरियस इंफेक्शियस बीमारी होती है जो हमारे फेफड़ों को इन्फेक्ट करती है, हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करती है। वैसे टीबी कहीं पर भी हमारे शरीर में हो सकता है, बट जो हवा से फैलता है टीबी, वो हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करता है। और मोस्ट कॉमनली, बहुत कॉमन है टीबी जो लंग्स पे इन्फेक्ट करता है। ये पर्सन टू पर्सन, मतलब एक इंसान को अगर टीबी है और अगर उसने खुले में, उसको नहीं पता है उसको टीबी, और अगर उसने खुले में खांसा या छींका है, तो दूसरे इंसान को भी टीबी हो सकता है। ये कहीं पर भी हो सकता है टीबी, जैसे पहले मैंने बताया, ब्रेन, स्पाइन, कहीं पर भी शरीर में टीबी हो सकता है, बट जो कॉमन है वो आपके लंग्स को इम्पेक्ट करता है। बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये एक बैक्टीरिया है जिससे टीबी होता है। अब टीबी के लक्षण क्या होते हैं? टीबी दो तरीके का होता है, एक होता है लेटेंट और एक होता है एक्टिव। लेटेंट टीबी का मतलब होता है वो टीबी जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर स्ट्रोंग है, आपको टीबी हुआ है, तो वो तुरंत ठीक हो सकता है दवाइयों से। और एक्टिव टीबी वो होता है जो आपके बॉडी में मल्टीप्लाई कर लेगा, आपको बीमार करेगा। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर नहीं स्ट्रांग है उसको फाइट करने के लिए, उससे लड़ने के लिए, तो आप इससे और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, मतलब इससे और ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो जिस लोगों की रोग प्रतिरोधक इम्यूनिटी लो है, वो टीबी बहुत आसानी से एक दूसरे को फैला सकते हैं। फिर और क्या दिखते हैं लक्षण? खांसी होती है। खांसी जो है 3 से 4 हफ्ते तक चलती है। इस खांसी के साथ साथ ब्लड भी आता है। आपके चेस्ट में पेन होता है, छाती में जकड़न होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा वेट लॉस हो जाता है, थकावट, फीवर, ठंड लगना, भूख बिल्कुल भी नहीं लगना, क्योंकि भूख नहीं लगेगी तो वेट लॉस हो जाएगा। तो ये सब लक्षण दिखते हैं। खांसी जो 3 से 4 हफ्ते चले, पर हमें नॉर्मल खांसी भी लगती है। लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम 3 से 4 हफ्ते तक खांसी चल रही है, कहीं टीबी तो नहीं है? आपके टीबी जो है वो बलगम वाली खांसी होती है किसी को। और इसमें क्या होता है कि आपके जो खांसी करते करते ब्लड आता है, तब हम इसको टीबी का रूप देते हैं, या आपके चेस्ट में पेन हो रही है, बहुत ज्यादा खांसी है और जकड़न बहुत ज्यादा है, तो एक बारी आप टेस्ट करा सकते हैं, जाकर अपना ब्लड टेस्ट करा सकते हैं या एक्सरे करा सकते हैं, जिसकी जिससे हमें श्योरिटी हो सकती है कि हमें टीबी है या नहीं। अगर टीबी है तो कुछ लोगों को जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है उनके लिए हानिकारक भी हो सकता है। जैसे जिसकी इम्यून सिस्टम कम है, इम्यूनिटी पावर कम है लड़ने के लिए टीबी से, उनको उनके लिए थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। एचआईवी एड्स अगर किसी को है उनके लिए परेशानी हो सकती है। डायबिटीज जिसको है उनके लिए भी हो सकता है। सिवियर किडनी डिजीजेस जिसको ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कैंसर है, कैंसर ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी से चल रहे हैं, कोई ऑर्गन कोई अंग को ट्रांसप्लांट कराया है, या बहुत ज्यादा माल नरिश्ड हैं। माल नरिश्ड होते हैं जिनमें बिल्कुल ही न्यूट्रिशन नहीं है, बिल्कुल ही इम्यूनिटी, बिल्कुल ही पतले, बिल्कुल हड्डियां जिसकी दिखती हैं, जो बिल्कुल ही एनीमिक होते हैं, उनको हम माल नरिश्ड बोलते हैं। और बहुत यंग लोग बच्चे और बहुत बुजुर्ग लोग, उनको उनकी इम्यूनिटी पावर कम होती है, अगर टीबी अगर उनको लगता है तो उनके लिए थोड़ा दिक्कत वाली बात हो सकती है। कैसे अपने आप और अपनी फैमिली या अपने फ्रेंड्स को इससे बचाएं? अगर लेटेंट टीबी है, आपको डॉक्टर एडवाइस करेंगे मेडिकेशन लो, थोड़ा प्रिकॉशंस लेने चाहिए और आपका टीबी ठीक हो जाएगा, उसको एक्टिव में नहीं बना। अगर एक्टिव है तो आपको दवाई के साथ प्रिकॉशंस के साथ आपको अपनी इम्यूनिटी पावर भी इंक्रीज करनी है, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इंक्रीज करनी है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे इंक्रीज होगी? आपको खाना अच्छा खाना है, एक्सरसाइज करनी है, अच्छी डाइट लेनी है, ताकि हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को इंक्रीज कर सकें। हम अपने फैमिली को टीबी से कैसे बचाएं? टीबी जो है वो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। जिनको टीबी है वो घर में रहें, घर से बाहर ना निकलें, एक अलग से रूम में उनका व्यवस्था करें रहने के लिए, जहां पर वेंटिलेशन हो। वेंटिलेशन मतलब खिड़कियां हो, ताकि आप खिड़कियां खोलकर अगर वो खांसते हैं सीखते हैं तो वो बैक्टीरिया उन्हीं के आसपास ना रहे, वो उनके रूम से बाहर निकल जाए। और मुंह को ढककर रखें, मतलब मास्क पहनकर रखें। कोई भी उनकी सेवा कर रहा है तो उनकी को भी प्रिकॉशंस लेनी बहुत जरूरी है। आप भी अपना नाक मुंह ढककर रखें, हाथ बार बार धोएं, ताकि उनको जो खाना दे रहे हैं उनको अलग प्लेट में दें और उनकी प्लेट अलग रखें, ताकि इन्फेक्शन जो है वो किसी और को ना लगे घर में। पूरी मेडिकेशन जो है फिनिश करनी है, मतलब जो टीबी की, एक डॉक्टर्स भी कहते हैं टीबी अस्पताल भी अब हर जगह खुल गए हैं, वहां पर आपको फ्री की मेडिसिन भी मिलती है। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि टीबी की मेडिकेशन पूरी लेनी चाहिए, पूरी इन द सेंस कि अगर 6 महीने का कोर्स है तो 6 महीने टीबी की दवाई पूरी लेनी चाहिए। लोग क्या करते हैं कि आधी मेडिकेशन बीच में छोड़कर कहते हैं कि हम टीबी से, मतलब हमें को टीबी नहीं है अब, पर वो दोबारा टेस्ट नहीं कराते हैं। पर वो बैक्टीरिया आपके शरीर के अंदर रहता ही रहता है 6 महीने, तो आपको वो बैक्टीरिया को किल करने के लिए 6 महीने तक या 8 महीने तक, या कोई कोई लोग 12 महीने तक दवाई खाते हैं, तो वो पूरी मेडिकेशन पूरी करनी है, कोई मेडिकेशन स्किप नहीं करनी है। वैक्सीनेशन उपलब्ध है, बच्चों को हम वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं टीबी के लिए। टीबी का डायग्नोस कैसे होता है? अगर आपको लग रहा है कि खांसी चली जा रही है और खांसी में जकड़न है या चेस्ट पेन है या बहुत ज्यादा ब्लड आ रहा है, तो हम ब्लड टेस्ट कराएंगे। ब्लड टेस्ट कराकर आपका सैंपल से पता चल जाएगा। चेस्ट एक्सरे भी करा सकते हैं, चेस्ट एक्सरे में भी पता चल जाता है, क्योंकि लंग्स में कहीं फ्लूइड है या कुछ पता चलता है तो उससे भी टीबी का पता चल जाता है। ट्रीटमेंट सिर्फ यही है कि आपको मेडिकेशन लेनी है, चाहे 6 महीने हो, चाहे 9 महीने हो, चाहे 12 महीने हो, मेडिकेशन टाइमली लेनी है, कंप्लीट करना है। मेडिकेशन के साथ साथ आपको अपनी डाइट पे भी ध्यान देना है। अच्छी डाइट लें, प्रोटीन डाइट ज्यादा लें, जंक फूड नहीं खाना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जितनी हो सकती है उतनी करें, और मेडिकेशंस को मिस नहीं करते हैं। फिर हम बात करते हैं हवा से जो फैलती है दूसरी बीमारी, जिसको हम दमा कहते हैं। दमा मतलब एस्थमा। एस्थमा में क्या होता है, ये एक कंडीशन होती है जब आपकी सांस लेने वाली नली में या तो मवाद भरा हुआ है या आपकी जो सांस लेने वाली नली है वो सुकड़ गई है, तो उसमें सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। और ये अस्थमा जिनको होता है उनकी डेली एक्टिविटी, मतलब जो वो रोजमर्रा की काम में भी उनको ये हर्डल करता है, उनको काम करने में प्रॉब्लम करता है। क्योंकि बहुत लोगों का क्या होता है, अगर किसी के सांस लेने वाली नली में प्रॉब्लम है या मवाद भरा है या सुकड़ी हुई है तो सांस नहीं आती है ठीक से, और वो फिर जब डेली एक्टिविटी करते हैं, चाहे अपने घर के काम ही क्यों ना हो या बाहर के काम क्यों ना हो, तो बहुत जल्दी सांस चढ़ जाता है, सांस फूलने लगता है। तो जब सांस फूलने लगता है तो फिर वो अपने कामों में हर्डल हो जाता है। क्या सिम्टम्स हैं? जनरली माइल्ड सिम्टम्स होते हैं और ये सिवियर भी हो सकते हैं जिनको बहुत ज्यादा सिवियर अस्थमा की प्रॉब्लम है। तो चेस्ट में जकड़न होती है बहुत ज्यादा, सांस बहुत ज्यादा तेज होने लगती है या बहुत ज्यादा धीरे होने लगती है, सांस लेने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, बातें करने में प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है, मतलब बात नहीं कर पाते हैं आप प्रॉपरली, हाथ पैरों ठंडे हो जाते हैं या बहुत ज्यादा पसीना आना शुरू हो जाता है, और जो हाथ के नाखून है वो पीले पड़ जाते हैं। सबसे जो मेन कॉमन सिम्टम्स है वो यही है कि आपके जो ब्रीदिंग में इश्यूज हो जाए, आप सांस नहीं ले पाएंगे, सांस फूलने लग जाती है, और इसी के साथ साथ खांसी भी आनी शुरू हो जाती है। तो तुरंत डॉक्टर्स क्या कहते हैं, इस जब ऐसा स्थिति आती है तो तुरंत ही इनहेलर का प्रयोग कर लें। इनहेलर्स आसानी से मार्केट में अवेलेबल हैं। क्या कारण क्या है, क्यों एस्थमा ऐसे सांस लेने में प्रॉब्लम आती है जिन लोगों को एस्थमा होता है? या तो मैंने पहले बताया, या तो उनकी सांस लेने वाली नली में मवाद है या वो सुखड़ी हुई है, या बहुत ज्यादा जिसकी जिसको हर आए दिन कॉमन कोल्ड या कफ लग जाता है। बहुत लोगों को डस्ट से, मिट्टी से एलर्जी होती है तभी उनको सांस चढ़ता है, या घर में पालतू जानवर है उनके बालों से बहुत लोगों को एलर्जी होती है, पोल्यूशन से होती है। हाँ, मेडिकेशन, कोई भी मेडिकेशन सूट नहीं करती है। गांव में जब धान कटता है तो उसको जब पीटते हैं तो उसमें से जो छिलके निकलते हैं उनको, उनके पोलन से लोगों को बहुत एलर्जी होती है। स्मोकिंग से एलर्जी होती है, जो सिगरेट पीते हैं आसपास के लोग, जिनको अस्थमा है तो उनके आसपास सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को स्मोक से भी एलर्जी होती है। किसी स्मेल से एलर्जी होना, बहुत लोगों को अगरबत्ती, धूप बत्ती, इन सब से भी एलर्जी होती है, तो उनका सांस फूलने लगता है, सांस उखड़ने लगता है। कैसे अपने आप को बचाएं इससे? अस्थमा को फॉलो करें, मतलब फॉलो प्लान, जो भी डॉक्टर प्लान दे रहा है अस्थमा के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, उसको पूरा अच्छे से फॉलो करना चाहिए। जब डॉक्टर बताए उनके पास जाना चाहिए। वैक्सीनेशन लगवाएं बच्चों को इन्फ्लुएंजा और निमोनिया की। जिस चीज से एलर्जी है उस चीज से दूर रहें, चाहे वो डस्ट हो तो घर में जब डस्टिंग हो रही है तो अपने फेस पे मास्क लगाएं, चाहे पोल्यूशन है तो घर के बाहर निकलते हुए भी अपने फेस पे मास्क लगाएं, अपनी ब्रीदिंग को मॉनिटर रखें। अगर अस्थमा का अटैक पड़ता है, सिवियर अटैक नहीं है, माइल्ड है, तो आराम से बैठकर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। अगर सिवियर है तो हम इसका जो क्विक रिलीफ जो मैंने अभी आपको बताया कि इनहेलर्स हैं, इनहेलर्स को ले सकते हैं। अदरवाइज डॉक्टर्स जो मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करते हैं उसको हमें रूटीनली लेना होता है। रेगुलर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, ट्रीटमेंट में इनहेलर्स का उपयोग करना है। कुछ होम रेमेडीज है जैसे कि अपने घर को साफ रखना है, जिस चीज से एलर्जी है उधर से दूर रहें, अपने मुंह को कवर कर कर रखें जब आप बाहर जाते हैं, या किसी चीज से एलर्जी, पोल्यूशन से एलर्जी है तो बाहर जाते हुए मास्क पहने, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, वेट मैनेज करें, और जो तला भुना ज्यादा नहीं खाएं जिसकी वजह से एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी से भी हमें ब्रीदिंग इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जिसको सिवियर एसिडिटी होती है तो बर्ब्स आते हैं तो सीधा जाकर आपके लंग्स और हार्ट पे अफेक्ट करता है, तो वो चीजें थोड़ी अवॉइड करें जिससे आपको हार्ट बर्न हो। फिर नॉर्मल कोल्ड एंड कफ भी बहुत कॉमन है, एयरबॉर्न एयर की बीमारी में बहुत ज्यादा ये कॉमन होता है। इसमें सबको पता है कि फीवर होता है, किसी को मांसपेशियों में दर्द होती है, किसी को बहुत ठंड लगती है, सिर में दर्द, खांसी भी होती है, सांस लेने में भी दिक्कत होती है, वीकनेस आ जाती है, गला खराब होने लगता है, आंखों के पीछे आंखों में दर्द, वॉमिटिंग, डायरिया, ये सब हमारे सिम्टम्स हैं। इन्फ्लुएंजा जिसको हम कहते हैं, नॉर्मल कोल्ड और कफ को हम मेडिकल टर्म में इन्फ्लुएंजा कहते हैं। सेम सिम्टम्स हैं कोविड-19 जैसे। कोविड-19 जब आया था तो हम बहुत कंफ्यूज हो रहे थे कि वेदर चेंज में भी ये कोल्ड कफ होता है, पर कोविड-19 के भी सिम्टम्स यही थे। क्या कारण क्या है? जब कोई इंसान को कोल्ड कफ है, किसी चीज से इन्फेक्शन है, या कोई जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर से चेंज ऑफ वेदर में भी कोल्ड कफ लग जाता है, तो खांसते सीखते वक्त या बात करते वक्त उनके मुंह से या नाक से बैक्टीरिया जो निकलता है या वायरस जो निकलता है वो हवा में मिक्स होकर दूसरे इंसान को लग सकता है। जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी उस पे ये असर नहीं करेगा, पर जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होगी उस पे ये जरूर असर करता है। अपने हाथों को हमें बार बार धोना चाहिए। कोविड के टाइम पे भी किसी चीज को छूने के बाद भी हम अपने हाथों को धोते थे, तो हवा की बीमारियों में यही है कि हमें नहीं पता कि कौन सा इन्फेक्शन हवा में, तो हवा में जो भी इन्फेक्शन है आपको तो पता नहीं है, पर आप अपने हाथ को धोएं आंखों पे और मुंह पे लगाने से पहले पहले अपने हाथों को जरूर धोना चाहिए, फेस को टच करने से पहले। छींकते खांसते समय अपने मुंह को ढक कर रखें, आसपास की जगह को साफ रखें। अगर आप बीमार हैं, अगर आपको खांसी जुकाम बुखार है, तो आप 24 घंटे तक घर में रहें, उसके बाद आप घर से बाहर निकल सकते हैं। जितना हो सके ल्यूकवार्म वाटर पिएं, गुनगुना पानी पिएं, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है दवाई उसको लें। इन्फ्लुएंजा जो है, ये कॉमन कोल्ड एंड कफ जो है वो एक इंसान से दूसरे इंसान को होता है, दूसरे इंसान से पूरे गांव को भी हो सकता है, एक क्योंकि ये आपको भी पता है खांसी जुकाम एक दूसरे से फैलती है। तो अपने आप को जब तक आप ठीक नहीं हो जाते घर में ही रहें, जब आप फील बेटर करेंगे तो घर से बाहर निकलें, और घर से बाहर निकलें भी तो मास्क जरूर पहनकर निकलें ताकि हम किसी और को इन्फेक्ट ना कर सके। थैंक यू। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।
1: गुड आफ्टरनून मैम।
0: गुड आफ्टरनून।
1: जी, मैं गरिमा गृह से शशि बोल रही हूँ मैम। मैम, मैं एक
0: हाँ
1: सवाल
0: शशि।
1: पूछना चाहती हूँ। जैसे कि आपने बताया कि अस्थमा कोई एज या उसके हिसाब से नहीं होता। जैसे कि 25 साल का अगर लड़का है और वो जैसे धूल मिट्टी वगैरह कुछ वो होता है तो उसको बहुत सारी छींकें आती है, तो क्या ये अस्थमा हो सकता है मैम? वैसे नॉर्मल है वो, वैसे कोई दिक्कत नहीं उसको, लेकिन धूल मिट्टी
0: देखिए
1: के
0: शाकी जी,
1: संपर्क में
0: अगर उसको
1: काफी।
0: सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रही है तो अस्थमा नहीं है। डस्ट से
1: जी
0: एलर्जी है उसको,
1: हाँ
0: क्योंकि उसको छींकें आती हैं।
1: मैम, लगातार छींके आते तो मैम अस्थमा तो नहीं हो सकता, नहीं, क्योंकि वैसे
0: नहीं,
1: नॉर्मल है वो
0: डस्ट,
1: बिल्कुल।
0: हाँ डस्ट से अगर सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो अस्थमा अटैक आ सकता है। अदरवाइज डस्ट से जब छींकें आती हैं तो इसका मतलब डस्ट से एलर्जी है उसको, तो वो
1: यस
0: डस्ट
1: मैम,
0: से जितना दूर रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर ये छींके ही आगे जाकर कहीं ना कहीं ब्रीदिंग इश्यूज भी बन सकते हैं, जिसकी वजह से अस्थमा हो सकता है।
1: तो मैम क्या डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, दिखाना चाहिए एक बार?
0: अभी तो नहीं, अभी तो नहीं शशि जी, आप पहले थोड़ा प्रिकॉशंस घर में ही, मतलब अगर आपका बच्चा है या किसी और का भी है तो पहले प्रिकॉशंस घर से लेना शुरू करें। अगर बाहर जाते भी हैं तो मुंह पे कपड़ा बांध कर जाएं, ताकि डस्ट से उनको एलर्जी ना हो। पहले कुछ दिन देखें, अगर जब ब्रीदिंग इश्यूज होने शुरू होंगे और तब दिखाने का जरूरत है, अदरवाइज ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे तो ठीक हो सकते हैं।
1: थैंक यू मैम।
2: किसी का कोई सवाल है? मैम, आई डोंट थिंक सो दे हैव एनी मोर क्वेश्चंस टू आस्क, सो कैन यू कंटिन्यू द सेशन?
0: यस गीतिका, वी कैन कंटिन्यू द सेशन।
2: ओके ओके,
0: थैंक यू।
2: थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मैम।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।
1: भारत की शान, डीडी किसान, बदलते भारत की शान।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। सफल किसान कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में कृषि जगत में कुछ अलग कर रहे किसानों से हम आपको परिचित करवाते हैं। कृषि क्षेत्र में कुछ ऐसे किसान हैं जिन्होंने कुछ अलग किया है और अपनी आर्थिक स्थिति में बदलाव लाया है। पारंपरिक फसलों की खेती को ना अपनाकर उद्यानिकी फसलों को अपनाया है और साथ ही साथ अन्य किसानों तक भी उन्हें पहुंचाया है। आज के हमारी इस कड़ी में ऐसे ही दो सफल किसानों से हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं जिन्होंने अपने खेतों में पारंपरिक धान और गेहूं की खेती को नहीं अपनाया बल्कि स्ट्रॉबेरी की खेती को अपनाया और साथ ही साथ जो आसपास के किसान हैं उन्हें भी प्रेरित किया कि वो भी स्ट्रॉबेरी की खेती को अपनाएं। तो आइए ऐसे ही दो सफल किसानों से मुलाकात करने के लिए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के कुशीनगर जिले के दुमही गांव का।
1: उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला यूं तो बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध के निर्वाण स्थली के रूप में जानी जाती है। यहाँ के किसान भगवान बुद्ध की प्रेरणा से निरंतर आगे बढ़ने और कुछ नया करने के लिए रास्ता दिखाते रहते हैं। कुछ ऐसा ही किया है यहाँ के किसान लाल बहादुर कुशवाहा ने। इन्होंने परंपरागत खेती को छोड़कर स्ट्रॉबेरी जैसी नाजुक फसल की खेती को अपनाया और युवाओं को रोजगार का एक नया रास्ता दिखाते हुए उन्हें स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए प्रेरित किया। स्ट्रॉबेरी की खेती से आज इनके जीवन में उजाला फैल रहा है और ये आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में बताते हुए लाल बहादुर कहते हैं,
2: यहाँ हम लोग स्ट्रॉबेरी का खेती करते हैं। इसका ट्रेनिंग जो है कि हम यूट्यूब के माध्यम से करना चालू किए हैं। इसके बाद जो हॉर्टिकल्चर विभाग से, उद्यान विभाग से हम लोगों को जो है कि बहुत योगदान रहता है इसमें। सब्जी में कभी जो है कि हम लोग को नुकसान लगता था लेकिन इसमें नुकसान नहीं है। इसमें हर साल जो है कुछ न कुछ बेनिफिट ही रहता है हम लोग को। और स्ट्रॉबेरी के साथ साथ हम लोग जब इसका जो है कि इसमें खीरा हम लोग लगा देते हैं, सब खीरा लग गया है। और खीरा जैसे एक दो फलना चालू होगा तब तक करेला इसमें हम लोग को लग जाएगा। पौधा तैयार हो गया है और इसके तुरंत बाद करेला निकलना चालू हो जाएगा और करेला के बाद फिर स्ट्रॉबेरी हम लोग लगा देते हैं। इसमें रेगुलर फसल हम लोग लेते रहते हैं।
1: स्ट्रॉबेरी की खेती से किसानों को भरपूर फायदा हो रहा है लेकिन इसकी खेती करना आसान नहीं है। स्ट्रॉबेरी का फल काफी नाजुक होता है, इस कारण इसकी खेती के लिए किसानों को कई प्रकार की सावधानी बरतनी पड़ती है जिससे इससे अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सके। स्ट्रॉबेरी की खेती से लाल बहादुर को प्रति एकड़ 3 से 4 लाख रुपए की कमाई हो जाती है।
2: एक एकड़ में इसमें जो है कि 25,000 पौधा लगता है और उसके साथ साथ इसमें जो है कि खाद लगता है, ड्रिप है, मल्चिंग है और उसके ठंडी आने पर जो है कि ये झिल्ली से हम लोग इसको ढकते हैं। शीत जब पड़ने लगता है ठंडी में तो इससे ढका जाता है इसको ताकि फल में जो है कि न कोई दागी आए न पानी से प्रभावित हो। इसके लिए झिल्ली हम लोग लगा रखे हुए हैं। इसमें जो है कि तापमान अच्छा होना चाहिए, ठंडी में ठंडी नहीं चाहिए। एक एकड़ में हम लोग हमारा लागत जो है 5 लाख रुपया लगता है, 2-2.5 लाख रुपया पर हर साल जो है कि हम लोग को मिल जाता है। और दूसरे फसल तो लगातार चलता रहता है, इसमें खीरा लग गया है, खीरा से भी 1 लाख रुपया आ जाएगा और उसके साथ साथ करेला है, करेला से भी हमको प्रॉफिट होगा। एक एकड़ से हम लोग स्ट्रॉबेरी, खीरा, करेला मिला करके 3-4 लाख रुपया कमा लेते हैं। इसके साथ साथ हम मशरूम लगाए हैं, 1,000 बैग मशरूम लगा है, सेब भी लगाए हैं। अब जो है कि फूल आना चालू हो गया है। देख रेख जो है कि हम मेडिसिन जो होता है इसका दवा उसी का देख रेख डेली जो है कि मजदूर 3-4 रहते हैं, वो लोग अपना करते रहते हैं, बता देते हैं ऐसे करिए जिस तरह बताते हैं उस तरह वो लोग करते हैं। ये मल्चिंग लगा है, इससे जो है कि इसके अंदर से खर पतवार नहीं आएगा, जो बीच में पड़ा है इसी का जो है कि निराई गुड़ाई होता रहता है।
1: स्ट्रॉबेरी रोजेसी कुल का पौधा है जिसकी उत्पत्ति उत्तरी अमेरिका में हुई थी। यहाँ से ये यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस व अन्य देशों के पर्वतीय अंचलों एवं शीतोष्ण प्रदेशों में फैला। भारत में इसका उत्पादन पर्वतीय भागों में नैनीताल, देहरादून, हिमाचल प्रदेश, महाबलेश्वर, महाराष्ट्र, नीलगिरी, दार्जिलिंग आदि की पहाड़ियों में व्यावसायिक तौर पर किया जाता है। लेकिन कृषि वैज्ञानिकों के प्रयास से आज स्ट्रॉबेरी की खेती मैदानी भागों दिल्ली, बेंगलोर, गुरुग्राम, जालंधर, मेरठ, पंजाब, हरियाणा सहित उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में की जा रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तरी क्षेत्र में स्थित भगवान बुद्ध की निर्वाण स्थली कुशीनगर के कई क्षेत्रों में कृषि वैज्ञानिकों के प्रयास से किसान स्ट्रॉबेरी की खेती को अपनाकर अपनी आय को बेहतर कर रहे हैं।
0: यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम एक और सफल किसान बिंद किशोर कुशवाहा से आपकी मुलाकात करवाएंगे। उनसे जानेंगे उनकी स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में, किस तरह से इस सफर की शुरुआत हुई, इन तमाम बातों के बारे में उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार, कहीं मत जाइए। देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।
3: ए संभाल कर, हाँ आई मारो पप्पा फॉरेन थी लाई आवियो। हाँ ए ए ए भाई नुकसान कैसा भरेगा तुम?
4: स्टॉक मार्केट में भी रिस्क उतना ही लें जितने की कैपेसिटी और रिस्क की जानकारी हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत सोच समझकर करें।
3: अरे वाह दिकरा, एकदम बराबर, रिस्क समझकर लेने का।
0: ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब रुख करते हैं एक और सफल किसान बिंद किशोर कुशवाहा का, उनसे स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में और विस्तार से जानते हैं।
1: स्ट्रॉबेरी की खेती की ओर बढ़ने वाले किसान बिंद किशोर कुशवाहा एमए पास हैं। केले की खेती करने वाले बिंद किशोर अपने चाचा की स्ट्रॉबेरी की खेती देखकर इसकी ओर बढ़े और आज स्ट्रॉबेरी की खेती करने वाले एक सफल किसान बन गए। स्ट्रॉबेरी की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए उद्यान विभाग से उन्हें अनुदान पर ड्रिप पद्धति से सिंचाई करने के उपकरण मिले हैं क्योंकि इससे उत्पादन बेहतर प्राप्त होता है। बिंद किशोर बताते हैं कि उद्यान विभाग से मिले सहयोग से क्षेत्र में स्ट्रॉबेरी की खेती लगातार बढ़ रही है। आइए जानते हैं स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में उन्हीं से।
5: मैं बीए और एमए की पढ़ाई कर चुका हूं और इसके बाद से हम लोग पहले काफी केला की खेती अधिक करते थे। उसके बाद से हमने विभाग से मदद से अपना एफपीओ भी बनवाया, जो मेरा एफपीओ का नाम है गौतम बुद्ध फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी।

0: के लिए। उसके बाद से हम लोग हर साल हम महाराष्ट्र जाते हैं, इसका खेती महाराष्ट्र में अधिक और इसका पौधशाला भी महाराष्ट्र में, पौधा महाराष्ट्र से आता है, क्योंकि हर साल हम नवंबर अक्टूबर से पहले हम चले जाते हैं वहाँ पे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में पूरा टेक्निकल देकर वहाँ आया गया है। यहाँ सब ड्रिप एग्रीकेशन द्वारा सब किसानों को सिंचाई किया जाता है, चाहे आपका अंगूर हो, स्ट्रॉबेरी हो, केला हो, पपीता हो, बैगन हो, जो भी हो, क्योंकि पानी की बचत भी कम है और समय का भी बचत है, और केवल पौधे का केवल रूट भी जड़ भी गया, आप ड्रिप द्वारा खाद वगैरह सब इसमें संचित हो जाता है। तो मैंने आम महाराष्ट्र जाने के बाद सब शिखर सब अनुदान विभाग, मैंने डीएचओ साहब के पास हम लोग गए, डीएचओ साहब विभाग के अनुसार हम लोग को बहुत काफी जानकारियां मिली। उन्होंने ड्रिप लगाने का पूरा उन्होंने हम लोगों को कैंप लगा कर उत्साहित किया, खेतों में आकर डीएचओ साहब ने हम लोग को बताने का काम किया। हम लोगों ने पूरा काफी किसानों को ड्रिप एग्रीकेशन कराया गया। इसके बाद से हम लोग स्ट्रॉबेरी का खेती करने से मैंने बहुत काफी खुशहाल हैं, क्योंकि इसका लागत एक एकड़ में 5 से 6 लाख रुपया है, 5 से 6 लाख रुपया लागत है, और काफी कॉस्टली खेती है। इनकम 10 से 12 लाख 15 लाख से हमारा इनकम है, क्योंकि हम लोग युवा समाज के जो कि 20,000-25,000 के लिए नौकरी ढूंढ रहे हैं जाने के लिए, हम लोग जो देख रहे हैं आप, काफी महिला लोग लगी हुई हैं, हर वक्त 10 लोगों को रोजी रोटी हम लोग अपने पौधशाला के अंदर दिया जाता है, क्योंकि हर प्रकार के अभी जब इधर दिखाएंगे तो हमारा पूरा पौधशाला लगा हुआ है जो कि गौतम बुद्ध पौधशाले के नाम से है, क्योंकि हर चीज पौधा हमारे पास उपलब्ध है, केला, पपीता, ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी और आदि सब्जियों का अनेक प्रकार के पौधा सब हाइब्रिड और वेफोन हमारे पास स्टार्ट है।
1: स्ट्रॉबेरी 6 महीने की फसल है। नाजुक फसल होने के कारण इसकी खेती के लिए कई प्रकार की सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। बेहतर उत्पादन प्राप्त करने के लिए बिंद किशोर स्ट्रॉबेरी का पौधा महाराष्ट्र से लाते हैं। खेतों में मल्चिंग लगाते हैं जिससे खेत में नमी बरकरार रहती है और फल पर मिट्टी आदि नहीं लगने पाती। इस बारे में बताते हुए बिंद जी कहते हैं,
0: ये 6 महीना का फसल है, अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक यदि फसल है, ये अक्टूबर में इसको लगाते हैं, ये जाते हैं महाराष्ट्र पौधा लाया जाता है, क्योंकि इसको पौधा लाने के लिए हम लोग महाराष्ट्र जाते हैं, महाराष्ट्र तो बाय ट्रेन द्वारा चाहे एसी द्वारा हम लाते हैं। उसके बाद से ये मल्चिंग लगाते हैं, मल्चिंग लगाने से ही होता है कि अंदर का नमी बरकरार रहता है और जो पानी चलता है उसमें नमी बरकरार रहता है, खौर निराई गुड़ाई में आसानी रहता है और खौर पतवार नहीं जमता है। उसके बाद से जो आप ये फल देख रहे हैं, तो फल में मिट्टी नहीं लगता है, सड़ता नहीं है, और जो ये आप ये देख रहे हैं तार जो देख रहे हैं, इसका जो रस्सी देख रहे हैं, इसको लो टेंडर लगाया जाता है जो कि इसका झिल्ली ऊपर से सर्दियों के लिए, क्योंकि इस पे ओस ना पड़े या शीत ना पड़े, हर रोज शाम को इस पर चढ़ाया जाता है और सुबह उसको उतार दिया जाता है।
1: परंपरागत केले की खेती को छोड़कर बिंद किशोर अब लोगों की अच्छी सेहत के लिए बेहतर गुणवत्ता और रोग रोधक क्षमता वाले स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। वे अपनी पौधशाला में स्ट्रॉबेरी के अलावा ड्रैगन फ्रूट सहित दूसरे पौधों, अमरूद, बेर आदि की बेहतर किस्मों का उत्पादन कर रहे हैं। इन्होंने एफपीओ को भी रजिस्टर्ड कर रखा है।
0: इसके साथ साथ हमारा सबसे अधिक केला का पौधशाला है, क्योंकि हर साल किसानों को अधिक से अधिक संख्या में 2 से 2.5 लाख किसानों को दे दिया जाता है, और उसके बाद से हमारा स्ट्रॉबेरी चलता है और हमारा ड्रैगन फ्रूट। इसके बाद ये ड्रैगन फ्रूट इस साल 1 एकड़ से ऊपर हम व्यवस्था में लगाने के लिए, और इसके बाद से इस साल हम लगभग 1.5 एकड़ हल्दी सा जो देसी होता है, जो मेघा होता है, क्योंकि इस बार डिमांड अधिक है, सब लोग हल्दी का खेती छोड़ दिया, परंपरागत खेती हल्दी था, इस बार हम प्लांट विभाग से हम इस बार हल्दी का अनुदान विभाग से सोच रहे हैं हल्दी का बीज लाने के लिए।
1: स्ट्रॉबेरी की मांग अन्य फलों के मुकाबले काफी अधिक होती है, इसलिए बिंद किशोर इसको तैयार करने पर विशेष ध्यान देते हैं। वे बताते हैं कि युवा इसकी खेती करने के अलावा इसके फल से तैयार उत्पादों का प्रसंस्करण करें तो उन्हें बेहतर फायदा होगा, इस पर किसानों को अनुदान भी मिलता है। बिंद जी कहते हैं कि युवा नौकरी ढूंढने की बजाय नौकरी देने वाले बने और गांव में ही रहकर रोजगार के अवसर बनाए। स्ट्रॉबेरी का फल बहुत ही नाजुक एवं

0: क्षयशील होता है। स्ट्रॉबेरी के लाल, गुलाबी, सुगंधित एवं पौष्टिक फल की आजकल बहुत मांग है। पौष्टिक गुणों से भरपूर होने के कारण लोगों का ये पसंदीदा फल बन चुका है। प्रमुख तत्वों के अलावा विटामिन सी, लौह व खनिज तत्व की प्रचुर मात्रा होने के कारण इस फल का सेवन रक्त अल्पता से ग्रसित रोगियों के लिए लाभप्रद माना जाता है।
1: यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कुशीनगर जैसे इलाके में स्ट्रॉबेरी की खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग के क्या प्रयास रहे, किस तरह से प्रोत्साहन दिया गया यहाँ के किसानों को। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान।
2: चुटकुला समझ नहीं आया?
3: समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का।
4: तो इसमें समझना क्या है दोस्त, ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल, IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट।
1: ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए जानते हैं कुशीनगर जैसे इलाके में स्ट्रॉबेरी की खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र के किस तरह के प्रयास रहे।
0: पिछले कुछ सालों में भारत ने दुनिया भर में खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करके प्रमुख कृषि प्रधान देश की इमेज बनाई है और ये संभव हुआ है देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे कृषि अधिकारियों की ओर से किसानों को मिलने वाले कृषि संबंधी मार्गदर्शन से। कुशीनगर में स्ट्रॉबेरी सहित दूसरी उद्यानिकी फसलों का उत्पादन बढ़ाने में कृषि अधिकारियों का प्रयास किसानों का हौसला बढ़ाने में कामयाब रहा है। इस बारे में विभाग की ओर से मिलने वाला सहयोग स्ट्रॉबेरी का उत्पादन को बढ़ाने में मददगार बन रहा है। कृषि के मामले में किसानों की बेहतरी के लिए कृषि विभाग लगातार प्रयास कर रहा है, आइए जानते हैं इस बारे में।
5: आज हम अपने जनपद के दुदही विकास खंड के दुमही गांव में हैं। यहां पर लगभग 3 हेक्टेयर में स्ट्रॉबेरी की खेती हो रही है। साथ ही हम यहां पे देख रहे हैं कि स्ट्रॉबेरी की खेती ड्रिप सिस्टम सिंचाई के द्वारा भी हो रही है। इसमें ड्रिप द्वारा ये लाभ है कि जो खरपतवार उगते हैं वो नहीं उगेंगे, बाकी मल्चिंग हुआ है, मल्चिंग के द्वारा भी खरपतवारों पे पूर्ण नियंत्रण रहता है। साथ ही हम कम से कम पानी में अधिक से अधिक फसल उपजा पा रहे हैं। हम लोगों का मेनली यही प्रयास है कि पहले तो इस गांव को हमने मॉडल हॉर्टिकल्चर विलेज, मॉडल औद्यानिक गांव के रूप में विकसित किया है और इसके साथ ही स्ट्रॉबेरी की खेती पहले यहीं भी शुरू हुई, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हम जनपद के खड्डा में और उसके बाद सुकरौली में, मोतीचक में और कसिया में यहाँ भी स्ट्रॉबेरी की खेती स्टार्ट करा चुके हैं। इस तरह से किसान जो भी यहाँ पे भ्रमण के लिए आते हैं वो निश्चित रूप से ही उनमें एक अलग से एनर्जी होती है कि इस खेती को अपनाया जाए, तो इसकी खेती को देखते हुए काफी लोग इसकी खेती के लिए आ रहे हैं आगे। और हम लोगों का पूरा प्रयास है कि हम एक ही विकास खंड में ना सीमित रह के जनपद के सभी विकास खंड में इसकी खेती होने लगे।
0: कहते हैं जुनून हो तो कामयाबी मिल ही जाती है, कुछ ऐसा ही कर दिखाया है कुशीनगर में कार्यरत कृषि विज्ञान केंद्र के शमशेर सिंह जी ने। इनके प्रयास से यहाँ के किसानों ने परंपरागत खेती को छोड़कर स्ट्रॉबेरी की खेती को अपनाया। केवी के किसानों को स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए मार्गदर्शन देती है जिससे इस क्षेत्र में स्ट्रॉबेरी की खेती हो रही है और किसान खुशहाल बन रहे हैं। आइए जानते हैं इस बारे में केवी के में कार्यरत शमशेर जी से ही।
6: हम इस समय दुमही गाँव में स्थित है जो कि दुदही ब्लॉक का गांव है ये, और यहाँ पर पहले किसान धान गेहूँ परंपरागत खेती करते थे, लेकिन किसानों को लगा कि हमारी आय बढ़नी चाहिए तो किसान ने कुछ नए नए खेती को अपनाया। कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में आए, उनको स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में बताया गया और यहाँ उसकी संभावनाएं हैं। ये जो स्ट्रॉबेरी लगा हुआ है ये वैरायटी है विंटर डाउन, जो प्रजाति इसका है ये विंटर डाउन है और इसको लगाने का जो सही समय है अक्टूबर महीना है, ये ठंडे मौसम की फसल है, जाड़े की क्रॉप है, रबी सीजन की क्रॉप फसल है ये, जो कि अक्टूबर में लगाई जाती है और लगभग मार्च तक ये फ्रूटिंग देती रहती है और मार्च तक इस क्रॉप में लगभग प्रति एकड़ करीब 4.5 लाख खर्च पड़ता है और लगभग 3 से 4 लाख का शुद्ध लाभ इसमें है।
0: स्ट्रॉबेरी की मांग देश के हर हिस्से में तेजी से बढ़ रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में प्रमुखता से उगाया जाने वाला स्ट्रॉबेरी आज मैदानी क्षेत्रों में भी उगाया जा रहा है। हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने अपने प्रयासों से इसकी विभिन्न किस्मों को विकसित किया है, जिसे गर्म वाले स्थानों में भी अब किसान इसकी खेती कर रहे हैं। कई राज्यों में किसान कृषि विभाग की सहायता से स्ट्रॉबेरी की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। कृषि विशेषज्ञ बताते हैं कि पूरे दुनिया में स्ट्रॉबेरी की अलग अलग 600 किस्में मौजूद हैं। कृषि वैज्ञानिकों के प्रयास से इनमें से कई किस्में मैदानी क्षेत्रों में उगाई जा रही हैं। कुशीनगर के किसान स्ट्रॉबेरी की इन्हीं किस्मों को उगाकर इसका अच्छा उत्पादन और मुनाफा दोनों कमा रहे हैं। अगर आप भी स्ट्रॉबेरी की खेती कर अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर करना चाहते हैं, तो आप भी स्ट्रॉबेरी की खेती को अपनाएं और स्वयं को मजबूत करते हुए देश को भी मजबूत बनाएं।
1: तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम सफल किसान। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में जितनी भी जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी और हमारे सफल किसानों से मिलकर आप उनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे। ऐसी ही कोई दास्तान किसान भाइयों बहनों आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है sfalkisandidi@gmail.com या फिर आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ कि अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर एक ऐसी ही दास्तान लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत वतन का राग कार्यक्रम में आज हम स्मरण कर रहे हैं महान शिक्षाविद, चिंतक और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का।
1: ये वतन का
0: एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे, ये कहना था अखंड भारत के प्रबल समर्थक, सुप्रसिद्ध शिक्षाविद, महान चिंतक, प्रखर वक्ता, कुशल संगठनकर्ता और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, जिन्होंने देश की अखंडता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। वे एक दक्ष राजनीतिज्ञ तो थे ही, लेकिन उससे भी पहले वे एक प्रखर राष्ट्रवादी और देशभक्त थे। देश से उनके सरोकार गहरे थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई सन 1901 को कोलकाता के एक संपन्न और अत्यंत प्रतिष्ठित बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता सर आशुतोष मुखर्जी बंगाल के एक जाने माने शिक्षाविद थे। उनकी माता का नाम जोगमाया देवी था। बचपन से ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी अत्यंत संवेदनशील और अंतर्मुखी स्वभाव के थे। बचपन में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को घर पर बेनी कहकर पुकारा जाता था। उनका रंग अपने भाइयों की तुलना में सांवला था, इसलिए सभी उन्हें चिढ़ाते और भूतिया भूती कहकर बुलाते थे। एक स्वस्थ और सुंदर वातावरण में उनकी परवरिश आरंभ हुई। घर पर अध्ययन अध्यापन का बहुत अच्छा वातावरण था, जिसका प्रभाव बचपन से ही उन पर पड़ा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के विद्यार्थी थे। शिक्षा के प्रति उनके भीतर गहरा अनुराग था। सभी विषयों में उनकी गहरी रुचि थी। अपने जीवन में शिक्षा को उन्होंने एक अनमोल निधि की तरह एकत्रित किया और आने वाली पीढ़ी में विद्या की ये निधि वे उसी उदारता और जिम्मेदारी के साथ बांटते रहे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्राथमिक शिक्षा भवानीपुर के मित्र इंस्टीट्यूशन से हुई। सन 1917 में मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से 1921 में बीए की उपाधि प्राप्त की। बीए करने के बाद उनका विवाह सुधा चक्रवर्ती के साथ संपन्न हुआ, लेकिन बहुत जल्दी ही उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इससे अत्यधिक दुखी हुए और उन्होंने आजीवन पुनर्विवाह नहीं किया। सन 1923 में वे विश्वविद्यालय सीनेट के फेलो बने। 1924 में लॉ की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कोलकाता उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में अपना नाम दर्ज करवाया। कुछ समय बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी विदेश चले गए। वहां पर लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी ने उन्हें सम्मानित सदस्य बनाया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सन 1926 में इंग्लैंड से बैरिस्टर बनकर स्वदेश लौटे। अपने पिता की तरह उन्होंने भी बहुत कम उम्र में ही शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत उल्लेखनीय सफलताएं अर्जित कर ली थीं। भारत लौटने के बाद डॉ. मुखर्जी वकालत तथा कोलकाता विश्वविद्यालय की सेवा में कार्यरत हो गए। मात्र 33 वर्ष की उम्र में ही वे कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति बने। इस पद पर नियुक्ति पाने वाले वो सबसे कम आयु के कुलपति थे। इस तरह एक विचारक, एक प्रखर शिक्षाविद के रूप में उनकी उपलब्धि तथा ख्याति निरंतर बढ़ती चली गई। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब कुलपति थे, तब 1937 में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर को पहली बार विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाषण देने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया। उनके आत्मीय आमंत्रण पर गुरुदेव पधारे और बांग्ला भाषा में उन्होंने भाषण दिया। सभी छात्रों के लिए ये एक सौभाग्य क्षण था। सन 1938 तक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस पद पर बने रहे और शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दिया।

डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आरंभ से ही मानवता के उपासक और अत्यंत सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। उन्होंने लोगों के भीतर आजादी की अलख जगाने के उद्देश्य से अपना राजनैतिक जीवन आरंभ किया। गुलाम भारत की स्थितियां उन्हें परेशान कर रही थीं। एक बेचैनी उनके भीतर लगातार बनी रहती थी। भारत की आजादी के लिए उनके भीतर एक तीव्र छटपटाहट थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस धारणा के प्रबल समर्थक थे कि सांस्कृतिक दृष्टि से हम सभी भारतीय एक हैं। इसलिए धर्म के नाम पर लोगों के मन में कड़वाहट बोने के वो कट्टर विरोधी थे। वो मानते थे कि हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं, हम में कोई अंतर नहीं है, हमारी नसों में बहने वाला रक्त एक है, एक ही भाषा, एक ही संस्कृति और एक ही हमारी विरासत है, हमें हर हाल में एकजुट रहना चाहिए। 1929 को वो बंगाल विधानसभा परिषद के सदस्य चुने गए, किंतु कुछ मतभेदों के कारण उन्होंने इस पद से इस्तीफा दिया और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दोबारा निर्वाचित हुए। 1937 में वो बंगाल सरकार में वित्त मंत्री बने। अपने कार्यकाल के दौरान वे अत्यंत ईमानदार और निरपेक्ष रहे। पद पर रहते हुए उन्होंने अतुलनीय कार्य किया, लेकिन एक साल से कम समय में ही इस पद से भी उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। 1940 में उन्हें हिंदू महासभा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया और 1944 में वो इसके पूर्ण अध्यक्ष चुने गए। देश की आजादी के तुरंत बाद जो अंतरिम सरकार बनी, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उद्योग और आपूर्ति मंत्री का पदभार संभाला। संविधान सभा में उनके प्रदर्शन, उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता, शानदार भाषण कला और संसदीय प्रक्रिया में उनकी कुशलता, इन सब बातों ने उनके राजनैतिक व्यक्तित्व को एक नई ऊंचाई प्रदान की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने कार्यकाल के दौरान चितरंजन में रेल इंजन का कारखाना, विशाखापट्टनम में जहाज बनाने का कारखाना और बिहार में खाद का कारखाना स्थापित करवाया। देश की आजादी के बाद देसी रियासतों के भारत में विलीनीकरण की प्रक्रिया में भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। हैदराबाद के निजाम को अगर भारत में विलीन होना पड़ा तो सरदार पटेल के साथ साथ इसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। विभाजन के बाद कश्मीर में जो तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितियां थीं, उससे वो सहमत नहीं थे और 6 अप्रैल सन 1950 को उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। भारत उनका मान था, एक भारत, अखंड भारत उनकी आत्मा का संगीत था।

अपने सिद्धांत, अपनी स्पष्टवादिता, अपनी विचारधारा और प्रखर राष्ट्रप्रेम की वजह से न केवल अपने चाहने वालों के बीच बल्कि अपने राजनीतिक विरोधियों के बीच भी डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का विशेष सम्मान था। एक भारत अखंड भारत का भाव उनके लिए सर्वोपरि था। उनका जीवन बहुत लंबा नहीं रहा, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में, महिला सशक्तिकरण और तकनीक की दिशा में उन्होंने जो काम किया, वो काम उस दौर की सोच से बहुत आगे का काम था। खासतौर पर वो देश के विकास में जन भागीदारी को बखूबी समझते थे। उनके पास अत्यंत प्रभावशाली राष्ट्रवादी चिंतन था, जिस पर वो अटल थे। यही कारण है कि अक्सर सहकर्मियों से उनका मतभेद हो जाया करता था, लेकिन वो अपने सिद्धांतों के आगे कभी झुके नहीं। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी संपूर्ण देश को एक इकाई के रूप में देखना चाहते थे। उनका स्पष्ट मत था कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं हो सकते। 21 अक्टूबर 1951 को देश को एक नई दिशा देने की सोच के साथ दिल्ली में उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की और इसके पहले अध्यक्ष बने। इस तरह एक मजबूत राष्ट्रवादी प्रतिपक्ष तैयार हुआ। सन 1951-52 के आम चुनावों में वे विजयी हुए। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत की अखंडता के दृढ़ पक्षधर थे। उनका मानना था कि आजादी के बाद भारत की एकता और अखंडता कायम रखना एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। आजादी के बाद राज्यों के विलय को लेकर उनका अपना स्पष्ट मत था और इस हेतु उन्होंने सत्याग्रह भी किया। कच्छ और कश्मीर में क्षेत्रीय अखंडता का मुद्दा उन्होंने पुरजोर तरीके से उठाया। संसद से सड़क तक उन्होंने आंदोलन किए। कश्मीर में चल रहे डोगरा आंदोलन का भी उन्होंने भरपूर समर्थन किया था। कश्मीर में लागू परमिट व्यवस्था का विरोध करते हुए उन्होंने एक लोकतांत्रिक सोच का परिचय दिया और उस पर अडिग रहे। कश्मीर की तत्कालीन परिस्थितियां उन्हें कचोट रही थीं। जम्मू कश्मीर की परमिट व्यवस्था से वे अत्यंत आहत थे। इसके विरोध स्वरूप वे बिना परमिट लिए ही जम्मू कश्मीर की यात्रा पर निकल पड़े। 8 मई सन 1953 की सुबह 6:30 बजे अपने समर्थकों के साथ वो पंजाब के रास्ते जम्मू के लिए रवाना हुए। जलंधर से अमृतसर के लिए उन्होंने ट्रेन पकड़ी। अमृतसर में 10 मई 1953 को भारत की एकता पर उन्होंने महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया और 11 मई 1953 की शाम को श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जम्मू कश्मीर की सीमा के 2 मील भीतर लखनपुर से गिरफ्तार कर नजरबंद कर लिया गया। नजरबंदी के दौरान ही 23 जून 1953 को उनका निधन हो गया। इस तरह देश के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। नमन ऐसे महान राष्ट्रभक्त को।

आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन श्री शिवशेखर शुक्ल, समन्वय श्री संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।